0: ज्यादा करना भी नहीं पड़ेगा। बारिश से पहले मौसम विभाग की ताज़ा भविष्यवाणी ने गर्मी के सताए लोगों पर राहत की बौछार कर दी है।
1: जो अभी हीटवेव कंडीशन चल रही है, जो अधिकतम तापमान जो का स्तर जो ज्यादा चल रहा है, अनुमान यही है कि 28 तारीख से जो इसमें गिरावट देखी जाएगी और उसके बाद 29, 30, 31 तक आप मान के लिए 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो दिल्ली में और 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पूरे उत्तर पश्चिम भारत में अलग स्थानों पर अधिकतम तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जो हीटवेव सीवियर कंडीशन चल रही है अभी, उसमें कल के बाद से जो है राहत मिल जाएगी।

0: मौसम विभाग की माने तो आज से मौसम पलटने वाला है। देश के कई इलाकों में बादल बारिश की सौगात लाने वाले हैं। मौसम विभाग के अनुसार एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव हो रहा है जो गर्मी से तपते जलते उत्तर भारत के लिए राहत की फुहारें लेकर आ रहा है।
1: अनुमान ये है कि एक पश्चिम विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो 28 तारीख को जो है उत्तर पश्चिम भारत प्रभावित करेगा, जिसको देखते हुए 28 तारीख के बाद से जो एक थंडर स्टॉर्म की एक्टिविटी जो है वो पूरे उत्तर पश्चिम भारत में देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से तेज हवा के साथ साथ में जो है लाइटनिंग घटना, हवा गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर 70 किलोमीटर और कहीं कहीं पर 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर के 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रह सकती है।
0: ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों से लेकर मैदानों तक का मौसम बदलने वाला है, जिससे तापमान में गिरावट होगी और हीट वेव से कुछ दिनों के लिए निजात मिल जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक हीट वेव से राहत की ये स्थिति हफ्ते भर तक बनी रह सकती है, क्योंकि तापमान को दोबारा हीट वेव के स्तर पर आने में 7 से 8 दिन का समय लग सकता है।
1: देखिए, अभी टेम्परेचर जब इतने फॉल होंगे तो उनको राइज करने में फिर से थोड़ा समय लगेगा, तो फिलहाल हमारा अनुमान यही है कि 2 से 3 दिन के बाद 29 तारीख से जो हीटर कंडीशंस अबेट हो जाएंगी, उसके बाद में 30-31 तारीख के बाद में फिर से ग्रेजुअली टेम्परेचर राइज होना शुरू होंगे और उनको फिर से हीटवेव के स्तर पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा।
0: इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर देश के 14-15 राज्यों में दिखाई देगा। इसी के चलते राजस्थान, MP, बिहार और UP में अगले 3 दिनों तक बारिश हो सकती है। इसे देखते हुए बिहार के 32 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राजस्थान में जयपुर सहित 11 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जब से मौसम विभाग ने बारिश का अनुमान जताया है, लोग बेसब्री से मौसम के बदलने की राह देख रहे हैं। दरअसल पिछले 1 महीने से दिल्ली समेत पूरे उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों में गर्मी सितम ढा रही है।
2: 28 मई को पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी राज्यों में सक्रिय होगा, जिसका असर पूरे उत्तर भारत में देखने को मिल सकता है। सामान्य से तापमान जो है वो थोड़े से कम होते हुए नजर आएंगे, जिससे लोगों को इस चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलने वाली है। हालांकि अभी तापमान जो है वो 45 डिग्री पार है। अलग अलग राज्यों में मौसम विभाग द्वारा जो है अलर्ट जारी किया गया है। अगर बात उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र की जाए तो वहां पर जो है मौसम विभाग द्वारा रेड अलर्ट जारी किया गया है। लगातार वहां पर जो उमस की स्थिति है, गर्मी की स्थिति है, वो बढ़ती हुई दिखेगी। लेकिन इसके साथ ही अगर मैदानी राज्यों की बात की जाए तो वहां पर इस वक्त ऑरेंज अलर्ट बना हुआ है। जिस तरीके से तापमान बढ़ रहे हैं, लोगों को चिलचिलाती गर्मी खासा दिक्कत दे रही है। तो इसी के साथ ही लोगों को राहत का भी इंतजार है कि मानसूनी बारिश जो है कब दस्तक देगी, लेकिन उसमें अभी थोड़ा इंतजार लोगों को करना पड़ सकता है।
0: बहरहाल मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की तो गुरुवार की सुबह इसका असर कई जगहों पर नजर आने भी लगा। चंडीगढ़ में लोग सुबह सोकर उठे तो ठंडी हवाओं ने स्वागत किया, आसमान में बादल छाए दिखे और तापमान में आई गिरावट से लोगों की सुबह सुहानी हो गई।
3: चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली है। जो पारा 45-40 डिग्री था, अब देखिए कि किस तरीके से मौसम सुहावना हुआ है। चंडीगढ़ सुखना लेक पर इस समय सुबह के वक्त जो बिल्कुल सन्नाटा पसरा रहता था, चहल पहल अब आपको लोगों की नजर आएगी। और ये इसलिए क्योंकि जिस तरीके से आप देख सकते हो कि ठंडी हवाएं बिल्कुल चल रही हैं, ठंडी हवा, और इससे पारे में गिरावट आई है और बादल छाए हैं इस समय, और ये पूरा मौसम का आलम

0: उत्तर भारत में, पंजाब हो, हरियाणा हो, चंडीगढ़ हो, तो इस तरीके का मौसम बदला हुआ है। और आप क्योंकि कल सबसे ज़्यादा गर्मी दर्ज की गई थी फरीदकोट के अंदर, पंजाब में 46.1 डिग्री तापमान था और हरियाणा के रोहतक में 46.6 डिग्री टेम्परेचर था। और कल आपने यहीं पे तस्वीरें दिखाई थी, लेकिन आप देखिए दूर तक जहां आपको नजर जाएगी तो लोग किस तरीके से सुबह सैर सपाटे के लिए और सुबह की रूटीन और चहल पहल जो यहां पर रहती है, क्योंकि इस मौसम का लुत्फ लेने के लिए लोग पहुंचते हैं। गर्मी से राहत है और चिलचिलाती गर्मी थी चंडीगढ़ में, बाहर नहीं निकला जा रहा था, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। मौसम विभाग ऑरेंज अलर्ट जारी कर रहा था, लेकिन अब अगले 2-3 दिन हो सकता है मौसम विभाग का जैसा कहना है कि मौसम में राहत रहेगी। इस तरीके से ही गर्मी से लोगों को अब राहत रहेगी।
1: आपको बता दें कि दक्षिण और उत्तर पूर्व के कई राज्यों में पहले से ही प्री मॉनसून बारिश का दौर जारी है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 29 मई से 5 जून तक देश के 80-90% हिस्से में बारिश होगी।
2: अभी ये फिलहाल प्री मानसून बारिश है, क्योंकि यहाँ पर थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है, जहाँ पर कंड्यूसिव एनवायरनमेंट होता है, हीटिंग होती है, कई बार ट्रफ रेखा भी है, साइक्लोन सर्कुलेशन है, मॉइस्चर अवेलेबिलिटी होती है, तो वहाँ पर क्लाउड का सडन डेवलपमेंट होता है जिसकी वजह से तेज हवाएं और बारिश जो है देखने को मिलती है। तो आप जो भी ये जो बारिश का अभी स्थिति देख पा रहे हैं, जो वार्निंग इशू की गई है, वो सारी की सारी प्री मानसून वर्षा में आएगी।

0: मॉनसून से ठीक पहले की ये बारिश इसलिए भी अहम है क्योंकि मॉनसून अभी केरल नहीं पहुंचा है। मौसम विभाग ने 26 मई को मॉनसून के केरल पहुंचने का अनुमान लगाया था, लेकिन यहां नमी कमजोर होने से मॉनसून आगे नहीं बढ़ पाया है। दरअसल लक्षद्वीप, केरल और मंगलुरु के 14 तय स्टेशन में लगातार 2 दिन 2.5 mm बारिश होने पर ही मॉनसून पहुंचने का ऐलान किया जाता है।
1: 14 rainfall monitoring stations in Lakshadweep, Kerala, and one station from Karnataka, that is Mangalore. So consecutively for 2 days, at least 60% of stations should report 2.5 millimeters of rainfall, and then the second day is declared as the onset of monsoon.

यानी फिलहाल मॉनसून थोड़ा सा इंतजार और करवाएगा, लेकिन तब तक गर्मी के सितम के बीच वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते होने वाली बारिश का फोरकास्ट कई राज्यों के लिए राहत की गुड न्यूज लेकर आया है।

0: चंडीगढ़ से अमन भारद्वाज और दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे।
1: मॉनसून का इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है, राहत की बारिश भी पहुंचने को है, लेकिन बारिश की मेहरबानी जब तक नहीं हो रही, गर्मी के सितम से बचने का रास्ता निकाल डालना भी काफी जरूरी है। तो मई की विदाई और मॉनसून की दस्तक के बीच में मैदानी इलाकों में जहां गर्मी अपने तेवर दिखा रही है, तो वहीं पहाड़ों पर मौसम का उत्सव चल रहा है। कश्मीर और हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में पिछले दिनों हुई बर्फबारी ने मौसम को खुशगवार बना दिया। मॉनसून के इंतजार के बीच में गर्मी में सर्दी का एहसास करने के लिए मैदानों के मुसाफिर इस बर्फीले पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। अच्छी खासी रौनक पहाड़ों पर आपको नजर आएगी। कुल्लू मनाली में पर्यटक राफ्टिंग का मजा ले रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं, ये सभी शहर की गर्मी से दूर पहाड़ों पर खूब इंजॉय भी कर रहे हैं। तो मैदानों के मुसाफिर गर्मी से निजात पाने के लिए पहाड़ों की तरफ निकल रहे हैं, लेकिन जो पीछे रह गए हैं, राहत का इंतजाम उनके लिए भी तो करना है। गर्मी को देखते हुए शहर शहर चिड़ियाघरों में जानवरों को राहत देने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। ओडिशा के नंदन कानन जू में कूलर, स्प्रिंकलर और बर्फ वाले पानी के टैंक लगाए गए हैं। वहीं हाथियों को बार बार नहलाया जा रहा है। जमशेदपुर, हैदराबाद, रांची, देहरादून और लखनऊ के चिड़ियाघरों में भी ठंडे पानी, शेड, फव्वारों और फलों के जरिए जानवरों को गर्मी से बचाने की यहां पर कोशिश की जा रही है।
2: तपती धूप, आसमान से बरसती आग और पारा ऐसा कि इंसान ही नहीं बेजुबान भी बेहाल हो जाए। फर्क सिर्फ इतना है कि इंसान अपनी तकलीफ बता देते हैं, लेकिन ये बेजुबान अपना दर्द बयां नहीं कर पाते। गर्मी के इस तेवर के बीच देश के तमाम चिड़ियाघरों में इन दिनों जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। कहीं कूलर चल रहे हैं, कहीं पानी की फुहारे राहत का एहसास करा रही हैं, तो कहीं तरबूज और खीरे से उन्हें राहत दी जा रही है। ओडिशा के नंदनकानन जियोलॉजिकल पार्क में 4,000 से ज्यादा जीवों के लिए विशेष तैयारी की गई है। बाड़ों में एयर कूलर, स्प्रिंकलर और पानी की लगातार सप्लाई रखी गई है। बंदर, चिंपैंजी और पक्षियों पर लगातार पानी का छिड़काव किया जा रहा है। भालुओं के लिए बर्फ वाले पानी से भरे टैंक बनाए गए हैं, जबकि हाथियों को दिन में कई बार नहलाया जा रहा है।
3: जूलॉजिकल पार्क जो कि भुवनेश्वर में है, ये एक लार्ज जू है। इसमें अराउंड 169 अलग अलग स्पीसीज यहाँ पे हमने रखे हुए हैं, जिनका नंबर सब मिला के 4,000 के आसपास है।
2: जमशेदपुर के टाटा जू में भी भीषण तापमान को देखते हुए जानवरों के खान पान और रहन सहन में जरूरी तब्दीलियां की गई है। शेरों के पिंजरों पर कूलर लगाए गए हैं और बड़े जानवरों को सुबह शाम पानी से नहलाया जा रहा है, ताकि उन्हें राहत मिल सके। हैदराबाद के नेहरू जियोलॉजिकल पार्क में भी करीब 50 एयर कूलर लगाए गए हैं। नॉक्टर्नल हाउस में एसी और एग्जॉस्ट फैन चलाए जा रहे हैं। जानवरों को तरबूज, खरबूजा और विटामिन से भरपूर आहार दिया जा रहा है, ताकि डिहाइड्रेशन से बचा जा सके। रांची के भगवान बिस्सा जैविक उद्यान में पक्षियों के लिए शेड बनाए गए हैं। बाघ, शेर और तेंदुओं के बाड़े में कूलिंग सिस्टम लगाया गया है। वहीं देहरादून, लखनऊ और भटिंडा के चिड़ियाघरों में भी फुवारे, स्प्रिंकलर, तिरपाल और ठंडे पानी का इंतजाम किया गया है। सिर्फ जानवर ही नहीं, चिड़ियाघर आने वाले लोगों का भी ध्यान रखा जा रहा है। कई जगहों पर ठंडे पानी, रेस्ट शेड और बैटरी वाली गाड़ियों की सुविधा दी गई है, ताकि लोग तेज गर्मी से बच सकें। भीषण गर्मी के इस दौर में ये तस्वीरें सिर्फ इंतजाम नहीं, बल्कि इंसानियत की मिसाल भी दे रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो राहत की बारिश आने तक यूं ही गर्मी के विरुद्ध युद्ध तो जारी रखना है। वेदर हॉट है, सॉल्यूशन कूल होना चाहिए। तो देश के अलग अलग हिस्सों से गर्मी को मात देने के लिए कूल सॉल्यूशंस निकाले जा रहे हैं। चिड़ियाघरों में बेजुबानों के लिए कूलिंग के इंतजाम किए जा रहे हैं। तो अस्पतालों में लोगों के लिए खास हीट स्ट्रोक रूम तैयार किए जा रहे हैं। बिजली विभाग भी शहर शहर खास एहतियात बरत रहा है। कई शहरों में मुसाफिरों को कड़ी धूप से बचाने के लिए सड़कों पर ग्रीन शेड्स लगाए जा रहे हैं। दरअसल दिन में गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है कि बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। हालांकि कामकाजी लोगों को बाहर निकलना मजबूरी है। इस दौरान चौराहों पर सिग्नल के कारण रुकने पर सीधी धूप का सामना करना पड़ रहा है। लिहाजा अयोध्या, लखनऊ समेत कई शहरों में चौराहे पर वाहन चालकों को भीषण गर्मी से चिलचिलाती धूप और हीट वेव से बचाने के लिए ट्रैफिक विभाग ने ग्रीन नेट लगवाया है। तमाम एहतियातों के बीच ही 45 डिग्री के पार वाली इस गर्मी में डाइट का ख्याल रखना भी जरूरी है। तो चलिए जान लेते हैं हेल्थ एक्सपर्ट से ही कि नौतपे की गर्मी में कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना जरूरी है।
4: सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है आपके हाइड्रेशन पे ध्यान रखना कि पानी रेगुलर हर 15-20 मिनट बाद पानी लेते रहें। उसके अलावा जो भी पानी के साथ में, केवल प्लेन वाटर ही जरूरी नहीं है, आप ORS भी ले सकते हैं। लेमन वाटर जो है वो सॉल्टी, स्वीट सॉल्टी लेमन वाटर आप अपने डाइट में रख सकते हैं। और उसके अलावा छाछ है, बटर मिल्क है, कोकम का शरबत है, जो इन दिनों सीजन की चीजें हैं, जैसे कि फालसे का रस है या प्याज का रस आप हाथों पैरों में लगा सकते हैं, जिससे कि आपको मतलब उससे रिलीफ मिले हीट से। उसके अलावा आम का पन्ना है, छाछ राबड़ी है जो कि हमारे राजस्थान का मेन खाना है, उसको आपको अपने डाइट के अंदर जरूर शामिल करना चाहिए। इसके अलावा मैं लोगों को कहना चाहूंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा आजकल लोगों का बिजी शेड्यूल हो गया है तो वो ब्रेकफास्ट नहीं करते, तो नाश्ता जरूर करके निकलना चाहिए। बिना कुछ खाए हुए आप घर से नहीं निकले। और स्पेशली जो डायबिटिक पेशेंट है, क्योंकि ये जो हीट वेव का जो असर है वो ज्यादा से ज्यादा देखा जाए तो हार्ट पेशेंट जो है, जिनका की ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा रेज हो जाता है, या डायबिटिक पेशेंट पे जिनका की ब्लड शुगर लेवल अनकंट्रोल्ड होता है, उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है ये सीजन। तो उनको तो स्पेशली अपने खाने पीने का ध्यान रखना है। कुछ चीजें आप घर से कैरी करें, क्योंकि कई बार होता है कि हम बाहर का फ्रूट्स खाते हैं तो कई बार कटे होते हैं तो उनसे इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। तो हमेशा फ्रेश पीने वाले पानी से इन फ्रूट्स को आप धोइए और फिर उनको आप साफ हाथों से काटें, और काटने के बाद आप फ्रेश ही खाएं, मतलब घर का बना हुआ भी खाना कभी भी बासे खाने को नहीं खाएं। ये ध्यान रखें कि जितना आपको खाना मतलब कंज्यूम होना है उतना ही आप बनाएं, बहुत ज्यादा नहीं। साथ में उसका जो टेम्परेचर है वो कोशिश कीजिए कि यदि आपके ऑफिस में रेफ्रिजरेटर है तो आप वहां पर उसको कर सकते हैं। मतलब कोई भी सब्जी या दाल खराब हो गई और वो आपने खाया तो आपका गट डिस्टर्ब हो सकता है। अच्छा, इन दिनों में ये भी है कि जब आप घर से निकले तो हमेशा कॉटन क्लोथ्स पहन के निकले, और 12 बजे से 4 बजे तक का टाइम यदि आप अवॉइड करें तो वो बहुत ही अच्छा, क्योंकि इस समय जो आपका एक्सट्रीम टेम्परेचर रहता है 12 से 4।
1: तो तैयार हो जाइए, क्योंकि गर्मी से आप सबको थोड़ी सी राहत मिलने वाली है और कूल कूल पैगाम आने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही। अच्छे कपड़ों के लिए देखते रहिए चीज।
5: If you own a business like I do, even one missed call means money left on the table. I couldn't keep up with calls and texts, and I was losing potential customers until I switched to Quo. Quo is the number one business phone system that streamlines communications so you can scale your business. I can send an automated text response I created anytime someone calls, leaves a voicemail, or texts me. Plans start at just $15 a month. No brainer. Money is on the line. Always say hello with Quo. Try Quo for free at quo.com/tunein. That's quo.com/tunein.
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: 21 दिनों की कठिन नेकान साधना के बाद बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे ही बद्री विशाल मंदिर आए, उनकी एक झलक के लिए श्रद्धालुओं का यहां तांता लग गया। बुधवार से ही बाबा बागेश्वर ने श्रद्धालुओं के लिए बद्रीनाथ महिमा और 5 दिवसीय सत्यनारायण कथा का वाचन शुरू कर दिया है, जिसका आज दूसरा दिन है। और आज भी श्रद्धालुओं को बाबा के दर्शन तो करने को मिलेंगे ही, और साथ ही कथा के साथ अपने 21 दिनों के एकांत साधना के संस्मरण भी सुनने को मिलेंगे।

0: बद्रीनाथ में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर की 21 दिन की कठिन साधना के बाद आरंभ की गई सत्यनारायण कथा का आज दूसरा दिन है। बुधवार को कलश यात्रा के बाद बागेश्वर धाम सरकार ने बद्रीनाथ की महिमा और सत्यनारायण की कथा का शुभारंभ कर दिया।
1: बोलिए बागेश्वर धाम की।
2: खाकचौक आश्रम से कलश यात्रा निकाली गई, जो पूरे पैदल यात्रा के साथ अराइवल प्लाजा जहाँ पे कि कथा स्थल है, कथा स्थल बनाया गया है, वहीं पे वहाँ तक पहुँची है। और आप कथा बागेश्वर धाम सरकार जो है वो बद्रीनाथ धाम में सत्यनारायण की कथा यहाँ पे कर रहे हैं। ऐसे में जो भी श्रद्धालु है हर किसी को कह रहे हैं वो कथा सुनने आए, यहाँ पे आए, भोजन रहने खाने की पूरी व्यवस्था बागेश्वर धाम सरकार द्वारा यहाँ पे श्रद्धालुओं की गई है।
3: तुम हो स्वामी हम है तेरे लाला।
0: पहले दिन की कथा में बागेश्वर सरकार ने बद्रीनाथ की महिमा का गुणगान किया।
3: जय जय पादरी की साला लगा।
4: यहीं पर लक्ष्मी माता बद्री का पेड़ बन करके खड़ी हो गई, और बद्री का पेड़ मतलब बेर का पेड़ बनकर पेड़ खड़ी हो गई, भगवान के ऊपर छत्ता बना लिया, ये पत्नी का धर्म है। छत्ता बना करके खड़ी हुई, नीचे नारायण महाप्रभु तपस्या करने लगे। जब भगवान के नेत्र खुले, भगवान ने कहा देवी अरे तुम यहाँ पर बद्री बनकर क्यों खड़ी हो? संस्कृत में बेरी के पेड़ को बद्री कहते हैं, बद्री कहते हैं, तुम यहाँ पर क्यों खड़ी? स्वामी आप इतना कठोर तप कर रहे हैं, मैं तप तो नहीं कर सकती पर आपका सहयोग तो कर सकती, आपके ऊपर बर्फ गिर रही थी इसलिए मैंने सोचा मैं बद्री का पेड़ बन करके आपके ऊपर छाया बन जाऊं। भगवान के नेत्र सजल हो गए, देवी धन्य हो, तुम्हें पाकर हम धन्य है, आज से हमारे नाम से इस भूमि का नाम नहीं जाना जाएगा, आज से तुम्हारे नाम से ही इस भूमि को जाना जाएगा, और तुम बद्री का पेड़ बनी हो तो आज से नारायण बद्री नहीं बद्री नारायण के नाम से इस भूमि को जाना जाएगा। ये वो भूमि जहां भगवान बद्री नारायण बनकर बैठे।
0: पुरुषोत्तम मास में कथा भागवत जब तप का विशेष महत्व होता है, ऐसे में बाबा बागेश्वर धाम सरकार यहाँ पर सत्यनारायण की कथा कर रहे हैं, जो कि श्रद्धालुओं को यहाँ पर सुनाई जाएगी, यहाँ के स्थानीय लोगों को सुनाई जाएगी और हर किसी को बद्रीनाथ धाम की महिमा के साथ सनातन धर्म के बारे में अब आज भी श्रद्धालुओं को प्रवचन दिए जाएंगे। कथा सुनने के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्धालु पहुंच गए हैं, भारी संख्या में श्रद्धालु कथा श्रवण का लाभ लेने पहुंच रहे हैं। साथ ही श्रद्धालुओं का मकसद बागेश्वर धाम बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के दर्शनों का लाभ लेना भी है। बाबा बागेश्वर धाम सरकार की ओर से श्रद्धालुओं को भंडारे रहने खाने की पूरी व्यवस्था भी की गई है। बाबा बागेश्वर धाम सरकार जहां इस पुरुषोत्तम मास में साधना में लीन थे, वहीं बद्रीनाथ धाम में इस समय कथा का विशेष महत्व होता है, तो बागेश्वर धाम सरकार ने जहां विश्व कल्याण और शांति के लिए साधना की, वहीं अब श्रद्धालुओं के लिए यहां पर कथा श्रवण हो रहा है। बद्रीनाथ में चारों ओर भगवान बद्री विशाल और बागेश्वर धाम सरकार की जयकार है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: कोटा स्थित ऐतिहासिक जगदीश मंदिर में करीब 300 वर्षों से एक अनोखी धार्मिक परंपरा निभाई जा रही है। हर वर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भगवान को 14 दिन का विशेष बीमारी अवकाश दिया जाता है। मान्यता है कि भीषण गर्मी में ठंडे जल से स्नान और आम रस का भोग ग्रहण करने के बाद भगवान अस्वस्थ हो जाते हैं, जिसके चलते मंदिर के पट 14 दिनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं।
0: जैसी भक्त की आस्था उसी रंग में रंग जाते हैं भगवान भी। राजस्थान में कोटा के ऐतिहासिक जगदीश मंदिर में करीब 300 सालों से एक अनूठी धार्मिक परंपरा निभाई जा रही है। यहाँ हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भगवान को 14 दिन का विशेष बीमारी अवकाश दिया जाता है। मान्यता है कि भीषण गर्मी में ठंडे जल से स्नान और आम रस का भोग ग्रहण करने के बाद भगवान अस्वस्थ हो जाते हैं, जिसके चलते मंदिर के पट 14 दिनों के लिए बंद कर दिए जाते हैं।
6: 8 कुंडों से स्नान होता है और उसी दिन भगवान का 108 किलो का आमरस का भोग भी लगाया जाता है। और जगन्नाथ भगवान जो है वो बाल स्वरूप माने जाते हैं कृष्ण भगवान के, तो क्योंकि जैसे एक छोटा सा बच्चा जैसे ही उसको इतना ज़्यादा स्नान कराया जाए और इतना ज़्यादा खिलाया जाए, भोग कराया जाए, तो उससे उसकी तबीयत नरम हो जाती है।
0: परंपरा के मुताबिक ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भगवान का 51 जल कलशों और पंचामृत से विशेष अभिषेक किया जाता है। धार्मिक अनुष्ठानों के पूर्ण होने के बाद मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं और अगले 14 दिनों तक पुजारी प्रतिदिन भगवान के स्वास्थ्य की प्रतीकात्मक देखभाल करते हैं और स्वास्थ्य लाभ के लिए दूध और काली मिर्च का विशेष काढ़ा भी अर्पित किया जाता है। ये तस्वीरें गुजरात के पाटन में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मंदिर की हैं, जहां भगवान का श्रृंगार फूलों और गहनों से नहीं बल्कि नोटों से किया गया है, वो भी 1,51,000 नकदी नोटों से। इस सजावट में 5 रुपए से लेकर 500 रुपए तक के नोटों का इस्तेमाल किया गया है। असल में अधिक मास की एकादशी के मौके पर यहां विशेष धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। इस मौके पर उनके भक्तों ने भगवान का अनूठा श्रृंगार किया। पाटन से सुनील पटेल और कोटा से चेतन गुर्जर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
9: बृहस्पति की कौन सी राशि नेतृत्व की क्षमता देती है? बृहस्पति की कौन सी राशि आपको बहुत अच्छा हीलर और डॉक्टर बना सकती है? बृहस्पति की कौन सी राशि बुध के लिए खराब है और शुक्र के लिए उत्तम है? कौन सी हैं बृहस्पति की राशियां और क्या है उनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
10: If you own a business like I do, even one missed call means money left on the table. I couldn't keep up with calls and texts, and I was losing potential customers until I switched to Quo. Quo is the number one business phone system that streamlines communications so you can scale your business. I can send an automated text response I created anytime someone calls, leaves a voicemail, or texts me. Plans start at just $15 a month. No brainer. Money is on the line. Always say hello with Quo. Try Quo for free at quo.com/tunein. That's quo.com/tunein.
11: कि भाग्य कहीं
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट

0: खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने।
2: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
0: Good news today is really अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
3: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health का सच। Sage University, transforming your passion into profession.
4: रामनगरी में शक्ति उत्सव मां भगवती के मंदिर पर आज संपन्न होगा ध्वजारोहण। साध्वी ऋतुम्भरा के हाथों लहराएगी धर्म ध्वजा। सीआरपीएफ की महिला जवानों के साथ करीब 3,500 महिलाओं की भागीदारों से संपन्न होगा आयोजन। रिकॉर्ड तोड़ रही है चारधाम यात्रा, 40 दिनों में 24 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। 9 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने की केदारनाथ यात्रा। श्री हेमकुंड साहिब में भी 19,000 से ज्यादा भक्त पहुंचे। नौतपा से मिली राहत की खबर, तेज आंधी तूफान और बारिश की संभावना के चलते आज दिल्ली एनसीआर में ऑरेंज अलर्ट, तीनों पहर हल्की बारिश, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं चलने के अनुमान। 31 मई तक रहेगा ऐसा ही मौसम। धौलपुर की राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी दुर्लभ परिंदों से गुलजार, इंडियन स्किमर के संरक्षण के लिए चलाई गई मुहिम रंग लाई। इंडियन स्किमर के 164 अंडों में से 116 में निकले चूजे, IUCN रेड बुक में संकटग्रस्त श्रेणी में है पक्षी। मई के आखिरी शुक्रवार को दर्शकों के लिए मनोरंजन का मेगा डोज, थिएटर और OTT प्लेटफॉर्म पर आज कई बड़ी फिल्म और सीरीज हो रही है रिलीज। बड़े पर्दे पर फिल्म श्री बाबा नीम करोली महाराज में दिखेगा संत का आध्यात्मिक सफर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों।
4: गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में और मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत। और चलिए अब देख लेते हैं अच्छी बात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के साथ।
5: अनाथों के नाथ हैं ये, जिसका कोई नाथ ना हो उसको सनाथ करने वाले नाथ का नाम बद्रीनाथ है। अनाथ को सनाथ करने का नाम अगर कोई इस पृथ्वी पर है वो बद्रीनाथ है। और कितना अद्भुत संयोग है, बद्रीनाथ और बागेश्वरनाथ दोनों जुड़े हैं। हर बार ना दोनों मिल जाते हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पर। चारों युगों में बद्रीनाथ की महिमा, सतयुग में मुक्ति प्रदा नाम से जाना, सतयुग में भी बद्रीनाथ तीर्थ था इसे मुक्ति प्रदा तीर्थ के नाम से जाना, त्रेता युग में भी बद्रीनाथ जाना गया योग सिद्ध क्षेत्र के नाम से जाना गया, द्वापर में भी बद्रीनाथ को जाना गया पर द्वापर में मणिभद्र के नाम से जाना गया, और कलयुग में बद्रीनाथ के नाम से जाना जाता है। नाम एक ही है पर अच्छा बद्रीनाथ क्यों नाम पड़ा, तो शास्त्रोक्त तो बहुत लोगों को पता है कि बद्री के पेड़ थे। हम आज ऐसी छोटी छोटी खोज कर रहे थे, हमको एक पुस्तक छोटी सी हाथ लगी और ये पुस्तक कोई विदेशी इतिहासकार की हमको हाथ में लगी। वो पुस्तक बड़ी अद्भुत थी। उसने उस पुस्तक का नाम था द हिमालयन गजेटियर। इसके लेखक हैं एडविन टी एडकिंसन। इन्होंने बहुत पहले यात्रा की थी हिमालय की और उस पुस्तक का नाम ही लिखा द हिमालयन गजेटियर। इस पुस्तक में बद्रीनाथ का उल्लेख उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि मैं जब यहां आया तो मैं आश्चर्यचकित रह गया कि इतनी ऊंचाई पर, लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर, हजारों बद्री के पेड़ हैं। और आपको समझ में नहीं आया होगा, बद्री का पेड़ मतलब बेर का पेड़। अपने यहां बेर चलता ना, सबरी के जूठे बेर, उस बेर उसका नाम बद्री है। संस्कृत में उसे बद्री कहते, बद्री फलम कहते, तो संस्कृत में वो बद्री फल है। उसी के पेड़ का नाम बद्री है। उस पेड़ के बहुत सघन जन वन है, था यहां। तो वो वन क्यों था और बद्रीनाथ क्यों नाम पड़ा? एक बार क्या हुआ, लड़ाई है घर घर की होती रहती, लक्ष्मी जी रूठ गई भगवान से। अच्छा, तो जो विवाहित है वो अनुभवशील होंगे, अपनी तो कुछ ऐसा है नहीं है, अपन को पता नहीं कि लड़ाई कितनी जल्दी होती है। बाकी अहलूवालिया जी विवाहित है, उनको परिचय था, सब लोग, बहुत से लोग विवाहित बैठे हैं, उनको अनुभव। भगवान की नोक झोंक है, भगवान के तो विवाद में भी कोई ना कोई संवाद छिपा रहता है। ओ, लक्ष्मी जी ने कहा कि हम जा रहे हैं अपने मायके, आप बने रहो शेष नाम की सैया पर। भगवान ने कहा तुम मायके चलो तो हम जोगी बनेंगे, तपस्या करेंगे। प्रायः बहुत से लोगों को शादी के बाद संन्यास बहुत जगता है, बहुत, ये बहुत हमने अनुभव लोगों के खोजे हैं, अनुभव संन्यास। तो लक्ष्मी जी नाराज हो गई, वो चली गई। कथा कहती है, लोगों के मुंह से हमने सुना, संतों के मुंह से सुना कि भगवान बालक का रूप धारण करके इस क्षेत्र में आए। रोने लगे नारायण, भगवान रोने लगे। इस क्षेत्र में भगवान शिव और पार्वती विराजमान थे। पार्वती ने बालक को रोते देखा, गोद में ले लिया। क्या बात, क्यों रो रहे हो, कौन हो तुम? वो सब बाद में बताएंगे, पहले हमारे चुप कराने का उपाय पूछो। हाँ, उपाय बताओ। उस बालक ने कहा माँ आपकी कृपा हो तो ये क्षेत्र हमको तपस्या के लिए दे दो, आप दोनों कहीं और चले जाओ। शंकर जी तो सब समझते थे हमारे प्रभु हैं, ठीक है हम कहीं और जाते हैं। और वो भगवान महादेव इस क्षेत्र को छोड़कर केदारनाथ चले गए। वो बालक यहां विराजमान, वो बालक कोई और नहीं, हमारे श्री नारायण प्रभु जी विराजमान हो गए। बर्फ की बूंदें गिरी, खूब तेज बर्फ गिरी। और जब बर्फ गिरी, इधर लक्ष्मी जी को खबर लगी कि स्वामी जी गायब, देखा जाए कि कहां गायब। स्वामी जी हिमालय में तपस्या करते हैं। और जब तपस्या को देखा, मूर्तिमान नारायण को देखा, जब योग सिद्ध में उस भाव में देखा, लक्ष्मी जी के अंदर भी भाव जग गया कि हमारे प्रभु इतना कष्ट उठा रहे। तो वो भी वहां पर सोचने लगी मैं करूं क्या, बर्फ टप टप टप टप गिर रही है, इनकी साधना में कोई भंग ना पड़े। पत्नी का अर्थ भी वही है, पत्नी वही है जो अपने पति को पतन से बचाए। पत्नी का अर्थ है जो अपने पति को पतन से बचाए, पत्नी का यही स्वभाव होता। पर धन्य माँ तो माँ है, ये तो लीला है। माँ लक्ष्मी ने सोचा करूं क्या, मन में भाव आया मैं कुछ बनकर खड़ी हो जाऊं ताकि इनके ऊपर बर्फ की बूंद ना गिरे। और वो बद्री का पेड़ बनकर, बेरी का पेड़, बेर का पेड़ बनकर के वो खड़ी हो गई। बहुत वर्ष बाद भगवान की तपस्या पूर्ण हुई तो नेत्र खोला तो देखा, अरे देवी तुम? जी महाराज, आप आ गए थे, मैं भी पीछे पीछे आ गई, आपके कष्ट को नहीं देख पाई, बहुत बर्फ की बूंदें गिर रही थी इसी जगह पर। तो भगवान ने कहा देवी हमने तो तपस्या की पर तुम्हारी भी कम तपस्या नहीं थी, जाओ आज के बाद इस तीर्थ स्थल पर हम दोनों की पूजा, हमारी पूजा तुम्हारे साथ होगी, लोग हमको बद्रीनाथ कहेंगे। और नाम पड़ गया बद्रीनाथ। इसीलिए हमने आते ही कथा के संकीर्तन में कहा था जो आए बद्री वो कभी ना रहे दरिद्री। लेकिन पूज्य महाराज जी अद्भुत बात बोलते हैं, भैया जो आए बद्री वो ना आए ओदरी। जो बद्रीनाथ आता है वो कभी गर्भ में नहीं जाता है। बुरा मत मानना, हम प्रातः काल विचार कर रहे थे बद्रीनाथ पर, तब बद्रीनाथ के दर्शन का फल कितना है महाराज जी ने तो बता ही दिया, हमें कहने की आवश्यकता नहीं। पर कथा के पहले हम आपको बताएं, जहां हम बैठे हैं जितने लोग बैठे हैं, आप लोग बहुत 3 दिन सावधान रहना। जो जिंदगी तुम आज से ठीक परसों तक जीते रहे वो जिंदगी मत जीना, कुछ अलग जीना। आप तो कमरे में घर जाकर खूब मोबाइल चलाते रहे ना, इन 3 दिनों कोशिश करना कम से कम मोबाइल चलाना, भजन ज्यादा करना। भूमि में विश्राम का तो नहीं कह सकते, ठंड बहुत है, पर कोशिश हो सके विश्राम भूमि में करना। और जो महात्मा दिखाई दे उसे नारायण समझकर दूर से दंडवत प्रणाम करना। नारायण समझना, वो नारायण छूना नहीं, दूर से प्रणाम करना। और बद्रीनाथ भगवान में जब दर्शन करने जाना, तो महाराज जी ने दर्शन का क्रम बताया। वहां पर जो रावल जी है ना, आदि जगतगुरु शंकराचार्य की परंपरा के परिवार के ही वंशज यहां पर पुजारी बनते हैं, उनको रावल जी कहा जाता है। जो रावल जी होते हैं ना, जो भगवान का कल सिंगार उतार रहे थे, वो 6 महीने तक यहां नदी पार नहीं करते, नदी के उस पार ही रहते, ब्रह्मचर्य का कठोर पालन करते, स्पर्श सेवा में रहते, बहुत ज्यादा किसी को स्पर्श नहीं करते, बचते हैं, ऐसी कठोर साधना। वो भी जीते जागते कभी कभी, हमको तो कल जब हम उनके दर्शन कर रहे थे, प्रणाम कर रहे थे, हमको तो बैठे बैठे खूब लग रहा था जैसे उद्धव जी ठाकुर की सेवा कर रहे हैं। तीर्थ में गुरु की शरण में, महंतों की शरण में कट जाएगा, लेकिन तीर्थ में या गुरु की शरण में किया हुआ पाप कहीं पर कटने वाला नहीं। तो सावधान रहना, 3 दिनों तक जितना हो सके उतना नाम जप करना। बद्रीनाथ आने का बहुत महत्व है। हम लोग, आप लोग मात्रा बहुत, यूं मत मानिएगा कि हम लोग कम लोग क्यों आए, बद्रीनाथ भगवान के यहां लाखों लोग आ रहे हैं, और आप आए नहीं हैं, उन्होंने बुलाया है, पुकार लगाई है, बुलाया है। तो बद्रीनाथ के दर्शन का बहुत महत्व है। पहला महत्व तो बद्रीनाथ के दर्शन का पहला फल, गर्भ में नहीं जाना पड़ता है। जो दर्शन करता, याद रखना दर्शन के बहुत से प्रकार, एक आकर के अपनी फोटो खिंचाना ये भी दर्शन चल रहा है। आजकल मंदिरों में ये ज्यादा चल रहा है, फोटो ना खींचे तो दर्शन नहीं माने जा रहे, रील ना बनाए दर्शन नहीं माने जा रहे। बुरा मत मानिएगा, तीर्थ स्थान रील का विषय नहीं है, रियल का विषय है। मंदिर में आप दर्शन करने आए तो सिर्फ दर्शन करो। गुरु ने पूछा शिष्यों से, एक चिड़िया पेड़ के ऊपर बैठी हुई थी, अपने गुरु ने शिष्यों से पूछा तुम्हें क्या दिखाई देता, किसी ने कहा मुझे चिड़िया दिखाई देती, किसी ने कहा टहनी दिखाई देती, किसी ने कहा चिड़िया के पैर दिखाई देते, लेकिन बहुत बेहतरीन शिष्य ने कहा गुरुदेव मुझे तो सिर्फ इस चिड़िया की आंख दिखाई देती, मेरी लक्ष्य आंख है। वैसे ही भक्त का लक्ष्य भगवान होना चाहिए, साधक का लक्ष्य साध्य होना चाहिए। इसलिए आप जितने भी बद्रीनाथ में आए, यहां आपकी नजर सिर्फ नारायण पर होनी चाहिए। एक तरफ नारायण पर्वत है, दूसरी तरफ नर पर्वत है, नर और नारायण धर्म के दोनों पुत्र यहां पर तपस्या कर रहे हैं। तो पहला फल है ये कि अगर जो भी दर्शन करता है उसे कभी गर्भ में नहीं जाना पड़ता। बद्रीनाथ भगवान का दूसरा फल दर्शन का श्लोक आया।

0: सकता। शास्त्र कहते हैं जो बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करता है अन्यत्र तीर्थ में मरने के बाद मुक्ति होती है, लेकिन बद्रीनाथ में तो दर्शन मात्र से मुक्ति प्राप्त होती है, मात्र दर्शन से। पुरानी कहावत है बिना मरे मुक्ति नहीं, लेकिन ये दर्शन शास्त्र की मुक्ति है। जो दार्शनिक होता है उस दार्शनिक की दृष्टि से कभी पूछो कि मुक्ति का अर्थ क्या है, मुक्ति का अर्थ मरना नहीं है, मुक्ति का अर्थ है कि जीते जी मुक्त हो जाना, ये बद्रीनाथ से प्राप्त होता है। दूसरा लाभ है कि हम दर्शन मात्र से मुक्ति पा सकते हैं। बद्रीनाथ भगवान का तीसरा दर्शन का लाभ, आयु में वृद्धि। जितने देर तक आप यहां रहेंगे आपकी संसारिक आयु की गणना नहीं की जाएगी, ये आयु की वृद्धि है, ये तीसरा लाभ। चौथा लाभ, नाम जप का 1000 गुना फल। भगवान महाराज जी पूज्य बद्रीनाथ वाले महाराज जी अभी मंच पे कह रहे थे 1000 गुना नाम जप का, यहां 1000 गुना फल है। आपने एक बार कहा राम, 1000 बार बन गया काम, आपकी पूरी पूरी माला 1000 हो, 1000 मन का हो गए, 1000 मन का नाम जब आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है मात्र एक बार कहने से, यहां का फल है। ये कैसे बिना, आहा, नर नारायण धर्म के दो पुत्र भगवान प्रकट भए धर्म के, यहां पर नर नारायण के रूप में क्यों प्रकट भए? एक राक्षस था असुर, उसका नाम था सहस्त्रदेव, उसको 1000 कवच प्राप्त थे भगवान सूर्य से, सूर्य की उपासना की उसने, भगवान सूर्य ने आशीर्वाद दिया जाओ तुमको 1000 कवच प्राप्त हो। उसका असली नाम दंभोद्भव था, लेकिन उसको बाद में सहस्त्रदेव के नाम से जाना गया क्योंकि सहस्त्र कवच थे, 1000 कवच। वह कवच लेकर के विचरण करता, जब 1000 कवच प्राप्त हो गए तो देवताओं को परेशान करने लगा, अभिमान आ गया। जब अभिमान आया और देवों को परेशान करने लगा तो देवताओं ने भगवान की स्तुति की, शांताकारं भुजगशयनं, हे भगवान आपकी जय हो, हम बड़े झंझट में पड़े हैं, ये सहस्त्रदेव सहस्त्र कवच प्राप्त करके सहस्त्रदेव दंभोद्भव नाम का असुर हम लोगों को बड़ा परेशान कर रहा। भगवान ने व्योम वाणी में आकाशवाणी में कहा देवताओं हम नर नारायण बनकर के प्रकट होंगे पृथ्वी पर और उसके कवचों का भेदन करेंगे। तो देवता उन कवचों का भेदन क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि उसको 1000 कवच तो प्राप्त थे, पर एक और वरदान प्राप्त था कि जो 1000 वर्ष तक तपस्या करेगा वो केवल उसके 1 कवच का भेदन कर पाएगा। अब कौन मारे, बड़ी आपत फंस गई। तब भगवान नर नारायण प्रकट भए, वह बद्रीनाथ आए और बद्रीनाथ में एक बार नाम जप का फल 1000 बार है। एक तपस्या करें और दूसरे उसके कवच का भेदन करने जाएं, फिर वो आ जाएं, नारायण आ जाएं तो नर जावे, नर आ जावे तो नारायण जावे, और एक एक करके 999 कवचों का जब भेदन कर दिया वह दंडवत प्रणाम करता हुआ सूर्य देव की शरण में चला गया। इस कथा से इति सिद्धम सिद्ध होता है कि बद्रीनाथ भगवान की भूमि पर जो भी एक बार नाम कीर्तन करता है उसको 1000 बार नाम कीर्तन का फल प्राप्त हो जाता है। यह तीसरा फल है। बुरा ना मानना, हम खाक चौक में आजू पर बैठे थे, खूब जब संतों का भंडारा होता था ना खूब हमें रोना आता था, अकेले में इस बात पे आता था, इतने किलोमीटर ऊंचाई पर 11,000 फीट की ऊंचाई पर कैसे सामान आता होगा, कौन दक्षिणा देता होगा, कौन व्यवस्था करता होगा। पर धन्य है महाराज जी, कोई साधु भूखा नहीं जाता, कोई भूखा नहीं, सबको भंडारा। कितना उदार दिल है। हम लोगों के घर में अतिथि आ जाए तो हम लोग उसे भोजन नहीं करा पाते, बोझ लगता। पर देखो तो ये तो साधुओं से ना जान ना पहचान, बस साधु है, इतना ही बहुत है कि साधु है, साधु को ये प्रसाद पवा देते हैं। कितनी अद्भुत लीला साधु। श्री पीपाजी महाराज चीरधर के पास गए। जो चीरधर जी थे उनकी धर्म पत्नी भी बड़ी भक्तिमता, वो इतने भक्तवान थे दोनों कि अपनी पूरी संपत्ति साधुओं के भंडारे में लुटा दी। अब कोई महात्मा पहुंचे तो वो उधार मांगे, तो जब तक लोगों को लगे कि ये चुका देंगे तो लोग उधार दे देते थे, पर एक सीमा होती है, जब लगा कि अब ये चुकाएंगे नहीं तो उधार कौन देवे, बंद कर दिया लोगों ने उधार देना। तो पीपाजी और इनकी पत्नी पहुंच गई उनके घर, उनके घर पर अन्न का दाना नहीं, पहली बार मुलाकात, परिचय तो था नहीं, पर साधु घर पर आए भूखा चला जाए। तो चीरधर अपनी पत्नी के पास गया और बोला कि आज क्या अतिथि को संत को खवाएंगे। पत्नी बोली महाराज कुछ भी नहीं, कुछ नहीं बचा है, क्या किया जाए। बोले एक काम करो, धन सब चला गया, मेरा सोना भी चला गया, यहां तक कि आपने मेरी साड़ियां भी गिरवी रख दी, अब मेरे पास दो चीजें बची, क्या मेरे तुम बाल काटो, बाल की जोटी बनाकर किसी सेठ को दो, कुछ तो मिल जाएगा। कैसे काटे, तो एक नुकीली चीज देखी, अंधेरे में बालों को काटा पत्नी के, कहीं खून बह गया, कहीं वो नुकीली चीज लग गई, पर पत्नी का, स्त्री का सिंगार बाल है, केस, स्त्री का सिंगार केस है, पर चीरधर की पत्नी से सीखना, उसने पूरे बालों को कटवा लिया, सिर में चोट लग गई, पर पति को कहा सुनो साधु भूखा ना जाए, जल्दी से लेके आओ, थोड़े से चावल मिले लेके आए, पर उतने में चलेगा क्या, शाम का भोजन कैसे होगा। तो पत्नी ने कहा एक उपाय है, मेरे तन पे जो कपड़े हैं वो बेच दो, पर तुम कैसे रहोगी, मैं निकलूंगी नहीं, कोने में छिपी रहूंगी, पर साधु भूखा नहीं जाना चाहिए। चीरधर की आंखों में आंसू आ गए, पत्नी के चरणों को पकड़कर बोले तू धन्य है, बड़ी धन्य है, मैंने बहुत देखे पर तू मेरी अर्धांगिनी धन्य है, धन्य है। चीरधर जी रो पड़े और पत्नी के पूरे कपड़े निकाल कर सेठ को बेचे, पूरे कपड़े निकाल कर सेठ को बेच दिए और लाए चावल, चावल लेकर के आए। इधर चीरधर की पत्नी कोने में अंधेरे में छिप गई, क्योंकि कपड़ा तन पे नहीं है, दिखूं कैसे। चावल बनाया तो चावल बनाकर पीपाजी महाराज को परोसा, लीजिए पाइए। तो पीपाजी ने कहा कि भक्तराज तुम
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: Hot Mike's now streaming on TuneIn, your go-to show for explosive sports showdowns, bare-knuckle politics, raw Hollywood gossip, tech power plays, and pop culture chaos, hosted by yours truly, Billy Bush. Want to catch the latest episodes on your connected device? It's easy. One, set a reminder with your smart speaker by saying, remind me to listen to Hot Mike's Monday through Thursday at 12 p.m. Eastern, 9 a.m. Pacific. Two, when it's time, just say, play Hot Mike's on TuneIn. And you're in for unfiltered takes, A-list guests, and the stories everyone else is too scared to touch.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
5: तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर, खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को.
1: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy non-stop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
3: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
4: भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं, अविश्वास में विश्वास बसता है. जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
6: गुड न्यूज टुडे.
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते. खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे. देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे.
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे. अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए. वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है.
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें. गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर.
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है. इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे. तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर. असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है.
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं. अविश्वास में विश्वास बसता है. जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है.
6: गुड न्यूज टुडे.

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
2: रामनगरी में शक्ति उत्सव, माँ भगवती के मंदिर पर आज संपन्न होगा ध्वजारोहण। साध्वी रितुम्भरा के हाथों लहराएगी धर्म ध्वजा। CRPF की महिला जवानों के साथ करीब 3,500 महिलाओं की भागीदारी से संपन्न होगा आयोजन। रिकॉर्ड तोड़ रही है चारधाम यात्रा, 40 दिनों में 24 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन, 9 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने की केदारनाथ यात्रा। श्री हेमकुंड साहिब में भी 19,000 से ज्यादा भक्त पहुंचे। नौतपा से मिली राहत की खबर, तेज आंधी तूफान और बारिश की संभावना के चलते आज दिल्ली NCR में ऑरेंज अलर्ट, तीनों पहर हल्की बारिश, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं चलने के अनुमान, 31 मई तक रहेगा ऐसा ही मौसम। धौलपुर की राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी, दुर्लभ परिंदों से गुलजार, इंडियन स्कीमर के संरक्षण के लिए चलाई गई मुहिम रंग लाई, इंडियन स्कीमर के 164 अंडों में से 116 में निकले चूजे, IUCN रेड बुक में संकटग्रस्त श्रेणी में है ये पक्षी। मई के आखिरी शुक्रवार को दर्शकों के लिए मनोरंजन का मेगा डोज, थिएटर और OTT प्लेटफॉर्म पर आज कई बड़ी फिल्में और सीरीज हो रही है रिलीज। बड़े पर्दे पर फिल्म श्री बाबा नीम करोली महाराज में दिखेगा संत का आध्यात्मिक सफर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को।
2: अयोध्या के श्रीराम मंदिर में एक बार फिर से उत्सव की तैयारी, आज मां भगवती मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण का भव्य कार्यक्रम। शाम 6 बजे शुरू होगा मां भगवती मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण समारोह, 1 घंटे चलेगा ये दिव्य अनुष्ठान। महिलाएं ही संपन्न करेंगी ध्वजारोहण की पूरी प्रक्रिया, साध्वी रितुम्भरा करेंगी ध्वजारोहण, CRPF की महिला जवान रस्सी खींचकर पूरा करेंगी अनुष्ठान। आयोजन में करीब 3,500 महिलाओं के शामिल होने की संभावना, दिखेगा अध्यात्म श्रद्धा और मातृ शक्ति का अद्भुत संगम। कार्यक्रम के लिए मंदिर परिसर की विशेष सजावट, देशभर से मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी की महिलाएं अयोध्या पहुंची। अयोध्या में भक्ति और अध्यात्म का भव्य संगम, श्री झालरिया मठ में शुरू हुआ 7 दिवसीय भव्य श्री पुरुषोत्तम मास महोत्सव। 3 जून तक चलेगा दिव्य धार्मिक आयोजन, कलश यात्रा के साथ महोत्सव का शुभारंभ, वैदिक मंत्रोच्चार से पूरा वातावरण हुआ भक्ति में। 525 कुंडीय श्री महालक्ष्मी महायज्ञ बना मुख्य आकर्षण, श्रीमद भगवत कथा में गूंज रहे प्रेरणादायक प्रसंग, ध्रुव चरित्र से लेकर श्रीकृष्ण जन्मोत्सव तक का वाचन। सहस्त्र कलाभिषेकम और लक्षार्चना से बड़ी आध्यात्मिक ऊर्जा, देश विदेश से हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे अयोध्या, 300 साल पुरानी परंपरा को दिया जा रहा है विस्तार। राम मंदिर के बाद अयोध्या बनी धार्मिक आयोजनों का बड़ा केंद्र, श्रद्धालुओं के लिए करीब 4,000 कमरों की व्यवस्था की गई। चारधाम यात्रा में भारी बारिश के बीच भी उमड़ा आस्था का सैलाब, अब तक 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंचे सबसे ज्यादा भक्त, आंकड़ा पहुंचा 9 लाख के पार। बद्रीनाथ धाम को लेकर भी भक्तों में जोरदार उत्साह, अब तक करीब 7,25,000 से ज्यादा लोगों ने दर्शन किए। यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम में लगा भक्तों का मेला, अब तक दोनों जगहों पर 8.5 लाख भक्तों ने लगाई हाजिरी। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा में भी भक्तों का लगा मेला, अब तक 22,000 से ज्यादा लोगों ने किए दर्शन। बद्रीनाथ धाम में उमड़ा आस्था का अभूतपूर्व सैलाब, टोकन काउंटर्स पर लगी श्रद्धालुओं की लंबी कतारें। मई खत्म होने से पहले ही यात्रा ने पकड़ी रिकॉर्ड रफ्तार, जून शुरू होते होते 8 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान। हेमकुंड साहिब यात्रा मार्ग पर भी जबरदस्त भीड़। चारधाम यात्रा में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा पहुंचा 40 लाख के पार। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए भी बनाया गया विशेष केंद्र। मंदिर में दर्शन व्यवस्था को लगातार किया जा रहा है बेहतर। बद्रीनाथ हेमकुंड मार्ग पर एसडीआरएफ जवान बने श्रद्धालुओं का सहारा। बुजुर्ग और दिव्यांग यात्रियों को कंधे पर बैठाकर करवाए जा रहे हैं दर्शन। धर्मशाला में 3 दिवसीय तिब्बती सांस्कृतिक उत्सव का भव्य शुभारंभ। तिब्बती बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा के 90वें जन्मोत्सव को समर्पित है यह आयोजन। तिब्बती संस्कृति कला और परंपराओं से रूबरू हो रहे हैं लोग। उत्सव में तिब्बती खान पान और पारंपरिक कला बनी आकर्षण का केंद्र। स्कूली बच्चों और सांस्कृतिक दलों की रंगारंग प्रस्तुति ने बांधा समाज। दलाई लामा के जीवन पर आधारित फिल्में और डॉक्यूमेंट्री की होगी स्क्रीनिंग। कोटा का श्रीनाथपुरम स्टेडियम बना फिटनेस लवर्स की पहली पसंद। सुबह शाम खिलाड़ियों युवाओं और बुजुर्गों से गुलजार हो रहा है स्टेडियम। रनिंग वॉक क्रिकेट से लेकर टेनिस तक बह रहा है खिलाड़ियों का पसीना। लड़कियां भी वॉलीबॉल बास्केटबॉल और टेबल टेनिस में दिखा रही हैं दम।

0: मुजफ्फरपुर की शाही लीची अब खुशबू से जीत रही है दिल। शाही लीची अगरबत्ती बनी देश विदेश में नई पहचान। बांस की सीख पर तैयार होती है खास अगरबत्ती। लीची फ्रेग्रेंस से आती है मीठी और प्राकृतिक खुशबू। शाही लीची अगरबत्ती से सालाना 50 से 60 लाख रुपए की हो रही है आमदनी। कारोबार को 2 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य। भरतपुर में भीषण गर्मी से ट्रांसफार्मर पर बड़ा दबाव। ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए लगाए गए 2 कूलर्स। गर्मी से हीटिंग की समस्या रोकने के लिए अनोखा प्रयोग। बिजली विभाग ने सिस्टम को दिया नया कूलिंग सपोर्ट। मैदानों में बढ़ते पारे के बीच पहाड़ों में सैलानियों की भीड़। कुल्लू मनाली में टूरिज्म बूस्ट। एडवेंचर एक्टिविटी में मसरूफ नजर आए पर्यटक। बोटिंग का उठा रहे हैं लुत्फ। हिमाचल सड़क परिवहन ने फिर से शुरू की दिल्ली ले बस सेवा। उत्तरी भारत का सबसे लंबा रोड रूट। 1839 रुपए है किराया। लद्दाख के एलजी वीके सक्सेना ने लेह को दी विकास की सौगात। पर्यावरण के अनुकूल रॉक चेक डैम का किया उद्घाटन। सिंधु जल समृद्धि अभियान के तहत उद्घाटन। 11,400 फीट की ऊंचाई पर स्थित है ये डैम। मिडिल ईस्ट संघर्ष के बीच देश के लिए आई राहत भरी खबर। एलपीजी लेकर वतन आया स्वदेशी जहाज। पोरबंदर के तट पर पहुंचा CMG-23 जहाज। 4,000 टन एलपीजी लेकर लौटा वतन। कसौली के जंगलों में लगी भीषण आग पर सफलतापूर्वक पा लिया गया है काबू। भारतीय वायुसेना ने आग को बुझाने के अभियान में निभाई अहम भूमिका। टिहरी के जंगलों में भी भड़की आग। ग्रामीणों ने संभाला मोर्चा। आग बुझाने में जुटे। विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस की पूर्व संध्या पर मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल स्टेशन को सजाया गया। इमारत लाल रोशनी से जगमगा दिखी। गांधीनगर को गृहमंत्री अमित शाह के विकास कार्यों की सौगात। जेडवा गांव जलाशय का उद्घाटन। कलोल गांव में जलाशय की आधारशिला। अमित शाह ने गांधीनगर में नए ग्राम पंचायत दफ्तर का शुभारंभ किया। जिले के कई गांवों को लोगों को इससे मिलेगा लाभ। गांधीनगर के कलोल में मोती भोयान प्राइमरी स्कूल का उद्घाटन। सर्व शिक्षा अभियान के तहत अमित शाह ने किया शुभारंभ। गांधीनगर में नवनिर्मित आधुनिक पुस्तकालय का उद्घाटन। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर और गुजरात सरकार के बीच निवेश और औद्योगिक विकास को लेकर अहम MOU पर हस्ताक्षर। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का बयान। बंगाल में सीएम शुभेंदु अधिकारी ने सिर्फ 7 दिन में 600 हेक्टेयर भूमि BSF को सौंपी। दिल्ली में गर्मी के बीच पानी की किल्लत। गोविंदपुरी के आशा किरण फ्लैट में घंटों लाइन में लगे लोग। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जिले में ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया। राजस्थान के धौलपुर में नौतपा का कहर। पारा 46 डिग्री पहुंचा। बिजली कटौती से लोग हैं परेशान। ठंडे पेय पदार्थों का लोग ले रहे हैं सहारा। नौतपा की आग में तपरा राजस्थान। फतेहपुर में तापमान 45 डिग्री दर्ज तो श्रीगंगानगर में 48 डिग्री के साथ बना सबसे गर्म जिला। 47 डिग्री तापमान से उत्तर प्रदेश का बांदा बना हीट चैम्बर। भीषण गर्मी और लू की चपेट में बांदा। जूस और ठंडी चीजें खा पी रहे हैं लोग।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: बृहस्पति की कौन सी राशि नेतृत्व की क्षमता देती है? बृहस्पति की कौन सी राशि आपको बहुत अच्छा हीलर और डॉक्टर बना सकती है? बृहस्पति की कौन सी राशि बुध के लिए खराब है और शुक्र के लिए उत्तम है? कौन सी है बृहस्पति?

0: पति की राशियां और क्या है उनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away. You're listening to CNBC.
2: This is 80s hits exclusively on TuneIn. This is Pop Hits.
3: Keep it on smooth jazz.
4: This is Roots Reggae
5: exclusively on TuneIn.
6: This is classic hip-hop
7: exclusively on TuneIn.
1: Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected. The shows, music, and news you love anytime you want.
8: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
9: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
13: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
14: और दुर्भाग्य कहता है
15: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
13: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
10: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears.
2: It's my music and it's my station.
1: Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. Country roads.
4: Thank God I get to wake
3: and everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
5: वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे, तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष का सबसे शुभ और सबसे पवित्र ग्रह है बृहस्पति, और आज हम आपको बताएंगे कि बृहस्पति के राजयोग कौन से हैं, और अगर बृहस्पति के राजयोग आपकी कुंडली में हैं तो इसका प्रभाव जीवन पर क्या है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की, और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 29 मई 2026, दिन शुक्रवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, प्रातः 9:50 तक। नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, प्रातः 10:38 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 29 मई 2026, दिन शुक्रवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं वृषभ राशि में, बृहस्पति और शुक्र मिथुन राशि में, केतु सिंह राशि में, चंद्रमा तुला राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, और मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं मेष राशि में। तो आज हम बात कर रहे हैं बृहस्पति के राज योगों के बारे में। बृहस्पति का पहला राजयोग कौन सा है और इसका प्रभाव क्या है। बृहस्पति का पहला और सबसे ताकतवर राजयोग है हंस योग। ये हंस योग बृहस्पति का पंच महापुरुष योग है। जब बृहस्पति कर्क राशि में हो, धनु राशि में हो या मीन राशि में हो और लग्न से केंद्र में बैठा हो तो हंस नामक पंच महापुरुष योग बन जाता है। अगर कुंडली में हंस योग है तो इससे व्यक्ति तपस्वी, विद्वान और ज्ञानी होता है, और हंस योग वालों को बिना प्रयास के जीवन में नाम, यश और सम्मान मिल जाता है। हंस योग वाले लोग राजनीति में, कानून में, शिक्षा में, धर्म और ज्ञान के क्षेत्र में बहुत सफल होते हैं। और ये भी देखा गया है कि जिनकी कुंडलियों में हंस योग होता है उनके ऊपर
ईश्वर की विशेष कृपा भी होती है। अगर आपकी कुंडली में हंस योग है तो आपको ध्यान रखना चाहिए, हमेशा अहंकार से बचाव करना चाहिए और ऐसे लोगों को हमेशा अपने खाने की आदत पर भी ध्यान देना चाहिए। हंस योग होने के नुकसान ये हैं कि व्यक्ति अहंकारी हो जाता है, जरूरत से ज्यादा खाता है और सेहत बिगाड़ता है। तो अगर आप अपने अहंकार पर और अपने खान पान पर काबू रखें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब बात करते हैं बृहस्पति के दूसरे राजयोग के बारे में। दूसरा राजयोग कौन सा है और इसका प्रभाव क्या है? बृहस्पति का दूसरा राजयोग है गज केसरी योग। अगर बृहस्पति और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में बैठे हों तो गज केसरी योग कुंडली में बन जाता है। अगर कुंडली में गज केसरी योग है तो ये सामान्य व्यक्ति को भी विशेष व्यक्ति बना देता है। गज केसरी योग कर्क लग्न, वृश्चिक लग्न और मीन लग्न में ज्यादा प्रभावशाली होता है। जिनकी कुंडलियों में गज केसरी योग होता है, इस योग वाले लोग शासन में और राजनीति में विशेष सफल होते हैं। और ये भी देखा गया है कि ऐसे लोग जीवन के जिस क्षेत्र में जाते हैं वहां पर बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। गज केसरी योग वाले लोग बड़ी छोटी जगह से उठ करके ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं और अपने क्षेत्र में एक बड़ा नाम बनते हैं, एक बड़ा व्यक्तित्व बनते हैं। अगर आपकी कुंडली में गज केसरी योग है तो व्यक्ति को शिव जी की उपासना करनी चाहिए और सलाह लेकर अगर संभव हो तो पीला पुखराज धारण करना चाहिए, ऐसा करना बेहतर होगा। बृहस्पति के तीसरे राजयोग पर भी आगे बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जानते हैं कि बृहस्पति का तीसरा राजयोग कौन सा है और इसका प्रभाव क्या है। बृहस्पति का तीसरा राजयोग है केंद्रस्थ बृहस्पति, यानी बृहस्पति अगर केंद्र में बैठा हो, लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में या दशम में, तो ये भी एक तरीके का राजयोग है। बृहस्पति केंद्र में काफी ज्यादा मजबूत माना जाता है और उसमें भी अगर लग्न में बैठा हो, फर्स्ट हाउस में बैठा हो, तो बृहस्पति अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता है। केंद्र में बैठा हुआ बृहस्पति अकेला कुंडली के तमाम दोषों को नष्ट कर देता है और केंद्र में बैठा हुआ बृहस्पति
व्यक्ति की आयु लंबी कर देता है और व्यक्ति को ज्ञानी बना देता है। केंद्र में बैठा हुआ बृहस्पति जीवन की तमाम मुश्किलों से व्यक्ति की रक्षा करता है। ऐसा बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में है तो धर्म स्थानों पर जरूर जाएं, साथ ही साथ अगर नियमित रूप से तिलक लगाएं तो आपके लिए और भी ज्यादा उत्तम होगा। देखिए, बृहस्पति के राजयोग आपको तभी फायदा पहुंचाएंगे जब आपका आचरण, आपका व्यवहार और आपका खान पान शुद्ध होगा। कुंडली में अगर बृहस्पति का राजयोग है, आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं, झूठ बोलते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो बृहस्पति का राजयोग आपको शुभ फल नहीं देगा। इसलिए अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति का राजयोग है तो आपको जीवन में पवित्रता और शुभता का पालन अवश्य करना होगा। तो आज हमने बात की बृहस्पति के राजयोगों के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए क्या है आज का लकी टिप। अगर आप जीवन में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो रोज सवेरे शिव जी की पूजा करिए और पूजा के दौरान शिवलिंग पर अगर पीले फूल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 29 मई 2026 दिन शुक्रवार का सक्सेस मंत्र क्या है।

मिश्री का भोग लगाइए, घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी मिश्री खा लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
3: रामनगरी में शक्ति उत्सव मां भगवती के मंदिर पर आज संपन्न होगा ध्वजारोहण। साध्वी ऋतुम्भरा के हाथों लहराएगी धर्म ध्वजा। सीआरपीएफ की महिला जवानों के साथ करीब 3,500 महिलाओं की भागीदारों से संपन्न होगा आयोजन। रिकॉर्ड तोड़ रही है चारधाम यात्रा, 40 दिनों में 24 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। 9 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने की केदारनाथ यात्रा। श्री हेमकुंड साहिब में भी 19,000 से ज्यादा भक्त पहुंचे। नौतपा से मिली राहत की खबर, तेज आंधी तूफान और बारिश की संभावना के चलते आज दिल्ली एनसीआर में ऑरेंज अलर्ट, तीनों पहर हल्की बारिश, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज हवाएं चलने के अनुमान। 31 मई तक रहेगा ऐसा ही मौसम। धौलपुर की राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी दुर्लभ परिंदों से गुलजार, इंडियन स्कीमर के संरक्षण के लिए चलाई गई मुहिम रंग लाई। इंडियन स्कीमर के 164 अंडों में से 116 में निकले चूजे, आईयूसीएन रेड बुक में संकटग्रस्त श्रेणी में है पक्षी। मई के आखिरी शुक्रवार को दर्शकों के लिए मनोरंजन का मेगा डोज, थिएटर और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आज कई बड़ी फिल्म और सीरीज हो रही है रिलीज। बड़े पर्दे पर फिल्म श्री बाबा नीम करोली महाराज में दिखेगा संत का आध्यात्मिक सफर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे।

0: नमस्कार, गुड लक टुडे के इस खास एपिसोड में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। मेरा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो चलिए आपको बताते हैं कि आज के इस शो में हम चर्चा क्या करने वाले हैं। पंडित जी आज आपको बताने वाले हैं बृहस्पति की राशियों के बारे में। पंडित जी आपको जानकारी देंगे कि बृहस्पति की राशियों की विशेषताएं क्या होती हैं, इनके गुण क्या होते हैं, उनको कौन सी बातों का ख्याल अपने जीवन में रखना चाहिए, ये सारी चर्चा पंडित जी के साथ आगे करेंगे। बहुत सारे प्रश्न होंगे जो हमने और आपने पूछने हैं पंडित जी से, लेकिन शुरुआत करते हैं गुड लक मंत्र के साथ।
1: देखिए, अपने परिवार का संयुक्त चित्र, माता पिता, बेटा बेटी, पूरे परिवार का ज्वाइंट चित्र घर के पूर्वी दीवार पर, घर के ईस्ट वॉल पर लगाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे परिवार के लोगों में आपसी प्रेम और आपसी सौहार्द बढ़ेगा।
0: और चलिए आगे बढ़ते हैं, पंडित जी से जान लेते हैं 29 मई 2026 शुक्रवार के पंचांग के बारे में।
1: दिनांक 29 मई 2026 दिन शुक्रवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, प्रातः 9:50 तक। नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, प्रातः 10:38 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः 10:30 से दोपहर के 12 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: तो चलिए आज के विषय की शुरुआत करते हैं पंडित जी के साथ। हमने शुरुआत में आपको बताया कि बृहस्पति की राशियों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे इस खास एपिसोड में। तो बृहस्पति की राशियों की विशेषताएं क्या होती हैं, वो जानते हैं पंडित जी से।
1: जी देखिए, ज्योतिष में राशियां बड़ी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि राशियां आपकी मानसिक स्थिति के बारे में और आपकी सोच के बारे में बहुत स्पष्ट बता देती हैं। राशियों को और गहराई से समझने के लिए इनके नक्षत्र को भी देखा जाता है। हम आपको ब्रीफली बताते हैं, मोटे तौर पे बताते हैं बृहस्पति की राशियों के बारे में। बृहस्पति आकाश तत्व का ग्रह माना जाता है, स्काई एलिमेंट का प्लेनेट है। दो राशियों के स्वामी हैं बृहस्पति, धनु और मीन। धनु राशि बृहस्पति की अग्नि तत्व की राशि है और मीन राशि बृहस्पति की जल तत्व की राशि है। दोनों राशियों के स्वामी बृहस्पति हैं, धनु के भी और मीन के भी। बृहस्पति धनु राशि में ज्यादा मजबूत होते हैं। धनु को बृहस्पति की ज्यादा निकट राशि माना जाता है और शक्ति के लिहाज से धनु बड़ी ताकतवर राशि है, धनु ऊर्जावान राशि है। मीन जो है ये सौम्य राशि है, मीन के अंदर वाटर एलिमेंट होता है, तो ये सॉफ्ट, केयरिंग और चिकित्सा की राशि मानी जाती है। धनु का मतलब एग्रेशन होता है, धनु का मतलब युद्ध होता है, नेतृत्व होता है। मीन का मतलब सॉफ्टनेस होता है।
0: तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे पंडित जी के साथ। बारी आती है राशिफल पर आने की और पहली तीन राशियों का वक्त पंडित जी से जान लेते हैं कि कैसा रहने वाला है। बारी है सबसे पहले पहली तीन राशियों की, मेष, वृष और मिथुन।
1: मेष राशि, मानसिक चिंताएं आपकी समाप्त होती दिख रही हैं, स्वास्थ्य आपका बेहतर होगा, धन की प्राप्ति होगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में लाभ होगा, परिवार में व्यस्तता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: तो चलिए बढ़ते हैं आगे और पंडित जी से जानते हैं पहला प्रश्न। पंडित जी, प्रश्न ये है कि बृहस्पति की पहली राशि है धनु, धनु वालों की विशेषताएं क्या हैं, उनको जीवन में आगे किस रफ्तार के साथ और कैसे आगे बढ़ना चाहिए वो बताइए।
1: देखिए, बृहस्पति की जो धनु राशि है उसके स्वामी तो बृहस्पति ही हैं, और धनु वालों के लिए सूर्य बड़ा महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए धनु राशि वालों के जीवन में सूर्य इनको भाग्यवान बनाता है, सूर्य इनको जीवन में ऊंचाइयों पर ले जाता है। धनु राशि वालों के पास साहस, ज्ञान, गणना और नेतृत्व का गुण होता है। धनु का मतलब जिसके हाथ में धनुष है, यानी जो युद्ध करने को तैयार है, जो युद्ध की मुद्रा में है। तो इस राशि के लोग अक्सर सेना में या पुलिस में देखे जाते हैं, प्रशासन के क्षेत्र में बड़े सफल होते हैं। धनु वालों के अंदर नेतृत्व की ताकत बहुत जबरदस्त होती है और धनु वाले कठिनाइयों से जूझते भी बड़े ताकतवर तरीके से हैं। इनकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि इनका अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रहता, अपनी जबान पर लगाम नहीं रख पाते, कभी भी कुछ भी बोल देते हैं, जिस चक्कर में अक्सर इनके रिलेशनशिप खराब होते हैं। धनु राशि के लोगों को सलाह लेकर एक माणिक्य पहनना चाहिए और धनु राशि वालों को भगवान सूर्य की उपासना जरूर करनी चाहिए, यानी धनु वाले प्रातः काल उठ करके स्नान करके अगर सूर्य देव को जल चढ़ाएं तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
0: और चलिए बृहस्पति की बाकी राशियों के बारे में भी जानेंगे पंडित जी से। अब बारी आती है राशिफल पर वापस आने की, कर्क सिंह और कन्या वालों के राशिफल में क्या लिखा है वो पंडित जी आपको बताएंगे।
1: कर्क राशि, थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, महत्वपूर्ण काम एक दो दिन के लिए टाल दीजिए। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, परिवार में व्यस्तता रहेगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपके सुधार होगा, स्वास्थ्य पर थोड़ा सा ध्यान बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: और चलिए सवाल जवाब के सिलसिले के साथ शुरुआत करते हैं, जिसका आपको इंतजार रहता है। आपका पहला सवाल लूं, उससे पहले आपको सूचित कर देते हैं कि कोई भी प्रश्न है उसका जवाब आप चाहते हैं तो अपने तमाम सवाल इस शो में आप भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपके टीवी स्क्रीन पर है, आप नोट कर लीजिए। तो पंडित जी, बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ और जानते हैं किसका है पहला सवाल।
1: जी, आज का पहला प्रश्न वीरेंद्र नारायण जी ने हमें लिखा है। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। पटना बिहार से मेल लिखते हैं। जन्म की तारीख है इनकी बेटी की 16 अगस्त 1994। जन्म का समय सुबह के 7:55, मसरख बिहार। ये पूछ रहे हैं कि मेरी पुत्री का विवाह कब होगा और उसका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। वीरेंद्र जी, आपकी पुत्री के विवाह का समय जून 2026 से आरंभ होगा। साल 2026 के अंत में या 2027 के आरंभ में इनके विवाह होने की संभावना दिखाई दे रही है। ऐसी संभावना लगती है कि ये विवाह अपनी इच्छा से करेंगी, जाने पहचाने बालक के साथ। इनका विवाह बेहतर हो, वैवाहिक जीवन अच्छा रहे, उसके लिए इनको एक मोती बनवा के पहना दें, 10-12 रत्ती की मोती, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा करके इनको धारण कराएं और अपनी पुत्री से कहें कि वो रोज सुबह 108 बार अगर नमः शिवाय का जप करें तो बहुत बेहतर होगा।
0: और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए दूसरे प्रश्न का वक्त हो चला है और पंडित जी से ही जान लेते हैं कि कौन से दर्शक का सवाल पंडित जी तक आया है। पंडित जी,
1: जी। अगला प्रश्न अंकिता ने हमें लिखा है और अंकिता हमें चंडीगढ़ से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 29 अप्रैल सन 2000, जन्म का समय शाम के 5:41, पंचकुला से मेल लिखती हैं। ये कह रही हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, मेरे स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं जिसकी वजह से मेरे करियर में भी अड़चनें आ रही हैं, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मेरा स्वास्थ्य और मेरा जीवन बेहतर हो जाए। अंकिता, पहले बता दूं कि आपके स्वास्थ्य में कोई इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितना आप परेशान हो रही हैं। आप स्वास्थ्य को लेके तनाव बहुत पाल रही हैं, चिंता बहुत कर रही हैं और इस वजह से आपका स्वास्थ्य खराब हो रहा है। दो सलाह मैं आपको दूंगा। सबसे पहले तो आप एक पन्ना बनवा करके पहनिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, शुक्ल पक्ष में पहनिएगा बुधवार को। आपको शुक्ल पक्ष में ही पन्ना पहनना है, तो पन्ना पहन लीजिए और रोज सुबह और शाम दोनों समय एक एक बार राम रक्षा स्तोत्र या तो पढ़िए या तो सुनिए। ये उपाय करिए, 1 से 1.25 महीने में आप बेहतर हो जाएंगी।
0: चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से ही जानते हैं कि बृहस्पति की दूसरी राशि है मीन, इनकी विशेषताएं क्या हैं, गुण क्या हैं और इनको किन किन बातों का ख्याल अपने जीवन में रखना चाहिए और कैसे आगे बढ़ना चाहिए, पंडित जी बताएंगे।
1: बृहस्पति की जो दूसरी राशि है वो है मीन और मीन राशि के स्वामी भी बृहस्पति हैं, लेकिन याद रखिए धनु बृहस्पति के ज्यादा करीब है, मीन उतना करीब नहीं है। मीन राशि वालों के लिए चंद्रमा बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपकी राशि मीन है तो आपके जीवन में बृहस्पति की भूमिका तो होगी ही, लेकिन चंद्रमा की भूमिका ज्यादा होगी। मीन राशि वालों के पास ज्ञान, ग्लैमर, कला और शिक्षा का गुण होता है। मीन वाले ज्ञानी होते हैं, ग्लैमर के फील्ड में, कला के क्षेत्र में, क्रिएटिव क्षेत्र में या पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में तरक्की करते हैं। मीन वाले बड़े अच्छे हीलर होते हैं, यानी मीन वाले दूसरों की बीमारियों को, दूसरे की समस्याओं को दूर करने की योग्यता रखते हैं। और मीन वालों के साथ एक बात ये भी है कि मीन वाले अगर मेडिकल फील्ड में जाते हैं तो बड़े अच्छे डॉक्टर भी होते हैं। मीन वालों की मुश्किल ये है कि ये अक्सर युवावस्था में भटक जाते हैं, प्रेम मोहब्बत के चक्कर में, आकर्षण के चक्कर में फंस जाते हैं और अपनी बड़ी सफलताओं को कम कर देते हैं। बाद में मीन वालों को जब सही डायरेक्शन मिलता है, कोई सही रास्ता दिखाने वाला मिलता है, तब ये जीवन में बड़ी तरक्की करते हैं। मीन वालों की दो बड़ी समस्या है। पहला, हर काम को परफेक्ट करने की कोशिश करते हैं जो कि संभव नहीं है। और दूसरा, मीन वालों के साथ अगर कहीं शुक्र का कनेक्शन आ गया तो दिखावे में, फोकस में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। मीन वालों को सलाह लेकर एक मोती या एक पन्ना जरूर पहनना चाहिए और जितना संभव हो अगर ये भगवान शिव की उपासना करें तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आपकी राशि मीन है तो इमोशनल ट्रॉमा से बचिए, बेवजह की चिंताएं मत करिए, और अगर पेट की हार्मोन्स की कोई दिक्कत होती है तो उसमें लापरवाही मत करिएगा।
0: और चलिए राशिफल के साथ आगे बढ़ते हुए बारी आ जाती है तुला, वृश्चिक और धनु वालों की। जानते हैं पंडित जी से ही कि इनके भाग्य में क्या लिखा है।
1: तुला राशि, रिश्तों की समस्या हल होती दिखाई दे रही है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, काम का दबाव बढ़ सकता है, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, परिवार में विवादों से बचाव करें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, परिवार में शुभ कार्य होंगे, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से अब जान लेते हैं कि अगर आपकी राशि धनु है और जीवन में समस्याएं आ रही हैं तो कौन से उपाय हैं जो आपको जीवन में करने चाहिए।
1: देखिए, अगर आपकी राशि धनु है तो कुछ खास तरह की समस्या, रिश्तों के टूटने की, दुर्घटना की, चोट चपेट की, करियर के उतार चढ़ाव की, ये समस्या आपको ज्यादा परेशान करेगी। तो अगर आपकी राशि धनु है और करियर में दिक्कतें हैं या जीवन में दिक्कतें हैं तो क्या उपाय करें। धनु राशि वालों को हमेशा उतार चढ़ाव से और दुर्घटनाओं से बचना चाहिए। धनु राशि आकस्मिकता वाली राशि मानी जाती है। धनु राशि को जैमिनी ज्योतिष में बहुत डेंजरस राशि माना जाता है। सडन चीजें जीवन में पैदा कर देती है। तो अगर धनु वाले जीवन की मुश्किलों से निकलना चाहते हैं तो इनको नित्य प्रातः सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। चांदी का एक कड़ा या चांदी का एक छल्ला पहनना चाहिए और अधिक से अधिक भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। नमः शिवाय का जप ज्यादा से ज्यादा करना इनके लिए लाभकारी होगा।
0: और चलिए पंडित जी से जानते हैं कि अगर आपकी राशि मीन है तो जीवन में समस्याएं अगर आपको आ रही हैं, कोई दिक्कत आ रही है तो उसके लिए कौन से उपाय हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं।
1: देखिए, अगर आपकी मीन राशि है तो कुछ विशेष तरह की समस्या आपके जीवन में आ सकती है। ज्यादातर मीन राशि वालों को इमोशनल प्रॉब्लम से बचना चाहिए, भावनात्मक समस्याओं से, क्योंकि जब ये ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो इनके साथ सपोर्ट करने वाला, इनको इमोशनली हैंडल करने वाला आम तौर पर कोई नहीं होता। ये करियर में जितनी ऊंचाई पर पहुंचेंगे आइसोलेशन उतना ज्यादा होगा। अक्सर मानसिक तनाव की वजह से, मन की चिंताओं की वजह से मीन वाले कई बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। अगर आपकी राशि मीन है तो नियमित रूप से बृहस्पति मंत्र का जप करिएगा। ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, इस मंत्र का रोज सुबह जप करिए। सलाह लेकर एक पीला पुखराज आपको पहनना चाहिए, आपको बैलेंस कर देगा ये। और अधिक से अधिक सात्विक रहने का प्रयास करें। मांस मदिरा इत्यादि का सेवन करने से आपको बचना चाहिए। तो मुख्यतः अगर आपकी राशि मीन है तो आपको अपनी भावनात्मक चीजों पर काम करना पड़ेगा। फ्रस्ट्रेशन से बचिए और थोड़ा आध्यात्मिक हो जाएं, थोड़ी पूजा उपासना करें तो मन को अंदर से शक्ति मिलेगी, मन को अंदर से ताकत मिलेगी।
0: और चलिए राशिफल के अंत की तरफ हम बढ़ चले हैं और पंडित जी से जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन वालों के भाग्यफल में क्या लिखा है।
1: मकर राशि, करियर में सफलता के योग बन रहे हैं, लंबी यात्रा पर जा सकते हैं, परिवार में शुभ कार्य होगा। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की समस्याएं हल होंगी, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन के लेन देन में सावधानी रखें, करियर में लापरवाही ना करें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा।
0: चलिए सवाल जवाब के सिलसिले पर वापस लौटते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं अगले दर्शक का कौन सा सवाल है जो हम ले रहे हैं। पंडित जी,
1: अगला प्रश्न शर्मिला जी ने हमें लिखा है और शर्मिला जी हमें लखनऊ से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 19 फरवरी 1970, जन्म का समय दोपहर के 4:45, जन्म का स्थान है गोंडा उत्तर प्रदेश। मेल लिखती हैं लखनऊ से। शर्मिला जी कह रही हैं कि पिछले कुछ दिनों से परिवार में अशांति बहुत है और संतान की तरफ से तनाव बहुत मिल रहा है, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे संतान के साथ तालमेल बेहतर हो और घर में शांति आ सके। शर्मिला जी, राहु की निगेटिव स्थिति की वजह से परिवार में अशांति भी है और संतान का सपोर्ट भी आपको नहीं मिल पा रहा है। राहु को अगर बेहतर किया जाए तो मुश्किलें बेहतर हो जाएंगी। रोज शाम को एक बार काल भैरव अष्टक, काल भैरव अष्टक का रोज शाम को एक बार पाठ करिएगा और हर शनिवार को हनुमान जी के मंदिर जाके उनसे प्रार्थना करिएगा। अगर ये दो उपाय आप नियमित रूप से करें, एक से सवा महीने में स्थितियां बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी।
0: और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हुए बारी आ जाती है दर्शकों का अंतिम सवाल लेने की। पंडित जी से ही पूछते हैं कि कौन सी समस्या पंडित जी तक आई है।
1: जी

0: और आने वाले समय में आपके करियर में या आपके जीवन में कोई दिक्कतें नहीं हैं, लेकिन इस समय डायबिटीज और डाइजेशन का थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक ओपल बनवा के पहन लीजिए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें, आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: चलिए एक और प्रश्न पंडित जी से पूछते हैं। पंडित जी, सवाल यह है कि आपने बृहस्पति की राशियों के बारे में तमाम जानकारियां बताई हैं, तो बृहस्पति की राशियां किसी और ग्रह के साथ भी संबंध रखती हैं, ऐसा है?
0: जी देखिए, बृहस्पति की दो राशियां हैं, धनु और मीन, दोनों के स्वामी हैं बृहस्पति। लेकिन यहां पर जो मीन राशि है वो बड़ी इंपॉर्टेंट राशि है, क्योंकि मीन राशि में आ करके बुध बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। बुध की नीच राशि है मीन राशि, यानी अगर बुध का संपर्क हुआ मीन राशि से तो बुध अत्यंत कमजोर होगा और कमजोरी में आपको अनुकूल परिणाम नहीं दे पाएगा। मीन राशि शुक्र की सबसे प्रिय राशि है। शुक्र जब मीन राशि में बैठता है तो शुक्र सबसे ज्यादा मजबूत होता है, सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। इसीलिए अगर किसी की कुंडली में भी मीन राशि से शुक्र का संपर्क होता है या शुक्र का संबंध बनता है तो शुक्र के जो गुण हैं, लग्जरी है, कंफर्ट है, ग्लैमर है, सुख है, आनंद है, वो उसको जीवन में प्राप्त हो जाता है। हालांकि देखिए, मीन राशि के 3 नक्षत्र भी हैं, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। इन तीनों में भी थोड़ा फर्क आता है, लेकिन याद रखिए कि मीन राशि से अगर शुक्र का संबंध होगा कुंडली में आपके, तो आपको ग्लैमर, नाम, यश, कंफर्ट, आराम, लग्जरी, बढ़िया मकान, बढ़िया वाहन, ये सब मिलने की संभावनाएं बन जाएंगी, क्योंकि शुक्र को मीन राशि बहुत प्रिय है और शुक्र जब मीन राशि में बैठता है तो अत्यंत शक्तिशाली, अत्यंत ताकतवर हो जाता है।
1: और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं, जिन तमाम लोगों का जन्मदिन है 29 मई को, उनका हैप्पी बर्थडे, उनका ये अच्छा वाला दिन उनके लिए क्या कुछ लेकर आया है पंडित जी?
0: जिन लोगों का जन्मदिन 29 मई को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, आर्थिक स्थिति और करियर के मामले में सुधार होगा, अविवाहितों के विवाह में अभी विलंब होगा। साल के अंत में आपको संपत्ति का लाभ हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर शिव जी की अगर आप उपासना करें, उनका मंत्र पढ़ें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
1: और चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हुए पंडित जी से जान लेते हैं आज की जिज्ञासा के बारे में।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या मंत्र जप करने के बीच में जल पी सकते हैं? देखिए, अगर आप बोल बोल कर मंत्र नहीं जप रहे हैं, मानसिक रूप से मंत्र जप रहे हैं, तो जल पीने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर मंत्र जप के बीच में जल पीने की जरूरत पड़ती है तो आचमन से 2 घूंट जल पी सकते हैं। बहुत

0: सारा जल मत पीजिएगा।
1: और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं 29 मई 2026 शुक्रवार के शुभ पहर के बारे में।
0: दिनांक 29 मई 2026 दिन शुक्रवार, शुभ पहर का समय है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करिएगा, आपकी धन संबंधी समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही 29 मई शुक्रवार रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में।
1: और चलिए पंडित जी से जान लेते हैं आज की गुड लक राशि, यानी आपकी राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या करेंगे। आज की गुडलक राशि है सिंह। जीवन की बेहतरी के लिए नियमित रूप से सूर्य देव की उपासना करें और जब मौका मिले हनुमान जी के मंदिर जाकर उनका दर्शन करें, आपको लाभ होगा।
1: चलिए पंडित जी ने तमाम उपाय और तमाम जानकारियां आपसे साझा की हैं, अब बारी आती है महा उपाय के बारे में जान लेने की। तो पंडित जी आपसे ही जानते हैं कि खास उपाय कौन सा है।
0: जी अगर आपसे अनजाने में कोई गलती हो गई हो, जो स्वाभाविक है, हो सकती है, और आप उसका प्रायश्चित करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, जिसके प्रति गलती हुई है उससे हृदय से क्षमा याचना करिए, एक दिन का उपवास रखिए और उपवास वाले दिन किसी निर्धन व्यक्ति को भोजन कराइए। भविष्य में गलती ना करने का संकल्प लीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो गलतियों का प्रायश्चित होगा, उसके अशुभ प्रभाव से आप बच जाएंगे।
1: तो पंडित जी इस महा उपाय के लिए और तमाम जानकारियां दर्शकों के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
0: धन्यवाद।
1: तो चलिए आज के इस खास एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरें लगातार जा रही हैं, आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: का कौन सा राजयोग छोटी जगह से ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है? बृहस्पति का कौन सा राजयोग जीवन की हर बाधा को दूर कर देता है? और बृहस्पति का कौन सा राजयोग बहुत सारा सम्मान दिलवाता है? कौन से हैं बृहस्पति के राजयोग और क्या है उनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: Hop on board and settle in for an easygoing cruise with Sailing on TuneIn. Let the breeze roll in and the rhythm carry you along. Enjoy yacht rock classics from artists like Hall & Oates, Steely Dan, Loggins and Messina, and much more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing. Tell your device to play Sailing on TuneIn.
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
3: तस्वीर, खबरें, किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
2: Looking for an app to hear all your favorite music, news, sports, and more? We've got all your audio all in one place, right here on TuneIn. Play your favorite stations, like Que Buena.
3: La Que Buena.
2: ESPN Radio.
4: We know LeBron has to be the best player on the planet to
2: get The Daily.
5: From the New York Times, I'm Katrin Benhold, and this is The Daily.
2: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
6: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
7: खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
12: और चलिए अब नजर डालते हैं उन वीडियोस पर जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं, क्योंकि इनमें से कुछ आपको हंसाएंगे तो कुछ आपको इमोशनल कर देंगे।
13: नवजात भाई को पहली बार देखकर छोटी बहन की खुशी देखने लायक है। ठुमक ठुमक कर चलते हुए वो मासूमियत से जमीन पर बैठ गई और अपने नन्हे भाई को गोद में लेने के लिए हाथ फैला दिए। उसकी चमकती आंखों और खिलखिलाती मुस्कान ने पूरे घर के माहौल में खुशियां भर दी। भाई को सीने से लगाने की उसकी मासूम चाहत ने सभी का दिल जीत लिया। ये खूबसूरत पल सिर्फ एक मुलाकात नहीं, बल्कि भाई बहन के अनमोल रिश्ते और निश्चल प्रेम की प्यारी शुरुआत बन गया। जहां लोग छोटी छोटी परेशानियों में हार मान लेते हैं, किस्मत को कोसने लगते हैं, वहीं ये शख्स हौसले की नई मिसाल बनकर सामने आया है। एक हाथ न होने के बावजूद अपने हुनर से लोगों के चेहरों पर मुस्कान और आत्मविश्वास दोनों सजा रहा है। इनका काम सिर्फ हेयर कटिंग का नहीं है, बल्कि ये साबित करना है कि मेहनत, जज्बा और आत्मविश्वास के आगे हर मुश्किल छोटी पड़ जाती है। अपने हौसले से ये अपनी तकदीर खुद लिख रहे हैं। माँ और बच्चे का ये प्यारा सा अंदाज किसी का भी दिल जीत लेगा। माँ जैसे ही मस्ती में झूमती है, बच्चा भी उनकी नकल करने लगता है। फिर अपनी मासूम अदाओं पर खिलखिलाकर हंस पड़ता है। ये नजारा सिर्फ हंसी का नहीं बल्कि माँ बेटे के खूबसूरत रिश्ते और बेफिक्र बचपन की प्यारी झलक है। ऐसी मासूम खुशियाँ ही जिंदगी को खूबसूरत बनाती हैं और चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है। दुनिया का सबसे अमीर इंसान वो नहीं जिसके पास दौलत है, बल्कि वो है जिसके घर लौटने पर परिवार खुशियों से झूम उठे। ये प्यारी बच्चियां अपनी माँ के साथ डांस करते हुए पिता का स्वागत कर रही हैं। बेटियों की मुस्कान और अपनापन देख पिता भी खुद को झूमने से रोक नहीं पाए। ये नजारा सिर्फ स्वागत का नहीं बल्कि परिवार के प्यार, अपनेपन और रिश्तों की असली दौलत की खूबसूरती का है। इतना नन्हा किसान शायद ही किसी ने देखा होगा जो अपनी मासूम उम्र में भी जिम्मेदारी निभा रहा है। ये छोटा सा बच्चा होटल के कर्मचारियों के साथ बागवानी में मदद कर रहा है। उनकी क्यूट हरकतें देखकर सभी के चेहरों पर मुस्कान आ जाती है। बच्चे की मासूम कोशिशों से माहौल और भी खुशनुमा हो गया। उसकी ये लगन और सादगी ये सिखाती है कि सीखने और मदद करने की कोई उम्र नहीं होती।
12: तो आप भी अपने देश में ही सैर सपाटा कीजिए, अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट कीजिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के संकल्प में भागीदार बनिए। बस आपको सिर्फ करना इतना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है तो उठाइए कैमरा और बना डालिए एक व्लॉग, फिर हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, हम उसे गुड न्यूज टुडे पर दिखाएंगे। पहाड़ों पर मौसम ने करवट लेकर नजारों को और भी ज्यादा खूबसूरत बना दिया है। कश्मीर और लद्दाख समेत कई पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी ने मौसम को खुशगवार बना दिया। मॉनसून के इंतजार के बीच गर्मी से सर्दी का एहसास करने के लिए मैदानों के मुसाफिर इन बर्फीले पहाड़ों का रुख कर रहे हैं।

तीखी चटक सुर्ख धूप खिली है मैदान में, गलन है ठिठुरन है पहाड़ के दालान में। एक देश में ये मई के दो रंग हैं। एक और मैदान है जहाँ पारा अपनी हद भूल गया है, 45 डिग्री का सितम है, किसी पिछले बरस बिछड़े साथी की तरह मॉनसून का इंतजार हो रहा है, और दूसरी तरफ है पहाड़ जहाँ ऐसा जमकर बरसा है आसमान कि बर्फीली सौगात से पहाड़ों की झोली भर गई है। कहीं से गर्मी नहीं जा रही और कहीं से सर्दी। वाकई गर्मी की मार झेलते देश में पहाड़ों की चोटियों पर हो रही बर्फबारी ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है। उत्तराखंड के चार धाम क्षेत्र केदारनाथ बद्रीनाथ की ऊंची पहाड़ियों से लेकर हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति और रोहतांग पास तक बर्फबारी हो रही है। गर्मी के सताए सैलानी इन पहाड़ों पर पहुंचे तो मानो मौज आ गई। ये तस्वीरें हैं उत्तराखंड के चमोली की, जहां ताजा बर्फबारी के बाद सिखों का पवित्र तीर्थ हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा पूरी तरह बर्फ से ढक गया है। अभी 3 दिन पहले ही हेमकुंड साहिब के कपाट खोले गए थे। कपाट खुलने के साथ ही मौसम ने फिर करवट बदली और यहां बर्फबारी होने लगी। अब आलम यह है कि हर तरफ सफेदी ही सफेदी नजर आ रही है। जहां हेमकुंड साहिब में जमकर बर्फबारी हो रही है, वहीं जोशीमठ में मूसलाधार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। जोशीमठ में रोजाना दोपहर बाद रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे जोशीमठ सहित तमाम निचले इलाकों में जबरदस्त ठंड हो गई है। कुछ यही हाल लद्दाख का भी है। यहाँ भी बर्फ और ठंड का आलम है। लद्दाख के द्रास और कारगिल में कई इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के बाद ठंड तो बढ़ी है, लेकिन इस इलाके की खूबसूरती भी कई गुना बढ़ गई है।

0: हिमालय की गोद में ठहराता ये जोजीला दर्रा है। जोजीला यानी बर्फीले तूफान का पहाड़ी दर्रा, और जोजीला बिल्कुल अपने नाम पर गया लगता है। बर्फीले तूफानों का घर है ये, और कुदरत ने इसे जरिया बनाया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख के गठबंधन का। सारे देश में सर्दी आती है और यहाँ से सर्दी कभी जाती ही नहीं, मई में भी नहीं। यकीन नहीं हो तो तस्वीरें देख लीजिए। यहाँ बर्फबारी का आलम यह है कि सड़क पर जमी बर्फ को हटाने के लिए मशीनों का सहारा लेना पड़ रहा है। और ये तस्वीरें कश्मीर के गुरेज सेक्टर में मौजूद तुलैल वैली की हैं, जहाँ मई का महीना दिसंबर की याद दिला रहा है। अब तक नॉर्थ कश्मीर के बांदीपोरा में, गुरेज सेक्टर और सोनमर्ग में जबरदस्त बर्फबारी हो चुकी है। गुरेज घाटी के ऊपरी इलाकों का तो रंग ही बदल गया है। कश्मीर में बर्फबारी है तो हिमाचल का हाल भी उससे जुदा नहीं है। यहाँ कुल्लू मनाली के ऊपरी इलाकों, रोहतांग पास, स्पीति घाटी, सोलांग वैली, केलांग और दूसरी जगहों पर हाल के दिनों में अच्छी खासी बर्फ पड़ी है। इसके कारण इन इलाकों में मौसम कूल कूल बना हुआ है। इस बर्फबारी ने पहाड़ों पर सैलानियों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है। जाहिर है मई में किसे बर्फबारी की उम्मीद होगी, लेकिन पहाड़ी इलाकों का रुख कर रहे पर्यटकों के लिए ताजा बर्फबारी किसी बोनस से कम नहीं है। गर्मी की छुट्टियों की शुरुआत के साथ ही मनाली में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। जहां तक बात मानसून की है तो मौसम विभाग का कहना है कि अगले 2-3 दिनों में थंडर शॉर गतिविधियां सामान्य समय से थोड़ा पहले शुरू हो सकती हैं। केरल तट पर मानसून की एंट्री पर भी लगातार नजर बनी हुई है और जल्द ही इसके आगमन की घोषणा हो सकती है।
1: देखिए, अभी जो हमारा मुख्य रूप से जो तापमान गिरने का और जो भी वर्षा थंडर शावर्स का एक्टिविटी, मुख्य रूप से जो सीजन थंडर शावर्स एक्टिविटी होती है उसको देख करके ये फोरकास्ट वार्निंग इशू की गई है। जहां तक दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में बात है तो अगले 2-3 दिनों के दौरान ये थोड़ा सा और एडवांसमेंट इसमें हो सकता है, ये थोड़ा और एरिया कवर कर सकता है। हालांकि केरला तट पे ऑनसेट के बारे में हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं और कुछ अपडेट होगा उसको इन्फॉर्म करेंगे।
0: मौसम पिछले कुछ दिनों में अलग अलग रंग दिखा रहा है। मई के महीने में इस तरह की गर्मी भले ही देखी गई हो, लेकिन पहाड़ों पर इस महीने में बर्फबारी हैरान करने वाली है। पिछले कुछ वक्त से मौसम की ये मनमर्जियां यूं ही जारी हैं। मनाली से मनमिंदर अरोड़ा और जोजीला से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: Owning a home is full of surprises. Some wonderful, some not so much. And when something breaks, it can feel like the whole day unravels. That's why HomeServe exists. For as little as $4.99 a month, you'll always have someone to call. A trusted professional ready to help, bringing peace of mind to 4.5 million homeowners nationwide. For plans starting at just $4.99 a month, go to HomeServe.com. That's HomeServe.com. Not available everywhere. Most plans range between $4.99 to $11.99 a month your first year. Terms apply on covered repairs.
4: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
6: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
7: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
8: बृहस्पति का कौन सा राजयोग छोटी जगह से ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है? बृहस्पति का कौन सा राजयोग जीवन की हर बाधा को दूर कर देता है और बृहस्पति का कौन सा राजयोग बहुत सारा सम्मान दिलवाता है? कौन से हैं बृहस्पति के राजयोग और क्या है उनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
11: रामनगरी में शक्ति उत्सव मां भगवती के मंदिर पर होगा ध्वजारोहण, करीब 3,500 महिलाओं की भागीदारी से संपन्न होगा आयोजन।
12: रिकॉर्ड तोड़ रही चारधाम यात्रा, 40 दिनों में 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके दर्शन, सबसे ज्यादा श्रद्धालुओं ने की केदारनाथ यात्रा, श्री हेमकुंड साहिब में भी 22,000 से ज्यादा भक्त पहुंचे।
11: दिल्ली एनसीआर में आज तेज आंधी तूफान और बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, 31 मई तक ऐसा ही रहेगा मौसम।
12: दर्शकों को आज मनोरंजन का मेगा डोज, सिनेमाघरों में 9 नई फिल्में रिलीज, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर 5 नई फिल्में और सीरीज रिलीज।
11: आईपीएल फाइनल के लिए आज आखिरी लड़ाई, क्वालिफायर टू में गुजरात और राजस्थान रॉयल्स के बीच होगी टक्कर, जीतने वाली टीम फाइनल में 31 मई को आरसीबी से भिड़ेगी।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
11: उम्मीदों भरे पहर की खुशो भरी शुरुआत, सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत, नई सुबह नई आशा, गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर।
12: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर, बिना रुके बिना थमे अगले एक घंटे गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की उन 5 खबरों पर जिनमें इंडिया के लिए शुभ समाचार।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
11: शुभ समाचार की शुरुआत रामनगरी से करेंगे। आज का दिन राम भक्तों के लिए खास है, आज राम मंदिर में शक्ति उत्सव मनाया जाएगा। मंदिर परिसर के दुर्गा मंदिर में ध्वजारोहण समारोह होगा। ये कार्यक्रम नारी शक्ति को समर्पित है, इसमें 3,500 से ज्यादा महिला संत समारोह का हिस्सा बनेंगी। सुरक्षा की कमान सीआरपीएफ की महिला बटालियन संभालेगी। इस अवसर पर अयोध्या में कई धार्मिक अनुष्ठान संपन्न होंगे और क्या कुछ होगा खास आगे आपको बताएंगे।
12: साथ ही बारिश की भी बात करेंगे, क्योंकि पहाड़ों और मैदानों में अचानक से मौसम ने करवट ले ली है। कई जगहों पर तेज मूसलाधार बारिश के साथ ओले गिरे, इससे मौसम सुहाना हो गया और आगे भी ऐसा ही मौसम रहेगा। कहां कहां बदल रहा है मौसम बताएंगे आगे।
11: तो बद्रीनाथ में आज बाबा बागेश्वर की कथा का तीसरा दिन है, इसको लेकर उनके अनुयायियों में काफी उत्साह बना हुआ है। कैसा दिख रहा है वहां रंग आगे आपको बताएंगे।
12: वहीं आज मई महीने का आखिरी शुक्रवार है और ये काफी धमाकेदार रहने वाला है, क्योंकि आज सिनेमाघरों से लेकर ओटीटी पर 7 का 7 है। तो कौन कौन रिलीज हुई है फिल्में आगे बताएंगे।
11: तो इसके अलावा आपको आईपीएल के मैदान भी लिए चलेंगे। आज आईपीएल में दूसरा क्वालिफायर खेला जाएगा, इसमें वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें होंगी, तो इस पर होगी आगे बात, लेकिन अभी वक्त हो गया है फटाफट अंदाज में सुबह 9 बजे की 9 गुड न्यूज का।
12: अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि परिसर के परकोटे में नवनिर्मित मां दुर्गा मंदिर पर आज भव्य ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया जाएगा। मातृशक्ति को समर्पित इस कार्यक्रम में 3,500 से अधिक महिलाएं विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगी और साध्वी रितंबरा ध्वज का आरोहण करेंगी।
11: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु चारधाम के लिए पहुंच रहे हैं। अब तक चारधाम के दर्शन के लिए पहुंचने वालों की संख्या 25 लाख के पार पहुंच चुकी है, जिसमें सबसे ज्यादा केदारनाथ में 9.5 लाख से अधिक भक्तों ने हाजिरी लगाई।
12: दिल्ली के चिड़ियाघर में पर्यटकों सहित यहां पर रहने वाले जीव जंतुओं के लिए गर्मी से राहत के लिए व्यवस्था की गई है। यहां पर आने वाले पर्यटकों के लिए चिड़ियाघर में जगह जगह सीटिंग अरेंजमेंट, पानी की पंखा कूलर इत्यादि की व्यवस्था की गई। साथ ही यहां पर रहने वाले जीव जंतुओं के लिए भी पानी कूलर पंखे खान पान में बदलाव सहित कई इंतजाम गर्मी को लेकर आए।
11: सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में सुरक्षित और महिला अनुकूल सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए गुलाबी बस सेवा शुरू की जा रही है। इस पहल का उद्देश्य यात्रियों की सुरक्षा सुविधा और समावेशिता को मजबूत करना है। भारत के राष्ट्रपति इस योजना को हरी झंडी दिखाकर शुरुआत करेंगे।
12: मुजफ्फरपुर की मशहूर शाही लीची अपने स्वाद के साथ साथ अब अपनी मनमोहक खुशबू से भी लोगों का दिल जीत रही है। मुजफ्फरपुर के वैज्ञानिकों और स्थानीय उद्यमियों द्वारा इस विश्व प्रसिद्ध फल के प्राकृतिक अर्क से शाही लीची फ्लेवर वाली अगरबत्ती तैयार की गई।
11: कोटा का श्रीनाथपुरम स्टेडियम फिटनेस लवर्स की पहली पसंद बना हुआ है। सुबह शाम खिलाड़ी युवाओं बुजुर्गों से स्टेडियम गुलजार हो रहा है। रनिंग वॉक क्रिकेट से लेकर टेनिस खिलाड़ियों का पसीना यहां बह रहा है। लड़कियां भी वॉलीबॉल बास्केटबॉल और टेबल टेनिस में दम दिखा रही हैं।
12: आईपीएल में आज गुजरात और राजस्थान के बीच दूसरा क्वालिफायर मैच खेला जाएगा। ये मैच पंजाब के मुलापुर के महाराजा यदुवेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा।
11: सियोल में रोबोट्स का अनोखा फैशन शो का आयोजन किया गया। गैलेक्सी कॉरपोरेशन ने मार्क 33 फिजिकल एआई फैशन शो पेश किया। गैलेक्सी रोबोट पार्क में टेक्नोलॉजी और फैशन का संगम दिखा। रोबोट्स ने इंसानी मॉडल्स के साथ रैंप वॉक कर चौंका दिया। कैंप पहले रोबोट्स ने स्टाइलिश अंदाज में कैटवॉक किया।
12: कंगना की बहुप्रतीक्षित फिल्म भारत भाग्य विधाता का मोशन पोस्टर जारी कर दिया गया है। फिल्म 12 जून को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। ये फिल्म कामा अस्पताल की उन घटनाओं पर आधारित है। निर्देशक मनोज तापड़िया की इस फिल्म में कंगना के साथ गिरिजा और स्मिता तांबे नजर आएंगे।
13: कुछ खास करके आम ही कहलाते, वो दिखते तो है पर नजर नहीं आते।

0: तो अशुभ समाचार की शुभ शुरुआत राहत वाली गुड न्यूज के साथ करते हैं। गुरुवार शाम को ही हल्की बारिश पहाड़ों और मैदानी इलाकों के लिए राहत लेकर आई है। आज सुबह की शुरुआत हल्की ठंडी हवा के साथ हुई, जिससे मौसम खुशनुमा बना हुआ है। राजधानी दिल्ली में तापमान 45 पार हो गया था, वो अब 30 डिग्री पहुंच गया है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 3 दिन बारिश का ये दौर जारी रह सकता है। शुक्रवार के लिए बारिश का ऑरेंज, जबकि शनिवार और रविवार के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं वेस्ट यूपी में गरज चमक के साथ 80 से 90 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी चलने और बारिश की संभावनाएं हैं। वहीं कल शहर हुई बारिश ने तापमान में थोड़ी राहत दी है। भीषण गर्मी में दिन में निकलना किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन अब कुछ दिन के लिए मौसम साफ और सुहाना रहने वाला है। ऐसे में ये वीकेंड कूल रहेगा। जो लोग घूमने के शौकीन हैं, उनके लिए ये मौसम खुशियों की सौगात लेकर आया है। देखिए किस तरह से नौतपा में मौसम सुहाना हो गया है, और कल हुई बारिश ने आज का मौसम बदल कर रख दिया है। सुबह से ही तापमान में भारी गिरावट देखी गई है। जो तापमान 45 डिग्री पहुंच गया था, वो अब 30 पर आ गया है। सुबह से हल्की और ठंडी हवाएं चल रही हैं, और देखिए किस तरह से मौसम खुशगवार हो गया है। जो लोग वीकेंड पे कहीं घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं, उनके लिए वीकेंड जो है वो काफी कूल रहने वाला है। तो अपने जो तैयारियां हैं वो कर लीजिए, क्योंकि वीकेंड जो है वो ठंडा रहेगा और तापमान में इसी तरह से गिरावट जो है वो बनी रहेगी। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दिल्ली के अलग अलग जगहों से तस्वीरें आई हैं। कल हुई बारिश ने मौसम जो है वो बेहद खुशगवार कर दिया है। लोगों के चेहरे पर हंसी ला दी है और तापमान में भारी गिरावट इससे दर्ज की गई है।
1: तो नौतपा के बीच गुरुवार की शाम राहत की फुहार लेकर आई दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बादल जमकर बरसे। कहीं आंधी तूफान तो कहीं बूंदाबांदी हुई, इससे तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। तो दिल्ली एनसीआर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कल झमाझम बारिश दिल्ली एनसीआर में हुई और आगे भी अनुमान ये जताया जा रहा है कि आगे भी कुछ बरसात हो सकती है, जिससे लोगों को राहत थोड़ी मिलने वाली है। जहां पर दिल्ली में भीषण गर्मी का सामना दिल्लीवासियों को करना पड़ रहा था, लगभग 45 डिग्री पार पारा जा चुका था, गर्म हवाएं चल रही थी, लू के थपेड़े और इस सब के बीच अब राहत भरी खबर ये सामने आई है कि दिल्ली एनसीआर में कल जो बारिश हुई, आज भी बारिश की संभावना जताई जा रही है। मैदानों में राहत की खबर, जहां पर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, तो दूसरी तरफ मैदानी इलाकों में वीकेंड कूल रहने का अनुमान जताया जा रहा है। मैदानों में राहत वाली बारिश लेकर आई है, ये मौसम सुहाना हो गया है।
2: अब

0: आसमान में घुमड़ते बादल और नीचे पंछियों की उन्मुक्त उड़ान, हवा के साथ अटखेलियां करते पेड़ पौधे, ठंडी हवाओं की सरगोशियां, मानो सब ने दिल खोलकर बादलों का स्वागत किया। 45 डिग्री टॉर्चर झेल रहे मैदानी इलाकों के लिए गुरुवार की शाम राहत लेकर आई। ठंडी हवा का झोंका उठा, तेज हुआ और फिर आसमान में बादलों ने अंगड़ाई दी। शाम ढलते ढलते राहत की फुहार बनकर बरस गई। कहीं तेज कहीं मध्यम, कहीं कहीं थोड़ा नुकसान भी हुआ, पर पिछले कुछ दिनों में भीषण गर्मी, चिलचिलाती धूप, उमस भरी रात झेल रहे लोगों के लिए ये शाम सुकून दे गई। तापमान में गिरावट आई, नौतपा में भी मौसम सुहाना हो गया। मौसम विभाग ने पहले ही बदलाव के संकेत दे दिए थे और अनुमान भी सटीक रहा। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में भी रिमझिम बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। चाहे दिल्ली का कौटिल्य मार्ग हो, कस्तूरबा गांधी मार्ग, मोतीबाग, देशबंधु गुप्ता रोड, फिरोज शाह रोड, आर के पुरम, तुगलकाबाद या फिर एयरपोर्ट का इलाका, उत्तरी दिल्ली से पूर्वी और पश्चिमी से दक्षिणी दिल्ली तक बादल झमाझम बरसे। मौसम के बदले मिजाज का असर यूपी के झांसी में भी देखने को मिला। लगातार 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहे तापमान ने लोगों को घरों में कैद होने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन गुरुवार शाम को चली तेज हवाओं और बारिश ने तस्वीर बदल दी। यहां कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी देखने को मिली। तपती धरती ने राहत की सांस ली। 45 डिग्री टॉर्चर के बाद मौसम का ये यूटर्न हरियाणा के लोगों को भी रास आया। रेवाड़ी में झमाझम बारिश के साथ ओले भी गिरे। अचानक आए इस मौसम परिवर्तन से जहां एक तरफ लोग हैरान रह गए, वहीं दूसरी तरफ पिछले कई दिनों से पड़ रही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से जूझ रहे लोगों ने राहत की सांस ली। तेज हवाओं, बारिश और ओलावृष्टि के बाद तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में तो लोग 49 डिग्री टॉर्चर झेल रहे थे। गुरुवार दोपहर तक ये शहर दुनिया के सबसे गर्म शहरों में दूसरे स्थान पर शुमार था, लेकिन शाम होते होते कहानी बदल गई। मौसम के बदले अंदाज ने लोगों को बड़ी राहत दी। दोपहर बाद मौसम बदला, आसमान में काले घने बादल छाए, शाम होते होते तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई, जमकर ओलावृष्टि भी हुई। धौलपुर में भी मौसम के तेवर कुछ ऐसे ही नजर आए। दोपहर बाद आसमान में बादलों ने दस्तक दी और देर शाम तेज हवाओं के साथ बरस पड़े। तपती दोपहरी के बाद बादलों की ये मेहरबानी लोगों को सुकून दे गई। उत्तराखंड के बागेश्वर में इन बादलों ने बड़ा काम किया। यहाँ हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि ने जंगलों की भीषण आग बुझा दी। हालांकि कुछ किसानों को अपनी फसलों का नुकसान भी झेलना पड़ा। जबरदस्त ओलावृष्टि से फलों और सब्जियों की खेती को नुकसान पहुंचा। महाराष्ट्र के अमरावती में तो नौतपा की तपिश के बीच 45 डिग्री तापमान में झुलसे शहर ने राहत की इस बारिश का जमकर लुत्फ उठाया। तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हुई बारिश और ओलावृष्टि से शहर का पारा नीचे लुढ़क गया और लोगों ने राहत की सांस ली। वहीं छत्तीसगढ़ के सुकमा में मौसम का रौद्र रूप भी देखने को मिला। बारिश ने 45 डिग्री टॉर्चर से तो राहत दी, लेकिन तेज हवाओं के साथ हुई भारी बारिश ने कई घरों के छप्पर भी उड़ा दिए। तो कहीं पेड़ गिर गए, कई जगहों पर बाउंड्री वॉल और शेड क्षतिग्रस्त हो गए, तो वहीं कुछ सरकारी दफ्तरों और संस्थानों की इमारतों को भी नुकसान पहुंचने की खबर है। दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में तो बादल ऐसे बरसे मानो तबाही को दावत दे रहे हैं। दो घंटे की बारिश में हालात बाढ़ जैसे हो गए। पानी का बहाव इतना तेज था कि सड़कों पर खड़े दोपहिया वाहनों को भी अपने साथ बहा ले गई। झांसी से अजय झा, रेवाड़ी से देशराज सिंह, श्रीगंगानगर से हरनेक सिंह, धौलपुर से उमेश मिश्रा, बागेश्वर से जगदीश चंद्र पांडे, सुकमा से धर्मेंद्र सिंह, दार्जिलिंग से कायस अंसारी, अमरावती से धनंजय सावले, गुड न्यूज टुडे।
1: उत्तराखंड के बागेश्वर में अचानक मौसम ने करवट बदलते ही तेज मूसलाधार वर्षा के साथ ओले भी गिरने लगे। इससे आसपास का दृश्य सफेद चादर से ढक गया। ओले गिरने से सड़कें और खेत बर्फ सी सफेद दिखने लगे। ये बारिश जंगलों में लगी आग को बुझाने में कारगर साबित हुई और गर्मी से भी इससे राहत मिली। तो देखिए किस तरह से बागेश्वर में ओले गिरे और इस ओले पड़ने से जो वहां आग लगी थी उससे लोगों को राहत मिली और वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से ये बारिश हुई है, बेमौसम की ये बारिश है, लेकिन इससे जो है वो काफी राहत जो है स्थानीय लोगों को मिली है।
2: तो देखिए पारा 48 डिग्री पार पहुंचने के बाद श्रीगंगानगर के कई इलाकों में बारिश और ओले भी गिरे। अचानक मौसम बदलने से आसमान में काले घने बादल छा गए, फिर जमकर बारिश हुई और उसका दौर शुरू हो गया। अभी माना जा रहा है कि आगे भी बरसात हो सकती है।
1: तो भीषण गर्मी के बीच मौसम ने यू टर्न ले लिया है तो हरियाणा के रेवाड़ी में जाकर ओले भी गिरे, वहां जमकर ओले गिरे, इतने मोटे ओले गिरे कि लोगों ने हाथों में उठा लिए। बारिश और ओले गिरने से मौसम खुशनुमा हो गया है, लेकिन आप इन ओलों का साइज देखिए, ये नॉर्मल से कहीं ज्यादा बड़े हैं और काफी बड़े ओले हरियाणा में गिरे, जिससे मौसम जो है वहां बेहद ठंडा हो चुका है।
2: तो बारिश के इंतजार कर रहे कोलकाता में इस कदर मौसम बदला, बारिश हुई, पानी पानी सब कुछ हो गया। यहाँ इतनी बारिश हुई कि पार्किंग में खड़ी कुछ बाइक तिनकों की तरह बहने लगी। अच्छी बात यह रही कि वक्त रहते लोगों ने बाइक को थाम लिया, जिससे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है।
1: रामनगरी अयोध्या में भी तापमान 45 डिग्री पहुंच गया था, लेकिन हल्की बारिश ने यहां भी राहत जो है वो ला दी है। सुबह से यहां भी मौसम सुहाना बना हुआ है। राम मंदिर पहुंच रहे लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि हर दिन कई हजार लोग अयोध्या पहुंचते हैं। ऐसे में सुहाना मौसम राम भक्तों के लिए राहत लेकर आया है।
2: ये तो बात हो गई मौसम की, अब बात कर लेते हैं रामनगरी अयोध्या की, क्योंकि आज का दिन बेहद ही खास है। राम मंदिर में आज शक्ति उत्सव मनाया जाएगा और राम मंदिर परिसर के दुर्गा मंदिर में ध्वजारोहण समारोह होगा। ये कार्यक्रम नारी शक्ति को समर्पित है। इसमें 3500 से ज्यादा महिला संत समारोह का हिस्सा बनेंगी। सुरक्षा की कमान सीआरपीएफ की महिला बटालियन संभालेंगी। इस अवसर पर अयोध्या में कई धार्मिक अनुष्ठान भी संपन्न होंगे।

0: अयोध्या के राम मंदिर में एक बार फिर उत्सव की तैयारी है। आज यहां मां भगवती मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण का भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें आध्यात्म, श्रद्धा और मातृशक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। मंदिर परिसर को विशेष रूप से सजाया गया है। देश भर से मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी की महिलाएं अयोध्या पहुंच चुकी हैं। शाम 6 बजे मां भगवती मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण समारोह प्रारंभ होगा, जो लगभग रात 7:30 बजे तक चलेगा। आयोजन में करीब 3,500 महिलाओं के शामिल होने की संभावना है। कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं को विशेष प्रसाद भी वितरित किया जाएगा।
1: कम से कम 3,500 माताएं आएंगी, ऐसी हमारी उम्मीद है। वो महिलाएं बाहर की माताएं आ रही हैं। हमने 500 कमरा बुक किया है, निवास व्यवस्था हो गई है, और विशेष यानी CRPF के बहने ये ध्वजारोहण की बाकी रस्सी खींचने का काम वो करेंगे। उन्होंने तैयारी किया है, महिलाओं के द्वारा ये कार्यक्रम संपन्न।
0: इस ऐतिहासिक आयोजन की खास बात यह है कि ध्वजारोहण की पूरी प्रक्रिया महिलाओं द्वारा संपन्न की जाएगी। साध्वी रितंभरा मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करेंगी। साध्वी रितंभरा के साथ राम मंदिर की सुरक्षा में तैनात CRPF की महिला जवान ध्वज आरोहण की रस्सी खींचकर कार्यक्रम को पूरा करेंगे। राम मंदिर की सुरक्षा में तैनात PAC की महिला कमांडो और मंदिर परिसर में कार्यरत महिलाएं भी इस भव्य आयोजन का हिस्सा बनेंगी। राम मंदिर परिसर में होने जा रहा ये आयोजन न केवल आध्यात्मिक आस्था का प्रतीक बनेगा, बल्कि मातृशक्ति के सम्मान और सनातन संस्कृति की भव्यता का भी संदेश देगा। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और चलिए आपको लेकर चलते हैं बद्रीनाथ धाम, जहां बाबा बागेश्वर सत्यनारायण कथा कर रहे हैं। पहाड़ों में साधना कर लौटे बाबा बागेश्वर इन दिनों अपने भक्तों के साथ आध्यात्मिक अनुभव साझा कर रहे हैं, साथ ही वो भक्तों के सुख दुख भी सुन रहे हैं। कथा के दौरान बाबा ने एक भक्त को मंच पर बुलाया। खास बात ये रही कि उस भक्त ने उन्हें कोई महंगा उपहार नहीं दिया था, बल्कि उनके बाल पीछे रखने के लिए एक साधारण हेयर बैंड भेंट किया। इस छोटे लेकिन भावनात्मक उपहार को देखकर बाबा बेहद खुश हो गए और उन्हें मंच पर बुलाया और उनसे पूछा कि उन्होंने आखिर क्यों ये खूबसूरत गिफ्ट दिया। सुनिए ये दिलचस्प किस्सा।
3: कैसे लग रहे हैं? अब तुम ही नीचे आए
4: हैं?
3: अब ये नीचे तो नहीं आए?
4: नहीं, बाल नहीं आएंगे अब। वो
3: कितने साल तक ये ऐसे रहेंगे?
4: हमेशा लगाओगे तो नहीं आएंगे।
3: सिर पे हाथ रख। कहाँ की हो?
4: केदारनाथ घाटी से। तुंगनाथ बीच में पड़ता है।
3: केदारनाथ घाटी, वहाँ पहाड़ में रहती। अब कभी केदारनाथ आएंगे, मैया के घर आएंगे। हे बालराम, खबरदार जो तुम अब नीचे आए, काट दिए जाओगे। हमारी माँ ने कहा है, हमने गिफ्ट में फल फूल कपड़े दक्षिणा बहुत लोगों को देते देखा, हेयर बैंड पहली बार देखा।
5: चारधाम यात्रा को लेकर तीर्थयात्रियों में जबरदस्त उत्साह है। श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंच रहे हैं, हर रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। अभी आंकड़ा 24 लाख के पार हो गया है। हालांकि इस बीच जंगलों में आग और मौसम में बदलाव की चुनौतियां भी सामने आ रही हैं।
0: उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। हर रोज हजारों की तादाद में श्रद्धालु बाबा केदार और भगवान बद्री विशाल के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं, तो वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री में माँ गंगा और माँ यमुना के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी हैं। ऐसे में चारों धामों के दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों का आंकड़ा 24 लाख पार कर गया है, जो चारधाम तीर्थयात्रियों का नया रिकॉर्ड है। बद्रीनाथ धाम हो या केदारनाथ, यमुनोत्री हो या गंगोत्री, हर तरफ श्रद्धालुओं का जमावड़ा है। नाम जप है, भजन कीर्तन है और चेहरे पर भगवान के दर्शन की अभिलाषा। इनमें सबसे ज्यादा तीर्थयात्री केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। वहीं बद्री विशाल के धाम में भी आस्था की अद्भुत छटा देखने को मिल रही है। चार धाम यात्रा प्रबंधन एवं नियंत्रण संगठन ऋषिकेश की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक केदारनाथ धाम में सबसे ज्यादा 9,27,363 श्रद्धालु पहुंचे हैं। बद्रीनाथ धाम में 6,68,159, गंगोत्री धाम में 4,20,231 और यमुनोत्री धाम में 4,11,633 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। हेमकुंड साहिब में भी यात्रा शुरू होने के बाद अब तक 19,558 श्रद्धालु पहुंचे हैं।
6: चारों धामों के साथ पांचवा जो जिसे हम धाम कहते हैं हेमकुंड साहिब की यात्रा भी चल रही है। ऐसे में अब जो जून का महीना होगा फूलों की घाटी भी खुल जाएगी, जून में स्कूलों की छुट्टियां हो जाएंगी, ऐसे में यात्रा बढ़ेगी, तो उसके लिए कहीं ना कहीं इस समय प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। लेकिन अभी तक बद्रीनाथ धाम यात्रियों से खचाखच दिखाई दे रहा है। जो उत्साह है वो सड़क से लेकर मंदिर तक हर तरफ यात्रियों का जमावड़ा इस समय देखने को मिल रहा है। इस बार मई के महीने में ही कई पुराने रिकॉर्ड अलग दिखाई दे रहे हैं। इतनी संख्या आज तक मई के महीने में देखने को नहीं मिली है। हालांकि जून के महीने में यात्री आंकड़ा हमेशा बढ़ता था, लेकिन मई के महीने में इतना ज्यादा यात्री का आंकड़ा देखने को नहीं मिला है।
0: चारों धामों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ ये बता रही है कि चार धाम में उनकी आस्था अटूट है। हालांकि मौसम में आए बदलाव ने अब तीर्थयात्रियों की चुनौतियां भी बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए चमोली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं जंगलों में लगी आग भी तीर्थयात्रियों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। ऐसे में यात्रा सीजन के पीक दौर में लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन और पुलिस व्यवस्थाओं को और मजबूत किया जा रहा है। वहीं प्रशासन ने चारधाम यात्रियों को यात्रा मार्ग पर सावधानी बरतने की सलाह भी दी है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सिमवाल और चमोली से कमल नैन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखिए बड़े पर्दे पर नीम करोरी बाबा की कहानी।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: Hop on board and settle in for an easy going cruise with sailing on TuneIn. Let the breeze roll in and the rhythm carry you along. Enjoy yacht rock classics from artists like Hall & Oates, Steely Dan, Loggins and Messina, and much more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing. Tell your device to play Sailing on TuneIn.
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
3: हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
6: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: मंदिर पर होगा ध्वजारोहण, करीब 3,500 महिलाओं की भागीदारी से संपन्न होगा आयोजन।
1: हेमकुंड साहिब में भारी बर्फबारी, पूरे जोश और उत्साह के बीच सिख संगत पहुंच रही है धाम। अब तक 22,000 से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन।
0: दिल्ली एनसीआर में आज तेज आंधी तूफान और बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट, 31 मई तक ऐसा ही रहेगा मौसम।
1: दर्शकों को आज मनोरंजन का मेगा डोज, सिनेमाघरों में 9 नई फिल्में रिलीज, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर 5 नई फिल्में और सीरीज रिलीज।
0: आईपीएल फाइनल के लिए आज आखिरी लड़ाई, क्वालिफाई टू में गुजरात और राजस्थान रॉयल्स के बीच होगी टक्कर, जीतने वाली टीम फाइनल में 31 मई को आरसीबी से भिड़ेगी।

0: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मई महीने का आखिरी शुक्रवार है और ये काफी धमाकेदार रहने वाला है क्योंकि आज सिनेमाघरों से लेकर ओटीटी पर कई फिल्में आई हैं, यानी कि सिनेमाघरों के साथ ओटीटी के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जबरदस्त गदर मचने वाला है। आपको सिनेमाघरों में महान संत नीम करोड़ी महाराज के जीवन पर बनी फिल्म देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप सस्पेंस थ्रिलर के साथ हॉरर और कॉमेडी फिल्में और वेब सीरीज देखकर वीकेंड मजेदार बना सकते हैं, या कहें कि वीकेंड पर आपकी ऑप्शन लिस्ट में काफी कुछ रहने वाला है। आज थिएटर में 4 फिल्में रिलीज होंगी, इनमें श्री बाबा नीम करोड़ी महाराज का नाम भी इस लिस्ट में है। ये बायोपिक फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देगी। फिल्म में नीम करोड़ी बाबा के जीवन, उनके आध्यात्मिक सफर और लोगों की जिंदगी पर पड़े उनके प्रभाव को दिखाया जाएगा। साथ ही धार्मिक और प्रेरणादायक कहानियां पसंद करने वालों के लिए भी ये फिल्म पसंद आ सकती है।
1: आज थिएटर से ओटीटी तक कई नई फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं जो आपको फुल एंटरटेन करेंगी। इस बार दर्शकों को कॉमेडी, एक्शन, रोमांस, भक्ति, रोड ट्रिप और इमोशनल ड्रामा जैसे सब्जेक्ट पर बनी फिल्मों की सौगात मिलने जा रही है, यानी वीकेंड पर आपकी ऑप्शन लिस्ट में काफी कुछ रहने वाला है। आज थिएटर में 4 फिल्में रिलीज होगी। श्री बाबा नीम करोली महाराज आज देश भर में रिलीज होने जा रही है। ये फिल्म बाबा यानी लक्ष्मण नारायण शर्मा की स्पिरिचुअल जर्नी को दिखाती है, जिसमें वो पूज्य संत नीम करोली बाबा के रूप में ट्रांसफॉर्म होते हैं और आइकॉनिक कैचीधाम आश्रम की स्थापना करते हैं। एक्टर सुबोध भावे ने बाबा की भूमिका निभाई है, जबकि मोहित जी गुप्ता ने उनके युवा का रोल किया है। शरद सिंह ठाकुर फिल्म के निर्देशक हैं। ये एक एंटरटेनिंग फैमिली फिल्म है जो आज रिलीज हो रही है। मनीष सैनी के निर्देशन में बनी ये कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जो एक रहस्य के चलते जगह जगह भटकता रहता है। बाद में उसे पता चलता है कि उसके दादा, जिनका किरदार जैकी श्रॉफ ने निभाया है, के पास स्पेशल सुपर पावर है। जब एलियंस पृथ्वी पर हमला करते हैं तो दादा को अपनी शक्तियों का उपयोग करके सभी को बचाना पड़ता है। फिल्म में कॉमेडी, इमोशंस और दादा पोते के बीच का प्यारा रिश्ता बेहतरीन ढंग से दिखाया गया है। इसमें प्रतीक बब्बर और भाग्यश्री भी मुख्य भूमिका में है। ये एक हिंदी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो आज रिलीज होगी। फिल्म का निर्देशन आदित्य अमन ने किया है और इसमें उल्का गुप्ता मुख्य भूमिका में है। बिहार के दरभंगा में फिल्माई गई ये फिल्म रजनी की कहानी है, जो एक कॉलेज टीचर हैं और अपने बॉयफ्रेंड के पिता की उनकी शादी का विरोध किए जाने पर सामाजिक नियमों को चुनौती देती है। फिल्म में कनिष्क विजय, अश्वथ भट्ट, सुनीता राजवार और जरीना बहाव भी है। फिल्म का निर्माण तनाया अडारकर प्रभु और तेज एच अडारकर ने किया है। ये एक हिंदी भाषा की साइकोलॉजी, फैंटेसी, क्राइम, थ्रिलर फिल्म है जो आज थिएटर्स में होगी। अमित दीक्षित निर्देशित और रोहित एस यादव की लिखित ये फिल्म पुलिस अधिकारी कृष्णन श्रीनिवासन की कहानी है, जो सिलसिलेवार हत्याओं की जांच करते हैं। फिल्म में जितेंद्र बोहरा, तुषार कावले, जेसिका यादव, क्षितिज पवार और कई अन्य कलाकार शामिल हैं। इनके अलावा थिएटर में ईशा सिंह की साइकोलॉजिकल एक्शन थ्रिलर ऑब्सेस म्यूजिकल कॉमेडी फिल्म जीना दिल से और स्पोर्ट्स ड्रामा कृष्णा और चिट्ठी भी रिलीज हो रही हैं। यानी वीकेंड एंटरटेनमेंट के लिए वो सब मौजूद है जिन्हें आप

0: वीकेंड पर बिंच वॉच कर सकते हैं। जाहिर है आखिरी शुक्रवार को फिल्म मेकर सिने प्रेमियों को बिल्कुल भी निराश नहीं करने वाले हैं। सिनेमाघरों में आज दस्तक दे रही ये फिल्में आपको एंटरटेन करने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: थिएटर्स की तरह ही एंटरटेनमेंट का तड़का ओटीटी पर भी लगने वाला है। इस वीकेंड ओटीटी पर एंटरटेनमेंट का महाब्लास्ट हो रहा है। इस वीकेंड अलग अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 6 फिल्में वेब सीरीज रिलीज हो रही हैं। देखिए खास रिपोर्ट।
0: मई के लास्ट फ्राइडे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने भी अपने दर्शकों के लिए शानदार एंटरटेनमेंट पैकेज तैयार किया है, जो आपके पूरे शनिवार रविवार को रोमांच से भर देने वाला साबित होगा। तमाम ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इस हफ्ते सस्पेंस, एक्शन, कोर्टरूम ड्रामा, डार्क सुपर हीरो और हल्की फुल्की कॉमेडी का जबरदस्त तड़का देखने को मिलेगा। ये चर्चित सीरीज इस वीकेंड की सबसे एक्साइटिंग रिलीज है। हॉलीवुड स्टार निकोलस केज इस सीरीज के जरिए टीवी डेब्यू कर रहे हैं और उनका अंदाज पहले से बिल्कुल अलग नजर आने वाला है। 1930 के दशक के न्यूयॉर्क की अंधेरी गलियों में सेट अमेज़न प्राइम वीडियो पर आने वाली ये कहानी सुपर हीरो यूनिवर्स को एक डार्क फिल्म नोयर टच देती है। इस सीरीज में एक्शन के साथ साथ सस्पेंस और विजुअल स्टोरी टेलिंग का ऐसा कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा जो सुपर हीरो कंटेंट के फैंस को पूरी तरह बांधे रखेगा। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है अ गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर 2। एमा मायर्स एक बार फिर अपने इन्वेस्टिगेटिव अंदाज में लौट रही हैं और इस बार कहानी पहले से ज्यादा रहस्यमयी और खतरनाक होने वाली है। ये वेब सीरीज टीन ड्रामा और क्राइम थ्रिलर का शानदार मिश्रण है। हर एपिसोड में आने वाले नए ट्विस्ट दर्शकों को आखिर तक बांधे रखने का दम रखते हैं। इंडियन सिनेमा के सबसे चर्चित कोर्ट रूम ड्रामा में से एक जॉली एलएलबी 3 ओटीटी पर आ रही है। इस बार अक्षय कुमार और अरशद वारसी दोनों साथ नजर आएंगे और कोर्ट रूम में तगड़ी बहस देखने को मिलेगी। ये फिल्म सिर्फ कानून की लड़ाई नहीं दिखाती बल्कि समाज के कई गंभीर मुद्दों पर व्यंग और हास्य के जरिए चोट भी करती है। यही वजह है कि इस मूवी को इस वीकेंड की सबसे बड़ी फैमिली एंटरटेनर माना जा रहा है। आपको अगर देशभक्ति और स्पाई थ्रिलर पसंद है तो धुरंधर रॉ एंड अनदेखा आपकी वॉच लिस्ट में होनी ही चाहिए। रणवीर सिंह, संजय दत्त और अक्षय खन्ना स्टारर ये ब्लॉकबस्टर फिल्म कराची के अंडरवर्ल्ड और आतंकवाद के खिलाफ एक सीक्रेट मिशन की कहानी दिखाती है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन, इमोशनल ड्रामा और हाई वोल्टेज मिशन का रोमांच देखने को मिलेगा। यही वजह है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर आते ही ये फिल्म तेजी से चर्चा बटोर रही है। साउथ सुपरस्टार धनुष भी इस वीकेंड अपने फैंस के लिए दमदार एक्शन ड्रामा फिल्म कारा लेकर आ रहे हैं। गल्फ वॉर के बैकग्राउंड पर बनी ये फिल्म युद्ध के माहौल के बीच इंसानी रिश्तों और संघर्षों की कहानी दिखाती है। फिल्म में इमोशन और एक्शन का संतुलन इसे बाकी रिलीज से अलग बनाता है। धनुष की दमदार परफॉर्मेंस इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत मानी जा रही है। इस वीकेंड हल्का फुल्का और रिलैक्सिंग कंटेंट देखने की चाहत है तो वीकेंड में ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स की कॉमेडी ड्रामा सीरीज द फोर सीजन 2 आपके लिए ही वीकेंड पर दस्तक दे रही है। टीना फे और स्टीव कैरल स्टारर ये वेब सीरीज रिश्तों, दोस्ती और जिंदगी के अलग अलग पड़ावों को मजेदार अंदाज में पेश करती है। इसके मजेदार डायलॉग्स और रिलेटेबल किरदार दर्शकों को खूब पसंद आ रहे हैं। खास बात यह है कि इस बार हॉलीवुड और इंडियन कंटेंट दोनों का शानदार मिश्रण देखने को मिल रहा है। निकोलस केज से लेकर अक्षय कुमार और धनुष तक कई बड़े सितारे अपनी नई कहानियों के साथ स्क्रीन पर छाने के लिए तैयार हैं। यानी इस वीकेंड ओटीटी पर हर तरह के दर्शकों के लिए कुछ न कुछ खास मौजूद रहने वाला है। तो एंजॉय कीजिए अपना वीकेंड। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से देशवासियों से विदेश यात्रा की जगह स्वदेश यात्रा करने की अपील की तभी से जीएनटीबी आपसे गुजारिश कर रहा है कि आप अपने आसपास की खूबसूरत जगहों की तस्वीरें हमें भेजें ताकि हम आपके उन वीडियोस को दिखाएं। तो चलिए आज आपको हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला लेकर चलते हैं जहां के तमाम आकर्षक और खूबसूरत पर्यटक स्थल आपका इंतजार कर रहे हैं। हमारे एक दर्शक ने हमें एक वीडियो भेजा है जिसमें उन्होंने धर्मशाला समेत कांगड़ा वैली की खास जगहों के बारे में बताया है। देखिये

0: आप सभी को भी न्योता देता हूँ कि हमारा हिमाचल प्रदेश जो देव भूमि है और हिमाचल के ही अंदर बसा हमारा ये सुंदर धर्मशाला, जहाँ एक तरफ धुलाधार की हसीन पहाड़ियाँ, जहाँ आज मई और जून के महीने में भी बर्फबारी धुलाधार की पहाड़ियों पर है। मैं आप सभी को कहना चाहूंगा हिमाचल प्रदेश के अंदर ये सुंदर हमारा धर्मशाला, जहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो विश्व का सबसे सुंदर स्टेडियम है वो धर्मशाला में है, चाहे मैक्लोडगंज जो नगरी है वो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में है, बौद्ध धर्म के धर्मगुरु दलाई लामा जी यहाँ पर हैं। आप सभी आए और धर्मगुरु दलाई लामा जी का आशीर्वाद मिलने का सौभाग्य आप सभी को मिलेगा। धर्मशाला के अंदर चाय के बगान है, आप उन्हें निहारने के लिए यहाँ आ सकते हैं। धर्मशाला के अंदर कई देवी स्थान, कई मंदिर, जैसे अगंजर महादेव, इंदुरनाग जी का मंदिर देवी स्थल है, और कई मंदिर हमारे हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के शहर के अंदर है। बात करूं रोपवे की, तो धर्मशाला में धर्मशाला से मैक्लोडगंज के लिए रोपवे की सुविधा है, आप उसका आनंद लेने भी हिमाचल प्रदेश के अंदर आ सकते हैं। अगर कोई ट्रैकिंग का शौकीन है तो त्रिउंड जैसा एक ट्रैकिंग का हमारे पास स्पॉट जो है धर्मशाला के अंदर है, आप ट्रैकिंग के लिए भी त्रिउंड जा सकते हैं। साथ में धर्मशाला के लगते बाथू की लड़ी यहाँ घूमने के लिए है। मंदिर की बात करूँ तो रॉकट टेम्पल हमारे यहाँ है। धर्मशाला के साथ ही लगता कांगड़ा है, प्रदेश्वरी माता शक्तिपीठ धर्मशाला के अंदर लगते कांगड़ा में है, तो आप इन तमाम चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए, घूमने के लिए धर्मशाला आए हिमाचल वासी, तो धर्मशाला अतिथि देवो भव के भाव के साथ आप सभी के स्वागत के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। आपने आना कैसे है ये सबसे बड़ा प्रश्न है, तो बताऊं आपको, धर्मशाला के ही समीप गग्गल एयरपोर्ट, जहां आप हवाई मार्ग से आ सकते हैं। रेलवे से अगर आपने आना है तो पठानकोट जो सबसे नजदीक हमारे पड़ता है उसके माध्यम से आ सकते हैं। जब दिल्ली से आपने आना है तो वोल्वो बसेस जो है धर्मशाला तक आती हैं। इन तमाम साधनों से जो आप धर्मशाला आ सकते हैं। हम सभी धर्मशाला वासी आपके स्वागत के लिए और अतिथियों के अतिथि देवो भव के भाव के साथ यहाँ पर।
1: तो आप भी कीजिए अपने ही देश में सैर सपाटा, अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट कीजिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के संकल्प में भागीदार बनिए। बस आपको सिर्फ करना इतना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है तो उठाइए कैमरा और बना डालिए एक व्लॉग, फिर हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, हम उसे गुड न्यूज टुडे पर दिखाएंगे।
2: अब बात कर लेते हैं आईपीएल के रोमांच की। सीजन 19 की रेस अब आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी है। आज गुजरात और राजस्थान के बीच दूसरा क्वालिफायर मुकाबला खेला जाएगा। मैच न्यू चंडीगढ़ में होगा, शाम 7:30 बजे इसकी शुरुआत होगी। जाहिर है इस नॉकआउट मुकाबले पर तमाम क्रिकेट फैंस की निगाहें हैं। आज जीतने वाली टीम संडे को फाइनल में आरसीबी से भिड़ेगी। रविवार को अहमदाबाद में आरसीबी से फाइनल होगा। तो जाहिर है इस महामुकाबले से पहले टीम राजस्थान का जोश हाई है। फैंस की निगाहें वैभव सूर्यवंशी पर लगी हुई है, जो कि इस नॉकआउट मुकाबले में शह और मात देने की तैयारी में है। देखिए बेबी बॉस के टशन की कुछ वायरल तस्वीरों की झलक।

0: और आंकड़ों के लिहाज से देखें तो गुजरात टीम का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। दोनों टीमों के बीच कुल 10 मैच खेले गए हैं, जिनमें से गुजरात ने 7 और राजस्थान ने 3 मुकाबले जीते। मौजूदा सीजन में भी गुजरात का प्रदर्शन बेहतर रहा है। इस सीजन गुजरात ने 14 में से 9 और राजस्थान ने 14 में से 8 मुकाबले ही जीते।
1: यूं तो मुलायमपुर के महाराजा यादविंदर सिंह क्रिकेट स्टेडियम में हाई स्कोरिंग गेम की उम्मीद है, लेकिन मौसम क्वालिफायर 2 के रोमांच में खलल डाल सकता है। दरअसल मौसम के जानकारों की माने तो न्यू चंडीगढ़ में आज शाम का तापमान 23 से 27 डिग्री के आसपास बना रह सकता है। इस दौरान करीब 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान है। साथ ही 60 से 70% बारिश होने की संभावना। बारिश होने की वजह से सूरत में गुजरात को फायदा होगा और पॉइंट्स टेबल के हिसाब से उसे फाइनल में एंट्री मिल जाएगी, क्योंकि एलिमिनेटर 2 के लिए कोई भी रिजर्व डे नहीं रखा गया है।
0: दूसरे क्वालिफायर में वैभव सूर्यवंशी पर सबकी निगाहें होंगी, लेकिन उन्हें आईपीएल में रिकॉर्ड की झड़ी लगाने को लेकर बधाइयां मिलने का सिलसिला भी लगातार जारी है। ओडिशा के पुरी में समंदर किनारे उन पर एक सैन आज भी तैयार किया गया है। इसमें लिखा गया है कि सच में एक ऐतिहासिक और प्रेरक पारी, बधाई वैभव सूर्यवंशी। ये सैन आर्ट मशहूर सैन आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने बनाई है। उन्होंने वैभव की प्रतिभा की तारीफ की है।
2: अरे वो पीछे सटो।
3: जय हो वैभव। जिस तरीके से वैभव उनकी बैट के माध्यम से क्रिकेट दुनिया में एक इतिहास क्रिएट कर रहे हैं, उनको और जो रिकॉर्ड्स क्रिएट कर रहे हैं उनको अभिनंदन ज्ञापन करने के लिए ये सैंड स्कल्पचर्स क्रिएट किए हैं। और हम लोग हमारा कला के माध्यम से हम लोगों ने ये दिखाया है कि वैभव जी का ये जो पोर्ट्रेट है उसको सैंड में क्रिएट किया है। उसके साथ 15 फीट लॉन्ग का ये क्रिकेट बैट और बॉल्स को भी इंस्टॉल क्रिएट किए हैं।
0: योग की ताकत दुनिया मानती है, क्योंकि ये तन और मन को एक करने की ताकत रखता है। जो योग करेगा उसका मन स्वस्थ रहेगा और मन स्वस्थ तो तन भी स्वस्थ रहेगा। तभी तो आज 100 से ज्यादा देश भारत का सिखाया योग करते हैं, लेकिन अब आप अपने इस हुनर से मेडल भी जीत सकते हैं। दरअसल 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स में योग को प्रतियोगिता के तौर पर शामिल किया गया है।
4: सेहत का खजाना अब सम्मान का खजाना भी बनेगा। योग अब सिर्फ जीवन नहीं बल्कि जीत भी बनेगा। इसके लिए भारत ने 2030 में अहमदाबाद में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में योग को शामिल करने की तैयारी कर ली है। केंद्र खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐलान किया कि 2030 अहमदाबाद कॉमनवेल्थ गेम्स में योगासन को भारतीय पारंपरिक मेडल स्पोर्ट के रूप में शामिल किया जाएगा। असल में मेजबान होने के नाते भारत के पास योग को शामिल करने का सुनहरा मौका मिला है। मेजबान देश को एक या दो पारंपरिक खेल शामिल करने का अधिकार होता है। भारत कुछ और स्वदेशी खेलों में कबड्डी, खो खो, मलखंब को भी शामिल करने पर भी विचार कर रहा है। यानी जब 2030 में अहमदाबाद में खेलों का महाकुंभ कॉमनवेल्थ होगा, तब पूरी दुनिया को भारत की इस प्राचीन विधा का नया रूप दिखेगा। इससे पहले देश में वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप होने जा रही है। अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप होगी, जिसमें 75 से ज्यादा देश शामिल होंगे। 12 स्पर्धाओं में 500 से ज्यादा प्रतिभागी होंगे। जूनियर, युवा और स्पेशल कैटेगरी भी होगी। मतलब ये हुआ कि जो लोग रोज सुबह पार्क में आसन लगाते हैं, वो अब कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडल जीतने का सपना देख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: हो गया इंस्टा स्टोरी का, उस कलाकार की इंस्टा रील आपको दिखाएंगे जो अभिनय की दुनिया में तो कमाल कर ही रहे हैं, साथ ही सोशल मीडिया पर अपने फैंस को हंसा रहे हैं। देखिए रवीना टंडन की फनी इंस्टा स्टोरी।
5: अगर कोई लड़का आपको लाइक कर रहा है तो अपने आप को हीरोइन मत समझो। ये सबको लाइक करते हैं, लड़कों में बीमारी होती है।
6: सोच रही हूँ किसी अननोन बंदे की पोस्ट पे जाकर ना 7-8 कमेंट एक साथ ही कर दूं कि तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, 7 रोने वाली इमोजीज लगा दूं, फिर वो जाने और उसकी बंदी जाने। हमें क्या।
1: इसी के साथ तमाम खबरों के बाद शुभ समाचार में आज के लिए बस इतना ही।
0: बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn. Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits to timeless favorites and new discoveries. It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं, अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
14: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
14: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
14: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
13: देश देख रहा है।
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Sage University, transforming your passion into profession.
0: रामनगरी में आज शक्ति उत्सव मां भगवती के मंदिर पर होगा ध्वजारोहण. करीब 3,500 महिलाओं की भागीदारी से संपन्न होगा आयोजन. हेमकुंड साहिब में भारी बर्फबारी. पूरे जोश और उत्साह के बीच सिख संगत पहुंच रही है धाम. अब तक 22,000 से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन. दिल्ली एनसीआर में आज तेज आंधी तूफान और बारिश की संभावना. मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट. 31 मई तक ऐसा ही रहेगा मौसम. दर्शकों को आज मनोरंजन का मेगा डोज. सिनेमाघरों में 9 नई फिल्में रिलीज. ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 5 नई फिल्में और सीरीज रिलीज. आईपीएल फाइनल के लिए आज आखिरी लड़ाई. क्वालिफाई टू में गुजरात और राजस्थान रॉयल्स के बीच होगी टक्कर. जीतने वाली टीम फाइनल में 31 मई को आरसीबी से भिड़ेगी.

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष का सबसे शुभ और सबसे पवित्र ग्रह है बृहस्पति, और आज हम आपको बताएंगे कि बृहस्पति के राजयोग कौन से हैं, और अगर बृहस्पति के राजयोग आपकी कुंडली में हैं तो इसका प्रभाव जीवन पर क्या है। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की, और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 29 मई 2026, दिन शुक्रवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि, प्रातः 9:50 तक। नक्षत्र है स्वाति नक्षत्र, प्रातः 10:38 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः 10:30 से दोपहर के 12 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 29 मई 2026, दिन शुक्रवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं वृषभ राशि में, बृहस्पति और शुक्र मिथुन राशि में, केतु सिंह राशि में, चंद्रमा तुला राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, और मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं मेष राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। तो आज हम बात कर रहे हैं बृहस्पति के राजयोगों के बारे में। बृहस्पति का पहला राजयोग कौन सा है और इसका प्रभाव क्या है। बृहस्पति का पहला और सबसे ताकतवर राजयोग है हंस योग। ये हंस योग बृहस्पति का पंच महापुरुष योग है। जब बृहस्पति कर्क राशि में हो, धनु राशि में हो या मीन राशि में हो और लग्न से केंद्र में बैठा हो तो हंस नामक पंच महापुरुष योग बन जाता है। अगर कुंडली में हंस योग है तो इससे व्यक्ति तपस्वी, विद्वान और ज्ञानी होता है, और हंस योग वालों को बिना प्रयास के जीवन में नाम, यश और सम्मान मिल जाता है। हंस योग वाले लोग राजनीति में, कानून में, शिक्षा में,
धर्म और ज्ञान के क्षेत्र में बहुत सफल होते हैं। और ये भी देखा गया है कि जिनकी कुंडलियों में हंस योग होता है उनके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा भी होती है। अगर आपकी कुंडली में हंस योग है तो आपको ध्यान रखना चाहिए, हमेशा अहंकार से बचाव करना चाहिए और ऐसे लोगों को हमेशा अपने खाने की आदत पर भी ध्यान देना चाहिए। हंस योग होने के नुकसान ये हैं कि व्यक्ति अहंकारी हो जाता है, जरूरत से ज्यादा खाता है और सेहत बिगाड़ता है। तो अगर आप अपने अहंकार पर और अपने खान पान पर काबू रखें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। बृहस्पति के अन्य राजयोगों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, स्वास्थ्य बेहतर होगा, धन की प्राप्ति होगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार के योग हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में आपको लाभ होगा, परिवार में व्यस्तता बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, महत्वपूर्ण काम अभी टाल दें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब बात करते हैं बृहस्पति के दूसरे राजयोग के बारे में। दूसरा राजयोग कौन सा है और इसका प्रभाव क्या है? बृहस्पति का दूसरा राजयोग है गज केसरी योग। अगर बृहस्पति और चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में बैठे हों तो गज केसरी योग कुंडली में बन जाता है। अगर कुंडली में गजकेसरी योग है तो ये सामान्य व्यक्ति को भी विशेष व्यक्ति बना देता है। गजकेसरी योग कर्क लग्न, वृश्चिक लग्न और मीन लग्न में ज्यादा प्रभावशाली होता है। जिनकी कुंडलियों में गज केसरी योग होता है, इस योग वाले लोग
शासन में और राजनीति में विशेष सफल होते हैं। और ये भी देखा गया है कि ऐसे लोग जीवन के जिस क्षेत्र में जाते हैं वहां पर बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं। गजकेसरी योग वाले लोग बड़ी छोटी जगह से उठ करके ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं और अपने क्षेत्र में एक बड़ा नाम बनते हैं, एक बड़ा व्यक्तित्व बनते हैं। अगर आपकी कुंडली में गजकेसरी योग है तो व्यक्ति को शिव जी की उपासना करनी चाहिए और सलाह लेकर अगर संभव हो तो पीला पुखराज धारण करना चाहिए, ऐसा करना बेहतर होगा। बृहस्पति के तीसरे राजयोग पर भी आगे बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, परिवार में व्यस्तता रहेगी, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सुधार होता जाएगा, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, रिश्तों की समस्याएं हल होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, काम का दबाव बढ़ सकता है, व्यर्थ की दौड़ भाग रहेगी, परिवार में विवादों से बचाव करें, सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब जानते हैं कि बृहस्पति का तीसरा राजयोग कौन सा है और इसका प्रभाव क्या है। बृहस्पति का तीसरा राजयोग है केंद्रस्थ बृहस्पति, यानी बृहस्पति अगर केंद्र में बैठा हो, लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम में या दशम में, तो ये भी एक तरीके का राजयोग है। बृहस्पति केंद्र में काफी ज्यादा मजबूत माना जाता है और उसमें भी अगर लग्न में बैठा हो, फर्स्ट हाउस में बैठा हो, तो बृहस्पति अत्यधिक शक्तिशाली हो जाता है। केंद्र में बैठा हुआ बृहस्पति अकेला कुंडली के तमाम दोषों को
नष्ट कर देता है। और केंद्र में बैठा हुआ बृहस्पति व्यक्ति की आयु लंबी कर देता है और व्यक्ति को ज्ञानी बना देता है। केंद्र में बैठा हुआ बृहस्पति जीवन की तमाम मुश्किलों से व्यक्ति की रक्षा करता है। ऐसा बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में है तो धर्म स्थानों पर जरूर जाएं। साथ ही साथ अगर नियमित रूप से तिलक लगाएं तो आपके लिए और भी ज्यादा उत्तम होगा। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, परिवार में शुभ कार्य होंगे, करियर में लाभ के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग बन रहे हैं। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, करियर में सफलता के योग हैं, लंबी यात्रा पर जा सकते हैं, परिवार में शुभ कार्य होगा। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की समस्या हल होगी, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन के लेन देन में सावधानी रखें, करियर में लापरवाही ना करें। सफेद मिठाई का अगर दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। देखिए, बृहस्पति के राजयोग आपको तभी फायदा पहुंचाएंगे जब आपका आचरण, आपका व्यवहार और आपका खान पान शुद्ध होगा। कुंडली में अगर बृहस्पति का राजयोग है, आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं, झूठ बोलते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो बृहस्पति का राजयोग आपको शुभ फल नहीं देगा। इसलिए अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति का राजयोग है तो आपको जीवन में पवित्रता और शुभता का पालन अवश्य करना होगा। तो आज हमने बात की बृहस्पति के राजयोगों के बारे में। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए क्या है आज का लकी टिप।

चाहते हैं तो रोज सवेरे शिव जी की पूजा करिए और पूजा के दौरान शिवलिंग पर अगर पीले फूल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 29 मई 2026 दिन शुक्रवार का सक्सेस मंत्र क्या है।

मिश्री का भोग लगाइए, घर से निकलते समय उसमें से थोड़ी सी मिश्री खा लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
1: Hot Mics with Billy Bush streaming on TuneIn, your front row seat to the American zeitgeist. Get engaged on sports, politics, entertainment, tech, pop culture, hosted by yours truly. It's funny, it's honest, provocative, unfiltered takes and real talk, no fluff, with guests like Megyn Kelly and Dr. Phil, Candace Owens, Jack Osborne, Will Arnett, Charlie Sheen, all engaging personalities who actually say what everyone else is afraid to. On the go, catch the show live or on demand on the TuneIn app. At home and want to listen on your connected device, just say, play Hot Mics with Billy Bush on TuneIn. If you missed the live show or want to catch up, listen on demand with the Hot Mics with Billy Bush podcast, available whenever you want.
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
3: खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: अनाथों के नाथ है ये, जिसका कोई नाथ ना हो उसको सनाथ करने वाले नाथ का नाम बद्रीनाथ है। अनाथ को सनाथ करने का नाम अगर कोई इस पृथ्वी पर है वो बद्रीनाथ है। और कितना अद्भुत संयोग है, बद्रीनाथ और बागेश्वर नाथ दोनों जुड़े हैं। हर बार ना दोनों मिल जाते हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पर। चारों युगों में बद्रीनाथ की महिमा, सतयुग में मुक्ति प्रदा नाम से जाना, सतयुग में भी बद्रीनाथ तीर्थ था इसे मुक्ति प्रदा तीर्थ के नाम से जाना, त्रेता युग में भी बद्रीनाथ जाना गया योग सिद्ध क्षेत्र के नाम से जाना गया, द्वापर में भी बद्रीनाथ को जाना गया पर द्वापर में मणिभद्र के नाम से जाना गया, और कलयुग में बद्रीनाथ के नाम से जाना जाता है। नाम एक ही है पर अच्छा बद्रीनाथ क्यों नाम पड़ा, तो शास्त्रोक्त तो बहुत लोगों को पता है कि बद्री के पेड़ थे। हम आज ऐसी छोटी छोटी खोज कर रहे थे, हमको एक पुस्तक छोटी सी हाथ लगी और ये पुस्तक कोई विदेशी इतिहासकार की हमको हाथ में लगी, वो पुस्तक बड़ी अद्भुत थी। उसने उस पुस्तक का नाम था द हिमालयन गजेटियर, इसके लेखक हैं एडविन टी एडकिंसन। इन्होंने बहुत पहले यात्रा की थी हिमालय की और उस पुस्तक का नाम ही लिखा द हिमालयन गजेटियर। इस पुस्तक में बद्रीनाथ का उल्लेख उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि मैं जब यहां आया तो मैं आश्चर्यचकित रह गया कि इतनी ऊंचाई पर, लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर हजारों बद्री के पेड़ हैं। पर आपको समझ में नहीं आया होगा, बद्री का पेड़ मतलब बेर का पेड़। अपने यहां बेर चलता ना, सबरी के जूठे बेर, उस बेर उसका नाम बद्री है। संस्कृत में उसे बद्री कहते, बद्री फलम कहते, तो संस्कृत में वो बद्री फल है, उसी के पेड़ का नाम बद्री है। उस पेड़ के बहुत सघन जन बन है था यहां, तो वो बन क्यों था और बद्रीनाथ क्यों नाम पड़ा। एक बार क्या हुआ, लड़ाई है घर घर की होती रहती, लक्ष्मी जी रूठ गई भगवान से। अच्छा, तो जो विवाहित हैं वो अनुभवशील होंगे, अपनी तो कुछ ऐसा है नहीं, अपन को पता नहीं कि लड़ाई कितनी जल्दी होती है। बाकी अहलूवालिया जी विवाहित हैं, उनको परिचय था, सब लोग बहुत से लोग विवाहित बैठे हैं, उनको अनुभव भगवान की नोक झोंक है। भगवान के तो विवाद में भी कोई ना कोई संवाद छिपा रहता है। ओ, लक्ष्मी जी ने कहा कि हम जा रहे हैं अपने मायके, आप बने रहो शेष नाम की सैया पर। भगवान ने कहा तुम मायके चलो तो हम जोगी बनेंगे, तपस्या करेंगे। प्रायः बहुत से लोगों को शादी के बाद संन्यास बहुत जगता है, बहुत ये बहुत हमने अनुभव लोगों के खोजे हैं अनुभव संन्यास। तो लक्ष्मी जी नाराज हो गई, वो चली गई। कथा कहती है, लोगों के मुंह से हमने सुना, संतों के मुंह से सुना कि भगवान बालक का रूप धारण करके इस क्षेत्र में आए, रोने लगे नारायण भगवान, रोने लगे। इस क्षेत्र में भगवान शिव और पार्वती विराजमान थे, पार्वती ने बालक को रोते देखा, गोद में ले लिया। क्या बात, क्यों रो रहे हो, कौन हो तुम, वो सब बाद में बताएंगे, पहले हमारे चुप कराने का उपाय पूछो। हाँ, उपाय बताओ। उस बालक ने कहा मां आपकी कृपा हो तो ये क्षेत्र हमको तपस्या के लिए दे दो, आप दोनों कहीं और चले जाओ। शंकर जी तो सब समझते थे हमारे प्रभु हैं, ठीक है हम कहीं और जाते हैं। और वो भगवान महादेव इस क्षेत्र को छोड़कर केदारनाथ चले गए। वो बालक यहां विराजमान, वो बालक कोई और नहीं, हमारे श्री नारायण प्रभु जी विराजमान हो गए। बर्फ की बूंदें गिरी, खूब तेज बर्फ गिरी, और जब बर्फ गिरी इधर लक्ष्मी जी को खबर लगी कि स्वामी जी गायब, देखा जाए कि कहां गायब। स्वामी जी हिमालय में तपस्या करते हैं, और जब तपस्या को देखा, मूर्तिमान नारायण को देखा, जब योग सिद्ध में उस भाव में देखा, लक्ष्मी जी के अंदर भी भाव जग गया कि हमारे प्रभु इतना कष्ट उठा रहे, तो वो भी वहां पर सोचने लगी मैं करूं क्या, बर्फ टप टप टप टप गिर रही है, इनकी साधना में कोई भंग ना पड़े। पत्नी का अर्थ भी वही है, पत्नी वही है जो अपने पति को पतन से बचाए, पत्नी का अर्थ है जो अपने पति को पतन से बचाए, पत्नी का यही स्वभाव होता। पर धन्य माँ तो माँ है, ये तो लीला है। माँ लक्ष्मी ने सोचा करूं क्या, मन में भाव आया मैं कुछ बनकर खड़ी हो जाऊं ताकि इनके ऊपर बर्फ की बूंद ना गिरे, और वो बदरी का पेड़ बनकर, बेरी का पेड़, बेर का पेड़ बनकर के वो खड़ी हो गई। बहुत वर्ष बाद भगवान की तपस्या पूर्ण हुई तो नेत्र खोला तो देखा, अरे देवी तुम? जी महाराज, आप आ गए थे, मैं भी पीछे पीछे आ गई, आपके कष्ट को नहीं देख पाई, बहुत बर्फ की बूंदे गिर रही थी इसी जगह पर। तो भगवान ने कहा, देवी हमने तो तपस्या की पर तुम्हारी भी कम तपस्या नहीं थी, जाओ आज के बाद इस तीर्थ स्थल पर हम दोनों की पूजा, हमारी पूजा तुम्हारे साथ होगी, लोग हमको बद्रीनाथ कहेंगे, और नाम पड़ गया बद्रीनाथ। इसीलिए हमने आते ही कथा के संकीर्तन में कहा था, जो आए बद्री वो कभी ना रहे दरिद्री। लेकिन पूज्य महाराज जी अद्भुत बात बोलते हैं, भैया जो आए बद्री वो ना आए ओदरी, जो बद्रीनाथ आता है वो कभी गर्भ में नहीं जाता है। बुरा मत मानना, हम प्रातः काल विचार कर रहे थे बद्रीनाथ पर, तब बद्रीनाथ के दर्शन का फल कितना है महाराज जी ने तो बता ही दिया, हमें कहने की आवश्यकता नहीं। पर कथा के पहले हम आपको बताएं, जहां हम बैठे हैं, जितने लोग बैठे हैं, आप लोग बहुत 3 दिन सावधान रहना, जो जिंदगी तुम आज से ठीक परसों तक जीते रहे वो जिंदगी मत जीना, कुछ अलग जीना। आप तो कमरे में घर जाकर खूब मोबाइल चलाते रहे ना, इन 3 दिनों कोशिश करना कम से कम मोबाइल चलाना, भजन ज्यादा करना। भूमि में विश्राम का तो नहीं कह सकते, ठंड बहुत है, पर कोशिश हो सके विश्राम भूमि में करना, और जो महात्मा दिखाई दे उसे नारायण समझकर दूर से दंडवत प्रणाम करना। नारायण समझना, वो नारायण छूना नहीं, दूर से प्रणाम करना। और बद्रीनाथ भगवान में जब दर्शन करने जाना तो महाराज जी ने दर्शन का क्रम बताया, वहां पर जो रावल जी है ना, आदि जगतगुरु शंकराचार्य की परंपरा के परिवार के ही वंशज यहां पर पुजारी बनते हैं, उनको रावल जी कहा जाता है। और जो रावल जी होते हैं ना, जो भगवान का कल सिंगार उतार रहे थे, वो 6 महीने तक यहां नदी पार नहीं करते, नदी के उस पार ही रहते, ब्रह्मचर्य का कठोर पालन करते, स्पर्श सेवा में रहते, बहुत ज्यादा किसी को स्पर्श नहीं करते, बचते हैं, ऐसी कठोर साधना, वो भी जीते जागते। कभी कभी हमको तो कल जब हम उनके दर्शन कर रहे थे, प्रणाम कर रहे थे, हमको तो बैठे बैठे खूब लग रहा था जैसे उद्धव जी ठाकुर की सेवा कर रहे हैं। तीर्थ में, गुरु की शरण में, महान

तीर्थ स्थान रील का विषय नहीं है, रियल का विषय है। मंदिर में आप दर्शन करने आए तो सिर्फ दर्शन करो। गुरु ने पूछा शिष्यों से, एक चिड़िया पेड़ के ऊपर बैठी हुई थी, अपने गुरु ने शिष्यों से पूछा तुम्हें क्या दिखाई देता। किसी ने कहा मुझे चिड़िया दिखाई देती, किसी ने कहा टहनी दिखाई देती, किसी ने कहा चिड़िया के पैर दिखाई देते, लेकिन बहुत बेहतरीन शिष्य ने कहा गुरुदेव मुझे तो सिर्फ इस चिड़िया की आंख दिखाई देती, मेरी लक्ष्य आंख है। वैसे ही भक्त का लक्ष्य भगवान होना चाहिए, साधक का लक्ष्य साध्य होना चाहिए। इसलिए आप जितने भी बद्रीनाथ में आए, यहां आपकी नजर सिर्फ नारायण पर होनी चाहिए। एक तरफ नारायण पर्वत है, दूसरी तरफ नर पर्वत है। नर और नारायण धर्म के दोनों पुत्र यहां पर तपस्या कर रहे हैं। तो पहला फल यह है कि अगर जो भी दर्शन करता है उसे कभी गर्भ में नहीं जाना पड़ता। बद्रीनाथ भगवान का दूसरा फल दर्शन का श्लोक आया।

शास्त्र कहते हैं जो बद्रीनाथ भगवान के दर्शन करता है अन्यत्र तीर्थ में मरने के बाद मुक्ति होती है, लेकिन बद्रीनाथ में तो दर्शन मात्र से मुक्ति प्राप्त होती है, मात्र दर्शन से। पुरानी कहावत है बिना मरे मुक्ति नहीं, लेकिन ये दर्शन शास्त्र की मुक्ति है। जो दार्शनिक होता है उस दार्शनिक की दृष्टि से कभी पूछो कि मुक्ति का अर्थ क्या है, मुक्ति का अर्थ मरना नहीं है, मुक्ति का अर्थ है कि जीते जी मुक्त हो जाना, ये बद्रीनाथ से प्राप्त होता है। दूसरा लाभ है कि हम दर्शन मात्र से मुक्ति पा सकते हैं। बद्रीनाथ भगवान का तीसरा दर्शन का लाभ, आयु में वृद्धि। जितने देर तक आप यहां रहेंगे आपकी संसारिक आयु की गणना नहीं की जाएगी, ये आयु की वृद्धि है, ये तीसरा लाभ। चौथा लाभ, नाम जप का हजार गुना फल। भगवान महाराज जी, पूज्य बद्रीनाथ वाले महाराज जी अभी मंच पे कह रहे थे सहस्त्र गुना, नाम जप का यहां हजार गुना फल है। आपने एक बार कहा राम, 1000 बार बन गया काम, आपकी पूरी पूरी माला 1000 हो, 1000 मन का हो गए, 1000 मन का नाम जब आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो चुका है मात्र एक बार कहने से, यहां का फल है। ये कैसे बिना, आहा, नर नारायण धर्म के दो पुत्र भगवान प्रकट भये धर्म के यहां पर नर नारायण के रूप में। क्यों प्रकट भये? एक राक्षस था असुर, उसका नाम था सहस्त्रदेव, उसको 1000 कवच प्राप्त थे भगवान सूर्य से, सूर्य की उपासना की उसने, भगवान सूर्य ने आशीर्वाद दिया जाओ तुमको 1000 कवच प्राप्त हो। उसका असली नाम दंभोद्भव था, लेकिन उसको बाद में सहस्त्रदेव के नाम से जाना गया क्योंकि सहस्त्र कवच थे, 1000 कवच। वह कवच लेकर के विचरण करता, जब 1000 कवच प्राप्त हो गए तो देवताओं को परेशान करने लगा, अभिमान आ गया। जब अभिमान आया और देवों को परेशान करने लगा तो देवताओं ने भगवान की स्तुति की, शांताकारं भुजगसेनं, हे भगवान आपकी जय हो, हम बड़े झंझट में पड़े हैं, ये सहस्त्रदेव सहस्त्र कवच प्राप्त करके सहस्त्रदेव दंभोद्भव नाम का असुर हम लोगों को बड़ा परेशान कर रहा। भगवान ने व्योम वाणी में आकाशवाणी में कहा देवताओं हम नर नारायण बनकर के प्रकट होंगे पृथ्वी पर और उसका उसके कवचों का भेदन करेंगे। तो देवता उन कवचों का भेदन क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि उसको 1000 कवच तो प्राप्त थे, पर एक और वरदान प्राप्त था कि जो 1000 वर्ष तक तपस्या करेगा वो केवल उसके एक कवच का भेदन कर पाएगा। अब कौन मारे, बड़ी आपत फंस गई। तब भगवान नर नारायण प्रकट भए, वह बद्रीनाथ आए और बद्रीनाथ में एक बार नाम जप का फल 1000 बार है। एक तपस्या करें और दूसरे उसके कवच का भेदन करने जाएं, फिर वो आ जाएं, नारायण आ जाएं तो नर जावे, नर आ जावे तो नारायण।

0: किताब है और एक एक करके 999 कवचों का जब भेदन कर दिया, वह दंडवत प्रणाम करता हुआ सूर्य देव की शरण में चला गया। इस कथा से इति सिद्धम सिद्ध होता है कि बद्रीनाथ भगवान की भूमि पर जो भी एक बार नाम कीर्तन करता है उसको हजार बार नाम कीर्तन का फल प्राप्त हो जाता है।
1: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits to timeless favorites and new discoveries, it's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
2: इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
9: मैं पिछले एक साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
7: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है, अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
10: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है, अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
6: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है, उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
11: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं, और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
12: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है, डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
6: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
13: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
6: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है, और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
14: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था, और आज की स्थिति देखते हैं आप। ये देखिए, इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है, जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
6: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
15: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्परेरी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
16: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति अभी?
15: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना कम है डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूं हॉस्पिटल में।
6: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
13: दो साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अग्ना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
6: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
11: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है, मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है, इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
6: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं, लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है। यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
17: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था। होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे सब ट्राई कर लिया, मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
11: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो, मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
18: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी, क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवा लें इस उम्र में, फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ, और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
19: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
6: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
20: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years back when we shifted to India, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, we started using it, मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
6: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
21: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है, और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए। अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
6: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
14: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है, मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना, ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक करता है, और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेंपरेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेंपरेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
0: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में, डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
1: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ, और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था, पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, बर्फ में भी चल लेता हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
6: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
22: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है, इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
23: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी, पर जब से ये फौजी 360 लिया है कमर में घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ, अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
24: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
6: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
24: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है, और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दम हो, आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में, यानी घुटने, कमर, कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
6: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है, और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
1: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
10: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
6: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
13: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
6: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते हैं।
7: गुडनी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country?
3: Right now, get a new 2026 Subaru Forester with 1.9% APR financing for up to 60 months.
2: Easy to deal with, easy to get to. Byers Airport Subaru.
4: Buy the airport!
3: See dealer for details. Offer ends 6/1/26.
5: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
8: TuneIn has all of your favorite audio in one spot, so you can enjoy listening to anything, anywhere, from breaking news...
25: After multiple assassination attempts, they can't even get...
26: They're reliable.
27: Always when I need them.
8: ...to live sports action.
28: One-hand jam by LeBron on the break!
29: That's another three, Steph Curry!
8: And your favorite music.
30: Well, the dawn begins to crack.
8: TuneIn has got it all. Discover new stations in the app, or ask your device to play TuneIn.
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
31: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
32: और दुर्भाग्य कहता है
31: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
33: अविश्वास में विश्वास बसता है,
31: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
31: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
34: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
31: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
35: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
36: रामनगरी में आज शक्ति उत्सव, मां भगवती के मंदिर पर होगा ध्वजारोहण, करीब 3,500 महिलाओं की भागीदारी से संपन्न होगा आयोजन। हेमकुंड साहिब में भारी बर्फबारी, पूरे जोश और उत्साह के बीच सिख संगत पहुंच रही है धाम, अब तक 22,000 से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। मौसम को लेकर आईएमडी ने जारी किया बुलेटिन, इस साल देश में सामान्य से कम रहेगा मॉनसून, सिर्फ 90% बारिश का अनुमान, मध्य और दक्षिण भारत में कम बरसेंगे बादल। बिहार में मौसम का बदला मिजाज, पटना समेत कई जिलों में जमकर बरसे बादल, कई जगहों पर तेज आंधी तूफान। दर्शकों को आज मिलेगा मनोरंजन का मेगा डोज, सिनेमाघरों में 9 नई फिल्में रिलीज, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर 5 नई फिल्में और सीरीज रिलीज। आईपीएल फाइनल के लिए आज आखिरी लड़ाई, क्वालिफायर टू में गुजरात और राजस्थान रॉयल्स के बीच होगी टक्कर, जीतने वाली टीम फाइनल में 31 मई को आरसीबी से भिड़ेगी।
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
36: अयोध्या के श्री राम मंदिर में एक बार फिर उत्सव की तैयारी, आज मां भगवती मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण का भव्य कार्यक्रम। शाम 6 बजे शुरू होगा मां भगवती मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण समारोह, 1 घंटे चलेगा दिव्य अनुष्ठान। महिलाएं संपन्न करेंगे ध्वजारोहण की पूरी प्रक्रिया, साध्वी रितंबरा करेंगे ध्वजारोहण, सीआरपीएफ की महिला जवान रस्सी खींचकर पूरा करेंगे अनुष्ठान। आयोजन में करीब 3,500 महिलाओं के शामिल होने की संभावना, दिखेगा आध्यात्म श्रद्धा और मातृशक्ति का अद्भुत संगम। कार्यक्रम के लिए मंदिर परिसर की विशेष सजावट, देश भर से मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी की महिलाएं अयोध्या पहुंची। अयोध्या में भक्ति और अध्यात्म का भव्य संगम, श्री झालरिया मठ में शुरू हुआ 7 दिवसीय भव्य श्री पुरुषोत्तम मास महोत्सव। तीन जून तक चलेगा दिव्य धार्मिक आयोजन, कलश यात्रा के साथ महोत्सव का शुभारंभ, वैदिक मंत्रोच्चार से पूरा वातावरण हुआ भक्तिमय। 225 कुंडीय श्री महालक्ष्मी महायज्ञ बना मुख्य आकर्षण, श्री भगवत कथा में गूंज रहे प्रेरणादायक प्रसंग, ध्रुव चरित्र से लेकर श्री कृष्ण जन्मोत्सव तक का वाचन। सहस्त्र कला अभिषेक और लक्षार्चना से बड़ी आध्यात्मिक ऊर्जा, देश विदेश से हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे अयोध्या, 300 साल पुरानी परंपरा को दिया जा रहा है विस्तार। राम मंदिर के बाद अयोध्या बनी धार्मिक आयोजनों का बड़ा केंद्र, श्रद्धालुओं के लिए करीब 4,000 कमरों की व्यवस्था की गई। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए रामलला के दर्शन। राम मंदिर परिसर के बाहर सुबह से लगी भक्तों की लंबी कतार, भक्तों ने लगाए जय श्री राम के जयकारे। चित्तूर के विनायक स्वामी मंदिर में उमड़ा भक्तों का मेला, विधि विधान से श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। गर्मी की छुट्टियों के चलते बढ़ी श्रद्धालुओं की संख्या, सुबह से लगी भक्तों की लंबी कतारें। भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने की भंडारे का आयोजन, बड़ी संख्या में भक्तों ने किए प्रसाद ग्रहण। शिरडी के साई बाबा को 3,507 किलो केसर आम का चढ़ावा, पुणे के भक्त ने अर्पित किए आम। 60,000 भक्तों का आम रस के प्रसाद से मुंह हुआ मीठा, आम के सुगंध से महका मंदिर परिसर। किसान करगल भाई पिछले 6 वर्षों से आम की पहली खेप, साई चरण को करते आ रहे हैं धान, भक्त ने कहा सब बाबा की देन है। भक्तों ने लिया आमरस का आनंद, कहा पहली बार हमें आमरस मिला है। प्रसादालय में प्रतिदिन हजारों भक्त करते हैं प्रसाद ग्रहण, प्रसाद में 2 सब्जियां, कड़ी, चावल और चपाती दी जाती है। उज्जैन में बाबा महाकाल की उतारी गई भस्म आरती, भक्तों ने लगाए हर हर महादेव के जयकारे। अभिषेक के बाद दूध दही घी शहद और फूलों के रस से किया गया पूजन। रजत चंद्र त्रितु त्रिशूल मुकुट और आभूषण अर्पित कर किया गया दिव्य श्रृंगार भांग चंदन ड्राई फ्रूट और भस्म का लगाया गया फूल।

हरिद्वार पहुंचे पूर्व क्रिकेटर और पूर्व सांसद नवजोत सिंह सिद्धू, देखने के लिए लगी भीड़। नवजोत सिंह सिद्धू ने मां माया देवी मंदिर और भैरव मंदिर में की पूजा अर्चना, भगवान का लिया आशीर्वाद। चारधाम यात्रा में भारी बारिश के बीच भी उमड़ा आस्था का जनसैलाब, अब तक 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। बाबा केदार के दर्शनों के लिए पहुंचे सबसे ज्यादा भक्त, आंकड़ा पहुंचा 9 लाख के पार। बद्रीनाथ धाम को लेकर भी भक्तों में जोरदार उत्साह, अब तक करीब 7,25,000 से ज्यादा लोगों ने किए दर्शन। यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम में लगा भक्तों का मेला, अब तक दोनों जगह पर 8.5 लाख भक्तों ने लगाई हाजिरी। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे में भी भक्तों का लगा मेला, अब तक 22,000 से ज्यादा लोगों ने किए दर्शन। हेमकुंड साहिब का प्रकृति ने किया श्वेत श्रृंगार, कपाट खुलने के 7 दिन बाद ही यहां जोरदार बर्फबारी का दौर जारी। हेमकुंड साहिब में चारों ओर बिछी बर्फ की सफेद चादर, मई की गर्मी के बीच श्रद्धालु बर्फबारी का ले रहे हैं आनंद। बर्फबारी पर आस्था भारी, बड़ी संख्या में भक्तों ने गुरुद्वारा साहिब पहुंचकर की अरदास। बर्फबारी के चलते पवित्र सरोवर का पानी और भी ज्यादा हुआ ठंडा, श्रद्धालु सरोवर में लगा रहे डुबकी। श्रद्धालुओं को वापस भेजा जा रहा है बेस कैंप घाघरिया, एसडीआरएफ और गुरुद्वारा सेवादार सुरक्षा का रख रहे हैं खास ध्यान।

0: रेवाड़ी में बदला मौसम का मिजाज, जोरदार बारिश के साथ गिरे ओले। जोरदार बारिश से तापमान में आई गिरावट, लोगों को गर्मी से मिली राहत। अमरावती में नौतपे की तपिश के बीच राहत की फुहार, बारिश संग जमकर गिरे ओले। भारी बारिश और ओले गिरने से सड़कों पर जल भराव, यातायात हुआ प्रभावित। श्रीगंगानगर में भी बारिश के साथ जमकर गिरे ओले, तापमान में आई भारी गिरावट। झांसी में मौसम ने बदला मिजाज, कई इलाकों में बारिश के साथ गिरे ओले। बारिश और ओले गिरने से तापमान में आई गिरावट, लोगों को गर्मी से मिली राहत। अयोध्या में सुबह सुबह हुई जोरदार बारिश, तापमान में आई भारी गिरावट। वाराणसी में भी झमाझम हुई बारिश, लोगों को भीषण गर्मी से फिलहाल मिल गई राहत। धौलपुर में भी मौसम ने ली करवट, झमाझम हुई बारिश। सुकमा में भी मौसम का बदला मिजाज, कई इलाकों में हुई आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश। जोरदार बारिश से सड़कों पर गिरे पेड़, यातायात भी प्रभावित। दार्जिलिंग में मौसम ने ली करवट, जमकर हुई बारिश। भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, पानी के तेज बहाव में बही बाइक। देहरादून के कई इलाकों में बिजली के साथ हुई जोरदार बारिश, गर्मी से लोगों को मिली राहत। पटना में सुबह सुबह बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हुई जोरदार बारिश। भारी बारिश से तापमान में आई भारी गिरावट, लोगों को मिली गर्मी से राहत। उत्तर भारत में गर्मी के चलते पर्यटकों से गुलजार हुआ श्रीनगर, बड़ी संख्या में श्रीनगर पहुंच रहे सैलानी। सैलानी शिकारा राइड का ले रहे आनंद, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम। सैलानियों की बढ़ती संख्या से मसूरी में लगा वाहनों का लंबा जाम, रिंगती दिखी गाड़ियां। कनाडा के पंजाबी ने रच दिया इतिहास, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले पहले कनाडाई पंजाबी बने अजय पाल सिंह धालीवाल। मैराथन धावक होने के साथ साथ आयरन मैन का भी अजय पाल सिंह धालीवाल जीत चुके हैं खिताब, दुनिया के कई प्रसिद्ध पहाड़ पर भी कर चुके हैं चढ़ाई। सरिस्का में गूंजी किलकारी, बागिन ST-22 ने 3 शावकों को दिया जन्म, बाघों की संख्या हुई 55। नागपुर में कुएं में गिरा बाघ, वन विभाग की टीम ने बाघ का किया सफल रेस्क्यू। अगरतला में राज्यपाल इंद्र सेना रेड्डी नल्लू ने जनजत्य गरिमा उत्सव 2026 का किया उद्घाटन, डिजिटल वन अधिकार अधिनियम का भी किया शुभारंभ।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम।
2: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है। और सबसे ज्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयां खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूँ कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है बादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है? तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा, ये कोई मामूल। लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाई और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाई और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सुरनकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणु रोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लैटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक। चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है, यह एक नेचुरल लेग्जेटिव है जो लैटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरनकंद। यह है सूरनकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास। अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में, और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालु। लज्जालु पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर ये काम करता है। इसके बाद में है कचनार। कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है। वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में, ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन। यह है इंद्रायन की जड़। इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads.
5: Thank God I get to wake up.
4: And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
6: Hey, it's Harry Douglas from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
7: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
6: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of the action.
7: They score!
6: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
1: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
9: ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
0: रामनगरी में आज शक्ति उत्सव, मां भगवती के मंदिर पर होगा ध्वजारोहण, करीब 3,500 महिलाओं की भागीदारी से संपन्न होगा आयोजन। हेमकुंड साहिब में भारी बर्फबारी, पूरे जोश और उत्साह के बीच सिख संगत पहुंच रही है धाम, अब तक 22,000 से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। मौसम को लेकर IMD ने जारी किया बुलेटिन, इस साल देश में सामान्य से कम रहेगा मॉनसून, सिर्फ 90% बारिश का अनुमान, मध्य और दक्षिण भारत में कम बरसेंगे बादल। बिहार में मौसम का बदला मिजाज, पटना समेत कई जिलों में जमकर बरसे बादल, कई जगहों पर तेज आंधी तूफान। दर्शकों को आज मिलेगा मनोरंजन का मेगा डोज, सिनेमाघरों में 9 नई फिल्में रिलीज, OTT प्लेटफॉर्म्स पर 5 नई फिल्में और सीरीज हुई रिलीज। IPL फाइनल के लिए आज आखिरी लड़ाई, क्वालिफायर 2 में गुजरात और राजस्थान रॉयल्स के बीच होगी टक्कर, जीतने वाली टीम फाइनल में 31 मई को RCB से भिड़ेगी।

नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और हमारे स्पेशल शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, आज हम बात करने जा रहे हैं देश के पहाड़ी इलाकों के जंगलों में लगी आग को बुझाने में जुटे जवानों की। जंगलों में आग धधक रही है तो एयरफोर्स, फायर ब्रिगेड और वन विभाग के जवान आग को बुझाने और जंगलों को बचाने में जुटे हुए हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं।

इन इलाकों में तमाम जगहों पर आग लगने की घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें जान और माल दोनों का ही नुकसान हुआ है। लेकिन अब उम्मीद ये की जा रही है कि ये आग बुझ सकती है, क्योंकि पहाड़ों पर बारिश का दौर शुरू हो गया है। आज आपको विस्तार से बताएंगे कि पहाड़ी इलाकों के जंगलों में आग आखिरकार क्यों लगती है और इसे रोकने का उपाय क्या है। जंगल में लगी आग न सिर्फ आर्थिक तौर पर चोट पहुंचाती है, बल्कि पर्यावरण को भी काफी नुकसान पहुंचा देती है। जो स्थानीय लोग जंगल से जुड़े हुए रहते हैं, उन्हें भी बड़ा घाटा होता है। आज आपको दिखाएंगे कि कैसे उत्तराखंड में महिलाओं की टीम ने आग से दो दो हाथ किए हैं और उसे बढ़ने से रोक दिया है। आपको इंडियन एयरफोर्स का ऑपरेशन भी दिखाएंगे। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर ने किस तरह से हिमाचल में आग पर काबू पाया, ये भी आपको दिखाएंगे। बस आप बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले आपको दिखा देते हैं कश्मीर के रजौरी और रामबन में किस तरह जंगलों में आग लगी है। रजौरी इलाके में अभी तक 12 जगहों से आग लगने की जो घटनाएं हैं, उसकी जो खबर है वो सामने आई है। खासतौर से नौशहरा, सुंदरबन और डूंगी इलाकों में जंगलों का बड़ा हिस्सा धू धू कर जलने लगा। दो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पहाड़ी इलाकों में जो जंगल है उसमें आग लग गई है, उसकी जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। अब देखिए, इसकी सूचना मिलने पर वन विभाग और फायर डिपार्टमेंट ने मोर्चा संभाल लिया है। वन विभाग और फायर डिपार्टमेंट की टीमें तमाम संवेदनशील इलाकों में तैनात कर दी गई है और दिन रात आग पर काबू करने के लिए कोशिशें लगातार चल रही हैं। इन इलाकों में रहने वाले लोगों से प्रशासन ने अलर्ट रहने की अपील भी कर दी है और कहीं भी आग लगने की भनक मिले तो तत्काल जानकारी देने को भी कहा गया है, ताकि आग पर समय रहते काबू पाया जा सके। लोगों से ये भी अपील की गई है कि वो जलती हुई सिगरेट बीड़ी ना फेंकें और ना ही जंगली इलाकों में आग लगाएं, क्योंकि शुष्क मौसम और तेज हवाओं के कारण आग लगने का खतरा बढ़ रहा है। प्रशासन ने समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए। उधर हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में लगी आग चिंता बढ़ाने वाली है। देखिए, कसौली के जंगलों में आग लगी हुई है, जिसके पास ही भारतीय वायुसेना का स्टेशन है। इसीलिए आग पर काबू पाने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टरों ने उड़ान भरी और बैम्बी बकेट का इस्तेमाल करके हुए जंगलों पर बरसात करती है। हालांकि हिमाचल में आग अभी भी पूरी तरीके से बुझ नहीं पाई है, लेकिन प्रशासन के साथ इंडियन एयरफोर्स ऑपरेशन के लिए मुस्तैद है और एयरफोर्स के जवानों ने किस तरह से देवदूत के समान मोर्चा संभाला, ये जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट।

अगर मिशन पर एयरफोर्स के धुरंधर हो तो कामयाबी की गारंटी है। देखिए कैसे हेलीकॉप्टर ने सुखना लेक से बाम्बी बकेट में पानी निकाला और लेकर उड़ चला कसोली के जंगलों की ओर, जहां भीषण आग लगी है। ठीक जलते हुए जंगल की तरफ एक साथ हजारों लीटर पानी ऐसे गिरा जैसे बारिश हुई हो। ये तस्वीर है हिमाचल के कसौली की, जहां जंगल में लगी आग बुझाने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने मिशन शुरू किया। झील से करीब 15 फेरों में 40,000 लीटर से ज्यादा पानी निकाला गया और उसे आग पर बरसाया गया, और इस तरह आग पर काबू पाने में एयरफोर्स कामयाब हुई। हालांकि गर्मी की वजह से जंगल में लगी ये आग फिर सुलग उठी और फैलने लगी है, पर एयरफोर्स के साथ प्रशासन इसे बुझाने के लिए मुस्तैद है। कोशिश की जा रही है कि आग का दायरा न फैले। सोलन के क्यारी घाट गांव में कंडा घाट के जंगल भयानक आग से जल रहे हैं और धुएं का गुबार सैकड़ों फीट ऊंचाई तक नजर आ रहा है। इस साल राज्य के 11 आरक्षित वन क्षेत्रों में इस वर्ष अब तक 248 घटनाएं दर्ज की गई हैं। इनमें से 241 घटनाएं 15 अप्रैल से 27 मई के बीच यानी गर्मी में दर्ज की गई हैं। मंडी वन क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ है, जहां पिछले दो महीनों में ही 81 जंगल में आग लगने की घटनाएं दर्ज की गई हैं। धर्मशाला वन क्षेत्र में 59 घटनाओं के साथ दूसरा सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है। सोलन का इलाका जिसमें कसौली के जंगल शामिल है, वहां आग लगने की 9 बड़ी घटनाएं हुई हैं। ये आग इतनी भयानक है कि आग बुझाने के अभियान में वायुसेना को उतरना पड़ा। आपको बता दें कि कसौली के जंगलों की सीमा वहां मौजूद वायुसेना स्टेशन से लगती है। हिमाचल के जंगलों में आग की चुनौती कितनी बड़ी है इसका

0: अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी तक करीब 3000 हेक्टेयर जंगल जल चुका है, जिससे लगभग 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। और अगर बात पिछले 10 साल की करें तो आग लगने की करीब 15000 घटनाओं में 23000 हेक्टेयर से ज्यादा जंगल प्रभावित हुए हैं। ऐसे हालात में सरकार और स्थानीय लोग मिलकर आग की घटनाओं को रोकने में जुटे हैं। संवेदनशील इलाकों में स्टाफ अलर्ट है। मंडी और सुरमौर जैसे इलाकों में फ्रेंड्स की मदद से एक परियोजना की तैयारी है, जिसके तहत आग बुझाने में मदद मिलेगी। साथ ही शक्तिशाली कैमरों से लैस ड्रोन खरीदा जा रहा है, जो जंगल पर नजर भी रखेंगे और आग लगाने वालों की पहचान भी करेंगे। फिलहाल उम्मीदें बारिश से हैं। हिमाचल में बारिश का अलर्ट है और माना जा रहा है कि भरपूर बारिश हुई तो ये आग जल्दी बुझ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: देखिए, बड़ा सवाल ये है कि पहाड़ी इलाकों के जंगलों में आखिर आग लगती क्यों है? क्योंकि जब हम आग लगने के कारणों को समझ लेंगे, तभी इस बात पर भी विचार किया जा सकता है कि इस आग को कैसे रोका जा सकता है, जंगलों को कैसे बचाया जा सकता है। क्योंकि जंगलों का होना हम सभी के लिए बहुत जरूरी है, ये बात तो आप सभी जानते हैं, तभी तो पर्यावरण सुरक्षित रह सकेगा। तो आपको बता देते हैं कि आखिर जंगलों में आग लगती क्यों है और कैसे लगती है। देखिए, माना जाता है कि तेज हवाओं के कारण पेड़ों की टहनियों के आपस में रगड़ खाने से चिंगारी निकलती है, जो तेज लपटों में बदल सकती है। इसके अलावा ज्यादातर ऐसे भी होता है कि मानवीय लापरवाही के कारण जंगलों में आग लग जाती है, जो फैलती है तो उस पर काबू पाना भी काफी मुश्किल हो जाता है। मानवीय लापरवाही का मतलब ये होता है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि लोग अक्सर जलती हुई सिगरेट, बीड़ी, माचिस की तीली जंगली इलाकों में फेंक देते हैं, जो आग लगने का कारण बन जाती है। इसके अलावा जंगली इलाकों में बसे लोग अपने खेतों में पराली, कूड़े और खेती के अवशेष जलाते हैं, उससे भी कई बार आग लग जाती है। वहीं जंगली इलाकों से गुजरते बिजली के हाई टेंशन तारों के टकराने से भी चिंगारी पैदा हो जाती है, जो भीषण आग में बदल जाती है। और कई बार देखिए, शिकारियों और असामाजिक तत्वों की ओर से भी जानवरों को घेरने के लिए जंगलों में आग लगा दी जाती है। वहीं पेड़ों पर आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं भी अक्सर जंगलों में आग लगने की सबसे बड़ी वजह मानी जाती है। देखिए, जंगल में लगी आग पर काबू पाना आसान नहीं होता है। सूखी पत्तियों और झाड़ियों के जरिए आग तेजी से फैलती चली जाती है। देखिए, बेशक प्रशासन और वन विभाग की टीम आग को आगे बढ़ने से रोकने में जुटी हुई है, इसके लिए नई तकनीक और रणनीति का इस्तेमाल भी लगातार किया जा रहा है, लेकिन आग को रोकने में सबसे अहम भूमिका स्थानीय लोगों की ही होती है। टिहरी गढ़वाल के इलाके में जब जंगल में आग फैलने शुरू हुई तो महिलाओं ने मोर्चा संभाल लिया। अपने महिला प्रधान की अगुवाई में उन्होंने पेड़ की डालियों से ही आग पर काबू पा लिया। देखिए हिम्मत और जज्बे की यह शानदार तस्वीर।
0: जंगल में आग की लपटे, चारों तरफ धुआं, लेकिन इसी बीच कुछ महिलाएं उम्मीद बनकर सामने आई। हाथों में आग बुझाने का कोई आधुनिक तरीका नहीं है। धधकती आग को बुझाने के लिए कुछ है तो पेड़ की डालियां हैं, लेकिन महिलाओं के मन में विश्वास है कि ये आग थम जाएगी, बुझ जाएगी। अपने जंगलों को बचाने की इसी जज्बे के साथ, हिम्मत के साथ महिलाएं आग बुझाने में जुटी रही। उत्तराखंड में सिर्फ सरकार और प्रशासन ही आग बुझाने में नहीं जुटे हैं, बल्कि स्थानीय लोग भी इस चुनौती से लड़ रहे हैं, क्योंकि इन जंगलों से इन्हें लगाव है, रोजी रोटी का नाता है।

उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में गजा और पोखाल रेंज के सियूरी गांव के आसपास जंगलों में आग लग गई। तेज हवाओं के कारण आग तेजी से फैलने लगी। गांव के लोगों ने स्थिति की गंभीरता को समझा और तुरंत जंगल बचाने के प्रयास शुरू कर दिए।

0: ग्राम प्रधान जमुना राणा गांव की महिलाओं के साथ खुद जंगलों में पहुंची। सभी महिलाओं ने मिलकर आग बुझाने का मोर्चा संभाला। किसी ने पेड़ों की टहनियों से आग रोकी, किसी ने मिट्टी डाली तो किसी ने पानी पहुंचाया। कई घंटों तक लगातार कोशिशें चलती रहीं। इन महिलाओं की हिम्मत ने ये साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना भी किया जा सकता है। नई टिहरी और आसपास के कई इलाकों में भी जंगलों में आग की घटनाएं सामने आई, लेकिन राहत की बात ये रही कि स्थानीय लोग, वन विभाग और प्रशासन लगातार मिलकर स्थिति को संभालने में जुटे रहे। आग की चुनौती से निपटने के लिए सरकार और वन विभाग कई स्तर पर काम कर रहे हैं। प्रदेश भर में कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, हजारों फायर वॉचर तैनात किए गए हैं, फायर लाइन तैयार की गई है और आधुनिक उपकरण भी उपलब्ध कराए गए हैं। वन विभाग स्थानीय लोगों को भी वन सुरक्षा अभियान से जोड़ रहा है। गांव-गांव में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ताकि लोग जंगलों की अहमियत को समझें और उनकी रक्षा में भागीदारी निभाएं। इसके साथ ही वन विभाग के मुख्यालय स्तर पर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर स्थापित किया है। राज्य में 1438 क्रू स्टेशन, 40 मास्टर कंट्रोल रूम और 174 फायर वॉचर टावर बनाए गए हैं। संचार व्यवस्था के लिए 35 वायरलेस रिपीटर, 248 मोबाइल सेट और 1507 GPS सेट उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही राज्य में कुल 13,000 किलोमीटर फायर लाइन तैयार की गई है। इसके साथ ही चीड़ की सूखी पत्तियां यानी पिरुल इकट्ठा करने की योजना भी चलाई जा रही है। इससे एक तरफ जंगलों में आग का खतरा कम होगा तो दूसरी तरफ ग्रामीणों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।
1: ये सब कुछ जाकर की जो हमारी वनों में आग लगती है तो STRF होगी, NDRF की कब होगी, एयरपोर्ट हेलीकॉप्टर आग का आ सकता है। तो भारत सरकार के NDRF नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने जो उन्होंने कब्जे को इससे गाइडलाइंस लिखा है उसके हिसाब से अगर वना की घटना एक दिन के लिए होती है तो उसका स्मॉल इंसिडेंट माना जाएगा और वो वन विभाग और स्थानीय समुदाय तो अगर 2 से 3 दिन तक चलती है और जिसका प्रभावित क्षेत्र 21 से 22 सेक्टर तक है वो लार्ज फॉरेस्ट फायर की श्रेणी में आएगा, जिसमें वन विभाग अपने अतिरिक्त संसाधन एडिशनल रिसोर्सेज जनरेट कर सकते हैं। स्थानीय समुदाय अन्य विभाग और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इससे सम्मिलित होंगी। लार्ज फॉरेस्ट फायर की 4 से 6 दिन चलाएंगे जिसमें की 40 से 80 क्षेत्र पॉइंट होगा, उसमें STRF का इनिशिएट हो सकता है, USDP का इनिशिएट हो सकता है और जो 6 दिन से अधिक होगा वहां पर NDRF राज्य सरकार की रिकमेंडेशन की आग लगता है।
0: लेकिन सबसे अहम बात है लोगों की भागीदारी, जो न सिर्फ आग रोकने में बल्कि आग बुझाने के लिए अहम है।
2: विभाग काफी परेशान है आग की वजह से और जनता परेशान हो गई है ये धुआं से, और विभाग जो है इतना परेशान है, हर व्यक्ति को नजर रखना चाहिए, हर व्यक्ति और विभाग तो नजर रख ही रहा लेकिन हर व्यक्ति को नजर रखना चाहिए कि जंगल में आग न लगाए, कितने नुकसान हो रहा है, कितने क्षति हो रही है। देखो पशु पक्षी हर जीव देख ये जो है, अरे हम लोग कितना हुआ है प्रदूषण की बीमार हो रहे हैं, ये धूप बारिश हो नहीं रही है, हर व्यक्ति परेशान है भाई। देखो
0: ये तो जाहिर है कि जंगल की आग उत्तराखंड के पर्यावरण के लिए खतरा है। इसके साथ ही आग का असर कारोबार पर भी पड़ता है। विकास नगर के देवधार रेंज में जंगल की आग की चपेट में सेब के बगीचे आ गए जो धू धू करके जल उठे, जल्द ही पूरा बगीचा राख हो गया। एक तरफ चुनौती वाली तस्वीरें हैं तो दूसरी ओर इससे एकजुट होकर लड़ने वाली मिसाल भी है। जब गांव के लोग मोर्चे पर डट जाएं, तो नतीजा क्या हो सकता है ये इन तस्वीरों से जाहिर है। उत्तराखंड में आग बुझाने की तस्वीर साहस, एकता और जागरूकता की है। जहां एक तरफ जंगलों को बचाने की मुहिम चल रही है वहीं दूसरी तरफ महिलाएं, ग्रामीण और वन विभाग मिलकर नई मिसाल पेश कर रहे हैं। टिहरी गढ़वाल से पंकज भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो आपने देखा कि लोग किस तरह से जंगलों में आग बुझाने के काम में जुटे हुए हैं। वहीं ये भी जानना काफी जरूरी है कि जंगलों को आग से कैसे बचाया जा सकता है। देखिए जंगलों में आग की रोकथाम कैसे हो सकती है ये आपको ग्राफिक्स के जरिए यहाँ पर समझाने की मैं कोशिश करती हूँ। देखिए सबसे अहम बात यह है कि जंगलों के आसपास रहने वाले या वहां से गुजरने वाले लोग लापरवाही से बचें और जंगलों में जलती हुई चीजें, बीड़ी, सिगरेट, माचिस की तीली वगैरह ना फेंके। साथ ही जंगलों के पास खेतों में पराली कूड़ा वगैरह जलाने पर सख्त रोक होनी चाहिए। इसके अलावा जंगलों में सैलानियों के कैंप फायर लगाने पर भी रोक लगनी चाहिए। जंगलों को आग से बचाने के लिए गर्मी का सीजन आने से पहले ही उसकी सफाई बेहद जरूरी है। जंगलों से सूखी पत्तियां, लकड़ियां, सूखी घास हटा देनी चाहिए। जंगलों के बीच चौड़े रास्ते होने चाहिए ताकि आग ना फैले, और जंगलों के आसपास रहने वाले लोगों को भी आग बुझाने की ट्रेनिंग देनी चाहिए। ये सबसे ज्यादा जरूरी है ताकि ऐसी कोई भी घटना हो तो तत्काल एक्शन लिया जा सके। तो GNT स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।

0: सास बहू और बिटिया में आज बिखरेंगे प्यार के रंग और जुड़ेगा किस्मत कनेक्शन। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बिटिया में।
1: Close your eyes. Listen to Monday.com. Feel the sensation of an AI work platform. So flexible and intuitive, it feels like it was built just for you. Now open your eyes. Go to Monday.com. Start for free and finally breathe.
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn. Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
3: Looking for an app to hear all of your favorite music, news, sports, and more? We've got all of your audio all in one place, right here on TuneIn. Play your favorite stations like K Buena, ESPN Radio.
4: How they looked after game one.
5: I mean, they were frustrated.
3: The Daily.
6: I'm Sabrina Tavernisi, and this is The Daily from inside the Democratic National Convention Hall.
3: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
7: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से देशवासियों से विदेश यात्रा की जगह स्वदेश यात्रा करने की अपील की है, तभी से गुड न्यूज टुडे भी आपसे गुजारिश कर रहा है कि आप अपने आसपास की खूबसूरत जगहों की तस्वीरें और वीडियोस बनाकर के हमें भेजें, ताकि हम आपके उन वीडियोस को हमारे टीवी पर दिखाएं। तो चलिए आज आपको हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला लेकर चलते हैं, जहां के तमाम आकर्षक और खूबसूरत पर्यटक स्थल आपका इंतजार कर रहे हैं। हमारे एक दर्शक ने हमें एक वीडियो भेजा है जिसमें उन्होंने धर्मशाला समेत कांगड़ा वैली की खास जगहों के बारे में हमें बताया है।

0: मैं आप सभी को भी न्योता देता हूँ कि हमारा हिमाचल प्रदेश जो देव भूमि है और हिमाचल के ही अंदर बसा हमारा ये सुंदर धर्मशाला, जहाँ एक तरफ धुलाधार की हसीन पहाड़ियाँ, जहाँ आज मई और जून के महीने में भी बर्फबारी धुलाधार की पहाड़ियों पर है। मैं आप सभी को कहना चाहूँगा हिमाचल प्रदेश के अंदर ये सुंदर हमारा धर्मशाला, जहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो विश्व का सबसे सुंदर स्टेडियम है वो धर्मशाला में है, चाहे मैक्लोडगंज जो नगरी है वो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में है, बौद्ध धर्म के धर्मगुरु दलाई लामा जी यहाँ पर हैं। आप सभी आए और धर्मगुरु दलाई लामा जी का आशीर्वाद मिलने का सौभाग्य आप सभी को मिलेगा। धर्मशाला के अंदर चाय के बगान है, आप उन्हें निहारने के लिए यहाँ आ सकते हैं। धर्मशाला के अंदर कई देवी स्थान, कई मंदिर, जैसे अगंजर महादेव, इंद्रनाथ जी का मंदिर देवी स्थल है, और कई मंदिर हमारे हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के शहर के अंदर है। बात करूं रोपवे की, तो धर्मशाला में धर्मशाला से मैक्लोडगंज के लिए रोपवे की सुविधा है, आप उसका आनंद लेने भी हिमाचल प्रदेश के अंदर आ सकते हैं। अगर कोई ट्रैकिंग का शौकीन है तो त्रिउंड जैसा एक ट्रैकिंग का हमारे पास स्पॉट जो है धर्मशाला के अंदर है, आप ट्रैकिंग के लिए भी त्रिउंड जा सकते हैं। साथ में धर्मशाला के लगते बाथू की लड़ी यहाँ घूमने के लिए है। मंदिर की बात करूँ तो रॉकट टेम्पल हमारे यहाँ है। धर्मशाला के साथ ही लगता कांगड़ा है, विश्वनाथ माता शक्तिपीठ धर्मशाला के अंदर लगते कांगड़ा में है। तो आप इन तमाम चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए, घूमने के लिए धर्मशाला आए हिमाचल वासी, तो धर्मशाला अतिथि देवो भव के भाव के साथ आप सभी के स्वागत के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। आपने आना कैसे है ये सबसे बड़ा प्रश्न है, तो बताऊं आपको, धर्मशाला के ही समीप गग्गल एयरपोर्ट, जहाँ आप हवाई मार्ग से आ सकते हैं। रेलवे से अगर आपने आना है तो पठानकोट जो सबसे नजदीक हमारे पड़ता है उसके माध्यम से आ सकते हैं। जब दिल्ली से आपने आना है तो वोल्वो बसेस जो है धर्मशाला तक आती हैं। इन तमाम साधनों से जो आप धर्मशाला आ सकते हैं। हम सभी धर्मशाला वासी आपके स्वागत के लिए और अतिथियों के, अतिथि देवो भव के भाव के साथ यहाँ पर।
1: अपने देश में ही सैर सपाटा करने अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट कीजिए। टूरिज्म को बढ़ावा देने के संकल्प में आप भी भागीदार बने। बस आपको सिर्फ इतना करना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है तो उठाइए अपना कैमरा और बना दीजिए व्लॉग। फिर हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, हम उसे GNT पर जरूर दिखाएंगे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: सास बहू और बिटिया में आज बिखरेंगे प्यार के रंग और जुड़ेगा किस्मत कनेक्शन। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बिटिया में।
4: Music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
5: Hop on board. We're going for a cruise with some easy listening. Feel the wind in your hair and bounce to the beat of the waves with Yacht Rock Classics from artists like Hall & Oates, Steely Dan, Loggins & Messina, and more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing or tell your device to play Sailing on TuneIn.
6: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें।
2: मौसम को लेकर एमडी ने जारी किया बुलेटिन। इस साल देश में सामान्य से कम रहेगा मानसून, सिर्फ 90% बारिश का अनुमान। मध्य और दक्षिण भारत में कम बरसेंगे बादल। बिहार में मौसम का बदला मिजाज, पटना समेत कई जिलों में जमकर बरसे बादल, कई जगहों पर तेज आंधी तूफान। रामनगरी में भक्तों को मौसम ने दी सौगात, बारिश के चलते तापमान में आई यहां पर कमी। सुहाने मौसम में भक्त कर रहे हैं रामलला के दर्शन। हेमकुंड साहिब में भारी बर्फबारी, पूरे जोश और उत्साह के बीच सिख संगत पहुंच रही है धाम। अब तक 22,000 से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। दर्शकों को आज मनोरंजन का मेगा डोज मिलने जा रहा है। सिनेमा घरों में 9 नई फिल्में रिलीज, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 5 नई और सीरीज भी रिलीज। आईपीएल फाइनल के लिए आज आखिरी लड़ाई, क्वालिफायर 2 में गुजरात और राजस्थान रॉयल्स के बीच होगी टक्कर। जीतने वाली टीम फाइनल में 31 मई को आरसीबी से भिड़ेगी।
1: एनईसीसी, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम
2: सज गए हैं खबरों की प्लेट, तैयार है गुड न्यूज का मेन्यू। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। खबरों की रफ्तार वही है, बस परिभाषा नहीं है। आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर हर अहम खबर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे 5 मिनट अच्छे से अच्छी खबरों के साथ।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को।
2: अयोध्या के श्री राम मंदिर में एक बार फिर से उत्सव की तैयारी, आज मां भगवती मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण का भव्य कार्यक्रम। महिलाएं ही संपन्न करेंगी ध्वजारोहण की पूरी प्रक्रिया, साध्वी रितंभरा करेंगी ध्वजारोहण, सीआरपीएफ की महिला जवान रस्सी खींचकर पूरा करेंगे अनुष्ठान। इस आयोजन में करीब 3500 महिलाओं के शामिल होने की संभावना, दिखेगा अध्यात्म श्रद्धा और मातृ शक्ति का अद्भुत संगम। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए रामलला के दर्शन। चित्तूर के विनायक स्वामी मंदिर में उमड़ा भक्तों का मेला, विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं ने किया पूजा पाठ। शिरडी के साईं बाबा को 3,507 किलो केसर आम का चढ़ावा, पुणे के भक्त ने अर्पित किया। हजार भक्तों का आमरस के प्रसाद से हुआ मुंह मीठा, आम की सुगंध से महका मंदिर परिसर। उज्जैन में बाबा महाकाल की उतारी गई भस्म आरती, भक्तों ने लगाए हर हर महादेव के जयकारे। यात्रा में भारी बारिश के बीच भी उमड़ा आस्था का सैलाब, अब तक 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। हरिद्वार पहुंचे पूर्व क्रिकेटर और पूर्व सांसद नवजोत सिंह सिद्धू, देखने के लिए लगी भीड़। हेमकुंड साहिब का प्रकृति ने किया श्वेत श्रृंगार, कपाट खुलने के 7 दिन के बाद यहां जोरदार बर्फबारी का दौर जारी। हेमकुंड साहिब में चारों तरफ बिछे दिखी बर्फ की सफेद चादर, मई की गर्मी के बीच में श्रद्धालु बर्फबारी का ले रहे मजा। रेवाड़ी में बदला मौसम का मिजाज, जोरदार बारिश के साथ गिरे ओले भी। अमरावती में नौतपा के तपिश के बीच में राहत की फुहारें, बारिश संग जमकर गिरे ओले भी। अयोध्या में सुबह सुबह हुई जोरदार बारिश, तापमान में आई भारी गिरावट।
3: कनाडा के पंजाबी ने रचा इतिहास, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाले पहले कनाडाई पंजाबी बने अजयपाल सिंह धालीवाल। कन्नूर में भारतीय नौसेना अकादमी में वसंत सत्र 2026 का पासिंग आउट परेड, वाइस एडमिरल समीर सक्सेना हुए शामिल। सरिस्का में गूंजी किलकारी, बाघिन एसटी 22 ने तीन शावकों को दिया जन्म, बाघों की संख्या हुई 55। नागपुर में कुएं में गिरा बाघ, वन विभाग की टीम ने बाघ का किया सफल रेस्क्यू।

0: आज एक साथ रिलीज हुई हैं 9 फिल्में, दर्शकों में एक्साइटमेंट। कंगना रनौत की फिल्म भारत भाग्य विधाता का मोशन पोस्टर जारी, 12 जून को सिनेमाघरों में होगी रिलीज।
1: कुछ खास करके आम ही कहलाते हैं, वो दिखते तो हैं पर नजर नहीं आते, भारत भाग्य विधाता।
0: बेबी डू डाई डू की रिलीज डेट घोषित कर दी गई है, 3 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। डॉन 3 विवाद में सलमान खान की एंट्री, रणवीर फरहान अख्तर के बीच में करवाएंगे सुलह। इम्फाल में MSFDS 16वें मणिपुर राज्य फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया, मणिपुर सिनेमा की उत्कृष्टता को किया गया यहां पर सम्मानित।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
3: जिस अच्छी खबरों के बाद खबरें विस्तार से आपके लिए खबरों की प्लेट तैयार है,
0: तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की ट्रेंडिंग न्यूज के साथ।
3: दिल्ली समेत कई राज्यों में रिमझिम फुहारों ने दी गर्मी से राहत, वीकेंड भी कूल कूल रहने की उम्मीद।
0: प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में आज शक्ति उत्सव, मां भगवती के मंदिर पर भव्य ध्वजारोहण समारोह।
3: हेमकुंड साहिब में जबरदस्त बर्फबारी के बावजूद पूरे उत्साह में श्रद्धालु, अब तक 22,000 भक्तों ने किए दर्शन।
0: बड़े पर्दे पर कंगना की धमाकेदार वापसी, भारत भाग्य विधाता में कंगना का फर्स्ट लुक जारी, 12 जून को रिलीज होगी।
3: आज फिल्मी फ्राइडे पर बॉक्स ऑफिस पर धमाल, बड़े पर्दे पर 9 नई फिल्में रिलीज, OTT पर भी एंटरटेनमेंट का फुल डोज।

0: और चलिए लंच टाइम की शुरुआत करते हैं आज राहत भरी तस्वीरों के साथ। गुरुवार शाम को हुई हल्की बारिश पहाड़ों और मैदानी इलाकों के लिए राहत लेकर आई है। आज सुबह की शुरुआत हल्की ठंडी हवा के साथ हुई जिससे मौसम खुशनुमा बना हुआ है।
1: राजधानी दिल्ली में जो तापमान 45 डिग्री पार था वो अब 30 डिग्री पहुंच गया है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अगले 3 दिन बारिश का ये दौर जारी रह सकता है। शुक्रवार के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जबकि शनिवार रविवार के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया। वहीं वेस्ट यूपी में गरज चमक के साथ 80 से 90 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी चलने की बारिश होने की संभावना भी है और कल शहर हुई बारिश ने तापमान में थोड़ी राहत जरूर दे दी है।
0: अब देखिए भीषण गर्मी पड़ रही है तो इस दौरान दिन में निकलना किसी चुनौती से तो कम बिल्कुल नहीं था, लेकिन अब कुछ दिन के लिए मौसम साफ और सुहाना रहने वाला है। ऐसे में ये वीकेंड आपका कूल जाएगा, ये गारंटी है। जो लोग घूमने फिरने के शौकीन हैं उनके लिए मौसम खुशियों की सौगात अपने साथ लेकर आया है।

0: आसमान में घुमड़ते बादल और नीचे पंछियों की उन्मुक्त उड़ान, हवा के साथ अटखेलियां करते पेड़ पौधे, ठंडी हवाओं की सरगोशियां, मानो सब ने दिल खोलकर बादलों का स्वागत किया। 45 डिग्री टॉर्चर झेल रहे मैदानी इलाकों के लिए गुरुवार की शाम राहत लेकर आई। ठंडी हवा का झोंका उठा, तेज हुआ और फिर आसमान में बादलों ने अंगड़ाई दी। शाम ढलते ढलते राहत की फुहार बनकर बरस गई। कहीं तेज कहीं मध्यम, कहीं कहीं थोड़ा नुकसान भी हुआ, पर पिछले कुछ दिनों में भीषण गर्मी, चिलचिलाती धूप, उमस भरी रात झेल रहे लोगों के लिए ये शाम सुकून दे गई। तापमान में गिरावट आई, नौतपा में भी मौसम सुहाना हो गया। मौसम विभाग ने पहले ही बदलाव के संकेत दे दिए थे और अनुमान भी सटीक रहा। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हुई रिमझिम बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। चाहे दिल्ली का कौटिल्य मार्ग हो, कस्तूरबा गांधी मार्ग, मोतीबाग, देशबंधु गुप्ता रोड, फिरोज शाह रोड, आर के पुरम, तुगलकाबाद या फिर एयरपोर्ट का इलाका, उत्तरी दिल्ली से पूर्वी और पश्चिमी से दक्षिणी दिल्ली तक बादल झमाझम बरसे।
1: पिछले कई दिनों से चिलचिलाती गर्मी और धूप से परेशान दिल्ली वालों के लिए गुरुवार की शाम राहत लेकर के आई, जब तेज हवाएं चली, धूल भरी आंधी चली और उसके बाद हल्की हल्की बारिश हुई, जिसके चलते मौसम और तापमान में अच्छी खासी गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिन तक इसी तरीके का मौसम जो है वो फिलहाल दिल्ली NCR में बने रहने की उम्मीद है। जिस तरीके से कल देर शाम को बारिश हुई, ऐसा ही मौसम आज दिन भर जो है वो मौसम विभाग की माने तो बना रहेगा। कई इलाकों के अंदर हवाएं जो है वो तेज गति के साथ चलेंगी और उसके साथ साथ बादल भी छाए रहेंगे और उसके अलावा कई इलाकों में हल्की हल्की बारिश भी जो है वो हो सकती है।
0: मौसम के बदले मिजाज का असर यूपी के झांसी में भी देखने को मिला। लगातार 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहे तापमान ने लोगों को घरों में कैद होने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन गुरुवार शाम को चली तेज हवाओं और बारिश ने तस्वीर बदल दी। यहाँ कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी देखने को मिली, तपती धरती ने राहत की सांस ली। 45 डिग्री टॉर्चर के बाद मौसम का ये यूटर्न हरियाणा के लोगों को भी रास आया। रेवाड़ी में झमाझम बारिश के साथ ओले भी गिरे। अचानक आए इस मौसम परिवर्तन से जहां एक तरफ लोग हैरान रह गए, वहीं दूसरी तरफ पिछले कई दिनों से पड़ रही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से जूझ रहे लोगों ने राहत की सांस ली। तेज हवाओं, बारिश और ओलावृष्टि के बाद तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में तो लोग 49 डिग्री टॉर्चर झेल रहे थे। गुरुवार दोपहर तक ये शहर दुनिया के सबसे गर्म शहरों में दूसरे स्थान पर शुमार था, लेकिन शाम होते होते कहानी बदल गई। मौसम के बदले अंदाज ने लोगों को बड़ी राहत दी। दोपहर बाद मौसम बदला, आसमान में काले घने बादल छाए, शाम होते होते तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई, जमकर ओलावृष्टि भी हुई। धौलपुर में भी मौसम के तेवर कुछ ऐसे ही नजर आए। दोपहर बाद आसमान में बादलों ने दस्तक दी और देर शाम तेज हवाओं के साथ बरस पड़े। तपती दोपहरी के बाद बादलों की ये मेहरबानी लोगों को सुकून दे गई। उत्तराखंड के बागेश्वर में इन बादलों ने बड़ा काम किया। यहाँ हुई तेज बारिश और ओलावृष्टि ने जंगलों
2: और तो, देखिए मौसम की ये तब्दीली सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों में राहत का पैगाम साथ में लेकर आई है। यूपी और बिहार में मानसून से पहले की बारिश से तापमान में गिरावट आई है।
3: हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक ये राहत ज्यादा दिन नहीं रहने वाली। जून के महीने में एक बार फिर से गर्मी अपने तेवर दिखाने के लिए तैयार है। आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम, बता रहे हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा।
4: तो भारत का ज्यादातर हिस्सा हीट वेव झेल रहा था, लू के थपेड़े या लू की मार झेल रहा था और अब मौसम ने करवट ली है तो ज्यादातर हिस्सों में अब वो राहत लेकर के आई है। हालांकि इस राहत के साथ मुसीबतें ये हैं कि मौसम विभाग का पूर्वानुमान ये कहता है कि उत्तर पश्चिम भारत, पूर्वी उत्तर भारत, मध्य भारत और इसी के साथ साथ दिल्ली NCR का वो इलाका जहां पर रविवार तक अब तापमान तो गिरेगा ही, बारिश भी होंगे लेकिन हवा की रफ्तार ज्यादा भी हो सकती है, थंडर स्टॉर्म हो सकता है, ओले गिर सकते हैं, तो अगर फलों की खेती है उस पर असर पड़ेगा। पहाड़ी इलाकों में जहां पर जंगलों की आग है वहां पर ओलावृष्टि या बारिश के साथ उस आग को बुझाने में मदद मिलेगी, तो मैदानी इलाकों में तापमान नीचे जरूर गिरेगा लेकिन आंधी तूफान, बिजली गिरने और ओले गिरने जैसी घटनाओं से बचना जरूरी होगा। तो कुल मिलाकर के कहें कि पश्चिमी विक्षोभ इतना सक्रिय होकर के आ रहा है कि अपने साथ हवा की रफ्तार बेहद तेज ला रहा है और इसीलिए दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत के ये जो गंगेटिक बेल्ट है, पूरा मैदानी इलाका है, यहाँ आपको तड़के सुबह अब वैसा तापमान महसूस नहीं हो रहा होगा। इसी के साथ साथ जो वार्म नाइट्स कंडीशन जिसे कहते हैं, जहाँ रातें भी गर्म थी वो भी बेहतर हुई है, यानी रातों को तापमान भी नीचे आया है, दिन का तापमान भी जो अधिकतम था उसमें भी कमी आई है, लेकिन ये राहत सिर्फ रविवार तक होगी क्योंकि जून की तपिश तो अभी बाकी है। दिल्ली से मनीष के साथ मैं आशुतोष मिश्रा।
3: तो ये वीकेंड तो राहत के बयार बह रही है और मौसम सुहाना है और गर्म हवाओं की तपिश कुछ कम महसूस हो रही है। मानसून से पहले की इस बारिश ने जून से पहले लोगों को थोड़ी राहत दे दी है।
2: और देखिए मौसम विभाग ने यह अनुमान लगाया है कि इस साल पूरे देश में बारिश सामान्य से कुछ कम होगी।
5: 2026 के मानसून ऋतु यानी जून से सितंबर के दौरान पूरे देश में सामान्य से कम बारिश होने का सबसे ज्यादा संभावना है। दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु जून से सितंबर 2026 में उत्तर पूर्व भारत में सामान्य वर्षा होने का संभावना है। ये सामान्य का अर्थ है कि लॉन्ग पीरियड एवरेज का 94-106%। इसके साथ साथ मध्य भारत और दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में लॉन्ग पीरियड एवरेज की 94% से लेस यानी सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना है और उत्तर पश्चिम भारत में 92% से कम यानी वहां भी सामान्य से कम बारिश होने का ज्यादा संभावना है। मानसून कोर जोन जो सेंट्रल इंडिया के ऊपर एक जोन होता है जहां ज्यादातर एरिया रेनफेड एरिया है वहां भी सामान्य से नीचे यानी लॉन्ग टर्म एवरेज की 94% से कम बारिश होने का संभावना है।
2: अब आपको देश के अलग अलग हिस्सों में बदलते हुए मौसम की कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं। उत्तराखंड के बागेश्वर में अचानक से मौसम ने करवट बदलते ही तेज मूसलाधार बारिश के साथ यहां पर ओले गिरे उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इससे आसपास के दृश्य सफेद चादर से ढक गया। ओले गिरने से सड़कें और खेत बर्फ जैसे सफेद दिखने लगे। ये बारिश जंगलों में लगी आग को बुझाने में कारगर साबित हुई और गर्मी से भी यहां पर थोड़ी सी राहत मिली। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए वीकेंड कूल रहने का हालांकि पूर्वानुमान लगाया गया था वैसे ही हालात इस वक्त नजर आ रहे हैं क्योंकि कई इलाकों में बारिश लगातार जारी है जिसकी वजह से लोगों को इस चिलचिलाती गर्मी से राहत मिल गई है।
3: तो पारा 48 डिग्री पहुंचने के बाद श्रीगंगानगर के कई इलाकों में बारिश और ओले गिरे। अचानक मौसम बदलने से आसमान में काले घने बादल छा गए और फिर जमकर बारिश का दौर शुरू हो गया।
2: और देखिए भीषण गर्मी के बीच में मौसम ने ऐसा यू टर्न लिया है तो हरियाणा के रेवाड़ी में भी ऐसे ही तस्वीरें निकलकर सामने आई जहां पर जमकर ओले गिरे। इतने मोटे ओले गिरे कि लोगों ने हाथों में उठा लिए। बारिश और ओले गिरने से मौसम यहां पर खुशनुमा हो गया और तापमान में भी यहां पर गिरावट दर्ज की गई।
3: बात कर लेते हैं फिल्मी दुनिया की। करीब 1.5 साल के बाद कंगना बड़े पर्दे पर धमाकेदार वापसी करे हैं। जी हां, कंगना की आने वाली फिल्म भारत भाग्य विधाता का फर्स्ट लुक अब जारी हो चुका है और इस फिल्म में कंगना एक सच्ची कहानी को बड़े पर्दे पर पेश कर रही हैं।
2: और देखिए कंगना का इस फिल्म में फर्स्ट लुक भी सामने आ गया है। सोशल मीडिया पर ये लुक काफी वायरल हो रहा है। आप भी अगर देखना चाहते हैं तो इस रिपोर्ट में देखिए।
6: बड़े पर्दे पर कंगना रनौत की धमाकेदार वापसी। करीब 1.5 साल बाद एक बार फिर सच्ची कहानी को दर्शकों के सामने लाएंगी कंगना। इमरजेंसी में अपनी शानदार एक्टिंग का लोहा मनवाने के बाद कंगना अब लेकर आ रही है भारत भाग्य विधाता। इस फिल्म की अनाउंसमेंट तो पहले ही हो चुकी थी, रिलीज डेट से भी पर्दा उठ चुका था, लेकिन इस फिल्म के लिए दर्शकों की बेसब्री तब और बढ़ गई जब इस फिल्म का फर्स्ट लुक सबके सामने आया।
7: कुछ खास करके आम ही कहलाते हैं, वो दिखते तो हैं पर नजर नहीं आते। भारत भाग्य विधाता, द अनसीन हीरोज।
6: गुरुवार को इंस्टाग्राम पर भारत भाग्य विधाता का मोशन पोस्टर जारी किया गया। इस मोशन पोस्टर में कंगना के फर्स्ट लुक ने दर्शकों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। पोस्टर में कंगना का लुक बेहद इंटेंस है। मोशन पोस्टर में कंगना अपनी जान पर खेलकर किसी की जान बचाती नजर आ रही हैं। ये फिल्म मुंबई टेरर अटैक पर बेस्ड है। पोस्टर से अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये फिल्म उन हीरोज के बारे में है जो आम तौर पर दुनिया को नजर नहीं आते, लेकिन मुसीबत आने पर ये हीरो इंसानियत की रक्षा का सबसे बड़ा कवच बन जाते हैं। पोस्टर के बैकग्राउंड में कंगना की आवाज इस मोशन पोस्टर को और भी खास बना रही है।
7: दिखते तो हैं पर नजर नहीं आते, भारत भाग्य विधाता, द अनसीन हीरोज।
6: ये फिल्म मुंबई टेरर अटैक की कुछ अनसुनी दास्ता को दुनिया के सामने लाएगी। इस फिल्म में कंगना के साथ गिरजा ओक, स्मिता तांबे, अमृता नामदेव, रसिका अगासे और जाहिद खान भी नजर आएंगे। फिल्म के राइटर और डायरेक्टर मनोज तपाड़िया हैं। अब दर्शकों को इंतजार है फिल्म के रिलीज का। उम्मीद की जा रही है कि इमरजेंसी की तरह ही इस बार भी कंगना का किरदार कुछ नयापन लिए हुए होगा। कंगना रनौत की फिल्म भारत भाग्य विधाता 12 जून को सिनेमा घरों में दस्तक देने जा रही है। इसी दिन इम्तियाज अली की मैं वापस आऊंगा भी रिलीज हो रही है। इम्तियाज की फिल्म से भी दर्शकों को काफी उम्मीदें हैं। जाहिर है जून में बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों फिल्मों का जबरदस्त क्लैश होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: देखिए, आज मई महीने का आखिरी शुक्रवार है और फिल्मों के शौकीनों के लिए फिल्मी फ्राइडे बहुत ज्यादा शानदार है, क्योंकि आज सिनेमाघरों से लेकर ओटीटी पर कई सारे ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं, यानी सिनेमाघरों के साथ ओटीटी के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जबरदस्त गदर मचने वाला है। आपको सिनेमाघरों में महान संत नीम करौली महाराज के जीवन पर बनी हुई फिल्म देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप सस्पेंस थ्रिलर के साथ हॉरर और कॉमेडी फिल्में और वेब सीरीज देखकर वीकेंड को मजेदार बना सकते हैं, या कहें कि वीकेंड पर आपके ऑप्शन लिस्ट में बहुत कुछ रहने वाला है।
8: आज थिएटर से ओटीटी तक कई नई फिल्में और सीरीज रिलीज हो रही हैं जो आपको फुल एंटरटेन करेंगी। इस बार दर्शकों को कॉमेडी, एक्शन, रोमांस, भक्ति, रोड ट्रिप और इमोशनल ड्रामा जैसे सब्जेक्ट पर बनी फिल्मों की सौगात मिलने जा रही है, यानी वीकेंड पर आपकी ऑप्शन लिस्ट में काफी कुछ रहने वाला है। आज थिएटर में 4 फिल्में रिलीज होगी। श्री बाबा नीम करौली महाराज आज देशभर में रिलीज होने जा रही है। ये फिल्म बाबा यानी लक्ष्मण नारायण शर्मा की स्पिरिचुअल जर्नी को दिखाती है, जिसमें वो पूज्य संत नीम करौली बाबा के रूप में ट्रांसफॉर्म होते हैं और आइकॉनिक कैची धाम आश्रम की स्थापना करते हैं। एक्टर सुबोध भावे ने बाबा की भूमिका निभाई है, जबकि मोहित जी गुप्ता ने उनके युवा का रोल किया है। शरद सिंह ठाकुर फिल्म के निर्देशक हैं। ये एक एंटरटेनिंग फैमिली फिल्म है जो आज रिलीज हो रही है। मनीष सैनी के निर्देशन में बनी ये कहानी एक ऐसे लड़के के बारे में है जो एक रहस्य के चलते जगह जगह भटकता रहता है। बाद में उसे पता चलता है कि उसके दादा, जिनका किरदार जैकी श्रॉफ ने निभाया है, के पास स्पेशल सुपर पावर है। जब एलियंस पृथ्वी पर हमला करते हैं तो दादा को अपनी शक्तियों का उपयोग करके सभी को बचाना पड़ता है। फिल्म में कॉमेडी, इमोशंस और दादा पोते के बीच का प्यारा रिश्ता बेहतरीन ढंग से दिखाया गया है। इसमें प्रतीक बब्बर और भाग्यश्री भी मुख्य भूमिका में है। ये एक हिंदी कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो आज रिलीज होगी। फिल्म का निर्देशन आदित्य अमन ने किया है और इसमें उल्का गुप्ता मुख्य भूमिका में है। बिहार के दरभंगा में फिल्माई गई ये फिल्म रजनी की कहानी है, जो एक कॉलेज टीचर हैं और अपने बॉयफ्रेंड के पिता की उनकी शादी का विरोध किए जाने पर सामाजिक नियमों को चुनौती देती है। फिल्म में कनिष्क विजय, अश्वथ भट्ट, सुनीता राजवार और जरीना बहाव भी है। फिल्म का निर्माण तनाया अडारकर प्रभु और तेज एच अडारकर ने किया है। हिंदी भाषा की साइकोलॉजी फैंटेसी क्राइम थ्रिलर फिल्म है जो आज थिएटर्स में होगी। अमित दीक्षित निर्देशित और रोहित एस यादव की लिखित ये फिल्म पुलिस अधिकारी कृष्णन श्रीनिवासन की कहानी है, जो सिलसिलेवार हत्याओं की जांच करते हैं। फिल्म में जितेंद्र बोहरा, तुषार कावले, जेसिका यादव, क्षितिज पवार और कई अन्य कलाकार शामिल हैं। इनके अलावा थिएटर में ईशा सिंह की साइकोलॉजिकल एक्शन थ्रिलर ऑब्सेस म्यूजिकल कॉमेडी फिल्म जीना दिल से और स्पोर्ट्स ड्रामा कृष्णा और चिट्ठी भी रिलीज हो रही हैं। यानी वीकेंड एंटरटेनमेंट के लिए वो सब मौजूद है जिन्हें आप वीकेंड पर बिंच वॉच कर सकते हैं। जाहिर है आखिरी शुक्रवार को फिल्म मेकर सिने प्रेमियों को बिल्कुल भी निराश नहीं करने वाले हैं। सिनेमाघरों में आज दस्तक दे रही ये फिल्में आपको एंटरटेन करने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: देखिए, थिएटर्स की तरह ही एंटरटेनमेंट का तड़का ओटीटी पर भी लगने वाला है। इस वीकेंड ओटीटी पर एंटरटेनमेंट का महाब्लास्ट हो रहा है।
3: इस वीकेंड अलग अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर 6 फिल्में, वेब सीरीज और रिलीज होने वाली हैं।
8: मई के लास्ट फ्राइडे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने भी अपने दर्शकों के लिए शानदार एंटरटेनमेंट पैकेज तैयार किया है, जो आपके पूरे शनिवार रविवार को रोमांच से भर देने वाला साबित होगा। तमाम ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इस हफ्ते सस्पेंस, एक्शन, कोर्टरूम ड्रामा, डार्क सुपर हीरो और हल्की फुल्की कॉमेडी का जबरदस्त तड़का देखने को मिलेगा। ये चर्चित सीरीज इस वीकेंड की सबसे एक्साइटिंग रिलीज है। हॉलीवुड स्टार निकोलस केज इस सीरीज के जरिए टीवी डेब्यू कर रहे हैं और उनका अंदाज पहले से बिल्कुल अलग नजर आने वाला है। 1930 के दशक के न्यूयॉर्क की अंधेरी गलियों में सेट अमेज़न प्राइम वीडियो पर आने वाली ये कहानी सुपर हीरो यूनिवर्स को एक डार्क फिल्म नोयर टच देती है। इस सीरीज में एक्शन के साथ साथ सस्पेंस और विजुअल स्टोरी टेलिंग का ऐसा कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा जो सुपर हीरो कंटेंट के फैंस को पूरी तरह बांधे रखेगा। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो रही है अ गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर 2। एमा मायर्स एक बार फिर अपने इन्वेस्टिगेटिव अंदाज में लौट रही हैं और इस बार कहानी पहले से ज्यादा रहस्यमयी और खतरनाक होने वाली है। ये वेब सीरीज टीन ड्रामा और क्राइम थ्रिलर का शानदार मिश्रण है। हर एपिसोड में आने वाले नए ट्विस्ट दर्शकों को आखिर तक बांधे रखने का दम रखते हैं। इंडियन सिनेमा के सबसे चर्चित कोर्टरूम ड्रामा में से एक जॉली एलएलबी 3 ओटीटी पर आ रही है। इस बार अक्षय कुमार और अरशद वारसी दोनों साथ नजर आएंगे और कोर्ट रूम में तगड़ी बहस देखने को मिलेगी। ये फिल्म सिर्फ कानून की लड़ाई नहीं दिखाती बल्कि समाज के कई गंभीर मुद्दों पर व्यंग और हास्य के जरिए चोट भी करती है। यही वजह है कि इस मूवी को इस वीकेंड की सबसे बड़ी फैमिली एंटरटेनर माना जा रहा है। आपको अगर देशभक्ति और स्पाई थ्रिलर पसंद है तो धुरंधर रॉ एंड अनदेखा आपकी वॉच लिस्ट में होनी ही चाहिए। रणवीर सिंह, संजय दत्त और अक्षय खन्ना स्टारर ये ब्लॉकबस्टर फिल्म कराची के अंडरवर्ल्ड और आतंकवाद के खिलाफ एक सीक्रेट मिशन की कहानी दिखाती है। फिल्म में जबरदस्त एक्शन, इमोशनल ड्रामा और हाई वोल्टेज मिशन का रोमांच देखने को मिलेगा। यही वजह है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर आते ही ये फिल्म तेजी से चर्चा बटोर रही है। साउथ सुपरस्टार धनुष भी इस वीकेंड अपने फैंस के लिए दमदार एक्शन ड्रामा फिल्म कारा लेकर आ रहे हैं। गल्फ वॉर के बैकग्राउंड पर बनी ये फिल्म युद्ध के माहौल के बीच इंसानी रिश्तों और संघर्षों की कहानी दिखाती है। फिल्म में इमोशन और एक्शन का संतुलन इसे बाकी रिलीज से अलग बनाता है। धनुष की दमदार परफॉर्मेंस इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत मानी जा रही है। इस वीकेंड हल्का फुल्का और रिलैक्सिंग कंटेंट देखने की चाहत है तो वीकेंड में ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स की कॉमेडी ड्रामा सीरीज द फोर सीजन 2 आपके लिए ही वीकेंड पर दस्तक दे रही है। टीना फे और स्टीव कैरल स्टारर ये वेब सीरीज रिश्तों, दोस्ती और जिंदगी के अलग अलग पड़ावों को मजेदार अंदाज में पेश करती है। इसके मजेदार डायलॉग्स और रिलेटेबल किरदार दर्शकों को खूब पसंद आ रहे हैं। खास बात यह है कि इस बार हॉलीवुड और इंडियन कंटेंट दोनों का शानदार मिश्रण देखने को मिल रहा है। निकोलस केज से लेकर अक्षय कुमार और धनुष तक कई बड़े सितारे अपनी नई कहानियों के साथ स्क्रीन पर छाने के लिए तैयार हैं। यानी इस वीकेंड ओटीटी पर हर तरह के दर्शकों के लिए कुछ न कुछ खास मौजूद रहने वाला है। तो एंजॉय कीजिए अपना वीकेंड। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: मोदी ने जब से देशवासियों से विदेश यात्रा की जगह स्वदेश यात्रा करने की अपील की है तभी से जीएनटी भी आपसे गुजारिश कर रहा है कि आप अपने आसपास की खूबसूरत जगहों की तस्वीरें हमें भेजें
2: ताकि हम आपकी उन वीडियोस को यहां पर दिखाएं। तो चलिए आज आपको हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला लिए चलते हैं जहां के तमाम आकर्षक और खूबसूरत पर्यटक स्थल आपका इंतजार कर रहे हैं। हमारे एक दर्शक ने हमें एक वीडियो भेजा है जिसमें उन्होंने धर्मशाला समेत कांगड़ा वैली की खास जगहों के बारे में जानकारी दी है।

0: आप सभी को भी न्योता देता हूँ कि हमारा हिमाचल प्रदेश जो देव भूमि है और हिमाचल के ही अंदर बसा हमारा ये सुंदर धर्मशाला, जहाँ एक तरफ धुलाधार की हसी पहाड़ियाँ, जहाँ आज मई और जून के महीने में भी बर्फबारी धुलाधार की पहाड़ियों पर है। मैं आप सभी को कहना चाहूँगा, हिमाचल प्रदेश के अंदर ये सुंदर हमारा धर्मशाला, जहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो विश्व का सबसे सुंदर स्टेडियम है वो धर्मशाला में है, चाहे मैक्लोडगंज जो नगरी है वो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में है, वो धर्म के धर्मगुरु दलाई लामा जी यहाँ पर हैं। आप सभी आए और धर्मगुरु दलाई लामा जी का आशीर्वाद मिलने का सौभाग्य आप सभी को मिलेगा। धर्मशाला के अंदर चाय के बगान है, आप उन्हें निहारने के लिए यहाँ आ सकते हैं। धर्मशाला के अंदर कई देवी स्थान, कई मंदिर, जैसे अगंजर महादेव, इंद्रनाग जी का मंदिर देवी स्थल है, और कई मंदिर हमारे हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के शहर के अंदर है। बात करूं रोपवे की, तो धर्मशाला में धर्मशाला से मैक्लोडगंज के लिए रोपवे की सुविधा है, आप उसका आनंद लेने भी हिमाचल प्रदेश के अंदर आ सकते हैं। अगर कोई ट्रैकिंग का शौकीन है तो त्रिउंड जैसा एक ट्रैकिंग का हमारे पास स्पॉट जो है धर्मशाला के अंदर है, आप ट्रैकिंग के लिए भी त्रिउंड जा सकते हैं। साथ में धर्मशाला के लगते बाथू की लड़ी यहाँ घूमने के लिए है। मंदिर की बात करूँ तो रॉकट टेम्पल हमारे यहाँ है। धर्मशाला के साथ ही लगता कांगड़ा है, प्रदेश माता शक्तिपीठ धर्मशाला के अंदर लगते कांगड़ा में है, तो आप इन तमाम चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए, घूमने के लिए धर्मशाला आए। हिमाचल वासी और तो धर्मशाला अतिथि देवो भव के भाव के साथ आप सभी के स्वागत के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। आपने आना कैसे है ये सबसे बड़ा प्रश्न है, तो बताऊं आपको, धर्मशाला के ही समीप गग्गल एयरपोर्ट, जहाँ आप हवाई मार्ग से आ सकते हैं। रेलवे से अगर आपने आना है तो पठानकोट जो सबसे नजदीक हमारे पड़ता है उसके माध्यम से आ सकते हैं। जब दिल्ली से आपने आना है तो वोल्वो बसें जो है धर्मशाला तक आती हैं। इन तमाम साधनों से जो आप धर्मशाला आ सकते हैं। हम सभी धर्मशाला वासी आपके स्वागत के लिए और अतिथियों के, अतिथि देवो भव के भाव के साथ यहाँ पर।
1: तो देखिए, आप भी अगर देश में ही सैर सपाटा करने अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। टूरिज्म को बढ़ावा देने के संकल्प में भागीदार बन सकते हैं। बस करना सिर्फ इतना सा है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है तो उठाइए अपना कैमरा, स्टार्ट कर दीजिए व्लॉग्स बनाने और हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम उसे GNT पर जरूर दिखाएंगे। भक्तों के एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे अयोध्या में भव्य शक्ति उत्सव।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: The biggest

0: सास बहू और बिटिया में आज बिखरेंगे प्यार के रंग और जुड़ेगा किस्मत कनेक्शन। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बिटिया में।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
3: मौसम को लेकर IMD ने जारी किया बुलेटिन। इस साल देश में सामान्य से कम रहेगा मॉनसून, सिर्फ 90% बारिश का अनुमान। मध्य और दक्षिण भारत में कम बरसेंगे बादल।
4: बिहार में मौसम का बदला मिजाज, पटना समेत कई जिलों में जमकर बरसे बादल, कई जगहों पर तेज आंधी तूफान।
3: रामनगरी में भक्तों को मौसम ने दी सौगात, बारिश के चलते तापमान में आई कमी, सुहाने मौसम में भक्त कर रहे रामलला के दर्शन।
4: हेमकुंड साहिब में भारी बर्फबारी, पूरे जोश और उत्साह के बीच सिख संगत पहुंच रही है धाम, अब तक 22,000 से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन।
3: दर्शकों को आज मनोरंजन का मेगा डोज, सिनेमाघरों में 9 नई फिल्में रिलीज, OTT प्लेटफॉर्म पर 5 नई फिल्में और सीरीज भी रिलीज।
4: IPL फाइनल के लिए आज आखिरी लड़ाई, क्वालिफायर 2 में गुजरात और राजस्थान रॉयल्स के बीच होगी टक्कर, जीतने वाली टीम फाइनल में 31 मई को RCB से भिड़ेगी।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
3: देखिए आज का दिन रामनगरी अयोध्या के लिए बेहद खास है। राम मंदिर में आज शक्ति उत्सव मनाया जाएगा। राम मंदिर परिसर के दुर्गा मंदिर में ध्वजारोहण समारोह होगा।
4: दरअसल इसमें 3500 से ज्यादा महिला संत समारोह का हिस्सा बनेंगी। सुरक्षा की कमान CRPF की महिला बटालियन संभालेंगे और इस अवसर पर अयोध्या में कई धार्मिक अनुष्ठान भी संपन्न होंगे।

0: अयोध्या के राम मंदिर में एक बार फिर उत्सव की तैयारी है। आज यहां मां भगवती मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण का भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें आध्यात्म, श्रद्धा और मातृशक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। मंदिर परिसर को विशेष रूप से सजाया गया है। देश भर से मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी की महिलाएं अयोध्या पहुंच चुकी हैं। शाम 6 बजे मां भगवती मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण समारोह प्रारंभ होगा, जो लगभग रात 7:30 बजे तक चलेगा। आयोजन में करीब 3,500 महिलाओं के शामिल होने की संभावना है। कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं को विशेष प्रसाद भी वितरित किया जाएगा।
1: कम से कम 3,500 माताएं आएंगी, ऐसी हमारी उम्मीद है। वो महिलाएं बाहर के माताएं आ रही हैं। हमने 500 कमरा बुक किया है, निवास व्यवस्था हो गई है, और विशेष यानी CRPF के बहने ये ध्वजारोहण की बाकी रस्सी खींचने का काम वो करेंगे। उन्होंने तैयारी किया है, महिलाओं के द्वारा ये कार्यक्रम संपन्न।
0: इस ऐतिहासिक आयोजन की खास बात यह है कि ध्वजारोहण की पूरी प्रक्रिया महिलाओं द्वारा संपन्न की जाएगी। साध्वी रितंभरा मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करेंगी। साध्वी रितंभरा के साथ राम मंदिर की सुरक्षा में तैनात CRPF की महिला जवान ध्वज आरोहण की रस्सी खींचकर कार्यक्रम को पूरा करेंगे। राम मंदिर की सुरक्षा में तैनात PAC की महिला कमांडो और मंदिर परिसर में कार्यरत महिलाएं भी इस भव्य आयोजन का हिस्सा बनेंगी। राम मंदिर परिसर में होने जा रहा ये आयोजन न केवल आध्यात्मिक आस्था का प्रतीक बनेगा, बल्कि मातृशक्ति के सम्मान और सनातन संस्कृति की भव्यता का भी संदेश देगा। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: चारधाम यात्रा को लेकर तीर्थयात्रियों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। श्रद्धालु भारी संख्या में यहां आ रहे हैं। हर रोज

0: नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। अभी आंकड़ा 24 लाख के पार हो चुका है। हालांकि इस बीच जंगलों में आग और मौसम में बदलाव की चुनौतियां भी सामने आ रही हैं।
1: ऐसे में देखिए, प्रशासन ने चारधाम यात्रियों को यात्रा मार्ग पर सावधानी बरतने की सलाह भी दे दी है।
2: देवभूमि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। हर रोज हजारों की तादाद में श्रद्धालु बाबा केदार और भगवान बद्री विशाल के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं, तो वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री में माँ गंगा और माँ यमुना के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी हैं। ऐसे में चारों धामों के दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों का आंकड़ा 24 लाख पार कर गया है, जो चारधाम तीर्थयात्रियों का नया रिकॉर्ड है। बद्रीनाथ धाम हो या केदारनाथ, यमुनोत्री हो या गंगोत्री, हर तरफ श्रद्धालुओं का जमावड़ा है। नाम जप है, भजन कीर्तन है और चेहरे पर भगवान के दर्शन की अभिलाषा। इनमें सबसे ज्यादा तीर्थयात्री केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। वहीं बद्री विशाल के धाम में भी आस्था की अद्भुत छटा देखने को मिल रही है। चारधाम यात्रा प्रबंधन एवं नियंत्रण संगठन ऋषिकेश की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक केदारनाथ धाम में सबसे ज्यादा 9,27,363 श्रद्धालु पहुंचे हैं। बद्रीनाथ धाम में 6,68,159, गंगोत्री धाम में 4,20,231 और यमुनोत्री धाम में 4,11,633 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। हेमकुंड साहिब में भी यात्रा शुरू होने के बाद अब तक 19,558 श्रद्धालु पहुंचे हैं।
3: चारों धामों के साथ पांचवा जो जिसे हम धाम कहते हैं हेमकुंड साहिब की यात्रा भी चल रही है। ऐसे में अब जो जून का महीना होगा फूलों की घाटी भी खुल जाएगी, जून में स्कूलों की छुट्टियां हो जाएंगी, ऐसे में यात्रा बढ़ेगी, तो उसके लिए कहीं ना कहीं इस समय प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। लेकिन अभी तक बद्रीनाथ धाम यात्रियों से खचाखच दिखाई दे रहा है। जो उत्साह है वो सड़क से लेकर मंदिर तक हर तरफ यात्रियों का जमावड़ा इस समय देखने को मिल रहा है। इस बार मई के महीने में ही कई पुराने रिकॉर्ड अलग दिखाई दे रहे हैं। इतनी संख्या आज तक मई के महीने में देखने को नहीं मिली है। हालांकि जून के महीने में यात्री आंकड़ा हमेशा बढ़ता था, लेकिन मई के महीने में इतना ज्यादा यात्री का आंकड़ा देखने को नहीं मिला है।
2: चारों धामों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ ये बता रही है कि चार धाम में उनकी आस्था अटूट है। हालांकि मौसम में आए बदलाव ने अब तीर्थयात्रियों की चुनौतियां भी बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए चमोली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं जंगलों में लगी आग भी तीर्थयात्रियों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। ऐसे में यात्रा सीजन के पीक दौर में लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन और पुलिस व्यवस्थाओं को और मजबूत किया जा रहा है। वहीं प्रशासन ने चारधाम यात्रियों को यात्रा मार्ग पर सावधानी बरतने की सलाह भी दी है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सिंहवाल और चमोली से कमल नैन सिरोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
0: हम वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आपका ही मत जाएगा। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay locked into the NBA playoffs with ESPN Radio. Get around-the-clock sports talk covering every matchup, every storyline, and every big moment as the games unfold. And throughout the playoffs, catch select live games bringing you courtside for some of the biggest showdowns. From nonstop analysis to can't-miss action, ESPN Radio is your home to follow the NBA playoffs. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
6: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
7: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
8: को समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: बिहार के जमुई के एक गांव से निकल रही है संघर्ष से संकल्प तक की ऐसी कहानी जिसकी हर ओर प्रशंसा हो रही है। यहां पर एक युवक के संकल्प ने बस्ती की तस्वीर बदल दी है।
2: देखिए, यहाँ का एक युवक बच्चों में शिक्षा की अलख जगाने के लिए उन्हें अपने ही ई रिक्शा से स्कूल पहुंचा रहा है। बस्ती के बच्चों की पढ़ाई के लिए युवक के इस प्रयास ने पूरे गांव में शिक्षा की अलख जगा दी है।

0: जयकांत मांझी हर दिन करीब 80 बच्चों को घर से स्कूल और फिर स्कूल से वापस उनके घर तक पहुंचाते हैं। और यहाँ मांझी सिर्फ वाहन चालक की भूमिका नहीं निभा रहे, बल्कि बच्चों को पढ़ाई से जोड़ने के लिए खुद गांव के अलग अलग टोले में जाकर आवाज लगाते हैं, कई छोटे बच्चों को तैयार करवाते हैं और फिर उन्हें अपने ई रिक्शा में बैठाकर स्कूल लेकर जाते हैं।
1: गार्जियन बोलता था कि हो उतना दूर बचवा कैसे जीता, थक जाता है तो यह होता है वो होता है, तो इस कारण से हम सोचे कि हम एगो पहले सबसे पहले हम टीवीएस एगो सेकंड हैंड लिए लूना, अब उससे बच्चा को तीन गो चार गो हर एक हम लाते थे, कम से कम 10 बार 1 लीटर मतलब 120 रुपये का तेल हमेशा मतलब खाली बच्चा में ही खत्म एक दिन का। तो हम सोचे कि बहुत दिन होगा तो हम सोच रहे कि नहीं अब एगो टोटो खरीद ले ना तो टाइम भी बचत हो जाए और बच्चा भी सुरक्षित जाएगा उसमें।
0: जयकांत मांझी बताते हैं कि बचपन में गरीबी ने उनकी पढ़ाई को कई बार रोकने की कोशिश की, परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि किताब कॉपी खरीदना भी मुश्किल हो जाता था, कभी ईंट भट्टे पर मजदूरी करनी पड़ी तो कभी दिहाड़ी कर पढ़ाई का खर्च निकालना पड़ा। कई बार हालात ऐसे बने कि पढ़ाई छोड़ देने का मन हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। यही संघर्ष आज उन्हें समाज के बच्चों के लिए कुछ अलग करने की प्रेरणा देता है।
1: गुजरा है जो हम देखे हैं, गरीबी और जो हालत देखे हैं महादेवी टोले बच्चे को जितना भी है, तो हम लोग तो किसी तरह से तो इतना तक पहुंचे और देखे कि बच्चा का यहाँ आना जाना बहुत कम था, मतलब एक भी महादलित का बच्चा यहाँ एक भी बच्चा नहीं पढ़ता।
0: पहले जिन गलियों में सुबह बच्चों की आवाज नहीं सुनाई देती थी, वहाँ अब हर दिन स्कूल जाने की उत्सुकता नजर आती है।
2: टोटो खरीदा तो बच्चा में कुछ उत्साह आया, जिसके कारण बच्चा में उपस्थिति बढ़ने लगा और छोटे छोटे बच्चे भी विद्यालय आने लगे जो पहले कभी नहीं आते थे, जिसके कारण विद्यालय का शैक्षणिक माहौल बदलने लगा।
0: मांझी की इस पहल का असर अब पूरे इलाके में साफ दिखाई देने लगा है। पहले जिन परिवारों के बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, वे अब नियमित रूप से पढ़ाई के लिए पहुंच रहे हैं और अब करीब 100 बच्चे शिक्षा से जुड़ चुके हैं।
3: स्कूल के प्रयास को देखता हूं, उनके प्रयास काफी प्रशंसनीय है, प्रेजवर्दी है और काफी ही उनका काम काफी सराहनीय है।
0: जयकांत मांझी ने ये साबित कर दिया है कि बदलाव के लिए बड़े संसाधनों की जरूरत नहीं होती, बल्कि मजबूत इच्छा शक्ति से भी बड़े बदलाव संभव हैं। केंडी गांव में दौड़ता ये ई रिक्शा अब सिर्फ बच्चों को स्कूल तक नहीं पहुंचा रहा, बल्कि एक पूरे समाज को शिक्षा और बेहतर भविष्य की ओर ले जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: IIT दिल्ली का सेंट्रल रिजर्व फैसिलिटी यानी CRF देश की सबसे बड़ी अत्याधुनिक रिसर्च सुविधाओं में से एक माना जाता है। यहां पर हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग, बायोमेडिकल रिसर्च, मटेरियल साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में रिसर्च की जा रही है।
5: CRF ने देश में रिसर्च को एक और नई दिशा दी है और यहां पर क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप समेत कई उपकरणों के माध्यम से अत्याधुनिक रिसर्च किए जा रहे हैं।
6: IIT दिल्ली में मौजूद सेंट्रल रिसर्च फैसिलिटी यानी CRF देश की सबसे बड़ी अत्याधुनिक रिसर्च सुविधाओं में से एक मानी जाती है। यहाँ ऑप्टिकल कैरेक्टराइजेशन, हाई रिजोल्यूशन इमेजिंग, बायोमेडिकल रिसर्च, मटेरियल साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में रिसर्च की जा रही है। बुधवार को IIT दिल्ली के कैंपस में CRF डे के मौके पर देश की अत्याधुनिक रिसर्च सुविधाओं और वैज्ञानिक उपलब्धियों का प्रदर्शन किया गया। इन्हीं में से एक है अत्याधुनिक क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसकी मदद से वैज्ञानिक प्रोटीन, वायरस और बायोमोलिक्यूल की 3D संरचना को बेहद सूक्ष्म स्तर पर देख सकते हैं। यह तकनीक मेडिकल रिसर्च और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बेहद अहम मानी जा रही है।
7: क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है और माइक्रोस्कोप का क्या काम होता है हम जानते हैं, किसी भी वायरस की बारीक से बारीक इमेजेस निकालने के लिए, किसी वायरस का या प्रोटीन का क्या स्ट्रक्चर है ये जानने के लिए। एक बार जब रिसर्चर स्ट्रक्चर जान जाते हैं तो उसके बाद ही उसकी जो दवा है वो तैयार होती है या फिर वैक्सीन जो है वो तैयार किया जाता है। जब कोविड के लिए वैक्सीन बनी तो उसके लिए भी इसी तरह का प्रोसेस अपनाया गया कि पहले उसका वायरस का स्ट्रक्चर जाना गया, उसके हिसाब से फिर उसकी जो वैक्सीन है वो तैयार की गई। ये माइक्रोस्कोप दुनिया के सबसे एडवांस्ड माइक्रोस्कोप में से एक माना जाता है।
8: इस मशीन के जरिए किसी भी वायरस को समझकर उसके लिए वैक्सीन या दवा तैयार की जा सकती है। यह अत्याधुनिक मशीन -190 डिग्री सेल्सियस तापमान पर काम करती है और जैविक नमूनों की हाई रेजोल्यूशन इमेज तैयार करती है। इस तकनीक की मदद से वायरस प्रोटीन और सेलुलर संरचनाओं को उनकी वास्तविक अवस्था में समझा जा सकता है। इस तकनीक को आधुनिक बायोमेडिकल रिसर्च की रीढ़ माना जा रहा है।
9: इन टर्म्स ऑफ ऑटोमेशन ये हाईली ऑटोमेटेड है, थ्रूपुट ज़्यादा है कि हम एक टाइम पे हम 12 सैम्पल्स लोड कर सकते हैं, इमेज कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर काफ़ी एडवांसमेंट है, आप ओवरनाइट डेटा कलेक्शन लगा सकते हैं जो कि मैन पावर को कम करता है।
8: FESEM यानी फील्ड एमिशन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी एक अत्याधुनिक उपकरण है जिसका इस्तेमाल यहाँ के वैज्ञानिक कर रहे हैं। ये एक बेहद हाई मैग्निफिकेशन पर मटेरियल की सतह की विस्तृत इमेज उपलब्ध कराती है। इससे वैज्ञानिक नैनो स्तर की संरचनाओं और बेहद सूक्ष्म खामियों का अध्ययन कर सकते हैं जिन्हें सामान्य माइक्रोस्कोप से देख पाना संभव नहीं होता।
7: आप कभी अस्पताल जाते होंगे तो आपको जो पट्टी किसी घाव पर बांधी जाती होगी वो महज 5-10 रुपए की आती होगी, लेकिन आजकल ऐसे बैंडेज भी आते हैं जो सर्जरी के बाद बांधे जाते हैं, उनकी कीमत लगभग 3,000 रुपए तक होती है। अंतर क्या है? दरअसल ये इसी रिसर्च का हिस्सा था, ये अब एक ऐसे बैंडेजेस बन गए हैं जिनसे कोई भी बैक्टीरिया आपके घाव तक पहुंच ही नहीं सकता। इस तरह की रिसर्च इस माइक्रोस्कोप के जरिए होती है।
8: इस मशीन का इस्तेमाल मौजूदा वक्त में अच्छे क्वालिटी के कपड़े बनाने और सिविल कंस्ट्रक्शन में बेहतर क्वालिटी के लिए किया जा रहा है।
10: पहले हम लोग जो कन्वेंशनल हमारे माइक्रोस्कोप जो होते थे उनका जो मैग्निफिकेशन होता था, जो बड़ा करने की बेसिकली कहते हैं किसी चीज़ को जूम करके देखने की जो पावर थी वो 1000x ज़्यादा से ज़्यादा होती थी, 100x 200x 1000x तक हम लोग जाते थे ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो होते थे। बट इसमें हमारा क्या है कि सोर्स कोड जो सोर्स है वो इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से हम किसी भी सरफेस को, किसी भी सैंपल के सरफेस को 300,000 या 400,000 गुना तक देख सकते हैं, जो हम लोग कहते हैं कि नैनो पे रियल में काम होता है। तो ये मशीन जब से नैनो में काम होना शुरू हुआ तो नैनो के लिए ये बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी टूल है।
8: इन उपकरणों की मदद से वैज्ञानिक परमाणु स्तर तक रिसर्च और विश्लेषण कर सकते हैं। IIT दिल्ली का यह प्रयास न सिर्फ देश में वैज्ञानिक शोध को नई दिशा देगा बल्कि स्टार्टअप्स, MSMEs और युवा वैज्ञानिकों के लिए भी नई संभावनाओं के दरवाजे खोलेगा। मनीष चौरसिया, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे।
5: योग की ताकत दुनिया मानती है क्योंकि ये तन और मन को एक करने की ताकत रखता है। जो योग करेगा उसका मन स्वस्थ रहेगा और मन स्वस्थ रहेगा तो तन भी स्वस्थ रहेगा। तभी तो आज 100 से ज्यादा देश भारत का सिखाया योग करते हैं।
11: लेकिन अब आप अपने इस हुनर से मेडल भी जीत सकते हैं। दरअसल 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स में योग को प्रतियोगिता के तौर पर शामिल किया गया है।
12: सेहत का खजाना अब सम्मान का खजाना भी बनेगा। योग अब सिर्फ जीवन नहीं बल्कि जीत भी बनेगा। इसके लिए भारत ने 2030 में अहमदाबाद में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में योग को शामिल करने की तैयारी कर ली है। केंद्र खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने ऐलान किया कि 2030 अहमदाबाद कॉमनवेल्थ गेम्स में योगासन को भारतीय पारंपरिक मेडल स्पोर्ट के रूप में शामिल किया जाएगा। असल में मेजबान होने के नाते भारत के पास योग को शामिल करने का सुनहरा मौका मिला है। मेजबान देश को एक या दो पारंपरिक खेल शामिल करने का अधिकार होता है। भारत कुछ और स्वदेशी खेलों में कबड्डी, खो खो, मलखंब को भी शामिल करने पर भी विचार कर रहा है। यानी जब 2030 में अहमदाबाद में खेलों का महाकुंभ कॉमनवेल्थ होगा तब पूरी दुनिया को भारत की इस प्राचीन विधा का नया रूप दिखेगा। इससे पहले देश में वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप होने जा रही है। अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप होगी, जिसमें 75 से ज्यादा देश शामिल होंगे। 12 स्पर्धाओं में 500 से ज्यादा प्रतिभागी होंगे। जूनियर, युवा और स्पेशल कैटेगरी भी होगी। मतलब ये हुआ कि जो लोग रोज सुबह पार्क में आसन लगाते हैं, वो अब कॉमनवेल्थ गेम्स के मेडल जीतने का सपना देख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: साथ इन तमाम खबरों के बाद लंच टाइम में आज के लिए बस इतना ही,
11: और चलिए हम दोनों को इजाजत दीजिए। अच्छे पॉजिटिव खबरें जारी हैं, आप देखते रहिए जीएनए।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
14: The weather in Central Ohio just got better, and so should your loan rate. CME Federal Credit Union wants to try to beat your current loan rate by 2% on autos and toys. Plus, enjoy no payments for 90 days on car loans and no payments for 60 days on motorcycles, boats, and more. With car rates as low as 4.9% APR and toy rates starting at 6.5% APR, it's the perfect time to save. Apply today at cmefcu.org. Terms apply. Minimum floor rates 4.99% APR cars, 6.5% APR other vehicles. Federally insured by NCUA.
15: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. Thank God I get to wait. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
16: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay locked into the NBA playoffs with ESPN Radio. Get around-the-clock sports talk covering every matchup, every storyline, and every big moment as the games unfold. And throughout the playoffs, catch select live games bringing you courtside for some of the biggest showdowns. From nonstop analysis to can't-miss action, ESPN Radio is your home to follow the NBA playoffs. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के।
17: सास बहू और बिटिया में आज बिखरेंगे प्यार के रंग और जुड़ेगा किस्मत कनेक्शन। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बिटिया में।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
18: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
5: मौसम को लेकर आईएमडी ने जारी किया बुलेटिन। इस साल देश में सामान्य से कम रहेगा मॉनसून, सिर्फ 90% बारिश का अनुमान। मध्य और दक्षिण भारत में कम बरसेंगे बादल। रामनगरी में भक्तों को मौसम ने दी सौगात, बारिश के चलते तापमान में आई कमी। सुहाने मौसम में भक्त कर रहे हैं रामलला के दर्शन। हेमकुंड साहिब में भारी बर्फबारी, पूरे जोश और उत्साह के बीच सिख संगत पहुंच रही है धाम। अब तक 22,000 से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। बिहार में मौसम का बदला मिजाज, पटना समेत कई जिलों में जमकर बरसे बादल, कई जगहों पर तेज आंधी तूफान। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना, भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत, कई इलाकों में जल भरा। दर्शकों को आज मनोरंजन का मेगा डोज, सिनेमा घरों में 9 फिल्में रिलीज, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 5 नई फिल्में और सीरीज रिलीज। आईपीएल फाइनल के लिए आज आखिरी लड़ाई, क्वालिफायर 2 में गुजरात और राजस्थान रॉयल्स के बीच होगी टक्कर। जीतने वाली टीम फाइनल में 31 मई को आरसीबी से भिड़ेगी।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
5: अयोध्या के श्रीराम मंदिर में एक बार फिर उत्सव की तैयारी, आज मां भगवती मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण का भव्य आयोजन। शाम 6 बजे शुरू होगा मां भगवती मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण समारोह, 1 घंटे चलेगा दिव्य अनुष्ठान। महिलाएं ही संपन्न करेंगी ध्वजारोहण की पूरी प्रक्रिया, साध्वी रितुम्बरा करेंगी ध्वजारोहण, सीआरपीएफ की महिला जवान रस्सी खींचकर पूरा करेंगे अनुष्ठान। आयोजन में करीब 3,500 महिलाओं के शामिल होने की संभावना, दिखेगा अध्यात्म श्रद्धा और मातृशक्ति का अद्भुत संगम। कार्यक्रम के लिए मंदिर परिसर की विशेष सजावट, देशभर से मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी की महिलाएं अयोध्या पहुंची। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए। राम मंदिर परिसर के बाहर सुबह से लगी भक्तों की लंबी कतार, भक्तों ने लगाए जय श्री राम के जयकारे। चितूर के विनायक स्वामी मंदिर में उमड़ा भक्तों का मेला, विधि विधान से श्रद्धालुओं ने की पूजा पाठ। गर्मी की छुट्टियों के चलते बड़ी श्रद्धालुओं की संख्या, सुबह से लगी भक्तों की कतार। भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने की भंडारे का आयोजन, बड़ी संख्या में भक्तों ने किया प्रसाद ग्रहण। शिरडी के साईं बाबा को 3,507 किलो केसर आम का चढ़ावा चढ़ाया गया, पुणे के भक्त ने अर्पित किए आम। 60,000 भक्तों का आमरस के प्रसाद से हुआ मुंह मीठा, आम की सुगंध से महका मंदिर परिसर। किसान करगल भाई पिछले 6 वर्षों से आम की पहली खेप साईं चरण को करते आ रहे हैं दान, भक्त ने कहा सब बाबा की देन है। भक्तों ने लिया आमरस का आनंद, कहा पहली बार हमें आमरस मिला है। प्रसादालय में प्रतिदिन हजारों भक्त करते हैं प्रसाद ग्रहण, प्रसाद में 2 सब्जियां, कड़ी, चावल और चपाती दी जाती है। उज्जैन में बाबा महाकाल की उतारी गई भस्म आरती, भक्तों ने लगाए हर हर महादेव के जयकारे। बाबा महाकाल का अभिषेक के बाद दूध, दही, घी, शहद और फूलों के रस से किया गया पूजन। महाकाल को रजत चंद्र, त्रिशूल, मुकुट और आभूषण अर्पित कर किया गया श्रृंगार, भांग, चंदन, ड्राई फ्रूट और भस्म का लगाया गया भोग। हरिद्वार पहुंचे पूर्व क्रिकेटर और पूर्व सांसद नवजोत सिंह सिद्धू, देखने के लिए लगी भीड़। नवजोत सिंह सिद्धू ने मां माया देवी मंदिर और भैरव मंदिर में की पूजा, भगवान का लिया आशीर्वाद। चारधाम यात्रा में भारी बारिश के बीच भी उमड़ा आस्था का सैलाब, अब तक 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। बाबा केदार के दर्शन के लिए पहुंचे सबसे ज्यादा भक्त, आंकड़ा पहुंचा 9 लाख के पार। बद्रीनाथ धाम को लेकर भी भक्तों में जोरदार उत्साह, अब तक करीब 7,25,000 से ज्यादा लोगों ने दर्शन किए। यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम में लगा भक्तों का मेला, अब तक दोनों जगहों पर 8.5 लाख भक्तों ने लगाई हाजिरी। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे में भी भक्तों का लगा मेला, अब तक 22,000 से ज्यादा लोगों ने किए दर्शन। हेमकुंड साहिब का प्रकृति ने किया श्वेत श्रृंगार, कपाट खुलने के 7 दिन बाद ही यहां जोरदार बर्फबारी का दौर जारी। हेमकुंड साहिब में चारों ओर बिछी बर्फ की सफेद चादर, मई की गर्मी के बीच श्रद्धालु बर्फबारी का ले रहे हैं आनंद। बर्फबारी पर आस्था भारी, बड़ी संख्या में भक्तों ने गुरुद्वारा साहिब पहुंचकर किया अरदास। बर्फबारी के चलते पवित्र सरोवर का पानी और भी ज्यादा हुआ ठंडा, श्रद्धालु सरोवर में लगा रहे हैं डुबकी। श्रद्धालुओं को वापस भेजा जा रहा है बेस कैंप घांघरिया, एसडीआरएफ और गुरुद्वारा सेवादार सुरक्षा का रख रहे हैं ध्यान। मौसम को लेकर आईएमडी ने जारी किया बुलेटिन, इस साल देश में सामान्य से कम रहेगा मानसून। इस साल सिर्फ 90% बारिश का अनुमान, मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत में कम बरसेंगे बादल। देश में इस साल जून से सितंबर के बीच सामान्य से कम बारिश होने की संभावना, उत्तर पूर्व भारत में सामान्य बारिश होने का पूर्वानुमान। जून महीने में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार समेत 12 राज्यों में बने हीट वेव के हालात। दिल्ली समेत उत्तर भारत में बारिश के बाद तापमान में आई गिरावट, लोगों को गर्मी से मिली राहत। रेवाड़ी में बदला मौसम का मिजाज, जोरदार बारिश के साथ गिरे ओले। जोरदार बारिश से तापमान में आई गिरावट, लोगों को गर्मी से मिली राहत। अमरावती में नौतपा की तपिश के बीच राहत की फुहार, बारिश संग जमकर गिरे ओले। भारी बारिश और ओले गिरने से सड़कों पर जलभराव, यातायात हुआ प्रभावित। श्रीगंगानगर में भी बारिश के साथ जमकर गिरे ओले, तापमान में आई गिरावट। झांसी में मौसम ने बदला मिजाज, कई इलाकों में बारिश के साथ गिरे ओले। बारिश और ओले गिरने से तापमान में आई गिरावट, लोगों को गर्मी से मिली राहत। अयोध्या में सुबह सुबह हुई जोरदार बारिश, तापमान में आई भारी गिरावट। वाराणसी में भी झमाझम हुई बारिश, लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। धौलपुर में भी मौसम ने ली करवट, झमाझम हुई बारिश। सुकमा में भी मौसम का बदला मिजाज, कई इलाकों में हुई आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश। जोरदार बारिश से सड़कों पर गिरे पेड़, यातायात भी हुआ प्रभावित। दार्जिलिंग में मौसम ने ली करवट, जमकर हुई बारिश। भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात, पानी के तेज बहाव में बही बाइक। देहरादून के कई इलाकों में बिजली के साथ हुई जोरदार बारिश, गर्मी से लोगों को राहत मिली। पटना में सुबह सुबह बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हुई जोरदार बारिश। भारी बारिश से तापमान में आई भारी गिरावट, लोगों को मिली गर्मी से राहत। उत्तर भारत में गर्मी के चलते पर्यटकों से गुलजार हुआ श्रीनगर, बड़ी संख्या में श्रीनगर पहुंच रहे हैं सैलानी। सैलानी शिकारा राइड का ले रहे हैं आनंद, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम। सैलानियों की बढ़ती संख्या से मसूरी में लगा वाहनों का लंबा जाम, रेंगती दिखी गाड़ियां। ओडिशा के किसान ने उगाया दुनिया का सबसे महंगा आम मियाजाकी, 1.5 लाख से 3 लाख तक बताई जा रही है कीमत। आम का एक एक फल 1 किलो से अधिक वजन, आम को देखने के लिए पहुंचे यहां लोग। सरिस्का में गूंजी किलकारी, बाघिन ST22 ने 3 शावकों को जन्म दिया, बाघों की संख्या हुई 55। नागपुर में कुएं में गिरा बाघ, वन विभाग की टीम ने बाघ का सफल रेस्क्यू किया। अगरतला में राज्यपाल इंद्र सेना रेड्डी नल्लू ने जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 का उद्घाटन किया, डिजिटल वन अधिकार अधिनियम का भी किया शुभारंभ। पुरी के चामरखेरा गांव के युवक सौम्या रंजन साहू ने किया कमाल, ओडिशा सिविल सेवा परीक्षा में हासिल किया 105 रैंक। ओडिशा सिविल सेवा परीक्षा सफल होने पर परिवार में जश्न का माहौल, गांव के लोगों ने बधाई दी। कन्नूर में भारतीय नौसेना अकादमी में वसंत सत्र 2026 का पासिंग आउट परेड, वाइस एडमिरल समीर सक्सेना हुए शामिल। वाइस एडमिरल समीर सक्सेना ने परेड की सलामी ली, नौसेना को मिले सैकड़ों नए जवान। भुज में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भारत पाकिस्तान सीमा पर हरामी नाले के पास सीमावर्ती क्षेत्र का दौरा किया, अधिकारियों से इलाके के बारे में जानकारी ली। मुजफ्फरपुर की शाही लीची अब खुशबू से जीत रही है दिल, शाही लीची अगरबत्ती बनी देश विदेश में नई पहचान। बांस की सीख पर तैयार होती है खास अगरबत्ती, लीची फ्रेग्रेंस से आती है मीठी और प्राकृतिक खुशबू। शाही लीची अगरबत्ती से सालाना 50 से 60 लाख रुपए की हो रही है आमदनी, कारोबार को 2 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य। भरतपुर में भीषण गर्मी से ट्रांसफार्मर पर बड़ा दबाव, ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए लगाए गए 2 कूलर। गर्मी से हीटिंग की समस्या रोकने के लिए अनोखा प्रयोग, बिजली विभाग ने सिस्टम को दिया नया कूलिंग सपोर्ट। दर्शकों को आज मनोरंजन का मेगा डोज, सिनेमाघरों में 9 नई फिल्में रिलीज, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 5 नई फिल्में और सीरीज रिलीज। कंगना रनौत की फिल्म भारत भाग्य विधाता का मोशन पोस्टर जारी, 12 जून को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। बेबी डू डाई डू की रिलीज डेट घोषित, 3 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी फिल्म। डॉन 3 विवाद में सलमान खान की एंट्री, रणवीर फरहान अख्तर के बीच कराएंगे सुलह। इम्फाल में MSFDS 16वें मणिपुर राज्य फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन, मणिपुर सिनेमा की उत्कृष्टता को किया गया सम्मानित। अनुपम खेर ने श्रीराम भूमि की शूटिंग शुरू की, सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर की। करण जौहर ने शाहरुख खान, आलिया भट्ट को किया अनफॉलो, इंस्टाग्राम पर करीना कपूर सहित कई करीबी दोस्तों को हटाया, बोले डिजिटल डिटॉक्स कर रहा हूं। आईपीएल फाइनल के लिए आज आखिरी लड़ाई, क्वालिफाई 2 में गुजरात और राजस्थान रॉयल्स के बीच होगी टक्कर। पंजाब के न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा मुकाबला, जीतने वाली टीम फाइनल में 31 मई को आरसीबी से भिड़ेगी। राजस्थान और गुजरात के बीच आईपीएल में अब तक कुल 10 मुकाबले खेले, इनमें 7 मुकाबलों में से गुजरात ने जीत हासिल की, गुजरात का पलड़ा भारी। सियोल में रोबोट्स का अनोखा फैशन शो, गैलेक्सी कॉरपोरेशन ने पेश किया मैक 33 फिजिकल AI फैशन शो। गैलेक्सी रोबोट पार्क में देखा टेक्नोलॉजी और फैशन का संगम, रोबोट्स ने इंसानी मॉडल के साथ रैंप वॉक कर सबको चौंकाया। रोबोट्स ने स्टाइलिश अंदाज में किया कैटवॉक, मॉडल्स ने रोबोट्स के साथ एक जैसे आउटफिट्स में प्रदर्शन किया। रैंप पर फैशन और AI की कोरियोग्राफ परफॉर्मेंस ने मोहा सबका मन, रोबोट्स और मॉडल्स ने साथ मिलकर दिए शानदार पोजेस। फैशन शो में देखा फिजिकल AI का भविष्यवादी कॉन्सेप्ट, रोबोट्स ने कोरियोग्राफी के साथ किया परफॉर्म। चीन में पॉपमार्ट ने वैश्विक ब्रांड बनने का रखा बड़ा लक्ष्य, विशाल घरेलू बाजार को बताया कलाकारों के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म। यूनिक कैरेक्टर्स को वैश्विक स्तर पर लोकप्रिय बनाने का लक्ष्य, नए डिजाइन और कैरेक्टर्स डेवलपमेंट पर निवेश पड़ेगा। योशिकी की शानदार वापसी, स्पाइन सर्जरी के बाद फिर गूंजेगा संगीत, एक्स जापान के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी, अमेरिका में 2 खास कॉन्सर्ट। वॉल्ट डिज्नी कॉन्सर्ट हॉल में 16 से 17 जुलाई को होगा संगीत समारोह, स्कारलेट नाइट में दिखेगा जुनून, दर्द और दमदार ऊर्जा का संगम। क्लासिकल और रॉक म्यूजिक का अनोखा फ्यूजन बनेगा शो की खास पहचान, वॉलेट नाइट में योशु की सुनाएंगी संघर्ष से वापसी की प्रेरणादायक कहानी।
13: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
17: सास बहू और बिटिया में आज बिखरेंगे प्यार के रंग और जुड़ेगा किस्मत कनेक्शन। दोपहर 1:28 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बिटिया में।

0: Grab some friends and an ice-cold Mountain Dew today.
1: Mountain Dew!
2: All sports, all the time, right here on TuneIn. Catch live sports talk, expert analysis, and nonstop discussion from your favorite stations, like ESPN Radio.
3: Not missed out on one player that the Yankees wanted.
2: Big 12 Radio.
4: Today is Big 12 Insiders game day. We're breaking
2: and
4: down.
2: Talk sports.
5: I just can't see a turnaround in the way that we're going to perform and result.
2: And much more. Get your head in the game and never miss a minute of the action. Just search sports or ask your device to play your favorite sports talk station on TuneIn.
6: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
7: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
8: जो आपको अच्छी लगे तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
13: और चलिए हम नजर डाल लेते हैं उन वीडियोस पर जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, क्योंकि इनमें से कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ गुदगुदाएंगे, तो कुछ आपको इमोशनल कर देंगे।
14: नवजात भाई को पहली बार देखकर छोटी बहन की खुशी देखने लायक है। ठुमक ठुमक कर चलते हुए वो मासूमियत से जमीन पर बैठ गई और अपने नन्हे भाई को गोद में लेने के लिए हाथ फैला दिए। उसकी चमकती आंखों और खिलखिलाती मुस्कान ने पूरे घर के माहौल में खुशियां भर दी। भाई को सीने से लगाने की उसकी मासूम चाहत ने सभी का दिल जीत लिया। ये खूबसूरत पल सिर्फ एक मुलाकात नहीं, बल्कि भाई बहन के अनमोल रिश्ते और निश्चल प्रेम की प्यारी शुरुआत बन गया। जहाँ लोग छोटी छोटी परेशानियों में हार मान लेते हैं, किस्मत को कोसने लगते हैं, वहीं ये शख्स हौसले की नई मिसाल बनकर सामने आया है। एक हाथ न होने के बावजूद अपने हुनर से लोगों के चेहरों पर मुस्कान और आत्मविश्वास दोनों सजा रहा है। इनका काम सिर्फ हेयर कटिंग का नहीं है, बल्कि ये साबित करना है कि मेहनत, जज्बा और आत्मविश्वास के आगे हर मुश्किल छोटी पड़ जाती है। अपने हौसले से ये अपनी तकदीर खुद लिख रहे हैं।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
15: Guided by a shared purpose and a spirit of collaboration, Emory University students push each other to think creatively and work cooperatively, knowing that different perspectives lead to new ideas.
16: What makes Emory special is that it has very rigorous academics,
11: but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
15: Learn more at emory.edu.
16: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
7: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
10: और दुर्भाग्य कहता है
17: कि भाग्य कहीं दूर नहीं
9: अविश्वास में विश्वास बसता है
8: जो हमें अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है
6: गुड न्यूज टुडे
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है
18: देश देख रहा है अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे अच्छी खबर सच्ची खबर
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
2: मौसम को लेकर IMD ने जारी किया बुलेटिन, इस साल देश में सामान्य से कम रहेगा मॉनसून, सिर्फ 90% बारिश का अनुमान, मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत में कम बरसेंगे बादल। रामनगरी में भक्तों को मौसम ने दी सौगात, बारिश के चलते तापमान में आई कमी, सुहाने मौसम में भक्त कर रहे हैं रामलला के दर्शन। हेमकुंड साहिब में भारी बर्फबारी, पूरे जोश और उत्साह के बीच सिख संगत पहुंच रही है धाम, अब तक 22,000 से ज्यादा भक्तों ने दर्शन किए। बिहार में मौसम का बदला मिजाज, पटना समेत कई जिलों में जमकर बरसे बादल, कई जगहों पर तेज आंधी तूफान। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना, भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत, कई इलाकों में जलभराव। दर्शकों को आज मनोरंजन का मिलेगा मेगा डोज, सिनेमाघरों में 9 फिल्में हुई रिलीज, OTT प्लेटफॉर्म पर 5 नई फिल्में और सीरीज रिलीज। IPL फाइनल के लिए आज आखिरी लड़ाई, क्वालिफाई 2 में गुजरात और राजस्थान रॉयल्स के बीच होगी टक्कर, जीतने वाली टीम फाइनल में 31 मई को RCB से भिड़ेगी।
1: वाडीलाल आइसक्रीम, जरा मुस्कुराइए, वाडीलाल खाइए।

0: गुड आफ्टरनून, नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके फेवरेट शो सास बहू और बेटिया में। ऐसे आजकल पोल्यूशन, ट्रैफिक जैम, फ्यूल कॉस्ट्स, ये सब लोगों को परेशान कर रहे हैं। ऐसे में एक सिंपल इको फ्रेंडली उपाय है जो कर रहा है ट्रेंड। जी हाँ, जो है ये बाइसिकल। ना फ्यूल की टेंशन, ना पोल्यूशन की, और उसके साथ साथ हेल्थ भी सुपर फिट। तो आज तो इस बाइसिकल के आसपास ही हम करेंगे एंटरटेनमेंट की बातें, और उसके साथ साथ लेकर हाजिर हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से हर अपडेट। आज तो हम चर्चा करेंगे बाइसिकल पर, फ्यूल सेविंग टिप्स पर, कार पूलिंग पर, और उसके साथ साथ स्मार्ट ट्रैवलिंग आइडियाज पर भी। तो चलिए फिर फटाफट शुरू करते हैं हमारा ये एंटरटेनमेंट से भरपूर एपिसोड हेडलाइंस के साथ।
1: तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही रहेंगे हम।
2: एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज से सजे सास बहू और बेटिया में आज देखिए, दुआ के लिए केक बनाते बनाते रसोई में विक्रांत और मन्नत के बीच होगा रोमांस।

किस्मत जोड़ेगी आरंभी और ध्रुव का कनेक्शन? क्या विश्वास को होगी जलन? लाला के लिए कुल्फी बनाएगी किशोरी, रसोई में होगी लाला और किशोरी की मस्तियाँ।

0: राज और ईशा के बीच आएगा सिंदूरी ट्विस्ट? क्या ईशा के सुहाग को लगेगा श्राप?
1: ऑर्डर मिल गया ना?
2: हाँ, मिल गया।
0: नया ऑर्डर मिलने पर झूम कर नाचेगी अनुपमा और उसकी टीम, प्रेम देगा चेतावनी।
3: अनुपमा जोशी नहीं खेल सकती,
4: हम भी खेल सकते हैं।
3: आपके इस लव यू जिंदगी अनु की रसोई कैफे को बर्बाद करूंगा, ये मेरा ओपन चैलेंज है।
0: और साथ ही स्टार प्लस की बहुएं करेंगी अपना 16 श्रृंगार फैशन के रंग में ढलने के लिए, क्योंकि वहां बनेंगे ढेर सारे रिश्ते सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटिया में।
5: अनुपमा तो कह रही हैं कि स्मार्ट लाइफस्टाइल चॉइसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और अननेसेसरी क्यों खर्चा करना। बस अनुपमा तो इशारा कर रही हैं यस हमारी इस इको फ्रेंडली एंड सस्ती साइकिल की तरफ। अब देखिए साइकिल में ना हमें पोल्यूशन की चिंता है ना हमें फ्यूल की, ऊपर से हमारी हेल्थ भी रहती है सुपर फिट। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको अनुपमा के पास और देखते हैं कैसी चल रही है इनकी जिंदगी की साइकिल।
3: अरे आप तो बिना शादी के बापूजी के घर जमाई बन गए।
0: दिग्विजय का थप्पड़ शो, राही की चेतावनी,
6: तो मैं वो तमाशा क्रिएट करूंगी कि आप दोनों इस दुनिया को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे।
0: प्रेम का अल्टीमेटम,
3: आपके इस लव यू जिंदगी अनु की रसोई कैफे को बर्बाद करूंगा, ये मेरा ओपन चैलेंज है, ओपन चैलेंज है।
0: स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में आज कोठारी हाउस में हो रहा है बवाल, क्योंकि दिग्विजय पहुंचा है मोटी बा और गौतम को सबक सिखाने के लिए। लेकिन आज तो प्रेम ने तमीज की रेखा पार कर ली है, उसने ना सिर्फ दिग्विजय को खरी खोटी सुनाई उल्टा सीधा कहा, बल्कि अनुपमा के कैरेक्टर पर भी उंगली उठा दी जिसे दिग्विजय बर्दाश्त नहीं कर पाए।
3: दोस्ती की आड़ में आप जो ये स्वांग रचा रहे हैं उसके आर पार मैं देख सकता हूँ। अरे आप तो बिना शादी के बापू

0: हाथ उठा ही लिया है तो मारो, मारते क्यों नहीं?
1: भाई प्रेम ने दिग्विजय को मारने से तो रोक लिया, लेकिन बदतमीजी में वो नहीं रुका। ऐसे में दिग्विजय ने प्रेम को चेतावनी दी है और तो और उसे चैलेंज भी कर दिया है, लेकिन दिग्विजय का प्रेम को यूं थप्पड़ मारना राही को रास नहीं आया। इसलिए देखिए कैसे गुस्से में आकर राही फिर से पहुंच गई है शाह हाउस में, और जाते के साथ ही उसने सभी घरवालों के सामने इस बात का खुलासा कर दिया कि दिग्विजय ने उसके पति प्रेम पर हाथ उठा दिया, जिसे सुनकर बाबूजी, घरवाले और अनुपमा सभी हैरान हैं। इतना ही नहीं, वो तो राही से वजह जानने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन राही सच बताने के बजाय सिर्फ अपना गुस्सा दिखा रही है और घर वालों पर भड़क रही है।
2: अरे तो हाथ उठाया क्यों, ये तो बताओ वजह जो भी हो। हाथ उठाना गलत है और इस गलती को मैं कभी माफ नहीं करूंगी। और मैं ना आपको वार्निंग दे रही हूँ, अगर वो आदमी मेरे या मेरे पति के आसपास भी दिखा ना, तो मैं वो तमाशा क्रिएट करूंगी कि आप दोनों इस दुनिया को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे।
3: राही,
2: राही कुछ सोच के तो बोलो, क्या बोल रहे हो? शट अप, यू शट अप राही। आज ना बिल्कुल भी सरकास्टिक मत होना, मेरा दिमाग ऑलरेडी घूम चुका है, तेरा भी नंबर लगा दूंगी मैं।
1: इससे पहले कि राही को शांत करने के लिए अनुपमा कुछ कहती, वहाँ पर दिग्विजय भी आ जाता है और राही टशन दिखाकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे में अनुपमा ने दिग्विजय से पूछा और दिग्विजय ने हामी भरी। बस फिर क्या, ये सुनते ही अनुपमा भी अपने आप को संभाल नहीं पाई, वो तो इमोशनल भी हो रही है और दिग्विजय से अपनी नाराजगी भी जता रही है। दिग्विजय ने तो सच बताने की कोशिश भी की, लेकिन अनुपमा सुनने को तैयार नहीं।
3: करके आपने मेरे और मेरे बच्चों के बीच की खाई को और गहरा कर दिया है सर।
4: पहले इसकी बात तो सुन ले।
3: बात सुन के क्या हो जाएगा बापूजी, जो हुआ है वो बदल जाएगा क्या? आपको क्या जरूरत थी मेरे बच्चों के ससुराल में जाने की, क्या जरूरत थी सर?
5: जी मैं आपकी क्यों?
3: नहीं चाहिए, मेरे लिए कुछ मत कीजिए सर। मैं अपने लिए खड़ी हो सकती हूँ, मैं अपने लिए लड़ सकती हूँ, मैं अपने लिए झगड़ सकती हूँ, मैं अपने लिए स्टैंड ले सकती हूँ, मैं अपने लिए सब कुछ कर सकती हूँ सर। मुझे किसी के सहारे की कोई जरूरत नहीं है, जरा भी नहीं है।
1: भाई अनुपमा की बातें सुनकर दिग्विजय का दिल टूट गया और तो और उसने अनुपमा से माफी भी मांगी प्रेम पर हाथ उठाने की। इतना ही नहीं, माफी मांगने के साथ साथ तो दिग्विजय ने अपना फैसला भी सुना दिया कि वो अनुपमा और उसके परिवार वालों की जिंदगी से दूर चला जाएगा, और ऐसा कहकर वो वहाँ से निकल भी जाता है और उसके पीछे पीछे जाते हैं बाबूजी भी सच जानने के लिए। लेकिन दिग्विजय सच बताने से मना कर देता है और उनके आगे हाथ जोड़कर जाने की परमिशन लेता है। इसी बीच बाबूजी को परी का कॉल भी आ जाता है, जो कुठारी हाउस में हुए बवाल के बारे में सारा सच बता देती है। तो वहीं अनुपमा अपने आप को कोस रही है कि ये सब उसी की गलती है, और तो और दिग्विजय पर भी इल्जाम लगा रही है, लेकिन बाबूजी ने आकर अनुपमा को सच बता दिया।
4: और दिग्विजय ने जो कुछ भी किया उससे सही और कुछ हो ही नहीं सकता।
3: ऐसे कैसे बोल सकते?
4: उसकी जगह मैं होता तो मैं भी वही करता।
3: पूरी बात सुन के आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं बापू जी? आप
4: पूरी बात किसी ने सुनी कहाँ है? यहाँ जो कुछ भी

0: अरे इन्होंने तो हमसे हमारी खुशियां छीन ली, हमसे हमारी इम्प्लॉय चुरा ली। खेल सिर्फ अनुपमा जोशी नहीं खेल सकती, हम भी खेल सकते हैं।
1: मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
0: आपके इस लव यू जिंदगी अनु की रसोई कैफे को बर्बाद करूंगा, ये मेरा ओपन चैलेंज है, ओपन चैलेंज है, ओपन चैलेंज है।
2: आज तो ईशा भी हमसे यही कह रही है कि ये जो साइकिल है इसे हम यूं ही तो नहीं सीख जाते कि एक दिन साइकिल पर बैठे और उसे चलाने लगे। साइकिल हम धीरे धीरे सीखते हैं, बैलेंस बनाना सीखते हैं, गिरते हैं, चोट लगती है, फिर से साइकिल पर बैठते हैं, फिर से उसे चलाते हैं। और हमारी जिंदगी भी कुछ ऐसी है जिसमें हमें बिल्कुल भी निराश नहीं होना चाहिए और बिल्कुल भी हार नहीं मानना चाहिए। गिर गए, फिर उठ जाओ, फिर से साइकिल पर बैठो, फिर से कोशिश शुरू करो। एक दिन तो तुम केपेबल हो ही जाओगे, बैलेंस बना लोगे और साइकिल लेकर जाओगे फिर से आगे। वैसे कितना इंपॉर्टेंट मैसेज लेकर आई हैं आज हमारे लिए ईशा, तो चलिए लेकर चलते हैं आपको पति ब्रह्मचारी के सेट पर और देखते हैं क्या कुछ हो रहा है इनकी कहानी में आज।
1: ईशा और सूरज का सिंदूरी कनेक्शन। एक हुए सूरज और ईशा।

0: फिर शुरू हुई ईशा की परीक्षा।
1: मार ले ले अपना बदला, जितना ले सकती है ले ले।
0: दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में आज सूरज और ईशा फिर से एक दूसरे के करीब आ गए हैं, जैसे कि पहले आया करते थे। वही अंदाज है, वही नोक झोंक है और वही दोनों के मिजाज भी हैं। जरा देखिए कैसे ईशा अपनी मांग में सूरज के नाम का सिंदूर लगा रही है और सूरज अपना पेपर ढूंढ रहे हैं। और इसी बीच आता है कहानी में ट्विस्ट। ईशा के सिंदूर की डिबिया गिरने ही वाली होती है कि सूरज उसे गिरने से बचा लेता है और ईशा सूरज के पेपर्स को थाम लेती है। दोनों एक दूसरे की चीजों को संभालते हैं और यही दोनों का कनेक्शन है।

0: बिल्कुल सही कहा। तो आज से एक डील, मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, तो आप हमेशा मेरे आईएएस की करियर को बचाएं और मैं आगे खोल के
1: जिंदगी भर चुप रहूंगा। बातें तो कुछ नहीं, ये फ्लैश है एक जो कि ईशा जी को याद आता है।
2: लाइक मैं घर पे सिंदूर लगा रही हूँ, ये सारी चीजें हो गई तो मैं सिंदूर लगा रही हूँ, ऑलरेडी रो रही हूँ बिकॉज रोना बंद ही नहीं हो रहा। ये हरेसमेंट वाली चीज हो गई, ताइमा को बचाना, आकाश को ईशा त्रिशूल लेके दौड़ती है उसे मारने पे, बहुत सारी चीजें हो गई और उसमें मैं सिंदूर लगा रही हूँ तो मुझे सिंदूर मेरे हाथ से गिरते हैं और मैं वैसे ही कैच कर लेती हूँ जैसे सूरज ने एक बार कैच किया था। तो वो चीज मुझे याद आती है कि उस टाइम सिंदूर ने मेरे सूरज ने मेरे सिंदूर की रक्षा की और मैंने किताब और मैंने आज उसके आईएएस के सपने को ही तोड़ दिया।
1: तो वही है, सूरज बोला रहता है कि ठीक है ईशा जी, आज से आप मेरे आईएएस के करियर को संभालना, मतलब इन शॉर्ट की मेरी पढ़ाई लिखाई और मुझे सुधारने की जिम्मेदारी लीजिए, एंड दूसरा मैं आपके सिंदूर का रक्षा करते रहूंगा। सो ये बोला रहता है, तो ये प्यारा सा एक फ्लैश है जो कि ईशा के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है। एंड डेफिनेटली ऑडियंस
2: चीजें बहुत डिफरेंट होती वापस दिखाते, तो कि अब सिंदूर भी, पति भी, दूसरे वो सारी चीजें ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू, सूरज पॉइंट ऑफ व्यू से मेस्ड अप हो गई है। अब आईएएस भी नहीं रहा सूरज और शादी भी ईशा की हो चुकी है।
3: भाई ये तो उन दिनों की बात है जब सूरज और ईशा एक दूसरे का हाथ थामे बिना ही एक दूसरे का साथ दिया करते थे, और आज ईशा की वही यादें ताज़ा हो रही हैं। फिलहाल तो ईशा ने सूरज पर ऐसा इल्जाम लगाया है जिसके चलते सूरज का डिमोशन हो गया है और उसके डिमोशन पर सूरज के पापा बेहद दुखी हैं। जरा देखिए कैसे अपने बेटे सूरज की नेम प्लेट लिए वो पहुंच गए हैं ईशा से मिलने, क्योंकि वो ईशा पर अपनी नाराजगी जताना चाहते हैं। इतना ही नहीं, आज तो उन्होंने ईशा के सामने घुटने तक टेक दिए।
4: आज मैं तेरे सामने घुटने टेकता हूँ। मार मुझे, ले अपना बदला, जितना ले सकती है ले।

0: पिछली बार भी मेरा बेटा तेरी वजह से एक साल तक मुझसे दूर रहा, और इस बार भी उसके दूर जाने की वजह तू नहीं है।
1: सूरज का जो पोस्ट है, पोजीशन, उसे डिमोशन मिल गया है एंड उसे किसी बोलते ना पुराने मतलब गांव देहात में भेज दिया जा रहा है जहां पे कोई सुख सुविधाएं नहीं हैं एंड डिमोशन हो गया है, आईएएस की पदवी से हट गए हैं, उसके लोअर पदवी पे आ गए हैं एंड वो घर छोड़कर जा रहे हैं। अब मुकाम यही है कि उसको अर्जेंट बेस पे वहाँ पर मतलब जाके पोजीशन लेना है एंड वो ऑन द डे सेम डे इमोशनल बोलते ना हैवी हार्टेड निकल चुका है घर से। अब वो जा रहा है और गाड़ी फुल रफ्तार से दौड़ रही है। अब आगे देखने में मजा आएगा, गाड़ी भी क्या होगा,
2: क्या होगा, बड़ा धमाका होगा,
1: धमाका होगा, एक्सीडेंट होगा। ईशा जी आ जाएंगी बंटी के साथ बाइक पे, बुलेट पे, ये सब ना हिंट दे रहे हैं,
2: आना नहीं है,
1: इसलिए तो हिंट दे दिया
3: भाई। सूरज और ईशा दोनों ने ही हिंट तो दे दिया, लेकिन ये हिंट सबसे पहले दिया है सूरज के पापा ने। असल में सूरज के पापा ईशा से इतने नाराज हैं कि उन्होंने ईशा को हाय तक दे दी।
0: तुझे दिल से बद्दुआ देता है तो तू अपनी शादीशुदा जिंदगी में कभी खुश नहीं रह पाएगी। बेटी से बढ़कर प्यार दिया तुझे, तूने हमें इस हद तक मजबूर किया, क्यों क्यों? एक काम की भाई लगी थी तुझे
2: तो मुझे पापा जी ने बद्दुआ दी है, श्राप दिया है कि तू अपनी शादीशुदा जीवन में कभी खुश नहीं रह पाएगी। और वही ईशा को इतना बड़ा शौक रहता है कि पापा जी आपने अनजाने में ही मुझे दे दिए बद्दुआ, बल्कि मैं सूरज की पत्नी और आपकी बहू ही हूँ और ये सब मुझे करना पड़ रहा है, पर मैं कुछ भी कह नहीं पाई क्योंकि मुझे पता है कि मैं फॉल्ट में हूँ, मैंने ही सूरज पे वो इल्ज़ाम डाला है और मैंने ही सारी चीज़ें मेस्ड अप कर दी है। और रीज़न है क्योंकि वरना ताइमा की जान खतरे में थी, ताइमा भगवान को प्यारी हो जाती तो मुझे उन्हें बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। पर मैं ये बोल ही नहीं सकती, जैसे वो एक सैक्रिफाइस छुपाया मैंने सूरज से कि मेरी शादी सूरज से हुई है, ये सारी चीज़ें करनी पड़ रही है, अब ये दूसरी चीज़ ऐड ऑन हो गई, तो ऐड ऑन पे ऐड ऑन नाराज़गी बढ़ती जा रही है।
3: अब जाने अनजाने सूरज के पापा ने ईशा को बद्दुआ तो दे दी और ईशा चाहकर भी अपने ससुर जी को ये नहीं बता पाई कि वो आज भी उनकी बहू है। बस उनके जाते ही वो जमीन पर गिरकर गड़गड़ा रही है, तड़प रही है और ये बद्दुआ उसे किस हद तक दुख देगी ये तो आने वाली कहानी में पता चल ही जाएगा। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
4: चलिए लंबी दूरी के लिए ना सही, लेकिन शॉर्ट डिस्टेंस के लिए तो बाइसिकल है एक अमेजिंग ऑप्शन। जी हाँ, देखिए फ्यूल सेविंग एंड उसके साथ साथ कंप्लीट फिटनेस, क्योंकि साइकिल आपको हमेशा फिट रखती है, ये तो है हमारी हेल्थ के लिए अमेजिंग। एंड फ्यूल सेविंग क्या, यहाँ तो फ्यूल की जरूरत ही नहीं है, वैसे जरूरत तो है यहाँ पर आपको हमारी इस अगली खबर की, जिसमें है आपके लिए अनलिमिटेड ड्रामा, क्योंकि हमारी इस अगली कहानी में फिर से आया है एक नया ट्विस्ट जो लेकर आया है एक नई सिचुएशन, यानी लॉट्स ऑफ ड्रामा। लेट्स चेक इट आउट।

यूनिवर्स के सीरियल दो दुनिया एक दिल में शिवाय तो अपने काम में बिजी है। में वहाँ पर आध्या पहुँच गई है उसे ले जाने के लिए, लेकिन जैसे ही शिवाय की नज़र आध्या पर पड़ती है तो वो उसे देखकर मुग्ध हो जाते हैं, क्योंकि आज आध्या उसके सामने 16 श्रृंगार करके आई है। ऐसे में शिवाय का अपने आप को रोक पाना नामुमकिन है।

भाई आज तो शिवाय और आध्या के ऊपर प्यार का रंग ऐसे चढ़कर बोल रहा है कि दोनों अपने आप को रोक नहीं पा रहे। कभी आध्या शिवाय की ओर खींची जा रही है तो कभी शिवाय आध्या की ओर, और देखिए कैसे दोनों एक दूसरे का हाथ थामे, एक दूसरे की बाहों में प्यार में गुम हो रहे हैं।

0: भाई शिवाय ने तो आध्या का दिल पहले से ही जीत रखा है, लेकिन इन दिनों वो अपने ससुर जी का दिल भी जीतने की तैयारी कर रहे हैं। तभी तो बलदेव इन दिनों शिवाय के घर पर ही रह रहे हैं। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब सोते हुए बलदेव के ऊपर गिर जाती है दीवार, जिसके चलते बलदेव हो जाते हैं घायल। ऐसे में अपने घायल पापा को देखकर आध्या बेचैन है और उनकी देखरेख कर रही है। इसी बीच सभी घर वाले भी परेशान हो रहे हैं और सोच रहे हैं कि आखिर दीवार गिरी तो गिरी कैसे, क्योंकि इस दीवार की हाल ही में शिवाय ने मरम्मत की है।
1: अरे माँ, लेकिन दीवार तो टूट के गिरी है ना, और शिवाय ने मरम्मत करी थी उसकी। बोल जल्दी खुशी।
2: लो आ गया शिवाय।
1: जल्दी
2: देखो तुम्हारे काम की वजह से क्या हुआ, बलदेव जी का खून बह रहा है।
3: अब ठीक है? इतनी चोट कैसे लगी?
4: अरे कुछ नहीं हुआ शिवाय, हम ठीक है, ज्यादा चोट नहीं लगी है।
3: अहमद, अरे वो डॉक्टर कितनी देर में आ रहे हैं यार, जल्दी है, बहुत चोट लगी है बलदेव जी को।
2: शिवाय, तुमने दीवार अच्छे से ठीक की थी ना, तो फिर गिर कैसे गई?
3: गिर कैसे गई मतलब?
2: शिवाय देखो उनकी हालत, उनको कितनी ज्यादा चोट आई है, खून बह रहा है।
3: अरे आध्या आपके सामने दीवार ठीक की थी और।
2: शिवाय मुझे लग रहा है ना, हमें लेबर को बुला लेना चाहिए था, एटलीस्ट वो आता ना तो सब ठीक से करके जाता।
4: आध्या बेटा सुनो मेरी बात, आज हमारी किस्मत पे था हमें चोट लगना, लग गई है, लेकिन कुछ ऐसी गहरी चोट नहीं लगी, तुम चिंता मत करो शिवाय, कोई बात नहीं बेटा।
0: भाई अपने पापा के चलते आज आध्या ने शिवाय पर सवाल उठा दिए और ये देखकर शिवाय बेहद हैरान है। अब उसे क्या पता कि ये सारा खेल बलदेव का ही है, जो जानबूझकर ऐसा बार बार इसीलिए कर रहे हैं ताकि आध्या के दिल में शिवाय के लिए नफरत हो जाए। और जल्द ही एक और नया खेल खेलेंगे जिसे देखना होगा काफी दिलचस्प। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
2: छोड़कर काम गए थे तुम, वहाँ टैंकर से पानी भर रहे थे क्योंकि घर में पानी नहीं था, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी ना शिवाय की, पापा का ध्यान रखो, क्यों गए छोड़।
5: मन सुंदर की इस कहानी में है सिंप्लिसिटी और फैमिली वॉर्म्थ, बिल्कुल पोल्यूशन फ्री राइड्स की तरह। आज तो हम बात कर रहे हैं बाइसिकल की, जो है एक सिंपल इको फ्रेंडली सॉल्यूशन जो आजकल काफी ट्रेंड कर रहा है। अरे लोग तो ऑप्ट कर रहे हैं साइकिल टू वर्क, यस, जो है एक सिंपल सॉल्यूशन। लेकिन क्या इनकी कहानी में सब कुछ सिंपल है या फिर से आया है कोई हॉट एंड हैपनिंग ट्विस्ट? चलिए पता कर आते हैं, लेकर चलते हैं हम सबको मन सुंदर के सेट पर।
0: मंदिर में जुड़ा रूही और नाहर का रिश्ता, महाकाली का आशीर्वाद, हुआ बुराई का अंत, दंगल टीवी के सीरियल मन सुंदर में नाहर ने ऐसा खेल खेला कि युवराज के झूठ का अंत हो गया है और दौर उसे अपनी रूही भी सही सलामत मिल गई है, वशीकरण समाप्त हो गया है। इतना ही नहीं, पुलिस भी पहुंच गई है युवराज को गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन युवराज तो है ही नहीं क्योंकि वो तो गड्ढे में है। यही बात रूही और नाहर पुलिस को बता रहे हैं।
6: जो आपने देखा वो क्लाइमेक्स था, उससे पहले बहुत बड़ी स्टोरी है, वो मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन वो आप लोग टेलीकास्ट में देखेंगे, बहुत मज़ेदार स्टोरी है। सो ऐसा होता है कि मैं गिरने वाली होती हूँ कुएं में, युवराज मुझे बांध देता है, फिर नहार मुझे आके बचाता है एंड फिर पुलिस आती है, फिर माता रानी का प्रकोप होता है और युवराज गिर जाता है कुएं के गड्ढे के अंदर। सो ये सब कैसे होता है वो आपको पता चलेगा, बट ये एक शॉर्ट स्टोरी थी जो मैंने आपको बताया है, बट और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको टेलीकास्ट में देखने को मिलेगा, बट बहुत इंटरेस्टिंग है एंड आगे भी हमारे बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड्स आ रहे हैं, सो कीप अपडेटेड।
0: भाई उस गड्ढे को देखकर केवल पुलिस ही नहीं बल्कि रोज आने वाली औरत ने भी हैरानी जताई है, क्योंकि वहां गड्ढा था ही नहीं। ऐसे में उसने माता रानी के आगे हाथ जोड़ते हुए यही बयां किया है कि आज बड़ा हादसा होने से टला है।
7: इस मंदिर में माँ काली का वास, यहाँ कुछ भी अनर्थ नहीं हो सकता। कुछ वर्षों पहले ऐसा ही हुआ था यहाँ पर और माँ काली ने भूकंप ला दिया था। माँ काली के सामने कोई भी बुराई जीत नहीं सकती, शायद ये इन्हीं का प्रकोप होगा।
8: सही कह के तो युवराज हमें मारना चाहता, और तब भूकंप आया और वो
0: भाई आज तो नाहर और रूही दोनों को ही महाकाली का आशीर्वाद मिला है। रूही तो आशीर्वाद ले ही रही थी कि तभी नाहर भी माता रानी के सामने पहुंच गया और माता रानी को साक्षी बनाकर उसने रूही के गले में मंगलसूत्र की जगह पर काला धागा बांध दिया, क्योंकि वशीकरण वाला मंगलसूत्र टूट जा चुका है।
6: हाँ, मेरा मंगलसूत्र टूट जाता है और रूही को बिना मंगलसूत्र के ऑब्वियसली वो नहीं रहेगी, क्योंकि बहुत ही पतिव्रता औरत है वो, तो इसीलिए उसने नाहर को बोला होता है कि मंगलसूत्र के तौर पर वो उसे काला धागा पहना दे ताकि उसकी श्रद्धा ना टूटे।
0: अब युवराज तो गड्ढे में है, लेकिन युवराज को लाने वाली अग्नि वो भी नाहर और रूही की जिंदगी में फिलहाल मौजूद है। देखना होगा कि युवराज के जाने के बाद अब अग्नि और कौन सी चाल चलेगी। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
5: तुम होना यहाँ पर भी हमारे कंटेस्टेंट्स का सफर एक बाइसिकल की तरह है, कभी सिंपल तो कभी थोड़ा डिफिकल्ट, और यहाँ तो दिल खोलकर शेयर करते हैं ये हमारे साथ अपनी लाइफ स्टोरीज, और उसके साथ साथ यहाँ पर है फन एंड गेम्स, ढेर सारी मस्ती। तो चलिए फटाफट लेकर चलते हैं आप सबको तुम होना के सेट पर।
9: जोरदार तालियां हमारी आज की सुपरस्टार के लिए।
10: सारे के सारे गिफ्ट्स भी एक बंदा लेके जा सकता है?
9: बिल्कुल।
10: रीजन ये है कि मेरा ना घर इज अंडर रेनोवेशन, मेरे घर के दोनों एसी खराब हो चुके हैं, तो आप बोलो।
11: राजीव, हम एसी लेके जाएंगे, आप घर पे आइएगा चाय पीने, हम वो एसी को चला के आपको चाय दिलाएंगे।
10: मेरी जो सासू माँ है उनको सारी चीजें फ्रिज में रखने को अच्छी लगती, हो सके तो मैं भी फ्रिज में ही बैठ जाऊँ।
12: इन लोगों से बहुत सुनना पड़ा कि घर में आ रही स्टार, अब क्या होगा, दो महीने बाद देखो तलाक हो जाएगा, क्या घर संभालेगी, आपकी तो जिंदगी गई, बहुत कुछ सुनना पड़ा था।
13: एक दूसरे के साथ में अंडरस्टैंडिंग बनाने में समय लगा?
12: नहीं, बिल्कुल नहीं, वो घर इतना अच्छा मैनेज करती है, मुझे तो कुछ देखना ही नहीं पड़ता है।
14: एक पिंजरे में आप किसी को रख दोगे और फिर बोलोगे कि उड़, तो उसे बहुत टाइम लगता है उस चीज से बाहर निकलने को। जो समय पे सब मिलना चाहिए, वो समय पे मुझे कुछ भी नहीं मिला। घर में दबे रहो, घर में रहो, सब इंजॉय करती थी मेरी उम्र की लड़कियां, मैं घूंघट लेके घर में।
15: मेरी भी जो मम्मी है उन्होंने उनका पूरा लाइफ मेरे में ही लगा दिया। अभी मैं भी माँ बनी हूँ ना, तो मुझे भी लगता है कि अभी मेरा बेटा इधर नहीं, मेरी मम्मी वैनिटी में लेके बैठी है, तो मैं, मेरे दिमाग में पीछे वही चल रहा है, उसको मिल्क मिला होगा क्या, ठंड तो नहीं लग रही होगी। तो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड मैम, आज आप यहाँ पे हो ना, तो आप ये पिंजरे से उड़ चुके हो अभी।
16: हमारी शादी को 10-11 साल के बाद बच्चे हुए, ये हमने बहुत दफा मिसकैरेज और हमने बहुत ट्राई किया, हमें सब डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि कुछ नहीं हो सकता। 10-11 साल के बाद हमारी अभी दो छोटी छोटी बेटियां हैं।
17: सब लोग कहते हैं घर सेफ स्पेस होता है, मेरे लिए शूटिंग स्पेस की जगह सेफ स्पेस थी, लेकिन घर आने के बाद मुझे जयति का किरदार निभाना पड़ता था कि तुम हो ना, जो आप कह रहे हैं ना, वो शायद मेरे साथ होता था कि तुम हो ना, तुम कर लोगी ना। हस्बैंड बोलते थे तुम हो ना, यू विल डू इट, विल डू दैट, विल डू दैट, यू विल डू ये, तो ये जो तुम हो ना, लेकिन आगे घर की सुपरस्टार कोई बोलता ही नहीं है।
12: आगे से तुम हो ना मेरे घर की शान आन बान, तुम हो ना।
16: आज मुझे खुद फील होता है कि एक्चुअली घर की सुपरस्टार तो ये है, हम इनके बिना तो कुछ नहीं है।
13: रश्मि जी, आप बहुत नाचिए। कौन है यहाँ पर जो रश्मि जी के साथ नाचना चाहेगा? चलिए आइए।
18: I love dancing, you know it. This will be, you just don't leave this, huh?

0: सो मच. मुझे कभी आपके साथ काम करने का मौका नहीं मिला.
1: आई नो, मुझे भी नहीं मिला.
0: एंड यू आर अ फैबुलस एक्टर, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. आप भले गए, आपको डांस नहीं आता, बट यू नो आपका फेस इज एवरीथिंग. और एक टाइम था हिंदुस्तान में राजीव जी के नाम के ना औरतों में, लड़कियों में, इवन बच्चियों में ना ऐसे बोल चलते थे. और आज भी आपका जलवा वैसे का वैसा है.
1: थैंक यू सो मच.
0: और आपने तो मुझे एकदम फेदर की तरह फील कराया, उसके लिए भी थैंक यू. थैंक यू सो मच.
1: थैंक यू. अब आएंगी रसीला जी, आप खेलेंगी रश्मि के साथ में.
2: राजीव जी, एक मिनट पट्टी बांधने से पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि सारी औरतों को बहुत कम चांस मिलता है ऐसे शो में आने का, वो आपने मौका दिया. दूसरा, आपका शो का नाम बहुत अच्छा है, तुम होना
1: जी.
2: तो ये हम सब औरतों के लिए तुम होना.
1: बिल्कुल, ये आप सबके लिए.
2: ये महसूस करा रहा है आपका शो.
1: ये आप जानती हैं, ये हमने इसलिए रखा क्योंकि हम हैं, क्योंकि तुम होना.
2: बहुत अच्छा महसूस होता है आज.
1: और ये मौका मैंने नहीं दिया, ये मौका सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन ने दिया है. और मुझे भी मौका दिया कि मैं इस खूबसूरत शो का हिस्सा बन सकूं.
0: ए मम्मी, गेम खेल लेना, अभी हार के मत बुला लेना.
2: चल तू अच्छा गेस्ट करवाना.
1: अब सब कुछ आपके ऊपर है रश्मि.
3: बिठा देते हैं आपको एंटरटेनमेंट की साइकिल पर और लेकर चल रहे हैं अब हम आपको स्टार परिवार के ग्रैंड फैशन इवेंट पर, जहां पर सारा स्टार परिवार आया है एक दूसरे के साथ. यहां तो है फैशन के रंग, रिश्तों के संग. साउंड्स इंटरेस्टिंग नो? आइए दिखाते हैं आपको इसकी ये झलक.

0: स्वैग ऐसा कि हर नजर यहीं ठहर जाए, श्रृंगार ऐसा जो खूबसूरती में चार चांद लगाए, फैशन ऐसा जिसमें रिश्तों के रंग घुल जाए, जी हाँ ये नजारे हैं स्टार प्लस के खास जश्न फैशन के रंग रिश्तों के संग के ग्रीन रूम के, जहाँ क्या वृंदा क्या अभीरा क्या साइली और क्या शालिनी सभी बहुएं अपने साज श्रृंगार में जुटी हुई हैं, क्योंकि इन्हें दिखना है सबसे अलग सबसे जुदा। ऐसे में सास बहू और बेटियां के कैमरे ने कैद किए हैं हर वो पल जिसमें झलक रहा है हर दिल में एक्साइटमेंट, चेहरे पर खुशी और अदाओं में बस जलवा ही जलवा। मेकअप नंबर वन, वृंदा का ग्लैमरस अंदाज। अब शाम खास है, फैशन और रिश्तों का संगम है, तो जाहिर है तुलसी की बहुरानी वृंदा भला कैसे पीछे रहती। इसीलिए तो आज वृंदा ट्रेडिशनल फ्यूजन लुक में ग्लैमर का तड़का लगाएंगी।
1: आज बहुत बहुत बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं, बिकॉज दिस इज लाइक हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम अ स्टार फैशन इवेंट एंड वी आर ऑल गोइंग टू ड्रेस अप इन डिफरेंट कॉस्ट्यूम्स अटायर्स। एज यू कैन सी मेरे बाल भी बने हुए हैं एंड इट्स वेरी फंकी, सो इट्स बेसिकली इट्स अ रैंप वॉक, सो वी आर ऑल गोइंग टू बी वॉकिंग इन डिफरेंट अटायर्स, अलग अलग कॉस्ट्यूम्स पहनेंगे हम एंड वील वॉक द रैम्प। एंड ऑफकोर्स एक्साइटिंग है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमें बहुत अलग लुक भी दिया है, दिस इज नॉट हमारा नॉर्मल लुक, ऐसा है नहीं, वृंदा वीरानी कभी ऐसे तैयार नहीं होती है, तो आई गेट टू गेट आउट ऑफ माई नॉर्मल गेटअप एंड आज थोड़ा अलग हट के लुक में आ गई हूँ मैं। उफ मैं क्या बताऊँ, इसमें पता है कितना टाइम लग गया है, 8 बजे हमने शुरू किया था, 2 घंटे हो गए, मेरे बाल अभी तक बने नहीं है, ये सब लगाने में इतना ज़्यादा टाइम लगता है। दीदी इतनी मेहनत कर रही है, देख लो कितनी मेहनत कर रही है और इतनी सारी चीज़ें पड़ी है, ये सारा कुछ लगाना है मेरे बालों में। आज जो हेडेक होने वाला है मुझे लगता है सेट पे जाने के पहले ही मेरा हेडेक शुरू हो जाएगा, बट यू कैन सी इट्स लुकिंग वेरी प्रिटी, सो इट इज डेफिनेटली वेरी वर्थ इट, इट इज वर्थ इट। क्लियरली इट्स नॉट सिंपल, ब्लैक ब्राउन स्मोकी आई किया है हमने, बेस अभी तक मतलब बेस हो गया है, बाकी ब्लश वगैरह सब कुछ बाकी है, I'll show you that in a bit. बाकी मेकअप कॉस्ट्यूम के हिसाब से किया है हमने, I'll show you the costume. Yeah? Okay, so ये है मेरा कॉस्ट्यूम, दिस इज द कॉस्ट्यूम बेसिकली, ये इसके हाथ है, ये हाथों पे ऐसे लटकने वाला है और अंदर लहंगा पहना हुआ है मैंने, सो बेसिकली एक लहंगा है एंड अ जैकेट, अ स्मॉल जैकेट, डिस्को डांसर वाली फील्स दे रहा है, इसके ऊपर मिरर भी लगे हुए हैं, क्योंकि हम गुजराती है ना शो में, सो इसीलिए थोड़ा गुजराती इंडो वेस्टर्न फ्यूजन टाइप बना दिया है इन्होंने। सो लाइक हम नवरात्रि में गुजराती हम यूजली ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पहनते हैं एंड क्लियरली यू कैन सी इट्स ऑल ऑक्सीडाइज, दीज आर इयर रिंग्स, ये मांग टीका है, ये नेकलेस है, इट्स अ कम्प्लीट फ्यूजन एक्चुअली, और एज यू कैन सी इसमें कुंदन भी है बट ऑक्सीडाइज है, सो इट्स काइंड ऑफ मिक्स। आई थिंक मैं ये वाला पहनने वाली हूँ बिकॉज ये ऊपर नीचे दोनों है, और मांग टीका ये वाला लगाने वाली हूँ मैं, If it goes with my attire, बहुत pretty लग रहा है, मैं तो बहुत excited हूँ, oh my god। ये I think या तो मांग टीका पहनूंगी या ये पहनूंगी, if they want पूरा heavy look चाहिए तो सभी पहनूंगी, let's go all out today।

भाई वृंदा का मेकअप तो हो गया, रंग बिरंगी चोटी भी बन गई, अब बारी है अपने लुक में आने की। ब्लैक कलरफुल आउटफिट जिसमें तारे चमचमा रहे हैं, हेवी सिल्वर ज्वेलरी और स्टाइलिश हेयर एक्सेसरी से वृंदा का लुक बेहद आकर्षक और रॉयल बन गया है।

0: सो आज मुझे ये कॉस्ट्यूम दिया गया है. इट्स अ फ्यूजन, गुजराती एंड इंडो वेस्टर्न फ्यूजन लुक है ये. इन्होंने ज्वेलरी ऐड किया है यहाँ पे एंड यू कैन सी दीज लिटिल डिटेल्स दैट लुक्स रियली नाइस एंड दिस इज कमेंडेबल. ऑनेस्टली इन्होंने बहुत काम किया है इस कॉस्ट्यूम पे. Jacket is really heavy. I don't know how I'm going to walk in this and even in dance in this. I think main isme dance bhi karne wali hu. So, but it will all work out. I'm looking very pretty.
1: Vrinda ke saath saath aaj Angad bhi gazab dha rahe hain. Black ethnic look ke saath multicolor stole liya hai aur traditional vibes ko modern swag ke saath carry kar dono ne puri limelight churane ki taiyari kar li hai.

0: हमें एकदम मेट लाला मेट गाला मेट गाला वाली फील्स मेट गाला वाली फीलिंग आ रही है एंड वी वेरी हैप्पी वेयरिंग दिस क्योंकि ऐसे डेली पहनने का मौका नहीं मिलता है और आज मिला है सो बहुत ज्यादा या बहुत ज्यादा खुश है. मेरा तो कैरेक्टर ही अतरंगी है, मैं तो सही सही कैरेक्टर में हूँ आज. और इसका बिल्कुल ऑपोजिट है.
1: वृंदा इज नो लॉन्गर वृंदा,
0: शी इज रिप्रेजेंटिंग अफ्रीका. मुझे इसका लुक बहुत अच्छा लगा, स्पेशली इसकी स्त्री वाली चोटी की चोटी बहुत अच्छी लग रही है. और इसके इसका इसका घुटना भी दिखाइए.
1: ये तो मेन है.
0: हाँ ये मेन है, घुटना और डिस्ट्रक्शन.
1: इवन आई लाइक हिज आउटफिट,
0: बाकी
1: ये बहुत ज्यादा
0: अभी सिर्फ ये
1: वेरी डिफरेंट, ये बहुत अलग है,
0: सिंपल है. और इसके ऊपर अभी ऐसे एक चुन्नी आएगी, फिर मेरे ऐसे इतने तामझाम वाले गॉगल्स हैं और उसके ऊपर ऐसे कुछ बंगला भी दिया.
1: गॉगल्स है,
0: ग्लासेस है. तो आज काफी इंटरेस्टिंग डे होने वाला है होपफुली.
1: हमने कोई रिहर्सल नहीं करी है, हमने कोई प्रैक्टिस नहीं.
0: वी आर दोस पीपल, गो विद द फ्लो.
1: वी डोंट नो व्हाट वी आर गोइंग टू डू ऑन स्टेज, बट इट्स गोइंग टू बी नाइस.
0: या
1: इट्स गोना टर्न आउट रियली नाइस
0: होपफुली. गरबा इसमें खेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुजराती है हम तो. हाँ. गरबा के लिए एनी टाइम रेडी, चाहे कपड़े हो चाहे ना हो चाहे कुछ भी पहना हो, गरबा के लिए ऑलवेज रेडी. बट ये टिपिकल गरबा आउटफिट तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ ये खेल सकती
1: है. वेस्टर्न फ्यूजन.
0: या तू बाद में तो घुटने के दिखा रही है.
1: गरबा के साथ हिप हॉप भी करूंगी मैं.
0: या दैट्स लाइक अ गुड फ्यूजन. यहाँ पे तो इन कपड़ों में बिल्कुल नहीं मिल सकता वो झलक, क्योंकि
1: I'm pregnant.
0: Yeah, and अभी मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ किसके साथ प्रेग्नेंट ये सॉरी विक्रांत के साथ प्रेग्नेंट है कि नहीं है.
1: मेरे पति को मुझ पे शक हो.
0: हाँ, और ये बात मुझे मंगल ने बताया.
1: ऐसे कपड़ों में देखेगा तो ऑब्वियसली शक होगा.
0: या
2: लुक नंबर दो, अभीरा का स्वैग.

मौका चाहे जो भी हो, साज श्रृंगार करने में अभीरा कभी पीछे नहीं रहती। हर बार अभीरा का लुक सबसे अलग और सबसे हटकर होता है। इस बार भी अभीरा अपने लुक के लिए बेहद एक्साइटेड है।

आज फर्स्ट टाइम है, अराउंड 2.5 years हो गए मुझे स्टार के साथ अपनी जर्नी करते हुए. कितने सारे इवेंट्स हुए, बट एक्चुअली एक रैंप वॉक हुआ है विद द बंगाली लुक विद द फ्लावर एंड एवरीथिंग, बट दिस वन इज़ वेरी डिफरेंट बिकॉज दिस वन विल बी विद अरमान. अरमान के साथ होगा क्योंकि सारी जोड़ियाँ साथ में हैं, तो आई थिंक वैसे ही होने वाला है. तो एंड कभी भी कुछ रैंप वॉक या कुछ भी अभीरा के लिए शो से बाहर होता है तो इट्स वेरी डिफरेंट, मज़ा आता है, कुछ अलग करने को मिलता है. प्लस आप स्टार प्लस के अलग अलग की अलग अलग जोड़ियों से मिलते हो जिनसे वैसे आप मिल नहीं पाते हो. कब मिलते हो, मतलब दैट्स नॉट पॉसिबल. एंड इस बार काफ़ी अलग अलग लोग भी होंगे क्योंकि काफ़ी शोज़ के पुराने लोग नहीं हैं, अब न्यू शोज़ के काफ़ी लोग हैं. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द बॉन्डिंग. है वाइट कॉस्ट्यूम है, वाइट इज़ माई फेवरेट कलर, वन ऑफ माई फेवरेट कलर्स दैट लुक्स गुड ऑन मी. सो वाइट आई थिंक अच्छा लगेगा. कॉस्ट्यूम ट्रायल्स किए, इट्स लुकिंग गुड सो फार. लेट्स सी पूरा गेटअप आने के बाद कैसा लगता है. आर डिज़ाइनर हर्षल हैज़ डन अ फैब जॉब एंड वो हमेशा हर बार हमारे हर कॉस्ट्यूम को डिज़ाइन करते हैं और उसको एक बहुत ही यूनिक सा लुक देते हैं विथ प्रॉप्स एंड एवरीथिंग. तो इस बार बूट भी है, थोड़ा सा स्लिट भी है, पर्ल्स का भी यूज़ किया हुआ है, सो काफ़ी डिफरेंट होगा. मैं जब इवेंट पे आती हूँ तो मैं अपनी सारी टेंशन इनको दे देती हूँ. ये है कविता एंड ये मेरी सारी टेंशन ले लेती हैं क्योंकि मैं तो अदरवाइज शूट पे मैं मेकअप कर रही होती हूँ तो दिन में 3 से 4 बार प्रॉपर टचअप करना पड़ता है. उसके अलावा जब होता है छोटा मोटा टचअप हर चीज़ मैं कर रही होती हूँ, बट दिस इज़ अ हॉलीडे फॉर मी. तो कविता सब कुछ करके मुझे रेडी कर देंगी और फिर टचअप्स वगैरह भी होते रहेंगे. तो मेरे लिए चिल डे है एंड मुझे पता है कि कुछ भी फंक्शन होता है तो शी इज़ ग्रेट फॉर दिस, तो अच्छा ही होगा. मैं तो यूजुअली नया करने से बहुत डरती हूँ. मैं बहुत ही सीधी स्ट्रेट लाइन में चलने वाली, बहुत ही सेफ खेलने वाली बंदी हूँ, बट आई एम ट्राइंग समथिंग न्यू. छोटे ज़्यादा ड्रास्टिक चीज़ें आप मुझे करते हुए नहीं दिखोगे, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग डिफरेंट. अभी देखते हैं कैसा लगेगा, वरना पता चला मैंने बोल दिया और बाद में आपको दिखा नहीं वो, क्योंकि मेरे को अगर अच्छा नहीं लगे तो पॉसिबल है मैं बोलूँ नहीं नहीं ऐसा नहीं करता है. सो लेट्स सी कि एंड लुक कैसा आता है, होपफुली अच्छा ही आए.

सज श्रृंगार कर अभीरा बन गई है प्रिंसेस। ऑफ शोल्डर सिल्वर आउटफिट में इनका लुक बेहद रॉयल और क्लासी लग रहा है, और तो और इनके लुक को ड्रीमी टच भी दिया गया है।

0: लुक नंबर 3 साइली का शाही अंदाज।
1: मेरे नैनों से लागे रे।
0: हमेशा सीधे सादे अंदाज में रहने वाली साइली को भी आज मौका मिल गया है फैशन के साथ रिश्तों को सेलिब्रेट करने का, इसीलिए तो वो भी कोई कसर नहीं छोड़ रही अपने लुक को सबसे स्पेशल बनाने में।
1: रब भी

आज थोड़ा कॉन्सेप्ट डिफरेंट इन्होंने किया है. बेसिकली सारे स्टार के कपल्स आने वाले हैं और उनका एक फैशन शो होगा, उनका एक रैंप वॉक होगा, डांस परफॉर्मेंस होगा, फिर दिखाएंगे कौन कितना प्यारा है एक दूसरे के साथ. सो आई थिंक एक कंपटीशन भी होगा जिसमें कौन सा कपल बहुत रोमांटिक है वो दिखने मिलेगा. एंड ऑफकोर्स देर इज़ अ रैम्प एंड फैशन शो, सो दिस टाइम दे आर मेकिंग श्योर कि सब अपने अपने कल्चर के साथ थोड़ा वेस्टर्नाइज करके अपने लुक को बताए. सो दिस टाइम दे हैव गिवन मी वो मराठी लुक के साथ थोड़ा एक वेस्टर्न थोड़ा टच. सो आई थिंक वेन यूल सी मी हाउ आई गेट रेडी यू विल गेट टू नो व्हाट आई एम वेयरिंग एंड हाउ इट इज़ गोइंग. नहीं अभी कहाँ टाइम वाइम नहीं मिल रहा है ऑनेस्टली, बिकॉज वी आर शूटिंग कॉन्स्टेंटली. येस्टरडे आई हैड कोर्ट रूम शूट एंड टूडे आई एम हियर, सो हार्डली एनी टाइम. जो भी होगा सब यहाँ पर ऑन स्पॉट ही करेंगे हम. इट्स डिफरेंट ऑफकोर्स, तो बहुत एक्साइटमेंट तो है ही, बट अब मुझे रेडी होना है. बहुत टाइम जाएगा मेरे को रेडी होने में. सो जो

इस जश्न में साइली का अंदाज शाही है, इसलिए इनका मेकअप भी खास है। आंखों में सबसे ज्यादा काम किया गया है क्योंकि इनकी आंखें ही हैं जो सब बयां करेंगी।

वैसे इस खास जश्न के लिए साइली ने पिंक पावर और रॉयल अदाओं से सभी का दिल जीतने की तैयारी कर ली है। स्टाइल इतना एलिगेंट कि सभी की नजरें इन्हीं पर टिकेंगी।

नंबर 4, शालिनी की ग्रेसफुल अदाएं। फैशन के इस जश्न में शालिनी ने भी सभी बहुओं को टक्कर देने की तैयारी कर ली है। ग्लोइंग मेकअप और फ्लोरल हेयर एक्सेसरीज पहनकर ये तैयार हैं अपने पूरे लुक में आने के लिए। रोमियो

0: आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एक्चुअली, क्योंकि ये एक तरह से ऐसा इवेंट मेरे लिए, इट्स माय फर्स्ट टाइम, सो फर्स्ट आर ऑलवेज स्पेशल. So yeah, I'm looking forward to meet all the beautiful co-actors, जो भी couple आए हैं, and मुझे पता चला है कि we are going to do play games, dance, do a ramp walk, तो I'm really really excited. So मेरा makeup traditional भी है, but at the same time with a touch of western. So आप कह सकते हो कि Indo-Western look है मेरा. There's a this beautiful sleeveless red colored plain gown जिसके ऊपर एक brocade jacket है, and वो भी एक gown है. And with heavy jewelries हम उसको pair up करेंगे, and with this gajra, roses and ये लंबी सी चोटी जो मैं जिसको मैं संभालूंगी या जो मुझे संभालेगी मुझे नहीं पता. सो इट्स गोइंग टू बी चैलेंजिंग फॉर मी, क्योंकि ऐसा अभी तक लुक मैंने किया नहीं है, लाइक इतनी लंबी चोटी, इतना सो मच ऑफ ड्रामा. बिकॉज एज अ पर्सन ऑल्सो आई एम यू नो सॉर्ट ऑफ प्रेफर सिंप्लिसिटी. आई लव लार्जर देन लाइफ स्टफ, बट मेरा कैरेक्टर भी जो शालिनी का है, शालिनी देशमुख का, वो भी कुछ वैसा ही है. बहुत सिंपल रिलेटेबल हाउस होल्ड कैरेक्टर है. बट आज शालिनी को आप दूसरे नए अवतार में देखेंगे, विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ हर साइड बाय द वे. एंड या मैं आई एम जस्ट प्रिटी मच कॉन्फिडेंट कि मैं इस लुक को पुल ऑफ करूँ, एंड आई होप मैं आपको अच्छी दिखूँ. हाँ जी, स्टार से जुड़े हुए हैं तो हम सब एक परिवार ही है, स्टार फैमिली के हैं, हिस्सा है. सो आज मैं सबसे मिलने के लिए बहुत बहुत एक्साइटेड भी हूँ, एंड एट द सेम टाइम आई जस्ट वॉन्ट सी कि हाउ दिस इंटायर इवेंट गोज. So yeah, I'm looking forward to it.
1: भाई शालिनी के इस लुक में ट्रेडिशनल ग्रेस और मॉडर्न ग्लैम का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, और इनका लुक देखकर तो लग रहा है कि शालिनी ने इस जश्न में असली शो स्टीलर बनने की तैयारी कर ली है. फैशन की सिर्फ तैयारी है, असली धमाल, स्टाइल, स्पार्कल और सेलिब्रेशन तो अभी बाकी है, जिसके नजारे जल्द ही आपको सास बहू और बेटियां जरूर दिखाएंगी. मुंबई से शीतल कावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.
2: जिस तरह ट्रैफिक में अचानक यू टर्न आ जाता है, वैसे ही आते हैं ट्विस्ट हमारी एंटरटेनमेंट की कहानी में, जो अचानक बदल देते हैं कहानियों का मोड, लेकर आते हैं हमारे लिए भरपूर एंटरटेनमेंट. तो चलिए फिर दिखा देते हैं आपको ट्विस्ट का ये सिलसिला, वो भी एक साथ.
3: ये रिश्ता क्या कहलाता है?
4: ये स्टॉकर कोई यंगस्टर ही है.
1: स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिरा उस लड़के का पता लगाना चाहती है जो उसकी बेटी मायरा को डरा रहा है. ऐसे में विद्या भी ऋषभ से जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर उनके कॉलेज में ऐसा कौन सा लड़का है. लेकिन तभी ऋषभ अपनी बात उनके सामने रखता है कि हो सकता है मायरा ने उस लड़के का ईगो हर्ट कर दिया हो. बस फिर क्या, ये सुनते ही अभिरा से रहा ना गया, और अभिरा ने अनजाने में ही ऋषभ के सामने उस लड़के को सबक सिखाने का फैसला कर लिया.
5: जिनका ईगो बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है, और जब तक वो अपना पॉइंट प्रूफ नहीं कर देते, वो लोग सामने वाले को छोड़ते ही नहीं है.
6: बड़े आए पॉइंट प्रूफ करने वाले, लड़की ने ईगो हर्ट कर दिया तो क्या करेंगे? उसे डराएंगे, धमकाएंगे, तंग करेंगे, क्रिमिनल बन जाएंगे? कमजोर कैरेक्टर के चीपोस को चाहिए कि अपनी कांच सी नाजुक ईगो लेकर घर में ही बैठे रहे, क्योंकि रियल वर्ल्ड में सर्वाइव करना है तो इनकी बस की बात नहीं है. इन छिछोरों को तो आदमी कहलाने का हक ही नहीं है. आसमान से बड़ी ईगो लेकर चलने वाला ये स्टॉकर अगर मेरे हाथ लग गया ना, तो कान पकड़ के इसे हवालात में फेंक के आऊंगी.
7: और ये डरपोक बहुत जल्दी सामने आएगा क्यूटी, क्योंकि भाई सा और अरमान उसे ढूंढ रहे हैं.
6: बहुत जल्दी उसे पता लगने वाला है कि गलत फैमिली की लड़की से पंगा ले लिया उसने.
1: वहीं दूसरी ओर मायरा, उसका तो डर डर कर बुरा हाल हो रहा है. उसने तो घर वालों से बात करना तक छोड़ दिया और अपने आप को एक कमरे में बंद कर रखा है. ऐसे में मुक्ति उसकी बेस्ट फ्रेंड बनकर पहुंच गई है उसके लिए खाना लेकर, क्योंकि मायरा खाना भी नहीं खा रही. ऐसे में मुक्ति अपने हाथों से उसे खिलाने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दरवाजे पर खड़ा ऋषभ ये सब देख रहा है और खुश हो रहा है मायरा का हाल देख कर. लेकिन उसे ये नहीं पता कि अभिरा की नज़र उस पर टिकी हुई है.
8: मुझसे नतीजा, जो लड़का तेरे टाइप का नहीं था ना, वही लड़के के वजह से तू आज एक शब्द नहीं बोल पा रही. लेकिन मैं तुझे ऐसे देख नहीं पा रहा, लेकिन तुझे सबक सिखाना भी जरूरी था ना. तेरे मॉम डैड
5: कानून समझते जरूर है पर इस दुनिया के सबसे बड़े नियम से अनजान है।
8: उन्होंने तुझे सिखाया नहीं कि लड़कियां लड़कों से कमजोर होती है, और जो कमजोर होते हैं ना उनके पास किसी को ना भूलने का या हर्ट करने का कोई हक नहीं होता। और ये अब तुम्हें मैं सिखाऊंगा।
6: मेरी बेटी कमजोर नहीं है,

0: फिलहाल ये डरी हुई है, पर डरपोक नहीं है। तुम चिंता मत करो, बहुत जल्दी उस स्टॉकर की सॉलिड बैंड बजाएगी।
1: यहाँ अभिरा को ऋषभ पर डाउट हो गया है, तो वहीं अरमान भी पहुँच गया है ड्रोन वाली शॉप पर सच का पता लगाने के लिए, और उसे वहाँ पर ऋषभ का आई कार्ड भी मिल जाता है, जिससे उसका शक यकीन में बदलने लगा है।
2: अरे ये तो वो ऋषभ है ना।
3: हाँ, मुझे लगता है ये ड्रोन ऋषभ ने मंगवाया था।
0: अरमान, मुझे किसी पे सॉलिड डाउट हो रहा है।
3: ऋषभ पे ना।
4: महादेव एंड सन्स।
5: तुम्हें क्या लगा कि तुम यहाँ हमें आकर डराओगी, हड़काओगी और हम डर जाएंगे?
1: कलर्स के सीरियल महादेव एंड सन्स में मोगरा ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं, और रज्जी उसने फैसला ले लिया है कि वो मोगरा को अपने चाल में कामयाब नहीं होने देगी। लेकिन आज रज्जी के आंसू बह रहे हैं, क्योंकि मोगरा ने फैसला किया है सारे रिश्तों को तोड़ने का। ऐसे में मोगरा रज्जी को चेतावनी दे ही रही थी कि रज्जी ने भी हार नहीं मानी और उसने मोगरा को पलट जवाब दिया है।
0: अगर तुम्हें इस घर में रहना है ना, तो हमारी चेली बन के रहना पड़ेगा, और अगर नहीं तो बांधो अपना सामान और निकलो यहाँ से। तुम्हारी विदाई किसी भी समय हो सकती है। जितने गाजी आए, जितने गाजी गए, सिकंदर से लेकर चंगेज खान तक, हर तानाशाह को यही लगता है कि वो राज करेगा, लेकिन हर फन्ने खान ये भूल जाता है कि हर शेर को सवा शेर मिल ही जाता है। याद रखना,

वहीं दूसरी ओर पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर आ तो गया है, लेकिन रिश्तों में खटास होनी शुरू हो गई है। और यहाँ पर मोगरा ने फिर से अपनी बाजी मारी और देखिए कैसे वो अपने ससुर जी को इम्प्रेस करने के लिए लेकर पहुँच गई है उनकी फेवरेट कढ़ी, जिसे देखकर महादेव खुश तो हो रहे हैं, लेकिन तभी मोगरा ने चाल चली और रज्जी के ऊपर सारी कढ़ी गिरा दी। इतना ही नहीं, वो तो सभी के सामने रो रो कर सारा इल्जाम रज्जी पर लगा रही है।

0: अरे बेटा तुम ठीक हो ना मुगरा?
1: रज्जी, ये क्या किया तुमने? हमने पापा जी के लिए कड़ी बनाई थी, हम चींटियां खाएंगे। हमारी इतनी तबीयत खराब थी, हमने सारा दिन रसोई में काम किया, पापा जी के लिए कड़ी बनाई, लेकिन तुमने एक झटके में बर्बाद कर दिया।
0: अरे बेटा,
1: पापा जी,
0: बेटा शांत हो जा। अरे अगर इसकी गलती भी है तो उसको माफ कर दो, कोई बात नहीं, जानबूझ के नहीं किया इसने।
1: पापा जी,
0: अरे हाँ हाँ हम समझ रहे हैं बेटा, देखो अगली बार जब तुम कड़ी बनाओगी ना तब भी हम चाव से खाएंगे, हमको पता है तुम बहुत स्वाद बनाती।
1: लेकिन इतने प्यार से बनाई थी आपके लिए।
0: बेटा हम समझते हैं तुम्हारी तबीयत खराब थी, लेकिन उसके बावजूद तुमने हमारे लिए कड़ी बनाई, हमारा ध्यान रखा तुमने, क्या बात है, जीते रहो बेटा।
2: अब धोखे से ही सही मोगरा ने महादेव का दिल जीत लिया है। इतना ही नहीं, वो तो सभी के सामने रज्जी को काम भी दे देती है और उसे नीचा भी दिखाती है, और जल्द ही वो ऐसी बाजी मारेगी कि जिससे सारे रिश्ते बिखर जाएंगे। देखना होगा क्या रज्जी ऐसा होने देगी।
3: आने वाले वक्त में महादेव एंड सन्स सिर्फ महादेव एंड सन रह जाए, और वो होगा मेरा पति आशीष।
4: महादेव एंड सन सिर्फ एक नाम नहीं, एक अटूट बंधन है, और तुम इसे तोड़ नहीं पाओगे। महादेव एंड सन साथ हैं और हमेशा रहेंगे।
5: मन्नत भी ये कह रही है कि हमारी जिंदगी भी बिल्कुल एक बाइसिकल की तरह है जिसमें बैलेंस की जरूरत है। एक बार बैलेंस बिगड़ा तो बस फिर तो काम तमाम। वैसे मन्नत, क्या आपकी जिंदगी में है बैलेंस? क्योंकि यहाँ तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर है, कुछ गलत होता है तो भी ब्लेम आपके ऊपर ही आता है, कुछ सही होता है तो उसका क्रेडिट आपको नहीं मिलता। ओह माय गॉड। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको मन्नत के पास और देखते हैं ऐसा क्या हो रहा है उनकी कहानी में आज। होप तो यही कर रहे हैं कि मन्नत और विक्रांत की जिंदगी में हो सिर्फ और सिर्फ प्यार, लेकिन क्या करें, यहाँ तो है इमोशंस की बहार।
6: तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही रहेंगे हम।
2: रसोई में फिर शुरू हुई मन्नत और विक्रांत की मोहब्बतें।
6: तुम्हारे ही रहेंगे
2: शादी से पहले लगा रोमांस का तड़का।

युवा के लिए मन्नत और विक्रांत की खुशियाँ। कलर्स के सीरियल मन्नत में मन्नत मेजबानी पहुंची तो थी दुआ के लिए खाना बनाने, लेकिन उसने खाना बनाने से पहले ही हाथ में पैन पकड़ लिया क्योंकि उसे किसी के आने की आहट हुई है। और जैसे ही विक्रांत ने एंट्री की तो मन्नत ने भी अपनी दबंगई दिखा दी।

0: क्या करियो?
1: आप यहाँ
0: खाना बनाने आया तुम्हें, तुम्हारे बुआ के लिए। जल गए तुम यहाँ क्या करियो? इतनी मस्ती
1: तो दिलों। सॉरी, मैं भी खाना बनाने आपके लिए और दुआ के लिए।
2: भाई आज तो विक्रांत मन्नत से पिटने से बाल बाल बच गए। खैर, इतने सारे ट्विस्ट के चलते मन्नत अब अपने आप को आगाह करके रखती है। फिलहाल तो मन्नत और विक्रांत इस बात को लेकर बहुत खुश हैं कि दुआ ने इन दोनों के रिश्तों को कबूल कर लिया है और अब वो पूरी कोशिश कर रही है मन्नत और विक्रांत को एक दूसरे के करीब लाने की। यही सोचकर मन्नत और विक्रांत दोनों खुश हो रहे हैं क्योंकि दुआ ने दोनों से ही खाना बनाने की गुजारिश की है। खैर, दुआ की डिमांड को पूरा करते हुए आज मन्नत और विक्रांत दोनों ही रसोई में मिलकर काम कर रहे हैं, या यूं कह लो काम के साथ साथ रोमांस भी फरमा रहे हैं क्योंकि बड़े अरसे बाद दोनों को फिर से एक होकर रसोई में काम करने का मौका मिला है, वो भी रोमांस के साथ।

0: हाँ, दुआ ने डेट सेटअप करी है मन्नत और विक्रांत की, एंड वो केक बेक करते हैं, वेडिंग केक, और मेज़बानी में कई सारी खूबसूरत यादें क्रिएट करते हैं, जैसे उनकी पहले भी थी और थोड़ी सी और, एंड उनका बिग डे आ गया है, दुआ अग्रीमेंट में है, तो खुशियों का माहौल है, और बहुत यू नो अनअवेयर हैं इस बात से, कुछ बिल्कुल इतनी सी हिंट नहीं है अभी धैर्य जी के बारे में, तो वो एज अ व्यूअर एंड एज एन एक्टर जो मुझे पता है, वो पढ़ के ऐसा लगता है कि ऊ दैट्स काइंड ऑफ स्पूकी एंड स्कैरी एंड एक्साइटिंग, तो या दैट इज इट।
1: दुआ के लिए मन्नत और विक्रांत जुटे हुए हैं केक बनाने के लिए, लेकिन इसी में रोमांस के साथ साथ दोनों की मस्ती भी जारी है, क्योंकि दोनों को क्वालिटी टाइम जो मिला है

खैर दोनों प्यार के साथ केक बना रहे हैं और देखिए कैसे प्यार से दोनों ने मिलकर ही अपनी दुआ के लिए बढ़िया सा केक बना दिया और वो केक बनाकर बहुत खुश भी हो रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि दुआ को उनका ये सरप्राइज बहुत पसंद आए।

0: मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
1: डॉक्टर आनंद भी हमसे यही कह रही हैं कि एक एक्टिव लाइफस्टाइल और फिजिकल एक्टिविटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकिल तो है, उस एक्टिविटी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो आप सब भी अपनाइए फिर से अपनी पुरानी साइकिल को और हो जाइए सुपर फिट। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको डॉक्टर आरएमबी के सेट पर और देखते हैं क्या कुछ हो रहा है इनकी कहानी में आज।
2: तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही रहेंगे हम।
0: ध्रुव और आरएमबी के रिश्ते का शुभारंभ।
2: तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही रहेंगे
0: हम। विश्वास ने ध्रुव को दिखाया टशन। दादी बनी ध्रुव की ढाल, तो टंडन हाउस में ध्रुव ने दिखाया अपना कमाल। कलर्स के सीरियल डॉक्टर आरंभी में ध्रुव ने ना सिर्फ अस्पताल में एंट्री की है बल्कि आज तो ढोल बजाते हुए वो टंडन हाउस में भी एंट्री कर रहा है। असल में आज आरंभी के देवर राज और नायरा का रिश्ता जुड़ रहा है, रोका है। ऐसे में ध्रुव नायरा के पापा का बिजनेस पार्टनर है, इसीलिए साथी के तौर पर आज वो नायरा के साथ टंडन हाउस में एंट्री कर रहा है, वो भी ढोल बजाते हुए। और उन्हें देखकर डिंपल हो रही है हैरान।
3: टंडन परिवार को डीसी का हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल। इसे कहते हैं ना हीरो वाली फुल पैसा वसूल एंट्री। क्यों

0: Go. Look out, eh? Naraga. आपके बेटे के साथ, if I'm not wrong. हाँ बोल गई.
1: No, of course. आइए ना, आइए, please आइए.
2: मनमीत से नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली मैं खुश तो नहीं हूँ, और घर वालों की खुशी के लिए मैंने हाँ बोला है कि अगर जो जिससे मैं प्यार करता था वो नहीं है तो एटलीस्ट घर वालों घर जो घर वाले हैं उनकी खुशी के लिए ही मैं ये कर दूँ, क्योंकि मनमीत ने तो मेरा दिल तोड़ दिया है, तो इसलिए आई थिंक थोड़ा सा कवर अप है उसका.
3: आई थिंक वही घर वालों के अलावा इसका इमोशनल कवर अप भी है. ब्रेकडाउन हुआ है, हार्ट ब्रेक हुआ है, तो वो रिबाउंड वाला नहीं होता है, वो वैसा वाला भी है थोड़ा.
2: करेक्ट करेक्ट करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट.
4: आप मिले हो ना डीसी से, मेरे डैड के बिजनेस पार्टनर, आपके हॉस्पिटल के को-ओनर और मेरे रील पार्टनर. ही इज द बेस्ट.
0: लेट्स गो.
5: तू है तो टेढ़ी. अब राज भले ही ये शादी जेलसी के मारे कर रहा हो, लेकिन ध्रुव ने टंडन हाउस में आकर अपना स्वैग दिखा दिया है, और उसके स्वैग से डॉक्टर विश्वास को जलन हो रही है. तभी तो देखिए कैसे गुस्से में आकर पंखे को हाथ मारकर वो अंदर की ओर निकल जाता है, और वही हवा लाती है ट्विस्ट, क्योंकि जो शगुन की चुन्नी आरंभी लेकर जाती है राज और नायरा के लिए, वही चुन्नी उड़कर आरंभी और ध्रुव के ऊपर गिर जाती है, और इनका किस्मत कनेक्शन जाहिर हो जाता है.

0: ये क्या किया आपने? कहाँ है, क्या करें, थोड़ा ध्यान तो रखना चाहिए। शगुन की चुनरी है, नए रिश्ते की शुरुआत का आशीर्वाद है। नायरा और राज के लिए चुनरी थी।
1: देखिए अभी जैसे चीज़ें बढ़ रही हैं आगे, तो लग रहा है कि डीसी आरएमबी के लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर रहेगा। अब वो किस टाइप का पिलर रहेगा, कि फ्रेंडशिप वाला या रोमांटिक पिलर या लाइफ पार्टनर वाला, क्योंकि आरएमबी तो शादीशुदा है, विश्वास भी शादीशुदा है, उसकी बिलवेड पार्टनर दूसरी हैं। बट पता नहीं अब आरएमबी अब इस चीज़ को आगे कैसे बढ़ाएगी। It all depends on the writers and RMB's character and कैसे लोग उसको पसंद करते हैं।
2: फिलहाल तो RMB ध्रुव को अपना दोस्त मानती है और दोस्त की खातिर वो उस पर नाराज भी हो रही है कि तभी वहाँ पर आ जाता है डॉक्टर विश्वास, जो ध्रुव को ही जिम्मेदार ठहराता है। लेकिन ध्रुव को सच पता है, इसीलिए उसने सभी के सामने ये बयां कर दिया कि ये सब उसने नहीं बल्कि खुद विश्वास ने किया है। ऐसे में विश्वास आनाकानी करता है। विश्वास की माँ भी विश्वास का साथ देती है, लेकिन तभी ध्रुव की ढाल बनकर आ जाती है उसकी कुनिका दादी, वो भी सबूत के साथ।
0: कुछ भी कहानियां मत बनाइए आप इसी, मेरा विश्वास ऐसा कुछ नहीं कर सकता।
3: Exactly. मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता।
4: क्यों किया? ये तो आप ही जाने।
5: मगर किया, देखा है मैंने,
4: मेरे साथ साथ इसने भी देखा है, हम दोनों ने देखा। ये मेरे पीए की सिस्टर,
5: सिस्टर पीए शिखा,
4: और हाँ हम दोनों के साथ साथ इसी किसने ने भी देखा।
5: शिखा
2: अब मोबाइल में सभी ने वीडियो तो देख लिया है कि कैसे जाने अनजाने ये गलती डॉक्टर विश्वास से हुई है। फिलहाल तो इनकी बहस और आगे बढ़ती कि तभी विश्वास के पापा आ जाते हैं, जो ब्रेक लगा देते हैं और सबको इत्मीनान से बैठने के लिए कहते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्रुव अपना ही स्वैग दिखा रहा है।
6: अर्ज किया है जब जब जो होता है तब तब सो होता है। इसलिए जो होता है अच्छे के लिए होता है।
2: भाई अब तो इस घर में शेर और शायरी ही नहीं बल्कि ढेर सारा धमाल होगा, क्योंकि ध्रुव टंडन हाउस में जो आ गया है। वैसे इससे पहले ध्रुव ने अपने घर में अपनी दादी के लिए पूजा रखी थी, क्योंकि उसकी दादी के ऊपर जो खतरा था वो टल गया है।

0: इतना ही नहीं, ध्रुव ने तो अपनी दादी को ये भी बताया है कि डॉक्टर विश्वास ने ही अपने बेटे का किडनैप कराया था, जिसे सुनकर दादी बहुत हैरान है। और तो और, ध्रुव ने अब कसम भी खाई है कि वो टंडन हाउस में एंट्री कर रिश्तों की कहानी बदलेगा और आरंभी की ढाल बनेगा। वहीं दूसरी ओर आरंभी भी विश्वास से बेहद नाराज है, क्योंकि उसके बेटे का किडनैप हुआ था और विश्वास उन सब का जिम्मेदार आरंभी को ही ठहरा रहा है। हालांकि आरंभी बार बार यही बता रही है कि वही है जिसने अपने बेटे की जान बचाई है।
1: तुम नहीं थे वहाँ,
2: मैं वहाँ नहीं था क्योंकि तुमने मुझे बताया नहीं था।
0: बेचारी आरंभी, उसका तो रो रो कर बुरा हाल हो रहा है ये सोचकर कि अगर उसके बेटे को कुछ हो जाता तो वो क्या ही करती। इतना ही नहीं, उसने तो अपने दिल का हाल बताने के साथ साथ विश्वास पर ये भी इल्जाम लगा दिया कि उसने ही ये सारे कारनामे किए हैं। ऐसे में विश्वास इनकार तो करता है, लेकिन आरंभी उससे सवाल करने लगती है।
1: उसके साथ जिसने ये घटिया करती है, उसे अरेस्ट करवाने के लिए तुमने पुलिस का भी बुलावा, तो मना करने की कोशिश तो करते, वो भी तो देख लिया तुमने, डीसी से पूछते कि उनका कोई दुश्मन तो नहीं है जो उनके बिजनेस से चल के उनकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो लेकर डॉक्टर से पूछते कि उनको किसी पे शक है क्या, पर तुमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हमारे बच्चे को, विहार को जिसने किडनैप किया, उसने टॉर्चर किया, उस क्रिमिनल को ढूंढ के उसे अरेस्ट करवा के उसे सजा दिलवाने की कोशिश नहीं की तुमने, पुलिस नहीं बुलाई तुमने।
0: भाई आरंभी के सवाल से विश्वास हिचक गया है, क्योंकि उसे पता है कि उसने क्या किया है। खैर, आरंभी को पता है कि असली किडनैपर्स अवंतिका और विश्वास ही हैं। देखना होगा कि कैसे अब आरंभी दोनों का खुलासा करेगी, वो भी पूरे परिवार के सामने। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
3: उन्होंने की इस कहानी में इमोशंस की स्पीड काफी हाई है, बिल्कुल डाउनहिल साइकिल की स्पीड की तरह, जो हो जाती है कभी कभी आउट ऑफ कंट्रोल। तो चलिए लेकर चलते हैं आपको गुरु और रूहानी के पास और देखते हैं ऐसा क्या हो रहा है उनकी कहानी में आज, क्योंकि कहानी में फिर आया है एक नया ट्विस्ट जो बदल रहा है इस कहानी की सिचुएशन। लेट्स चेक इट आउट।
0: रूहानी की जासूसी। मामा जी को रूहानी पर शक। क्या रूहानी की तलाश होगी पूरी? दंगल टीवी के सीरियल इश्क जुनूनी में रूहानी नर्स बनकर सच का पता लगाने की पूरी कोशिश कर रही है, क्योंकि उसे पता है कि जो कुसुम के रूप में सामने खड़ी है वो पुष्पी है, और आज तो पुष्पी की हालत खराब है। ऐसे में रूहानी को मौका मिल गया है पुष्पी और मामी की जासूसी करने का। तभी तो देखिए कितनी चालाकी से वो उन्हीं के कमरे में टेप रिकॉर्डर रख देती है ताकि उनकी बातें रिकॉर्ड कर सके।
4: अरे तुम रसोई में जाके वो दवाई मांगा गया तुमसे, पानी मांगा गया ना, जितना कहा गया वो करो, जाओ पानी लेकर आओ। अभी भाई जी आपको ये कहा जा
5: रहा है? हम तो जान बचा के आए हैं, वो कुसुम कमीनी, वे बागी हो गई है,
0: यहाँ कमरे में पुष्पी आराम से पूरी पोल खोल रही है तो वहाँ दरवाजे के बाहर खड़ी रूहानी उनकी बातें सुन रही है। लेकिन इसी बीच आता है कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि वहाँ पहुँच जाते हैं मामा और उन्हें हो जाता है रूहानी पर शक। लेकिन रूहानी भी कम चालाक नहीं, जरा देखिए कैसे उसने मामा को भी बुद्धू बना दिया।
6: बीमार पड़ते हैं, हमको लगता है ना उनको नजर लग गई। हाँ, हमारे दरभंगा में ना ऐसे ही कोने पे चुप करना अनुसर वाली कार का मन पड़ता है और इसे ना सारी नजर दूर हो जाते हैं। हाँ वही कर लेते हैं, एक मिनट।
0: भाई रूहानी की एक्टिंग तो जबरदस्त निकली, क्योंकि मामा जी गुमराह हो गए और देखिए कैसे पानी लेने का बहाना कर वो वहाँ से निकल गई और मामा पहुँच गए कमरे के अंदर, जहाँ पर वो पुष्पी की हालत को देखकर हैरान है। इसी बीच उन्हें आती है ठक ठक की आवाज और वो हो जाते हैं परेशान, क्योंकि ललिता को यकीन है कि ये ठक ठक कोई और नहीं बल्कि कुसुम कर रही है।
6: बड़ी कोठी के दाखाने में बचाव का आवाज सुनाई दे रहा है, सुनिए ना।
7: अरे नहीं, जीजी के पास ऐसी कोई चीज नहीं है कि उसे वो आवाज कर सके।
0: भाई ये ठक ठक की आवाज तो रूहानी भी सुन लेती है और वो उसी आवाज की ओर खींची चली जा रही है। इससे पहले कि वो वहाँ तक पहुँच पाती, रास्ते में उसकी हो जाती है टक्कर तेजस्वी से।
6: क्या अंधी हो क्या, दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? आंखों में प्रॉब्लम है तो इलाज कराओ ना। एनीवे
0: से पहले कि तेजस्वी और कुछ कहती, वहाँ पर आ जाती है जसलीन, जो तेजस्वी को वहाँ से ले जाती है और रूहानी को वहाँ से जाना पड़ता है। लेकिन तभी उसे दिखाई देता है कि पुष्पी का कमरा खाली है और वो चुपचाप दबे पांव पहुँच जाती है उस टेप रिकॉर्डर को लेने, और वो टेप रिकॉर्डर ले भी लेती है कि तभी कमरे में हो जाती है पुष्पी और मामी की एंट्री, जिन्हें देख कर रूहानी इधर उधर काम करने लगती है।
8: हमारा तो किस्मत का धोखा दे दिया, वरना ये दीपिका कटरीना विपाशा की जगह ना हमारा पोस्टर छपा था हर गली हर चौराहे पे। आज हम सुल्तानपुर में नहीं बॉलीवुड में मजा ले रहे होते हैं ना, कतर निंजा एक्टिंग।
6: मैडम जी हम बहुत थके होंगे ना, आपके लिए दरभंगा स्पेशल चाय बना के लाते हैं।
0: यहाँ पुष्पी इस बात को लेकर खुश है कि उसने कुसुम को शांत कर दिया, पर उन्हें ये नहीं पता कि अब रूहानी को पता चल जाएगा कि आखिर कुसुम कहाँ कैद है। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
3: लॉन्ग ट्रैफिक जैम्स, पोल्यूशन और फ्यूल टेंशन, देखिए ये सब तो होता है बहुत ही शॉकिंग, लेकिन इसके साथ साथ जब आता है हमारे पास ये इको फ्रेंडली सॉल्यूशन इन फॉर्म ऑफ अ बाइसिकल, तो डेफिनेटली होता है ये बहुत ही रॉकिंग। एग्जैक्टली ऐसा ही है हमारा ये अगला सेगमेंट, जहां हम दिखाते हैं आपको एंटरटेनमेंट की दुनिया से अलग अलग रंग। जी हाँ, ये तो है रॉकिंग एंड शॉकिंग न्यूज।
0: सास बहू और बेटियां लेकर हाजिर हैं आज की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। रॉकिंग खबर आ रही है कलर्स के सीरियल नागिन 7 से। नागिन 7 में जल्द ही नागिनों का महासंगम होने वाला है। नागिन अनंता का साथ देने आएगी नागिन 6 से प्रार्थना और नागिन 3 से विशाखा, यानी तीनों नागिने मिलकर करेंगी डायनासोर का अंत।
9: तीनों नागिन होगी एक साथ और होगा इंतकाम का आखिरी बार।
0: वरुण धवन, मृणाल ठाकुर और पूजा हेगड़े की आने वाली फिल्म है जवानी तो इश्क होना है मुश्किलों में पड़ने वाली है। हाल ही में इस फिल्म के दो गाने चुनरी चुनरी और है जवानी का टाइटल ट्रैक रिलीज हुआ है और ट्रेंड में चल रहा है। लेकिन इसी गाने के चलते पूजा एंटरटेनमेंट लिमिटेड ने इनके ऊपर 400 करोड़ रुपए का क्लेम किया है। ये ओरिजिनल गाने फिल्म बीवी नंबर 1 के हैं, जिसके कॉपीराइट्स टिप्स ने नहीं लिए हैं। ऐसे में 400 करोड़ रुपए का दावा तो किया ही है, साथ ही 100 रुपए करोड़ का और भी दावा कर दिया है। अगर ये फिल्म रिलीज हुई तो इन पर चीटिंग का केस दायर किया जाएगा। हाल ही में रामचरण ने की है मुलाकात भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से और उनके साथ खींची गई तस्वीरें उन्होंने अपने फैंस के लिए शेयर की हैं और साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि जल्द ही हर गांव का विकास होगा। मंगल लक्ष्मी में मंगल के बेटे अक्षित का किरदार निभाने वाले रूहान कपूर जल्द ही नजर आएंगे गोलमाल 5 में। इन्होंने इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू कर दी है और हाल ही में उन्होंने अपनी कुछ तस्वीरें कोरियोग्राफर गणेश आचार्य के साथ शेयर भी की है, क्योंकि इस फिल्म में ये डांस धमाल भी करने वाले हैं। ऐसे में प्रैक्टिस इनकी शुरू हो चुकी है। इसी के साथ देख लीजिए सीरियल मंगल लक्ष्मी के सेट के BTS नज़ारे, जहां पर मंगल अपनी बेटियों को बचाने के लिए मुश्किलों का सामना कर रही है और ऑफ स्क्रीन कैसे उसकी तैयारी करती हैं ये उन्होंने जाहिर किया है। सीरियल मन्नत के सेट से देख लीजिए BTS नज़ारे, जहां पर मन्नत का किरदार निभाने वाली आयशा सिंह बनी है दुल्हन और देखिए कैसे छोटे बच्चे के साथ वो खेल रही हैं।

0: फिर डॉक्टर आरंभी में जल्द ही होने वाली है एंट्री रोहित मेहता की। इनके किरदार का नाम होगा देव मल्होत्रा और इन्होंने अपने लुक की कुछ तस्वीरें अपने फैंस के लिए शेयर भी की हैं।
1: शांति बनाए रखिए, नाम मिला जल्द ही प्रारंभ होगी।
0: सन नियो में जल्द ही आने वाला है नया सीरियल थोड़ी सी उम्मीद थोड़ा सा आसमान, जिसका प्रोमो रिलीज हुआ है और इस प्रोमो में आपको नजर आएंगी अनुपमा की प्यारी सखी भारती यानी कि आरती, जो अब नए किरदार में ढलेंगी और मुख्य किरदार निभाती हुई दिखेंगी।
2: बस किसी की नजर न लगे।

सीरियल गंगा माई की बेटिया में सिद्धू की मां का किरदार निभाने वाली इंदिरा कृष्णा ने कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, वो भी सेट से, जब इनके सीरियल का प्रोमो शूट फिल्माया जा रहा था और वो प्रोमो शूट था शादी का। डाल लीजिए इन तस्वीरों पर एक नज़र।

0: कृष्णावतारम का पार्ट वन लॉन्च हो चुका है। मैं तो सभी सनातनियों से आह्वान करूंगा, हम सनातन धर्म को बहुत गौरवमय स्थान पर देखना चाहते हैं, लेकिन सनातन धर्म जिससे बढ़े।
1: बाबा रामदेव से मुलाकात करने के लिए पहुंच गए हैं फिल्म कृष्ण अवतारम से संस्कृति और सिद्धार्थ, और देखिए कैसे बाबा रामदेव दोनों के तारीफों के पुल बांध रहे हैं।
0: मैंने पूरा जो ट्रेलर देखा है वो तो गजब है ही, और जिस तरह से एक्टिंग संस्कृति ने की है, जो अभिनय सिद्धार्थ ने किया, और उसमें जो हमारे सनातन के जो मूल प्राण है वो है हमारे भगवान राम कृष्ण और शिव, ये तीन, और उसके पंचदेव उपासना, उसके टोटल पंचायतन हमारी पूजा के प्रमुख घटक।
2: Thank you so much for all the love and support that you have showered on me. आज मैं सर्जरी के लिए जा रही हूँ, and I know I will bounce back. So once again, keep me in your prayers.
1: मास्टर शेफ इंडिया सीजन 1 की विजेता और सेलिब्रिटी शेफ पंकज भदौरिया इन दिनों अस्पताल में भर्ती हैं। हाल ही में उन्होंने अपने फैंस को ये जानकारी दी है कि उन्हें ब्रेस्ट कैंसर हुआ है जिसका इलाज चल रहा है, और इन्होंने अपने फैंस से दुआएं भी मांगी हैं।

0: इंडियन आइडल के सेट से सामने आया है वेदांग रैना का ये वीडियो, जहां पर वो सुर छेड़ रहे हैं।
1: झूठे बहानों से चाहते जताए, बाजना जी बाजना।
2: तो ये था हमारा स्पेशल इको फ्रेंडली और फ्यूल सेविंग एपिसोड। याद रखिए, ये छोटे छोटे स्टेप्स जैसे कि साइकिलिंग, कार पूलिंग, स्मार्ट ट्रैवलिंग हैबिट्स हमारे फ्यूचर को और भी बेटर बना सकती हैं। अब लेकर हाजिर होंगे हम आपके लिए टीवी की दुनिया से और भी अपडेट्स और ज्यादा मीनिंगफुल खबरें कल सेम टाइम सेम जगह ओनली ऑन सास बहू और बेटियां। तब तक आप फिट रहिए, खुश रहिए, सेफ रहिए और देखते रहिए सास बहू और बेटियां। Take good care of yourself. Namaskar.
3: All sports, all the time, right here on TuneIn. Catch live sports talk, expert analysis, and nonstop discussion from your favorite stations, like ESPN Radio.
4: Not missed out on one player that the Yankees wanted.
3: Big 12 Radio.
5: Today is Big 12 Insiders game day. We're breaking
3: and
5: down.
3: And talk sports.
6: I just can't see a turnaround in the way that we're going to perform and result.
3: And much more. Get your head in the game and never miss a minute of the action. Just search sports or ask your device to play your favorite sports talk station on TuneIn.
7: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
8: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
12: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
14: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
15: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
9: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
12: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
3: मौसम को लेकर आईएमडी ने जारी किया बुलेटिन। इस साल देश में सामान्य से कम रहेगा मॉनसून, सिर्फ 90% बारिश का अनुमान। मध्य और दक्षिण भारत में कम बरसेंगे बादल। रामनगरी में भक्तों को मौसम ने दी सौगात, बारिश के चलते तापमान में आई कमी, सुहाने मौसम में भक्त कर रहे रामलला के दर्शन। हेमकुंड साहिब में भारी बर्फबारी, पूरे जोश और उत्साह के बीच में सिख संगत पहुंच रही धाम, अब तक 22,000 से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। बिहार में मौसम का बदला मिजाज, पटना समेत कई जिलों में जमकर बरसे बादल, कई जगहों पर तेज आंधी और तूफान। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना, भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत, कई इलाकों में जल भरा। देश के वीर जवानों को समझने का शानदार मौका, ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित पुस्तक का रक्षा मंत्री ने किया विमोचन, किताबों में सैनिकों के साहस और अनुभवों को किया गया दर्ज। आईपीएल फाइनल के लिए आज आखिरी लड़ाई क्वालिफायर 2 में, गुजरात और राजस्थान रॉयल्स के बीच में होगी टक्कर, जीतने वाली टीम फाइनल में 31 मई को आरसीबी के साथ भिड़ेगी।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
3: अयोध्या के श्री राम मंदिर में एक बार फिर से उत्सव की तैयारियां, आज मां भगवती मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण का भव्य कार्यक्रम। शाम 6 बजे शुरू होगा मां भगवती मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण का समारोह, 1 घंटे तक चलेगा दिव्य अनुष्ठान। महिलाएं ही संपन्न करेंगी ध्वजारोहण की पूरी प्रक्रिया, साध्वी रितंभरा करेंगी ध्वजारोहण, सीआरपीएफ की महिला जवान रस्सी खींचकर करेंगी अनुष्ठान पूरा। इस आयोजन में करीब 3500 महिलाओं के शामिल होने की संभावना, दिखेगा अध्यात्म श्रद्धा का अद्भुत संगम। मंदिर परिसर की विशेष सजावट का कार्यक्रम जारी, देशभर से मातृशक्ति दुर्गा वाहिनी की महिलाएं अयोध्या पहुंची। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए रामलला के दर्शन। राम मंदिर परिसर के बाहर सुबह से लगी भक्तों की लंबी लंबी कतारें, भक्तों ने लगाए जय श्री राम के जयकारे। चित्तूर के विनायक स्वामी मंदिर में उमड़ा भक्तों का मेला, विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं ने किया पूजा पाठ। गर्मी की छुट्टियों के चलते बढ़ी श्रद्धालुओं की संख्या, सुबह से ही भक्तों की कतारें लगी। भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने की भंडारे का आयोजन, बड़ी संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। शिरडी के साईं बाबा को 3,507 किलो केसर आम का चढ़ावा, पुणे के भक्त ने अर्पित किए आम। 60,000 भक्तों का आमरस के प्रसाद से हुआ मुंह मीठा, आम की सुगंध से महका मंदिर परिसर। किसान गरगल भाई पिछले 6 वर्षों से आम की पहली खेप साईं चरण को करते आ रहे दान, भक्त ने कहा सब बाबा की देन। भक्तों ने लिया आमरस का आनंद, कहा पहली बार हमें आमरस मिला। प्रसादालय में प्रतिदिन हजारों भक्त ग्रहण करते हैं प्रसाद, प्रसाद में 2 सब्जियां, चावल और चपाती दी जाती है। उज्जैन में बाबा महाकाल की उतारी गई भस्म आरती, भक्तों ने लगाए हर हर महादेव की जयकार। बाबा महाकाल का अभिषेक के बाद दूध दही घी शहद फूलों के रस के साथ किया गया पूजन अर्चन। महाकाल को रजत चंद्र त्रिशूल मुकुट आभूषण अर्पित कर किया गया श्रृंगार। भांग चंदन ड्राई फ्रूट का भोग लगाया। हरिद्वार पहुंचे पूर्व क्रिकेटर और पूर्व सांसद नवजोत सिंह सिद्धू, देखने के लिए लगी भीड़। नवजोत सिंह सिद्धू ने मां माया देवी मंदिर भैरव मंदिर में जाकर की पूजा अर्चना, भगवान का आशीर्वाद लिया। चारधाम यात्रा में भारी बारिश के बीच भी उमड़ा आस्था का जनसैलाब। अब तक 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। बाबा केदार के दर्शनों के लिए पहुंचे सबसे ज्यादा भक्त, आंकड़ा पहुंचा 9 लाख के पार। बद्रीनाथ धाम को लेकर भी भक्तों में जोरदार उत्साह, अब तक करीब 7,25,000 से ज्यादा लोगों ने किए दर्शन। यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम में लगा भक्तों का मेला, अब तक दोनों जगहों पर 8.5 लाख भक्तों ने लगाई हाजिरी। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा में भी भक्तों का लगा मेला, अब तक 22,000 से ज्यादा लोगों ने किए दर्शन। हेमकुंड साहिब का प्रकृति ने किया श्वेत श्रृंगार, का पाठ खुलने के 7 दिन बाद ही यहां जोरदार बर्फबारी का दौर जारी। हेमकुंड साहिब में चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर, मई की गर्मी के बीच श्रद्धालु बर्फबारी का मजा ले रहे। बर्फबारी पर आस्था भारी, बड़ी संख्या में भक्तों ने गुरुद्वारा साहिब पहुंचकर की अरदास। बर्फबारी के चलते पवित्र सरोवर का पानी और भी ज्यादा ठंडा, श्रद्धालु सरोवर में लगा रहे डुबकी। श्रद्धालु को वापस भेजा जा रहा बेस कैंप घांगरिया, एसडीआरएफ और गुरुद्वारा सेवादार सुरक्षा का पूरा ख्याल रख रहे। मौसम को लेकर आईएमडी ने जारी किया बुलेटिन, इस साल देश में सामान्य से कम रहेगा मॉनसून। इस साल सिर्फ 90% बारिश का अनुमान, मध्य और दक्षिण भारत में कम बरसेंगे बादल। देश में इस साल जून से सितंबर के बीच में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना, उत्तर पूर्व भारत में सामान्य बारिश होने का पूर्वानुमान। जून महीने में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार समेत 12 राज्यों में बने हीट वेव के हालात। दिल्ली समेत उत्तर भारत में बारिश के बाद तापमान में दर्ज की गई गिरावट, लोगों को गर्मी से मिली राहत। रेवाड़ी में बदला मौसम का मिजाज, जोरदार बारिश के साथ गिरे ओले भी। जोरदार बारिश से तापमान में आई गिरावट, लोगों को गर्मी से मिली राहत। अमरावती में नौतपा की तपिश के बीच में राहत की फुहार, बारिश संग जमकर गिरे ओले। भारी बारिश और ओले गिरने से सड़कों पर जलभराव, यातायात भी प्रभावित हुआ। श्रीगंगानगर में बारिश के साथ जमकर गिरे ओले, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। झांसी में मौसम ने बदला मिजाज, कई इलाकों में बारिश के साथ गिरे ओले भी। बारिश और ओले गिरने से तापमान में आई गिरावट, लोगों को गर्मी से मिली थोड़ी सी राहत। अयोध्या में सुबह सुबह हुई जोरदार बारिश, तापमान में दर्ज की गई गिरावट। वाराणसी में झमाझम हुई बारिश, लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। धौलपुर में भी मौसम ने ली करवट, झमाझम हुई बरसात। सुकमा में भी मौसम का बदला मिजाज, कई इलाकों में हुई आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश। जोरदार बारिश से सड़कों पर गिरे पेड़, यातायात भी प्रभावित हुआ। दार्जिलिंग में मौसम ने ली करवट, जमकर हुई यहां पर बर्फबारी। बारिश की वजह से यहां पर बाढ़ जैसे हालात बन गए, पानी के तेज बहाव में बह गई बाइक। देहरादून के कई इलाकों में बिजली के साथ हुई जोरदार बारिश भी, गर्मी से लोगों को मिली यहां पर राहत। पटना में सुबह सुबह बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हुई जोरदार बारिश। भारी बारिश से तापमान में दर्ज की गई गिरावट, लोगों को मिली गर्मी से राहत। उत्तर भारत में गर्मी के चलते पर्यटकों से गुलजार हुआ श्रीनगर, बड़ी संख्या में श्रीनगर पहुंच रहे सैलानी। सैलानी शिकारा राइड का मजा ले रहे, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए। सैलानियों की बढ़ती संख्या से मसूरी में लगा वाहनों का लंबा जाम, रेंगती दिखी गाड़ियां। बिहार में तेज आंधी और बारिश का रेड अलर्ट जारी, भोजपुर, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पटना, नालंदा, पूर्वी चंपारण, सारण और सीवान में जोरदार होगी बारिश। यूपी में भी आंधी तूफान और बारिश के साथ ओले गिरने का अलर्ट, अगले 3 दिन तक होगी बारिश।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रविगिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रविगिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है। और सबसे ज़्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए। और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूँ गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयां खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है, बवासीर क्या है। हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, दर्द और खुजली होती है तो वो कहलाती है वादी बवासीर। अब सवाल आता है कि ये होती क्यों है, तो सुनिए, इसके मुख्य कारण है कब्ज। अगर पेट साफ नहीं होता, मल सख्त आता है और रोज जोर लगाना पड़ता है तो धीरे धीरे नसें फूल जाती है। दूसरा, लंबे समय तक बैठना। जो लोग घंटों बैठे रहते हैं ऑफिस में गाड़ी चलाते हुए या फिर मोबाइल पर, तो उनमें रक्त संचार घटता है और नसों पर दबाव पड़ता है। तीसरा कारण है तीखा और भारी खाना खाना। बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं कि मिर्ची मसाले, तली चीजें और कम पानी, ये शरीर को गर्म करते हैं और अंदर जलन पैदा करते हैं। चौथा कारण होता है वंशानुगत कारण, जिसको जेनेटिक्स बोलते हैं। अगर आपके घर में माता पिता को बवासीर रही है तो संभावना बढ़ जाती है कि आपको भी हो सकती है। यह रोग सिर्फ शरीर को नहीं, इंसान की आत्मा तक को थका देता है। लेकिन इसके अलावा भी कई कारण हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिसका आहार संतुलित नहीं है, उसका कुछ भी संतुलित नहीं हो सकता। आयुर्वेद के अनुसार आहार ही सभी रोगों की जड़ का मुख्य कारण है। फिर जीवन शैली और पाइल्स यानी बवासीर तो मुख्य रूप से आहार से संबंधित है। आहार और विचार दोनों आपके शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विचार से अभिप्राय है, जीवन शैली से है, पर लोगों की इसी अनियमितता को देखते हुए मैंने कुछ खास जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा। ये कोई मामूली, लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाइयों और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाइयों और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूर्यकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणुरोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लेटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है। इसके बाद में है पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक। चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है, यह एक नेचुरल लैक्सेटिव है जो लेटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूर्यकंद। यह है सूर्यकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और ये है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास। अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में, और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू। लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो, सब पर यह काम करता है। इसके बाद में है कचनार। कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है। वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में, ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन, यह है इंद्रायन की जड़। इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
0: गुड़नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: Ready to make a move? Start your home buying journey with CME Federal Credit Union. Open an Ohio Homebuyer Plus account to earn 6.5% APY for up to 5 years. Savings towards your home purchase. When ready, lock in a 5-1 ARM mortgage at just 5% APR. Whether it's your first home or a new chapter, CME is here for you. Learn more at cmefcu.org. APY equals annual percentage yield. APR equals annual percentage rate. Terms apply. Membership eligibility required. Equal housing lender. Federally insured by NCUA. Visit cmefcu.org for details.
6: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
7: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry, TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
8: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.IN।
2: मौसम को लेकर IMD ने जारी किया बुलेटिन। इस साल देश के बीच में सामान्य से कम रहेगा मॉनसून, सिर्फ 90% बारिश का अनुमान। मध्य और दक्षिण भारत में कम बरसेंगे बादल। रामनगरी में भक्तों को मौसम ने दी सौगात, बारिश के चलते तापमान में आई गिरावट। सुहाने मौसम में भक्त कर रहे रामलला के दर्शन। हेमकुंड साहिब में भारी बर्फबारी, पूरे जोश और उत्साह के बीच में सिख संगत पहुंच रहे धाम। अब तक 22,000 से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। बिहार में मौसम का बदला मिजाज, पटना समेत कई जिलों में जमकर बरसे बादल, कई जगहों पर तेज आंधी और तूफान। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना, भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत, कई इलाकों में जलभराव। देश के वीर जवानों को समझने का शानदार मौका, ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित पुस्तक का रक्षा मंत्री ने किया विमोचन। किताब में सैनिकों के साहस और अनुभवों को दर्ज किया गया। IPL फाइनल के लिए आज आखिरी लड़ाई क्वालिफायर 2 में, गुजरात और राजस्थान रॉयल्स के बीच में होगी टक्कर। जीतने वाली टीम फाइनल में 31 मई को RCB के साथ भिड़ेगी।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
3: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। ज्येष्ठ पूर्णिमा की तिथि पर भगवान लक्ष्मी नारायण की उपासना के लिए काफी उत्तम माना जाता है। मान्यता है कि इस तिथि पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना की जाती है और ये व्रत को रखने से जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। कहते हैं कि इस दिन चंद्रदेव अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। इस दिन स्नान और दान धर्म करना बहुत पुण्यदायी माना जाता है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे ज्येष्ठ पूर्णिमा के महिमा के बारे में और जानेंगे इस दिन का खास महत्व आखिर क्या है।

0: अधिक मास की ज्येष्ठ पूर्णिमा है फलकारी। देवस्थलों के दर्शन करना होगा कल्याणकारी। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर कुंडली का चंद्रमा होगा बलवान। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा से होंगे धनवान। गंगा स्नान से दूर होंगे पाप, मिलेगा वरदान। दान से प्रसन्न होंगे भगवान। यूं तो ईश्वर की कृपा सच्ची श्रद्धा और भक्ति से ही मिल जाती है, लेकिन माना जाता है कि अधिक मास की ज्येष्ठ पूर्णिमा पर स्नान और दान करने से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं भगवान। ज्योतिष के जानकारों की माने तो ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में स्नान, जरूरतमंदों को दान और ईश्वर के ध्यान का विशेष महत्व है। जिसने भी ज्येष्ठ की पूर्णिमा को ये तीनों कर्म कर लिए, उसके जीवन के हर दुख हर लेते हैं भगवान। तो आइए जानते हैं कि ज्येष्ठ की पूर्णिमा क्यों है इतनी महत्वपूर्ण। पूर्णिमा की तिथि पूर्णत्व की तिथि मानी जाती है। इस तिथि को चंद्रमा संपूर्ण होता है। इस तिथि पर जल और वातावरण में विशेष ऊर्जा आ जाती है। चंद्रमा इस तिथि के स्वामी होते हैं, इसलिए इस दिन हर तरह की मानसिक समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। इस दिन स्नान, दान और ध्यान करना विशेष फलदायी होता है। इस दिन सत्यनारायण भगवान या महादेव की उपासना करनी चाहिए। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर वृक्षों और प्रकृति के पूजन की परंपरा है। इस दिन गंगा जल, बरगद के पेड़ और सूर्य देव की उपासना से विशेष लाभ होता है।
1: ज्येष्ठ पूर्णिमा वो पूर्णमासी है जिसमें व्यक्ति को पूजन करने से आरोग्यता, सौभाग्य आदि की प्राप्त होती है। ये पूर्णमासी का व्रत जैसे वट सावित्री का व्रत होता है अमावस्या के दिन, पूर्णमासी के भी दिन वही व्रत होता है। और सौभाग्यशाली स्त्रियों को अपने पति की आरोग्यता के लिए और दाम्पत्य जीवन के सुख के लिए ये पूजन और स्नान करके वट वृक्ष का पूजन करने वाला व्यक्ति और दंपत्ति अपने जो वैवाहिक सुख है उसकी वृद्धि करते हैं।
0: चलिए आपको बताते हैं कि पूर्णिमा की तिथि कब से लग रही है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि अधिक मास पूर्णिमा तिथि 30 मई शनिवार को सुबह 11:57 से लग रही है। इसका समापन 31 मई रविवार को दोपहर 2:14 होगा, लेकिन पूर्णिमा का व्रत 30 मई को किया जाएगा। इसी रात चंद्रमा का पूजन होगा। अधिक मास ज्येष्ठ पूर्णिमा का स्नान दान 31 मई को होगा। ज्येष्ठ के अधिक मास की पूर्णिमा को पुरुषोत्तम पूर्णिमा या देव स्नान पूर्णिमा भी कहा जाता है। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा

0: करती है तो उसे उत्तम फल की प्राप्ति होती है।
1: देखिए, इस समय ज्येष्ठ मास की पूर्णमासी का विधान जो कहा गया है, अधिक मास में पूजन करने का विधान है, पुण्य फल बहुत अधिक बताया क्योंकि ग्रीष्म बहुत अधिक होता है, उस समय वटवृक्ष का पूजन करना, उसमें जल आदि चढ़ाना और जल वाले फल दान करने का विशेष महत्व कहा गया है। परंतु जो असली पुण्य फल है वो शुद्ध ज्येष्ठ पूर्णमासी और शुद्ध ज्येष्ठ अमावस्या का ही कहा गया है। तो शुद्ध ज्येष्ठ पूर्णमासी के दिन व्यक्ति को अगर है ना अपना वट सावित्री व्रत करना है, उसका पुण्य फल मिलेगा। अधिक मास में करने से पुण्य फल है, परंतु मुख्यतया ज्येष्ठ पूर्णिमा का फल शुद्ध वाले ज्येष्ठ मास में बताया गया।
0: माना जाता है कि इस दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना और श्री लक्ष्मी नारायण की आराधना करने से साधक के सभी संकटों का नाश होता है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि इस दिन की पूजा और अनुष्ठानों से व्यक्ति को मानसिक और आत्मिक शांति प्राप्त होती है। अगर आप भी किसी शारीरिक और मानसिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, तमाम कोशिशों के बावजूद समस्याएं आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं, तो अधिक मास की इस पूर्णिमा पर ये उपाय आपकी हर परेशानी दूर कर सकते हैं। तो गौर से देखिए ये महा उपाय।
1: जिस व्यक्ति के शरीर में आरोग्य था, उसकी धर्म पत्नी आज उपवास करे, स्नान करने के पश्चात वट सावित्री का पूजन करने के बाद और उनको वस्त्र आदि अर्पण करे, माता पार्वती और माता लक्ष्मी का पूजन करे उनके पति के सहित, ऐसा व्यक्ति तुरंत ही आरोग्यता को प्राप्त कर लेता और वो दंपत्ति स्वयं में ही पति पत्नी दोनों स्वस्थ रहते हैं और परिवार के अंदर आनंद बना रहता है। उनके परिवार में उनके पुत्र पौत्र आदि को भी कभी कोई आरोग्यता का वरदान मिलता है, कोई अल्प काल में मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, ऐसा विधान अर्पण।
0: स्नान के पहले पूजा का संकल्प लें, संभव हो तो गंगा नदी में स्नान करें या पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। पहले जल को सिर पर लगाकर प्रणाम करें, फिर स्नान करना शुरू करें। स्नान करने के बाद साफ और सफेद कपड़े पहने, फिर सूर्य को अर्घ दे और मंत्र जाप करें। मंत्र जाप के बाद सफेद वस्तु और जल का दान करें। इस दिन जल और फल ग्रहण करके उपवास रख सकते हैं। कहते हैं कि ज्येष्ठ की पूर्णिमा वैवाहिक जीवन के लिए वरदान जैसी है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो इस दिन कुछ ज्योतिषीय उपायों से वैवाहिक जीवन में सुख और संतुष्टि का अखंड वरदान पाया जा सकता है। कैसे, खुद ही देख लीजिए।
1: ऐसे व्यक्ति को जिनको सौभाग्य में कहीं किसी प्रकार की कमी हो या पति पत्नी के बीच में प्रेम भाव कमजोर हो रहा हो, ऐसे व्यक्ति को वट सावित्री का पूर्णमासी के दिन व्रत उपवास करके ब्राह्मणों दंपतियों को भोजन कराना चाहिए। साथ में अपने परिवार के जो ध्याने होते हैं, देवते होते हैं, अर्थात बेटी दामाद आदि, उन बहन बहनों आदि, उनको भी भोजन करा के और उनको यदि सौभाग्य के चिन्ह जैसे चूड़ी आदि, वस्त्र आदि, सौभाग्य के जो श्रृंगार का सामान अर्पण करता है, वो व्यक्ति निश्चित अपने दाम्पत्य जीवन के अंदर सुख खोल लेता है। ऐसा लगता है कि जैसे साक्षात लक्ष्मी नारायण की कृपा उनको प्राप्त हो जाती है।
0: सुखद वैवाहिक जीवन के उपाय। स्नान करके बरगद के पेड़ की जड़ में जल डालें, बरगद के पेड़ के चारों ओर पीला सूत लपेटें। इसके बाद बरगद के नीचे बैठकर ओम गौरी शंकराय नमः का 108 बार जाप करें, फिर सुखद और लंबे वैवाहिक जीवन की प्रार्थना करें। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन बरगद का पौधा लगाना और भी अच्छा होगा। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि अगर आपकी गोद अभी तक सूनी है तो अधिक मास के ज्येष्ठ की पूर्णिमा पर एक खास उपाय करने से आपकी ये मनोकामना भी पूरी हो सकती है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, आगे हम आपको वो खास उपाय भी बताएंगे। तब तक आप देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार।
2: देवी कृपा पाने की खास तिथि है ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा। मान्यता है कि इस दिन किए गए उपाय निष्फल नहीं हो सकते हैं, फिर चाहे संतान प्राप्ति की कामना हो या फिर घर के वास्तु दोष को दूर करना हो। माना जाता है कि हर समस्या का समाधान इसी दिन संभव है। ज्योतिषी मानते हैं कि इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना काफी ज्यादा फलदायी होता है। जरूरतमंदों को दान और ईश्वर का ध्यान भी आपकी हर परेशानी का समाधान आपको दे सकता है।

0: की इस तिथि पर भगवान सत्यनारायण की पूजा अगर की जाए तो जीवन से सभी संकटों का समाधान हो सकता है। माँ लक्ष्मी का प्राकट्य भी पूर्णिमा की तिथि पर माना जाता है। चंद्रमा भी इस तिथि पर 16 कलाओं के साथ होता है। चलिए आपको इस तिथि से जुड़े कुछ महा उपाय बताते हैं, जिनको करने से आपकी धन संपत्ति बाधा का निदान हो सकता है। पूर्णिमा पर धन प्राप्ति के उपाय। माँ लक्ष्मी की मूर्ति के सामने 11 पीली कौड़ियाँ रखें, उन पर हल्दी का तिलक लगाएं। रात को पूजा के बाद इन कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर धन वाले स्थान पर रखें। मान्यता है कि ऐसा करने से आपकी धन की लालसा पूर्ण हो जाती है। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि पूर्णिमा की तिथि पर कर से मुक्ति के उपाय भी आप कर सकते हैं। माना जाता है कि ये महा उपाय आपको रोजगार से भी तरक्की दिलवा सकते हैं। तो गौर से देखिए ये महा उपाय। पूर्णिमा की तिथि पर पीपल में भगवान लक्ष्मी नारायण का वास माना गया है। इस तिथि पर पीपल के वृक्ष के नीचे शाम को एक घी का दीपक जलाएं। इसके बाद पीपल की 7 परिक्रमाएं करें। मान्यता है कि ऐसा करने से आपकी कर्ज की समस्या दूर होगी, साथ ही आपके कारोबार में बरकत होगी।
1: देखिए, ये पूजन ही सौभाग्य के लिए किया जाता है, तो उस दिन वट वृक्ष की पूजन करने के पश्चात उसमें जल अर्पण करें और वहां ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उनको साक्षात लक्ष्मी नारायण स्वरूप मानते हुए। ऐसा कहा गया कि जो एक बार ऐसे ब्राह्मणों को भोजन करा देते, तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी और सावित्री अर्थात सरस्वती को भोजन करा देता है। जो 3 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, अर्थात 3 बार भोजन वहां करा देता है, वो साक्षात केशव अर्थात नारायण को लक्ष्मी समेत भोजन करा देता है। और जो व्यक्ति वहां 7 दंपतियों को भोजन करा देता है, वो भगवान कह रहे हैं के ब्रह्मा विष्णु महेश सहित सभी जितने भी ऋषि और ऋषि वंश हैं सबको भोजन करा देता है, इतना पुण्य फल प्राप्त हो जाता है।
0: ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि पूर्णिमा की तिथि पर चंद्रमा को जल में दूध मिलाकर अर्घ देने से कुंडली का चंद्रमा बलवान होता है। ज्योतिष मानते हैं कि पूर्णिमा पर किए जाने वाले उपाय कभी निष्फल नहीं जाते। तो अगर आपको है संतान की समस्या तो ज्येष्ठ पूर्णिमा पर कीजिए ये खास उपाय, गौर से देखिए। संतान प्राप्ति के उपाय। दिन में किसी भी समय बरगद के पास दीपक जलाएं, उसकी जड़ में जल डालें, संतान प्राप्ति का वरदान मांगें, फिर बरगद की थोड़ी सी जड़ निकाल लें। इस जड़ को पीले धागे में बांधकर गले में पहन लें और संतान प्राप्ति होने तक इस जड़ को पहने ही रखें। ज्येष्ठ पूर्णिमा को वट पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए वट वृक्ष की पूजा करती हैं और वट वृक्ष की परिक्रमा करते हुए कच्चा सूत बांधती हैं। ज्योतिष के जानकार बताते हैं कि ज्येष्ठ पूर्णिमा मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए विशेष फलकारी है, क्योंकि इस दिन की पूजा उपासना का फल अमोघ माना गया है। इसलिए इस तिथि पर स्नान और दान का विशेष महत्व बताया गया है। चलिए अब आपको ज्योतिष से जुड़ा वो महा उपाय बताते हैं जो है आपकी संतान से। अगर आप भी अपनी पुत्री के वैवाहिक जीवन को और भी सुखद बनाना चाहते हैं, तो ज्येष्ठ की पूर्णिमा पर करें ये उपाय। पुत्री का वैवाहिक जीवन सुखी बनाने का उपाय। माँ लक्ष्मी को सफेद फूल, सफेद मिठाई और चांदी की कोई वस्तु अर्पित करें। इसके बाद ये तीनों चीजें अपनी पुत्री को दे दें। आपकी पुत्री का वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। माना जाता है कि ये खास ज्योतिषीय उपाय आपकी हर मनोकामना पूरी कर देगा। चलिए अब आपको घर का वास्तु दोष दूर करने का उपाय बताते हैं। तो उसके लिए भी ज्येष्ठ पूर्णिमा पर खास उपाय कर सकते हैं। तो गौर से देखिए। वास्तु दोष को दूर करने के महा उपाय। आम के 11 पत्ते ले, शुद्ध जल से इसे धो ले, केसर में गंगा जल मिलाकर इन पर श्री लिखें। आम के इन पत्तों और मौली से वंदनवार बनाएं। इस वंदनवार को घर के मेन गेट पर बांधे। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होगा।
1: अगर किसी कारणवश अगर आपके घर में कोई वास्तु दोष उत्पन्न है या वास्तु दोष के कारण से आपके जीवन में कष्ट चला रहा है, तो वट सावित्री व्रत वाले दिन अपने घर में पूजन करने के लिए एक बड़का पेड़ गमले में लगाएं और उसका विधि पूर्वक पूजन करके एक वर्ष तक अपने घर में रखें, और घर के विशेष तौर पर उत्तर दिशा में रखें, उत्तर पूर्व में रखेंगे बड़ा सुंदर रहेगा। और पूजन करने के पश्चात अगले एक वर्ष बाद वट सावित्री पूर्णमासी के दिन ही किसी शिवालय में या किसी पानी वाली जगह के नजदीक उसका सुरक्षित रख के स्थान पे ना उनको रोप दे, तो आपके घर का वास्तु दोष हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है।
0: माना जाता है कि हर विपदा और हर परेशानी का अंत करने वाला है ये उपाय, जो आपकी जिंदगी में खुशियों की रोशनी बिखेर सकते हैं। इसलिए सच्चे मन से कीजिए स्नान, दान और ध्यान, फिर देखिएगा पल भर में कैसे आपकी मनोकामना पूरी कर देंगे भगवान। आगे हम आपको बताएंगे ज्येष्ठ पूर्णिमा पर स्नान, दान और ध्यान की विधि। बने रहिए हमारे साथ।
2: तो हम आपको ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा का महत्व बता रहे हैं। इस दिन स्नान, ध्यान और दान से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं भगवान। लेकिन माना जाता है कि कुछ खास मंत्रों के जाप से आपको ईश्वर की विशेष कृपा मिलेगी, तो कौन से हैं वो प्रभावी मंत्र, चलिए आपको बताते हैं।
0: तिथि चाहे पूर्णिमा की हो या अमावस्या की, देवताओं का समर्पित इन तिथियों पर स्नान, ध्यान और दान की परंपरा रही है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाता है।
1: उस दिन करने वाले जो भी आप दान पुण्य करेंगे उसका 12 गुना फल मिलता है आपको। 12 वर्षों तक लगातार करने वाला फल एक ही दिन मिल जाता है। इसी प्रकार से जो शुद्ध पूर्णमासी है उसका पुण्य फल इस प्रकार बताया गया है कि व्यक्ति जो उसकी पूर्णिमा में परिक्रमा करे, उस वटवृक्ष की पूजन करने के पश्चात वहां पर भगवान को यज्ञोपवीत और वस्त्र आदि अर्पण करे, तो वो अपने परिवार के अंदर विशेष तौर पे आरोग्यता और सौभाग्य का अर्पण कर लेता है।
0: जानकार बताते हैं कि पूर्णिमा तिथि को जल और आसपास के वातावरण में अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, इसलिए इस दिन पवित्र नदियों के जल से स्नान करने का अवसर नहीं खोना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि ज्येष्ठ पूर्णिमा पर कैसे करें स्नान, ध्यान और मंत्र जाप। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर करें स्नान ध्यान। स्नान से पहले संकल्प लें, पहले जल को सिर पर लगाकर प्रणाम करें, फिर स्नान करना शुरू करें। स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ दें, साफ वस्त्र या सफेद वस्त्र धारण करें, फिर मंत्रों का जाप करें। मंत्र होंगे ओम श्रा श्री श्रो शह चंद्रमसे नमः, ओम ह्रीं श्री लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। केवल नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं। मंत्र जाप के बाद सफेद वस्तुओं और जल का दान करें। इस दिन जल और फल ग्रहण करके उपवास रखें तो उत्तम होगा। बड़ी ही पवित्र और शुभ फलदायी है अधिक मास की ज्येष्ठ पूर्णिमा। तो ज्येष्ठ पूर्णिमा पर आप भी पवित्र नदियों में स्नान कीजिए, जरूरतमंदों को कुछ दान कीजिए और समय मिले तो कुछ वक्त ध्यान भी जरूर कीजिए। फिर देखिए कैसे सवरने लगेगा आपका भाग्य और जीवन में होगा शुभता का आगमन।
2: तो प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
5: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your master's in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
6: Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
7: Third period comes to an end. Game two, headed to overtime.
6: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of action.
7: They score!
6: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
8: Good news today. Achhi khabar, sachi khabar.
9: Khabron ko parakh kar parosna hamari zimmedari hai. Isiliye khabar ke kintu parantu ko hum sachchai ki kasauti par kaste hain. Tab lekar aate hain wo sachi khabar jo aapko achhi lage. To achhi aur sachi khabron ka waqt raat 8 baje Good News Today par.
10: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर रात सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से देशवासियों से विदेश यात्रा की जगह स्वदेश यात्रा करने की अपील की है, तभी से गुड न्यूज टुडे भी आपसे लगातार गुजारिश कर रहा है कि आप अपने आसपास की खूबसूरत जगहों की तस्वीरें हमें भेजिए ताकि हम आपकी उन वीडियोस को जरूर दिखाएं। तो चलिए आज आपको हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला लेकर चलते हैं, जहां के तमाम आकर्षक और खूबसूरत पर्यटक स्थल आपका इंतजार कर रहे हैं। हमारे एक दर्शक ने हमें एक ऐसा ही वीडियो भेजा है जिसमें उन्होंने धर्मशाला समेत कांगड़ा वैली की खास जगहों के बारे में आपको जानकारी दी है।

0: आप सभी को भी न्योता देता हूँ कि हमारा हिमाचल प्रदेश जो देव भूमि है और हिमाचल के ही अंदर बसा हमारा ये सुंदर धर्मशाला, जहाँ एक तरफ धुलाधार की हसीन पहाड़ियाँ, जहाँ आज मई और जून के महीने में भी बर्फबारी धुलाधार की पहाड़ियों पर है। कहना चाहूंगा हिमाचल प्रदेश के अंदर ये सुंदर हमारा धर्मशाला, जहां इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो विश्व का सबसे सुंदर स्टेडियम है वो धर्मशाला में है, चाहे मैक्लोडगंज जो नगरी है वो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में है, वो धर्म के धर्मगुरु दलाई लामा जी यहां पर हैं। आप सभी आए और धर्मगुरु दलाई लामा जी का आशीर्वाद मिलने का सौभाग्य आप सभी को मिलेगा। धर्मशाला के अंदर चाय के बगान है, आप उन्हें निहारने के लिए यहाँ आ सकते हैं। धर्मशाला के अंदर कई देवी स्थान, कई मंदिर, जैसे अगंजर महादेव, इंदुरनाग जी का मंदिर देवी स्थल है, और कई मंदिर हमारे हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के शहर के अंदर है। बात करूँ रोपवे की, तो धर्मशाला में, धर्मशाला से मैक्लोडगंज के लिए रोपवे की सुविधा है, आप उसका आनंद लेने भी हिमाचल प्रदेश के अंदर आ सकते हैं। अगर कोई ट्रैकिंग का शौकीन है तो त्रिउंड जैसा एक ट्रैकिंग का हमारे पास स्पॉट जो है धर्मशाला के अंदर है, आप ट्रैकिंग के लिए भी त्रिउंड जा सकते हैं। साथ में धर्मशाला के लगते बाथू की लड़ी यहाँ घूमने के लिए है। मंदिर की बात करूँ तो रॉकट टेम्पल हमारे यहाँ है। धर्मशाला के साथ ही लगता कांगड़ा है, प्रदेश माता शक्तिपीठ धर्मशाला के अंदर लगते कांगड़ा में है, तो आप इन तमाम चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए, घूमने के लिए धर्मशाला आए हिमाचल वासी, तो धर्मशाला अतिथि देवो भव के भाव के साथ आप सभी के स्वागत के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। आपने आना कैसे है ये सबसे बड़ा प्रश्न है, तो बताऊँ आपको, धर्मशाला के ही समीप गग्गल एयरपोर्ट, जहाँ आप हवाई मार्ग से आ सकते हैं। रेलवे से अगर आपने आना है तो पठानकोट जो सबसे नजदीक हमारे पड़ता है उसके माध्यम से आ सकते हैं। सिर्फ दिल्ली से आपने आना है तो वोल्वो बसें जो है धर्मशाला तक आती हैं। इन तमाम साधनों से जो आप धर्मशाला आ सकते हैं। हम सभी धर्मशाला वासी आपके स्वागत के लिए और अतिथियों के, अतिथि देवो भव के भाव के साथ यहाँ पर।
1: तो आप भी अपने ही देश में सैर सपाटा करने, अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट कीजिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के संकल्प के भागीदार बनिए। बस आपको करना सिर्फ इतना सा है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है, तो उठाइए अपना कैमरा और स्टार्ट कर दीजिए व्लॉग्स बनाने। फिर हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, हम उसे GNT पर जरूर दिखाएंगे।
2: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. Country roads. So thank God I get to wake and everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations, like today's hits, classic rock, coffeehouse, and more. Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
5: Achhi khabrein. Good news today. Achhi khabar, sachi khabar.
6: Khabron ko parakh kar parosna hamari zimmedari hai. Isiliye khabar ke kintu parantu ko hum सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
3: लखनऊ के साईं भक्त ने बाबा को भेंट किया स्वर्ण मुकुट, बेशकीमती पत्थरों से बने कमल पर उकेरा गया ओम। 782 ग्राम के इस मुकुट पर दो मयूर की नक्काशी। देश में साल सामान्य से कम रहेगा मॉनसून। मौसम विभाग ने 90% बारिश का लगाया अनुमान। मध्य और दक्षिण भारत में कम बरसेंगे बादल। रामनगरी अयोध्या में भक्तों पर मौसम हुआ मेहरबान, बारिश के चलते तापमान में आई गिरावट। सुहावने मौसम में भक्त कर रहे हैं रामलला के दर्शन। श्री हेमकुंड साहिब में भारी बर्फबारी, पूरे जोश और उत्साह के बीच सिख संगत पहुंच रही है धाम। अब तक 22,000 से ज्यादा भक्तों ने किए दर्शन। पश्चिम बंगाल के परुलिया में झमाझम बारिश से मौसम सुहावना, भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत, कई इलाकों में जलभराव। देश के वीर जवानों को समझने का शानदार मौका, ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित पुस्तक का रक्षा मंत्री ने किया विमोचन। किताब में सैनिकों के साहस और अनुभवों को दर्ज किया गया है।

0: धधक रहा है हरा समंदर, आज इसी को लेकर हम करेंगे चर्चा। बात शहरों में, पारा क्योंकि तेजी से चढ़ता जा रहा है और पहाड़ भी लगातार जल रहे हैं। आज बात इसी को लेकर होगी। जब भी धरती का पारा गर्म होता है, शहरों में गर्मी अक्सर बढ़ती है तो फिर लोग पहाड़ों का रुख करते हैं, लेकिन पहाड़ों की ठंडी हवा, वहां का ठंडा पानी और बादलों को छूती ऊंची ऊंची चोटियां, ये सब हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं। लेकिन ये पहाड़ ही जब आग उगलने लग जाए तो फिर इंसान कहां जाए। उत्तराखंड हिमाचल के पहाड़ इन दिनों आग उगल रहे हैं। जिन पहाड़ों की सुंदरता उनके पेड़ पौधों से होती है, वो पेड़ पौधे धीरे धीरे जलकर राख होते जा रहे हैं। और ये कोई सिर्फ इस बार का किस्सा नहीं है, बल्कि हर साल गर्मियों की यही कहानी है। ये हाल देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अमेरिका तक पहुंचा हुआ है। तो चमोली से चिली तक क्यों झुलसा जंगल, चीड़ के सूखे पत्तों पर कैसी लापरवाही की चिंगारी, जंगल जीवन के बचाव का क्या है एक्शन प्लान, और आखिर क्यों धधक रहा है हरा समंदर, इस पर होगी आज बात। हमारे साथ जाने माने पर्यावरणविद मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ मौसम की जानकार भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। तो जंगल में आग की वजह चाहे जो भी हो, लेकिन खामियाजा जंगली जानवरों और पहाड़ों पर बसे गांवों के लोगों को भुगतना पड़ता है। और इसी से समझा जा सकता है कि जंगलों में लगी आग कितनी बड़ी समस्या है। ऐसे में लोग यही पूछ रहे हैं कि आखिर पहाड़ आग क्यों उगल रहे हैं और कैसे सरकार और पहाड़ की जनता मिलकर इस वन अग्नि के कहर को रोक सकती है। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में इस साल अब तक करीब 3600 हेक्टेयर जंगल खाक हो चुका है। हिमाचल के सोलन, कसौली, शिमला के जंगलों में आगजनी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसी हफ्ते कई घटनाएं ऐसी हुई भी हैं। उत्तराखंड के नैनीताल, बागेश्वर, चमोली के जंगल में भी आग के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं पौड़ी, विकासनगर, नई टिहरी के जंगलों में भी आग की लपटें देखी जा सकती हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी ऐसे मामले दिखाई दे रहे हैं। विदेशों में भी लगातार फैलती जंगल की आग लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है। अमेरिका की कैलिफोर्निया में इस महीने आग से हादसे हुए हैं, तो वहीं चिली के तटीय इलाकों में भी आग से कई घर तबाह हुए हैं। इस बीच जापान के ओत्सुची के पहाड़ी इलाकों में भी आग देखने को मिली। इससे ओत्सुची में 1633 हेक्टेयर जमीन को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। थाईलैंड, म्यांमार के घने जंगलों में भी आग के मामले सामने आए हैं। अमूमन ऐसा कहा जाता है कि ज्यादातर मानवीय लापरवाही की वजह से ही आग होती है और इस तरह के हादसे होते हैं। तेज हवाएं भी इसकी एक बड़ी वजह बनते हैं। वहीं आकाशीय बिजली गिरने की वजह से भी जंगलों की आग भड़क जाती है। हल्की आग को नजरअंदाज करने की वजह से भी आग का दायरा लगातार बढ़ता है। सेना, वायुसेना आग बुझाने के लिए मदद में जुटी हैं, लेकिन कैसे सरकार और लोग भी मिलकर वनाग्नि को रोक सकते हैं, क्या आधुनिक तकनीक कुछ राह आसान बना सकती है, इन सब तरीकों और आग लगने की वजहों पर भी मंथन करेंगे आगे। तो उत्तराखंड हो या हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर हो या कोई और जगह, जंगल में आग लगी हुई है, जंगल झुलस रहे, ये तमाम तस्वीरें उसकी गवाही है। हिमाचल के सोलन से कसौली तक देख लीजिए जंगलों में किस तरीके से आग लगी है। वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स आग बुझाने के मिशन में जुटे हैं, बावजूद इसके हिमाचल के जंगलों की आग पूरी तरह से बुझी नहीं है। जम्मू कश्मीर के राजौरी इलाके की बात की जाए तो अभी तक वहां पर 12 जगहों पर आग की घटनाएं देखी जा चुकी हैं। खासतौर पर नौशहरा, सुंदरबनी, डूंगी इलाकों में जंगलों का बड़ा हिस्सा आग की चपेट में है। हालांकि वन विभाग और फायर डिपार्टमेंट ने मोर्चा संभाल लिया है, लेकिन भीषण आग पर काबू पाने में अभी भी वक्त लगेगा। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में, गजा पोखाल रेंज में सियोरी के आसपास जंगलों में आग लगी है। तेज हवाओं के कारण आग तेजी से फैलती भी जा रही है। गांव के लोगों ने स्थिति की गंभीरता को समझा, तुरंत जंगल बचाने का प्रयास भी किया। गर्मी के मौसम में हर साल ये स्थिति पैदा होती है और देश भर के जंगलों को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। लेकिन अब सवाल यही है कि जंगल की इस आग का जिम्मेदार कौन है, आखिर हमारे जंगलों को किसकी नजर लगी, जंगलों के बचाव का क्या है एक्शन प्लान, इस पर आगे बात करेंगे। तो उत्तराखंड के जंगलों में आग की घटनाएं कोई नई बात नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि भारी नुकसान के बावजूद इस समस्या का समाधान भी अब तक नहीं निकल पाया है। उत्तराखंड में जंगलों की आग का सबसे ज्यादा असर चमोली पर पड़ा है। पहाड़ों की आग का गुब्बार हर तरफ फैल रहा है। चमोली में कर्णप्रयाग से नारायण बगड़ और आदिबद्री और गोपेश्वर के जंगलों में भीषण आग की वजह से हर तरफ धुआं ही धुआं है।
1: चमोली जनपद में इस समय भीषण जंगलों में आग लगी है, चाहे नारायण बगड़ की बात करें, कर्णप्रयाग इलाके की बात करें या फिर चमोली के गोपेश्वर के इलाके की बात करें, हर तरफ इस समय आग लगी हुई है। जो पहाड़ी चोटियां हैं वो अब यहां से साफ भी नहीं दिखाई दे रही। हालांकि जोशीमठ क्षेत्र में आग जंगलों में नहीं है, लेकिन यहां पूरा धुआं जो जोशीमठ शहर है वहां तक इस समय धुआं दिखाई दे रहा है। पहाड़ी चोटियां साफ नहीं दिखाई दे रही हैं। आसमान भी इस समय जो नीला दिखाई देता था, जहां बादल दिखाई देते थे, वो नहीं दिखाई दे रहे। सब कुछ इस समय धुएं की आगोश में इस समय पूरे जनपद में दिखाई दे रहा। वहीं लोगों की जो सांसों में है, धुएं की जो खुशबू है, वो साफ साफ यहाँ पे पता चल रही है। इस तरह से जो चमोली जनपद का इस समय वातावरण है, धुआं ही धुआं हर तरफ, इस समय जो माहौल है, हर तरफ आग लगी हुई है। जंगलों की आग का धुआं पूरे जनपद में जगह जगह फैला हुआ है। न धूप की रोशनी साफ दिखाई दे रही है, ना आसमान साफ दिखाई दे रहा है, जो एक नई परेशानी का रूप में अब दिखाई दे रही है। वहीं अगर बात करें, मौसम विभाग ने आज से पूर्वानुमान जो ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, ऐसे में प्रशासन ने भी यात्रियों से सुरक्षित यात्रा करने की अपील की है। भारी बारिश के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रुकने की सलाह दी गई है, ताकि वो बारिश के दौरान कहीं भी यात्रा मार्गों पर ऐसी जगहों पर ना रहें जहां लैंडस्लाइड हो, या फिर देख रेख करके ही यात्रा करने की सलाह दी है। जहां एक और आग का धुआं हर किसी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है, वहीं मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है, अब हल्की बारिश शुरू हो रही है, तो ये उम्मीद है कहीं ना कहीं जो अब धुएं से, आग से, जंगलों की आग से थोड़ी सी राहत मिलती दिखाई देगी। अगर बारिश नहीं होती है तो कहीं ना कहीं ये धुआं आने वाले दिनों में और भी अत्यधिक परेशानी का सबब बन सकता है। वहीं जो जंगलों की आग है वो और विकराल होती हुई दिखाई दे रही है। दिन प्रतिदिन जंगल के जंगल जलकर खाक हो रहे हैं। कमलेन सिलोरी, चमोली।
0: तो उत्तराखंड में सिर्फ सरकार और प्रशासन ही आग बुझाने में नहीं जुटे, बल्कि स्थानीय लोग भी इस चुनौती से लड़ रहे हैं। लोग इन जंगलों से क्योंकि उन्हें लगाव है, रोजी रोटी यहीं से चलती है। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में गजा और पोखराल रेंज के स्यूरी गांव में आसपास के जंगलों में आग लगी है। तेज हवाओं के कारण आग तेजी से फैल भी रही है। गांव के लोगों ने स्थिति की गंभीरता को समझा है और तुरंत जंगल बचाव के प्रयास शुरू कर दिए हैं।
2: विभाग काफी परेशान है आग की वजह से, और जनता परेशान हो गई है ये धुआं से, और विभाग जो है इतना परेशान है। हर व्यक्ति को नजर रखना चाहिए, हर व्यक्ति और विभाग तो नजर रख ही रहा, लेकिन हर व्यक्ति को नजर रखना चाहिए कि जंगल में आग न लगाए। कितने नुकसान हो रहा है, कितने क्षति हो रही है, देखो पशु पक्षी हर जीव ये जो है, अरे हम लोग कितना हुआ है प्रदूषण की बीमार हो रहे हैं, ये धूप बारिश हो नहीं रही है, हर व्यक्ति परेशान है भाई।
0: तो मैं इस देश ही नहीं, अगर हम दुनिया भर के जंगलों की भी बात करें तो तस्वीर बिल्कुल ऐसी ही है। ये तस्वीरें इंसानी लापरवाही की तस्दीक भी करती हैं। पोलैंड के जंगलों की हाल आपको दिखाते हैं। यहाँ वोलोमिन जिले से सटे जंगलों में लगी भीषण आग को बुझाने के लिए 65 दमकल कर्मी, एक पुलिस ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और 4 दमकल विभाग लगातार जुटे हुए हैं। राहत की बात यह है कि आग लगने की इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। पुर्तगाल के कुछ हिस्सों में मई के महीने में भी ही भीषण गर्मी पड़ रही है, तो ऐसे में सेना और वन विभाग के अधिकारी 2026 की शुरुआत में आए भयंकर तूफान से बचे लकड़ी के मलबे को साफ करने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं, ताकि गर्मियों में जंगल में आग लगने के हादसों पर विराम लग सके। यूरोप में सबसे ज्यादा जंगलों में आग लगने की घटनाएं पुर्तगाल और स्पेन में होती हैं। जंगल से जुड़े जानकारों का कहना है कि तूफान की वजह से जमीन पर भारी मात्रा में ईंधन फैला हुआ है और इसकी वजह से आग लगने की आशंका काफी बढ़ गई है। तो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपका परिचय करा देती हूं। जयराम, फॉर्मर प्रिंसिपल, चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट एंड हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स उत्तराखंड से हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर सीएस दुबे, कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, जियोलॉजिस्ट हैं। नवीन भटनागर जी फॉर्मर डीआईजी एनडीआरएफ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कुछ ही देर में चंदन नयाल जी भी जुड़ेंगे, एनवायरमेंटलिस्ट हैं। सबसे पहले जयराम जी आप ही से शुरुआत करना चाहूंगी, नवीन जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप सभी का स्वागत है। 3600 हेक्टेयर जंगल खाक हुआ सर, हर साल कोशिश ये की जाती है कि आग न लगे, प्लान बनते हैं, तैयारियां की जाती, बावजूद इसके जंगल धधक रहे हैं, क्या कारण देखते हैं इसके पीछे आप?
3: देखिए मेरा नाम जय राज है
0: जी,
3: और मैं सेवानिवृत्त प्रमुख वन संरक्षक ऑफ उत्तराखंड हेड ऑफ फॉरेस्ट
0: जी।
3: अब जो आपने सवाल पूछा कि इसका कारण क्या है फायर का, फॉरेस्ट फायर का, तो कारण हमेशा से एक ही कारण रहा है और वो है लोगों की लापरवाही। जितनी भी जंगलों में आग लगती है इसका जो है एकमात्र कारण है कि लोग लापरवाही कर जाते हैं। जब ये लोग अपना खेत जलाते हैं, गांव वाले जब कूड़ा उसका साफ करते हैं तो वो आग जंगलों में फैल जाती है। कई बार बीड़ी सिगरेट जो है सीजन में इतनी गर्मी है कि सारा मटेरियल ड्राई हो रहा होता है तो वहां पे अगर बीड़ी सिगरेट किसी ने डाल दी जलती हुई तो जंगल में आग लग जाती है। तो अगर ये लापरवाही जो है ये इसका मेन कारण है। अगर लापरवाही ना हो तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि जंगलों में एक भी आग नहीं लगेगी जहां तक उत्तराखंड की बात है। विदेशों में कुछ कारण और भी हो सकते हैं पर हमारे यहाँ पे इंडिया में जो ये लापरवाही वाला फैक्टर है ये मेन फैक्टर है जी।
0: बिल्कुल, लापरवाही कहाँ कहाँ किस किस स्तर पर होती है उसको लेकर भी आगे डिटेल में आपसे बात करेंगे। नवीन जी आपके पास, उससे पहले चंदन नयाल जी आपको याद होगा कि हम पिछले साल भी इसको लेकर हमने कई बार चर्चा की थी, आप भी हमारे साथ थे। पहाड़ों की आग अभी जो बात हो रही थी तो वो ये है कि जो लापरवाही आम जनता आम लोगों की वजह से होती है, आपको क्या लगता है क्या कारण इसके पीछे हो सकता है?
4: देखिए बिल्कुल अभी जयराज सर ने बोला कि लापरवाही ही है सबसे बड़ा कारण, क्योंकि मैं अभी जस्ट अभी एक उदाहरण देता हूं। मैं आज ही जो है उत्तरकाशी और ग्वालदम होते हुए, उत्तरकाशी से ग्वालदम होते हुए जो है कुमाऊं में प्रवेश किया तो मैंने जहां भी देखा जो टूरिस्ट यहां पर पर्यटक आ रहे हैं वो सिगरेट पी रहे हैं सड़क के किनारे, और सड़क के किनारे जो है पिरोल गिरा हुआ है। मैंने तीन लोगों को मैंने ही टोका, मैंने कहा भाई साहब आप ऐसे सिगरेट मत पीजिए, ये आप यहाँ पर फेंकेंगे तो क्या पता जो है जंगल में आग भी लग सकती है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही है। इसके तीन चार कारण है, जैसा सर ने बताया कि लोग घास जो अच्छी घास होगी उसके लिए जो है जंगलों में आग लगाते हैं, लोग अपने जो कूड़ा वगैरह होता है उसको जलाने के लिए आग लगाते हैं, तीसरा जो है जो बीड़ी सिगरेट आजकल फेंक देते हैं उसके कारण भी जो है जंगलों में आग लगती है। लेकिन कहीं ना कहीं हमको ये जो है सारे शासन और प्रशासन को, वन विभाग को, हमें ये जिम्मेदारी भी तय करनी होगी, क्योंकि हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई लोग ही जो है इस के मुख्य कारण है। कहीं ना कहीं मैं हमेशा से कहता हूं, जैसा पिछली बार भी मैं आपसे कहता था कि हमारे चीड़ के जंगल बहुत तेजी से फैल रहे हैं, बांस के जंगलों के अगर आसपास अगर आप लोग देखेंगे तो आग नहीं लगेगी, आप वहां पर अगर आग लगाने की कोशिश भी करेंगे तो नहीं लगेगी आग। लेकिन पाइन जो फॉरेस्ट हमारा तेजी से बढ़ रहा है, जो पाइन के फॉरेस्ट बढ़ रहे हैं उसके कारण सबसे ज्यादा जो है आग लग रही है, उन्हीं फॉरेस्टों में सबसे ज्यादा आग लग रही है। लोग क्योंकि आजकल होता क्या है, आजकल लोग इसलिए भी लगा देते हैं, उनकी गाय बच्चियां जंगलों में जाती हैं और पिरोल में जो है आप अगर चलेंगे जो पाइन निडल्स होते हैं उनमें आप चलेंगे तो उसमें आदमी भी फिसल जाएगा, जानवर तो फिसलते ही है, कई जानवरों की ऐसे मौत भी हो जाती है, तो इस कारण भी लोग आग लगा देते हैं। तो कारण बहुत सारे हैं, लापरवाही बहुत बड़ा कारण है, लेकिन कहीं ना कहीं अब हमको पिछले 5 से 7 सालों से लगातार हम लोग डिबेट कर रहे हैं
0: बिल्कुल हाँ।
4: और बहुत सारे बिंदुओं पर बात हो रही है लेकिन कहीं ना कहीं नीतिगत तरीके से जो है बात नहीं हो पा रही है, नीतिगत तरीके से हम लोग उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे कि इसके लिए क्या होना चाहिए, क्या मापदंड होने चाहिए।
0: बिल्कुल नवीन जी, अब मैं आपके पास आऊंगी। देखिए दोनों की बात आपने सुन ली, एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है, देखिए पहाड़ों पर डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो रहा है, हाई टेंशन तार भी वहां से गुजरते हैं, ये भी एक कारण हो सकता है, और दूसरा ये भी हो सकता है कि कहीं छोटी सी चिंगारी लगी, कभी उसको इग्नोर कर दिया। किस तरह के एक्शन प्लान की जरूरत है और प्लान बनते हैं क्या वो एग्जीक्यूट नहीं होते बावजूद, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हर साल ये आग लगातार बढ़ती जा रही है। नवीन जी सर आपसे सवाल है जी।
5: बिल्कुल, अब जैसे हम एनडीआरएफ से हैं तो हम लोग जो है बराबर गवर्नमेंट के, अगर गवर्नमेंट पूछती है तो हम लोग उनको अपना सजेशंस देते हैं, और इसके अलावा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसके बाद फायर डिपार्टमेंट है, ये सारे ये लोग भी अपना एक्शन प्लान गवर्नमेंट को देते हैं और उसके ऊपर जो है कार्रवाई किया जाता है, एक्शन किया जाता है और लोगों को समझाया भी जाता है। इसके लिए विलेज डिफेंस फोर्स बनाई गई है जो गांव में जा जाके लोगों को इस बारे में अवेयर करते हैं, फर्स्ट एड वगैरह की ट्रेनिंग भी दी जाती है और आग लगने पे क्या करना है वो भी बताया जाता है। लेकिन ये है कि है ना, उस टाइम के अंदर जो है लोगों को काफी कुछ जागरूक किया जाता है, ये बराबर SOPs बनाई गई हैं हर डिपार्टमेंट से और हर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है टाइम टू टाइम स्पेशली NDMA के यहाँ से हम लोग गाइडलाइन देते हैं बराबर आपका स्टेट गवर्नमेंट को और उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट इस पे ध्यान देगी और देती है, ऐसी बात नहीं है, गवर्नमेंट ध्यान देती है और इसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। इसके अलावा भी और कोई अगर एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए तो हमारे पास एक्सपर्ट ओपिनियन भी रहते हैं। अब आपको हम बताएं, कई बार आग लगती है, हेलीकॉप्टर आप भेज देते हैं, उससे पानी फेंकते हैं, पानी से कुछ नहीं होगा, पानी से कूलिंग इफेक्ट होता है थोड़े एरिया में लेकिन वो फिर भाप बनकर उड़ जाता है और आग और फैल जाती है। इसकी जगह जगह अगर मड वाटर यानी मिट्टी का पानी फेंके तो क्या होगा, स्टीम तो बनेगी लेकिन वो मिट्टी जो है वह आग के ऊपर यानी जो उसका इनिशियल पॉइंट है उसके ऊपर सीमेंटिंग का काम कर देगी, हवा को नहीं आने देगी तो उससे जो है उस एरिया में आग बुझ जाएगी। तो ये तो एक सिंपल है मैटर है जो प्रैक्टिकल हम लोगों ने भी किया है और करवाया भी है। तो ये है, और केमिकल अगर मिल जाता है तो वेल एंड गुड, केमिकल का स्प्रे करें बहुत अच्छा है, अदरवाइज जो है गवर्नमेंट के जो फोर्सेस हैं स्पेशली हर एक को पता है गर्मी आने वाली, हीट बढ़ रही है, मौसम विभाग ने जो है आपका रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट घोषित किया हुआ है और आपको मालूम है यात्राएं चल रही है चारों तरफ, हजारों लाखों यात्री आ रहा है तो वो लोग भी कई बार गलती करते हैं, माचिस जला के बीड़ी पी के फेंक देते हैं या कोई खाना बनाया कोई चीज बनाई वो फेंक दिया, ऐसी गलतियां यात्री करते
0: क्योंकि ये समय ऐसा होता है कि बड़ी संख्या में लोग पहाड़ों का रुख करते हैं चाहे वो यात्रा के लिए या फिर टूरिस्ट सीजन भी हम इसको कह सकते हैं। जरा जी आपके पास आऊंगी, देखिए अगर हम 10 साल की बात करें तो 14,638 मामले पहाड़ों पर आग के सामने आए हैं। हालांकि हर साल जागरूकता अभियान भी चलाए जाते हैं, साथ ही साथ मुझे अभी भी याद है कि पिछले साल तो बाकायदा उत्तराखंड प्रशासन की तरफ से नाम तक घोषित किया गया था कि वो लोग जो कि आग की घटनाओं को पकड़ेंगे उनको उन पर काबू पाएंगे उन्हें अलग से इनाम दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ कुछ कुछ टुकड़े भी बांट दिए जाते हैं प्रशासन की तरफ से जब मॉनिटरिंग होती है, लेकिन अभी तक क्योंकि इस साल भी हम यही देखते हैं, आपने कहा कि जो लोग वहां पर जाते हैं बीड़ी सिगरेट जला के वहां फेंक देते हैं, क्या एक बड़ा कारण आप देखते हैं वो लोग जो कि आजकल या यात्राओं पर या टूरिज्म के तौर पर टूरिस्ट बन के वहां पर जा रहे हैं वो एक सबसे बड़ा कारण होता है या इसके पीछे का कोई और स्थानीय कारण भी है?
3: मैडम अब हम इसके समाधान की अगर बात पर विचार करें तो ये कहा जाता है कि जंगल है किसके, जंगल तो देखिए लोगों के हैं, तो लोगों को काफी वन विभाग कोशिश करता है समझाने की, काफी एक्सटेंशन हम लोग एक्टिविटीज करते रहे हैं पर यह देखने में आया है कि हमें उसमें सक्सेस जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अगर हमें पूरी तरह से गांव वालों का सहयोग मिले 100% तो ये आग लगे ही ना।
0: कुछ गांव तो ऐसे भी है जहां से लोगों ने पलायन कर दिया, वो गांव पूरे खाली हो गए, ये भी क्या एक बड़ी वजह है?
3: हाँ वो भी है, पर जो बात अब समझनी है वो ये है कि फायर को ना हम लोग एक क्राइसिस मैनेजमेंट की तरह देखते हैं, मतलब जो सरकारी तंत्र जो व्यवस्था है वो है कि जब आग लगनी शुरू होती है तब एक हड़कंप मचता है, तब ये होता है कि भाई देखो क्या है क्या नहीं है, पर जरूरत इस बात की है कि फॉरेस्ट फायर्स को रोकने की तैयारी पूरे साल भर होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अब भाई फरवरी आ गया और अब आग लगने वाली है तो अब शुरू करें तैयारी, तो उसके लिए हमें 12 महीने जो है हमें अपनी तैयारी करनी है। इससे मेरा तात्पर्य यह है कि फायर की जो मैनेजमेंट की तैयारी सही होगी बरसात में, बरसात में जो बारिश होती है उसके पानी को जितना हम रोकेंगे अपने जंगलों में और मॉइस्चर बढ़ाएंगे तो उससे क्या फायदा होगा, उससे पीने के पानी की समस्या काफी हद तक जो है वो अफेक्ट होगी, उसकी टेक केयर हो जाएगी और साथ ही साथ नमी के कारण जंगलों की आग भी जो है वो कम हो जाएगी। ओके तो ये कार्रवाई बरसात से लग जाना चाहिए डिपार्टमेंट्स को, और साथ में जो रिसोर्सेज हैं, देखिए गवर्नमेंट रिसोर्स देती है। यार एक बहुत बड़ा न्यूसेंस हो गया है, इसको कंट्रोल अगर करना है तो मैं रिसोर्स
0: जरा जी यहाँ से अपनी तो बात आप रखिए जी, आपकी आपकी बात हम ठीक से सुन नहीं पा रहे सर, कुछ शायद टेक्निकल इश्यू है। जयराज जी अपनी बात दोबारा रख दीजिए सर,
3: हमारी बरसात।
0: चलिए मैं लौटूंगी आपके पास। चंदन जी अब यहाँ पर अच्छी बात है कि 12 महीने इसको लेकर चर्चा होनी चाहिए, आप तो एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं और एक अच्छा एक सजेशन वो दे भी रहे थे कि खासतौर पर जब बारिश का सीजन होता है उस दौरान वाटर कंजर्वेशन अगर वहां पर हो जाए तो ये भी एक बड़ा कहीं ना कहीं फैक्टर होगा आग जंगलों को बचाने का। चंदन जी
4: देखिए बिल्कुल जिस तरीके से मैं पिछले बार भी मैंने बोला था कि हमारे जो जंगल हैं उनको उनमें जो है पानी की व्यवस्था हमको करनी होगी, चीड़ के जंगलों में खासकर जो पिछले कई वर्षों से हम लोग करते आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर पोखर खाल इस तरीके के जो है हम लोग जंगलों में बना के रखेंगे तो उसमें बारिश का
0: अभी कैसी स्थिति है चंदन जी ये भी बताते चले, अभी क्या हालात है क्योंकि चर्चा तो हम हर साल करते हैं इसको लेकर।
4: अभी अगर वर्तमान स्थिति में बताऊं तो पूरे उत्तराखंड में बारिश है और बारिश का जो है प्रकृति ने सुन ली है, शायद हमने विभागों ने नहीं सुनी किसी भी विभाग ने, लेकिन प्रकृति ने सुन ली है। इसी कारण से मेरा नेटवर्क भी स्लो चल रहा है और बारिश हुई है। मैं कल ही जो है अभी सुबह पहुंचा हूँ यहाँ, लेकिन जगह जगह जो है कल हुई है और लेकिन ये प्रकृति का कहर जो है हम डरा भी रहा है, जगह है और ओले गिर रहे हैं, अभी बड़े बड़े ओले गिर रहे हैं। कल आप देखेंगे तो पिथौरागढ़ में और आपके ग्वालदम में काफी बड़े जो है जो जितने बड़े खुमानी और पुलम के दाने होते हैं उतने बड़े जो है ओले गिरे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रकृति अपना कहर तो दिखाएगी दिखाएगी और इस वर्ष मुझे लगता है कि बरसात में भी काफी आपदाएं सामने आएंगी। लेकिन जो जंगल की आपके
0: जी चंदन जी मैं लौटती हूँ आपके पास एक बार नवीन भटनागर जी आपके पास आते हुए। सर अब यहाँ पर दोनों लोग सजेशन अपना दे रहे थे कि बरसात के पानी को इकट्ठा करना चाहिए, वाटर कंजर्वेशन हर जगह पर होना चाहिए, खासतौर पर चीड़ के जंगलों की अगर बात की जाए। किस तरह के एक्शन प्लान्स अभी हैं जो फिलहाल पहाड़ों के लिए बनाए गए हैं और कितनी जरूरत है आगे?
5: एक्चुअली हर जगह डैम्स नहीं बनाए जा सकते, लेकिन पानी स्टैग्नेशन के लिए जो है सेडल डैम बनाए जा सकते हैं जो छोटे होते हैं। ये जो आपके अभी हमारे को पैनलिस्ट ने बताया है तो ये बहुत सही बोला है कि अगर वहां पानी है, अभी हमारे क्या फायर के जो छोटे टेंडर जाते हैं तो उनको हर बार जो है पानी शॉर्ट पड़ जाता है, तो अगर इस टाइप के सेडल डैम होंगे तो वहां से हम पानी को यूज कर सकते हैं। तो आजकल क्योंकि छोटे पंप आ गए फायर की जो हाइड्रेंट से और फायर के जो बुझाने के पंप है वो छोटे पोर्टेबल है, उनको हम जो है छोटे व्हीकल्स वगैरह के ऊपर रख के कैरी कर सकते हैं पहाड़ों पे भी, तो इसलिए सेडल डैम बहुत जरूरी है। अगर गवर्नमेंट की कोई अथॉरिटीज मेरी बात सुन रही हैं तो इसके ऊपर जरूर ध्यान दें। और इसके अलावा जो है पहाड़ों पर जो खास तौर से जब गर्मियां आने वाली होती है तो गांव वालों पे ज्यादा निगाह रखा जाए, जैसे पराली के बारे में यहाँ पर अपना हरियाणा यूपी वगैरह में पहले से लोग अलर्ट हो जाते हैं, ऐसे ही पहाड़ों के ऊपर जो है गांव वालों के ऊपर निगाह रखा जाए। क्यों गांव वाले क्या करते हैं कि खेती को बढ़ाने के लिए वो आग लगा देते हैं फसल कटने के बाद, ताकि है ना उनका कौन इतना खर्चा करेगा आग लगा दो, वो अपने आप जो है ना फसल जल जाएगी वो कटे हुए जो झाड़ है और वो आराम से फिर अगली खेती कर लेंगे। तो ये बहुत बड़ी गलती है, इग्नोरेंस है जिसे राज्य सरकारें बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। और मैं बड़े जिम्मेदारी से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि एक किसानों के ऊपर कोई सख्त कार्रवाई की जाए जो इस टाइप के आग लगाते हैं अपने जंगलों में और झाड़ियों में, क्योंकि जब एक बार ये जंगल की आग फैल जाती है तो इसे काबू करना बहुत मुश्किल है। विदेशों के अंदर तो उनके पास संसाधन है, हमारे पास नहीं है, हम लोग तो अपने जो रिसोर्सेज है उन्हीं को यूज करते हैं। और एकदम आप बताइए जैसे मैंने बोला केमिकल है, तो केमिकल कहाँ से अमोनियम नाइट्रेट और सल्फेट और ये सोडियम बाई कार्बोनेट कहाँ से एकदम लाएंगे आप ये बताइए। तो ये जो है ना, या तो हमारे पास स्टॉक पहले से रहे, आपके स्टेट गवर्नमेंट के जो फायर डिपार्टमेंट उनके पास हेलीकॉप्टर कम से कम 10-15 हेलीकॉप्टर विद सारी फैसिलिटीज होने चाहिए, तब तो चलेगा। लेकिन मेयरली पानी फेंक देने से मैं नहीं समझता ये अकलमंदी की बात है,
0: ठीक है,
5: या ये इससे आग नहीं बुझेगी।
0: बिल्कुल, हम अपने देश की बात कर रहे हैं, आपने कहा कि विदेशों में होते हैं ऐसे उपकरण, लेकिन देखिए चीन हो, माफ कीजिएगा, स्पेन हो, या फिर पोलैंड हो, चिली हो, कैलिफोर्निया में तो पिछले साल हमने देखा था किस तरीके से तबाही हुई थी, पूरा का पूरा इलाका, लोगों को वहां से पलायन करना पड़ा था। जापान का आत्सुची हो, या फिर थाईलैंड, म्यांमार, तमाम जगह जो जंगल है, सब जगह जंगलों में आग लगी हुई है, उसी को लेकर लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। जयराज जी, मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है, सर आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, आप बता रहे थे कि सॉल्यूशन क्या क्या हो सकते हैं।
3: देखिए ऐसा है कि सबसे पहले बात समझनी है कि पानी रहे।
0: चले जरा जी, लौटूंगी, फिर से कुछ नेटवर्क इशू है। तमाम खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए, यहीं से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, सॉल्यूशन क्या हो सकता है उस पर बात करेंगे। फिलहाल एक ब्रेक, आप रहिए हमारे साथ।

0: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears.
1: It's my music and it's my station.
0: Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
3: जो आपको अच्छी लगे तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज़ टुडे

0: क्यों धधक रहा है हरा समंदर? जंगल की आग को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं, देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कई ऐसे कंट्रीज है जहां पर लगातार जंगल धधक रहे हैं। लेकिन अगर हम अपने ही देश की बात करें तो इस साल अब तक 3600 हेक्टेयर जंगल जलकर खाक हो चुका है, जिसमें हिमाचल प्रदेश का सोलन इलाका है, कसौली है, शिमला के जंगलों में भी आग लगी हुई है। उत्तराखंड के नैनीताल की अगर बात करें, इसके अलावा बागेश्वर, चमोली के जंगल जहां पर आग लगी है, पौड़ी, विकासनगर, नई टिहरी के जंगलों में भी कई जगह पर आग की खबरें सामने आ रही हैं। जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन इलाकों में भी आगजनी के कई मामले सामने आए हैं, जंगल की आग के कई मामले सामने आए। वहीं अगर हम विदेशों की बात करें तो वहां भी, चाहे वो अमेरिका का कैलिफोर्निया हो, चिली के तटीय इलाके हों, जापान के ओत्सुची के पहाड़ी इलाके हों, या फिर थाईलैंड, म्यांमार के घने जंगल, हर जगह पर जंगल धधक रहे हैं। और सबसे बड़ी वजह जो बताई जा रही है, वो पहली बात तो यह है कि मानवीय लापरवाही एक सबसे बड़ी वजह है। इसके अलावा टहनियों की आपस में रगड़ को भी एक बड़ी वजह बताया जाता है। जलती सिगरेट, बीड़ी, माचिस लोग ऐसे ही फेंक देते हैं, ये भी एक बड़ी वजह है। सूखे पत्ते, पराली जलाने का भी एक बड़ा कारण इसके पीछे देखा गया है। और जंगलों से गुजरती हुई हाई टेंशन बिजली की तारों को भी एक बड़ी वजह माना गया है। इसके अलावा शिकारी, असामाजिक तत्व जो वहां पर होते हैं, आकाशीय बिजली गिरना, ये भी एक बड़ी वजह है। और हल्की आग को अगर नजरअंदाज कर दिया जाता है तो ये भी एक बड़ी वजह है कि आग की घटनाएं बढ़ रही हैं। अब सवाल ये है कि जयराज जी, आपके पास आते हुए, तापमान अब आगे आगे जैसे जैसे बढ़ेगा, हालांकि अभी तो चलिए वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से तमाम पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी भी हो रही है, बारिश भी वहां पर हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है, लेकिन तापमान जैसे जैसे आगे बढ़ेगा दिक्कतें और ज्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि आगे आगे अगर देखा जाए तो बड़ी संख्या में लोग, चाहे वो टूरिस्ट हो या फिर भक्त लोग हों जो कि चारधाम यात्रा के लिए जा रहे हैं, वो लोग वहां पहुंचेंगे ही।
1: जी हाँ, बिल्कुल, ये बात आप सही कह रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ रहे हैं और ये जो बारिश के झोंके वगैरह आते हैं, शॉर्ट पीरियड के रहते हैं, उसके बाद फिर से टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो अभी तो जब तक हमारा मॉनसून नहीं आ जाता तब तक हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। अब मैं आपको
0: चले एक बार भटनागर जी आपके पास आते हुए, सर कुछ एक नियम, क्योंकि देखिए चारधाम यात्रा रोकी नहीं जा सकती, अगर हम कहें कि मानवीय लापरवाही है, तमाम दूसरे कारण जिसको लेकर सरकारें विचार विमर्श करती हैं, प्रशासन अपनी तरफ से तैयारी करेगा, करनी भी चाहिए। एक फैक्टर जो लोकल टूरिस्ट वहां पर हैं उनको भी माना गया है, अभी नवीन जी भी यही बात कर रहे थे, आपने भी यही बात की थी इसको लेकर, सर क्या कुछ नियमों में अब बदलाव की जरूरत है? क्या नियम कायदे, नियम कानून बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट करने की जरूरत है कि अगर टूरिस्ट लोग वहां पर जा रहे हैं तो कम से कम वो भी इस बात का ख्याल रखें कि जंगल कितने जरूरी हैं, वहां पर लापरवाही न बरती जाए। अगर वो बीड़ी, सिगरेट, तमाम ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, माचिस का इस्तेमाल भी वहां पर करते हैं, तो जिम्मेदारी के साथ उसको किया जाए।
2: ये तो देखिए, जो हमारी डिफेंस विलेज फोर्स बनाई गई है जो हर पहाड़ी क्षेत्र में है, और वॉलंटियर्स हैं, इसके अलावा होम गार्ड्स हैं, ये सारे जो एलाइड फोर्सेस हैं, तो ये उनको ट्रेनिंग दी जाती है और उनको बताया जाता है कि वहाँ जो ऐसे यात्री हैं उनको एजुकेट करें, उनके ऊपर ध्यान दें, कोई अगर ऐसा गलत काम करता है तो उसको जो पकड़ के और जो भी पिनल जो लॉस में बनाए गए हैं वो उनको पर एक्शन लें और उनको बताएं, उनको समझाएं और एक डर पैदा करें और लोगों को एजुकेट करें कि भाई आपकी लापरवाही से और ये तमाम ये खुराफात हो जाती है। अब थैलिए, प्लास्टिक की थैलिए और जो बचा हुआ सामान होता है, लोग वहीं ऐसे जंगल में फेंक देते हैं।

0: यात्रियों को कि भाई आपकी जान के लिए भी जरूरी है, तो इन चीजों का ध्यान रखें। दूसरा, SOPs गवर्नमेंट ने इशू की है, हमारे यहाँ से NDMA से भी इशू की गई है, स्टेट गवर्नमेंट के भी आदेश है, फायर डिपार्टमेंट के भी आदेश है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के भी आदेश है, और उन आदेशों का पालन नहीं होता,
1: बिल्कुल।
0: ये हमारी सबसे बड़ी कमी है।
1: चलिए,
0: आदेश तो बहुत है
1: हाँ
0: लेकिन
1: प्रोफेसर,
0: पालन नहीं करते। जी
1: बिल्कुल नवीन जी, अब मैं लौटती हूँ। अब वो कौन कौन से ऐसे SOPs है उसको लेकर भी चर्चा करेंगे। और बड़ी बात ये भी है कि गर्मियां शुरू होने से पहले क्या सही तरीके से जंगल की सफाई जरूरी है, ये भी एक नियम है, वो कितना उसका पालन होता है, सूखी पत्तियों को वहां से कितना हटा दिया जाता है, ये भी है, जो आसपास के लोकल लोग हैं उनको किस तरह की ट्रेनिंग की जरूरत है, इस पर भी आगे बात करेंगे। लेकिन प्रोफेसर CS दुबे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वेटरन जियोलॉजिस्ट हैं। प्रोफेसर साहब, आपसे बात करना चाहूंगी, सर थोड़ा सा समझाएं, क्योंकि हर साल हम देखते हैं कि इस तरह की आगजनी की घटनाएं सामने आती हैं। कोशिश, हालांकि प्रशासन कहता है तमाम नियम कायदे बने हुए हैं, फिर भी चाहे वो किसी भी लापरवाही की वजह से हो, लेकिन जंगल धधक रहे हैं। और अब तो खबर देखिए, इस साल ये भी आए हैं कि मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जंगलों में भी लगातार आग लगी है। कितना असर इसका पहाड़ों पर, जमीन पर पड़ता है?
2: देखिए, इस वक्त जो क्लाइमेट जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। इसे एलिनो क्लाइमेट बोलते हैं, और एलिनो के अंदर जो हीट वेव जो है वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होती है। और हीट जो होती है, दो तरह से हीट हमारे यहाँ मैं समझता हूँ कि बड़ी है। एक तो ये जो कैस्पियन सी से वेस्टर्लीज आती हैं, और वेस्टर्लीज के साथ जो विंड्स आती हैं उससे जो है थोड़ा सा इफेक्ट ज्यादा होता है। और इस साल जो वार हुई है और उससे जो कार्बन सूट आया है और चीजें जो हमारे हिमालय पे आई हैं उससे भी हीट जो है बढ़ती है। तो टोटल ओवरऑल जो है ह्यूमन इम्पैक्ट और जो लोकल जो एलनीनो का इफेक्ट है, जो कि क्लाइमेट में चेंज होते रहते हैं और क्लाइमेट में एलनीनो आता है इस टाइम पे, तो उसके दोनों के इफेक्ट मिला के सबको पता है कि हीट वेव बहुत ज्यादा है और फॉरेस्ट फायर होने के चांसेस ज्यादा है। तो ये कोई अगर इसकी पहले से जैसे डिजास्टर एंड फॉरेस्ट के जो एक्सपर्ट्स हैं वो बात कर रहे हैं, लेकिन हमें जब पता है कि ये एक पीरियड है, एलिनो का पीरियड है, क्लाइमेट चेंज है, वार से भी अफेक्टेड है, कई तरह के कार्बन सूट्स आ रहे हैं, ये सूट आज ही नहीं आया है, हर तरह का, जब भी गल्फ वार हुई थी तब भी इस तरह से हीट वेव बढ़ी थी, तो हम लोगों को इस चीज के लिए एहतियात बरतना चाहिए। और मुझे लगता है कि थोड़ा सा क्लाइमेट सेंसिटिव हम लोगों को होना चाहिए।
1: बिल्कुल, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन चलिए, क्लाइमेट सेंसिटिव होने की ज़रूरत है, और तमाम जो SOPs बनाए हैं उन पर भी गौर करने की ज़रूरत है, नियमों का पालन करने की ज़रूरत है, और अपनी जिम्मेदारी, अगर आप पहाड़ पर जाएं तो अपनी जिम्मेदारी भी समझे। चंदन नयाल जी, इन दोनों बातों पर अब आप क्या कहेंगे, क्योंकि एक पॉइंट और रह गया सर जिसको लेकर चर्चा करनी जरूरी है। हालांकि जो पहाड़ के लोग होते हैं वो तकरीबन इस बात का, उनको एजुकेटेड होते हैं, उनको पता है कि कहाँ किस तरीके से आग लग सकती है, उसको बुझाया जा सकता है, लेकिन फिर भी क्या ट्रेनिंग की और ज्यादा जरूरत है। और एक और चीज, गर्मियां शुरू होने से पहले वहां का जो सूखा, चाहे वो सूखे पत्तियां हो, टहनियां, उनको हटाने का काम क्या वाकई हो जाता है या नहीं होता है? चंदन जी,
3: देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं बताऊं कि पिरोल पिरोल जो गिरता है वो उसका एक टाइम पीरियड होता है, वो सिर्फ 15 से 20 दिन के अंदर जो है गिरता है और बहुत तेजी से गिरता है। और जब गर्मियों का टाइम होता है, जैसे ही गर्मी तेजी से बढ़ती है, तो तब पिरोल गिरता है। अगर हम उससे पहले कितना भी जंगल को साफ कर लें, कितना भी उस एरिया को साफ कर लें, लेकिन पिरोल जब गिरेगा तो वो भारी मात्रा में गिरता है। तो भारी मात्रा में जब गिरता है तो उस समय उसको साफ करने की जरूरत होती है। तो मैं मतलब ये मानता हूं कि जंगल को अगर बचाना है तो हमको उस टाइम पे, जो 15 से 20 दिन का जो टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पे बड़ा एक्टिव जो है रहना होगा। क्योंकि मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है इन सब चीजों को करता है, पिरोल को जो है इकट्ठा कर रहा है, लेकिन इसको भारी मात्रा में करने की आवश्यकता है। प्रत्येक गाँव में रोजगार देने की आवश्यकता है उस पिरोल से। जैसे ही उनका रोजगार लोगों का जुड़ेगा तो वो उस पिरोल को इकट्ठा करेंगे, और इकट्ठा करने के बाद उसको जो है, जो भी उसके कार्य ब्रिगेड बनाएंगे या फिर जो भी काम पिरोल से हो सकता है उसको कर सकते हैं।
1: चंदन जी,
3: तो
1: आपको याद होगा पिछले साल ये प्रशासन की तरफ से शुरुआत की गई थी इसकी, आपने आपने इसको कहा कि लोगों को रोजगार देना चाहिए। मुझे याद है कि पिछले साल स्थानीय प्रशासन ने इसकी शुरुआत भी की थी, लोगों से ही कहा था, स्थानीय लोगों से ही अपील की गई थी।
3: बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी कुछ जगह चल रहा है, अभी भी कुछ क्षेत्रों में, अल्मोड़ा के क्षेत्रों में, नैनीताल के कुछ क्षेत्रों में और उत्तरकाशी के कुछ क्षेत्रों में जो है पिरोल से जो है कोयले बनाए जा रहे हैं और ब्रिगेड से बनाए जा रहे हैं, लेकिन इसको बड़ी मात्रा में करने की आवश्यकता है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, जो जंगल जल रहे हैं उसके कारण

0: हमारी जो नेचुरल फॉरेस्ट थे, जो बांज बुरांस करसू रयाज फलियाट के जो हमारे नेचुरल जंगल थे, वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। क्योंकि पिछले 10 से 15 सालों में मैं देख रहा हूँ, जहां बांज के
1: जी
0: जंगल हुआ करते थे, जहां बुरांस के जंगल हुआ करते थे, जहां काफल के जंगल हुआ करते थे, वहां चीड़ बहुत तेजी से फैल रहा है।
1: बिल्कुल
0: वहां चीड़ ने अपना जो है पैर पसार लिए हैं। ये भी एक बड़ा चिंता का विषय है। और सबसे बड़ी बात, जो मानव वन्य जीव संघर्ष हो रहा है, ये सबसे बड़ा कारण जो है आग का कारण है। अभी देखिए, लगातार हर क्षेत्र में आग लगी हुई है, और उस कारण जो लेपर्ड
1: जी
0: है या
1: बिल्कुल
0: फिर जो जानवर है, वो आबादी की ओर आ रहे हैं।
1: बिल्कुल
0: आबादी की ओर आ
1: बिल्कुल
0: रहे हैं, तो फिर आने वाले समय में जो
1: असर
0: है
1: यानी इसका
0: वो
1: हर जगह पर पड़ रहा है। बिल्कुल, तो जिम्मेदारी, खुद को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी है और साथ ही साथ समझना है अपनी जिम्मेदारी के साथ कि कैसे हम पहाड़ों को बचाएं। सरकार और प्रशासन की तरफ से कोशिशें लगातार जारी, लेकिन आप अगर पहाड़ों पर जाते हैं तो पूरी जिम्मेदारी के साथ वहां पर आप जाइए, प्रकृति का ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमान का हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकेंगे ब्रेक के लिए, आप रहिए हमारे साथ।

0: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations, like today's hits. Classic rock. Coffee house. And more. Stream nonstop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
2: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: आईटी दिल्ली का सेंट्रल रिजर्व फैसिलिटी यानी सीआरएफ देश की सबसे बड़ी अत्याधुनिक रिसर्च सुविधाओं में से एक माना जाता है। यहां पर हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग, बायोमेडिकल रिसर्च, मटेरियल साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में रिसर्च की जा रही है। सीआरएफ ने देश में रिसर्च को एक नई दिशा दी है और यहां पर क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप समेत कई उपकरणों के माध्यम से अत्याधुनिक रिसर्च किए जा रहे हैं।
4: आईआईटी दिल्ली में मौजूद सेंट्रल रिसर्च फैसिलिटी यानी सीआरएफ देश की सबसे बड़ी अत्याधुनिक रिसर्च सुविधाओं में से एक मानी जाती है। यहाँ ऑप्टिकल कैरेक्टराइजेशन, हाई रिजोल्यूशन इमेजिंग, बायोमेडिकल रिसर्च, मटेरियल साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में रिसर्च की जा रही है। बुधवार को आईआईटी दिल्ली के कैंपस में सीआरएफ डे के मौके पर देश की अत्याधुनिक रिसर्च सुविधाओं और वैज्ञानिक उपलब्धियों का प्रदर्शन किया गया। इन्हीं में से एक है अत्याधुनिक क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसकी मदद से वैज्ञानिक प्रोटीन, वायरस और बायोमोलिक्यूल की 3D संरचना को बेहद सूक्ष्म स्तर पर देख सकते हैं। यह तकनीक मेडिकल रिसर्च और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बेहद अहम मानी जा रही है।
5: एक क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है और माइक्रोस्कोप का क्या काम होता है हम जानते हैं, किसी भी वायरस की बारीक से बारीक इमेजेस निकालने के लिए, किसी वायरस का या प्रोटीन का क्या स्ट्रक्चर है ये जानने के लिए। एक बार जब रिसर्चर स्ट्रक्चर जान जाते हैं उसके बाद ही उसकी जो दवा है वो तैयार होती है या फिर वैक्सीन जो है वो तैयार किया जाता है। जब कोविड के लिए वैक्सीन बनी तो उसके लिए भी इसी तरह का प्रोसेस अपनाया गया कि पहले उसका वायरस का स्ट्रक्चर जाना गया, उसके हिसाब से फिर उसकी जो वैक्सीन है वो तैयार की गई। ये माइक्रोस्कोप दुनिया के सबसे एडवांस्ड माइक्रोस्कोप में से एक माना जाता है।
4: इस मशीन के जरिए किसी भी वायरस को समझकर उसके लिए वैक्सीन या दवा तैयार की जा सकती है। यह अत्याधुनिक मशीन -190 डिग्री सेल्सियस तापमान पर काम करती है और जैविक नमूनों की हाई रेजोल्यूशन इमेज तैयार करती है। इस तकनीक की मदद से वायरस प्रोटीन और सेलुलर संरचनाओं को उनकी वास्तविक अवस्था में समझा जा सकता है। इस तकनीक को आधुनिक बायोमेडिकल रिसर्च की रीढ़ माना जा रहा है।
6: इन टर्म्स ऑफ ऑटोमेशन ये हाईली ऑटोमेटेड है, थ्रूपुट ज़्यादा है कि हम एक टाइम पे हम 12 सैम्पल्स लोड कर सकते हैं, इमेज कर सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर काफ़ी एडवांसमेंट है, आप ओवरनाइट डेटा कलेक्शन लगा सकते हैं जो कि मैन पावर को कम करता है।
4: FESEM यानी फील्ड एमिशन स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी एक अत्याधुनिक उपकरण है जिसका इस्तेमाल यहाँ के वैज्ञानिक कर रहे हैं। ये एक बेहद हाई मैग्निफिकेशन पर मटेरियल की सतह की विस्तृत इमेज उपलब्ध कराती है। इससे वैज्ञानिक नैनो स्तर की संरचनाओं और बेहद सूक्ष्म खामियों का अध्ययन कर सकते हैं जिन्हें सामान्य माइक्रोस्कोप से देख पाना संभव नहीं होता।
5: आप कभी अस्पताल जाते होंगे तो आपको जो पट्टी किसी घाव पर बांधी जाती होगी वो महज 5-10 रुपए की आती होगी, लेकिन आजकल ऐसे बैंडेज भी आते हैं जो सर्जरी के बाद बांधे जाते हैं, उनकी कीमत लगभग 3,000 रुपए तक होती है। अंतर क्या है? दरअसल ये इसी रिसर्च का हिस्सा था, ये अब एक ऐसे बैंडेजेस बन गए हैं जिनसे कोई भी बैक्टीरिया आपके घाव तक पहुंच ही नहीं सकता। इस तरह की रिसर्च इस माइक्रोस्कोप के जरिए होती है।
4: इस मशीन का इस्तेमाल मौजूदा वक्त में अच्छे क्वालिटी के कपड़े बनाने और सिविल कंस्ट्रक्शन में बेहतर क्वालिटी के लिए किया जा रहा है।
7: पहले हम लोग जो कन्वेंशनल हमारे माइक्रोस्कोप जो होते थे उनका जो मैग्निफिकेशन होता था, जो बड़ा करने की बेसिकली कहते हैं किसी चीज को जूम करके देखने की जो पावर थी, वो 1000x ज्यादा से ज्यादा होती थी। 100x, 200x, 1000x तक हम लोग जाते थे ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो होते थे। बट इसमें हमारा क्या है कि सोर्स कोड जो सोर्स है वो इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से हम किसी भी सरफेस को, किसी भी सैंपल के सरफेस को 300,000 या 400,000 गुना तक देख सकते हैं। जो हम लोग कहते हैं कि नैनो पे रियल में काम होता है, तो ये मशीन जब से नैनो में काम होना शुरू हुआ तो नैनो के लिए ये बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी टूल है।
4: इन उपकरणों की मदद से वैज्ञानिक परमाणु स्तर तक रिसर्च और विश्लेषण कर सकते हैं। IIT दिल्ली का यह प्रयास न सिर्फ देश में वैज्ञानिक शोध को नई दिशा देगा बल्कि स्टार्टअप्स, MSMEs और युवा वैज्ञानिकों के लिए भी नई संभावनाओं के दरवाजे खोलेगा। मनीष चौरसिया, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे।
3: रामनगरी अयोध्या में आज शक्ति उत्सव मनाया जा रहा है और आज शाम राम मंदिर परिसर के दुर्गा मंदिर में ध्वजारोहण समारोह होगा। ये कार्यक्रम नारी शक्ति को समर्पित होगा। इसमें 3500 से ज्यादा महिला संत समारोह में हिस्सा लेंगी। सुरक्षा की कमान CRPF की महिला बटालियन संभालेंगी। इस अवसर पर अयोध्या में कई धार्मिक अनुष्ठान भी होने हैं।
8: अयोध्या के राम मंदिर में एक बार फिर उत्सव की तैयारी है। आज यहां मां भगवती मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण का भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें आध्यात्म, श्रद्धा और मातृशक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिलेगा। तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। मंदिर परिसर को विशेष रूप से सजाया गया है। देश भर से मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी की महिलाएं अयोध्या पहुंच चुकी हैं। शाम 6 बजे मां भगवती मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण समारोह प्रारंभ होगा, जो लगभग रात 7:30 बजे तक चलेगा। आयोजन में करीब 3,500 महिलाओं के शामिल होने की संभावना है। कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं को विशेष प्रसाद भी वितरित किया जाएगा।
9: कम से कम 3,500 माताएं आएंगी, ऐसी हमारी उम्मीद है। महिलाएं बाहर की माताएं आ रही हैं। हमने 500 कमरा बुक किया है, निवास व्यवस्था हो गई है और विशेष यानी CRPF के बहने ये ध्वजारोहण की बाकी रस्सी खींचने का काम वो करेंगे। उन्होंने तैयारी किया है, महिलाओं के द्वारा ये कार्यक्रम संपन्न।
8: इस ऐतिहासिक आयोजन की खास बात ये है कि ध्वजारोहण की पूरी प्रक्रिया महिलाओं द्वारा संपन्न की जाएगी। साध्वी रितंभरा मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करेंगी। साध्वी रितंभरा के साथ राम मंदिर की सुरक्षा में तैनात CRPF की महिला जवान ध्वज आरोहण की रस्सी खींचकर कार्यक्रम को पूरा करेंगे। राम मंदिर की सुरक्षा में तैनात PAC की महिला कमांडो और मंदिर परिसर में कार्यरत महिलाएं भी इस भव्य आयोजन का हिस्सा बनेंगी। राम मंदिर परिसर में होने जा रहा ये आयोजन न केवल आध्यात्मिक आस्था का प्रतीक बनेगा बल्कि मातृशक्ति के सम्मान और सनातन संस्कृति की भव्यता का भी संदेश देगा। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: चारधाम यात्रा को लेकर तीर्थयात्रियों में जबरदस्त उत्साह है। श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंच रहे हैं, हर रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। अब यह आंकड़ा 24 लाख के पार जा चुका है। हालांकि इस बीच जंगलों में आग और मौसम में बदलाव की चुनौतियां भी सामने आई हैं। ऐसे में प्रशासन ने चारधाम यात्रियों को यात्रा मार्ग पर सावधानी बरतने की सलाह दी है।
8: उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। हर रोज हजारों की तादाद में श्रद्धालु बाबा केदार और भगवान बद्री विशाल के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं, तो वहीं गंगोत्री और यमुनोत्री में मां गंगा और मां यमुना के दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी हैं। ऐसे में चारों धामों के दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों का आंकड़ा 24 लाख पार कर गया है, जो चारधाम तीर्थयात्रियों का नया रिकॉर्ड है। बद्रीनाथ धाम हो या केदारनाथ, यमुनोत्री हो या गंगोत्री, हर तरफ श्रद्धालुओं का जमावड़ा है। नाम जप है, भजन कीर्तन है और चेहरे पर भगवान के दर्शन की अभिलाषा। इनमें सबसे ज्यादा तीर्थयात्री केदारनाथ धाम पहुंचे हैं। वहीं बद्री विशाल के धाम में भी आस्था के अद्भुत छटा देखने को मिल रही है। चार धाम यात्रा प्रबंधन एवं नियंत्रण संगठन ऋषिकेश की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक अब तक केदारनाथ धाम में सबसे ज्यादा 9,27,363 श्रद्धालु पहुंचे हैं, बद्रीनाथ धाम में 6,68,159, गंगोत्री धाम में 4,20,231 और यमुनोत्री धाम में 4,11,633 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। हेमकुंड साहिब में भी यात्रा शुरू होने के बाद अब तक 19,558 श्रद्धालु पहुंचे हैं।
10: चारों धामों के साथ पांचवा जो जिसे हम धाम कहते हैं हेमकुंड साहिब की यात्रा भी चल रही है। ऐसे में अब जो जून का महीना होगा फूलों की घाटी भी खुल जाएगी, जून में स्कूलों की छुट्टियां हो जाएंगी, ऐसे में यात्रा बढ़ेगी, तो उसके लिए कहीं ना कहीं इस समय प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। लेकिन अभी तक बद्रीनाथ धाम यात्रियों से खचाखच दिखाई दे रहा है। जो उत्साह है वो सड़क से लेकर मंदिर तक हर तरफ यात्रियों का जमावड़ा इस समय देखने को मिल रहा है। इस बार मई के महीने में ही कई पुराने रिकॉर्ड अलग दिखाई दे रहे हैं, इतनी संख्या आज तक मई के महीने में देखने को नहीं मिली है। हालांकि जून के महीने में यात्री आंकड़ा हमेशा बढ़ता था, लेकिन मई के महीने में इतना ज्यादा यात्री का आंकड़ा देखने को नहीं मिला है।
8: चारों धामों में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ ये बता रही है कि चार धाम में उनकी आस्था अटूट है। हालांकि मौसम में आए बदलाव ने अब तीर्थयात्रियों की चुनौतियां भी बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए चमोली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं जंगलों में लगी आग भी तीर्थयात्रियों के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती हैं। ऐसे में यात्रा सीजन के पीक दौर में लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन और पुलिस व्यवस्थाओं को और मजबूत किया जा रहा है। वहीं प्रशासन ने चारधाम यात्रियों को यात्रा मार्ग पर सावधानी बरतने की सलाह भी दी है। रुद्रप्रयाग से प्रवीण सिंहवाल और चमोली से कमल नैन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
0: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
11: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: तमाम ऐसे वीडियोस और तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं।
12: माँ और बच्चे का ये प्यारा सा अंदाज किसी का भी दिल जीत लेगा। माँ जैसे ही मस्ती में झूमती है, बच्चा भी उनकी नकल करने लगता है, फिर अपनी मासूम अदाओं पर खिलखिलाकर हंस पड़ता है। ये नजारा सिर्फ हंसी का नहीं बल्कि माँ बेटे के खूबसूरत रिश्ते और बेफिक्र बचपन की प्यारी झलक है। ऐसी मासूम खुशियाँ ही जिंदगी को खूबसूरत बनाती हैं और चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है। दुनिया का सबसे अमीर इंसान वो नहीं जिसके पास दौलत है, बल्कि वो है जिसके घर लौटने पर परिवार खुशियों से झूम उठे। ये प्यारी बच्चियां अपनी माँ के साथ डांस करते हुए पिता का स्वागत कर रही हैं। बेटियों की मुस्कान और अपनापन देख पिता भी खुद को झूमने से रोक नहीं पाए। ये नजारा सिर्फ स्वागत का नहीं बल्कि परिवार के प्यार, अपनेपन और रिश्तों की असली दौलत की खूबसूरती का है। इतना नन्हा किसान शायद ही किसी ने देखा होगा जो अपनी मासूम उम्र में भी जिम्मेदारी निभा रहा है। ये छोटा सा बच्चा होटल के कर्मचारियों के साथ बागवानी में मदद कर रहा है। उनकी क्यूट हरकतें देखकर सभी के चेहरों पर मुस्कान आ जाती है। बच्चे की मासूम कोशिशों से माहौल और भी खुशनुमा हो गया। उसकी ये लगन और सादगी ये सिखाती है कि सीखने और मदद करने की कोई उम्र नहीं होती।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
13: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
2: स्वागत है आपका चाय पर चर्चा में, आपके साथ मैं हूं नवरूप संधावा। बात मौसम की होगी सबसे पहले, क्योंकि जिस तरीके से मौसम ने करवट ली ना, यकीन माने कि उत्तर भारत वालों को वाकई राहत की सांस मिली। कल जिन शहरों में पारा 45 डिग्री तक पहुंचा हुआ था, वहां अब 35 से 40 डिग्री के बीच है। तो अब आगे कैसा रहेगा मौसम, बात इसी की करेंगे।
3: नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। देखिए, हम बात मानसून की भी करने वाले हैं, जिसके पहले 25 मई तक केरल पहुंचने की भविष्यवाणी की गई थी, लेकिन अब तक मानसून केरल नहीं पहुंचा है। तो क्यों मानसून करा रहा है इतना इंतजार, और अब उसके कब तक केरल से टकराने का अनुमान है, ये आपको विस्तार से बताएंगे।
2: नमस्कार, मैं शगुफ्ता, स्वागत है आप सभी का चाय पर चर्चा में। आगे बात उस स्टार्टअप की करेंगे जिसका जिक्र सबकी जुबान पर है। शॉपिंग के दौरान सबकी टेंशन बैग कैरी करने की रहती है, लेकिन अब इसका भी सॉल्यूशन आपको मिल गया है। तो क्या है बिंदास शॉपिंग का ये टेंशन फ्री सॉल्यूशन, इसकी डिटेल आपको देंगे।
4: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव। तो देखिए, बात रणबीर कपूर की भी करेंगे, जो रामायण में राम के किरदार में नजर आने वाले हैं। तो कैसे इस फिल्म में भगवान राम की भूमिका के लिए चुने गए रणबीर कपूर, और क्यों पहले इस फिल्म के लिए रणबीर ने कर दिया था इनकार, ये भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले जल्दी से देख लेते हैं आज के हेडलाइंस।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
3: लखनऊ के साई भक्त ने बाबा को भेंट किया स्वर्ण मुकुट, बेशकीमती पत्थरों से बने कमल पर उकेरा गया ओम, 782 ग्राम के इस मुकुट पर दो मयूर की नक्काशी। देश में इस साल सामान्य से कम रहेगा मॉनसून, मौसम विभाग ने 90% बारिश का लगाया अनुमान, मध्य और दक्षिण भारत में कम बरसेंगे बादल। कोलकाता में तेज हवाओं के साथ जमकर हुई बारिश, उमस और गर्मी से लोगों को मिली राहत, सड़कों पर गिरे पेड़ हटाने में जुटा प्रशासन। गुजरात के भुज पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह ने बॉर्डर का किया मुआयना, G7 सीमा चौकी पर किया पौधारोपण, BSF जवानों से की मुलाकात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर लिखी पुस्तक का किया विमोचन, किताब में सैनिकों के साहस और शौर्य का जिक्र, वतन के रखवालों की वीरगाथा जानने का मौका।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने।
3: चलिए, चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं, और शुरुआत बेहद अच्छी खबर के साथ क्योंकि आपको बता दें, सभी के चेहरों पर जो आप ये मुस्कान देख रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ मौसम की वजह से है, क्योंकि तप रही थी धरती, आधा से ज्यादा हिंदुस्तान जो था वो बढ़ते पारे से परेशान था। राहत कैसे मिलेगी ये कहना मुश्किल था, क्योंकि अभी भी आपको बता दें कि मानसून केरल नहीं पहुंचा है। हम खुश हैं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने जिस तरह से हिट किया है, आपको बता दें मौसम कूल कूल हो गया है। आप बताइए,
4: मौसम कूल कूल हो गया, लेकिन आपको पता है गुड न्यूज के साथ एक बैड न्यूज ये है। हाँ, बैड न्यूज के बारे में आप सोच रहे क्या है कि बीमारियां लेकर आता है ये मौसम, क्योंकि कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है वेदर। हमने देखा है कि पश्चिमी विक्षोभ जो है वो एक्टिव हो गया है, लेकिन हाँ मौसम कूल कूल हो गया है, तो लोगों को गर्मी से राहत जरूर मिल गई है, और हमें भी मिल गई है, क्योंकि सुबह जब ऑफिस के लिए निकलते थे तो गर्मी बहुत ज्यादा लगती
6: है। आज कम से कम एटलीस्ट हवा में थोड़ी सी ठंडक है, और साउथ में ठीक है अभी टकराया नहीं है, लेकिन चलिए प्री मॉनसून शावर्स तो वहां पर भी चल ही रहे हैं।
3: एग्जैक्टली,
7: मेरा मन कर रहा था सरगम चाय पी ले, अच्छे अच्छे विचार हम जब बारिश की बात करते हैं। मैंने कल जैसे ही मेरी शिफ्ट खत्म हुई है, 6:30 पे मैंने ऑफिस के बाहर कदम रखा, आंधी तूफान ने वेलकम किया मेरे ऑफिस के बाहर, इतनी तेज बारिश, इतनी तेज आंधी आई है, उसी बारिश में मैं घर पहुंची हूँ। इट वाज सो नाइस। आप इस गर्मी को सह नहीं पा रहे थे, 45 डिग्रीज इज टू मच फॉर एनी ह्यूमन, है ना, बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। बट
3: शगुफ्ता, आप जब घर से बाहर मतलब ऑफिस से बाहर गई तो आपने बताया कि बारिश का आपने मजा लिया, लेकिन आपको बता दें उसी बीच मैं बुलेटिन कर रही थी और बुलेटिन के बाद मैं जब निकली बारिश रुक गई थी, लेकिन मैंने ऑफिस में वॉक लिया क्योंकि वो फील मुझे पूरा वो देखने को मिल रहा था।
7: मजा आया,
3: ठंडी हवा तब भी चल रही थी और वो जो बारिश की बूंदे मैं पत्तों पर देख रही थी, हमारा जो कितना खूबसूरत सा हमारा प्रमाइसेस है वहां पर देखने को मिल रहा था, वो अमेजिंग था। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कुछ भी नेगेटिव नहीं है, सब पॉजिटिव है। और वो अच्छा ये है कि मौसम बेहद प्यारा हो गया है, देश के ज्यादातर हिस्सों में पारा जो बढ़ चुका था आंधी और बारिश के साथ मैदानी इलाकों में ये राहत लेकर आया है, बारिश से चढ़ता पारा डाउन हो गया है। हालांकि ये मानसूनी बौछारें नहीं, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जैसा कि हमने आपको बताया। तो बात करें दिल्ली और आसपास के इलाकों की, तो मई का आखिरी वीकेंड आते आते कुदरत ने इस बड़े क्षेत्र में रहने वालों को बारिश की सौगात दी, तो गर्मी से परेशान लोगों को बहुत बड़ी राहत मिली। फिलहाल तो अब मॉनसून के आने का इंतजार किया जा रहा है।
6: वैसे इससे बड़ी गुड न्यूज हो नहीं सकती क्योंकि अभी फिलहाल नौतपा चल रहा है और इसमें मौसम और ये हल्की हल्की फुहारों वाली जो राहत हम लोग को मिली है, तो कहां एक और नौतपे की वजह से धरती तप रही है, वहीं मौसम ने ऐसी पलटी मारी कि दिल्ली से लेकर पटना तक एकदम खुशगवार मौसम हो गया है।
7: बिल्कुल, तो देखिए खुशगवार मौसम हो गया है, तो आखिर कैसे मौसम में इस तरह बदलाव आया है और कब तक गर्मी से राहत यूं ही जारी रहेगी, ये जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट।

0: तेज धूप तो है, लेकिन सूरज की किरणों में वो तपिश नहीं है जो पिछले कई दिनों तक महसूस की जा रही थी। मई का आखिरी वीकेंड आते आते कुदरत ने राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में रहने वालों को सौगात दी है। दिल्ली NCR में गुरुवार को मौसम का मिजाज बदला तो लोगों को तीखी गर्मी से काफी राहत मिल गई और माहौल कूल कूल हो गया।
1: पिछले कई दिनों से चिलचिलाती गर्मी और धूप से परेशान दिल्ली वालों के लिए गुरुवार की शाम राहत लेकर के आई, जब तेज हवाएं चली, धूल भरी आंधी चली और उसके बाद हल्की हल्की बारिश हुई, जिसके चलते मौसम और तापमान में अच्छी खासी गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिन तक इसी तरीके का मौसम जो है वो फिलहाल दिल्ली NCR में बने रहने की उम्मीद है।
0: दिल्ली NCR में गुरुवार 28 मई को तापमान में 3 से 5 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई। कल राजधानी और आसपास के इलाकों में अधिकतम तापमान 41 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया था। इससे पहले बुधवार 27 मई को अधिकतम तापमान 45 डिग्री के पार कर गया, जबकि मंगलवार 26 मई को भी अधिकतम पारा 43.5 डिग्री था। वहीं 25 मई को जब नौतपा शुरू हुआ तो दिल्ली में अधिकतम तापमान 43 डिग्री के पार दर्ज किया गया, जबकि 24 मई को 14 साल में पहली बार मई के महीने में सबसे गर्म रात का भी रिकॉर्ड बना था। लेकिन 5 दिन के अंतराल में ही दिल्ली NCR में मौसम ने ऐसी करवट ली है कि लोगों को गर्मी में सुहावनी आबोहवा का एहसास होने लगा है। जानकारों की माने तो वेस्टर्न डिस्टरबेंस की वजह से दिल्ली और आसपास के राज्यों में मौसम में ऐसा बदलाव देखने को मिल रहा है और लोग सुकून की सांस लेने लगे हैं।
2: पश्चिमी विक्षोभ इतना सक्रिय होकर के आ रहा है कि अपने साथ हवा की रफ्तार बेहद तेज ला रहा है और इसीलिए दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत के ये जो गंगेटिक बेल्ट है, पूरा मैदानी इलाका है, यहाँ आपको तड़के सुबह अब वैसा तापमान महसूस नहीं हो रहा होगा। इसी के साथ साथ जो वार्म नाइट्स कंडीशन जिसे कहते हैं, जहाँ रातें भी गर्म थी, वो भी बेहतर हुई है। यानी रातों को तापमान भी नीचे आया है, दिन का तापमान भी जो अधिकतम था उसमें भी कमी आई है, लेकिन ये राहत सिर्फ रविवार तक होगी।
0: दिल्ली और आसपास 31 मई के बाद एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है और जून में फिर से तेज गर्मी की वापसी हो सकती है। वहीं वेस्टर्न डिस्टरबेंस 30 और 31 मई से गुजरात की तरफ बढ़ सकता है, जबकि राजस्थान में 31 मई तक बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है, जिसके कारण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। बहरहाल उत्तर और पूर्वी भारत में मॉनसून आने से पहले ही जगह जगह बारिश राहत की फुहारे लेकर आई है। रामनगरी अयोध्या में तेज हवाओं के बीच झमाझम बारिश हुई तो गर्मी के कारण सूखी धरती को तरावट जैसे मिल गई और जैसे तपिश से झुलस रहे पेड़ पौधों में भी नई जान आ गई। वही मौसम का मिजाज बिहार में भी बदला बदला नजर आ रहा है। राजधानी पटना समेत बिहार के तमाम इलाकों में तेज आंधी के साथ बारिश ने मौसम खुशगवार कर दिया है। उधर झारखंड की राजधानी रांची समेत राज्य के कई जिलों में लगातार बारिश और तेज हवाओं का दौर है, जिससे भीषण गर्मी से परेशान लोगों को बड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग ने झारखंड में ऑरेंज अलर्ट दिया है। लोगों से खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की भी अपील की गई है।
3: आने वाले अगले 5 दिन में झारखंड में कहीं पे भी उस लहर हीटवेव चलने की संभावना नहीं है और ये मौसमी गतिविधि है, इसमें थोड़ा सा तेजी आएगी और ये अभी अगले 4-5 दिनों तक में गर्जन वज्रपात का जो दौर है, तेज हवाओं आंधी का दौर है, वो आपको देखने को मिलेगा। उस दौरान जब गर्जन वज्रपात और तेज हवा आंधी चल रही है, उस दौरान लोग सतर्क रहें, ऊंचाई वाले स्थान पर जाने से बचें।
0: पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में भी सुबह से आसमान घने काले बादलों से ढका रहा और जगह जगह लगातार झमाझम बारिश होती रही। बीते कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस से भी यहां लोग परेशान थे। ऐसे में यहां शुरू हुई बारिश ने लोगों को बड़ी राहत दी है। इस बीच मौसम विभाग ने 15 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिसके कारण तापमान में गिरावट आएगी। वहीं आंधी और तेज रफ्तार हवाओं के कारण नुकसान न हो, इसलिए लोगों को सतर्क भी रहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: आपको बता दें कि गर्मी से कल तक उत्तर प्रदेश का हाल भी बेहाल था, लेकिन कल रात आए आंधी तूफान के बाद यूपी में पारा डाउन हो गया है। तो कैसे बदले मौसम में बदले मिजाज का अंदाज ले रहे हैं लखनऊ वाले, चलिए लिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको।
5: में फिर जाए आगरा से लेकर गोरखपुर तक और झांसी से लेकर लखनऊ तक टेम्परेचर में काफी कमी आई है और जिससे थोड़ा राहत मिली है। ऐसे में पहले की तुलना में गर्मियों में जो लोग पेय पदार्थ पर निर्भर करते थे, आज उनमें कमी भी आई है। इनसे पूछते हैं जे ये बताइए, आप जब यहाँ पर पहले कस्टमर कितने आते थे और कल जब से बारिश आंधी हुई तब से कितना हुआ?
6: 2-3 आ जाते हैं तब से बारिश हो भाई है, और पहले मतलब हमारा 2-3 हजार के बिका जाता था।
5: गर्मी ज्यादा पड़ रही है?
6: हाँ
5: अभी सर गर्मी थोड़ा कम पड़ी है।
6: हाँ
5: तो अभी ठंडक हल्की सी हो गई है तो जूस कम पीने लोग आते हैं। देखिए हवा चल रही है उससे भी राहत है, बारिश हुई है उससे भी राहत है, तो लोग भी थोड़ा खुश नजर आ रहे हैं इस खुशनुमा जो माहौल बना है उसको लेकर। ऐसे में ये तो साफ है कि लोगों के लिए थोड़ी उत्तर प्रदेश में ये राहत मिली है। भले ही अभी गर्मी है, मानसून नहीं आया है, लेकिन इसके बावजूद भी लोग इस थोड़ी सी गर्मी से राहत दिलाई है इस अचानक हुई बारिश और तेज हवाओं ने। लखनऊ से कैमरा पर्सन संजय सिंह के साथ आशीष श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे।
0: उधर देखिए मानसून केरल पहुंचने से पहले ही ठिठक गया है। पहले उसके 25 मई तक केरल के तट तक पहुंचने का अनुमान था, लेकिन लग रहा है कि मानसून अभी दूर है। क्या वजह है इसकी, चलिए जरा नजर डाल लेते हैं। इस बार मौसम विभाग ने अनुमान लगाया था कि दक्षिण पश्चिम मानसून तय समय से पहले भारत पहुंच सकता है। अरब सागर बंगाल की खाड़ी में नमी अच्छी थी और हवाओं का पैटर्न भी मानसून के पक्ष में माना जा रहा था, लेकिन अचानक से मौसम बदला और मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई। मानसून के सक्रिय बादल फिलहाल केरल तट से बेहद करीब पहुंच चुके हैं, लेकिन जरूरी परिस्थितियां और स्थितियां पूरी तरह मजबूत नहीं हो पा रही। यही वजह है कि मॉनसून आधिकारिक तौर पर केरल में प्रवेश नहीं कर पाया। आमतौर पर जब लगातार बारिश, मजबूत हवाएं और पर्याप्त नमी एक साथ बनती है तब ऐसा होता है।
7: बिल्कुल, मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि अगले 72 घंटों तक मॉनसून की प्रगति धीमी रह सकती है। अरब सागर में हवाओं की गति कमजोर पड़ गई है और बादलों का संगठित सिस्टम भी तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा। इसका असर ये होगा कि दक्षिण भारत के कई हिस्सों में बारिश रुक रुक कर हो सकती है। भारतीय मौसम विभाग ने साफ किया है कि मौजूदा हालात इतनी तेजी से बदल रहे हैं कि अभी मॉनसून की एंट्री की सटीक तारीख बताना मुश्किल है। आमतौर पर IMD मौसमीय डेटा समुद्री तापमान, हवा की दिशा और बारिश के पैटर्न को देखकर घोषणा करता है। हालांकि देरी हो रही है, लेकिन मौसम विभाग को उम्मीद है कि परिस्थितियां धीरे धीरे बेहतर होंगी और मॉनसून 3-4 जून के बीच केरलम के तट पर प्रवेश कर जाएगा। यदि समुद्री हवाओं में दोबारा तेजी आती है तो और नमी बढ़ती है तो मॉनसून आगे बढ़ने लगेगा।
8: बिल्कुल, देखिए मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक पश्चिमी प्रशांत महासागर में एक शक्तिशाली तूफानी सिस्टम विकसित हो रहा है। ऐसे सिस्टम जो होते हैं वो नमी खींच लेते हैं, क्योंकि मॉनसून को आगे बढ़ाने वाली हवाएं कमजोर होने लगती हैं। और देखिए यही वजह है कि अरब सागर और हिंद महासागर से आने वाली मॉनसूनी धाराएं फिलहाल धीमी हो गई हैं। मॉनसून के लिए सबसे जरूरी तत्व समुद्र से आने वाली नमी ही होती है, लेकिन पश्चिमी प्रशांत में बन रहा तूफान बड़ी मात्रा में समुद्री नमी को अपनी तरफ खींच रहा है। इससे मॉनसून को मिलने वाली ऊर्जा और नमी कम हो रही है। नतीजा इसका ये हो रहा है कि बादल मजबूत नहीं बन पा रहे हैं और बारिश का जो सिस्टम है वो पूरी तरीके से सक्रिय यानी एक्टिव नहीं हो पा रहा है। लक्षद्वीप और आसपास के समुद्री इलाकों में बन रही चक्रवाती परिस्थितियां भी मॉनसून की चाल को प्रभावित कर रही हैं। देखिए सामान्य तौर पर मॉनसून की हवाएं एक दिशा में स्थिर रूप से आगे बढ़ती हैं, लेकिन चक्रवात बनने पर हवाओं की दिशा और गति बदल जाती है। इससे मॉनसून की प्राकृतिक रफ्तार बाधित होती है।
9: बिल्कुल, और आपको हम बता दें कि उत्तराखंड का नाम सुनते ही, हालांकि मॉनसून की बात अभी आपने सुन ली, लेकिन उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो इसका नाम सुनते ही दिव्य ऊर्जा का संचार होने लगता है, ठंडी ठंडी वादियों में मन घूमने लगता है। वैसे भी इन दिनों गर्मी ज्यादा है और समर वेकेशन भी है, तो घूमने के लिए उत्तराखंड परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। अगर आप उत्तराखंड जा रहे हैं तो चमोली जिले में स्थित फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा जरूर जाएं।
8: बिल्कुल, देखिए बात यहाँ पर उत्तराखंड हो रही है, यहाँ जरूर जाएं क्योंकि यहाँ कुदरत के ताजगी भरा एहसास तो आपको मिलेगा ही, साथ ही आध्यात्मिक ऊर्जा भी आपको महसूस होगी। हेमकुंड साहिब में मई के महीने में अच्छी खासी बर्फ गिर रही है। इस बार सरोवर में बर्फ की मोटी परत सी जमी हुई है, ऐसे में मौसम में दर्शन का यहाँ अलग ही सुकून है।

0: ये नज़ारा मात्र मौसम की एक घटना नहीं है बल्कि प्रकृति और आध्यात्मिकता का अद्भुत मेल है। इन दिनों उत्तराखंड के हिमालय की गोद में बसा पवित्र हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा इसी अनोखे नज़ारे का गवाह बना हुआ है। मई महीने में जब पहाड़ आमतौर पर हरे भरे हो जाते हैं, तब वहां अचानक इतनी बर्फबारी हुई कि पूरा परिसर सफेद चादर ओढ़कर खड़ा हो गया। गुरुद्वारा घुमावदार रास्ते और ऊपर तक फैला आसमान सब कुछ शुद्ध सफेद हो गया। हल्की धुंध और कोहरे की नरम चादर ने इस नजारे को और भी रहस्यमय और दिव्य बना दिया। यहाँ तक कि सरोवर का पानी बर्फ की पतली परत से ढका है और ठंडी हवाएं गुनगुना रही हैं। इस मौसम में भी लोगों की आस्था प्रबल है। हजारों श्रद्धालु इस बर्फीले सफर को पार करते हुए दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। कुछ ने तो इस बर्फीले सरोवर में स्नान भी किया। इस बार मई में हुई बर्फबारी ने इस आध्यात्मिक यात्रा को और ज्यादा रोमांचक बना दिया है। साथ ही ये ठंडा और खूबसूरत रूप याद दिला रहा है कि सच्ची आस्था के सामने कोई मौसम रुकावट नहीं बन सकता। ये अनोखी बर्फबारी उत्तराखंड पर्यटन के लिए एक बड़ा आकर्षण भी बन गई है। जो पर्यटक सामान्य रूप से गर्मियों में हिल स्टेशन तक ही सीमित रहते हैं, वो अब हेमकुंड साहिब के इस बर्फीले रूप को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। ये मौसम राज्य के एडवेंचर और स्पिरिचुअल टूरिज्म को नई ऊर्जा दे रहा है। यहाँ प्रकृति का रोमांच, साहसिक यात्रा, आस्था की शक्ति एक साथ मिलती है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड इज टुडे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से विदेश यात्रा की जगह स्वदेश यात्रा करने की अपील की है। तो आप गुड न्यूज टुडे भी आपसे अपने आसपास की खूबसूरत जगहों की तस्वीरों को शेयर करने के लिए कह रहा है ताकि हम आपके उन वीडियोस को गुड न्यूज टुडे पर दिखाएं।
2: तो चलिए आज आपको पिथौरागढ़ की खूबसूरत वादियों का दीदार कराते हैं। यहाँ तमाम आकर्षक और खूबसूरत पर्यटक स्थल आपका इंतजार कर रहे हैं। ये वीडियो हमारे एक दर्शक ने हमें भेजा है, देखिए।
3: स्वागत है आपका गुड न्यूज चैनल में। मैं शीला कापड़ी गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज मुनाकोट पिथौरागढ़ में साइंस अध्यापिका आपको ले चलती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत शहर पिथौरागढ़ की ओर। यूँ तो पिथौरागढ़ सांस्कृतिक विरासत से भरपूर फलता फूलता शहर हर आम आदमी की बेसिक जरूरत को पूरा करता है। वैसे तो यहाँ वर्ष भर मौसम बहुत ही सुहाना होता है, पर कुछ खास महीने मार्च से नवंबर तक घूमने के लिए बहुत ही खूबसूरत होते हैं। यहाँ शहर के आसपास कई खूबसूरत पर्यटक स्थल हैं, जैसे कामाख्या मंदिर, ध्वज मंदिर, थल केदार और देवदार के जंगलों से घिरा हुआ चंडाक। कामाख्या मंदिर से तो पूरे शहर का नजारा देखते ही बनता है। पिथौरागढ़ शहर से कुमाऊं और गढ़वाल दोनों की सुंदर पर्वतमालाएं देखने को मिलती हैं, जैसे नंदा देवी, पंचाचुली, कामेट आदि। शहर से लगभग 100-150 किलोमीटर की दूरी पर कई सुंदर सुंदर वैलीज हैं, जैसे चौदास वैली, दारमा वैली, व्यास वैली, जौहर वैली। अक्टूबर 2023 में माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के आने से इस वैली को बहुत प्रसिद्धि मिली। आदि कैलाश यात्रा के मार्ग पर पड़ने वाला अंतिम गांव कुटी अपनी बेजोड़ संस्कृति और शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ आदि कैलाश ओम पर्वत में आध्यात्मिक अनुभूति भी होती है। दूसरी वैली है चौदास वैली, जहां पर नारायण आश्रम में हाई एल्टीट्यूड पर भी बहुत ही खूबसूरत लकड़ी की नक्काशीदार कारीगरी देखने को मिलती है। तीसरी वैली है दारमा वैली, जो ट्रैक प्रेमियों के लिए बहुत ही सुंदर और सरल ट्रैक है, जहां तक पहुंचना काफी आसान है। चौथी वैली है जौहर वैली, जहां पर चारों तरफ फैली हुई हरी भरी खूबसूरत पहाड़ियां और पंचाचुली के सफेद बर्फ से ढके पहाड़ अनायास ही पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। साहसिक यात्रा के शौकीन लोगों के लिए जौहर वैली में अनगिनत ट्रैक्स हैं, जैसे बनकटिया ट्रैक, रंथन खडक ट्रैक में तो बहुत ही सुंदर सुंदर बुग्याल और बैगनी गुलाबी कई तरह के रोडोडेंड्रोन देखे जा सकते हैं। इस शहर का सबसे खूबसूरत पहलू यह है कि यह शहर हवाई मार्ग से भी जुड़ा है। नैनी सैनी एयरपोर्ट से सप्ताह में 2 या 3 बार दिल्ली और देहरादून के लिए नियमित उड़ानें उपलब्ध हैं। तो आइए क्यों ना इस बार की जाए इस नए शहर पिथौरागढ़ की सैर।
2: तो आप भी अपने देश में ही सैर सपाटा करने अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट कीजिए। टूरिज्म को बढ़ावा देने के संकल्प में आप भी भागीदार बने। बस आपको करना सिर्फ इतना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है तो उठाएं कैमरा और बनाएं ब्लॉग। फिर हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर दें, हम उसे GNT पर जरूर दिखाएंगे।
1: मैं सोच रही हूँ कि मौसम सुहावना हो गया है, खूबसूरत हो गया है, तो जरा लाजपत नगर वीकेंड गेड़ी मार ली जाए।
2: जो साड़ी खरीद लो आप जाके,
1: अब कुछ भी खरीद सकते हैं।
2: अब आपको असिस्टेंट मिलेगा आपकी हेल्प करने के लिए इन केस यू गेट कंफ्यूज्ड। यू
1: कंफ्यूज्ड नहीं, लिफाफे ज्यादा हो जाए।
2: हाँ मतलब वो आप अकेली जाएंगे तो शॉपिंग ज्यादा करेंगे ना।
4: देखिए आप लोग जो कंफ्यूज कर रहे हैं ना लोगों को, उनको क्लैरिटी दीजिए। दरअसल हम क्या बात कर रहे हैं, हम सिर्फ शॉपिंग की बात नहीं कर रहे हैं। अभी तक जो हमें दिक्कत होती थी खास करके लड़कियों को कि हमारा कोई साथ देने वाला नहीं है। आप जिस किसी को घर में अगर बोलो तो वो बोले भैया शॉपिंग में हम नहीं जा सकते क्योंकि आप घंटों लगाती हैं। तो उसमें क्या होता है, ऑब्वियसली जब लड़कियां जाती हैं और वो भी आराम से जब वो जाती हैं तो कई शॉपिंग बैग्स हो जाते हैं। और अगर आपका साथ देने के लिए कोई नहीं है तो शॉपिंग बैग उठाने वाला कम से कम उसका इंतजाम हो गया है।
2: नाम है इसका कैरी मैन।
4: एग्जैक्टली,
2: मतलब पैसे हमें देने हैं और उसकी जगह हमें एक असिस्टेंट
4: मिल जाएगा। आपको एक घंटे का 119 रुपए चार्ज करेगा और आधे घंटे का शायद 75 या 78 रुपए।
2: शादी के टाइम ऐसा कोई होता ऑप्शन, क्योंकि मैं ऑफिस के बाद जाया करती थी लाजपत नगर शॉपिंग के लिए, इतने सारे बैग्स जाया करते थे। और जैसे आपने कहा ना, घर वाले कहते हैं हम तो नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ, घंटों लगा देते।
1: मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ है, बहुत सारे स्पेशली दिवाली टाइम पे जब आप जाते हैं ना शॉपिंग करने के लिए बहुत सारे बैग्स हो जाते हैं। तो चलिए ये राहत की बात रहेगी। और अच्छी बात जो है, मुझे और एक अच्छी बात लगी, कम से कम जो एटलीस्ट इससे रोजगार भी लोगों को मिल ही रहा है, जो वहां पर लोग हैं एटलीस्ट वो कमा पाएंगे। और यकीन मानिए लाजपत नगर एक ऐसी मार्केट है जहां आप जाएं तो आप बिना 3-4 बैग्स के वापस लौट नहीं सकते हैं। चलिए अब लाजपत नगर ही चलते हैं।
5: बाजार में घूमना और शॉपिंग करना हर कोई पसंद करता है, बशर्ते गैर जरूरी बोझ के बगैर। यानी जब खरीदारी हो जाए तो भारी भरकम सामान भी किसी बर्डन से कम नहीं लगता, तो उससे उपजा स्ट्रेस सारी शॉपिंग का ही मजाक किरकिरा कर देता है। ऐसे में शॉपिंग के साथ कभी कभार बच्चों को भी संभालने की जिम्मेदारी कम नहीं होती। लेकिन अब इसी परेशानी का समाधान एक बिजनेस आइडिया के रूप में दिल्ली के लाजपत नगर में चर्चा बना हुआ है। ये स्टार्टअप है कैरीमैन।
6: भीड़ से भरी मार्केट है और जब भी आप किसी भी मार्केट में आते हो तो आपको चाहिए होता है आराम, लेकिन आराम नहीं मिल पाता क्योंकि आपको लगातार शॉपिंग करनी होती है और जो शॉपिंग बैग्स का जो बर्डन होता है वो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस देता है। तो उसी स्ट्रेस को दूर करते हुए कैरी मैन आपके पास जो है इस वक्त खुद आ चुके हैं। यू शॉप वी कैरी, यानी आप जो है अच्छे से शॉपिंग करो और जो सामान कैरी करने की जिम्मेदारी है वो पूरी तरीके से हमारी है।
5: यानी जब भी आप वहाँ बाजार में जाएं, शॉपिंग असिस्टेंट बुक करें, यहीं से असाइन किया हुआ एक असिस्टेंट आपका सामान लेकर आपके साथ चलेगा, बाजार की भीड़ में रास्ता बनाने में भी मदद करेगा और जरूरत पड़ने पर लाइन में भी खड़ा होगा।
6: कि गर्मी में जब भी आप आते हो तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है बैग्स उठाने की। कभी कभी पेरेंट्स ये भी सोचते हैं कि अगर हम बच्चों को लेकर जा रहे हैं तो बच्चों को हैंडल करें या अच्छे से शॉपिंग करें। तो उस सभी चीजों का, उस सभी परेशानियों का सॉल्यूशन ढूंढते हुए कैरी मैन जो है आपके पास यहाँ पर पहुंच गया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको बेबी प्राम से लेकर हर एक तरीके की जो फैसिलिटी है, आपको बारिश हो गई है तो बारिश में आपको अम्ब्रेला भी प्रोवाइड करेगा, बेबी को कैरी भी करेगा, साथ ही साथ आपको आपका हर एक बैग, आपको लंबी लंबी लाइन में अगर लगना है, कहीं कुछ खाने जाना है, तो हर तरीके की मदद आपको जो है ये कैरी मैन देने वाला है।
5: इस अनोखे स्टार्टअप को शुरू करने वाले कहते हैं कि ये आइडिया उनको खुद के साथ हुए अनुभव के बाद ही आया।
7: ये हम घर से ही आइडिया आया है, खुद की अपनी जो स्ट्रगल देख के। पहले तो थी ठीक है, शादी के टाइम पे पहले वाली हम यंग गर्ल्स हैं, हम उठा लेते थे, ऑल द फ्रस्ट्रेट हो जाते थे लेकिन उठा लेते थे। फिर शादी हुई तो शादी के शॉपिंग जो होती है, इतने 20-30 किलो के लहंगे हमें उठा के लेके जाने, इवन इफ बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स हैं तब भी कितना सामान कोई उठाएगा, तो वो लोग परेशान हो जाते थे साथ में। फिर अब तो हमारे हो गए हैं बेबीज भी, तो टॉडलर्स के साथ में इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज द बैग्स एंड दी बेबी, तो आइडिया तो यहीं से आया है।
5: कैरीमैन दिल्ली के लाजपत नगर मार्केट में इस वक्त एक्टिव है, जहाँ इस सर्विस की शुरुआत 119 रुपए प्रति घंटा तय की गई है।
6: यहाँ पर जो है कस्टमर्स लगातार आ रहे हैं, जिस तरीके से आप लोग, अगर हम पैसों की बात करें, पैसों के लिए कभी किसी ने बोला कि ये बहुत ज्यादा चार्जेस है या नहीं?
8: ऐसा नहीं बोला अभी तक,
6: वो चीज नहीं बोला
8: अभी तक।
6: अच्छा,
8: नहीं
6: ये किसका सामान लेके जा रहे हैं आप? अच्छा, कस्टमर का सामान है, तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके के जो सामान आपको कैरी करते हुए कैरीमैन का सेटअप जो है पूरा दिख जाएगा।
5: कैरीमैन स्टार्टअप का दावा है कि उनकी सर्विस को कई लोग दोबारा भी ले रहे हैं।
9: हमारे 2-3 से काफी ज्यादा रिपीटेड कस्टमर्स भी आए अभी तक, और ये लोग काफी इंजॉय कर रहे हैं हमारी सर्विसेज, और अगर एक बार कोई ले रहा है ना तो उसको मजा ही आ रहा है पूरा सर्विस।
5: जिन लोगों ने कैरीमैन के साथ अपनी शॉपिंग को एक्सपीरियंस किया, उन्हीं से जान लेते हैं उन्हें कैसा लग रहा है ये यूनिक स्टार्टअप।
6: हेड ऑफ हो रहा है तो मैं सबसे पहले इनसे यही कहा, मेरे को केमिस्ट की मेरे को चाहिए, मेडिसिन चाहिए, मुझे वो दिलवा दो सबसे पहले।
9: लेकिन सर आपको उससे भी बेस्ट जगह पे लेकर आगे कैरीमैन के पास।
10: सामान उठाना बहुत मुश्किल है, है ना, कोई हेल्प करे, कोई मिले, कोई ऐसा, बहुत अच्छा है ये, अच्छा लग रहा है बहुत।
6: स्टार्टअप आपको कैसा लगा, कि एक अच्छा इनिशिएटिव है?
10: नहीं, ये सब जगह होना चाहिए, ये जो यहाँ पर देखा बहुत अच्छा लगा, तो ऐसा हर जगह मिलना चाहिए हमें, ऐसा है ना, हाँ, हर मार्केट में मिलना चाहिए, कोई हमारी हेल्प करने के लिए होना चाहिए।
11: मेरा अकॉर्डिंग लाइक इनोवेटिव आइडिया है, फर्स्ट टाइम आई वुड से लाइक इंडिया में एक्सपीरियंस करेंगे पीपल ये, तो आई वुड से लाइक ये सही है। अभी लाजपत नगर में इनिशिएटिव इन्होंने लिया है, एंड रेट्स भी रीजनेबल है, रेट्स आई वुड नॉट से कि रेट्स बहुत ज़्यादा है, एंड एक मतलब एक काइंड ऑफ एक ये देख सकते हैं कि हमें सपोर्ट मिलेगी, काइंड ऑफ हम शॉपिंग से ले जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं तो हमें सपोर्ट मिलेगी, काइंड ऑफ एक
12: इट्स अ गुड स्टार्टअप एंड आई थिंक इट्स अ गुड थिंग फॉर द पीपल आल्सो, एनीबॉडी वांट टू टेक द हेल्प
6: स्पेशली सीनियर सिटीजंस की बात करें, उनको भी हेल्प मिल जाएगी,
13: हेल्प चाहिए चाहिए,
14: मतलब ठीक है, इट्स अ वेरी गुड ब्रांड, आज मुझे पता चला, तो पहले पता होता तो डेफिनेटली मैं हेल्प लेती।
5: फिलहाल तो बगैर किसी टेंशन और बर्डन के कीजिए लाजपत नगर में शॉपिंग, क्योंकि यहाँ ये कैरीमैन स्टार्टअप आपकी सेवा में उपलब्ध है।
6: बात की जाए बेबी कैरियर की, बात की जाए बारिश आ जाए, अम्ब्रेला की बात की जाए, कोई एल्डर है, कोई सीनियर सिटीजन है, उनके लिए हेल्प की बात की जाए, लंबी लंबी लाइंस हो, उसमें आपको फूड का इंतजार करना है, उसकी बात की जाए, हर एक सॉल्यूशन जो है आपको इस जगह पर मिलने वाला है।
5: कई लोगों को कैरीमैन के जरिए दी जा रही ये सर्विस काफी सुविधाजनक लग रही है, तो कुछ इसे लग्जरी सुविधा भी बता रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर इजी शॉपिंग करवाने का ये कॉन्सेप्ट खूब ट्रेंड में है, जिसको जल्द ही आने वाले वक्त में आप भीड़ भाड़ वाले एक और इलाके चांदनी चौक में भी एक्टिव होते देख पाएंगे।
6: कोई भी फेस्टिवल, क्योंकि हमारे जो है फेस्टिवल्स बहुत सारे, तो किसी भी फेस्टिवल की बात करें, दिवाली हो, दशहरा हो, राखी हो, या फिर शादी का सीजन हो, तो जब भी वेडिंग सीजन आता है तो यहाँ पैर रखने तक की जगह नहीं होती, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस टाइम पर शॉपिंग करना, भारी भारी बैग्स उठाना कितना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उन्हीं सबका हल ढूंढते हुए कैरीमैन आपके पास आ गया है फिलहाल लाजपत नगर में। कैमरा पर्सन इमानुएल जोस के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे।
2: और चलिए यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे अपनी फिल्म रामायण पर क्या बोले रणबीर कपूर।
15: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
16: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
17: Hop on board and settle in for an easygoing cruise with Sailing on TuneIn. Let the breeze roll in and the rhythm carry you along. Enjoy yacht rock classics from artists like Hall & Oates, Steely Dan, Loggins and Messina, and much more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing. Tell your device to play Sailing on TuneIn.
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
13: और दुर्भाग्य कहता है
18: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
17: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का चाय पे चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आगे बढ़े नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
1: लखनऊ के साई भक्त ने बाबा को भेंट किया स्वर्ण मुकुट, बेशकीमती पत्थरों से बने कमल पर उकेरा गया ओम, 782 ग्राम के इस मुकुट पर दो मयूर की नक्काशी। कोलकाता में तेज हवाओं के साथ जमकर हुई बारिश, उमस और गर्मी से लोगों को मिली राहत, सड़कों पर गिरे पेड़ हटाने में जुटा प्रशासन। गुजरात के भुज पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने बॉर्डर का किया मुआयना, G7 सीमा चौकी पर किया पौधारोपण, BSF जवानों से की मुलाकात।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों।
4: भारतीय सिनेमा की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्मों में शामिल रामायण इस साल बड़े पर्दे पर रिलीज होने वाली है। 2026 सिनेमाकॉन में इसका टीजर पहले ही दिखाया जा चुका है। अब ये फिल्म अपने भव्य VFX, बड़े बजट और स्टारकास्ट की वजह से लगातार चर्चा में है।
5: ये हिंदी फैंटेसी ड्रामा हिंदू महाकाव्य रामायण पर आधारित है। फिल्म में बॉलीवुड स्टार रणवीर कपूर भगवान राम की भूमिका में नजर आएंगे। कहानी उस राजकुमार राम की है जिन्हें वनवास दिया जाता है। वनवास के दौरान राक्षसों के राजा रावण उनकी पत्नी सीता का हरण कर लेते हैं। इसके बाद राम रावण के खिलाफ धर्म और न्याय की लड़ाई छेड़ते हैं।
6: Back 3 or 4 years back when Namit casually spoke to me in London, I was filming at that time, and he called me over to his house and he said that, you know, I'm attempting to make the Ramayana and would you be interested in essaying Lord Rama's role? And my first instinct was fear, and I was like, absolutely not, because I don't think I deserve it, I don't think I'm worthy enough, forget about it. When I came back to India after a couple of weeks, I met Nitesh sir and Amit again, and they narrated the story to me, and I just realized what a fool I am, that apart from being career defining, this was an opportunity of a lifetime to be part of a vision like this, to take a film like Ramayana, which is our truth, our culture, our history, to take it global, to take it to a larger audience, I was just filled with gratitude.
7: चलिए अब बात कर लेते हैं कंगना रनौत की। करीब 1.5 साल के बाद कंगना रनौत बड़े पर्दे पर धमाकेदार वापसी कर रही हैं। कंगना की आने वाली फिल्म भारत भाग्य विधाता का फर्स्ट लुक जारी हो गया है।
1: बिल्कुल, देखिए इस फिल्म में कंगना एक सच्ची कहानी को बड़े पर्दे पर पेश कर रही हैं। कैसा है फिल्म में कंगना का फर्स्ट लुक, चलिए आपको दिखाते हैं।
8: बड़े पर्दे पर कंगना रनौत की धमाकेदार वापसी। करीब 1.5 साल बाद एक बार फिर सच्ची कहानी को दर्शकों के सामने लाएंगी कंगना। इमरजेंसी में अपनी शानदार एक्टिंग का लोहा मनवाने के बाद कंगना अब लेकर आ रही है भारत भाग्य विधाता। इस फिल्म की अनाउंसमेंट तो पहले ही हो चुकी थी, रिलीज डेट से भी पर्दा उठ चुका था, लेकिन इस फिल्म के लिए दर्शकों की बेसब्री तब और बढ़ गई जब इस फिल्म का फर्स्ट लुक सबके सामने आया।
9: कुछ खास करके आम ही कहलाते हैं, वो दिखते तो हैं पर नजर नहीं आते। भारत भाग्य विधाता, द अनसीन हीरोज।
8: गुरुवार को इंस्टाग्राम पर भारत भाग्य विधाता का मोशन पोस्टर जारी किया गया। इस मोशन पोस्टर में कंगना के फर्स्ट लुक ने दर्शकों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। पोस्टर में कंगना का लुक बेहद इंटेंस है। मोशन पोस्टर में कंगना अपनी जान पर खेलकर किसी की जान बचाती नजर आ रही हैं। ये फिल्म मुंबई टेरर अटैक पर बेस्ड है।

0: निर्माता 12 जून को सिनेमा घरों में दस्तक देने जा रही है। इसी दिन इम्तियाज अली की मैं वापस आऊंगा भी रिलीज हो रही है। इम्तियाज की फिल्म से भी दर्शकों को काफी उम्मीदें हैं। जाहिर है जून में बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों फिल्मों का जबरदस्त क्लैश होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: आमिर खान अब बड़े पर्दे पर एक नहीं बल्कि दो दो धमाके करने की पूरी तैयारी में हैं। उन्होंने अपनी दो आने वाली फिल्मों की डेट फाइनली फाइनल कर दी है।
2: आपको बता दें, इनमें से एक फिल्म क्रिकेट पर बेस्ड है जबकि दूसरी थ्री इडियट्स की सीक्वल है। दर्शकों को इन दोनों ही फिल्मों से काफी उम्मीदें हैं और हमें इंतजार है।

0: बड़े पर्दे पर धमाल का इंतजार कर रहे आमिर खान के फैंस को इस सुपरस्टार की तरफ से मिली गुड न्यूज ने और उत्साहित कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आमिर खान ने अपने दो नए और बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए तारीखें पक्की करनी शुरू कर दी हैं। आमिर खान ने पहले ही कहा था कि वो सिर्फ प्रोड्यूसर के तौर पर ही नहीं बल्कि एक्टर के तौर पर भी और ज्यादा फिल्में करेंगे। अब आमिर खान के इन दो नए प्रोजेक्ट्स ने फैंस की बेसब्री को और बढ़ा दिया है। आमिर खान के आने वाले प्रोजेक्ट्स में एक फिल्म 1952 की ऐतिहासिक भारत पाकिस्तान टेस्ट सीरीज पर आधारित है। इस फिल्म का डायरेक्शन लगान फेम डायरेक्टर आशुतोष गोवरकर कर रहे हैं। आमिर खान अपनी आने वाली दो फिल्मों में पहले क्रिकेट बेस्ड इसी फिल्म पर काम करेंगे। इस फिल्म की कहानी लाला अमरनाथ से जुड़ी है। बताया जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग इसी साल अक्टूबर या नवंबर के महीने में शुरू हो सकती है। आमिर खान ने ये फिल्म पहले इसलिए चुनी क्योंकि प्रोडक्शन के लिहाज से ये फिल्म ज्यादा रेडी है। फिल्म की स्क्रिप्ट लॉक हो चुकी है और प्री प्रोडक्शन का काम भी शुरू हो चुका है। सूत्रों की माने तो इस फिल्म में फरहान अख्तर पाकिस्तानी क्रिकेटर के रोल में नजर आएंगे। फरहान ही इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं। दूसरी तरफ आमिर थ्री इडियट्स के सीक्वल पर भी काम कर रहे हैं। इस फिल्म का मेन प्लॉट भी लॉक हो चुका है। राजकुमार हिरानी और अभिजात जोशी मिलकर इस फिल्म की राइटिंग पर काम कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो फिल्म के स्क्रीन प्ले के 3 से 4 ड्राफ्ट लिखे जा चुके हैं, लेकिन आमिर खान ने स्क्रिप्ट में कुछ और बदलाव करने की सलाह दी है। थ्री इडियट्स की गिनती अपने दौर की सबसे कामयाब फिल्मों में होती है। ऐसे में ऑडियंस को इसके सीक्वल से भी उम्मीदें काफी ज्यादा हैं। आमिर भी इस बात को बखूबी समझते हैं और इस फिल्म को तैयार करने में पूरा जोर लगाने को तैयार हैं। इस फिल्म पर अगले साल से काम शुरू होने की उम्मीद है। अब दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है आमिर के इन दोनों मेगा प्रोजेक्ट्स के पूरे होने का, क्योंकि ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नया धमाका कर सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: चलिए आईपीएल के धमाके की बात कर लेते हैं जो होगा फाइनली संडे को, लेकिन उससे पहले आज की पिक्चर बाकी है क्योंकि सीजन 19 अब अपने आखिरी और सबसे निर्णायक पड़ाव पर पहुंच चुका है। आज न्यू चंडीगढ़ के महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में ये मुकाबला होगा गुजरात टाइटंस वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के बीच में। सेकेंड क्वालिफायर मुकाबला होगा, मैच होगा शाम को 7:30 बजे। इस हाई वोल्टेज नॉकआउट मुकाबले पर करोड़ों फैंस की निगाहें टिकी हैं। जो टीम आज जीतेगी वो रविवार को होने वाले फिनाले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ भिड़ेगी, यानी आज की रात सिर्फ जीत या हार नहीं बल्कि ट्रॉफी के सपने को जिंदा रखने की लड़ाई होने वाली है।
2: बिल्कुल, गुजरात टाइटंस के लिए मुकाबला वापसी का मौका होगा। क्वालिफायर वन में आरसीबी के खिलाफ मिली करारी हार के बाद शुभमन गिल की टीम दबाव में है और अब उनके सामने करो या मरो की स्थिति है। दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स जबरदस्त आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरेंगे। एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद को हराने के बाद टीम का मनोबल सातवें आसमान पर है। इस मुकाबले की सबसे बड़ी चर्चा युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी को लेकर है। 15 साल का ये बल्लेबाज इस सीजन में गेंदबाजों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। राजस्थान की उम्मीदें एक बार फिर से वैभव, यशस्वी जायसवाल और रियान पराग जैसे आक्रामक बल्लेबाजों पर टिकी होंगी। वहीं गुजरात की नजरें शुभमन गिल, साई सुदर्शन, जॉस बटलर और राशिद खान जैसे मैच विनर्स पर रहेंगी।
3: तो आपको बता दें कि आज आईपीएल का दूसरा क्वालिफायर मैच है गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के

0: बीच ये अहम मुकाबला खेला जाना है। न्यू चंडीगढ़ के मुलामपुर स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मैच में जो टीम जीतेगी वो आरसीबी के साथ 31 मई को अहमदाबाद में फाइनल खेलेगी। लेकिन आज के दूसरे क्वालिफायर मैच में किसका पलड़ा भारी है, दोनों टीमों में खिलाड़ियों की मौजूदा परफॉर्मेंस कैसी है, बता रही है खुशी।
1: मैं इस वक्त हूं गुजरात टाइटंस के होटल के बाहर। आज मुकाबला है क्वालिफायर टू, जहां पर गुजरात वर्सेस राजस्थान ये मुकाबला होगा और सबकी निगाहें उस पर है कि वैभव सूर्यवंशी किस तरह की पारी खेलते हैं। मुल्लापुर में ये मुकाबला खेला जाएगा, जहां पर जीएनटी पर सारी कवरेज मैं आपको देती रहूंगी। लेकिन ये मैच, जो ये मुकाबला जीतेगा वो सीधा फाइनल खेलेगा आरसीबी के खिलाफ। अब बताइए कौन आपको लग रहा है क्यों, क्योंकि देखिए दोनों तरफ मामला जो है वो टॉप ऑर्डर का है। इधर से साई सुदर्शन, शुभमन गिल, जॉस बटलर, और उधर से टॉप ऑर्डर की बात करें तो वैभव सूर्यवंशी, यशस्वी जायसवाल और रियान पराग। जिसका टॉप ऑर्डर बेहतर खेलेगा वो ये मुकाबला जीत जाएंगे। बॉलिंग की अगर आप बात करेंगे तो इधर से आपके रबाडा है, उधर से है जोफ्रा आर्चर, तो वो भी काफी कुछ डिसाइड करेगा वो फैक्टर। लेकिन वैभव सूर्यवंशी जो इसी मैदान पर 97 रन की पारी 29 बॉलों में खेल कर आ रहे हैं, उनके दिमाग में ये होगा कि आज मुकाबला जीते और टीम को फाइनल में पहुंचा दे। क्यों, क्योंकि उन्होंने ये मैनिफेस्ट भी करा है कि ये सीजन राजस्थान के नाम करना है। तो सारी अपडेट आपको मुल्लापुर स्टेडियम से जीएनटी पर मिलती रहेगी। मैं खुशी गुप्ता।
2: भारत के युवा और विस्फोटक बल्लेबाज यानी कि वैभव सूर्यवंशी इन दिनों अपने तूफानी प्रदर्शन के कारण पाकिस्तान में छाए हुए हैं, लेकिन उनकी तुलना, उनका कंपैरिजन मोहम्मद यूसुफ ने शाहिद अफरीदी से कर दिया है। पूरी खबर क्या है देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में।
3: क्रिकेट की चर्चा इन दिनों वैभव के इर्द गिर्द घूम रही है। जिस तरह का तूफान उन्होंने आईपीएल में मचाया हुआ है, उसके बाद उन्हें क्रिकेट का करिश्मा कहा जा रहा है। हाल ये है कि हिंदुस्तान तो हिंदुस्तान, पड़ोसी मुल्क तक वैभव चर्चा में बने हुए हैं। पाकिस्तान में लोग वैभव की तुलना शाहिद अफरीदी से कर रहे हैं, तो वहीं उन्हें क्रिकेट का नायाब सितारा बताया जा रहा है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर बासित अली ने भी अपने खास अंदाज में वैभव को प्यार से नया नाम भी दे डाला है, बबलू। बासित का कहना है कि अगर उसकी हरकतें देखें तो बिल्कुल बबलू वाली है। खेलते रहो बबलू मियां, दुनिया के गेंदबाज तुमसे डरेंगे, ईस्ट हो या वेस्ट, सूर्यवंशी इज द बेस्ट। वैभव की बल्लेबाजी सिर्फ ताकत की कहानी नहीं बल्कि असाधारण परिपक्वता का भी उदाहरण है। क्रिकेट की मशहूर मैगजीन विजडन एलमनैक के संपादक लॉरेंस बूथ ने अमेरिकी अखबार से बातचीत में कहा कि वैभव की शॉट खेलने की क्षमता अपनी जगह शानदार है, लेकिन जिस तरह वह आईपीएल जैसे बड़े मंच के दबाव को नजरअंदाज कर बल्लेबाजी करता है वे सचमुच असाधारण है। वैभव ने भले ही कोई इंटरनेशनल मैच नहीं खेले, लेकिन उनकी चर्चा इंटरनेशनल क्रिकेट के गलियारों में होने लगी है। इसकी वजह साफ है, वैभव ने इस सीजन में लगाए गए 65 छक्कों में से 54 सिर्फ तेज गेंदबाजी के खिलाफ चढ़े हैं। 232 गेंदों पर 247.84 की विस्फोटक स्ट्राइक रेट से पेसर्स की धज्जियां उड़ाई हैं। उन्होंने अपने शानदार हैंड आई कोऑर्डिनेशन के कमाल से शॉट्स का ग्रामर बदल दिया। जिस बात से दुनिया दंग है वो ये कि वैभव ने जसप्रीत बुमराह, पैन कमिंस, एंगिरी, मोहम्मद सिराज और ट्रेन बोल्ट जैसे 140 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाले दिग्गजों की पहले ही गेंद पर छक्का जड़ा है। ये सिर्फ बल्लेबाजी नहीं बल्कि एक ऐसा बेखौफ अंदाज है जो डर जैसी चीज को जानता ही नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कहां लगी विधायक सर की क्लास।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती।
5: म्यूजिक फॉर एवरी मूड लिव्स ऑन ट्यून इन, वेदर यू वांट टू रिलैक्स, फोकस और टर्न थिंग्स अप, यू विल फाइंड द राइट स्टेशन। Hear from the top stations like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
6: The
5: music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
4: कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
9: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: आपको एक वायरल हो रहा वीडियो दिखाते हैं जो एक एमएलए साहब का है। दरअसल इस वीडियो में वो क्लास में पढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। दरभंगा में जाले से बीजेपी विधायक हैं और पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा हैं, जो कि यहां पर स्कूल का निरीक्षण करने के लिए आए थे, लेकिन लग गए केमिस्ट्री पढ़ाने। देखिए कैसे उन्होंने क्लास स्टूडेंट से साधारण नमक और पानी का केमिकल फॉर्मूला पूछा और फिर उसे समझाया भी।
2: ये प्लस ये माइनस ये आयनिक बॉन्ड बन जाते हैं, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ऑक्टेट रूल के कारण ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को प्रत्याग करता है, छोड़ देता है, और ये अपने को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। सोडियम और क्लोरीन मिलकर क्या बना दिया।
1: तो चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर होंगे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
5: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy nonstop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
1: एक छोटी सी बच्ची जिसकी अपनी माँ से बातचीत और उसकी क्यूट हरकत सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, वो यहाँ पर थेपला बनाना सीख रही है और माँ के कुछ कहने पर उसको जेल की रोटी भी खिलाने की क्यूट धमकी दे रही है। हो सकता है कि अगर आप सोशल मीडिया चलाते हो तो ये वीडियो आपने भी देखा हो। जिसने भी ये वीडियो देखा है वो इस छोटी सी बच्ची की प्यारी सी हरकत पर अपना दिल हार बैठा है।
2: क्यों? आप मत निकलिए, मैं आपको ले जाऊंगी जेल के लिए।
3: मैं क्या करूं, मैं तो आपकी हेल्प करूं ना।
1: अब एक छोटे भाई और उसकी दीदी की क्यूट सी जोड़ी आपको दिखाते हैं। दीदी यहाँ भैया को समझा रहे हैं कि उसने पढ़ना लिखना है लेकिन उतने ही नंबर लाने हैं, उतना ही समझदार बनना है जितना उसकी बड़ी बहन है। ये प्यारा सा वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। देखिए,
2: चीजों की स्पेलिंग्स भी पढ़नी है तो खाता तो रहता है, देख रोटी खाता रहता है, चपाती खाता रहता है ना। और ये बात सुनो ना, मेरी तरह सिर्फ मेरी तरह सुंदर बनना है और टॉपर बनना है, सबसे टॉप पे रहना है और सबसे टॉप वाली सीट पे बैठना है। टॉपर बनना है मेरी तरह, ना मुझसे ज्यादा ना मुझसे कम, जितने।
1: तो देखिए, मौसम विभाग ने भी फिलहाल मौसम कूल रहने की बात कह दी है वीकेंड में, और मेरे ख्याल से लाजपत नगर में भी शॉपिंग हेल्पर्स हमको मिलने लग गए ना।
4: अब अकेले जा सकते हैं,
1: है ना।
4: अब
1: वी डोंट नीड, हैप्पी वीकेंड हो जाएगा ये तो।
4: हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू आल्सो।
1: मंडे मिलेंगे शाम 5 बजे चाय पर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
5: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
0: Good news today is really good. It feels good in this. There is no news or chilla-chilli. At least people get to hear the news easily. More! On that, on that. With a good thought, with a good start. इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
1: लखनऊ के साईं भक्त ने बाबा को भेंट किया स्वर्ण मुकुट, बेशकीमती पत्थरों से बने कमल पर उकेरा गया ओम। 782 ग्राम के इस मुकुट पर 2 मयूर की नक्काशी। कोलकाता में तेज हवाओं के साथ जमकर हुई बारिश, उमस और गर्मी से लोगों को मिली राहत, सड़कों पर गिरे पेड़ हटाने में जुटा प्रशासन। गुजरात के भुज पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने बॉर्डर का किया मुआयना, G7 सीमा चौकी पर किया पौधारोपण, BSF जवानों के साथ की मुलाकात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर लिखी पुस्तक का विमोचन किया, किताब में सैनिकों के साहस और शौर्य का जिक्र, वतन के रखवालों की वीरगाथा जानने का मौका। उत्तराखंड के पहाड़ों को प्लास्टिक कचरा मुक्त बनाने में जुटा इंग्लैंड से आया मेहमान, अल्मोड़ा के कसार देवी इलाके में हर रोज स्वच्छता अभियान चलाते हैं मार्क।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना

अर्ज किया है, बदले हुए से लगते हैं अब मौसमों के रंग, पड़ता है आसमान का साया जमीन पर। नमस्कार, मैं हूं शगुफ्ता साहिल देव, आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। हमदम कश्मीरी के इन शब्दों की ही तरह मौसमों के बदलने पर बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ कहा गया। जीएनटी स्पेशल में भी आज बात होगी मौसम के उसी बदलाव पर जिसने वीकेंड से पहले खुश होने का बहाना दे दिया है। यूं तो मई के महीने ने अब की बार बेहद तपाया, लेकिन जाते जाते मई ने राहत की सौगात भी दे दी है। मई का आखिरी शुक्रवार वाकई शुक्र मनाने वाला वार रहा, शुक्र हीट वेव और तपती गर्मी से निजात के लिए। गुरुवार शाम से शुरू हुआ बारिश का दौर पहाड़ों और मैदानी इलाकों के लिए राहत लेकर आया है। पिछले कई दिनों से जो पारा 45 डिग्री के पार चल रहा था, कल शहर शहर हुई बारिश ने तापमान में थोड़ी सी राहत दे दी। भीषण गर्मी में दिन में निकलना किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन अब कुछ दिन के लिए मौसम साफ और सुहावना रहने वाला है। कई शहरों में आज सुबह की शुरुआत हल्की ठंडी हवा और खुशनुमा मौसम के साथ हुई। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि पूरे वीकेंड बारिश का ये दौर जारी रह सकता है। आज के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट, जबकि शनिवार रविवार के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। आइए आपको बताते हैं कि गर्मी से राहत देने वाली ये बारिश कहां कहां हुई और क्यों हुई।

0: मई की तपिश में राहत की बौछार हो गई। झमाझम बारिश से धरती गुलजार हो गई। इस बार का वीकेंड देश के कई हिस्सों के लिए तोहफे में सुकून की बौछार लेकर आया है। नौतपों के बीच दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया।
1: चिलचिलाती गर्मी और धूप से परेशान दिल्ली वालों के लिए गुरुवार की शाम राहत लेकर के आई, जब तेज हवाएं चली, धूल भरी आंधी चली और उसके बाद हल्की हल्की बारिश हुई, जिसके चलते मौसम और तापमान में अच्छी खासी गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिन तक इसी तरीके का मौसम जो है वो फिलहाल दिल्ली एनसीआर में बने रहने की उम्मीद है। जिस तरीके से कल देर शाम को बारिश हुई, ऐसा ही मौसम आज दिन भर जो है वो मौसम विभाग की माने तो बना रहेगा। कई इलाकों के अंदर हवाएं जो है वो तेज गति के साथ चलेंगी और उसके साथ साथ बादल भी छाए रहेंगे और उसके अलावा कई इलाकों में हल्की हल्की बारिश भी जो है वो हो सकती है। मौसम विभाग अगर बात की जाए तो जिस तरीके से कई दिनों से लगातार दिल्ली में रहने वाले लोग, खासतौर पर उत्तर भारत के भी लोग जो चिलचिलाती गर्मी और लू से परेशान थे, उनके लिए राहत जरूर लेकर के आई है।
0: कल तक जहां सूरज आग उगल रहा था, वही अब बादल झमाझम बरस रहे थे। गुरुवार शाम से ही उत्तर पश्चिम भारत के शहरों में आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश हुई, जिसके बाद देखते ही देखते तापमान में भारी गिरावट आने लगी। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार शाम से बदला मौसम का ये मिजाज रविवार तक ऐसा ही बने रहने की संभावना है। मौसम की करवट को देखते हुए अगले 2 दिनों के लिए दिल्ली एनसीआर, यूपी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कहीं तेज, कहीं मध्यम, कहीं कहीं थोड़ा नुकसान भी हुआ, पर पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी, चिलचिलाती धूप, उमस भरी रात झेल रहे लोगों के लिए मौसम का ये दौर सुकून लेकर आया है। तापमान में आई गिरावट से मौसम सुहाना हो गया।
2: उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में थोड़ी गर्मी से राहत मिली है लोगों को। वजह थी कल बारिश और तेज हवाएं जब चली थी, उसके बाद लगातार बारिश से कई जगह पर राहत मिली है। लोग काफी दिनों से गर्मी से परेशान थे, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में फिर चाहे आगरा से लेकर गोरखपुर तक और झांसी से लेकर लखनऊ तक टेम्परेचर में काफी कमी आई है और जिससे थोड़ा राहत मिली है।
0: मौसम की इस बदली चाल की वजह वेस्टर्न डिस्टरबेंस को बताया जा रहा है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर पहाड़ों से लेकर मैदानों तक दिखा है, जिससे तापमान में गिरावट और हीट वेव से निजात मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक जून में वापस तापमान 40 को लांघेगा, लेकिन फिलहाल हीट वेव से राहत की ये स्थिति हफ्ते भर तक बनी रह सकती है। यानी तापमान को दोबारा हीट वेव के स्तर पर आने में 7 से 8 दिन का समय लग सकता है।
3: देखिए, अभी टेम्परेचर इतने फॉल होंगे तो उनको राइज करने में फिर से थोड़ा समय लगेगा, तो फिलहाल हमारा अनुमान यही है कि 2 से 3 दिन के बाद 29 तारीख से जो हीटर कंडीशंस अबेट हो जाएंगी, उसके बाद में 30-31 तारीख के बाद में फिर से ग्रेजुअली टेम्परेचर राइज होना शुरू होंगे और उनको फिर से हीटवेव के स्तर में पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा।
0: मौसम के बदले मिजाज का असर बनारस में भी दिखा। काशी में लगातार 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच रहे तापमान ने लोगों को घरों में कैद होने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन अब बाबा विश्वनाथ की नगरी में मौसम भी मलंग हो गया है।
4: मौसम में बदलाव के चलते वाराणसी में लोगों ने राहत की सांस ली है। तड़के सुबह गरज चमक और तेज हवाओं के बीच हुई बारिश से तापमान लगभग 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे लुढ़क गया, जो सामान्य से 1.5 डिग्री नीचे बताया जा रहा है।
5: अभी तो कल से तो बढ़िया है, जब से कल से मतलब इतना ज्यादा अच्छा है, कहने बात नहीं, मतलब बारिश होने के बाद अच्छा मौसम है, ऐसा लग रहा है कि हाँ थोड़ा ठंडा है।
6: देखिए, मौसम का मिजाज तो बहुत अच्छा बदला है। जिस हिसाब से कल रात में बारिश हुई है और तूफान आया था, जिस हिसाब से लोग कह रहे थे कि नौतपा लगने वाला, उस हिसाब से पब्लिक सड़क पर नहीं निकल रही थी उस डर से। तो लेकिन ऊपर वाले की क्या मर्जी थी कि कल मतलब इस एकाएक मौसम चेंज हुआ, उससे मतलब जो टेम्परेचर है वो थोड़ा डाउन हुआ है, जिससे लोगों को बहुत राहत मिली है और काफ़ी अच्छा लोग महसूस कर रहे हैं।
7: कल 2 बजे रात से लगातार बारिश हुई, 7 बजे सुबह तक बहुत अच्छी बारिश हुई और इस समय एकदम मौसम बहुत सुहावना हो गया है, क्योंकि एक एग्जाम मैं 25 तारीख को देने आया था, बिटिया का, सीयूटी का ही, पांडेपुर में था सेंटर। इतनी गर्मी थी सर कि लग रहा था चमड़ी जल जाएगी, लेकिन आज तो यहाँ भी और घर पर भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मौसम।
8: पहले से तो काफ़ी आराम है, तापमान कुछ गिरा हुआ है, पहले से बहुत ज़्यादा आराम है।
0: इसी तरह यूपी के झांसी में गुरुवार शाम को चली तेज हवा और बारिश ने तस्वीर बदल दी। यहाँ कुछ इलाकों में ओले भी गिरे। पानी की बौछार पड़ी तो तपती धरती ने राहत की सांस ली। 45 डिग्री टॉर्चर के बाद मौसम का ये यू टर्न हरियाणा के लोगों को भी रास आया। रेवाड़ी में झमाझम बारिश के साथ ओले भी गिरे। अचानक आए इस मौसम परिवर्तन ने लोगों को हैरान तो किया, लेकिन पिछले कई दिनों से पड़ रही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से जूझ रहे लोगों ने राहत की सांस ली। तेज हवाओं, बारिश और ओलावृष्टि के बाद तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। राजस्थान के श्रीगंगानगर में तो लोग 49 डिग्री टॉर्चर झेल रहे थे। गुरुवार दोपहर तक ये शहर दुनिया के सबसे गर्म शहरों में दूसरे स्थान पर शुमार था, लेकिन शाम होते होते कहानी बदल गई। मौसम के बदले अंदाज ने लोगों को बड़ी राहत दी। दोपहर बाद मौसम बदला, आसमान में काले घने बादल छाए। शाम होते होते तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई, जमकर ओले भी गिरे। राजस्थान के धौलपुर में भी मौसम के तेवर कुछ ऐसे ही नजर आए। दोपहर बाद आसमान में बादलों ने दस्तक दी और देर शाम तेज हवाओं के साथ बरस पड़े। तपती दोपहरी के बाद बादलों की यह मेहरबानी लोगों को सुकून दे गई। तो वहीं उत्तराखंड के बागेश्वर में इन बादलों ने बड़ा काम किया। यहां हुई बारिश और ओलावृष्टि ने जंगलों की भीषण आग बुझा दी। आसमान से गिरते ओलों ने कुछ देर के लिए बागेश्वर की जमीन को पूरी तरह ढक दिया। पश्चिम से पूर्व तक देश के कई इलाकों में यही मंजर नजर आया। ताजा बारिश सिटी ऑफ जॉय के लिए गर्मी से राहत की खुशखबरी लेकर पहुंची। पश्चिम बंगाल में राजधानी कोलकाता समेत कई इलाकों में शुक्रवार सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश के चलते लोगों को गर्मी से निजात मिली और मौसम सुहाना हो गया।
9: चिलचिलाती धूप और उमस से आखिरकार कोलकाता के लोगों को राहत मिला। शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे के बीच भारी बारिश साथ में तेज हवाओं ने टेम्परेचर को काफी नीचे ला दिया। मौसम विभाग का ये कहना है कि उत्तर बंगाल में इस तरह की बारिश जारी रहेगी और भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में फिलहाल इसी तरीके से बूंदाबांदी और कभी कभी इस तरीके का बारिश कोलकाता और इसके आसपास के जिलों में रोज होती नजर आएंगी। लेकिन लोगों को खासा परेशानी भी हुआ, क्योंकि कुछ इलाकों में कोलकाता के जहाँ पेड़ गिरे, कुछ जगहों पे जल जमा हुआ, लेकिन मौसम सुहाना हो गया।
0: महाराष्ट्र के अमरावती में भी नौतपा की तपिश के बीच 45 डिग्री तापमान में झुलसे शहर ने राहत की इस बारिश का जमकर लुत्फ उठाया। तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हुई बारिश और ओलावृष्टि से शहर का पारा नीचे लुढ़क गया और लोगों ने राहत की सांस ली।
10: तो भारत का ज्यादातर हिस्सा हीट वेव झेल रहा था, लू के थपेड़े या लू की मार झेल रहा था, और अब मौसम ने करवट ली है तो ज्यादातर हिस्सों में अब वो राहत लेकर के आई है। हालांकि इस राहत के साथ मुसीबतें ये हैं कि मौसम विभाग का पूर्वानुमान ये कहता है कि उत्तर पश्चिम भारत, पूर्वी उत्तर भारत, मध्य भारत और इसी के साथ साथ दिल्ली NCR का वो इलाका जहां पर रविवार तक अब तापमान तो गिरेगा ही, बारिश भी होंगे, लेकिन हवा की रफ्तार ज्यादा भी हो सकती है, थंडर स्टॉर्म हो सकता है, ओले गिर सकते हैं। तो अगर फलों की खेती है उस पर असर पड़ेगा। पहाड़ी इलाकों में जहां पर जंगलों की आग है वहां पर ओलावृष्टि या बारिश के साथ उस आग को बुझाने में मदद मिलेगी। तो मैदानी इलाकों में तापमान नीचे जरूर गिरेगा, लेकिन आंधी तूफान, बिजली गिरने और ओले गिरने जैसी घटनाओं से बचना जरूरी होगा। तो कुल मिलाकर के कहें कि पश्चिमी विक्षोभ इतना सक्रिय होकर के आ रहा है कि अपने साथ हवा की रफ्तार बेहद तेज ला रहा है, और इसीलिए दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत के ये जो गंगेटिक बेल्ट है, पूरा मैदानी इलाका है, यहाँ आपको तड़के सुबह अब वैसा तापमान महसूस नहीं हो रहा होगा। इसी के साथ साथ जो वार्म नाइट्स कंडीशन जिसे कहते हैं, जहां रातें भी गर्म थी, वो भी बेहतर हुई है। यानी रातों को तापमान भी नीचे आया है, दिन का तापमान भी जो अधिकतम था उसमें भी कमी आई है, लेकिन ये राहत सिर्फ रविवार तक होगी क्योंकि जून की तपिश तो अभी बाकी है। दिल्ली से मनीष के साथ मैं आशुतोष मिश्रा।
11: जहां उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में वेस्टर्न डिस्टरबेंस बारिश का दौर लेकर आया, तो वहीं देश के दक्षिणी राज्यों में प्री मानसून बारिश हो रही है। दरअसल मानसून अब देश की दहलीज पर खड़ा है और दक्षिण के द्वार से उसे भारत के मेनलैंड में प्रवेश करना है। उसी का संकेत देते हुए झमाझम बारिश के साथ दक्षिण में प्री मानसून ने दस्तक दे दी है। प्री मानसून में होने वाली बारिश मानसूनी बारिश से अलग होती है। देखिए, मानसून का फंडा तो सीधा सा है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में तापमान की वजह से पानी भाप बनकर बादलों के रूप में आगे बढ़ता है और बारिश करता है, यही मानसूनी बारिश कहलाती है। लेकिन इससे पहले होती है प्री मानसून की बारिश, जो देश के कई राज्यों में इन दिनों हो रही है। अब आपको बताते हैं कि प्री मानसून और मानसून में अंतर क्या है, दोनों समय होने वाली बारिश का पैटर्न एक दूसरे से अलग कैसे है और ये पूरा सिस्टम कैसे बनता है वो समझिए। मॉनसून की बारिश की शुरुआत दक्षिणी कोने से होती है, जबकि प्री मॉनसून की बारिश का कोई सेट पैटर्न नहीं। ये देश के दक्षिण पश्चिम या उत्तरी हिस्सों में कहीं भी पहले आती है और पहले ही चली जाती है। दोनों बारिशों में बादलों का पैटर्न भी अलग होता है। मॉनसून की बारिश के बादल परतों वाले होते हैं। परतों में मौजूद ज्यादा नमी के चलते बार बार लंबे समय तक मॉनसून की बारिश होती है। ये बादल एक से दूसरी जगह तक लंबी दूरी भी तय करते हैं, जबकि प्री मॉनसून बारिश के बादलों के साथ ऐसा नहीं होता। इनमें कम नमी होती है और ये काफी ऊपर की तरफ होते हैं। मॉनसून की बारिश कभी तेज होती तो कभी कई दिनों तक रिमझिम बारिश का सिलसिला भी चलता है, जबकि प्री मॉनसून की बारिश बेहद तेज होती है। मॉनसून की बारिश बार बार और लंबे समय तक होती है, जबकि प्री मॉनसून बारिश एक दो दिन में खत्म हो जाती है, जैसा कि अभी हो रहा है। इसके अलावा मॉनसून की बारिश के दौरान कई बार तेज चक्रवाती हवाएं भी आपको देखने को मिलेंगी, जबकि प्री मॉनसून बारिश के दौरान झोंकेदार हवा के कारण धूल वाली तूफानी बारिश होती है। साथ ही मॉनसून की बारिश बहुत बड़े इलाके में एक साथ होती है और इस दौरान पूरे क्षेत्र का मौसम एक जैसा रहता है, जबकि प्री मॉनसून बारिश एक सीमित क्षेत्र में होती है, जैसा कि हम अभी देख पा रहे हैं। अब की मई मैदानी इलाकों में तो प्रचंड गर्मी पड़ी ही, लेकिन साथ ही कई पहाड़ी राज्यों में भी पारा 40 तक पहुंचा। ऐसे में वेस्टर्न डिस्टरबेंस के बाद बदला मौसम पहाड़ी राज्यों के लिए भी राहत लेकर आया। कई शहरों में जोरदार बारिश तो कुछ ऊंचाई वाले इलाकों पर बर्फबारी भी देखने को मिली। मसलन उत्तराखंड के चमोली में मौजूद हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा के इलाके में जोरदार बर्फबारी हुई। ताजा बर्फबारी के बाद पूरा इलाका बर्फ से ढका नजर आ रहा है।

0: कहां तो मैदान और पहाड़ दोनों ही हीट वेव की मार झेल रहे थे, लेकिन 24 घंटों में सब कुछ बदल गया। वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते हवाओं ने कुछ ऐसा रुख बदला कि मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया। ये तस्वीरें हैं उत्तराखंड के चमोली की, जहां ताजा बर्फबारी के बाद सिखों का पवित्र तीर्थ हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा पूरी तरह बर्फ से ढक गया है। 23 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खोले गए थे। कपाट खुलने के बाद से अब तक यहां 22,000 से ज्यादा तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। इसी दौरान इस पूरे हफ्ते यहां कई बार बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग ने गुरुवार से पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई थी। गुरुवार शाम जहां देश के मैदानी इलाकों में जोरदार आंधी बारिश का दौर चला, तब चमोली के इस इलाके में देर रात मौसम बदला और ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के साथ भारी बर्फबारी शुरू हो गई। हेमकुंड साहिब क्षेत्र में सुबह से लगातार बर्फ गिर रही है। यहां जबरदस्त ठंड के साथ आसमान से बर्फ के फाहे बरस रहे हैं। पवित्र सरोवर का पानी और भी ज्यादा ठंडा हो गया है। बावजूद इसके सिख संगत में अपार उत्साह और श्रद्धा देखने को मिल रही है। भक्त बर्फ को चीरते हुए भी गुरुद्वारा साहिब पहुंचकर अरदास कर रहे हैं।
1: चमोली में एक बार फिर से मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हो रही है। सिखों का जो पवित्र तीर्थ स्थल है हेमकुंड साहिब में रुक रुक कर बर्फबारी का दौर जारी है। आसमान में देख सकते हैं लगातार बादलों का डेरा है। मौसम विभाग ने पहले ही पहाड़ों में बारिश और बर्फ ऊंचाई वाली जगहों पर बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया था। ऐसे में हेमकुंड साहिब अत्यधिक ऊंचाई पर है, वहां पे लगातार रुक रुक कर बर्फबारी का दौर जारी है। ऐसे में अब तक 22,000 से अधिक श्रद्धालु हेमकुंड साहिब में मत्था टेक चुके हैं। सिख संगतें हैं देश और विदेश दोनों ही जगहों से इस समय हेमकुंड साहिब में पहुंच रहे हैं। ऐसे में बर्फबारी के बीच जहां रास्ता फिसलन भरा हो जाता है, वहीं SDRF जो सेवादार है, भारतीय सेना है, इन रास्तों पे लगी हुई है। यात्रियों को रास्ता पार कराने में जो व्यवस्थाएं हैं, गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी भी यहां पे लगातार यात्रियों की मदद के लिए खड़ी है। हालांकि सुबह से बर्फबारी देर रात से ही बर्फबारी यहां पे हो रही है। सुबह यहां बर्फ की सफ़ेद चादर हर तरफ दिखाई दी, इसके बावजूद भी श्रद्धालुओं का जो उत्साह है, एक तो कठिन यात्रा होती है 19 किलोमीटर की, दूसरा ऑक्सीजन की कमी होती है, लेकिन जो यहां पहुंचने वाले श्रद्धालु होते हैं, चाहे वो बुजुर्ग हों या बच्चे हों, हर किसी के उत्साह में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। बर्फबारी है, कड़ाके की ठंड है, ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह अपनी अपार देखने को मिल रहा है।
0: जहां हेमकुंड साहिब में जमकर बर्फबारी हो रही है, वहीं उत्तराखंड के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। गुरुवार शाम से रुक रुक कर हो रही बारिश ने पहाड़ी राज्य के निचले इलाकों में भी तापमान काफी गिरा दिया है।
2: दो हफ्ते की चिलचिलाती गर्मी के बाद उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में देर रात तेज बारिश हुई और गुरुवार को इस बारिश के बाद कई क्षेत्रों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और इसके बाद मौसम फिलहाल सुहाना बना हुआ है। पहाड़ी क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं देहरादून समेत जो दूसरे मैदानी क्षेत्र हैं, वहां पर भी तापमान में कमी आई है। हालांकि गर्मी अभी भी बढ़ रही है और देखा जा सकता है कि मौसम विभाग ने एक बार फिर चेतावनी दी है कि अगले दो दिन में देहरादून, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर के लिए वार्निंग जारी की गई है। येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं।
0: दरअसल मई में पहाड़ों पर हो रही जोरदार बर्फबारी सबको हैरान कर रही है। कश्मीर के गुरेज और हिमाचल के मनाली में भी इस हफ्ते ऐसा ही नजारा दिखा था, तो वहीं लद्दाख के द्रास में भी इस हफ्ते जमकर बर्फ गिरी है। ये हिमालय की गोद में बसे जोजीला दर्रा की तस्वीरें हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जोड़ने वाले इस इलाके से यूं तो साल भर सर्दी नहीं जाती, लेकिन अब की मई यहां हुई जबरदस्त बर्फबारी ने सबको हैरान कर दिया है। यहां बर्फबारी का आलम ये रहा कि सड़क पर जमी बर्फ को हटाने के लिए मशीनों का सहारा लेना पड़ा। इसी तरह ये तस्वीरें कश्मीर के गुरेज सेक्टर में मौजूद तुलैल वैली की है, जहां मई के महीने ने अब की बार दिसंबर की याद दिला दी है। इस हफ्ते नॉर्थ कश्मीर के गुरेज सेक्टर और सोनमर्ग में भी जबरदस्त बर्फबारी हुई है। हिमाचल का हाल भी ज्यादा जुदा नहीं रहा। यहाँ कुल्लू मनाली के ऊपरी इलाकों, रोहतांग पास, स्पीति घाटी, सोलंग वैली, केलांग और दूसरी जगहों पर जमकर बर्फ पड़ी है। एक बात अच्छी ये हुई कि इस बर्फबारी ने पहाड़ों पर पहुँचे सैलानियों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है। जाहिर है मई में किसे बर्फबारी की उम्मीद होगी, लेकिन पहाड़ी इलाकों का रुख कर रहे पर्यटकों के लिए ताज़ा बर्फबारी किसी बोनस से कम नहीं। चमोली से कमल ने अंसिलोड़ी, देहरादून से अंकित शर्मा, मनाली से मनमिंदर अरोड़ा और जोजिला से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से देशवासियों से विदेश यात्रा की जगह स्वदेश यात्रा करने की अपील की है, तभी से जीएनटी भी आपसे गुजारिश कर रहा है कि आप अपने आसपास की खूबसूरत जगहों की तस्वीरें हमें भेजें ताकि हम आपकी उन वीडियोस को यहां पर दिखाएं। तो चलिए आज आपको हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला लेकर चलते हैं, जहां के तमाम आकर्षक और खूबसूरत पर्यटक स्थल आपका इंतजार कर रहे हैं। हमारे एक दर्शक ने हमें एक ऐसा ही वीडियो भेजा है जिसमें उन्होंने धर्मशाला समेत कांगड़ा वैली की खास जगहों के बारे में जानकारी दी है।

0: मैं आप सभी को भी न्योता देता हूँ कि हमारा हिमाचल प्रदेश जो देवभूमि है और हिमाचल के ही अंदर बसा हमारा ये सुंदर धर्मशाला, जहाँ एक तरफ धुलाधार की हसी पहाड़ियाँ, जहाँ आज मई और जून के महीने में भी बर्फबारी धुलाधार की पहाड़ियों पर है। मैं आप सभी को कहना चाहूंगा हिमाचल प्रदेश के अंदर ये सुंदर हमारा धर्मशाला, जहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो विश्व का सबसे सुंदर स्टेडियम है वो धर्मशाला में है, चाहे मैक्लोडगंज जो नगरी है वो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में है, बौद्ध धर्म के धर्मगुरु दलाई लामा जी यहाँ पर हैं। आप सभी आए और धर्मगुरु दलाई लामा जी का आशीर्वाद मिलने का सौभाग्य आप सभी को मिलेगा। धर्मशाला के अंदर चाय के बगान है, आप उन्हें निहारने के लिए यहाँ आ सकते हैं। धर्मशाला के अंदर कई देवी स्थान, कई मंदिर, जैसे अगंजर महादेव, इंद्रनाग जी का मंदिर देवी स्थल है, और कई मंदिर हमारे हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के शहर के अंदर है। बात करूं रोपवे की, तो धर्मशाला में धर्मशाला से मैक्लोडगंज के लिए रोपवे की सुविधा है, आप उसका आनंद लेने भी हिमाचल प्रदेश के अंदर आ सकते हैं। अगर कोई ट्रैकिंग का शौकीन है तो त्रिउंड जैसा एक ट्रैकिंग का हमारे पास स्पॉट जो है धर्मशाला के अंदर है, आप ट्रैकिंग के लिए भी त्रिउंड जा सकते हैं। साथ में धर्मशाला के लगते बाथू की लड़ी यहाँ घूमने के लिए है। मंदिर की बात करूँ तो रॉकट टेम्पल हमारे यहाँ है। धर्मशाला के साथ ही लगता कांगड़ा है, प्रदेश्वरी माता शक्तिपीठ धर्मशाला के अंदर लगते कांगड़ा में है, तो आप इन तमाम चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए, घूमने के लिए धर्मशाला आए। हिमाचल वासी तो धर्मशाला अतिथि देवो भव के भाव के साथ आप सभी के स्वागत के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। आपने आना कैसे है ये सबसे बड़ा प्रश्न है, तो बताऊं आपको, धर्मशाला के ही समीप गग्गल एयरपोर्ट, जहाँ आप हवाई मार्ग से आ सकते हैं। रेलवे से अगर आपने आना है तो पठानकोट जो सबसे नजदीक हमारे पड़ता है उसके माध्यम से आ सकते हैं। फिर दिल्ली से आपने आना है तो वोल्वो बसें जो है धर्मशाला तक आती हैं। इन तमाम साधनों से जो आप धर्मशाला आ सकते हैं। हम सभी धर्मशाला वासी आपके स्वागत के लिए और अतिथियों के, अतिथि देवो भव के भाव के साथ यहाँ पर।
1: तो आप भी अपने ही देश में सैर सपाटा करने, अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट कीजिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के संकल्प के भागीदार बनिए। बस करना आपको सिर्फ इतना सा है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है तो उठाइए अपना कैमरा और स्टार्ट कर दीजिए ब्लॉग्स बनाने। फिर हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, हम उसे GNT पर जरूर दिखाएंगे। और चलिए आज तो यही कहेंगे कि एंजॉय योर वीकेंड, क्योंकि आपका वीकेंड रहने वाला है कूल कूल। फिलहाल इजाजत दीजिए, अच्छी खबरें जा रही हैं, देखते रहिए GNT।
2: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
3: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More favorite country roads.
6: Thank God I get to wait.
5: And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हैं। इनमें से कुछ वीडियोस आपको हंसाएंगे, कुछ आपको गुदगुदाएंगे।
8: नवजात भाई को पहली बार देखकर छोटी बहन की खुशी देखने लायक है। ठुमक ठुमक कर चलते हुए वो मासूमियत से जमीन पर बैठ गई और अपने नन्हे भाई को गोद में लेने के लिए हाथ फैला दिए। उसकी चमकती आंखों और खिलखिलाती मुस्कान ने पूरे घर के माहौल में खुशियां भर दी। भाई को सीने से लगाने की उसकी मासूम चाहत ने सभी का दिल जीत लिया। ये खूबसूरत पल सिर्फ एक मुलाकात नहीं बल्कि भाई बहन के अनमोल रिश्ते और निश्चल प्रेम की प्यारी शुरुआत बन गया। जहाँ लोग छोटी छोटी परेशानियों में हार मान लेते हैं, किस्मत को कोसने लगते हैं, वहीं ये शख्स हौसले की नई मिसाल बनकर सामने आया है। एक हाथ न होने के बावजूद अपने हुनर से लोगों के चेहरों पर मुस्कान और आत्मविश्वास दोनों सजा रहा है। इनका काम सिर्फ हेयर कटिंग का नहीं है बल्कि ये साबित करना है कि मेहनत, जज्बा और आत्मविश्वास के आगे हर मुश्किल छोटी पड़ जाती है। अपने हौसले से ये अपनी तकदीर खुद लिख रहे हैं। माँ और बच्चे का ये प्यारा सा अंदाज किसी का भी दिल जीत लेगा। माँ जैसे ही मस्ती में झूमती है, बच्चा भी उनकी नकल करने लगता है, फिर अपनी मासूम अदाओं पर खिलखिलाकर हंस पड़ता है। ये नज़ारा सिर्फ हंसी का नहीं बल्कि माँ बेटे के खूबसूरत रिश्ते और बेफिक्र बचपन की प्यारी झलक है। ऐसी मासूम खुशियाँ ही जिंदगी को खूबसूरत बनाती है और चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है। दुनिया का सबसे अमीर इंसान वो नहीं जिसके पास दौलत है बल्कि वो है जिसके घर लौटने पर परिवार खुशियों से झूम उठे। ये प्यारी बच्चियां अपनी माँ के साथ डांस करते हुए पिता का स्वागत कर रही हैं। बेटियों की मुस्कान और अपनापन देख पिता भी खुद को झूमने से रोक नहीं पाए। ये नज़ारा सिर्फ स्वागत का नहीं बल्कि परिवार के प्यार, अपनेपन और रिश्तों की असली दौलत की खूबसूरती का है। इतना नन्हा किसान शायद ही किसी ने देखा होगा जो अपनी मासूम उम्र में भी जिम्मेदारी निभा रहा है। ये छोटा सा बच्चा होटल के कर्मचारियों के साथ बागवानी में मदद कर रहा है। उनकी क्यूट हरकतें देखकर सभी के चेहरों पर मुस्कान आ जाती है। बच्चे की मासूम कोशिशों से माहौल और भी खुशनुमा हो गया। उसकी ये लगन और सादगी ये सिखाती है कि सीखने और मदद करने की कोई उम्र नहीं होती।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: Some people say that TalkSport is possessed by the Premier League, but that's just not cricket. We're also charmed by the Champions League, fanatical about the FA Cup, and rampantly rabid about rugby, Formula One, and boxing. TalkSport's the brassiest, boldest, best soccer and sports opinion anywhere in the known universe, live from London on TuneIn.
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. Country roads.
6: Thank God I get to wake
5: and everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
9: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's classic rock hits, you'll find only the best in high octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
10: आज का आईना होगी। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
11: Thank you.
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
11: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
14: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
1: लखनऊ के साईं भक्त ने बाबा को भेंट किया स्वर्ण मुकुट, बेशकीमती पत्थरों से बने कमल पर उकेरा गया ओम। 782 ग्राम के इस मुकुट पर दो मयूर की नक्काशी। कोलकाता में तेज हवाओं के साथ जमकर हुई बारिश, उमस और गर्मी से लोगों को मिली राहत, सड़कों पर गिरे पेड़ हटाने में जुटा प्रशासन। गुजरात के भुज पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने बॉर्डर का किया मुआयना, G7 सीमा चौकी पर किया पौधारोपण, BSF जवानों के साथ मुलाकात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर लिखी पुस्तक का किया विमोचन, किताब में सैनिकों के साहस और शौर्य का भी जिक्र, वतन के रखवालों की वीर गाथा जानने का मौका। उत्तराखंड के पहाड़ों को प्लास्टिक कचरा मुक्त बनाने में जुटा इंग्लैंड से आया मेहमान, अल्मोड़ा के कसार देवी इलाके में हर रोज स्वच्छता अभियान चलाते हैं मार्क।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: शिरडी साईं बाबा मंदिर में लखनऊ के गोपाल गोयल परिवार ने 1 करोड़ से ज्यादा कीमत का सोने का मुकुट अर्पित किया, 782 ग्राम के इस मुकुट पर लिखा गया है ओम। लखनऊ के गोपाल गोयल ने बिना किसी मन्नत के साईं बाबा को करोड़ों का स्वर्ण मुकुट चढ़ाया, परिवार पिछले 15 सालों से दर्शन के लिए आता है। साईं भक्त गोपाल गोयल ने मुकुट अर्पित करने के मौके को बताया बाबा की कृपा, गोपाल गोयल के मुताबिक बाबा करते हैं उनकी हर मनोकामना को पूरा। परिवार ने मुकुट अर्पण को बताया बेहद अद्भुत भावुक पल, परिवार ने कहा साईं बाबा की इच्छा रही तो आगे भी भेंट करते रहेंगे। शिरडी में करोड़ों का स्वर्ण मुकुट बना रहा चर्चा का विषय, साईं बाबा के प्रति भक्तों की अटूट आस्था एक बार फिर से देखने को मिली। शिरडी के साईं बाबा को 3,507 किलो केसर आम का चढ़ावा, पुणे के भक्त ने अर्पित किए आम। 60,000 भक्तों का आमरस के प्रसाद से हुआ मुंह मीठा, आम की सुगंध से महका पूरा मंदिर परिसर। किसान गर्गल भाई पिछले 6 वर्षों से आम की पहली खेप साईं चरण को करते आ रहे दान, भक्त ने कहा सब बाबा की देन। भक्तों ने लिया आमरस का आनंद, कहा पहली बार हमें आमरस मिला। प्रसादालय में प्रतिदिन हजारों भक्त करते हैं प्रसाद को ग्रहण, प्रसाद में 2 सब्जियां, करी चावल, चपाती होती है। अयोध्या के श्री राम मंदिर में एक बार फिर से उत्सव की तैयारी, आज मां भगवती मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा। मां भगवती मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण समारोह चलेगा, 1 घंटे तक होगा यह अनुष्ठान। महिलाएं संपन्न करेंगी ध्वजारोहण की प्रक्रिया, साध्वी रितंभरा करेंगी ध्वजारोहण। आयोजन में करीब 3500 महिलाओं के शामिल होने की संभावना दिखेगा, अध्यात्म श्रद्धा मातृशक्ति का अद्भुत संगम। कार्यक्रम के लिए मंदिर परिसर की विशेष सजावट, देशभर से मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी की महिलाएं अयोध्या पहुंची। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए रामलला के दर्शन। राम मंदिर परिसर के बाहर सुबह से लगी भक्तों की लंबी कतारें, भक्तों ने लगाए जय श्री राम के जयकारे। चित्तूर के विनायक स्वामी मंदिर में उमड़ा भक्तों का मेला, विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं ने किया पूजा पाठ। गर्मी की छुट्टियों के चलते बढ़ी श्रद्धालुओं की संख्या, सुबह से लगी भक्तों की कतारें। भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने की भंडारे का आयोजन, बड़ी संख्या में भक्तों ने किया प्रसाद ग्रहण। उज्जैन में बाबा महाकाल की उतारी गई भस्म आरती, भक्तों ने लगाए हर हर महादेव के जयकारे। बाबा महाकाल का अभिषेक के बाद दूध दही घी शहद फूलों के रस से किया गया पूजन अर्चन। महाकाल को रजत चंद्र त्रिशूल मुकुट आभूषण अर्पित कर किया गया श्रृंगार, भांग चंदन ड्राई फ्रूट भस्म का लगाया गया। हरिद्वार पहुंचे पूर्व क्रिकेटर और पूर्व सांसद नवजोत सिंह सिद्धू, देखने के लिए लगी भीड़।

हेमकुंड साहिब में चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर, मई की गर्मी के बीच श्रद्धालु बर्फबारी का मजा ले रहे। बर्फबारी पर आस्था भारी दिखाई दे रही, बड़ी संख्या में भक्तों ने गुरुद्वारा साहब पहुंचकर की अरदास। बर्फबारी के चलते पवित्र सरोवर का पानी और भी ज्यादा ठंडा, श्रद्धालु सरोवर में लगा रहे डुबकी। श्रद्धालुओं को वापस भेजा जा रहा बेस कैंप घांघरिया, एसडीआरएफ और गुरुद्वारा सेवादार सुरक्षा का रख रहे पूरा ख्याल। मौसम को लेकर आईएमडी ने जारी किया बुलेटिन, इस साल देश में सामान्य से कम रहेगा मानसून। इस साल सिर्फ 90% बारिश का अनुमान, मध्य और दक्षिण भारत में कम बरसेंगे बादल। देश में इस साल जून से सितंबर के बीच में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना, उत्तर पूर्व भारत में सामान्य बारिश होने का पूर्वानुमान। जून महीने में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार समेत 12 राज्यों में बने हीट वेव के हालात। दिल्ली समेत उत्तर भारत में बारिश के बाद तापमान में गिरावट, लोगों को गर्मी से मिली राहत। रेवाड़ी में बदला मौसम का मिजाज, जोरदार बारिश के साथ गिरे ओले भी। जोरदार बारिश से तापमान में आई गिरावट, लोगों को गर्मी से मिली राहत। अमरावती में नौतपा की तपिश के बीच में राहत की फुहार, बारिश संग जमकर गिरे ओले। भारी बारिश और ओले गिरने से सड़कों पर जलभराव हुआ, यातायात बाधित हुआ। श्रीगंगानगर में बारिश के साथ जमकर गिरे ओले, तापमान में आई गिरावट। झांसी में मौसम ने बदला मिजाज, कई इलाकों में बारिश के साथ गिरे ओले भी। बारिश और ओले गिरने से तापमान में आई गिरावट, लोगों को गर्मी से मिली राहत। अयोध्या में सुबह सुबह हुई जोरदार बारिश, तापमान में आई गिरावट। वाराणसी में झमाझम हुई बरसात, लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत। धौलपुर में मौसम ने ली करवट, झमाझम हुई बरसात। सुकमा में भी मौसम का बदला मिजाज, कई इलाकों में हुई आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश। जोरदार बारिश से सड़कों पर गिरे पेड़, यातायात भी प्रभावित हुआ। दार्जिलिंग में मौसम ने ली करवट, जमकर हुई बरसात। भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने, पानी के तेज बहाव में बह गई बाइक। देहरादून के कई इलाकों में बिजली के साथ हुई जोरदार बारिश, गर्मी से लोगों को मिली राहत। पटना में सुबह सुबह बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हुई जोरदार बारिश। भारी बारिश से तापमान में आई भारी गिरावट, लोगों को मिली गर्मी से राहत। उत्तर भारत में गर्मी के चलते पर्यटकों से गुलजार हुआ श्रीनगर, बड़ी संख्या में श्रीनगर पहुंच रहे सैलानी। सैलानी शिकारा राइड का आनंद ले रहे, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए। सैलानियों की बढ़ती संख्या से मसूरी में लगा वाहनों का लंबा जाम, रिंगती दिखाई दी गाड़ियां। बिहार में तेज आंधी और बारिश का रेड अलर्ट जारी, भोजपुर, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पटना, नालंदा, पूर्वी चंपारण समेत कई इलाकों में जोरदार बारिश होगी। यूपी में भी आंधी तूफान और बारिश के साथ ओले गिरने का अलर्ट, अगले 3 दिन तक होगी बारिश। बंगाल के कई इलाकों में आंधी तूफान और बारिश का रेड अलर्ट जारी, बारिश के साथ चलेंगी तेज हवाएं। बंगाल के रूलिया में झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना, भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत। प्रयागराज में भारी बारिश से कई जगहों पर जलभराव हुआ, पानी में मस्ती करते दिखे बच्चे। भुवनेश्वर में विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस पर वॉकेथॉन का आयोजन किया गया, बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए। मुरादाबाद में मुस्लिम कारीगरों ने सांस्कृतिक विषयों पर श्री राम वाटिका और आरएसएस राष्ट्रीय जागरूकता स्मारक का प्रदर्शन किया। झारखंड के रामगढ़ जिले के कुजू में 120 साल पुराना मंदिर मस्जिद आज भी गंगा जमुनी तहजीब की बन रहे हैं मिसाल।

मंदिर मस्जिद के साथ होने के बावजूद 120 साल में कभी नहीं हुआ विवाद, सद्भावना के साथ मनाया जाता है हर त्योहार। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर आधिकारिक पुस्तक का विमोचन किया, कहा ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान डरा। कावेरी कॉलिंग प्रोजेक्ट के जरिए 242 करोड़ पौधों के साथ कावेरी नदी को फिर से पुराना स्वरूप देने की मुहिम, विश्व पर्यावरण दिवस से पहले सेव सॉयल मूवमेंट से जुड़े यूएन सम्मानित किसान वल्लुवन ने बताए ट्री बेस्ड एग्रीकल्चर के फायदे। कसार देवी में विदेशी पर्यटक मार्क रोज जंगल और मंदिर परिसर से हर रोज कूड़ा साफ करने की मुहिम चला रहे। कसार देवी क्षेत्र में इंग्लैंड के मार्क हर रोज 2 से 3 घंटे साफ सफाई करते हैं, स्थानीय डीएम ने सराहनीय पहल की जमकर तारीफ की है। गुजरात के भुज पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने बॉर्डर का मुआयना किया, G7 सीमा चौकी पर किया पौधारोपण। माँ वैष्णो देवी के दरबार में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने टेका मत्था, प्रदेश की खुशहाली की दुआ मांगी। ओडिशा के किसान ने उगाया दुनिया का सबसे महंगा आम मियाज़ाकी, 1.5 लाख से 3 लाख तक बताई जा रही इसकी कीमत। आम का एक एक फल 1 किलो से ज्यादा वजन का आम को देखने पहुंच रहे लोग। सरिस्का में गूंजे किलकारी, बाघिन ST-22 ने 3 शावकों को जन्म दिया, बाघों की संख्या 55 हुई। नागपुर में कुएं में गिरा बाघ, वन विभाग की टीम ने बाघ का किया सफल रेस्क्यू। अगरतला में राज्यपाल इंद्र सेना रेड्डी नल्लू ने गरिमा उत्सव 2026 का उद्घाटन किया, डिजिटल वन अधिकार अधिनियम का शुभारंभ किया।

अपकमिंग माइथोलॉजिकल रामायण बनी भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म. रणवीर कपूर निभाएंगे भगवान राम का किरदार. नमित मल्होत्रा ने रणवीर कपूर को दिया था रामायण का ऑफर. लंदन में हुई थी रामायण को लेकर रणवीर और नमित की पहली मुलाकात.

0: दर्शकों को आज मनोरंजन का मेगा डोज मिलने वाला है। सिनेमाघरों में 9 मई 9 नई फिल्में रिलीज, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 5 नई फिल्में और सीरीज रिलीज।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: Jack FM, now playing what we want, commercial free on TuneIn Premium.
3: What about me, Jack? What about me?
2: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
4: Well played, Jack. Well played.
2: Jack FM, playing what we want.
5: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
6: पक रही होती खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: कौन सा शुभ योग जीवन में ऐश्वर्य देता है? शुक्र का कौन सा शुभ योग सुख तो देता है लेकिन माता के सुख में कमी कर देता है? कौन से हैं शुक्र के शुभ योग और क्या है उनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान अब बड़े पर्दे पर एक नहीं बल्कि दो दो धमाके करने की पूरी तैयारी में हैं। उन्होंने अपनी दो आने वाली फिल्मों की डेट फाइनल करनी शुरू कर दी है। इनमें से एक फिल्म क्रिकेट पर बेस्ड होगी जबकि दूसरी थ्री इडियट्स की सीक्वल है। दर्शकों को इन दोनों ही फिल्मों से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं।

0: बड़े पर्दे पर धमाल का इंतजार कर रहे आमिर खान के फैंस को इस सुपरस्टार की तरफ से मिली गुड न्यूज ने और उत्साहित कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आमिर खान ने अपने दो नए और बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए तारीखें पक्की करनी शुरू कर दी हैं। आमिर खान ने पहले ही कहा था कि वो सिर्फ प्रोड्यूसर के तौर पर ही नहीं बल्कि एक्टर के तौर पर भी और ज्यादा फिल्में करेंगे। अब आमिर खान के इन दो नए प्रोजेक्ट्स ने फैंस की बेसब्री को और बढ़ा दिया है। आमिर खान के आने वाले प्रोजेक्ट्स में एक फिल्म 1952 की ऐतिहासिक भारत पाकिस्तान टेस्ट सीरीज पर आधारित है। इस फिल्म का डायरेक्शन लगान फेम डायरेक्टर आशुतोष गोवरकर कर रहे हैं। आमिर खान अपनी आने वाली दो फिल्मों में पहले क्रिकेट बेस्ड इसी फिल्म पर काम करेंगे। इस फिल्म की कहानी लाला अमरनाथ से जुड़ी है। बताया जा रहा है कि फिल्म की शूटिंग इसी साल अक्टूबर या नवंबर के महीने में शुरू हो सकती है। आमिर खान ने ये फिल्म पहले इसलिए चुनी क्योंकि प्रोडक्शन के लिहाज से ये फिल्म ज्यादा रेडी है। फिल्म की स्क्रिप्ट लॉक हो चुकी है और प्री प्रोडक्शन का काम भी शुरू हो चुका है। सूत्रों की माने तो इस फिल्म में फरहान अख्तर पाकिस्तानी क्रिकेटर के रोल में नजर आएंगे। फरहान ही इस फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं। दूसरी तरफ आमिर थ्री इडियट्स के सीक्वल पर भी काम कर रहे हैं। इस फिल्म का मेन प्लॉट भी लॉक हो चुका है। राजकुमार हिरानी और अभिजात जोशी मिलकर इस फिल्म की राइटिंग पर काम कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो फिल्म के स्क्रीन प्ले के 3 से 4 ड्राफ्ट लिखे जा चुके हैं, लेकिन आमिर खान ने स्क्रिप्ट में कुछ और बदलाव करने की सलाह दी है। थ्री इडियट्स की गिनती अपने दौर की सबसे कामयाब फिल्मों में होती है। ऐसे में ऑडियंस को इसके सीक्वल से भी उम्मीदें काफी ज्यादा हैं। आमिर भी इस बात को बखूबी समझते हैं और इस फिल्म को तैयार करने में पूरा जोर लगाने को तैयार हैं। इस फिल्म पर अगले साल से काम शुरू होने की उम्मीद है। अब दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है आमिर के इन दोनों मेगा प्रोजेक्ट्स के पूरे होने का, क्योंकि ये दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर नया धमाका कर सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: करीब 1.5 साल के बाद कंगना रनौत बड़े पर्दे पर धमाकेदार वापसी कर रही हैं। कंगना की आने वाली फिल्म भारत भाग्य विधाता का फर्स्ट लुक जारी कर दिया गया है। इस फिल्म में कंगना एक सच्ची कहानी को बड़े पर्दे पर पेश कर रही है। कैसा है फिल्म में कंगना का फर्स्ट लुक, चलिए आपको दिखाते हैं।
2: बड़े पर्दे पर कंगना रनौत की धमाकेदार वापसी। करीब 1.5 साल बाद एक बार फिर सच्ची कहानी को दर्शकों के सामने लाएंगी कंगना। इमरजेंसी में अपनी शानदार एक्टिंग का लोहा मनवाने के बाद कंगना अब लेकर आ रही है भारत भाग्य विधाता। इस फिल्म की अनाउंसमेंट तो पहले ही हो चुकी थी, रिलीज डेट से भी पर्दा उठ चुका था, लेकिन इस फिल्म के लिए दर्शकों की बेसब्री तब और बढ़ गई जब इस फिल्म का फर्स्ट लुक सबके सामने आया।
3: कुछ खास करके आम ही कहलाते, वो दिखते तो हैं पर नजर नहीं आते। भारत भाग्य विधाता, द अनसीन हीरोज।
2: गुरुवार को इंस्टाग्राम पर भारत भाग्य विधाता का मोशन पोस्टर जारी किया गया। इस मोशन पोस्टर में कंगना के फर्स्ट लुक ने दर्शकों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। पोस्टर में कंगना का लुक बेहद इंटेंस है। मोशन पोस्टर में कंगना अपनी जान पर खेलकर किसी की जान बचाती नजर आ रही हैं। ये फिल्म मुंबई टेरर अटैक पर बेस्ड है। पोस्टर से अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये फिल्म उन हीरोज के बारे में है जो आम तौर पर दुनिया को नजर नहीं आते, लेकिन मुसीबत आने पर ये हीरो इंसानियत की रक्षा का सबसे बड़ा कवच बन जाते हैं। पोस्टर के बैकग्राउंड में कंगना की आवाज इस मोशन पोस्टर को और भी खास बना रही है।
3: दिखते तो हैं पर नजर नहीं आते। भारत भाग्य विधाता, द अनसीन हीरोज।
2: ये फिल्म मुंबई टेरर अटैक की कुछ अनसुनी दास्ता को दुनिया के सामने लाएगी। इस फिल्म में कंगना के साथ गिरजा ओक, स्मिता तांबे, अमृता नामदेव, रसिका अगासे और जाहिद खान भी नजर आएंगे। फिल्म के राइटर और डायरेक्टर मनोज तपाड़िया हैं। अब दर्शकों को इंतजार है फिल्म के रिलीज का। उम्मीद की जा रही है कि इमरजेंसी की तरह ही इस बार भी कंगना का किरदार कुछ नयापन लिए हुए होगा। कंगना रनौत की फिल्म भारत भाग्य विधाता 12 जून को सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। इसी दिन इम्तियाज अली की मैं वापस आऊंगा भी रिलीज हो रही है। इम्तियाज की फिल्म से भी दर्शकों को काफी उम्मीदें हैं। जाहिर है जून में बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों फिल्मों का जबरदस्त क्लैश होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: TuneIn has the music.
6: Take a vacation with poolside hits on TuneIn. TuneIn Poolside has the music I love. Vibe out in your poolside cabana with hits from iconic artists like Calvin Harris, Avicii, Bloom, and more. Listen to the best blend of house, techno, trance, and more from the hottest DJs. And get your pool party started. Just search Poolside or ask your device to play Poolside on TuneIn. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: कौन सा शुभ योग जीवन में ऐश्वर्य देता है? शुक्र का कौन सा शुभ योग सुख तो देता है लेकिन माता के सुख में कमी कर देता है? कौन से हैं शुक्र के शुभ योग और क्या है उनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
4: लखनऊ के साईं भक्त ने बाबा को भेंट किया स्वर्ण मुकुट, बेशकीमती पत्थरों से बने एक कमल पर उकेरा गया ओम, 782 ग्राम के इस मुकुट पर दो मयूर की नक्काशी। कोलकाता में तेज हवाओं के साथ जमकर हुई बारिश, उमस और गर्मी से लोगों को मिली राहत, सड़कों पर गिरे पेड़ हटाने में जुटा प्रशासन। गुजरात के भुज पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने बॉर्डर का किया मुआयना, G7 सीमा चौकी पर किया पौधारोपण, BSF जवानों से की मुलाकात। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर पर लिखी पुस्तक का किया विमोचन, किताब में सैनिकों के साहस और शौर्य का जिक्र, वतन के रखवालों की वीरगाथा जानने का मौका। उत्तराखंड के पहाड़ों को प्लास्टिक कचरा मुक्त बनाने में जुटा इंग्लैंड से आया मेहमान, अल्मोड़ा के कसारदेवी इलाके में हर रोज स्वच्छता अभियान चलाते हैं मार्क। रेलवे ट्रैक के रेलबाजों पर प्रशासन हुआ सख्त, झांसी रेलवे स्टेशन पर ड्रोन कैमरों से की जा रही है लाइव निगरानी, संदिग्ध और पत्थरबाजों पर पैनी नजर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत।
1: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की। रामनगरी अयोध्या में आज शक्ति उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें मंदिर परिसर में स्थित भगवती मंदिर में ध्वजारोहण किया गया और खास बात ये रही कि इसे पूरी तरह से महिलाओं ने संपन्न किया है। ऐसे में आज की हमारी जो पहली गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। अयोध्या में आध्यात्म श्रद्धा और मातृ शक्ति का संगम। आपको बता दें कि आज रामनगरी अयोध्या स्थित भव्य राम मंदिर परिसर में आध्यात्म श्रद्धा और मातृशक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। आज राम मंदिर परिसर के दुर्गा मंदिर में ध्वजारोहण समारोह आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम नारी शक्ति को समर्पित है। इसमें 3500 से ज्यादा महिला संत समारोह का हिस्सा बनी। इस अवसर पर अयोध्या में कई धार्मिक अनुष्ठान किए गए, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। और इस ऐतिहासिक आयोजन की खास बात ये रही कि ध्वजारोहण की पूरी प्रक्रिया महिलाओं ने संपन्न की। साध्वी रतम्बरा ने मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया। साध्वी रतम्बरा के साथ राम मंदिर की सुरक्षा में तैनात सीआरपीएफ की महिला जवान ध्वजारोहण की रस्सी खींचकर कार्यक्रम को उन्होंने पूरा किया। राम मंदिर की सुरक्षा में तैनात पीएसी की महिला कमांडो और मंदिर परिसर में कार्यरत महिलाएं भी इस भव्य आयोजन का हिस्सा बनी। तो तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरह से आज ये ध्वजारोहण कार्यक्रम संपन्न हुआ। लगभग 3500 महिलाओं ने इस ध्वजारोहण कार्यक्रम का वो हिस्सा बनी और इसे पूर्ण किया, संपन्न करवाया। मां भगवती मंदिर के शिखर पर ये ध्वजारोहण कार्यक्रम हुआ है, जो कि राम मंदिर परिसर में ही मौजूद है और इसकी साक्षी लगभग 3500 महिलाएं हुई। साध्वी रतम्बरा इस मौके पर मौजूद थी, उन्होंने ध्वजारोहण के कार्यक्रम को पूर्ण किया। लेकिन साथ ही साथ जो महिला कमांडो वहाँ मौजूद थी, जो पीएसी की अधिकारी थी वो मौजूद थी, तमाम लोगों ने यहाँ पर ध्वजारोहण कार्यक्रम को संपन्न कराया। तो मातृशक्ति का एक अनुपम अनूठा और गौरवमय दृश्य आज अयोध्या में देखने को मिला। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से मंदिर परिसर पर ध्वजारोहण किया जा रहा है। हमारे संवाददाता मयंक शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मयंक, वाकई हमने कई इस तरह के कार्यक्रम देखे हैं, लेकिन ये कार्यक्रम आज जो राम मंदिर में संपन्न हुआ है ये अपने आप में अनूठा है कई मायनों में। सबसे बड़ी बात ये कि आध्यात्म के साथ साथ आज पूरी तरह से मातृशक्ति को यहाँ पर हमने देखा, जो कि अद्भुत था, अनूठा और अनुपम था।
2: जी बिल्कुल, अयोध्या का ये ऐतिहासिक पल है जब महिलाओं के द्वारा जो है एक ध्वजारोहण हुआ, वो भी माँ भगवती के मंदिर पर, और वो भी आज माँ भगवती का वो विशेष दिन है शुक्रवार जो माना जाता है, उसको लेकर यहाँ पे जो महिलाएं हैं वो काफी भावुक भी नजर आई कहीं ना कहीं। और अभी भी आप देख रहे हो जो भीड़ है वो इस गेट से ही यहाँ पे एंट्री हुई थी। ये जगत गुरु रामानुजाचार्य द्वार है और इसी गेट से लोगों को अंदर एंट्री दिया गया। उसके बाद जो है यहाँ से वो 3500 से ज्यादा महिलाएं जो है इसके अंदर प्रवेश की थी। उसके बाद उसकी यहाँ पे साध्वी रतम्बरा थी जिनके हाथों जो है ध्वजारोहण किया गया। और साथ में जो है लगातार यहाँ पे जो महिलाएं थी वो काफी वो पल देखी, वो ऐतिहासिक पल देखी जब यहाँ पे वो माँ भगवती के मंदिर के ऊपर ध्वजारोहण का एक कार्यक्रम संपन्न हुआ। और अभी भी यहाँ पे महिलाएं जो है हाथों में प्रसाद लिए हैं वो निकलती जा रही है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हो जो भीड़ है, जो एकदम एक उत्सव सा लग रहा है, एक मेला सा लग रहा है, वो यहाँ पे आपको देखने मिल रहा होगा।
1: बिल्कुल, तस्वीरें लगातार हम देख रहे हैं, यहाँ भी मातृशक्ति देखने को मिल रही है अपने आप में ये अनूठा पल। जबकि आज राम मंदिर के इस परिसर में ध्वजारोहण का कार्यक्रम हुआ, 3500 महिलाएं इसकी साक्षी बनी। मयंक हमारे साथ लगातार बने हुए थे, जो हमें बता रहे थे कि किस तरह से इस पूरे कार्यक्रम को आज संपन्न किया गया। बहुत धन्यवाद आपका मयंक तमाम जानकारी के लिए। और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में तिब्बती सांस्कृतिक उत्सव के रंग बिरंगे रूप देखने को मिले। इस उत्सव का आयोजन सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन और तिब्बतन सेटलमेंट ऑफिस द्वारा किया गया। ये विशेष आयोजन दलाई लामा के 90वें जन्म दिवस को समर्पित है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो दूसरी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। धर्मशाला में तिब्बत सांस्कृतिक उत्सव आपको बता दें कि धर्मशाला में आयोजित तिब्बती संस्कृति उत्सव में तिब्बती संस्कृति, परंपरा, कला और खानपान के तमाम रंग हैं। लोगों के लिए मुफ्त चिकित्सा परामर्श और पारंपरिक तिब्बती दवाइयों की व्यवस्था भी है, ताकि लोग तिब्बती चिकित्सा पद्धति के बारे में जानकारी हासिल कर सकें।

0: रंग बिरंगे पारंपरिक परिधानों में सजे कलाकार, ढोल नगाड़ों और तिब्बती संगीत की मधुर धुनों पर थिरकते कदम और खूबसूरत वादियों में बिखरती संस्कृति की अनोखी छटा। तस्वीर है हिमाचल के धर्मशाला की, जहां तिब्बती सांस्कृतिक उत्सव के खूबसूरत रंग बिखरे हुए हैं। इस उत्सव का आयोजन सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन और तिब्बतन सेटलमेंट ऑफिस ने किया और धर्मशाला की वादियों में सजे इस सांस्कृतिक महोत्सव का उद्घाटन नव निर्वाचित श्री क्योंग ने किया। उद्घाटन समारोह के दौरान पारंपरिक तिब्बती रीति रिवाजों के बीच संस्कृति और अध्यात्म की झलक देखने को मिली। दरअसल ये उत्सव परम पावन दलाई लामा के 90वें जन्म दिवस को समर्पित किया गया है। साथ ही धर्मशाला में दलाई लामा के निवास के 67 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में इस कार्यक्रम का महत्व और भी बढ़ गया है। इस उत्सव का मकसद ही भारत में तिब्बती संस्कृति, परंपरा और विरासत को नई पीढ़ी तक पहुँचाना है।
1: हम लोगों ने सोचा कि तिब्बत के बारे में, क्योंकि तिब्बत के बारे में भारतीय लोगों को जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि भारत और तिब्बत का सीमा जो है वो अरुणाचल से लेके जम्मू कश्मीर तक जाते हैं। कल ही हमारे काफी विजिटर्स आए थे, डेलीगेट्स आए थे बाहर से, और एक ने हमको ये बताया कि म्यूजियम जाके पता चला कि तिब्बत कितना बड़ा है। तिब्बत बहुत बड़ा क्षेत्र है। लोगों के मन में ये सोच है कि तिब्बत एक भूटान जैसा छोटा सा देश है, वो नहीं। तो ये सब समझ में आने से फिर तिब्बत और भारत का संबंध, क्योंकि भारत तिब्बत का भाषा जो है वो भारत से आया।
0: ये उत्सव कल यानी 30 मई तक चलेगा, जिसमें तिब्बती कला, संस्कृति, खान पान और पारंपरिक जीवन शैली को बेहद आकर्षक तरीके से पेश किया जा रहा है। उत्सव स्थल पर लगे स्टॉल्स लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं।
2: उत्सव जो है इसका यहाँ पर आयोजन हो रहा है और जो हिज होलीनेस दलाई लामा जी हैं उनका 90th बर्थडे जो है उसके एयर जो है उसके उपलक्ष्य पर ये यहाँ पर सेलिब्रेशन है। मैं समझता हूँ कि भारतीय संस्कृति, तिब्बती संस्कृति जो है, ये दोनों का यहाँ पर एक संगम है।
0: उत्सव का सबसे खास आकर्षण है यहाँ की रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ, जहाँ स्कूली बच्चे और तिब्बती सांस्कृतिक दल हर दिन पारंपरिक नृत्य और संगीत के जरिए अपनी विरासत को पेश कर रहे हैं। ढोल नगाड़ों की थाप और लोक धुनों के बीच पूरा माहौल ही उत्साह और उल्लास से भर उठा है। इसके अलावा परम पावन दलाई लामा के जीवन पर आधारित हिंदी फिल्में और डॉक्यूमेंट्री फिल्मों की स्क्रीनिंग भी यहां हो रही है, जिससे इन फिल्मों के जरिए लोगों को दलाई लामा के संघर्ष, शांति, करुणा और मानवता के संदेश से परिचित कराया जा सके।
2: हम लोग यहां चाहे वो भारतीय हैं चाहे तिब्बती भाई बहन हैं, वो एक समाज की तरह साथ रहते हैं और को एग्जिस्ट कर रहे हैं, और इससे न केवल स्थानीय लोगों को बल्कि बाहर से भी जो पर्यटक आ रहे हैं उनको तिब्बती संस्कृति के प्रति जो है मुझे लगता है कि इससे बहुत ज्यादा उनको सीखने को भी मिलेगा, देखने को मिलेगा। तिब्बती समाज है, उनकी जो संस्कृति है और उनका जो यहाँ पर पूरा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है वो किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से रहन सहन है, उनका खान पान है, पहरावा है, सारी चीजों के लिए बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है।
0: 1959 में निर्वासन के बाद परम पावन दलाई लामा ने जब धर्मशाला को अपना निवास बनाया, तभी से ये शहर तिब्बती समुदाय की आस्था, संस्कृति और संघर्ष का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। आज धर्मशाला न सिर्फ तिब्बती समुदाय का दिल है, बल्कि दुनिया भर में शांति, करुणा और बौद्ध अध्यात्म की पहचान भी बन चुका है। ऐसे में ये उत्सव सिर्फ मनोरंजन का मंच नहीं, बल्कि तिब्बती समुदाय की पहचान, विरासत और सांस्कृतिक मूल्यों को दुनिया तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम भी बन गया है। धर्मशाला से पूजा शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
3: सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब में इन दिनों जोरदार बर्फबारी हो रही है, लेकिन बर्फ की सफेद चादर बिछे होने के बावजूद सिख श्रद्धालुओं का हौसला बरकरार है और लोग लगातार गुरुद्वारे पहुंचकर माथा टेक रहे हैं। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो है भारी बर्फबारी में हेमकुंड साहिब यात्रा। हेमकुंड साहिब में सुबह से लगातार बर्फ गिर रही है, यहां जबरदस्त ठंड के साथ आसमान से बर्फ के फाहे बरस रहे हैं। पवित्र सरोवर का पानी और भी ज्यादा ठंडा हो गया है, लेकिन इसके बावजूद सिख संगत में अपार उत्साह और श्रद्धा देखने को मिल रही है। भक्त बर्फ को चीरते हुए भी गुरुद्वारा साहिब पहुंचकर अरदास कर रहे हैं। हेमकुंड साहिब के कपाट 23 मई को खुले थे और अभी भी हेमकुंड साहिब में बर्फबारी का दौर थमा नहीं है। यहां हर तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछी हुई नजर आ रही है, लेकिन बर्फबारी के बावजूद 19 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई चढ़ने के बाद श्रद्धालु हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे में पहुंच रहे हैं और श्रद्धा और आस्था के साथ यहां गुरुद्वारे में मत्था टेक रहे हैं। यहां चारों ओर बर्फ पड़ी हुई है और ऐसा लग रहा है जैसे कि आसमान से बरसते बर्फ के टुकड़े जमीन पर श्रद्धालुओं का स्वागत कर रहे हैं।
4: सिखों का जो पवित्र तीर्थ स्थल है हेमकुंड साहिब में रुक रुक कर बर्फबारी का दौर जारी है। आसमान में देख सकते हैं लगातार बादलों का डेरा है। मौसम विभाग ने पहले ही पहाड़ों में बारिश और बर्फ ऊंचाई वाली जगहों पर बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया था। ऐसे में हेमकुंड साहिब अत्यधिक ऊंचाई पर है, वहां पर लगातार रुक रुक कर बर्फबारी का दौर जारी है। ऐसे में अब तक 22,000 से अधिक श्रद्धालु हेमकुंड साहिब में मत्था टेक चुके हैं। सिख संगतें हैं देश और विदेश दोनों ही जगहों से इस समय हेमकुंड साहिब में पहुंच रहे हैं। ऐसे में बर्फबारी के बीच जहां रास्ता फिसलन भरा हो जाता है, वहीं SDRF जो सेवादार है, भारतीय सेना है, इन रास्तों पे लगी हुई है। यात्रियों को रास्ता पार कराने में जो व्यवस्थाएं हैं, गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी भी यहां पे लगातार यात्रियों की मदद के लिए खड़ी है। हालांकि सुबह से बर्फबारी देर रात से ही बर्फबारी यहां पे हो रही है। सुबह यहां बर्फ की सफ़ेद चादर हर तरफ दिखाई दी, इसके बावजूद भी श्रद्धालुओं का जो उत्साह है, एक तो कठिन यात्रा होती है 19 किलोमीटर की, दूसरा ऑक्सीजन की कमी होती है, लेकिन जो यहां पहुंचने वाले श्रद्धालु होते हैं, चाहे वो बुजुर्ग हों या बच्चे हों, हर किसी का उत्साह में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है।
3: दिल्ली के बाजारों में हर दिन हजारों लोग शॉपिंग करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन यहां सबसे मुश्किल काम होता है घंटों तक भारी बैग्स को उठाए रखना। लेकिन अब इसी परेशानी का समाधान लेकर आया है कैरीमैन नाम का एक स्टार्टअप। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है और वो है कैरीमैन से आसान हुई खरीदारी। आपको बता दें कि यहां शॉपिंग करने के दौरान अब आपको बैग उठाने वाले मिलेंगे जो न केवल बैग उठाएंगे बल्कि जरूरत पड़ने पर आपके लिए लाइन में भी लगेंगे और बच्चे को भी संभालेंगे।

0: दिल्ली के बाजारों में हर रोज बड़ी संख्या में लोग शॉपिंग करने पहुंचते हैं। शॉपिंग करने के दौरान उनकी सबसे बड़ी समस्या होती है सामानों को ढोने की, भारी बैग्स उठाने की। शॉपिंग के दौरान उपजा ये तनाव सारी शॉपिंग का मजा ही किरकिरा कर देता है। अब लोगों की इस परेशानी का समाधान करने के लिए आ गया है नया स्टार्टअप कैरी मैन। कैरी मैन के जरिए आपको मिलेगा शॉपिंग असिस्टेंट, जो शॉपिंग के दौरान आपका सामान उठाते हैं, जरूरत पड़ने पर लाइन में लगने का काम करते हैं, यहाँ तक कि वो भीड़ में रास्ता भी बनाते हैं।
1: भीड़ से भरी मार्केट है और जब भी आप किसी भी मार्केट में आते हो तो आपको चाहिए होता है आराम, लेकिन आराम नहीं मिल पाता क्योंकि आपको लगातार शॉपिंग करनी होती है और जो शॉपिंग बैग्स का जो बर्डन होता है वो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस देता है। तो उसी स्ट्रेस को दूर करते हुए कैरी मैन आपके पास जो है इस वक्त खुद आ चुके हैं। यू शॉप वी कैरी, यानी आप जो है अच्छे से शॉपिंग करो और जो सामान कैरी करने की जिम्मेदारी है वो पूरी तरीके से हमारी है।
0: दिल्ली के लाजपत नगर मार्केट में स्टार्टअप शुरू हुआ है। वो इस आइडिया को लागू किया है दिल्ली की दो महिलाओं डॉक्टर रितु कंडारी श्रीवास्तव और कनिष्का मल्होत्रा ने। यहाँ शॉपिंग करने वाले लोगों के लिए शॉपिंग असिस्टेंट बुक किए जा सकते हैं, जो शॉपिंग में आपकी मदद करेंगे। शॉपिंग के दौरान आपका सामान लेकर आपके साथ चलेंगे और जरूरत पड़ने पर आपके बच्चे को भी संभालेंगे।
1: आप देख सकते हैं कि गर्मी में जब भी आप आते हो तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है बैग्स उठाने की। कभी कभी पेरेंट्स ये भी सोचते हैं कि अगर हम बच्चों को लेकर जा रहे हैं तो बच्चों को हैंडल करें या अच्छे से शॉपिंग करें, तो उस सभी चीजों का, उस सभी परेशानियों का सॉल्यूशन ढूंढते हुए कैरी मैन जो है आपके पास यहाँ पर पहुंच गया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको बेबी प्रैम से लेकर हर एक तरीके की जो फैसिलिटी है, आपको बारिश हो गई है तो बारिश में आपको अम्ब्रेला भी प्रोवाइड करेगा, बेबी को कैरी भी करेगा, साथ ही साथ आपको आपका हर एक बैग, आपको लंबी लंबी लाइन में अगर लगना है, आपको कहीं कुछ खाने जाना है, तो हर तरीके की मदद आपको जो है ये कैरी मैन देने वाला है।
0: इस अनोखी स्टार्टअप को शुरू करने वाली रितु कंडारी श्रीवास्तव के मुताबिक उन्हें ये आइडिया उनको खुद के लिए हुए अनुभव के बाद आया। लोगों को शॉपिंग के दौरान होने वाली असुविधा को देखते हुए उन्होंने इस सेवा की शुरुआत की।
2: तो शादी के शॉपिंग जो होती है, इतने 20-20 किलो के लहंगे हमें उठा के लेके जाने हैं, इवन इफ बहुत सारे फैमिली मेंबर्स हैं तब भी कितना सामान कोई उठाएगा, तो वो लोग परेशान हो जाते थे साथ में। फिर अब तो हमारे हो गए हैं बेबीज जी, तो टॉडलर्स के साथ में इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज द बैग्स एंड द बेबी, तो आइडिया तो यहीं से आया है।
0: कैरी मैन सर्विस की शुरुआत 79 रुपए से होती है, जहां आपको आधे घंटे के लिए शॉपिंग असिस्टेंट मिलता है, जबकि एक घंटे के लिए आपको 119 रुपए चुकाने पड़ते हैं। इस सेवा की खास बात यह है कि पूरी तरह से सुरक्षित है, क्योंकि इसमें काम करने वाले सभी असिस्टेंट का पुलिस वेरिफिकेशन हो चुका है।
3: लेकिन हम ये मैं बताती हूँ आपको कि हम MCA पोर्टल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे वेरिफाइड है और पुलिस वेरिफिकेशन भी हमारे पास, तो इस ट्रस्ट का इशू नहीं आएगा।
0: कैरी मैन स्टार्टअप का दावा है कि उनकी सर्विस हिट है और कई लोग दोबारा भी उनकी सेवा ले रहे हैं। जिन लोगों ने कैरी मैन के साथ अपनी शॉपिंग को एक्सपीरियंस किया, उन्हें इस सर्विस से शॉपिंग अनुभव आसान और आरामदायक लगा।
4: इनोवेटिव आइडिया है, फर्स्ट टाइम आई वुड से लाइक इंडिया में एक्सपीरियंस करेंगे पीपल ये, तो आई वुड से लाइक ये सही है। अभी लाजपत नगर में इनिशिएटिव इन्होंने लिया है एंड रेट्स भी रीजनेबल है, रेट्स आई वुड नॉट से कि रेट्स बहुत ज़्यादा है, एंड एक मतलब एक काइंड ऑफ एक ये देख सकते हैं कि हमें सपोर्ट मिलेगी, काइंड ऑफ हम शॉपिंग से ले जा रहे हैं कहीं भी जा रहे हैं तो हमें सपोर्ट मिलेगी काइंड ऑफ एक।
5: इट्स अ गुड स्टार्टअप एंड आई थिंक इट्स अ गुड थिंग फॉर द पीपल ऑल्सो, एनीबॉडी वांट टू टेक द हेल्प
3: स्पेशली सीनियर सिटीजंस की बात करें, उनको भी हेल्प मिल जाएगी,
6: हेल्प चाहिए चाहिए।
0: कई लोगों को कैरी मैन के जरिए दी जा रही सर्विस काफी सुविधाजनक लग रही है, तो कुछ से लग्जरी सुविधा बता रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर इजी शॉपिंग करवाने से ये कॉन्सेप्ट खूब चर्चा में आ गया है। आने वाले वक्त में कैरी मैन चांदनी चौक में भी नजर आ सकता है,
1: चाहे कोई भी फेस्टिवल, क्योंकि हमारे जो है फेस्टिवल्स बहुत सारे, तो किसी भी फेस्टिवल की बात करें, दिवाली हो, दशहरा हो, राखी हो, या फिर शादी का सीजन हो, तो जब भी वेडिंग सीजन आता है तो यहाँ पैर रखने तक की जगह नहीं होती, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस टाइम पर शॉपिंग करना, भारी भारी बैग्स उठाना कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उन्हीं सबका हल ढूंढते हुए कैरी मैन आपके पास आ गया है फिलहाल लाजपत नगर में। कैमरा पर्सन इमैनुअल जोस के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली, गुड न्यूज़ टुडे।
7: हरा आम, पीला आम, लाल आम, ये आम तो आपने अक्सर बाजार में देखे होंगे, लेकिन अब बाजार में आ गया है जामुनी आम। जी हाँ, ये कोई आम आम नहीं बल्कि दुनिया के सबसे महंगे आमों में गिने जाने वाला जापानी आम है। इसी से जुड़ी हमारी अगली न्यूज है, यानी कि गुड न्यूज नंबर 5, और वो है किसान ने उगाया सबसे महंगा जापानी आम। देखिये, मियाज़ाकी आम, जिसका रंग देखकर लोग पहली नजर में इसे आम नहीं बल्कि किसी विदेशी फल समझ बैठते हैं, लेकिन ये बेहद मीठा और रसीला आम होता है, जो अब जापान में ही नहीं बल्कि भारत में भी उगाया जा रहा है। उड़ीसा के एक किसान ने अपने बाग में जापानी आम की खेती की है।
0: जिसका नाम सुनते ही हर किसी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। गर्मी का मौसम हो और आम की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन अब भारत में एक ऐसा आम आया है जो सिर्फ स्वाद ही नहीं बल्कि अपने रंग और कीमत से भी लोगों को हैरान कर रहा है। उड़ीसा के एक छोटे से आदिवासी गांव तमसा में जामुनी रंग का आम लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहां के किसान देवापाधियामी ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद इस बेहद खास आम की सफल खेती कर सभी को हैरान कर दिया है। करीब 4 साल पहले लगाए गए पौधों ने इस सीजन में पहली बार फल दिया और पेड़ पर उगे 17 चमचमाते मियाज़ाकी आम अब इलाके में चर्चा का विषय बन चुके हैं।
6: 4 साल पहले सरपंच सर मेरे को मियाज़ाकी मैंगो का पौधा दिए थे, वो पौधा लगाया। 4 साल का बाद आज आम हुआ है। गांव वाला आते हैं, देखते हैं गांव का आम तू कैसा पौधा लाए, इस तरह का पूछते है। सर ने मेरे को दिया है पौधा लगाने के लिए, पौधा कहाँ से लाया मेरे को मालूम नहीं, वो चार जानते हैं।
0: इस आम की खासियत सिर्फ इसका रंग नहीं बल्कि इसकी कीमत भी है। गहरे लाल और जामुनी रंग वाला ये आम बेहद मीठा, रसदार और प्रीमियम क्वालिटी के लिए जाना जाता है। अपने चमकदार लाल और जामुनी रंग की वजह से इसे सूर्य का अंडा भी कहा जाता है। दिखने में बेहद आकर्षक और स्वाद में शहद जैसी मिठास वाला ये आम दुनिया के सबसे लग्जरी फलों में गिना जाता है। एक आम का वजन 300 ग्राम से 400 ग्राम के बीच होता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मियाज़ाकी आम लाखों रुपए प्रति किलो तक बिकता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये आम इतना महंगा क्यों है? दरअसल मियाज़ाकी आम की खेती किसी साधारण आम की तरह नहीं होती। इसे उगाने के लिए बेहद खास तकनीक और लगातार निगरानी की जरूरत पड़ती है। हर आम को पेड़ पर खास जाल और कवर में रखा जाता है ताकि फल सुरक्षित रहें और गिरने पर खराब ना हो। इस आम को नियंत्रित धूप और तापमान में तैयार किया जाता है। इसमें मिठास का स्तर 15% या उससे ज्यादा होता है जो इसे बाकी आमों से अलग बनाता है। इस आम की खेती सीमित मात्रा में होती है और मांग ज्यादा होने के कारण इसकी कीमत आसमान छूती है। हालात ये हैं कि जापान में इस आम की सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए जाते हैं, कहीं CCTV लगाए जाते हैं तो कहीं गार्ड तैनात किए जाते हैं और इस आम की ये सुरक्षा भारत में भी की जा रही है। उड़ीसा के किसान को भी अपने इस अनोखे पेड़ की दिन भर निगरानी करनी पड़ती है,
6: इसीलिए रात में थोड़ा जगना पड़ते हैं।
8: किस चीज के लिए जगते
6: हो? हमारा दोस्त क्या आदमी लोग के ले जाएंगे ना,
8: लेके
6: छोड़ हो जाएगा बोलो।
0: हालांकि इस खास आम के लिए चुनौतियां केवल इतनी ही नहीं हैं, बल्कि इस बेशकीमती आम के लिए एक चुनौती ये भी है कि दूर दराज इलाके में ना तो प्रीमियम पैकेजिंग की सुविधा है, न कोल्ड स्टोरेज की, और न ही ऐसे खरीदारों तक पहुंच जो इन विदेशी आमों की असली कीमत चुका सके।
6: बेचने के लिए गवर्नमेंट को मैं मदद मांगना चाहता हूँ, कहाँ बेचना, कैसे बेचना।
8: जापान में क्या रहे थे, इंडिया में क्या रहे थे, इसके बारे में कुछ पता है आपको?
6: मेरे को पता बोलने से मोबाइल में तो बहुत रेट दिखता है, वो हमारा जापान का इधर 1-2 लाख का तो दिखता है, हमारा यहाँ क्या रेट है तो मेरे को पता नहीं।
0: अगर इन इलाकों में तकनीकी मदद, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और एक्सपोर्ट मार्केट से जोड़ने में सहायता मिले तो मियाज़ाकी जैसे प्रीमियम आमों की खेती आदिवासी किसानों की किस्मत बदल सकती है। अजय कुमार नाथ, मालकानगिरी, उड़ीसा, गुड न्यूज टुडे।
7: शिरडी में एक भक्त ने साईं बाबा को करीब 3500 किलो आम भेंट किए। इस भेंट से साईं प्रसादालय ने आम रस का निर्माण किया और इसके बाद उसे साईं प्रसादालय में श्रद्धालुओं के बीच वितरित कर दिया गया। ऐसे में अगली हमारी जो गुड न्यूज है, यानी कि छठी गुड न्यूज है, वो है साईं बाबा की सेवा में 3500 किलो आम। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के शिरूर तहसील के श्रद्धालु रविनारायण करगल हर साल आम की पहली खेप साईं बाबा के चरणों में दान करते आ रहे हैं। इस साल भी रवि ने 3507 किलो केसर आम साईं बाबा को भेंट किए। इसके बाद साईं बाबा ट्रस्ट ने इन आमों को साईं प्रसादालय को सौंप दिया, जिसके बाद साईं प्रसादालय ने इन आमों का रस निकालकर श्रद्धालुओं के बीच वितरित किया। साईं प्रसादालय ने इन आमों से मशीन के जरिए रस निकाला और करीब 60,000 श्रद्धालुओं का मुंह मीठा कराया। प्रसादालय में हर साल एक दिन आम रस के लिए निर्धारित रहता है और इस दिन प्रसाद के रूप में आम रस का वितरण शिरडी में किया जाता है। प्रसाद के रूप में आम रस मिलने से श्रद्धालु बेहद खुश नजर आए और उन्होंने इसके लिए मंदिर प्रबंधन को धन्यवाद किया। आईपीएल का सफर अब खत्म होने वाला है और भारतीय क्रिकेट टीम के अंतर्राष्ट्रीय मैचों का सिलसिला शुरू होने जा रहा है। 6 जून से अफगानिस्तान के खिलाफ शुरू हो रहे टेस्ट मैच के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है और इस टीम में जगह बनाने में सफल रहे हैं हर्ष दुबे। टीम में चुने जाने के बाद हर्ष दुबे नागपुर पहुंचे जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि 7वीं और आखिरी गुड न्यूज है टेस्ट टीम में चुने जाने पर हर्ष दुबे का स्वागत। आपको बता दें राष्ट्रीय टीम में चयन के बाद हर्ष दुबे पहली बार अपने घर नागपुर पहुंचे। यहां एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। भारतीय टेस्ट टीम में चयन होने के बाद हर्ष दुबे का हीरो जैसा स्वागत हुआ। परिवार और प्रशंसकों ने हर्ष दुबे के गृहनगर लौटने पर जश्न मनाया। नागपुर के क्रिकेटर हर्ष दुबे के करियर में ये एक बड़ी उपलब्धि है। हर्ष दुबे को पहली बार भारतीय टेस्ट टीम में जगह मिली है और पूरा नागपुर उनसे बेहद बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद लगाए बैठा है। हर्ष दुबे स्पिन गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं और वो बाएं हाथ से गेंदबाजी और बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं। हर्ष दुबे भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए खुद की पहचान बनाना चाहते हैं और वो खुद को किसी अनुभवी खिलाड़ी के विकल्प के तौर पर नहीं पहचाने जाना चाहते हैं। इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़।
10: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. Country roads.
11: Thank God I get to wake
10: and everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
12: Looking for an app to hear all your favorite music, news, sports, and more? We've got all your audio all in one place, right here on TuneIn. Play your favorite stations like Hey Buena.
13: La Que Buena.
12: ESPN Radio.
14: We know LeBron has to be the best player on the planet to
12: have. The Daily.
15: From the New York Times, I'm Katrin Benhold, and this is The Daily.
12: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
16: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
9: Good news today is really अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को।
17: तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हैं। इनमें से कुछ वीडियोस आपको हंसाएंगे, कुछ आपको गुदगुदाएंगे।
18: नवजात भाई को पहली बार देखकर छोटी बहन की खुशी देखने लायक है। ठुमक ठुमक कर चलते हुए वो मासूमियत से जमीन पर बैठ गई और अपने नन्हे भाई को गोद में लेने के लिए हाथ फैला दिए। उसकी चमकती आंखों और खिलखिलाती मुस्कान ने पूरे घर के माहौल में खुशियां भर दी। भाई को सीने से लगाने की उसकी मासूम चाहत ने सभी का दिल जीत लिया। ये खूबसूरत पल सिर्फ एक मुलाकात नहीं बल्कि भाई बहन के अनमोल रिश्ते और निश्चल प्रेम की प्यारी शुरुआत बन गया।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोग।
16: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
19: Hot Mics, now streaming on TuneIn, your go-to show for sports, politics, entertainment, tech, and pop culture. Hosted by me, Billy Bush. Get unfiltered takes, A-list guests, real talk, no fluff. Search Hot Mics or tell your device to play Hot Mics on TuneIn to start listening now.
10: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
9: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
20: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
21: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
22: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
21: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
23: और दुर्भाग्य कहता है
21: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
22: अविश्वास में विश्वास बसता है,
21: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
24: गुड न्यूज टुडे।
21: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.IN।
2: रामनगरी अयोध्या में माता दुर्गा मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ धार्मिक अनुष्ठान, साधु संतों के साथ लगा आस्था का मेला। ऋषिकेश में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन के साथ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की गंगा आरती, तीर्थ क्षेत्र के मुद्दों पर साधु संतों से मुलाकात और संवाद। लखनऊ के साईं भक्त ने बाबा को भेंट किया स्वर्ण मुकुट, बेशकीमती पत्थरों से बने कमल पर उकेरा गया ओम। 782 ग्राम के इस मुकुट पर दो मयूर की नक्काशी।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
2: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं, आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नई साजिश का रंग देकर उन्हें पेश किया जाता है, और लोग बिना सोचे समझे बिना परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहाँ हर किसी के हाथ में एक कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं, और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल, और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। तो आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे जिसमें सबसे पहले बात सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की होगी जिसके जरिए यह दावा किया जा रहा है कि वीडियो पश्चिम बंगाल का है, जहां घर पर बुलडोजर चलने के बाद एक शख्स फूट फूट कर रोने लगा। क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई, आगे बताएंगे। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी होगी जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि हाल ही में चीन के दौरे के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जासूसी करते कैमरे में कैद हो गए। एक भोज के दौरान वो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निजी नोट्स में ताक झांक करते हुए कैमरे में कैद हो गए। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
2: पश्चिम बंगाल की शुभेंदु अधिकारी की सरकार के नेतृत्व में अवैध कब्जों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई लगातार जारी है। सोशल मीडिया पर भी इस कार्रवाई से जोड़ते हुए वीडियोस लगातार वायरल हो रहे हैं। अब ऐसा एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ है जिसमें एक शख्स फूट फूट कर रोता नजर आ रहा है, और इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग ये दावा कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बुलडोजर एक्शन के बाद घर गवाने के बाद एक शख्स फूट फूट कर रोया। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, देखिए रिपोर्ट।
3: पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन और शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार बनने के बाद राज्य भर में अवैध निर्माणों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है। सरकार का दावा है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। इसी संदर्भ में ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। इसमें एक व्यक्ति फूट फूट कर रोता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में कुछ पुलिस वाले भी देखे जा सकते हैं। इसके अलावा तोड़फोड़ की आवाज भी सुनाई दे रही है। देखने में ये किसी बुलडोजर एक्शन के वक्त का लगता है। कुछ लोग इसे पश्चिम बंगाल का बताकर शेयर कर रहे हैं। फेसबुक पर इस वीडियो के साथ पश्चिम बंगाल से जुड़े हैशटैग्स लगाकर एक व्यक्ति ने लिखा, इन कंगालुओं को दहाड़े मार मार कर रोता देखकर दिल को बहुत अधिक सुकून मिल रहा है। #WestBengal, #Bengal, #TMC, #MamtaBanerjee। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
2: दरअसल सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में एक शख्स फूट फूट कर रोता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि वीडियो पश्चिम बंगाल का है, जहां पर बुलडोजर एक्शन में घर गंवाने के बाद ये शख्स फूट फूट कर रोने लगा।

0: दो तरह की वर्दी वो पहनते हैं। कोलकाता और हावड़ा क्षेत्र की पुलिस सफेद रंग की वर्दी पहनती है, जिस पर नीले रंग की बेल्ट और कंधे पर नीला रंग होता है, जबकि राज्य के अन्य सभी हिस्सों की बात की जाए तो पुलिस की वर्दी खाकी रंग की होती है, जबकि वीडियो में जो जवान दिख रहा है उनकी वर्दी का रंग अलग है। साथ ही सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, लिहाजा हमने इस सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल यही कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है और कहां का है। दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर वीडियो को पश्चिम बंगाल का बताकर भ्रम फैलाने की कोशिश तो नहीं हो रही। अब देखिए सच्चाई क्या है।
1: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वायरल वीडियो को गौर से देखा। वीडियो पर एक लोगो नजर आ रहा है। सर्च करने पर पता चला कि ये बांग्लादेश का एक न्यूज आउटलेट है। इस आउटलेट ने अपने ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट पर ये वीडियो 21 मई को पोस्ट किया था। पोस्ट के कैप्शन के मुताबिक ये शख्स अपनी आंखों के सामने अपना घर टूटता देख जोर जोर से रोने लगा। पोस्ट के कैप्शन में कलशी बस्ती हैशटैग का इस्तेमाल किया गया है। ये बस्ती ढाका के पास मीरपुर जोन के पल्लवी में स्थित है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस इलाके में बीते कुछ दिनों में बड़े पैमाने पर अवैध कब्जों को हटाने के लिए कार्रवाई की गई है। इस आउटलेट ने कलशी इलाके में हुई बुलडोजर कार्रवाई के और भी कई वीडियो फेसबुक पर पोस्ट किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस इलाके में सरकारी जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर कार्रवाई की गई थी। कार्रवाई के दौरान यहां रहने वाले लोगों और पुलिस वालों के बीच झड़प भी हो गई थी। कुछ स्थानीय लोगों ने पुलिस वालों पर हमला भी कर दिया था। इस तरह हमारी पड़ताल से साफ हो गया कि पश्चिम बंगाल नहीं बल्कि बांग्लादेश में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ हुई कार्रवाई के दौरान का वीडियो है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके जरिए कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये वायरल वीडियो हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के दौरान का है, जिसमें वो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नोटबुक में झांकते हुए नजर आ रहे हैं। बीजिंग में एक राजकीय भोज के दौरान जब शी जिनपिंग अपनी सीट से उठे तो ट्रंप ने उनकी मेज पर रखी नोटबुक खोलकर उसके पन्ने पलटे, उससे पढ़ने की कोशिश की। लेकिन वायरल दावे की सच्चाई क्या है, देखिए रिपोर्ट।

0: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में चीन की यात्रा की थी। इस दौरान उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय शिखर वार्ता भी की। ट्रंप ने राष्ट्रपति शी को सितंबर में व्हाइट हाउस आने का निमंत्रण दिया। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ट्रंप को शिखर सम्मेलन के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की निजी नोटबुक पर चुपके से नजर डालते हुए दिखाया गया है। वीडियो शेयर करते हुए एक एक्स यूजर ने लिखा, शी जिनपिंग के बीजिंग में एक भोज के दौरान जब वे कुछ देर के लिए दूर चले गए थे, तब ट्रंप को उनकी निजी नोटबुक पर चुपके से नजर डालते हुए पकड़ा गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे पर गए थे। उस दौरे के दौरान एक दृश्य सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिसके जरिए कुछ लोग ट्रंप की नीयत पर तंज कसते हुए दावा ये कर रहे हैं कि शी जिनपिंग के बीजिंग में एक भोज के दौरान जब वो कुछ देर के लिए दूर चले गए थे, तब ट्रंप को उनकी निजी नोटबुक पर चुपके से नजर डालते हुए कैमरे में साफ साफ देखा जा सकता है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की। फैक्ट चेक टीम ने दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान यह नजर आया कि ट्रंप एक फोल्डर को पलटते हुए देखे जा सकते हैं। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने फोल्डर पर नजर आ रहे प्रतीक चिन्ह को जूम करके करीब से देखा, तो सामने आया कि अमेरिकी राष्ट्रपति की मोहर से मिलता जुलता है। इसके बीचों बीच में चील भी दिख रही है, मतलब ये कि इस फोल्डर का चीनी राष्ट्रपति से कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट भी नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो।

0: सके, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा और हमारा पहला सवाल यही कि अगर वीडियो सच्चा है तो इसके बारे में कोई प्रमाणिक जानकारी क्यों नहीं मिली। हमारा दूसरा सवाल, कहीं जानबूझकर वीडियो को नया एंगल देकर वायरल तो नहीं किया जा रहा, सच और झूठ क्या है देखिए इस रिपोर्ट में।
1: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उन्हें सर्च किया। इस दौरान हमें 14 मई को एक न्यूज चैनल पर अपलोड वीडियो का एक लंबा संस्करण मिला। ये बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल्स में आयोजित राजकीय भोज का वीडियो था। लगभग 1 मिनट 50 सेकंड पर ट्रंप के बाईं ओर बैठे जिनपिंग उठते हैं और मंच की ओर चलते हैं। इसके बाद वायरल क्लिप में ट्रंप को अपनी बाईं ओर रखे फोल्डर को खोलते और कुछ पन्ने पलटते हुए दिखाया गया है। व्हाइट हाउस ने इस कार्यक्रम का एक अनकट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड किया था। वीडियो शुरू होने के 2 मिनट बाद देखा जा सकता है कि जिनपिंग उठते हैं। इसके तुरंत बाद ट्रंप अपने बाईं ओर रखे फोल्डर को खोलते हैं और कुछ पढ़ते हैं। वीडियो में आगे लगभग 12 मिनट पर जब जिनपिंग अपनी सीट पर वापस लौटे तो ट्रंप उठे, फोल्डर अपने साथ ले गए। उसे पोडियम पर रखा, कुछ पन्ने पलटे और उसमें से पढ़ना शुरू किया। यही दृश्य एक और वीडियो में 11 मिनट 50 सेकंड पर देखा जा सकता है। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि फोल्डर ट्रंप का था और अमेरिकी राष्ट्रपति अपने चीनी समकक्ष की निजी नोटबुक में ताक झांक नहीं कर रहे थे। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल दावा झूठा साबित हुआ। फोल्डर ट्रंप का है, चीनी राष्ट्रपति का नहीं। अभिषेक पाठक के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
0: फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ला।
3: रामनगरी में नारी शक्ति का आरोहण, अयोध्या में मातृशक्ति का सम्मान, धर्मशाला में तिब्बती संस्कृति की महक, श्रद्धा आस्था और समर्पण की परीक्षा। देखिए अच्छी खबर सच्ची खबर रात 8 बजे।
4: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
5: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
6: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
0: वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे, तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला
3: फैक्चर के आखिरी सफर का, जहां आपको दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
11: इन दिनों ये वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है, जिसमें एक छोटा बच्चा तालाब के पानी के ऊपर आराम से खड़ा हुआ दिखाई देता है। बच्चे का बैलेंस और कॉन्फिडेंस देखकर लोग हैरान रह जाते हैं, जबकि दूसरा बच्चा कुछ वैसा ही करने की कोशिश करता है लेकिन सफल नहीं हो पाता। यही फनी मोमेंट सोशल मीडिया यूजर्स को खूब पसंद आ रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि यहाँ गांव जैसा माहौल है और यहाँ तालाब के बीचों बीच एक छोटा बच्चा आराम से खड़ा है। तालाब के बीच बच्चा हाथ जोड़कर और आंखें बंद किए पूरे बैलेंस और कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि बच्चे के चेहरे पर जरा भी घबराहट नजर नहीं आती है। यही वजह है कि वीडियो देखने के बाद भी लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वीडियो के आखिरी हिस्से में जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलता है। एक दूसरा लड़का जब उसकी कॉपी करने पहुंचा तो ऐसा मजेदार हादसा हुआ कि इंटरनेट यूजर्स हंसते हंसते लोटपोट हो गए। दरअसल बच्चे ने पानी के अंदर एक स्टूल के सहारे बैलेंस को बनाया था। युवक ये समझ नहीं पाया और वो पानी में धड़ाम से गिर गया। सोशल मीडिया पर इन दिनों 4 साल 4 महीने के एक बच्चे का क्रिकेट वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पहली नजर में उसकी उम्र देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल लग रहा है कि ये इतनी कम उम्र में बैट संभाल पाएगा, लेकिन जैसे ही गेंदबाज उसकी तरफ तेज गेंद फेंकता है, बच्चा पूरे आत्मविश्वास के साथ शानदार शॉट खेल देता है। खास बात यह है कि वह शॉट सीधे कवर की दिशा में जाता है और गेंद सीमा रेखा के पार पहुंच जाती है। बच्चे का यह शॉट देखकर वहां मौजूद लोग भी दंग रह जाते हैं। वीडियो में देखने वाली सबसे दिलचस्प बात यह है कि गेंदबाज खुद बच्चे की बल्लेबाजी से इतना प्रभावित हो जाता है कि दौड़कर उसके पास आता है और उसके पैर छू लेता है। इसके बाद दोनों के बीच मजेदार अंदाज में पंच भी होता है और फिर वीडियो खत्म हो जाता है। हालांकि वीडियो छोटा है, लेकिन कुछ ही सेकंड के इस क्लिप ने लोगों का दिल जीत लिया है। अक्सर माना जाता है कि ढलती उम्र के साथ बुजुर्गों का खान पान सादा और सीमित हो जाता है, लेकिन इंस्टाग्राम पर वायरल हुई एक क्लिप ने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया है। इस वीडियो में एक 92 साल की दादी बड़े चाव से पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक का लुत्फ उठाती नजर आ रही है। वीडियो में दिख रहा है कि दादी पिज्जा के हर स्लाइस का पूरी शिद्दत से आनंद ले रही है। इस दौरान उनकी बच्चों जैसी खुशी देखने लायक है। पिज्जा खाते हुए उनके थम्स अप ने सोशल मीडिया यूजर्स का दिल जीत लिया है। कुल मिलाकर दादी का यह अंदाज बेहद मजेदार और जिंदा दिली से भरा हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर यूजर्स दंग है। वीडियो में एक शख्स सड़क पर पड़े गोबर को देखकर रुक जाता है और उसी गोबर पर आर्ट करके एक शानदार मास्टरपीस तैयार कर देता है। साधारण सी चीज को देखकर उसमें छुपी कला को बाहर निकालने वाला यह कलाकार अपनी क्रिएटिविटी के लिए सराहा जा रहा है। वीडियो में दिखाया गया है कि एक व्यस्त सड़क के किनारे गोबर पड़ा हुआ है। कलाकार उसे देखते ही रुक जाता है। वह अपने बैग से रंग, ब्रश और अन्य सामान निकालकर काम शुरू कर देता है। कुछ ही देर में गोबर पर खूबसूरत पैटर्न, फूल, ज्यामितीय डिजाइन और रंग बिरंगे आकर्षक नक्काशी बन जाती है। गोबर की सूरत ही बदल गई। जो चीज आमतौर पर लोग नाक भौं चढ़ाकर पार करते हैं, उसी को कलाकार ने आर्ट का रूप दे दिया। सोशल मीडिया पर इन दिनों ये भावुक वीडियो वायरल हो रहा है, जो इंसानों के दिल को छू रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि एक छोटा सा मेमना अपनी माँ से बिछड़ गया था। जब उसे अपनी माँ दिखी तो वह खुशी से दौड़कर उसके गले लग गया। माँ भी अपने बच्चे को देखते ही भावुक हो गई और मिलन का यह पल हर किसी को रुला गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि खुले आसमान के नीचे हरे भरे खेत में एक महिला मेमने को लेकर आ रही है। जैसे ही मेमना अपनी माँ को दूर से पहचानता है, वह अपनी छोटी छोटी टांगों से तेजी से दौड़ने लगता है। माँ भी अपने बच्चे की आवाज सुनकर बेचैन हो जाती है और आगे बढ़ती है। दोनों के मिलते ही माँ बेटे का गर्मजोशी भरा मिलन देखकर फिल्माने वाली महिला की आंखें भी नम हो जाती हैं। पास खड़ी गाय भी इस खुशी के पल में शामिल होती नजर आती है।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: रामनगरी में नारी शक्ति का आरोहण, अयोध्या में मातृशक्ति का सम्मान, धर्मशाला में तिब्बती संस्कृति की महक, श्रद्धा आस्था और समर्पण की परीक्षा। देखिए अच्छी खबर सच्ची खबर रात 8 बजे।
6: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
10: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
12: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
7: खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
13: गुड न्यूज टुडे।
15: शुक्र का कौन सा शुभ योग जीवन में ऐश्वर्य देता है? शुक्र का कौन सा शुभ योग सुख तो देता है, लेकिन माता के सुख में कमी कर देता है? कौन से हैं शुक्र के शुभ योग और क्या है उनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे
0: अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश न रह जाए और बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ कर लाए। ऐसी अच्छी और सच्ची खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं नवजोत सिंघावा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर हम आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले रामनगरी में नारी शक्ति का आरोहण, मां भगवती मंदिर के शिखर पर भव्य धर्म ध्वजा। धर्मशाला में तिब्बती संस्कृति, इतिहास और समृद्ध विरासत की झांकी आपको दिखाएंगे। और देवभूमि उत्तराखंड के पांचवें धाम श्री हेमकुंड साहिब में कैसा है श्रद्धा आस्था और समर्पण का मेला, ये भी आपको दिखाएंगे। शुरुआत है प्लेन्स के साथ।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। Sage University, transforming your passion into profession.
0: रामनगरी अयोध्या में माता दुर्गा मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ धार्मिक अनुष्ठान, साधु संतों के साथ लगा आस्था का मेला।

ऋषिकेश में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की गंगा आरती। तीर्थ क्षेत्र के मुद्दों पर साधु संतों से मुलाकात और संवाद। लखनऊ के साईं भक्त ने बाबा को भेंट किया स्वर्ण मुकुट। बेशकीमती पत्थरों से बने कमल पर उकेरा गया ओम। 782 ग्राम के इस मुकुट पर दो मयूर की नक्काशी। कोलकाता में तेज हवाओं के साथ जमकर हुई बारिश, उमस और गर्मी से लोगों को राहत। सड़कों पर गिरे पेड़ हटाने में जुटा प्रशासन। उत्तराखंड के पहाड़ों को प्लास्टिक कचरा मुक्त बनाने में जुटा इंग्लैंड से आया मेहमान। अल्मोड़ा के कसार देवी इलाके में हर रोज स्वच्छता अभियान चलाते हैं वहां। रेलवे ट्रैक के रीलबाजों पर प्रशासन हुआ सख्त। झांसी रेलवे स्टेशन पर ड्रोन कैमरों से की जा रही है लाइव निगरानी। संदिग्ध और पत्थरबाजों पर पैनी नजर। अच्छी और सच्ची खबरों में सबसे पहले आपको अयोध्या के शक्ति उत्सव की तस्वीरें दिखाते हैं। अब से कुछ ही देर पहले राम मंदिर परिसर के भगवती मंदिर में ध्वजारोहण समारोह संपन्न हुआ है और खास बात यह है कि राम मंदिर ट्रस्ट ने इस समारोह को मातृ शक्ति को समर्पित किया, लिहाजा 3500 से ज्यादा महिला संत और कार्यकर्ता इस समारोह का हिस्सा बनी। इस समारोह की सुरक्षा का जिम्मा भी सीआरपीएफ की महिला बटालियन ने ही संभाला।

0: ये राम की नगरी में माँ दुर्गा के धाम पर नारी शक्ति का आरोहण है। माँ भगवती के मंदिर शिखर पर लहराती है धर्म ध्वजा, एक नए अध्याय का श्री गणेश है जो संसार को मातृ शक्ति का स्थान बता रही है। अयोध्या के शक्ति उत्सव को निहारिए, ये वो विशेष पल है जब सीआरपीएफ की महिला विंग की जवानों ने ध्वज की रस्सियां खींची और साध्वी रितांबरा ने ध्वजारोहण की परंपरा के माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम की नगरी में मां के सम्मान को आस्था के शिखर तक पहुंचा दिया। बेशक इस पल का साक्षी बने हर श्रद्धालु के लिए ये कभी ना भुला पाने वाला लम्हा था।
1: तो राम जन्मभूमि में एक और महोत्सव आज पूर्ण हुआ है, क्योंकि आज जो है माँ जगदम्बा के मंदिर के ऊपर शिखर के ऊपर ध्वज लहराया है और यहाँ लगभग 3500 के ऊपर महिलाएं रही उपस्थित और लगातार यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इसी गेट से जो है इनकी एंट्री हुई थी और इसी गेट से अभी कुछ देर बाद ये बाहर निकल रही है और लगातार आप लोग ने ध्वजारोहण देखा अपने आप।
2: जी सर बहुत अच्छा लगा, ये अनुभव बहुत अच्छा लगा। इतने दिनों से हमारे पूर्वजों ने जो सपना देखा था आज पूरा हुआ। जय श्री राम।
1: कैसा लगा? बढ़िया भावुक भी लग रही
2: है। जी ये हमारे पूर्वजों का बहुत पुराना सपना था, इसी वजह से शायद हम बोल नहीं पा रहे हैं, शब्द मेरे पास नहीं है। इसीलिए ये सम्मान हम लोग महिलाओं को मिला, ये हमें बहुत अच्छा लगा कि ये सम्मान केवल हम औरतों के लिए।
0: सनातन संस्कृति में ध्वजारोहण महज एक परंपरा नहीं है बल्कि धर्म, विजय और सकारात्मक ऊर्जा का वो प्रतीक है जो कोसों दूर से मंदिर के शिखर पर लहराता नजर आता है, जिसके दर्शन मात्र से श्रद्धालुओं को असीम शक्ति और ऊर्जा मिलती है, आस्था भक्ति के धाम तक पहुंचने का मार्गदर्शन मिलता है। माँ भगवती के मंदिर पर ये ध्वजारोहण इसलिए विशेष रहा क्योंकि 3500 से ज्यादा मातृ शक्ति इस अद्भुत पल की साक्षी बनी।
3: बहुत दिन बाद मतलब ऐसा लगा कि हाँ, जो जितने लोगों ने इतने लड़ाई की थी, इतना चीजें हुई थी, तो उसका फल आज मिल गया है। बहुत सही है।
1: आपने अपनी आंखों से ध्वजारोहण देखी पहली बार आज राम मंदिर?
3: हाँ, बहुत हाँ, पहली बार मतलब इतनी बार हुआ लेकिन कभी आज तक नहीं देखा। और ये चीज बहुत अच्छा लगा कि स्पेशली वुमेन्स के लिए ये चीजें करवाई गई हैं।
4: सर्वप्रथम तो हम लोग पहले दर्शन ही किए, दर्शन करने के बाद ध्वजारोहण को अपनी आँख के सामने ऊपर उठते हुए शीर्ष तक यूं गर्दन ऐसे थी।
5: नारी का सम्मान हमेशा रहा, यत्र नारियस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी का सम्मान होता है, नारी का पूजा होती है हमारे यहाँ।
0: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस भव्य कार्यक्रम को मातृ शक्ति को समर्पित किया था, लिहाजा ध्वजारोहण समारोह में दुर्गा वाहिनी और मातृ शक्ति की करीब 230 कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया। साथ ही अयोध्या महानगर के 64 कार्य क्षेत्रों से जुड़ी करीब 3500 महिलाएं इस पल की साक्षी बनी। वृंदावन के वात्सल्य ग्राम की 163 महिला प्रतिनिधि भी इस खास अवसर पर उपस्थित रही। राम जन्मभूमि परिसर के 7 मंदिरों पर एक एक कर ध्वजारोहण का कार्यक्रम जारी है। इस सिलसिले का श्री गणेश पिछले 25 नवंबर को हुआ, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर मुख्य मंदिर पर ध्वजारोहण किया। 31 दिसंबर 2025 को अन्नपूर्णा मंदिर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ध्वज फहराया। इसके बाद भगवान सूर्यदेव के मंदिर के शिखर पर 26 मार्च 2026 को विधि विधान से ध्वजारोहण किया गया। हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर 2 अप्रैल को 75 फीट ऊंचे मंदिर हनुमान मंदिर के शिखर पर विधि विधान से भव्य धर्म ध्वजा फहराएगी। फिर 11 अप्रैल को गणेश मंदिर पर ध्वजारोहण हुआ। वही 29 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिव मंदिर पर ध्वजारोहण किया था और आज साध्वी रितांबरा ने भगवती मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण कर रामनगरी में आस्था, भक्ति और अध्यात्म के वैभव को शिखर तक पहुंचा दिया। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: आगे बढ़ते माँ धर्मशाला में आयोजित ऐसे उत्सव की जहाँ तिब्बती संस्कृति की महक है। तिब्बती समुदाय के गौरवशाली इतिहास और समृद्ध विरासत की झांकी दिख रही है। 30 मई तक चलने वाले इस तिब्बती सांस्कृतिक उत्सव में आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा के 90वें जन्मदिन को मनाया जाएगा और इस महोत्सव में पारंपरिक तिब्बती कला, खान पान और कला से जुड़ी गतिविधियां होंगी।

बौद्ध मठों के लिए मशहूर धर्मशाला, जिसकी फिजा में तिब्बती संस्कृति की महक है। धौलाधार पर्वतमाला में मौजूद इस इलाके में जीवन का आधार बौद्ध धर्म है, जो तिब्बत संस्कृति के समृद्ध और जीवंत इतिहास को भी दर्शाता है। तिब्बती समुदाय की साझी विरासत, खानपान, लोक कलाओं और सदियों पुरानी परंपराओं की अनूठी सुगंध, जो पीढ़ियों से संजो कर रखा गया है, उसकी झलक धर्मशाला में दिख रही है। धर्मशाला के पुलिस मैदान में पिछले दो दिनों से तिब्बती सांस्कृतिक उत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है। ये विशेष महोत्सव आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा के 90वें जन्मदिन को समर्पित है। साथ ही धर्मशाला में उनके निवास के करीब 67 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भी इस कार्यक्रम को बेहद खास माना जा रहा है। मई तक चलने वाले इस महोत्सव में तिब्बती संस्कृति का इतिहास, विरासत और परंपराओं की झांकी दिख रही है। आम लोगों को मठों की वास्तुकला, पारंपरिक कला, हस्तशिल्प को समझने बूझने का मौका मिल रहा है। कलाकारों और स्कूली बच्चों की तरफ से शानदार पारंपरिक गीतों और तिब्बती सर्कल डांस गोरशी को सबके सामने पेश किया जा रहा है।

0: लोगों के साथ फूडीज का ध्यान अपने ओर आकर्षित किया है। तिब्बती सांस्कृतिक उत्सव में मेजी खांग की ओर से लोगों के लिए मुफ्त चिकित्सा परामर्श और पारंपरिक तिब्बती दवाइयों की व्यवस्था भी की गई है, ताकि महोत्सव का आनंद लेने वाले लोगों को तिब्बती चिकित्सा पद्धति के बारे में भी जानकारी मिल सके। दो दिन पहले 17वें निर्वासित तिब्बती सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले पेपा सेरिंग भी महोत्सव में मौजूद रहे। उन्होंने साफ किया है कि ऐसी सांस्कृतिक प्रदर्शनी और कार्यक्रमों का मकसद देश के आम लोगों को तिब्बत के इतिहास, संस्कृति और उसके भू राजनीतिक महत्व से अवगत कराना है।
1: हम लोगों ने सोचा कि तिब्बत के बारे में, क्योंकि तिब्बत के बारे में भारतीय लोगों को जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि भारत और तिब्बत का सीमा जो है वो अरुणाचल से लेके जम्मू कश्मीर तक जाते हैं। कल ही हमारे काफी विजिटर्स आए थे, डेलीगेट्स आए थे बाहर से, और एक ने हमको ये बताया कि म्यूजियम जाके पता चला कि तिब्बत कितना बड़ा है। तिब्बत बहुत बड़ा क्षेत्र है। लोगों के मन में ये सोच है कि तिब्बत एक भूटान जैसा छोटा सा देश है, वो नहीं। तो ये सब समझ में आने से फिर तिब्बत और भारत का संबंध, क्योंकि भारत तिब्बत का भाषा जो है वो भारत से आया।
0: तिब्बती समुदाय की सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ा ये महोत्सव भारतीय और तिब्बती संस्कृति के संगम का प्रतीक भी है।
2: तिब्बती सांस्कृतिक उत्सव जो है इसका यहाँ पर आयोजन हो रहा है, और जो हिज होलीनेस दलाई लामा जी हैं उनका 90th बर्थडे जो है उसके एयर जो है उसके उपलक्ष्य पर ये यहाँ पर सेलिब्रेशन है। मैं समझता हूँ कि भारतीय संस्कृति, तिब्बती संस्कृति जो है, ये दोनों का यहाँ पर एक संगम है।
0: 3 दिनों के तिब्बती सांस्कृतिक उत्सव के दौरान परम पावन दलाई लामा के जीवन पर आधारित हिंदी फिल्मों और डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग भी हो रही है, जिससे लोग उनके जीवन, संघर्ष और विचारों को करीब से समझे और भारत और तिब्बत के बीच सदियों पुराने अटूट संबंधों को और मजबूती मिले। धर्मशाला से पूजा शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: चलिए अब बात करते हैं आस्था की कठिन डगर पर चलने वाले सिख श्रद्धालुओं की। सिख समुदाय के बड़े तीर्थ स्थलों में शामिल श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा तक दर्शन करने पहुंचना प्राकृतिक चुनौतियों से भरा है। दुनिया के सबसे ऊंचे गुरुद्वारे तक पहुंचना श्रद्धालुओं के लिए कठिन तपस्या जैसा है। उत्तराखंड में भी मौसम बदला हुआ है, जिसकी वजह से श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा साहिब और वहां मौजूद अमृत सरोवर पर बर्फ की मोटी चादर है। ऊंची चोटियों से लेकर यात्रा मार्ग तक बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है, लेकिन फिर भी बर्फबारी और इस कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ है। 5 दिन पहले यात्रा शुरू होने के बाद से लेकर अब तक 22,500 से ज्यादा श्रद्धालु वहां पर पहुंचकर मत्था टेक चुके हैं। गोविंद घाट से श्री हेमकुंड साहिब तक 19 किलोमीटर की पैदल यात्रा है। सबसे मुश्किल रास्ता अटल कोटी ग्लेशियर से शुरू होता है, जिसमें आस्थावान श्रद्धालुओं को 6 किलोमीटर के पथरीले रास्ते से होकर जाना होता है। तो ऐसे में बर्फबारी की वजह से आस्था के मार्ग पर चलना काफी मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी हर साल की तरह इस साल भी बड़ी संख्या में देश और दुनिया से सिख श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं।

0: आस्था का ये कठिन मार्ग सिख समुदाय के लिए सबसे बड़ी आस्था के केंद्रों में शामिल हेमकुंड साहिब तक जाता है, जहां पहुंचने वालों के धैर्य, साहस और विश्वास की निरंतर परीक्षा चल रही है। हेमकुंड साहिब के कपाट खुले 5 दिन हो चुके हैं। सोमवार से ही उत्तराखंड के चमोली में विराजमान गुरु साहब के दरबार में माहौल भक्तिमय है। लेकिन इस बीच उत्तराखंड में अचानक मौसम बदल गया है। राज्य के ऊंचे इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है और हेमकुंड साहिब भी बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे और वहां मौजूद अमृत सरोवर पर बर्फ की मोटी चादर चढ़ी है। वहां पहुंचने वाले मार्ग सफेद बर्फ से छिप गए हैं। ऐसे में हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे तक दर्शन करने के लिए पहुंचना चुनौतियों से भरा हुआ साबित हो रहा है। दुनिया के सबसे ऊंचे गुरुद्वारे के दर्शन करना किसी भी श्रद्धालु के लिए कठिन तपस्या जैसा रहा है, और ऐसे माहौल में जब पैदल मार्ग के अलावा दोनों तरफ कई फीट तक बर्फ दिखाई दे रही हो, ये चुनौती कई गुना बढ़ गई है।
1: चमोली में एक बार फिर से मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हो रही है। सिखों का जो पवित्र तीर्थ स्थल है हेमकुंड साहिब में रुक रुक कर बर्फबारी का दौर जारी है। आसमान में देख सकते हैं लगातार बादलों का डेरा है। मौसम विभाग ने पहले ही पहाड़ों में बारिश और बर्फ ऊंचाई वाली जगहों पर बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया था। ऐसे में हेमकुंड साहिब अत्यधिक ऊंचाई पर है, वहां पे लगातार रुक रुक कर बर्फबारी का दौर जारी है।
0: आस्था के कठिन मार्ग पर चलने में श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, फिर भी उनका जोश बरकरार है। श्रद्धा और आस्था का भाव चरम पर है। मौसम का कठिन स्वरूप भी श्रद्धालुओं के कदम को थाम नहीं पा रहा। धीमे धीमे ही सही, लेकिन अड़िग कदमों से गुरु के दरबार की तरफ बढ़ रहे हैं।
1: 22,000 से अधिक श्रद्धालु हेमकुंड साहिब में मत्था टेक चुके हैं। सिख संगतें हैं देश और विदेश दोनों ही जगहों से इस समय हेमकुंड साहिब में पहुंच रहे हैं। ऐसे में बर्फबारी के बीच जहां रास्ता फिसलन भरा हो जाता है, वहीं SDRF जो सेवादार है, भारतीय सेना है, इन रास्तों पे लगी हुई है यात्रियों को रास्ता पार कराने में। जो व्यवस्थाएं हैं, गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी भी यहां पे लगातार यात्रियों की मदद के लिए खड़ी है। हालांकि सुबह से बर्फबारी, देर रात से ही बर्फबारी यहां पे हो रही है। सुबह यहां बर्फ की सफ़ेद चादर हर तरफ दिखाई दी, इसके बावजूद भी श्रद्धालुओं का जो उत्साह है, एक तो कठिन यात्रा होती है 19 किलोमीटर की, दूसरा ऑक्सीजन की कमी होती है, लेकिन जो यहां पहुंचने वाले श्रद्धालु होते हैं, चाहे वो बुजुर्ग हों या बच्चे हों, हर किसी के उत्साह में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। बर्फबारी है, कड़ाके की ठंड है, ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह अपनी अपार देखने को मिल रहा है।
0: गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक 19 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। सबसे मुश्किल रास्ता अटल कोटी ग्लेशियर से शुरू होता है, जिसमें आस्थावान श्रद्धालुओं को 6 किलोमीटर के पथरीले रास्ते पर भी चलना पड़ता है। फिर भी हर साल ही बड़ी संख्या में देश दुनिया से सिख श्रद्धालु गुरुद्वारे में मथा टेकने के लिए पहुंचते हैं। इस दौरान उनके लिए डंडी कंडी, पालकी, घोड़ा खच्चर की भी सुविधा होती है। सिख धर्म में ऐसी मान्यता है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने अपने पिछले जन्म में कई सालों तक इसी जगह महाकाल की तपस्या की थी। जिस जगह पर गुरु गोविंद सिंह जी ने ध्यान लगाया था, वहीं ये गुरुद्वारा बना हुआ है। गुरुद्वारे के साथ ही पवित्र सरोवर है, जिसे अमृत सरोवर या हिम सरोवर भी कहा जाता है। गुरुद्वारे में माथा टेकने से पहले सिख श्रद्धालु बर्फ से भी ठंडे इस पवित्र सरोवर में नहाते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में करीब 15,200 फीट ऊंचे ग्लेशियर में मौजूद श्री हेमकुंड साहिब को देवभूमि उत्तराखंड का 5वां धाम कहा जाता है। लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर होने की वजह से ये 5 महीने ही खुला रहता है। श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय मई से अक्टूबर के बीच होता है। उत्तराखंड में चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: राजधानी दिल्ली के लाजपत नगर बाजार में खरीदारी अब और आसान होने वाली है, क्योंकि एक स्टार्टअप कैरिवान ने सिर्फ 119 रुपए प्रति घंटे में शॉपिंग हेल्पर की सुविधा शुरू की है। ये मददगार कस्टमर्स के भारी बैग उठाएगा, दुकानों के रास्ते बताएगा और भीड़ में भी आपकी पूरी मदद करेगा।
0: बाजार
3: बाजार में घूमना और शॉपिंग करना हर कोई पसंद करता है, बशर्ते गैर जरूरी बोझ के बगैर। यानी जब खरीदारी हो जाए तो भारी भरकम सामान भी किसी बर्डन से कम नहीं लगता, तो उससे उपजा स्ट्रेस सारी शॉपिंग का ही मजा किरकिरा कर देता है। ऐसे में शॉपिंग के साथ कभी कभार बच्चों को भी संभालने की जिम्मेदारी कम नहीं होती। लेकिन अब इसी परेशानी का समाधान एक बिजनेस आइडिया के रूप में दिल्ली के लाजपत नगर में चर्चा बना हुआ है। ये स्टार्टअप है कैरीमैन।
4: भीड़ से भरी मार्केट है और जब भी आप किसी भी मार्केट में आते हो तो आपको चाहिए होता है आराम, लेकिन आराम नहीं मिल पाता क्योंकि आपको लगातार शॉपिंग करनी होती है और जो शॉपिंग बैग्स का जो बर्डन होता है वो कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेस देता है। तो उसी स्ट्रेस को दूर करते हुए कैरीमैन आपके पास जो है इस वक्त खुद आ चुके हैं। यू शॉप वी कैरी, यानी आप जो है अच्छे से शॉपिंग करो और जो सामान कैरी करने की जिम्मेदारी है वो पूरी तरीके से हमारी है।
3: यानी जब भी आप वहाँ बाजार में जाएं, शॉपिंग असिस्टेंट बुक करें, यहीं से असाइन किया हुआ एक असिस्टेंट आपका सामान लेकर आपके साथ चलेगा, बाजार की भीड़ में रास्ता बनाने में भी मदद करेगा और जरूरत पड़ने पर लाइन में भी खड़ा होगा।
4: कि गर्मी में जब भी आप आते हो तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है बैग्स उठाने की। कभी कभी पेरेंट्स ये भी सोचते हैं कि अगर हम बच्चों को लेकर जा रहे हैं तो बच्चों को हैंडल करें या अच्छे से शॉपिंग करें, तो उस सभी चीजों का, उस सभी परेशानियों का सॉल्यूशन ढूंढते हुए कैरीमैन जो है आपके पास यहाँ पर पहुंच गया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको बेबी प्रैम से लेकर हर एक तरीके की जो फैसिलिटी है, आपको बारिश हो गई है तो बारिश में आपको अम्ब्रेला भी प्रोवाइड करेगा, बेबी को कैरी भी करेगा, साथ ही साथ आपको आपका हर एक बैग, आपको लंबी लंबी लाइन में अगर लगना है, आपको कहीं कुछ खाने जाना है, तो हर तरीके की मदद आपको जो है ये कैरीमैन देने वाला है।
3: इस अनोखे स्टार्टअप को शुरू करने वाले कहते हैं कि ये आइडिया उनको खुद के साथ हुए अनुभव के बाद ही आया।
5: ये हम घर से ही आइडिया आया है, खुद की अपनी जो स्ट्रगल देख के। पहले तो थी ठीक है, शादी के टाइम पे पहले वाली हम यंग गर्ल्स हैं, हम उठा लेते थे, ऑल द फ्रस्ट्रेट हो जाते थे लेकिन उठा लेते थे। फिर शादी हुई तो शादी के शॉपिंग जो होती है, इतने 20-20 किलो के लहंगे हमें उठा के लेके जाने, इवन इफ बहुत सारे फैमिली मेंबर्स हैं तब भी कितना सामान कोई उठाएगा, तो वो लोग परेशान हो जाते थे साथ में। फिर अब तो हमारे हो गए हैं बेबीज भी, तो टॉडलर्स के साथ में इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज द बैग्स एंड द बेबी। तो आइडिया तो यहीं से आया है।
3: कैरीमैन दिल्ली के लाजपत नगर मार्केट में इस वक्त एक्टिव है, जहाँ इस सर्विस की शुरुआत 119 रुपए प्रति घंटा तय की गई है।
4: यहाँ पर जो है कस्टमर्स लगातार आ रहे हैं, जिस तरीके से आप लोग, अगर हम पैसों की बात करें, पैसों के लिए कभी किसी ने बोला कि ये बहुत ज्यादा चार्जेस है या नहीं?
6: ऐसा नहीं बोला अभी तक,
4: वो चीज नहीं बोला
6: अभी तक।
4: अच्छा,
6: नहीं
4: ये किसका सामान लेके जा रहे हैं आप?
6: कस्टमर के।
4: अच्छा, कस्टमर का सामान है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके के जो सामान आपको कैरी करते हुए कैरीमैन का सेटअप जो है पूरा दिख जाएगा।
3: कैरीमैन स्टार्टअप का दावा है कि उनकी सर्विस को कई लोग दोबारा भी ले रहे हैं।
7: हमारे 2-3 से काफी ज्यादा रिपीटेड कस्टमर्स भी आए अभी तक, और ये लोग काफी इंजॉय कर रहे हैं हमारी सर्विसेज, और अगर एक बार कोई ले रहा है ना तो उसको मजा ही आ रहा है पूरा सर्विस।
3: जिन लोगों ने कैरीमैन के साथ अपनी शॉपिंग को एक्सपीरियंस किया, उन्हीं से जान लेते हैं उन्हें कैसा लग रहा है ये यूनिक स्टार्टअप।
8: हेड ऑफ हो रहा है तो मैं सबसे पहले इनसे यही कहा, मेरे को केमिस्ट की मेरे को चाहिए, मेडिसिन चाहिए, मुझे वो दिलवा दो सबसे पहले।
4: लेकिन सर आपको उससे भी बेस्ट जगह पे लेकर आगे कैरीमैन के पास।
9: सामान उठाना बहुत मुश्किल है, है ना, कोई हेल्प करे, कोई मिले, कोई ऐसा, बहुत अच्छा है ये, अच्छा लग रहा है बहुत।
4: स्टार्टअप आपको कैसा लगा, कि एक अच्छा इनिशिएटिव है?
9: नहीं, ये सब जगह होना चाहिए, ये जो यहाँ पर देखा बहुत अच्छा लगा, तो ऐसा हर जगह मिलना चाहिए हमें, ऐसा है ना, हाँ, हर मार्केट में मिलना चाहिए, कोई हमारी हेल्प करने के लिए होना चाहिए।
10: अकॉर्डिंग लाइक इनोवेटिव आइडिया है, फर्स्ट टाइम आई वुड से लाइक इंडिया में एक्सपीरियंस करेंगे पीपल दे, तो आई वुड से लाइक ये सही है। अभी लाजपत नगर में इनिशिएटिव इन्होंने लिया है एंड रेट्स भी रीजनेबल है, रेट्स आई वुड नॉट से कि रेट्स बहुत ज्यादा है, एंड एक मतलब एक काइंड ऑफ एक ये देख सकते हैं कि हमें सपोर्ट मिलेगी, काइंड ऑफ हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं तो हमें सपोर्ट मिलेगी, काइंड ऑफ एक
11: इट्स अ गुड स्टार्टअप एंड आई थिंक इट्स अ गुड थिंग फॉर द पीपल ऑल्सो, एनीबॉडी वांट टू टेक द हेल्प,
4: स्पेशली सीनियर सिटीजंस की बात करें, उनको भी हेल्प मिल जाएगी,
12: हेल्प चाहिए चाहिए,
13: मतलब ठीक है, इट्स अ वेरी गुड फ्रेंड, आज मुझे पता चला, तो पहले पता होता तो डेफिनेटली मैं हेल्प लेती।
3: फिलहाल तो बगैर किसी टेंशन और बर्डन के कीजिए लाजपत नगर में शॉपिंग, क्योंकि यहाँ ये कैरीमैन स्टार्टअप आपकी सेवा में उपलब्ध है।
4: बात की जाए बेबी कैरियर की, बात की जाए बारिश आ जाए अम्ब्रेला की, बात की जाए कोई एल्डर है, कोई सीनियर सिटीजन है उनके लिए हेल्प की बात की जाए, लंबी लंबी लाइंस हो उसमें आपको फूड का इंतजार करना है उसकी बात की जाए, हर एक सॉल्यूशन जो है आपको इस जगह पर मिलने वाला है।
3: कई लोगों को कैरीमैन के जरिए दी जा रही ये सर्विस काफी सुविधाजनक लग रही है, तो कुछ इसे लग्जरी सुविधा भी बता रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर इजी शॉपिंग करवाने का ये कॉन्सेप्ट खूब ट्रेंड में है, जिसको जल्द ही आने वाले वक्त में आप भीड़भाड़ वाले एक और इलाके चांदनी चौक में भी एक्टिव होते देख पाएंगे।
4: कोई भी फेस्टिवल, क्योंकि हमारे जो है फेस्टिवल्स बहुत सारे हैं, तो किसी भी फेस्टिवल की बात करें, दिवाली हो, दशहरा हो, राखी हो, या फिर शादी का सीजन हो, तो जब भी वेडिंग सीजन आता है तो यहाँ पैर रखने तक की जगह नहीं होती। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस टाइम पर शॉपिंग करना, भारी भारी बैग्स उठाना कितना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उन्हीं सबका हल ढूंढते हुए कैरीमैन आपके पास आ गया है फिलहाल लाजपत नगर में। कैमरा पर्सन इमैनुअल जोस के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली, गुड न्यूज़ टुडे।
2: अब आपको एक वायरल हो रहा वीडियो दिखाते हैं जो एक एमएलए साहब का है, लेकिन वो इस वीडियो में बने हुए हैं क्लास में पढ़ाने वाले सर। ये दरभंगा में जाले से बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा हैं, जो यहाँ एक स्कूल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन लग गए केमिस्ट्री पढ़ाने। देखिए कैसे इन्होंने क्लास में स्टूडेंट्स के साथ साधारण नमक और पानी का केमिकल फॉर्मूला पूछा और फिर उसे समझाया भी।
6: और चार्ज के फ्रेम से ये सकारात्मक, ये प्लस, ये माइनस, ये आयनिक बॉन्ड बन जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ऑक्टेट रूल के कारण ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को प्रत्याग करता है, छोड़ देता है, और ये अपने को स्टेबल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। सोडियम और क्लोरीन मिलकर क्या बना दिया? सोडियम क्लोराइड। हम परीक्षा दे रहे हैं आपके सर के पास, पास कर जाएंगे तो हमको भी यहाँ क्लास लेने का मिल जाएगा, घंटे मिल जाएगा। सोडियम क्लोराइड यही ना, साधारण नमक का फॉर्मूला क्या होता है? तो कभी देखे नहीं है, उसमें जरूर सोडियम क्लोराइड डालिए। क्या यही है साधारण नमक? क्लियर है, ये भी एक बॉन्ड है, बंधन है, आयनिक बॉन्ड जिसको होता है। और एक क्या होता है? कोवेलेंट। उसमें क्या होता है? ये दानी है, ये दानी है, ये दाता है, और ये क्या है? एक्सेप्टर है। ये दानी है, ये डोनर है, ये लेने वाला है, एक्सेप्टर है। तो इससे जो बॉन्ड बन गया वो बन गया आयनिक बॉन्ड। एक इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरा ले लिया, दोनों संतुष्ट, दोनों खुश। ये भी मजबूत हो गया देने से, और ये लेने से मजबूत हो।
2: खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती हैं। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ, आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
14: शुक्र का कौन सा शुभ योग जीवन में ऐश्वर्य देता है? शुक्र का कौन सा शुभ योग सुख तो देता है, लेकिन माता के सुख में कमी कर देता है। कौन से हैं शुक्र के शुभ योग और क्या है उनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
15: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
16: Hey, it's Billy Bush. Tune into my show, Hot Mics, Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture, and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.
17: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's classic rock hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
12: Good news today is really good. It's in this under, na, those khabron ki mord thod aur chilla chilli nahi hai. कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
18: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
19: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
20: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
19: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
21: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
22: धरती से आकाश तक भारत की बढ़ रही ताकत, देश में ही तैयार सेना के मॉडर्न हथियार, आत्मनिर्भर भारत का गोल्डन चैप्टर। देखिए रणक्षेत्र शनिवार शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
12: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज बात करेंगे शुक्र के राजयोगों के बारे में कि अगर आपकी कुंडली में शुक्र का राजयोग है तो ये जीवन पर कैसे प्रभाव डालता है और शुक्र के राजयोग होने के फायदे क्या हैं। इसके अलावा बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 30 मई 2026 दिन शनिवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः 9 बजे से 10:30 तक पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 30 मई 2026 दिन शनिवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य विद्यमान है वृषभ राशि में, बुध बृहस्पति और शुक्र मिथुन राशि में, केतु सिंह राशि में, चंद्रमा तुला राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में और मंगल फिलहाल संचरण कर रहे हैं मेष राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। देखिए, आज हम शुक्र के शुभ योगों के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले जानते हैं कि शुक्र की विशेषताएं क्या हैं। देखिए, शुक्र ग्रहों में कोमल और सौंदर्यवान माना जाता है। शुक्र को ग्रहों में मंत्रणा देने वाला मानते हैं, यानी मंत्री पद प्राप्त है और कुछ अंशों में शुक्र को भी गुरु माना जाता है। शुक्र आपके जीवन की भावनाओं से संबंध रखता है और कुछ लोग कुछ अंशों में शुक्र को गुरु का टीचर का दर्जा भी देते हैं। शुक्र जो है ये विवाह प्रेम और जीवन में सुख प्रदान करने वाला ग्रह है। शुक्र की दो राशियां हैं, वृषभ राशि और तुला राशि। ये मीन राशि में उच्च के होते हैं और कन्या राशि में नीच के हो जाते हैं। लेकिन अगर छोटे में समझना चाहें तो आपके जीवन में जो सुख है, जो आनंद है, जो कंफर्ट है, जो लग्जरी है, ये आपको शुक्र से प्राप्त होती है। यानी आप जीवन में कितने सुखी रहेंगे ये बात डिसाइड होती है
शुक्र की वजह से, और शुक्र की वजह से जीवन में आनंद और सुख प्राप्त होता है। शुक्र के योगों पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, विवाह के मामलों में तेजी आएगी, करियर में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, धन की स्थितियां ठीक रहेंगी, मानसिक तनाव कम होगा, परिवार में शुभ कार्य होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, रुका हुआ धन आपको मिल सकता है, दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में तनाव हो सकता है, यात्रा में सावधानी बनाए रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुक्र का जो पहला शुभ योग है उसका नाम है मालव्य। मालव्य योग क्या है? मालव्य योग जो है ये शुक्र का पंच महापुरुष योग है। शुक्र जब

लोग बड़े ग्लैमरस होते हैं और लोग उनकी तरफ बहुत तेजी से आकर्षित होते हैं। शुक्र के दूसरे शुभ योग की बात भी करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा, कारोबार में व्यस्तता रहेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, थोड़ी व्यस्तता बनी रहेगी, धन के मामलों में सफलता मिलेगी, ऑफिस की समस्या कम हो जाएगी, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, धन प्राप्ति के मजबूत योग बन रहे हैं, परिवार में व्यस्तता रहेगी, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, परिवार में मतभेद हो सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, वाहन सावधानी से चलाएंगे, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुक्र का अगला शुभ योग है चतुर्थस्थ शुक्र। शुक्र का चौथे स्थान में बैठना, शुक्र चतुर्थ भाव में दिग्बली हो जाता है और चौथे स्थान में बैठ करके शुक्र ऐश्वर्य और वैभव ये तो जीवन में देता ही है, साथ ही साथ व्यक्ति को जीवन में ईमानदार और करुणावान बनाता है। और चौथे स्थान में शुक्र के बैठने पर व्यक्ति को जीवन में उच्च पद भी प्राप्त होता है। चौथे भाव में जिनके शुक्र हो ऐसे लोग वस्त्र के काम में, कॉस्मेटिक्स में, सौंदर्य में या मीडिया के क्षेत्र में बड़े सफल होते हैं। जिनकी कुंडली के चौथे भाव में शुक्र बैठा हो उसमें एक गड़बड़ी ये देखी गई है कि वो माता के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, लेकिन वो धन के मामले में, वैभव के मामले में और संपन्नता के मामले में बहुत उत्तम माना जाता है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि।

करियर की समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, किसी धर्म स्थान पर जा सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में व्यस्तता रहेगी, विवाह के मामलों में तेजी आएगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, कारोबार में लाभ होगा, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा, पूजा उपासना में समय लगाएं, हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, करियर में समस्या हो सकती है, व्यर्थ का मानसिक तनाव हो सकता है, वाहन सावधानी से चलाइएगा, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। देखिए, अगर आपकी कुंडली में शुक्र का कोई भी राजयोग है, शुक्र का कोई भी शुभ योग है, आप पुरुष हैं तो स्त्रियों के साथ अच्छा व्यवहार करिए, और अगर आप स्त्री हैं तो पुरुष के साथ अच्छा व्यवहार करिए। साथ ही साथ नियमित रूप से पूजा उपासना करिए और साफ सफाई का, अपने वस्त्रों का बहुत ध्यान दीजिए। शुक्र से अधिक लाभ लेना चाहते हैं या शुक्र के राजयोग को फलित करना चाहते हैं तो इसके लिए जितना माता लक्ष्मी की पूजा करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। शुक्र के राजयोगों का शुभ प्रभाव आपको जीवन में ज्यादा मिलेगा। तो आज हमने शुक्र के शुभ योगों के बारे में बात की। अब जान लेते हैं भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। अपने घर के पूजा स्थान का रंग अगर आप पीला रखें या अगर आप सफेद रखें तो ये सबसे ज्यादा अच्छा होगा। ऐसा करने से आप अपने मन को एकाग्र और शांत बना पाएंगे। अब जान लेते हैं 30 मई 2026 दिन शनिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा, इसके बाद हनुमान जी से कृपा करने की प्रार्थना करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: Feeling a bit nostalgic for the 90s? Tune In has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
2: कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने जब से देशवासियों से विदेश यात्रा की जगह स्वदेश यात्रा करने की अपील की है, तभी से जीएनटी भी आपसे गुजारिश कर रहा है कि आप अपने आसपास की खूबसूरत जगहों की तस्वीरें हमें भेजिए ताकि हम आपके उन वीडियोस को दिखाएं। तो चलिए आज हम आपको हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला लिए चलते हैं, जहां के तमाम आकर्षक और खूबसूरत पर्यटक स्थल आपका इंतजार कर रहे हैं। हमारे एक दर्शक ने हमें एक वीडियो भेजा है जिसमें उन्होंने धर्मशाला समेत कांगड़ा वैली की खास जगहों के बारे में बताया है।

0: और आप सभी को भी न्योता देता हूँ कि हमारा हिमाचल प्रदेश जो देव भूमि है और हिमाचल के ही अंदर बसा हमारा ये सुंदर धर्मशाला, जहाँ एक तरफ धुलाधार की हसीन पहाड़ियाँ, जहाँ आज मई और जून के महीने में भी बर्फबारी धुलाधार की पहाड़ियों पर है। को कहना चाहूंगा हिमाचल प्रदेश के अंदर ये सुंदर हमारा धर्मशाला, जहां इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो विश्व का सबसे सुंदर स्टेडियम है वो धर्मशाला में है, चाहे मैक्लोडगंज जो नगरी है वो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में है, वो धर्म के धर्मगुरु दलाई लामा जी यहां पर हैं। आप सभी आए और धर्मगुरु दलाई लामा जी का आशीर्वाद मिलने का सौभाग्य आप सभी को मिलेगा। धर्मशाला के अंदर चाय के बगान है, आप उन्हें निहारने के लिए यहाँ आ सकते हैं। धर्मशाला के अंदर कई देवी स्थान, कई मंदिर, जैसे अगंजर महादेव, इंदुनाग जी का मंदिर देवी स्थल है, और कई मंदिर हमारे हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के शहर के अंदर है। बात करूँ रोपवे की, तो धर्मशाला में धर्मशाला से मैक्लोडगंज के लिए रोपवे की सुविधा है, आप उसका आनंद लेने भी हिमाचल प्रदेश के अंदर आ सकते हैं। अगर कोई ट्रैकिंग का शौकीन है तो त्रिउंड जैसा एक ट्रैकिंग का हमारे पास स्पॉट जो है धर्मशाला के अंदर है, आप ट्रैकिंग के लिए भी त्रिउंड जा सकते हैं। साथ में धर्मशाला के लगते बाथू की लड़ी यहाँ घूमने के लिए है। मंदिर की बात करूँ तो रॉकट टेम्पल हमारे यहाँ है। धर्मशाला के साथ ही लगता कांगड़ा है, प्रदेश माता शक्तिपीठ धर्मशाला के अंदर लगते कांगड़ा में है, तो आप इन तमाम चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए, घूमने के लिए धर्मशाला आए हिमाचल वासी, तो धर्मशाला अतिथि देवो भव के भाव के साथ आप सभी के स्वागत के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। आपने आना कैसे है ये सबसे बड़ा प्रश्न है, तो बताऊँ आपको धर्मशाला के ही समीप गग्गल एयरपोर्ट, जहाँ आप हवाई मार्ग से आ सकते हैं। रेलवे से अगर आपने आना है तो पठानकोट जो नजदीक हमारे पड़ता है उसके माध्यम से आ सकते हैं। जब दिल्ली से आपने आना है तो वोल्वो बसें जो है धर्मशाला तक आती हैं। इन तमाम साधनों से जो आप धर्मशाला आ सकते हैं। हम सभी धर्मशाला वासी आपके स्वागत के लिए और अतिथियों के अतिथि देवो भव के भाव के साथ यहाँ पर।
1: यदि आप भी अपने देश में सैर सपाटा करने, अपने गांवों, अपने शहर में सैलानियों को इनवाइट करना चाहते हैं, टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो इस संकल्प के भागीदार बनिए। बस आपको करना सिर्फ इतना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या आपके शहर में आने की कोई खास वजह है तो उठाएं अपना कैमरा, बनाएं वीडियो और हमें भेज दीजिए 7303409922 पर। हम आपका वीडियो गुड न्यूज टुडे पर दिखाएंगे।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
3: धरती से आकाश तक भारत की बढ़ रही ताकत, देश में ही तैयार सेना के मॉडर्न हथियार, आत्मनिर्भर भारत का गोल्डन चैप्टर। देखिए रणक्षेत्र शनिवार शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल।
5: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्वेता झा, स्वागत है आपका न्यूज पत में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी पॉजिटिव खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पथ पर, लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
7: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
5: रामनगरी अयोध्या में माता दुर्गा मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण, वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ धार्मिक अनुष्ठान, साधु संतों के साथ लगा आस्था का मेला। ऋषिकेश में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की गंगा आरती, तीर्थ क्षेत्र के मुद्दों पर साधु संतों से मुलाकात और संवाद। लखनऊ के साई भक्त ने बाबा को भेंट किया स्वर्ण मुकुट, बेशकीमती पत्थरों से बने कमल पर उकेरा गया ओम, 782 ग्राम के इस मुकुट पर दो मयूर की नक्काशी। कोलकाता में तेज हवाओं के साथ जमकर हुई बारिश, उमस और गर्मी से लोगों को मिली राहत, सड़कों पर गिरे पेड़ हटाने में जुटा प्रशासन। उत्तराखंड के पहाड़ों को प्लास्टिक कचरा मुक्त बनाने में जुटा इंग्लैंड से आया मेहमान, अल्मोड़ा के कसार देवी इलाके में हर रोज स्वच्छता अभियान चलाते हैं माल। रेलवे ट्रैक के रेल बाजों पर प्रशासन हुआ सख्त, झांसी रेलवे स्टेशन पर ड्रोन कैमरों से की जा रही लाइव निगरानी, संदिग्ध और पत्थरबाजों पर भी पैनी नजर। आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है, इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा एक विधायक के क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाने की भी है।
7: ओडिशा की मलकानगिरी के रहने वाले किसान देवा मगदामी के बाग में इन दिनों दुनिया का सबसे महंगा आम मियाज़ाकी मैंगो पककर तैयार है। जापान की इस दुर्लभ वैरायटी की कीमत इंटरनेशनल मार्केट में करीब 1.5 लाख से 2 लाख रुपए प्रति किलोग्राम तक होती है। इस दुर्लभ आम की खेती करके मलकानगिरी के किसान देवा मगदामी ने हर किसी को हैरान कर दिया है। लाल और बैंगनी रंग की खूबसूरत रंगत वाले इस आम का दीदार करने के लिए लोग दूर दूर से इस छोटे से गांव में पहुंच रहे हैं। इस कीमती फल की खुशबू और इसका भारी भरकम वजन इस समय पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। बिहार के वैशाली जिले के करताहा थाना परिसर में प्रेमी प्रेमिका की शादी कराए जाने का मामला चर्चा में है। जानकारी के अनुसार मुजफ्फरपुर जिले के बहिलबारा गांव की एक युवती मंगलवार को करताहा थाना पहुंची। युवती ने पुलिस को बताया कि उसका प्रेम संबंध करताहा थाना क्षेत्र के कंचनपुर धनुषी निवासी छोटू कुमार से चल रहा है। युवती ने पुलिस से शादी कराने और सुरक्षा देने की मांग की। इसके बाद पुलिस ने युवक छोटू कुमार को थाने बुलाया। बताया जा रहा है कि थाना अध्यक्ष ने दोनों पक्षों से बातचीत की और सहमति बनने के बाद थाना परिसर में ही शादी की प्रक्रिया पूरी कराई गई। बिहार के दरभंगा में जाले से बीजेपी विधायक और पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा का अलग ही अंदाज देखने को मिला। स्कूल निरीक्षण के दौरान विधायक बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाने लगे। उन्होंने छात्रों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और केमिकल बॉन्ड के बारे में समझाया। विधायक के पढ़ाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। विधायक का शिक्षक रूप देखकर लोग उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। महाराष्ट्र के शिरूर तहसील के श्रद्धालु रवि नारायण करगल ने 3,500 किलो केसर आम शिरडी के साईं बाबा मंदिर को भेंट दिए। साईं बाबा ट्रस्ट ने साईं प्रसादालय में इन्हीं फलों से आमरस बनवाकर 60,000 श्रद्धालुओं का मुंह मीठा किया। थाली में अचानक आमरस देखकर श्रद्धालु खुश नजर आए।
8: मेरा नाम समर्थ है, मैं शिरडी पे आया हूँ और आज हमें आमरस मिला है शिरडी में, और ये आमरस इतना बेहद ही अच्छा है कि हम कह भी नहीं सकते इसको कि इतना अच्छा ही है, क्योंकि आज हमें हमेशा साल में एक ही बार मिलता है और ये इतना मीठा है कि इतना लाजवाब है कि हम कह ही नहीं सकते। इसको शब्दों में बयान करना नामुमकिन है, लेकिन ये बेहद ही टेस्टी है।
5: और अब बात करते हैं मौसम में आए जबरदस्त बदलाव की। गुरुवार शाम से मौसम का मिजाज कुछ इस तरह से बदला जिसने भीषण रूप से तप रहे देश के ज्यादातर हिस्सों को राहत दी है और लोग कूल महसूस करने लगे। दिल्ली एनसीआर से लेकर यूपी, बिहार, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के साथ ही कई राज्यों में बारिश हुई। कई जगह तेज रफ्तार हवा के साथ ओले भी गिरे, जिससे कि तापमान में गिरावट आई। गुरुवार से शुरू हुआ ये सिलसिला अभी जारी है।

0: नौ तपा के दौरान तपते देश के ज्यादातर इलाकों में मौसम में हुए बदलाव के साथ ही बड़ी राहत मिली है। तेज रफ्तार में चली हवा के साथ गुरुवार को अचानक मौसम में बदलाव आया। जगह जगह आंधी बारिश के साथ बड़ी मात्रा में ओले भी गिरने लगे, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से बहुत बड़ी राहत मिली। देश के किसी एक हिस्से में नहीं बल्कि दिल्ली NCR समेत कई राज्यों में मौसम के करवट लेने का असर साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। लोग जहां हीट वेव से परेशान नजर आ रहे थे, वहीं अब उनके चेहरे पर एक अलग ही सुकून नजर आ रहा है।
1: पिछले कई दिनों से चिलचिलाती गर्मी और धूप से परेशान दिल्ली वालों के लिए गुरुवार की शाम राहत लेकर के आई, जब तेज हवाएं चली, धूल भरी आंधी चली और उसके बाद हल्की हल्की बारिश हुई, जिसके चलते मौसम और तापमान में अच्छी खासी गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिन तक इसी तरीके का मौसम जो है वो फिलहाल दिल्ली NCR में बने रहने की उम्मीद है।
0: मौसम विभाग ने जैसा अनुमान जताया था, ठीक उसी तरह गुरुवार की देर शाम से बूंदाबांदी शुरू हो गई और फिर कई इलाकों में तेज हवाओं के झोंके के साथ झमाझम बारिश का सिलसिला भी शुरू हो गया। खास बात ये है कि इस वीकेंड अब मौसम के खुशनुमा बने रहने का ही अनुमान है, यानी कूल वीकेंड का लुत्फ मिलेगा।
2: कहा तो भारत का ज्यादातर हिस्सा हीट वेव झेल रहा था, लू के थपेड़े या लू की मार झेल रहा था और अब मौसम ने करवट ली है तो ज्यादातर हिस्सों में अब वो राहत लेकर के आई है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान ये कहता है कि उत्तर पश्चिम भारत, पूर्वी उत्तर भारत, मध्य भारत और इसी के साथ साथ दिल्ली NCR का वो इलाका जहाँ पर रविवार तक अब तापमान तो गिरेगा ही, बारिश भी होंगे लेकिन हवा की रफ्तार ज्यादा भी हो सकती है, थंडर स्टॉर्म हो सकता है, ओले गिर सकते हैं।
0: दिल्ली NCR के अलावा हरियाणा में करनाल से लेकर हिसार तक में आंधी बारिश ने तेज गर्मी से राहत दिलाई। हरियाणा के रेवाड़ी की ये तस्वीरें देखिए, जहां तेज रफ्तार में हवा चल रही है, बारिश भी हो रही है और ओले भी बरस रहे हैं, जिन्हें हाथों में लेकर बच्चे दिखाते हुए खुश हो रहे हैं। ये तस्वीरें रामनगरी अयोध्या की है, जहां बादलों ने डेरा डाला हुआ है। यहां आसमान से राहत की बारिश भी देखने को मिल रही है, जो तपती हुई सड़कों को कूल करती नजर आ रही है। मौसम में आए बदलाव के बाद यूपी के ही प्रयागराज की इन तस्वीरों को देखिए, जहां तेज हवाओं के साथ हुई बूंदाबांदी के साथ अब मौसम सुहाना हो गया है। यहां हवा की रफ्तार इतनी तेज थी जिसमें गर्मी से राहत के लिए लगाए गए ग्रीन शेड भी उड़ गए।
3: काफी तेज आंधी थी रात में और जो शेड वगैरह लगाए गए थे ये सब रोड में धूप से बचने के लिए यात्रियों को, ये सब टूट फूट गए हैं, फट गए हैं, उड़ गए हैं और पेड़ भी बहुत काफी मात्रा में गिरे हुए हैं और आंधी बहुत तेज थी।
4: आंधी 60-70 किलोमीटर की रफ्तार में थी और जितने ग्रीन सेट लगे थे सब ट्रैफिक से बचाने के लिए हर एक जगह ऐसे ही हाल है, सब फट गया है जहाँ जहाँ।
0: यूपी के अलावा बिहार में भी जगह जगह आंधी बारिश के बाद लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। बिहार की राजधानी पटना समेत कई जिलों में आंधी बारिश आई। सासाराम में तो मेघ इस कदर बरसे कि शहर में जगह जगह पानी ही पानी नजर आने लगा। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार के ज्यादातर जिलों में 29 मई से 4 जून तक बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। राजस्थान के भीषण रूप से तपते हुए शहरों को भी बारिश ने सुकून का एहसास कराया है, चाहे वो धौलपुर हो या फिर श्रीगंगानगर। ये उस श्रीगंगानगर की तस्वीरें हैं जहां का तापमान 48 डिग्री सेल्सियस के पार तक चला गया था, लेकिन यहां बारिश के साथ ही ओले भी खूब गिरे, जिससे तापमान लुढ़क कर नीचे आ गया।
5: राजस्थान में अभी मौसम का मिजाज बदलता नजर आ रहा है, जहां हवाएं अभी चलने लग गई हैं और साथ ही साथ में हल्की से मध्यम बारिश यहां पे देखने को मिली है। कुछ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के एक्टिवेट होने की वजह से मौसम में ये जो बदलाव है वो नजर आ रहा है, और कहा जा रहा है कि अगले 2 से 3 दिन तक इसी तरीके से मौसम बदलता नजर आएगा, टेम्परेचर्स में गिरावट देखी जाएगी और साथ ही साथ में हल्की से मध्यम बारिश और कुछ एरियाज में ओलावृष्टि होने के भी अनुमान अभी लगाए जा रहे हैं। यहाँ पिछले 24 घंटों में जो बारिश देखी गई है उसी के साथ में सभी के मोबाइल फोन में एक खास अलर्ट भी देखा गया है। उस अलर्ट ने सबको वार्न किया है कि कितनी देर में ये बारिश आने वाली है, कितनी स्पीड में आंधी आने वाली है, जिससे सभी लोग उस समय पे अपने घरों के अंदर रहें। तो टेक्नोलॉजी का भी भरपूर इस्तेमाल अभी किया जा रहा है।
6: यही नहीं, महाराष्ट्र का अमरावती हो या फिर पश्चिम बंगाल का पुरुलिया, हर जगह मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। ठंडी हवाओं के झोंके और बारिश यहाँ भी जैसे राहत का संदेश लेकर पहुँची।
7: चिलचिलाती धूप और उमस से आखिरकार कोलकाता के लोगों को राहत मिला। शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे के बीच भारी बारिश साथ में तेज हवाओं ने टेम्परेचर को काफी नीचे ला दिया। मौसम विभाग का ये कहना है कि उत्तर बंगाल में इस तरह की बारिश जारी रहेगी।
6: देश के मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी इलाकों तक पर मौसम की मेहरबानी देखी जा रही है। उत्तराखंड के पहाड़ से लेकर मैदान तक में झमाझम बारिश और ओले गिरे हैं। पर्यटन नगरी मसूरी समेत आसपास के इलाकों में बारिश और ओले गिरने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। देहरादून से लेकर बागेश्वर तक में तेज हवाओं के साथ आंधी बारिश और ओलावृष्टि हुई, जिससे यहां खुशनुमा मौसम बना हुआ है। उत्तराखंड के पहाड़ों में भी तापमान तेजी से बढ़ता चला जा रहा था, जिस पर फिलहाल ब्रेक लगा है।
8: 2 हफ्ते की चिलचिलाती गर्मी के बाद उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में देर रात तेज बारिश हुई और गुरुवार को इस बारिश के बाद कई क्षेत्रों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और इसके बाद मौसम फिलहाल सुहाना बना हुआ है। पहाड़ी क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं देहरादून समेत जो दूसरे मैदानी क्षेत्र हैं वहां पर भी तापमान में कमी आई है। अगले 2 दिन में देहरादून, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर के लिए वार्निंग जारी की गई है। येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं।
6: बारिश से उत्तराखंड के जंगलों में धधकती आग की घटनाओं पर भी काफी हद तक ब्रेक लगा है। राज्य के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट भी जारी है, यानी अभी यहां मौसम की मेहरबानी जारी रहने का अनुमान है। कुल मिलाकर कम से कम इस वीकेंड तक तो देश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम के कूल रहने का अनुमान है। यूपी में बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से लेकर कई दूसरे जिलों में भी तेज रफ्तार हवाओं के साथ बारिश देखने को मिल रही है। बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल तक के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
9: लखनऊ में साई भक्त ने शिरडी में चढ़ाया 1 करोड़ रुपए का मुकुट। आइए सीधे आपको ले चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
10: लखनऊ में रहने वाले गोपाल गोयल ने अपने परिवार के साथ शिरडी साई बाबा मंदिर में लगभग 1 करोड़ रुपए का मुकुट अर्पित किया। इस मुकुट का वजन लगभग 782 ग्राम है। मुकुट पर कमल, ओम चिन्ह और 2 मयूर की बारीक कारीगरी की गई है। परिवार पिछले 15 सालों से साई बाबा के दर्शन के लिए शिरडी आते थे। उन्होंने इसे बिना किसी मन्नत के श्रद्धा से अर्पित किया है और इसे आध्यात्मिक भावना बताया। मुजफ्फरपुर की शाही लीची की खुशबू से प्रेरित होकर मोहम्मद सलाउद्दीन ने शाही लीची अगरबत्ती तैयार की है। ये लकड़ी, चारकोल और खास फ्रेग्रेंस से बनाई जाती है। 10 और 50 रुपए पैक में बिकने वाली इस अगरबत्ती का सालाना कारोबार 50-60 लाख रुपए तक पहुंच गया है और दुबई सहित विदेशों से भी ऑर्डर मिल रहे हैं। इससे 50 से 60 लोगों को रोजगार भी मिला है। उत्तराखंड के हेमकुंड साहिब में लगातार भारी बर्फबारी हो रही है। गुरुद्वारे और पवित्र सरोवर के आसपास सफेद बर्फ की चादर बिछ गई है। कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालु 19 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई कर दर्शन और स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। मौसम विभाग ने पहले ही पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश बर्फबारी की संभावना जताई है।
9: और खबरों के एक्सप्रेस वे के बाद अब बात करते हैं खास बर्ड सेंटर की। इंसान हो या फिर बेजुबा, भीषण गर्मी से बचाव की सबको जरूरत होती है, लिहाजा तमाम तरह के इंतजाम किए जाते हैं। लेकिन खुले में उड़ान भरने वाले परिंदे जब गर्मी से बेहाल होकर गिरते हैं या फिर बीमार पड़ते हैं तो उनकी सुध लेना भी बनता है। इसी को ध्यान में रखते हुए गुरुग्राम में एक खास बर्ड सेंटर में पक्षियों का इलाज किया जाता है, जहां उनकी सेवा करने वाले को लोग पक्षी राज के नाम से जानते हैं।

0: में इन बेजुबानों को देखना हर किसी को अच्छा लगता है, खासकर बच्चे इन्हें देखकर बहुत ही ज्यादा रोमांचित होते हैं। यहाँ वैसे पशु पक्षियों को देखने का मौका मिलता है जिन्हें आम तौर पर देख पाना संभव नहीं होता, इसीलिए लोग बच्चों को खास तौर से लेकर पहुँचते हैं। लेकिन इन बेजुबानों की अच्छी देखभाल की भी जरूरत होती है। मौसम के हिसाब से इनके लिए खास व्यवस्थाएं की जाती हैं। मौजूदा गर्मी के मौसम में भी देश भर के अलग अलग चिड़ियाघरों में इनके लिए तमाम तरह के इंतजाम किए गए हैं ताकि इन्हें गर्मी से राहत मिल सके। चिड़ियाघरों में रहने वाले पक्षियों के लिए गर्मी से राहत दिलाने की व्यवस्था तो हो जाती है, लेकिन खुले में रहने वाले पक्षियों के लिए ऐसा संभव नहीं हो पाता। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में एक ऐसी जगह है जहाँ तरह तरह के पक्षी दिखते हैं, लेकिन इन पक्षियों को यहाँ खास मकसद से रखा गया है। दरअसल ये एक बर्ड सेंटर है जहाँ एक व्यक्ति इन परिंदों के लिए मसीहा की तरह है। इनके सेवा भाव को लेकर लोग इन्हें पक्षी राज कहते हैं। दरअसल भीषण गर्मी के चलते आसमान के सिकंदर क्रैश लैंडिंग करने को मजबूर हो जाते हैं। गुरुग्राम में गर्मी से बेहाल, बीमार और लाचार पक्षियों की तादाद अचानक बढ़ गई। पानी की कमी और तेज धूप की वजह से पक्षी उड़ते उड़ते अचानक बेहोश होकर गिर रहे हैं। वैसे पक्षियों के लिए गुरुग्राम का ये बर्ड सेंटर इन दिनों किसी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की आईसीयू जैसा नजर आता है। इस बर्ड सेंटर में लाचार और बीमार पक्षियों को न सिर्फ ग्लूकोज और ठंडी ड्रिप्स दी जा रही है, बल्कि उनके रहने के लिए खास इंतजाम भी किए गए हैं ताकि इन्हें हीट वेव यानी लू से बचाया जा सके।
1: हीट वेव का पक्षियों पे तो काफी असर पड़ रहा है। काफी छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे हैं हमारे पास। बज्जीस हैं, कॉकटेल हैं, लव बर्ड हैं और बुलबुल के बच्चे हैं, गौरैया के बच्चे हैं और छोटे छोटे बच्चे अपने घोंसले से गिर जाते हैं, विचलित हो जाते हैं गर्मी में। उनको पानी की व्यवस्था की जरूरत होती है। काफी संख्या में हमारे पास कबूतर के बच्चे हैं। कबूतर ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि शहर में कबूतर ज्यादा है तो कबूतर ही हमारे पास ज्यादा आते हैं। और भी पक्षी आ रहे हैं, जैसे तोते के बच्चे हैं, बुलबुल के बच्चे हैं, डव के बच्चे हैं जिसको मौड़ी बोलते हैं, फाख्ता बोलते हैं। और भी काफी तरह के पक्षी आ रहे हैं हमारे पास जो कि गर्मी के कारण ही वो घोंसले से गिर जाते हैं, तो हमारे पास लोग वहाँ रेस्क्यू करके लेके आते हैं हमारे पास।
0: भीषण गर्मी में पक्षियों पर लकवा, डिहाइड्रेशन और चेचक के ट्रिपल अटैक हो रहे हैं। उनमें फंगल और वायरल इन्फेक्शन के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं जो उनकी त्वचा और आंखों को प्रभावित कर रहे हैं। यहाँ रोज करीब 20 से 25 पक्षी गंभीर हालत में पहुँच रहे हैं। अगर इन्हें वक्त पर ORS या ग्लूकोज नहीं मिले तो इनकी जान बचाना मुश्किल हो जाता है। चेचक से पीड़ित पक्षियों को यहाँ आइसोलेशन वार्ड में रखकर उनका विशेष एंटी वायरल ट्रीटमेंट किया जाता है।
1: गर्मी के अलावा इनको कई तरह की बीमारी होती है। गर्मी में आई फ्लू होता है, कुराइजा बोलते हैं पक्षियों को, कुराइजा हो जाता है। आंखों की बीमारी है, इन्फेक्शन हो जाता है आंखों में। चिकन पॉक्स है, बच्चों को चिकन पॉक्स हो जाता है। पैरालिसिस है, लकवा है, वो भी हो जाता है इनको। ही स्ट्रोक है, डायरिया है, ही स्ट्रोक वाले काफ़ी संख्या में हमारे पास आ रहे हैं। इलाज के बाद पक्षियों को हम ठीक होने के बाद उड़ा देते हैं इनको। हम यहाँ से बहुत सारे पक्षी 22,000 से ज़्यादा पक्षी छोड़ चुके हॉस्पिटल से, और यहाँ पर काफ़ी संख्या में हमारे पास डेली पक्षी आ रहे हैं। हर तरह के पक्षी हैं जिसमें इंजर्ड भी आ रहे हैं और स्टॉक के भी आ रहे हैं।
0: इलाज के बाद ठीक होने पर पक्षियों को खुले में उड़ान भरने के लिए छोड़ दिया जाता है। और एक दूसरी खास बात यह है, यहाँ पक्षियों का इलाज मुफ्त में होता है। कई लोग शौक से पक्षियों को पालते भी हैं तो वो भी जरूरत पड़ने पर पक्षियों का इलाज कराने यहाँ लेकर आते हैं।
2: कॉकटेल हैं दो, वो उनमें से एक थोड़ा बेचारा बीमार सा लग रहा था, खाना खा रहा था पर उड़ नहीं रहा था, तो हमें चिंता हुई कि कहीं कुछ है तो नहीं, रेस्पिरेटरी वगैरह कुछ प्रॉब्लम तो नहीं। तो ये बड़ा फेमस हॉस्पिटल है, मैंने सुना हुआ था तो मैं आज ले आई कि वो ठीक रहे। वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, उन्होंने देखते ही बता दिया कि इसको बम्बल फुट हुआ था, बेचारा बड़े परेशान था, उन्होंने फटाफट उसका ट्रीटमेंट कर दिया। अब होपफुली खाएगा भी और उड़ेगा भी।
0: आपकी छोटी सी कोशिश भी इन बेजुबानों की जान बचा सकती है, इसीलिए पक्षी राज ने लोगों से अपने छतों और बालकनी में मिट्टी के बर्तनों में ताजा पानी रखने की अपील की है। साथ ही किसी पक्षी के सुस्त दिखने पर पानी में हल्का सा ग्लूकोज या ORS मिलाकर देने की सलाह दी है। आसपास किसी बीमार या परेशान पक्षी को देखकर उन्हें तुरंत छाव वाली जगह ले जाकर पानी की बूंदे पिलाकर उनकी जान बचाने की कोशिश करने का आग्रह भी पक्षी राज ने किया है। बाकी इलाज के लिए इस बर्ड सेंटर तक पहुंचाने के लिए स्थानीय बर्ड रेस्क्यू टीम के साथ साथ पक्षी राज से संपर्क किया जा सकता है। गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
0: कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। शुक्रवार को 30 शेयर वाला बीएसई सेंसेक्स 1092 अंक लुढ़क कर 74,775 पर बंद हुआ। वहीं 50 शेयरों वाला एनएससी निफ्टी 359 अंक गिरकर 23,547 पर बंद हुआ। शुक्रवार को गोल्ड की कीमतों में थोड़ी बढ़त देखने को मिली। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के मुताबिक 99.9% शुद्धता वाले 10 ग्राम सोने का भाव 1600 रुपए चढ़कर 1,62,900 रुपए पर पहुंच गया। वहीं चांदी की कीमतों में थोड़ी मजबूती देखने को मिली। 1 किलोग्राम चांदी की कीमत 5,000 रुपए बढ़कर 2,74,700 रुपए पहुंच गई। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की नई उम्मीद को देखते हुए अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में सुधार देखने को मिला। शुक्रवार को अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 53 पैसे मजबूत होकर 95.05 रुपए के स्तर पर बंद हुआ।
3: डॉन 3 विवाद को सुलझाने के लिए सलमान खान ने बढ़ाया कदम। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले फिल्मी मोड़ पर।
4: ऐसी लव स्टोरी और ऐसी शादी तो हमने ना पहले कभी देखी थी ना कभी सुनी थी।
0: बॉलीवुड अभिनेता वरुण धवन इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म है जवानी तो इश्क होना है को लेकर सुर्खियों में है। दर्शक इस रोमांटिक कॉमेडी फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रिलीज से पहले फिल्म को CBFC ने अंडर एज 16 प्लस सर्टिफिकेट दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म का रन टाइम 2 घंटे 16 मिनट 40 सेकंड है। डेविड धवन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में मृणाल ठाकुर, पूजा हेगड़े, मनीष पॉल और जिमी शेरगिल भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म 5 जून को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

0: बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर की आगामी फिल्म श्रीराम भूमि की आधिकारिक घोषणा हो गई है। अयोध्या और राम जन्मभूमि के इतिहास पर आधारित इस फिल्म का मुहूर्त संपन्न हो चुका है और शूटिंग भी शुरू हो गई है। अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर फिल्म की झलकियां शेयर करते हुए इसे अपनी 552वीं फिल्म बताया है। उन्होंने कहा है कि ये आस्था, सत्य और घर वापसी की कहानी है। फिल्म में अमृता खानविलकर और ऋत्विक भौमिक भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। निर्देशन कामाख्या नारायण सिंह कर रहे हैं। बॉलीवुड में इस वक्त रणवीर सिंह और फरहान अख्तर के विवाद ने बड़ा रूप ले लिया है। डॉन 3 छोड़ने के बाद दोनों के रिश्तों में तनाव बढ़ गया है। यहां तक कि रणवीर पर बैन की खबरें भी सामने आ रही थी, लेकिन अब इस मामले में सलमान खान ने एंट्री ले ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान ने दोनों से बात कर झगड़ा शांत करने और बिना विवाद बढ़ाए आपसी सहमति से मसला सुलझाने की सलाह दी है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्ष सलमान की बात मानने को तैयार है।
1: न्यूज वक्त में हम खबरों के सफर को आगे बढ़ाएं, उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: ज्वाइन SRMISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
1: रामनगरी अयोध्या में माता दुर्गा मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण, वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ धार्मिक अनुष्ठान, साधु संतों की मौजूदगी में हुआ समारोह। ऋषिकेश में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ उत्तराखंड के सीएम पुष्य सिंह धामी ने की गंगा आरती, तीर्थ क्षेत्र के मुद्दों पर साधु संतों से मुलाकात और संवाद। लखनऊ के साईं भक्त ने बाबा को भेंट किया स्वर्ण मुकुट, बेशकीमती पत्थरों से बने कमल पर उकेरा गया ओम, 782 ग्राम के इस मुकुट पर दो मयूर की नक्काशी। कोलकाता में तेज हवाओं के साथ जमकर हुई बारिश, उमस और गर्मी से लोगों को मिली राहत, सड़कों पर गिरे पेड़ हटाने में जुटा प्रशासन। उत्तराखंड के पहाड़ों को प्लास्टिक कचरा मुक्त बनाने में जुटा इंग्लैंड से आया मेहमान, अल्मोड़ा के कसारदेवी इलाके में हर रोज स्वच्छता अभियान चलाते हैं मार्क। रेलवे ट्रैक पर रेलबाजों पर प्रशासन हुआ सख्त, झांसी रेलवे स्टेशन पर ड्रोन कैमरों से की जा रही लाइव निगरानी, संदिग्ध और पत्थरबाजों पर भी पैनी नजर। न्यूज पद पर खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन उससे पहले हमें रुकना होगा यहाँ, यानी कि वायरल चौक पर। यहाँ देख लेते हैं उन वीडियोस को जो कि सोशल मीडिया में धमाल मचाए हुए हैं। इनमें से कुछ वीडियोस ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देंगे और कुछ आपको हंसने पर मजबूर।
0: जिंदगी में खुश रहने के लिए कोई वजह जरूरी नहीं होती। ये नन्हा बच्चा स्टील के बर्तन की थाप पर मासूमियत से झूमता नजर आ रहा है। उसकी मुस्कान और छोटे छोटे कदम दिल को खुशी से भर देते हैं। सच में बचपन की यही सादगी जिंदगी को खूबसूरत बना देती है। ये महिला नारी शक्ति की सशक्त मिसाल है। एक तरफ भारी कैमरा संभालते हुए वो शादी की फोटोग्राफी कर रही है, तो दूसरी तरफ अपनी छोटी बच्ची का भी ध्यान रख रही है। माँ की ममता से बच्चा परे ना हो, इसलिए ये साहस सिर्फ माँ ही कर सकती है। ये नज़ारा दिखाता है कि महिलाएं जिम्मेदारी के साथ अपने सपनों को भी बखूबी पूरा कर सकती हैं। दोस्ती की ये अनोखी मिसाल दिल को छू लेती है। एक बच्चा अपने खाने को एक तोते के साथ शेयर कर रहा है और दोनों आराम के साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। ये मासूम दोस्ती इंसानों और प्रकृति के बीच प्यार और अपनापन दिखाती है। चिड़िया हमारी बचपन की साथी हुआ करती थी, लेकिन आज इन्हें देख पाना दुर्लभ हो गया है। ये नज़ारा बचपन की यादें ताज़ा कर देता है, जब हम चिड़ियों को नहाते हुए देखकर मौसम बदलने की उम्मीद करते थे। आज वही मासूम पल बहुत याद आते हैं। ये छोटी बच्ची अपनी मासूमियत और एनर्जी से दिल जीत रही है। दो चोटियों में सजी ये नन्ही परी मस्ती में झूमते हुए अपने हर स्टेप को बेहद क्यूट अंदाज में कर रही है। उसकी खुशी और नटखटपन देखने वालों का मन खुश कर देती है।
1: न्यूज पद के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी चाय की। हमारे देश में अधिकतर लोगों के दिन की शुरुआत चाय से ही होगी, और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेश में भी लोग चाय के दीवाने हैं। ग्लोबल फूड रेटिंग प्लेटफॉर्म टेस्ट एटलस ने दुनिया भर की सबसे बेहतरीन चाय को लेकर एक लिस्ट जारी की। आपको बता दें कि टेस्ट एटलस ने मई में दुनिया की टॉप 100 बेस्ट टीज की लिस्ट जारी की है, और इस लिस्ट में भारतीय मसाला चाय को पहला स्थान मिला है, जो कि पूरे देश के लिए गर्व की बात है। मसाला टी अपने स्वाद, खुशबू और सेहतमंद गुणों की वजह से दुनिया भर के लोगों की पहली पसंद बनती जा रही है। मसाला चाय में अदरक का तीखापन, इलायची की खुशबू, दालचीनी, लौंग और काली मिर्च का मिश्रण होता है। मसाला चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और मेहमान नवाजी का बड़ा हिस्सा है। टॉप 100 बेस्ट टीज की लिस्ट में दार्जिलिंग टी को 6ठा स्थान और असम चाय को 13वां स्थान मिला है। इसके अलावा केरल की सुलेमानी चाय को 39वां, हिमाचल की कांगड़ा टी को 41वां और जम्मू कश्मीर की नून चाय को 43वां स्थान मिला है। दुनिया की बेस्ट टीज की ये लिस्ट देखकर पता चलता है कि भारत की चाय को लेकर कितना लोग पसंद करते हैं। लिस्ट में दूसरे नंबर पर जापान की होजिचा टी है, जिसके बाद तीसरे नंबर पर श्रीलंका की सिलोन ब्लैक टी को जगह मिली है। तो दुनिया भर में भारत की चाय को मिली रेटिंग पर हमने प्रयागराज में एक टी शॉप पर लोगों से बात की और उनकी राय जानी।
4: प्योर किस तरह से इस चाय को बनाते हैं?
5: ये चाय आयुर्वेदिक चाय है, और ये चाय जो है फायदेमंद होती है।
4: क्या क्या डालते हैं इसमें?
5: ये चाय में तुलसी है, अदरक है और दूध है, चीनी चाय पत्ती है, सब डाल के बनाई जाती है चाय।
4: कितनी पसंद करते हैं लोग?
5: 90% लोग पसंद करते हैं ये चाय पीने के बाद। लाभदायक चाय है, हाँ, माइंड फ्रेश हो जाता, थके हुए आते हैं तो।
4: चाय आप यहाँ पर पीते हैं तो किस तरह की चाय पसंद आती है?
6: तुलसी की चाय पसंद आती है, इसमें अदरक, इलायची, लौंग और सारी चीजें डालते हैं। सबसे बड़ी बात है, चाय तो एक बहाना रहता है संबंधों का। भाई साहब वकील भी हैं और कांग्रेस के बड़े नेता भी हैं, अमित मिश्रा जी हैं, व्यवसायी हैं, भाई साहब राजनीतिक दल से हैं, और ये इलाका खास करके एजी ऑफिस हो गया आपका, बार काउंसिल सामने आप देख सकते हैं, यूपी बोर्ड, पुलिस मुख्यालय है। एक समय पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी की बैठकी होती थी, प्रणब मुखर्जी जी की, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी की बैठकी होती थी, सदभवन सिन्हा, शायद ही देश का कोई टॉप का लीडर हो यहाँ पे ना आता रहा हो। चंद्रशेखर जी तो धोती और चप्पल में यहाँ पे आते थे, बैठते थे, उनकी सादगी से लोग बहुत प्रभावित रहते थे।
4: मतलब चाय के साथ साथ राजनीतिक चर्चा भी यहाँ पर होती है। आप ये बताइए यहाँ पर है कि चाय पीने के बाद किस तरह का एक माहौल बन जाता है?
7: देखिए, चाय में एक चाह होती है। सबसे बड़ी चीज ये है कि जब हम यहाँ आते हैं, चाय तो घर में भी मिल जाती है, लेकिन घर से निकल के यहाँ चाय पीने का उद्देश्य होता है कि अलग अलग वर्ग के लोग मिलते हैं, अलग अलग जानकारियां मिलती हैं, हम तरोताजा होने के साथ साथ ताजा खबरें भी यहाँ पे मिल जाती हैं, बिना कुछ खर्च किए मिल जाती हैं। वो किसी महंगे रेस्टोरेंट में हमें नहीं मिलेगी, जो यहाँ किनारे बैठ करके, सड़क के किनारे बैठ करके चाय पीने में मिल जाती।
8: अक्सर लोग यहाँ पे मिल जाते हैं, नीचे से लेकर ऊपर तक के सभी को पसंद है चाय पर आना यहाँ पर।
4: अच्छा, कौन सी चाय पसंद करते हैं?
8: निश्चित रूप से यही जो जनरल चाय है, दूध वाली और चीनी वाली दोनों ही हम लोगों को तो बहुत पसंद है। मुझे व्यक्तिगत रूप से चाय बहुत ही पसंद है, चाय हमेशा हमको जो है तरोताजा करती रही है। हम लोग आते हैं, बार बार चाय पीने आते हैं, और यहाँ पे सारे लोगों से मुलाकात हो जाती है, राजनैतिक, वकील, वकीलों का नेता, यहाँ बगल में जो है एजी ऑफिस वगैरह है, बार काउंसिल सामने ही है, और हाई कोर्ट बगल।
4: किस तरह से यहाँ लोगों से मुलाकात हो जाती है?
8: सारे लोगों से मुलाकात हो जाती है, हम क्लाइंट्स मीटिंग भी यहाँ भी कर लेते हैं।
9: देखिए, चाय जहाँ चाय वहाँ बातचीत तो अपने आप हो जाती है। जैसे भाई साहब लोगों ने बताया, यहाँ तमाम सरकारी महकमे हैं, अब तो सरकार ने भी यहाँ पे तमाम बैठने की सुविधा कर दी, आप देख ही रहे हैं बैठने की अच्छी, यहाँ से आगे पीछे तक पूरी। यहाँ की चाय की खासियत है, इसमें तुलसी की पर्याप्त मात्रा रहती है, मन तरोताजा हो जाता है। आज तो मौसम भी बहुत अच्छा है, इवन गर्मी होती है तब भी हम लोग यहाँ चाय पीने के लिए आते हैं।
10: चाय तो उनको तुलसी की पसंद है, और चाय के बहाने यहाँ अपनों से मुलाकात हो जाती है, और कई विषयों पे बात हो जाती है, राजनीतिक, और चाय के बहाने बार बार मिलना जुलना हो जाता है सभी लोगों से। चाय बहुत काम करती है तुलसी की।
11: पहली बार यहाँ आया हूँ और देख करके अच्छा लगा मुझे, और मैं यहाँ का रहने वाला नहीं हूँ, मैं बिहार से आया हूँ।
4: देखिए, चाय का स्वाद कैसा लगा?
11: चाय का स्वाद बहुत अच्छा लगा, और तुलसी अदरक सारा स्वाद मिल रहा है, तो फ्रेशनेस लग रहा है कि हम फ्रेश हो चुके हैं इससे।
12: मैं यहाँ 15 सालों से चाय पी रहा हूँ और ये टॉप 10 अगर इलाहाबाद में चाय की दुकान, तो इसमें इसको मैं 1 नंबर का दर्जा देता हूँ। और जब भी हम लोग को समय मिलता है तो जरूर हम लोग यहाँ 1 घंटे 2 घंटे समय व्यतीत करते हैं, अपने क्लाइंट्स को भी यहाँ बुला लेते हैं, उनकी भी मीटिंग जो भी बातचीत हो यहाँ पे हो जाती है, और कम रेट में अच्छी चाय पिलाते हैं। इससे हम लोग जब पीते हैं तो हम लोग रिफ्रेश हो जाते हैं।
13: देखिए चाय जो है मेन जो है दूध वाली चाय ही जो शुरू से चली आ रही है, बट अभी क्या है कुछ मॉडिफिकेशन भी हो गया, आदमी अदरक की चाय पी रहा है और काली चाय पी रहा है, नींबू वाली चाय पी रहा है,
14: मसाले वाली
13: पी रहा है, तो ये चाय इसको नहीं कह सकते, ये इसके सुख दुख का चुस्की बोल सकते हैं कि आदमी जब आता है तो कहीं ना कहीं से कुछ थोड़ा सा अपना सुख दुख बात करता है। अब इसको ये भी कह सकते हैं कि भैया आए बात किए, हाँ कुछ इनकी बातें होंगी, कोई ने बोला कि एक नए चाय पीते कई आइडियाज आ जाते हैं यार इनसे एक बात कर लेना, तो ये चाय नहीं बोल सकते, इसको बोलते हैं कि एक हैप्पीनेस टी बोलते हैं इसको।
1: और अब रुख करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। कैलिफोर्निया में रहने वाले 14 साल के भारतीय मूल के छात्र श्रेय पारिक ने 2026 की प्रतिष्ठित स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी प्रतियोगिता जीत ली है। फाइनल में उन्होंने न्यूजर्सी के ईशान गुप्ता को हराकर ये बड़ी सफलता हासिल की।
15: Trey, during the spell off, you correctly spelled a total of 32 words.
16: 90 सेकेंड सामने शब्दों की बौछार और मंच पर खड़ा 14 साल का एक लड़का इतिहास लिख रहा था।
17: Joining us to present the trophy to Trey is President and CEO of Scripps, Adam Simpson.
16: कैलिफोर्निया के रैंचो कुकामोंगा के श्रेय पारिक ने 2026 क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी जीतकर साबित कर दिया कि कभी कभी असली जंग तलवारों से नहीं शब्दों से जीती जाती है। वॉशिंगटन डीसी में हुए इस मुकाबले में श्रेय और ईशान गुप्ता आखिर तक बराबरी पर डटे रहे, हालात ऐसे हो गए कि जज भी फैसला नहीं कर पाए।
15: Tyrone.
18: T-O-R-O-N-E.
15: Enthymeme.
18: E-N-T-H-Y-M-E-M-E.
16: फिर आया वो पल जिसने पूरे हॉल की धड़कनें बढ़ा दी। इस खास राउंड में दोनों प्रतियोगियों को 90 सेकंड के भीतर ज्यादा से ज्यादा शब्द सही स्पेल करने थे। मंच पर शब्द गोलियों की रफ्तार से उछल रहे थे और दोनों बच्चे बिजली की तेजी से जवाब दे रहे थे।
18: E-M-U-T.
15: Nano fossil.
18: N-A-N-O-F-O-S-S-I-L.
15: Tongkang.
18: T-O-N-G-K-A-N-G.
15: Nakatosh.
18: N-A-T-C-H-I-T-O-C-H-E-S.
15: Fla.
18: F-L-A-I-T-H.
15: Semele.
18: S-E-M-E-L-E.
15: Russell.
18: R-U-S-E-L-L.
15: Sauder.
18: S-A-W-D-E-R.
15: Campernelle.
18: C-M-P-E-R-N-E-L-L-E.
15: Nickel.
18: N-I-C-O-L.
16: मुख्य उच्चारणकर्ता जैक्स बेली लगातार शब्द बोलते गए और दोनों प्रतिभागी समय से रेस लगाते रहे, लेकिन आखिर में बाजी श्रेय मार ले गए। श्रेय ने 32 शब्द सही स्पेल किए जबकि ईशान 25 शब्दों तक पहुंच सके, और जैसे ही नतीजों का ऐलान हुआ पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। दोनों फाइनलिस्ट ने मुस्कुराकर हाथ मिलाया।
15: श्रेय, during the spell off, you correctly spelled a total of 32 words.
16: एक बार फिर भारतीय मूल के बच्चों ने दुनिया के सबसे मुश्किल स्पेलिंग मंच पर अपना परचम लहरा दिया और साबित कर दिया कि हिंदुस्तानियों से आगे कोई नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: चीन में इंटेलिजेंट रोबोट कार्निवल की शुरुआत। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां विदेश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
19: इस साल के सिनेमाकॉन में टीजर के बाद निर्देशक नितेश तिवारी की फिल्म रामायण खूब चर्चा में है। रणबीर कपूर राम की भूमिका निभा रहे हैं, जबकि सीता बनी है साई पल्लवी और रावण का किरदार यश निभा रहे हैं। ये फिल्म नितेश तिवारी निर्देशित और नमित मल्होत्रा निर्मित है, जिसमें DNEG के VFX AR रहमान और हंस जिमर ने गाने गाए हैं। रामायण दो भागों में बन रही है और पहला भाग दिवाली पर सिनेमाघरों में रिलीज होगा। कपूर ने तैयारी में योग, तीरंदाजी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण लिया है। फैंस इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उत्तरी चीन के तियानजिन सांस्कृतिक केंद्र में वर्ल्ड इंटेलिजेंट एक्सपो 2026 के तहत भव्य इंटेलिजेंट रोबोट कार्निवल का उद्घाटन हुआ। इसमें रोबोट नृत्य, मार्शल आर्ट प्रदर्शन और ड्रोन लाइट शो जैसे आकर्षक कार्यक्रम शामिल रहे। आयोजन में रोबोट प्रदर्शनी, रोबोटिक्स चैलेंज, स्टेज शो और इंटेलिजेंट कंज्यूमर मार्केट जैसे विशेष क्षेत्र बनाए गए। इस कार्निवल ने नागरिकों को शहरी वातावरण में आधुनिक एआई और रोबोटिक्स तकनीक का प्रत्यक्ष अनुभव सिखा दिया। के पॉप गर्ल ग्रुप एस्पा ने 29 मई को अपना नया स्टूडियो एल्बम लेमोनेड रिलीज किया। ये दो साल बाद उनका पहला पूर्ण एल्बम है जिसमें कुल 10 गाने शामिल हैं। इसमें टाइटल ट्रैक के साथ बेकी जी और ताई डोला सिंह के साथ सहयोग भी है। इससे पहले 12 मई को हिप हॉप ट्रैक WDA प्री रिलीज हुआ था। 2024 के एल्बम आर्मागेडन के बाद ये उनका एक बड़ा कमबैक माना जा रहा है। समूह का विश्व दौरा अगस्त में सियोल से शुरू होगा। ETH ज्यूरिख के छात्रों ने पोलारिस नाम की स्वायत्त रोबोट विकसित की है जो अल्पाइन झीलों के नीचे बर्फ की मोटाई मापता है। ये रोबोट उन स्थानों पर काम करता है जहां मानव पहुंच कठिन या असुरक्षित होती है। ये दबाव सेंसर और सोनार तकनीक से सेंटीमीटर स्तर तक सटीक डेटा एकत्र करता है। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के अध्ययन और झीलों की सुरक्षा मूल्यांकन में मदद करता है। रिसर्चर इसे अधिक सटीक और सुरक्षित पर्यावरण निगरानी उपकरण मान रहे हैं।

0: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
1: The wide world of sports comes alive on TuneIn with top stations, game-changing podcasts, and even live play-by-play. It's your playbook for every league. MLB.
2: Gone! Home run!
1: NHL. College basketball.
3: He shoots it immediately. He makes it in!
1: Tennis. Golf. And even top motorsports like NASCAR.
4: One lap to go.
1: And IndyCar. No matter what gets your heart racing and fuels your fandom, hear it here on TuneIn.
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
6: मुझ में ही है
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं, अविश्वास में विश्वास बसता है, जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
7: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
6: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी।
11: फोगाट को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, खेल जगत से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले खेल चक्कर।
12: भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उन्हें 2026 एशियन गेम्स के चयन ट्रायल्स में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी, जो 30 और 31 मई को आयोजित होने हैं। हाईकोर्ट से मिली इजाजत के खिलाफ भारतीय कुश्ती महासंघ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने साफ कहा

0: कि ये मामला सामान्य खिलाड़ियों से अलग है क्योंकि विनेश ने देश को कई मौकों पर गौरवान्वित किया है। हालांकि अदालत ने खेल मामलों में बार बार न्यायिक दखल को लेकर चिंता भी जताई। साथ ही विनेश से कहा गया कि आप शानदार रेसलर हैं, आपने देश को गर्व महसूस कराया है, लेकिन देश पहले है। IPL 2026 के क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस की टीमें आमने सामने हैं। न्यू चंडीगढ़ के मुलामपुर में टॉस जीतकर राजस्थान रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इस मैच को जीतने वाली टीम फाइनल में पहुंच जाएगी, जबकि हारने वाली टीम बाहर हो जाएगी और फिर 31 मई को जीतने वाली टीम का फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मुकाबला होगा। ऋषभ पंत ने तुरंत प्रभाव से लखनऊ सुपर जायंट्स की कप्तानी छोड़ दी। IPL 2026 में टीम के बेहद खराब और निराशाजनक प्रदर्शन के बाद पंत ने यह फैसला लिया। इसको लेकर लखनऊ सुपर जायंट्स फ्रेंचाइजी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक ऑफिशियल बयान जारी किया, जिसपे कहा गया है कि ऋषभ पंत ने खुद को कप्तानी की जिम्मेदारी से मुक्त करने का अनुरोध किया था। उनके इस आग्रह को फ्रेंचाइजी ने तत्काल प्रभाव से मान लिया है।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से विदेश यात्रा की जगह स्वदेश यात्रा करने की अपील की है, तो GNTV आपसे अपने आसपास की खूबसूरत जगहों की तस्वीरों को शेयर करने की अपील कर रहा है ताकि हम आपके उन वीडियोस को GNTV पर दिखाएं। तो चलिए आज आपको पिथौरागढ़ की खूबसूरत वादियों का दीदार कराते हैं। यहाँ तमाम आकर्षक और खूबसूरत पर्यटक स्थल आपका इंतजार कर रहे हैं। इस वीडियो को हमारे एक दर्शक ने भेजा है।
2: स्वागत है आपका गुड न्यूज चैनल में। मैं शीला कापड़ी गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज मुनाकोट पिथौरागढ़ में साइंस अध्यापिका आपको ले चलती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत शहर पिथौरागढ़ की ओर। यूं तो पिथौरागढ़ सांस्कृतिक विरासत से भरपूर फलता फूलता शहर हर आम आदमी की बेसिक जरूरत को पूरा करता है। वैसे तो यहाँ वर्ष भर मौसम बहुत ही सुहाना होता है, पर कुछ खास महीने मार्च से नवंबर तक घूमने के लिए बहुत ही खूबसूरत होते हैं। यहाँ शहर के आसपास कई खूबसूरत पर्यटक स्थल हैं, जैसे कामाख्या मंदिर, ध्वज मंदिर, थल केदार और देवदार के जंगलों से घिरा हुआ चंडाक। कामाख्या मंदिर से तो पूरे शहर का नजारा देखते ही बनता है। पिथौरागढ़ शहर से कुमाऊं और गढ़वाल दोनों की सुंदर पर्वतमालाएं देखने को मिलती हैं, जैसे नंदा देवी, पंचाचुली, कामेट आदि। शहर से लगभग 100-150 किलोमीटर की दूरी पर कई सुंदर सुंदर वैलीज हैं, जैसे चौदास वैली, दारमा वैली, व्यास वैली, जौहर वैली। अक्टूबर 2023 में माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के आने से इस वैली को बहुत प्रसिद्धि मिली। आदि कैलाश यात्रा के मार्ग पर पड़ने वाला अंतिम गांव कुटी अपनी बेजोड़ संस्कृति और शिल्प कला के लिए प्रसिद्ध है। प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ आदि कैलाश ओम पर्वत में आध्यात्मिक अनुभूति भी होती है। दूसरी वैली है चौदास वैली, जहां पर नारायण आश्रम में हाई एल्टीट्यूड पर भी बहुत ही खूबसूरत लकड़ी की नक्काशीदार कारीगरी देखने को मिलती है। तीसरी वैली है दारमा वैली, जो ट्रैक प्रेमियों के लिए बहुत ही सुंदर और सरल ट्रैक है, जहां तक पहुंचना काफी आसान है। चौथी वैली है जौहर वैली, जहां पर चारों तरफ फैली हुई हरी भरी खूबसूरत पहाड़ियां और पंचाचुली के सफेद बर्फ से ढके पहाड़ अनायास ही पर्यटकों का मन मोह लेते हैं। साहसिक यात्रा के शौकीन लोगों के लिए जौहर वैली में अनगिनत ट्रैक्स हैं, जैसे बनकटिया ट्रैक, रंथन खडक ट्रैक। रंथन खडक ट्रैक में तो बहुत ही सुंदर सुंदर बुग्याल और बैगनी, गुलाबी कई तरह के रोडोडेंड्रोन देखे जा सकते हैं। इस शहर का सबसे खूबसूरत पहलू यह है कि यह शहर हवाई मार्ग से भी जुड़ा है। नैनी सैनी एयरपोर्ट से सप्ताह में 2 या 3 बार दिल्ली और देहरादून के लिए नियमित उड़ानें उपलब्ध हैं। तो आइए क्यों ना इस बार की जाए इस नए शहर पिथौरागढ़ की सैर।
1: आप भी अपने देश में ही सैर सपाटा करने अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट कीजिए। टूरिज्म को बढ़ावा देने के संकल्प में भागीदार बने। बस आपको सिर्फ इतना करना है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की खास वजह है तो उठाएं अपना कैमरा और बनाएं ब्लॉग। फिर हमें 7303409922 पर व्हाट्सएप करें, हम उसे GNT पर दिखाएंगे। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के।
4: शुक्र की कौन सी राशि बहुत जिद्दी मानी जाती है? शुक्र की कौन सी राशि के लोग बहुत उदार होते हैं? और शुक्र की राशि का सूर्य और शनि से क्या संबंध है? कौन सी है शुक्र की राशियां और क्या है उनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
5: Music for every mood lives on TuneIn. Whether you want to relax, focus, or turn things up, you'll find the right station. Hear from the top stations like today's hits, classic rock, coffee house, and more. Stream non-stop music from stations you know and new favorites waiting to be discovered. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
6: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
1: कभी धीमे धीमे पक रही होती है खबरें, कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
0: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: शुक्र की कौन सी राशि बहुत जिद्दी मानी जाती है? शुक्र की कौन सी राशि के लोग बहुत उदार होते हैं? और शुक्र की राशि का सूर्य और शनि से क्या संबंध है? कौन सी है शुक्र की राशियां और क्या है उनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: Music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
2: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station. Enjoy a carefully brewed mix of soft acoustic sounds
3: with artists like James Bay,
4: come on, let it go.
2: Nora Jones,
5: my heart is drained.
2: Daniel Caesar,
6: we both know how,
2: and much more as you sink into a good book or get lost in your work. Just search Coffee House. Or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
7: ठीक रात 9 बजे। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है।
8: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: Good news today.
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
7: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
12: धरती से आकाश तक भारत की बढ़ रही ताकत, देश में ही तैयार सेना के मॉडर्न हथियार, आत्मनिर्भर भारत का गोल्डन चैप्टर देखिए रण क्षेत्र शनिवार शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें,
13: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
14: सेज यूनिवर्सिटी, ट्रांसफॉर्मिंग योर पैशन इनटू प्रोफेशन।
7: रामनगरी अयोध्या में माता दुर्गा मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ धार्मिक अनुष्ठान, साधु संतों की मौजूदगी में हुआ समारोह। ऋषिकेश में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की गंगा आरती, तीर्थ क्षेत्र के मुद्दों पर साधु संतों से मुलाकात और संवाद। लखनऊ के साईं भक्त ने बाबा को भेंट किया स्वर्ण मुकुट, बेशकीमती पत्थरों से बने कमल पर उकेरा गया ओम, 782 ग्राम के इस मुकुट पर दो मयूर की नक्काशी। कोलकाता में तेज हवाओं के साथ जमकर हुई बारिश, उमस और गर्मी से लोगों को मिली राहत, सड़कों पर गिरे पेड़ हटाने में जुटा प्रशासन। उत्तराखंड के पहाड़ों को प्लास्टिक कचरा मुक्त बनाने में जुटा इंग्लैंड से आया मेहमान, अल्मोड़ा के कसार देवी इलाके में हर रोज स्वच्छता अभियान चलाते हैं मार्क। रेलवे ट्रैक के रेलबाजों पर प्रशासन हुआ सख्त, झांसी रेलवे स्टेशन पर ड्रोन कैमरों से की जा रही है लाइव निगरानी, संदिग्ध और पत्थरबाजों पर पैनी नजर।
11: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना

नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं भगवान राम के धाम की। जहां आज का दिन ऐतिहासिक रहा, मंदिर परिसर में मौजूद मां भगवती मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण किया गया। और ये पल इसलिए भी खास बन गया क्योंकि इस आयोजन में करीब 3,500 महिलाएं शामिल हुई। ध्वजारोहण साध्वी रतंबरा ने किया, पर उनके साथ ही सीआरपीएफ की महिला विंग की जवान भी मौजूद रही। आज आपको ध्वजारोहण की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएंगे। इसके बाद चलेंगे बद्रीनाथ, जहां भक्तों का सैलाब उमड़ता जा रहा है। अच्छी सुविधा और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच देश भर से श्रद्धालु चार धाम यात्रा में पहुंच रहे हैं, और अब अच्छे मौसम की वजह से भी लोगों की भीड़ बढ़ी है। ऐसी तस्वीर श्री हेमकुंड साहिब से भी आ रही है, जहां वैसे तो बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है, पर राह की चुनौतियों को पार करते हुए यहां श्रद्धालुओं का तांता लगा है। आइए शुरुआत करते हैं अयोध्या से, जहां आस्था, भक्ति और मातृशक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। राम मंदिर परिसर में मां भगवती मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई गई, और जिसकी साक्षी बनी देश की अलग अलग हिस्से से आई महिलाएं और बेटियां। राम मंदिर परिसर में शक्ति का सम्मान सभी को भावुक कर गया, और ध्वजारोहण के साथ रामनगरी में शक्ति, श्रद्धा और सनातन परंपरा का भव्य संदेश गूंज उठा। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।

0: अच्छा लगा, ये अनुभव बहुत अच्छा लगा। इतने दिनों से हमारे पूर्वजों ने जो सपना देखा था आज पूरा हुआ। जय श्री राम।
1: कैसा लग रहा? बढ़िया हूँ, भावुक भी लग रही
0: है। जी जी जी, ये हमारे पूर्वजों का बहुत पुराना सपना था, इसी वजह से शायद हम बोल नहीं पा रहे हैं, शब्द मेरे पास नहीं है।
1: पहली बार महिलाओं को यहाँ पे बुलाया।
0: जी जी जी जी, इसीलिए ये सम्मान हम लोग महिलाओं को मिला, ये हमें बहुत अच्छा लगा।
2: एहसास जब लफ्जों में बयान ना हो, आनंद जब अभिव्यक्ति ना हो, खुशियाँ जब हाव भाव से जताई ना जा सके, तो आंखों से बहते आंसू सब कह जाते हैं। भावना के अतिरेक में भले ही जबान लड़खड़ा रही हो, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर परिसर में मौजूद महिलाओं की खुशी कैसी है, इसे महसूस किया जा सकता है।
0: बहुत अच्छा लगा, ये अनुभव बहुत अच्छा लगा। इतने दिनों से हमारे पूर्वजों ने जो सपना देखा था आज पूरा हुआ। जय श्री राम।
1: कैसा लग रहा? बढ़िया हूँ, भावुक भी लग रही है।
0: जी जी जी, ये हमारे पूर्वजों का बहुत पुराना सपना था, इसी वजह से शायद हम बोल नहीं पा रहे हैं, शब्द मेरे पास नहीं है।
1: पहली बार महिलाओं को यहाँ पे बुलाया।
0: जी जी जी जी, इसीलिए ये सम्मान हम लोग महिलाओं को मिला, ये हमें बहुत अच्छा लगा। ये सम्मान केवल हम औरतों के लिए, नहीं तो घरों में कहाँ इतना सम्मान कौन देता है।
2: राम मंदिर परिसर में एक और नया इतिहास लिखा गया, जब माँ दुर्गा के धाम पर धर्म ध्वजा लहराई, या कहिए कि शक्ति का आरोहण हुआ। माँ भगवती के मंदिर शिखर पर लहराती है धर्म ध्वजा, एक नए अध्याय का श्री गणेश है, जो संसार को मातृ शक्ति का स्थान बता रही है। अयोध्या के शक्ति उत्सव को निहारिए, ये वो विशेष पल है जब सीआरपीएफ की महिला विंग की जवानों ने ध्वज की रस्सियां खींची और साध्वी रितांबरा ने ध्वजारोहण की परंपरा के माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम की नगरी में मां के सम्मान को आस्था के शिखर तक पहुंचा दिया। बेशक इस पल का साक्षी बने हर श्रद्धालु के लिए ये कभी ना भुला पाने वाला लम्हा था।
3: जन्मभूमि में एक और महोत्सव आज पूर्ण हुआ है, क्योंकि आज जो है माँ जगदम्बा के मंदिर के ऊपर शिखर के ऊपर आज ध्वज लहराया है, और यहाँ लगभग 3500 के ऊपर महिलाएं रही उपस्थित, और लगातार यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इसी गेट से जो है इनकी एंट्री हुई थी, और इसी गेट से अभी कुछ देर बाद ये बाहर निकल रही हैं, और लगातार आप लोग ने ध्वजारोहण देखा अपने आप।
0: जी जी सर, जी सर, बहुत अच्छा लगा, ये अनुभव बहुत अच्छा लगा।
2: सनातन संस्कृति में ध्वजारोहण महज एक परंपरा नहीं है, बल्कि धर्म, विजय और सकारात्मक ऊर्जा का वो प्रतीक है, जो कोसों दूर से मंदिर के शिखर पर लहराता नजर आता है, जिसके दर्शन मात्र से श्रद्धालुओं को असीम शक्ति और ऊर्जा मिलती है, आस्था भक्ति के धाम तक पहुंचने का मार्गदर्शन मिलता है। माँ भगवती के मंदिर पर ये ध्वजारोहण इसलिए विशेष रहा क्योंकि 3500 से ज्यादा मातृ शक्ति इस अद्भुत पल की साक्षी बनी।
4: दिन बाद मतलब ऐसा लगा कि हाँ, जो जितने लोगों ने इतने लड़ाई की थी, इतना चीजें हुई थी, तो उसका फल आज मिल गया है। बहुत बहुत सब सही है।
1: आपने अपनी आंखों से ध्वजारोहण देखी पहली बार आज राम मंदिर?
4: हाँ हाँ, बहुत बहुत हाँ, पहली बार मतलब इतनी बार हुआ, लेकिन कभी आज तक नहीं देखा। और ये चीज बहुत अच्छा लगा कि स्पेशली वुमेन्स के लिए ये चीजें करवाई गई है, इसमें कोई मैन अलाउड नहीं था, और ये चीजें तो ये चीज बहुत अच्छा लगा।
5: हमें यहाँ पे प्रसाद भी मिला, और हम पहली बार यहाँ पे हमें वीआईपी कार्ड भी मिला है,
6: और हम बच्चे होके मुझे इतना अच्छा हुआ, जितने तक मुझे आज पहली बार जन्नत देखने मिला श्री हमारे रामचंद्र भगवान श्री रामचंद्र की मंदिर में। आज का दिन बहुत अच्छा, 100 लकी डे में आई।
2: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस भव्य कार्यक्रम को मातृ शक्ति को समर्पित किया था, लिहाजा ध्वजारोहण समारोह में दुर्गा वाहिनी और मातृ शक्ति की करीब 230 कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया। साथ ही अयोध्या महानगर के 64 कार्य क्षेत्रों से जुड़ी करीब 3500 महिलाएं इस पल की साक्षी बनी। वृंदावन के वात्सल्य ग्राम की 163 महिला प्रतिनिधि भी इस खास अवसर पर उपस्थित रही।
3: पीछे है जो सारी महिलाएं हैं वो लगातार श्यावर रामचंद्र की जय कहते हुए भी नजर आ रही हैं, और लगातार जो लगभग इतनी महिलाओं ने यहाँ पे जो है आज अपनी आंखों से जो है माँ भगवती के शिखर पर, क्योंकि आज शुक्रवार है और शुक्रवार माता का दिन होता है, तो उस दिन आज जो है आज के दिन जो है वो पल है, वो पहली बार ऐसा पल आ जाया है कि आज जो है इन महिलाओं को इस राम जन्मभूमि में एक बड़ा सम्मान देखने मिला है। और साथ में इस पल में जो है वो महिलाएं इसमें रही हैं जो सुरक्षा में यहाँ पे तैनात थी, सीआरपीएफ की वो महिलाएं थी जिनके हाथों जो है इस ध्वजा पे, इस शिखर पे जो है ध्वजा जो है नजर आया था। और लगातार जो है जो खुशी है महिलाओं की आंखों में नजर आई।
2: ध्वजारोहण समारोह में महिला संतों की मौजूदगी सिर्फ मातृ शक्ति का प्रतीक नहीं बल्कि इनकी सिरा राम मंदिर आंदोलन से भी जुड़ा है। साध्वी रीतांबरा के अलावा कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति भी शामिल हुई।
7: उस समय जब आंदोलन चल रहा था उस समय हम लोग दुर्गा वाहिनी में काम कर रहे थे, विश्वविद्यालय में काम कर रहे थे। आज उस समय जो आंदोलन से जुड़ी हुई बहनें थी दुर्गा वाहिनी में मातृशक्ति में, उन्हीं सबको बुलाया गया है। अब ये सौभाग्य कि हम लोगों के सामने माँ भगवती के शिखर पर ध्वजारोहण हो रहा है। तो जब अयोध्या का स्मरण करती हूँ तो मुझे वो भी याद आता है कि यही अयोध्या जब कार सेवा पे गोलियां चली और अयोध्या रक्त रंजित हुई थी, और वही अयोध्या जब कार सेवक ढांचा के ऊपर चढ़े टूटा, तो एक वो भी महापुरुष था जिन्होंने सत्य के लिए सत्ता का परित्याग किया था, बाबू कल्याण सिंह जी। और वही अयोध्या जब एक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी देश की बागडोर संभालते हैं, उसका समाधान भी निकलता है, माननीय न्यायाधीशों ने फैसला दिया और माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा रामलला अपने गर्भगृह में विराजित हुए, वो भी उसके भी हम साक्षी रहे। तो
8: माताओं, अभी पूज्य साध्वी प्रज्ञा भारती जी ने हम सब में ओझ भर दिया और पूज्य मैत्रेयी दीदी ने हमें मर्म बता दिया जीवन का। निरंजन ज्योति जी ने अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त कर दी, रामलला के विराजमान हो गए, हमारी दृढ़ता हृदय की छीन ली, हृदय की दरिद्रता, हमारा खंडित था स्वाभिमान। 22 जनवरी 2024 को हमारे खंडित स्वाभिमान की पुनः प्रतिष्ठा हो गई, सीना तान कर सिर ऊंचा करके चलने योग्य बन गया।
2: साधु संत महंत और आम भक्त, राम की नगरी में आए सभी लोग आनंद से भरे हैं। सैकड़ों दर्शन के लिए हर वक्त कतार में खड़े हैं और जो रामलला के दर्शन कर चुके हैं वो गदगद हैं। राम मंदिर परिसर में ये तस्वीर रोज की है। ध्वजारोहण के दिन उत्साह कुछ और बढ़ गया।
3: भगवती के,
9: हाँ माँ भगवती के, माँ भगवती के शिखर पे, और इस उनका दिन भी है और बहुत आनंद की अनुभूति हो रही थी, जिसने ढंग से सारे लोग व्यवस्थित बैठे हुए थे। और ध्वज रोहण के बाद जो हर हर महादेव का नारा लगा वो मेरे ख्याल में सबको रोमांचित कर गया। कोई ऐसा नहीं था जिसमें के अंदर ये ना भाव जगा हो कि हाँ हमारा जो अस्तित्व था वो मुझे पुनः मिल रहा है।
10: और सब सर्वप्रथम तो हम लोग पहले दर्शन ही किए, दर्शन करने के बाद ध्वजारोहण को अपनी आँख के सामने ऊपर उठते हुए शीर्ष तक यूं गर्दन ऐसे थी और लग रहा था कि हाँ माँ भगवती। तो अभी मैम ने वहाँ पर मंच से संबोधित भी किया था कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते तद्भवन्ते तत्र देवता। तो हमारी भारत की धरती है, भारत को हम माता ही कहते हैं, तो यहाँ सब जगह केवल माता ही माता है, माता ही माता है। तो ये मिथ्या है कि आपको आदर मिला कि नहीं मिला, वाद वापवाद तो दुनिया में बहुत होते हैं।
2: राम जन्मभूमि परिसर के साथ मंदिरों पर एक एक कर ध्वजारोहण का कार्यक्रम जारी है। इस सिलसिले का श्री गणेश पिछले 25 नवंबर को हुआ, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर मुख्य मंदिर पर ध्वजारोहण किया। 31 दिसंबर 2025 को अन्नपूर्णा मंदिर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ध्वज फहराया। इसके बाद भगवान सूर्यदेव के मंदिर के शिखर पर 26 मार्च 2026 को विधि विधान से ध्वजारोहण किया गया। हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर 2 अप्रैल को 75 फीट ऊंचे मंदिर हनुमान मंदिर के शिखर पर विधि विधान से भव्य धर्म ध्वजा फहराएगी। फिर 11 अप्रैल को गणेश मंदिर पर ध्वजारोहण हुआ। वही 29 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिव मंदिर पर ध्वजारोहण किया था और आज साध्वी रीतांबरा ने भगवती मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण कर रामनगरी में आस्था, भक्ति और आध्यात्म के वैभव को शिखर तक पहुंचा दिया।
3: हाँ, हमारे साथ जो महिलाएं खड़ी हैं उनके अंदर काफी खुशी भी नजर आ रही है और कहीं ना कहीं आंखों में आंसू भी है और भावुक भी नजर आई हैं, क्योंकि ये पल वो ऐसा था जब माँ भगवती के मंदिर के शिखर पर ध्वजा लहरते हुए नजर आया और उन्होंने अपनी आंखों से देखा और महिलाओं को बड़ा सम्मान मिला इस राम जन्मभूमि में। अयोध्या से कैमरामैन अनुज जायसवाल के साथ मयंक शुक्ला।
11: चार धाम यात्रा की उत्तराखंड की दिव्य वादियों में बसे बद्री विशाल धाम में इन दिनों आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। कपाट खुलने के बाद से लाखों श्रद्धालु भगवान बद्रीनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और अभी भी मंदिर परिसर से लेकर यात्रा मार्ग तक हर तरफ भक्ति उत्साह और श्रद्धा का अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा है। कठिन रास्तों के बावजूद श्रद्धालुओं का जोश कम नहीं है। वहीं SDRF और प्रशासन भी यात्रियों की सेवा और सुरक्षा में पूरी तरह से मुस्तैद है।

उत्तराखंड की पवित्र घाटियों में स्थित बद्री विशाल धाम इन दिनों अद्भुत आस्था के महासागर में डूबा हुआ है। जब से कपाट खुले हैं, देश भर से श्रद्धालुओं का सैलाब लगातार बढ़ता चला आ रहा है। मंदिर परिसर से लेकर यात्रा मार्ग तक हर जगह भक्तिमय ऊर्जा का अद्भुत नजारा दिखाई दे रहा है। श्रद्धालु दर्शन के लिए लंबी कतारों में लगे हैं। मंदिर परिसर में सुबह से ही लंबी कतारें लग जाती है। लोग घंटों इंतजार करते हैं, लेकिन उनके चेहरे पर थकान नहीं बल्कि आस्था की चमक दिखाई देती है। छोटे बच्चे हों या बुजुर्ग, सभी के मन में केवल एक ही भाव है, बद्री विशाल के दर्शन। अच्छी बात यह है कि मौसम भी पूरी तरह अनुकूल है, जिससे यात्रा का अनुभव और भी अधिक दिव्य और आकर्षक बन गया है। हल्के बादलों का पहाड़ों पर डेरा है, जिसके बाद नजारा और भी अलौकिक हो गया है। इस यात्रा में सबसे बड़ी चुनौती ऊंचाई और कठिन रास्ते हैं। कई जगह चढ़ाई तेज है, कहीं रास्ता संकरा है। ऐसे में कुछ श्रद्धालु थक जाते हैं या आगे बढ़ने में असमर्थ हो जाते हैं। ऐसे समय में SDRF के जवान पूरी तरह सक्रिय दिखाई देते हैं। वो न केवल यात्रियों को सुरक्षित मार्ग दिखाते हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर बुजुर्गों और महिला श्रद्धालुओं को सहारा देकर मंदिर तक पहुंचाते हैं। ये सेवा यात्रियों के लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं लगती,

0: यात्रा प्रबंधन के अनुसार इस वर्ष चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच रही है। अब तक लगभग 24 लाख से अधिक यात्री चार धाम स्थलों पर दर्शन कर चुके हैं, जबकि केवल बद्रीनाथ धाम में ही करीब 6,75,000 से अधिक श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। यह संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले समय में यह पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ देगी। प्रशासन ने व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रणाली को अनिवार्य किया है। इसके माध्यम से अब तक लगभग 40 लाख यात्रियों का पंजीकरण किया जा चुका है। इससे भीड़ नियंत्रण, यात्रा मार्ग की निगरानी और आपात स्थिति में मदद पहुंचाने में काफी सुविधा हो रही है। जिन लोगों ने ऑनलाइन पंजीकरण नहीं कराया है, उनके लिए अलग अलग स्थानों पर ऑफलाइन व्यवस्था भी की गई है, ताकि कोई भी श्रद्धालु दर्शन से वंचित न रहे।
1: वही बद्रीनाथ धाम की अगर बात करें, यहाँ पे 7.25 लाख से अधिक श्रद्धालु बद्री विशाल के दर्शनों को पहुंच चुके हैं। कभी भी यह आंकड़ा 7 लाख को पार कर सकता है। इस बार मई के महीने में ही कई पुराने रिकॉर्ड अलग दिखाई दे रहे हैं। इतनी संख्या आज तक मई के महीने में देखने को नहीं मिली है। हालांकि जून के महीने में यात्री आंकड़ा हमेशा बढ़ता था, लेकिन मई के महीने में इतना ज्यादा यात्री का आंकड़ा देखने को नहीं मिला है।
0: मंदिर परिसर में टोकन व्यवस्था लागू की गई है, ताकि दर्शन सुचारू रूप से हो सके। सुबह लोग टोकन प्राप्त करने के लिए लाइन में लग जाते हैं और फिर क्रमबद्ध तरीके से दर्शन का लाभ लेते हैं। यात्रा रास्तों पर ट्रैफिक नियंत्रण के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया गया है, जिससे वाहनों की आवाजाही भी व्यवस्थित बनी रहे।
1: उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का उत्साह हर तरफ दिखाई दे रहा है। चारधाम यात्रा इस समय अपने पूरे स्वभाव पर चल रही है। जो सड़कों पे देखिए, गाड़ियों की लंबी कतार, ये आस्था की वो तस्वीर है। चाहे जाम हो या कितनी मुश्किल क्यों ना हो, हर कोई बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, चारों धामों की यात्रा पे इस समय निकला हुआ है। अब तक उत्तराखंड के चारों धामों में 24 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शनों को पहुंच चुके हैं। वहीं अभी भी लगातार, क्योंकि श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं, चारों धामों के साथ पांचवा जो जिसे हम धाम कहते हैं हेमकुंड साहिब की यात्रा भी चल रही है। ऐसे में अब जो जून का महीना होगा, फूलों की घाटी भी खुल जाएगी, जून में स्कूलों की छुट्टियां हो जाएंगी, ऐसे में यात्रा बढ़ेगी, तो उसके लिए कहीं ना कहीं इस समय प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। लेकिन अभी तक बद्रीनाथ धाम यात्रियों से खचाखच दिखाई दे रहा है। जो उत्साह है वो सड़क से लेकर मंदिर तक हर तरफ यात्रियों का जमावड़ा इस समय देखने को मिल रहा है।
0: हेमकुंड साहिब और बद्रीनाथ मार्ग पर भी तीर्थ यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है। कहीं वाहन कतार में खड़े हैं, तो कहीं पैदल यात्री भक्ति भाव में लीन होकर आगे बढ़ रहे हैं। रात के समय भी रेस्क्यू टीम अलर्ट रहती है और SDRF के जवान अंधेरे में फंसे यात्रियों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाते हैं। ये पूरा क्षेत्र समय आस्था, अनुशासन और सेवा का अद्भुत संगम बन चुका है। कठिन परिस्थितियों के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हो रहा है। बद्रीनाथ से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: बात करते हैं पांचवा धाम कहे जाने वाले श्री हेमकुंड साहिब की। सिख समुदाय के बड़े तीर्थ स्थलों में शामिल श्री हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा तक पहुंचना कठिन है, लेकिन प्राकृतिक चुनौतियों को पार करके श्रद्धालु दुनिया के सबसे ऊंचे गुरुद्वारा साहब तक पहुंच रहे हैं। हालांकि उत्तराखंड में मौसम बदलने से गुरुद्वारा और अमृत सरोवर पर बर्फ की मोटी चादर बिछी हुई है और यात्री मार्ग पर हर तरफ बर्फ ही बर्फ है, लेकिन फिर भी 5 दिन पहले यात्रा शुरू होने के बाद अब तक 22,000 से अधिक श्रद्धालु यहां पहुंच चुके हैं।

0: आस्था का ये कठिन मार्ग सिख समुदाय के लिए सबसे बड़ी आस्था के केंद्रों में शामिल हेमकुंड साहिब तक जाता है, जहां पहुंचने वालों के धैर्य, साहस और विश्वास की निरंतर परीक्षा चल रही है। हेमकुंड साहिब के कपाट खुले 5 दिन हो चुके हैं। सोमवार से ही उत्तराखंड के चमोली में विराजमान गुरु साहब के दरबार में माहौल भक्तिमय है। लेकिन इस बीच उत्तराखंड में अचानक मौसम बदल गया है। राज्य के ऊंचे इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है और हेमकुंड साहिब भी बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे और वहां मौजूद अमृत सरोवर पर बर्फ की मोटी चादर चढ़ी है। वहां पहुंचने वाले मार्ग सफेद बर्फ से छिप गए हैं। ऐसे में हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे तक दर्शन करने के लिए पहुंचना चुनौतियों से भरा हुआ साबित हो रहा है। दुनिया के सबसे ऊंचे गुरुद्वारे के दर्शन करना किसी भी श्रद्धालु के लिए कठिन तपस्या जैसा रहा है, और ऐसे माहौल में जब पैदल मार्ग के अलावा दोनों तरफ कई फीट तक बर्फ दिखाई दे रही हो, ये चुनौती कई गुना बढ़ गई है।
1: चमोली में एक बार फिर से मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हो रही है। सिखों का जो पवित्र तीर्थ स्थल है हेमकुंड साहिब में रुक रुक कर बर्फबारी का दौर जारी है। आसमान में देख सकते हैं लगातार बादलों का डेरा है। मौसम विभाग ने पहले ही पहाड़ों में बारिश और बर्फ ऊंचाई वाली जगहों पर बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया था। ऐसे में हेमकुंड साहिब अत्यधिक ऊंचाई पर है, वहां पे लगातार रुक रुक कर बर्फबारी का दौर जारी है।
0: आस्था के कठिन मार्ग पर चलने में श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, फिर भी उनका जोश बरकरार है। श्रद्धा और आस्था का भाव चरम पर है। मौसम का कठिन स्वरूप भी श्रद्धालुओं के कदम को थाम नहीं पा रहा। धीमे धीमे ही सही, लेकिन अड़िग कदमों से गुरु के दरबार की तरफ बढ़ रहे हैं।
1: 22,000 से अधिक श्रद्धालु हेमकुंड साहिब में मत्था टेक चुके हैं। सिख संगतें हैं देश और विदेश दोनों ही जगहों से इस समय हेमकुंड साहिब में पहुंच रहे हैं। ऐसे में बर्फबारी के बीच जहां रास्ता फिसलन भरा हो जाता है, वहीं SDRF जो सेवादार है, भारतीय सेना है, इन रास्तों पे लगी हुई है। यात्रियों को रास्ता पार कराने में जो व्यवस्थाएं हैं, गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी भी यहां पे लगातार यात्रियों की मदद के लिए खड़ी है। हालांकि सुबह से बर्फबारी देर रात से ही बर्फबारी यहां पे हो रही है। सुबह यहां बर्फ की सफ़ेद चादर हर तरफ दिखाई दी, इसके बावजूद भी श्रद्धालुओं का जो उत्साह है, एक तो कठिन यात्रा होती है 19 किलोमीटर की, दूसरा ऑक्सीजन की कमी होती है, लेकिन जो यहां पहुंचने वाले श्रद्धालु होते हैं, चाहे वो बुजुर्ग हों या बच्चे हों, हर किसी के उत्साह में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। बर्फबारी है, कड़ाके की ठंड है, ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह अपनी अपार देखने को मिल रहा है।
0: गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक 19 किलोमीटर की पैदल यात्रा करनी पड़ती है। सबसे मुश्किल रास्ता अटल कोटी ग्लेशियर से शुरू होता है, जिसमें आस्थावान श्रद्धालुओं को 6 किलोमीटर के पथरीले रास्ते पर भी चलना पड़ता है। फिर भी हर साल ही बड़ी संख्या में देश दुनिया से सिख श्रद्धालु गुरुद्वारे में मथा टेकने के लिए पहुंचते हैं। इस दौरान उनके लिए डंडी कंडी, पालकी, घोड़ा खच्चर की भी सुविधा होती है। सिख धर्म में ऐसी मान्यता है कि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने अपने पिछले जन्म में कई सालों तक इसी जगह महाकाल की तपस्या की थी। जिस जगह पर गुरु गोविंद सिंह जी ने ध्यान लगाया था, वहीं ये गुरुद्वारा बना हुआ है। गुरुद्वारे के साथ ही पवित्र सरोवर है, जिसे अमृत सरोवर या हिम सरोवर भी कहा जाता है। गुरुद्वारे में माथा टेकने से पहले सिख श्रद्धालु बर्फ से भी ठंडे इस पवित्र सरोवर में नहाते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले में करीब 15,200 फीट ऊंचे ग्लेशियर में मौजूद श्री हेमकुंड साहिब को देवभूमि उत्तराखंड का 5वां धाम कहा जाता है। लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर होने की वजह से ये 5 महीने ही खुला रहता है। श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय मई से अक्टूबर के बीच होता है। उत्तराखंड में चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

0: शुक्र की कौन सी राशि बहुत जिद्दी मानी जाती है? शुक्र की कौन सी राशि के लोग बहुत उदार होते हैं? और शुक्र की राशि का सूर्य और शनि से क्या संबंध है? कौन सी है शुक्र की राशियां और क्या है उनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
3: Sit back and relax with the smoothest hits with Coffee House Station on TuneIn. A carefully brewed mix of soft acoustic tracks made for slow moments and quiet focus. Featuring artists like James Bay, Nora Jones, and Daniel Caesar. Plus more of your Coffee House favorites. Perfect for getting lost in a good book or easing into your workday. Just search Coffee House or ask your device to play Coffee House on TuneIn.
4: धरती से आकाश तक भारत की बढ़ रही ताकत, देश में ही तैयार सेना के मॉडर्न हथियार, आत्मनिर्भर भारत का गोल्डन चैप्टर देखिए रण क्षेत्र शनिवार शाम 5:04 पर सिर्फ गुड न्यूज टुडे पर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
7: ज्वाइन SRM ISC गाजियाबाद कैंपस, विजिट SRMUP.in।
8: रामनगरी अयोध्या में माता दुर्गा मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ धार्मिक अनुष्ठान, साधु संतों की मौजूदगी में हुआ समारोह। ऋषिकेश में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की गंगा आरती, तीर्थ क्षेत्र के मुद्दों पर साधु संतों से मुलाकात और संवाद। लखनऊ के साईं भक्त ने बाबा को भेंट किया स्वर्ण मुकुट, बेशकीमती पत्थरों से बने कमल पर उकेरा गया ओम, 782 ग्राम के इस मुकुट पर 2 मयूर की नकाशी। कोलकाता में तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश, उमस और गर्मी से लोगों को मिली राहत, सड़कों पर गिरे पड़े पेड़ हटाने में जुटा प्रशासन। उत्तराखंड के पहाड़ों को प्लास्टिक कचरा मुक्त बनाने में जुटा इंग्लैंड से आया मेहमान, अल्मोड़ा के कसार देवी इलाके में हर रोज स्वच्छता अभियान चलाते हैं माघ। रेलवे ट्रैक पर रेलबाजों पर प्रशासन हुआ सख्त, झांसी रेलवे स्टेशन पर ड्रोन कैमरों से की जा रही लाइव निगरानी, संदिग्ध और पत्थरबाजों पर पैनी नजर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: राम मंदिर स्थित परकोटा में स्थापित माँ भगवती मंदिर के शिखर पर हुआ ध्वजारोहण, साध्वी ऋतंबरा ने विधि विधान से ध्वज पूजन कर ध्वजारोहण किया। ध्वजारोहण समारोह में साध्वी नरेंद्र ज्योति के साथ 3500 महिलाएं रही शामिल, राम मंदिर की सुरक्षा में तैनात CRPF की महिला जवानों ने ध्वजारोहण की रस्सी खींचकर कार्यक्रम को पूर्ण किया। कार्यक्रम को लेकर मंदिर परिसर में विशेष रूप से साज सज्जा, देश के विभिन्न राज्यों से मातृशक्ति और दुर्गा वाहिनी की महिलाएं अयोध्या पहुंची। कार्यक्रम के दौरान श्रद्धालुओं को विशेष प्रसाद भी वितरित किया गया। आध्यात्मिक आस्था का प्रतीक बना यह आयोजन। पूरे आयोजन में महिलाओं ने विशेष सहभागिता निभाई। कार्यक्रम में पहुंची महिलाओं ने खुशी जताते हुए इसे ऐतिहासिक क्षण बताया। शिरडी साईं मंदिर में लखनऊ के गोपाल गोयल परिवार ने 1 करोड़ से ज्यादा कीमत का सोने का मुकुट अर्पित किया। 782 ग्राम के इस मुकुट पर की गई है ओम और मयूर की सुंदर नकाशी। लखनऊ के गोपाल गोयल ने बिना किसी मन्नत के साईं बाबा को करोड़ों का स्वर्ण मुकुट चढ़ाया। परिवार पिछले 15 सालों से नियमित रूप से दर्शन के लिए आता है शिरडी। साईं भक्त गोपाल गोयल ने मुकुट अर्पित करने के अवसर को बताया बेहद खास और बाबा की कृपा। गोपाल गोयल के मुताबिक बाबा करते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी। परिवार ने मुकुट अर्पण को बताया बेहद भावुक पल। परिवार ने कहा साईं बाबा की इच्छा रही तो आगे भी भेंट अर्पित करते रहेंगे। शिरडी में करोड़ों का स्वर्ण मुकुट बना चर्चा का विषय। साईं बाबा के प्रति भक्तों की अटूट आस्था एक बार फिर से देखने को मिली। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किए रामलला के दर्शन। राम मंदिर परिसर के बाहर सुबह से लगी भक्तों की लंबी कतारें। भक्तों ने लगाए जय श्री राम के जयकारे। चित्तूर के विनायक स्वामी मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। विधि विधान से श्रद्धालुओं ने की पूजा अर्चना। गर्मी की छुट्टियों के चलते बढ़ी श्रद्धालुओं की भीड़। सुबह से लगी भक्तों की कतारें। भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने भी भंडारे का आयोजन किया। बड़ी संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। उज्जैन में बाबा महाकाल की उतारी गई भस्मारती। भक्तों ने लगाए हर हर महादेव के जयकारे। बाबा महाकाल का अभिषेक दूध दही घी शहद और फूलों के रस से किया गया। चंद्र त्रिशूल मुकुट और आभूषण अर्पित कर किया गया श्रृंगार। भांग चंदन ड्राई फ्रूट और भस्म का लगाया गया भोग। हरिद्वार पहुंचे पूर्व क्रिकेटर और पूर्व सांसद नवजोत सिंह सिद्धू। देखने के लिए लगी भीड़। नवजोत सिंह सिद्धू ने मां माया देवी मंदिर और भैरव मंदिर में की पूजा। भगवान का आशीर्वाद लिया। साहिब का प्रकृति ने किया आश्रय श्रृंगार। कपाट खुलने के 7 दिन बाद यहां जोरदार बर्फबारी का दौर जारी। श्री हेमकुंड साहिब में चारों ओर बिछी बर्फ की चादर। मई की गर्मी के बीच श्रद्धालु बर्फबारी का ले रहे आनंद। बर्फबारी पर आस्था भारी। बड़ी संख्या में भक्तों ने गुरुद्वारा साहिब पहुंचकर अरदास की। बर्फबारी के चलते पवित्र सरोवर का पानी और भी ज्यादा ठंडा। श्रद्धालु सरोवर में लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। श्रद्धालु को वापस भेजा जा रहा है बेस कैंप खांगरिया। एसडीआरएफ और गुरुद्वारा सेवादार सुरक्षा का रख रहे हैं ख्याल। भिलाई स्टील प्लांट के मैत्रीबाग जू में भीषण गर्मी से जानवरों को बचाने के लिए किए गए खास इंतजाम। जू प्रबंधन ने कूलिंग और हाइड्रेशन सिस्टम को मजबूत किया। मैत्रीबाग में मौजूद 5 व्हाइट टाइगर के बाड़ों में पानी और कृत्रिम झरनों की व्यवस्था की गई। टाइफा चटाई और पानी की फुहारों से तापमान करीब 10 डिग्री तक कम रखा जा रहा है। समरचीता और ब्लैकबक जैसे वन्य जीवों के एनक्लोजर में स्प्रिंकल्स और मिस्ट सिस्टम लगाए गए हैं। जानवरों को राहत देने के लिए पानी के से भरे मोच सिस्टम भी तैयार किए गए हैं। पक्षियों और बंदरों को गर्मी से बचाने के लिए ग्रीन क्लॉथ और लगातार स्प्रिंकल चलाए जा रहे हैं। इससे वातावरण में नमी बनी रहती है और तापमान नियंत्रित रहता है। मैत्रीबाग प्रबंधन बंदरों को तरबूज और खरबूजे जैसे पानी वाले फल खिला रहा है। मांसाहारी जानवरों के लिए भोजन में एंटी हीट स्ट्रेस विटामिन भी शामिल किए गए। बिहार में तेज आंधी और बारिश का रेड अलर्ट, भोजपुर, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पटना, नालंदा, पूर्वी चंपारण, सारण और सीवान में जोरदार होगी बारिश। यूपी में भी आंधी तूफान और बारिश के साथ ओले गिरने का अलर्ट, अगले तीन दिन तक होगी बारिश। बंगाल के कई इलाकों में आंधी तूफान और बारिश का रेड अलर्ट, बारिश के साथ चलेंगी तेज हवाएं। बंगाल के रूलिया में झमाझम बारिश से मौसम सुहावना, भीषण गर्मी से लोगों को मिली राहत। प्रयागराज में भारी बारिश से कई जगहों पर जलजमाव, पानी में मस्ती करते दिखे बच्चे। भुवनेश्वर में विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस पर वाकाथॉन का आयोजन, बड़ी संख्या में छात्र शामिल हुए। मुरादाबाद में मुस्लिम कारीगरों ने सांस्कृतिक विषयों और श्रीराम वाटिका और आरएसएस राष्ट्र जागरूकता स्मारक का किया प्रदर्शन। झारखंड के रामगढ़ जिले में कुजू में 120 साल पुराना मंदिर और मस्जिद आज भी गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल बना। अजान और मंदिर की घंटियों की जुगलबंदी, यहां अमन, भाईचारे और मोहब्बत का देती है संदेश। कुजू में मंदिर मस्जिद के साथ होने के

आज कावेरी नदी को फिर से पुराना स्वरूप देने की मुहिम। विश्व पर्यावरण दिवस से पहले सेफ सॉइल मूवमेंट से जुड़ा यूएन सम्मानित किसान बलवन ने बताए ट्री बेस्ड एग्रीकल्चर के फायदे। अल्मोड़ा के कसार देवी में विदेशी पर्यटक माक्रोज जंगल और मंदिर परिसर से कर रहे हैं कूड़ा साफ। उनका ये प्रयास पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता का बड़ा संदेश। कसार देवी क्षेत्र में इंग्लैंड की माक हर रोज 2 से 3 घंटे तक करते साफ सफाई। सानी डीएम ने भी इस सराहनीय पहल की तारीफ की। गुजरात के भुज पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह ने बॉर्डर इलाकों का मुआयना किया। जीसात सीमा चौकी पर क्या पौधारोपण, बीएसएफ जवानों से मुलाकात की। मां वैष्णो देवी दरबार में मध्यप्रदेश के सीएम मोहन यादव ने मत्था टेका, प्रदेश की खुशहाली का आशीर्वाद मांगा। ओडिशा के किसान ने उगाया दुनिया का सबसे महंगा आम मियाजाकी, 1.5 लाख से 3 लाख तक बताई जा रही कीमत। आम का एक एक फल 1 किलो से अधिक वजन का, आम को देखने के लिए पहुंच रहे लोग। सरिस्का में गुंजी गिलकारी बाघिन SC22 के ने 3 शावकों को जन्म दिया, बाघों की संख्या 55 हुई। नागपुर में कुएं में गिरा बाघ, वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। अगरतला में राज्यपाल इंद्रसेन रेड्डी नलू ने जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 का किया उद्घाटन, डिजिटल वन अधिकार अधिनियम का भी शुभारंभ किया। अपकमिंग माइथोलॉजिकल रामायण बनी भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म। रणबीर कपूर निभाएंगे भगवान राम का किरदार। नवनीत मल्होत्रा ने रणबीर कपूर को दिया रामायण का ऑफर। लंदन में हुई थी रामायण को लेकर रणबीर और नमित की पहली मुलाकात। रणबीर ने पहले ठुकराया था रामायण का ऑफर, बोले मैं भगवान राम का रोल करने योग्य नहीं, लेकिन कहानी सुनते ही बदल गया फैसला। नितेश तिवारी के विजन से प्रभावित हुए रणबीर रामायण को बताया जिंदगी में एक बार फिर से मिलने वाला मौका, ये हमारी संस्कृति और इतिहास। हाईटेक वीएफएक्स और मेगा बजट से सजेगी फिल्म, 2 भागों में रिलीज होगी भव्य रामायण। दिवाली पर रिलीज होगी रामायण की का पार्ट 1। दर्शकों को मिला आज मनोरंजन का मेगाडोज। सिनेमाघरों में 9 नई फिल्में रिलीज। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर 5 नई फिल्में और सीरीज रिलीज। कंगना रनौत की फिल्म भारत भाग्य विधाता का मोशन पोस्टर जारी, 12 जून को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। बेबी डू डाई डू की रिलीज डेट घोषित, 3 जुलाई 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी फिल्म। डॉन 3 विवाद में सलमान खान की एंट्री, रणवीर फरहान अख्तर के बीच कराएंगे सुलह। इम्फाल में MSFDS 16वें मणिपुर राज्य फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन, मणिपुर सिनेमा की उत्कृष्टता को किया गया सम्मानित। ETS यूरिश ने विकसित किया अंडरवाटर रोबोट पोलरिस, जमी हुई झीलों के नीचे से बर्फ की मोटाई मापेगा स्मार्ट सिस्टम। रोबोट बर्फ के नीचे हो रहे पिघलाव का बनाएगा सटीक मैप। अल्पाइन झीलों में जलवायु बदलाव पर शोध को मिलेगी नई दिशा। खतरनाक और कठिन इलाकों में बिना मानव प्रवेश की करेगा काम। सुनार और प्रेशर सेंसर में से जुटाएगा सेंटीमीटर सर डेटा। वैज्ञानिकों के लिए बर्फ की संरचना समझना होगा आसान। पोलरिस से बर्फ की निगरानी बनेगी अधिक सुरक्षित और सटीक। सेंट मार्टिन्स और थियोडुल झीलों में चल रहा शुरुआती परीक्षण, स्थानीय प्रशासन को सर्दियों की सुरक्षा जांच में मिलेगी मदद। चीन में वर्ल्ड इंटेलिजेंट एक्सपो 2026 में रोबोट कार्निवल का धमाकेदार आगाज। त्यांजन में रोबोट डांस शो ने मचाया धमाल। रोबोट से मार्शल आर्ट से दिखाया हुनर, ड्रोन लाइट शो ने आसमान को रोशन किया। त्यांजन कल्चरल सेंटर बना टेक्नोलॉजी हब।
स्मार्ट रोबोट्स की प्रदर्शनी ने खींचा सबका ध्यान। स्टेज शो में AI रोबोट्स की शानदार

0: परफॉर्मेंस. इंटेलिजेंस मार्केट में देखिए आधुनिक टेक्नोलॉजी. 700 से ज्यादा कंपनियों ने टेक्नोलॉजी का किया शोकेस. 7 बड़े प्रदर्शनी क्षेत्रों में देखिए एआई की ताकत. 200 से ज्यादा नए प्रोडक्ट्स और टेक्नोलॉजी लॉन्च. स्मार्ट सिटी और इंडस्ट्री में एआई का तेजी से विस्तार. वर्ल्ड कप से पहले खिलाड़ियों का ऐसा वार्म अप पूरी दुनिया में चर्चा का विषय. ब्राजील के रियो में यही खेल अल्टिन्हा के नाम से अलग अलग पहचान बना चुका है. रियो के बीचेस पर खेला जाने वाला अल्टिन्हा फुटबॉल प्रेमियों का बन रहा है नया जुनून. इसमें खिलाड़ी बिना हाथ लगाए गेंद को हवा में बनाए रखते हैं. 1960 के दशक में शुरू हुआ अल्टिन्हा अब ग्लोबल स्पोर्ट्स बनता जा रहा है. पूर्व फुटबॉलर और सेनेटर रोमारियो इसे ओलंपिक खेल बनाने की कर रहे मांग. अल्टिन्हा में खिलाड़ियों की ट्रिक्स और टीम वर्क दर्शकों को खूब आकर्षित कर रहे हैं. चैंपियनशिप में गेंद को ज्यादा देर तक हवा में रखने पर मिलते हैं अंक. ब्राजील की गलियों और बीचेस से निकला अल्टिन्हा अब बन रहा है इंटरनेशनल पहचान. खेल का मकसद गेंद और खिलाड़ियों के बीच बेहतरीन तालमेल दिखाना. बर्लिन में गर्मी का दिखा असर. लोग झीलों और पार्कों में धूप का आनंद लेते नजर आए. झील में युवाओं ने पैडल बोर्डिंग और तैराकी का लिया मजा. किनारों पर लोग सनबाथ लेते और ठंडे पेय का मजा लेते नजर आए. फ्रैंकफर्ट में लोग सुहावने मौसम के बीच जॉगिंग और साइकिलिंग करते नजर आए. पुल और हरियाली ने शहर की खूबसूरती को बढ़ाया. बॉन मौसम वैज्ञानिक कार्सन ब्रांट ने यूरोप में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की. अटलांटिक से ठंडी हवाएं ला रही यूरोपीय मानसून जैसी स्थिति. जर्मनी समेत यूरोप में सामान्य से ज्यादा पड़ सकती है गर्मी. हालांकि लंबी अवधि के मौसम पूर्वानुमान पूरी तरह से सटीक नहीं माने जाते. फ्रेंच ओपन में भीषण गर्मी के बीच फैंस खिलाड़ियों को देखने पहुंचे. 32 डिग्री से ज्यादा तापमान में लोग पानी पंखे और कूल बैग लेकर आए. इटली के जैनिक सुनर गर्मी से जूझते नजर आए. अर्जेंटीना के जॉन मिल ने उन्हें 5 सेट में हराकर बड़ा उलटफेर किया. पेरिस में मई महीने की रिकॉर्ड गर्मी देखने को मिली. मौसम विभाग के मुताबिक 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा पारा. कई दर्शक छांव वाली सीट पाने के लिए जल्दी पहुंचे. फैंस ने सनस्क्रीन पानी और हाथ वाले पंखों का सहारा लिया. भीषण गर्मी के बावजूद फ्रेंच ओपन का उत्साह नहीं हुआ कम. पर्यटक बोले मौसम कैसा भी हो हम मैच कर लेंगे मजा. बार्सिलोना में जून से शुरू होने से पहले पड़ने लगी है तेज गर्मी. टूरिस्ट और लोकल लोग समुद्री किनारों पर जाकर राहत लेते नजर आए. स्पेन में साल की पहली एक्सट्रीम हीट वेव ने लोगों की परेशानी बढ़ाई. कई इलाकों में तापमान 30 से 38 डिग्री तक पहुंचा. स्पेन की मौसम एजेंसी ने कई क्षेत्रों में येलो अलर्ट का जारी किया. कई इलाकों में गर्मी को लेकर चेतावनी. कैटलोनिया में लोग सनस्क्रीन पानी की बोतल और बीच का सहारा लेते नजर आए. मई महीने में इतनी गर्मी को माना जा रहा है असामान्य. मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक स्पेन में यह गर्मी मिड समर जैसी हो रही है. अगले हफ्ते तापमान थोड़ा घटने के संकेत.
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है. कम से कम लोगों को.
2: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits,
3: somebody save me,
2: to timeless favorites,
3: and life is like a song,
2: and new discoveries.
3: So much more than a history. Wake up.
2: It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits.
5: Yeah, I tried to.
4: But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads.
5: Thank God I get to wake
4: and everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
8: और दुर्भाग्य कहता है
9: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।

0: शुक्र की कौन सी राशि बहुत जिद्दी मानी जाती है? शुक्र की कौन सी राशि के लोग बहुत उदार होते हैं? और शुक्र की राशि का सूर्य और शनि से क्या संबंध है? कौन सी है शुक्र की राशियां और क्या है उनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
1: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
5: प्रिंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
6: Sage University, transforming your passion into profession.
7: रामनगरी अयोध्या में माता दुर्गा मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ धार्मिक अनुष्ठान, साधु संतों की मौजूदगी में हुआ समारोह। ऋषिकेश में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की गंगा आरती, तीर्थ क्षेत्र के मुद्दों पर साधु संतों से मुलाकात और संवाद। लखनऊ के साईं भक्त ने बाबा को भेंट किया स्वर्ण मुकुट, बेशकीमती पत्थरों से बने कमल पर उकेरा गया ओम, 782 ग्राम के इस मुकुट पर दो मयूर की नक्काशी। कोलकाता में तेज हवाओं के साथ जमकर हुई बारिश, उमस और गर्मी से लोगों को मिली राहत, सड़कों पर गिरे पेड़ हटाने में जुटा प्रशासन। उत्तराखंड के पहाड़ों को प्लास्टिक कचरा मुक्त बनाने में जुटा इंग्लैंड से आया मेहमान, अल्मोड़ा के कसार देवी इलाके में हर रोज स्वच्छता अभियान चलाते हैं मार्क। रेलवे ट्रैक के रेलबाजों पर प्रशासन हुआ सख्त, झांसी रेलवे स्टेशन पर ड्रोन कैमरों से की जा रही है लाइव निगरानी, संदिग्ध और पत्थरबाजों पर पैनी नजर।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में।
1: नमस्कार।
0: देखिए, यूं तो शुक्र यानी कि वीनस खूबसूरती और ऐश्वर्य का ग्रह है, लेकिन आखिर वो कौन सी राशियां हैं जो कि शुक्र की राशियां कहलाती हैं और इन राशियों की क्या विशेषताएं हैं, उसके बारे में आज के कार्यक्रम में पंडित जी से बात करेंगे। लेकिन इससे पहले उनसे जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।
1: अगर आप जीवन में सुख चाहते हैं, समृद्धि चाहते हैं, तो हर शुक्रवार को देवी के मंदिर में, चाहे माँ लक्ष्मी का मंदिर हो, माँ काली का मंदिर हो, माँ दुर्गा का मंदिर हो, वहां पर सफेद मिठाई का दान करिए, खुद भी प्रसाद ग्रहण करिए और लोगों को भी खिलाइए। अगर ऐसा आप हर शुक्रवार के शुक्रवार देवी के मंदिर में जा करके करें तो आपके जीवन में सुख बड़ी आसानी से आएगा।
0: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं 30 मई 2026 यानी कि दिन शनिवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 30 मई 2026 दिन शनिवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि, नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और पंडित जी, सबसे पहले मैं यही जानना चाहती हूँ कि आखिरकार शुक्र की राशियां कौन सी होती हैं और उनमें क्या कुछ खास होता है, क्या विशेषताएं होती हैं उनकी।
1: जी देखिए, किसी भी ग्रह का जो रिफ्लेक्शन होता है, किसी भी ग्रह का जो गुण होता है, वो उसकी राशियों के माध्यम से पता चलता है, अभिव्यक्त होता है। हम आज बात कर रहे हैं शुक्र की राशियों के बारे में। शुक्र की राशियों की विशेषता क्या है? देखिए, शुक्र मुख्यतः जल तत्व का प्लेनेट है और इसकी दो राशियां ज्योतिष में मानी जाती हैं, वृषभ राशि और तुला राशि। वृष राशि जो है ये पृथ्वी तत्व की राशि है और तुला राशि जो है ये वायु तत्व की राशि है। हालांकि दोनों के स्वामी शुक्र हैं। वृष राशि के लिए शुक्र डिसिप्लिन पैदा करता है, सिस्टम पैदा करता है। वृषभ राशि वाले ज्यादातर डिसिप्लिन्ड और सिस्टमेटिक होते हैं। तुला राशि के लिए शुक्र उन्माद जन्य होता है। तुला में शुक्र के अंदर चंचलता आती है। तुला राशि वालों के पास उन्माद, प्रेम, चंचलता, भटकाव ये थोड़ा ज्यादा होता है। वैसे इन दोनों में शुक्र के जो ज्यादा निकट राशि है या जिस राशि के अंदर शुक्र के गुण ज्यादा पाए जाते हैं, वो राशि है लिब्रा यानी तुला। तो देखिए, वैसे तो शुक्र की दोनों ही राशियां हैं, वृषभ भी और तुला भी, लेकिन दोनों का बेसिक नेचर, दोनों का बिहेवियर और दोनों का भाग्य लगभग अलग अलग होता है।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
1: मेष राशि अविवाहित हैं तो इस समय विवाह के मामलों में तेजी आएगी, करियर में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा। खाने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन की स्थितियां ठीक रहेंगी, मानसिक तनाव कम होगा, परिवार में शुभ कार्य होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, रुका हुआ धन आपको मिल सकता है, दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: तो चलिए सबसे पहले शुक्र की पहली राशि यानी वृषभ राशि के बारे में बात कर लेते हैं। तो इन जातकों को अपने जीवन में क्या कुछ बाधाएं आती हैं, किन कुछ सावधानियों का इन्हें ध्यान रखना चाहिए, आइए पंडित जी से जानते हैं।
1: तो शुक्र की जो पहली राशि है उसे कहते हैं वृषभ, यानी वृष भी कहते हैं, टॉरस भी कहते हैं। इसकी विशिष्टताएं क्या हैं? एक तो ये पृथ्वी तत्व की राशि है, अर्थियल एलिमेंट की राशि है, बड़ी मजबूत राशि मानते हैं इसको। और इस पृथ्वी तत्व की राशि का जो स्वामी है वो शुक्र है। चंद्रमा की बड़ी प्रिय राशि है वृषभ। चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च का हो जाता है तो चंद्रमा के लिए बड़ी प्रिय राशि है, इसलिए चंद्र वाला भी थोड़ा खूबसूरती का पार्ट वृषभ राशि में आ जाता है। इस राशि में बुध की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर किसी की राशि वृषभ है और बुध उसकी कुंडली में थोड़ा भी फेवरेबल है तो वृष वालों को बड़ा फायदा पहुंचाता है। इस राशि को सौंदर्य की राशि, दिखने में अच्छे होते हैं, साहसी राशि और आत्मविश्वास की राशि माना जाता है। वृषभ राशि जो है ये मुख्यतः वाणी की राशि है, बोलने से इसका संबंध है और आपके धन से इसका संबंध है। तो ये राशि वाणी और धन को सीधे तौर से प्रभावित करती है। हालांकि देखिए शुक्र वाले लोग अनुशासित नहीं होते, लेकिन वृषभ के बारे में ये बात ठीक नहीं है। वृषभ राशि शुक्र से प्रभावित होने के बावजूद डिसिप्लिन्ड रहती है। 90% वृषभ राशि के लोग जीवन में सिस्टम से चलते हैं। इस राशि की सबसे बड़ी कमजोरी है जिद्दी और क्रोधी स्वभाव। जैसे बैल है ना, सड़क पे बैठ गया आप हॉर्न बजाते रहिए वो हिलेगा नहीं, तो वृषभ का प्रतीक क्या है? बैल। इसीलिए जिद बहुत है, क्रोध बहुत है, ताकत बहुत है और जिद में क्रोध में आने पर अनियंत्रित हो जाते हैं। जो वृषभ राशि के लोग हैं इनको सलाह लेकर एक पन्ना धारण करना चाहिए और वृषभ वालों को अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए भगवान शिव की उपासना जरूर करनी चाहिए।
0: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
1: कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान इस समय बनाए रखें। परिवार में तनाव हो सकता है, यात्रा में सावधानी रखेंगे। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, कोई महत्वपूर्ण काम बन जाएगा, लेकिन काम के मामले में, व्यापार में, नौकरी में व्यस्तता बहुत रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, थोड़ी सी व्यस्तता आपकी बनी रहेगी, धन के मामलों में सफलता मिलेगी, ऑफिस की समस्या कम हो जाएगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब समय हो गया है आपका सवाल लेने का, तो पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का पहला सवाल वो किस व्यूअर का ले रहे हैं।
1: जी, आज का पहला प्रश्न आकाश गुप्ता जी ने हमें लिखा है, कानपुर से लिखते हैं। 31 मार्च 1998 का जन्म है, 7:40 प्रातः, कानपुर उत्तर प्रदेश। ये कह रहे हैं कि मैं काफी समय से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, खास तौर से मैं रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। क्या मुझे नौकरी मिलेगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? आकाश जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आप अपनी रेलवे की तैयारी जारी रखिए और साथ में यूपी पीसीएस की तैयारी भी करिए, क्योंकि आपकी कुंडली में उच्च पद प्राप्त करने की, बेहतर नौकरी मिलने की संभावना 2027 के आखिरी तक आते आते दिखाई दे रही है। 27-28 का समय बहुत ही अच्छा है और अगर आप परिश्रम करेंगे तो आपको बेहतर नौकरी मिलेगी। फिलहाल आप ऐसा करें, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और जल चढ़ाने के बाद सुबह के समय एक बार आदित्य हृदय स्तोत्र, आदित्य हृदय स्तोत्र इसका रोज सुबह पाठ करिएगा, निसंदेह आपको सफलता मिलेगी।
0: तो चलिए इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और अब समय हो गया है आज का दूसरा सवाल लेने का, लेकिन उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आप भी पंडित जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, आपके जीवन में कोई परेशानी दुख तकलीफ है, तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, इस ईमेल आईडी पर आप हमें अपने प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं। तो चलिए अब बिना देर किए पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का अगला यानी कि दूसरा सवाल वो किसका ले रहे हैं।
1: जी, अगला प्रश्न शुभम खन्ना ने कोलकाता से हमें लिखा है। 11 अप्रैल 1986 का जन्म है, 7:20 प्रातः, कोलकाता पश्चिम बंगाल। ये कह रहे हैं कि मेरी नौकरी चली गई है, मैं नौकरी तलाश कर रहा हूँ, कब तक नौकरी मिलेगी, और एक साल पहले मेरा विवाह हुआ है लेकिन पारिवारिक जीवन में सुख शांति नहीं है, तो मुझे क्या उपाय करना चाहिए। शुभम, सबसे पहले आपको बता दें कि आपको नौकरी 28 सितंबर के पहले मिलेगी। जुलाई अगस्त सितंबर के समय में आपकी नौकरी मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। दूसरी बात देखो ये है कि पारिवारिक जीवन में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, एडजस्टमेंट करने में समय कहीं भी लगता है, थोड़ा धैर्य रखिए, आपके पारिवारिक जीवन में कोई इतनी बड़ी मुश्किल नहीं है जिसकी चिंता की जाए। हाँ, आप दो उपाय करिए, एक पन्ना बनवा के पहनिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहने, और रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात शुक्र की दूसरी राशि यानी कि तुला राशि के बारे में कर लेते हैं। तुला राशि की क्या विशेषताएं होती हैं, क्यों ये राशि इतनी खास मानी जाती है और किन सावधानियों का खास ख्याल तुला राशि वालों को रखना चाहिए, आइए जानते हैं।
1: तो शुक्र की जो दूसरी राशि है उसे कहते हैं तुला, लिब्रा। क्या विशिष्टताएं हैं? देखिए, वायु तत्व की राशि है तुला और तुला के स्वामी भी शुक्र हैं। जैसे वृषभ राशि चंद्रमा की बड़ी प्रिय राशि है, वैसे तुला राशि शनि की सबसे प्रिय राशि है। शनि तुला में उच्च के हो जाते हैं। तुला वालों का स्वामी शुक्र जरूर है लेकिन इनका जीवन चलता है शनि की कृपा से। अगर किसी व्यक्ति की राशि तुला है और उसकी कुंडली में शनि बेहतर है तो वो जीवन में सफल अवश्य होगा। तुला राशि ग्लैमरस राशि है, उदार है, जेनरस है और सरल स्वभाव के लोग होते हैं तुला वाले। ज्यादा 3, 5, 56, 55 में नहीं पड़ते, उदारता से, चैन से, आसानी से जीवन जीते हैं। न्याय करना, चीजों को बैलेंस करना, आकर्षण बहुत होता है इनके अंदर और धन भी बहुत होता है इनके पास। तुला वाले जो हैं वो दूसरों को बड़ी सरलता से अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। कुंडली किसी की भी हो, तुला राशि प्रेम और विवाह के लिए बड़ी महत्वपूर्ण राशि मानी जाती है। तुला राशि के साथ जो सबसे अहम बात है कि कुंडली में अगर तुला राशि में पाप ग्रहों का कॉम्बिनेशन है तो ये मैरिटल लाइफ के लिए अच्छा नहीं होगा। तुला वालों की सबसे बड़ी कमजोरी है कि ये पॉम्प एंड शो बहुत करते हैं, दिखावा बहुत करते हैं। थोड़ा भी रहेगा लेकिन दिखावा बहुत करेंगे और दूसरों पर जल्दी भरोसा करते हैं। लोग इनको यूज करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं, इनको उल्लू बनाकर लोग अपना काम निकलवा लेते हैं। क्योंकि देखिए, दिखावा भले करें लेकिन बेसिकली स्वभाव से सरल होते हैं। तुला राशि वालों को नियमित रूप से शनि देव की उपासना करनी चाहिए। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, रोज शाम को एक माला शनि मंत्र ओम शं शनैश्चराय नमः इसका जप करें और सलाह लेकर तुला वाले शनि का रत्न यानी नीलम अगर ये पहने, तुला वाले सलाह लेकर, तो इनको बहुत फायदा होगा।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी से जान लेते हैं तुला वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या है।
1: तुला राशि, धन प्राप्ति के मजबूत योग बन रहे हैं, परिवार में व्यस्तता बढ़ी रहेगी, हालांकि रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, परिवार में मतभेद हो सकता है, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, वाहन सावधानी से चलाएं, शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, करियर की समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, किसी धर्म स्थान पर जा सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
0: तो अगर आपकी राशि वृषभ है और आपके जीवन में लगातार समस्याएं आ रही हैं, बाधाओं का सामना आपको करना पड़ रहा है, तो क्या कुछ उपाय आपको करने चाहिए? आइए पंडित जी से जानते हैं।
1: देखिए, हर राशि का एक नेचर होता है, उसके अपने ग्रह प्लस माइनस होते हैं, जिसके हिसाब से उसके जीवन में लाभ और हानि होती है, फायदा और नुकसान होता है। अगर आपकी राशि वृषभ है, जीवन में मुश्किल आ रही है, तो क्या करेंगे? वृष राशि वालों को हमेशा बेवजह के संघर्ष से बचना चाहिए। हर जगह प्रेशर बनाने से, हर जगह संघर्ष करने से काम नहीं होगा। और इस राशि के लोग कभी कभी बेवजह मेहनत करते हैं, व्यर्थ की मेहनत करने लगते हैं, तो वो भी मत करिए, मेहनत को व्यर्थ मत करिए। वृषभ राशि वालों को सुबह और शाम दोनों समय माता लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। श्री सूक्तम पढ़ें, महालक्ष्मी स्तोत्र पढ़ें, इंद्रकृत लक्ष्मी स्तोत्र पढ़ें या माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें। और वृषभ वालों को चांदी जरूर पहननी चाहिए, एक चांदी का कड़ा अगर वृषभ राशि वाले धारण करें तो उनके लिए बहुत बेहतर होगा।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात तुला राशि की कर लेते हैं। अगर आपकी राशि तुला है यानी लीब्रा है और आपके जीवन में लगातार समस्याएं आ रही हैं, तो क्या कुछ उपाय आपको करने चाहिए, आइए जानते हैं।
1: देखिए, तुला राशि वाले जो है ना, वो चंचलता की वजह से, फोकस सही ना होने की वजह से मार खा जाते हैं। सबसे अहम बात यह है कि अगर आपकी राशि तुला है तो अपने पारिवारिक जीवन का बहुत ध्यान रखिए, अपनी फैमिली लाइफ का ध्यान बनाए रखिए, क्योंकि अक्सर तुला वालों को पारिवारिक जीवन को लेकर और वैवाहिक जीवन को लेकर समस्याएं परेशान करती हैं। तुला राशि वालों को रोज शाम को या अर्ली मॉर्निंग शुक्र के मंत्र का जप करना चाहिए, या तो ओम शुं शुक्राय नमः या ओम द्रां द्रीं द्रौं सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का जप करें। और सलाह लेकर तुला वालों को एक पन्ना पहनना चाहिए ताकि उनके निर्णय सही हों, उनकी बुद्धि सही समय पर उनका साथ दे सके।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं मकर कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल क्या है।
1: मकर राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। करियर में आपके व्यस्तता रहेगी। विवाह के मामलों में आपके तेजी आएगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, कारोबार में लाभ होगा। स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। पूजा उपासना में थोड़ा समय लगाएं। हनुमान चालीसा का पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर में समस्या के योग हैं। व्यर्थ का मानसिक तनाव हो सकता है। वाहन सावधानी से चलाइएगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
0: चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम में अब समय हो गया है आपका सवाल लेने का, तो पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का तीसरा सवाल वो किसका ले रहे हैं।
1: जी, अगला प्रश्न संगीता जी ने लखनऊ से लिखा है। अपने दोस्त के बारे में जानना चाहती हैं। इनके दोस्त की जन्म तारीख है 24 जनवरी 1989, 7:15 सवेरे, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। ये कह रही हैं कि मेरे दोस्त का एक विवाह का मुकदमा अपनी पत्नी के साथ चल रहा है। मेंटेनेंस भी मेरा दोस्त दे रहा है। बहुत सारे झूठे आरोप हैं उसके ऊपर। इस मुकदमे से मुक्ति कब तक मिलेगी? संगीता जी, आपके दोस्त की कुंडली है मकर लग्न और सिंह राशि की। महादशा चंद्रमा की और अंतर दशा बुध की चल रही है। देखिए, ज्योतिष के हिसाब से फरवरी 2027 के बाद इस मुकदमे से आपके मित्र को मुक्ति मिलेगी। फरवरी 2027 के बाद ये मामला आपसी सुलह समझौते से हल हो जाएगा। दूसरा, आप अपने दोस्त को बोलिए कि इस समय अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखेंगे, चोट चपेट और दुर्घटनाओं से बचाव करेंगे। एक इनको ओपल बनवा के पहनाइए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके इनको पहनाएं और इनको बोलिए कि रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करेंगे, ओम शं शनैश्चराय नमः। अगर ये दो उपाय निरंतर करते जाएं, बहुत जल्दी मैरिटल मुकदमे से छुटकारा मिल जाएगा।
0: तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब वक्त हो गया है आज का चौथा सवाल लेने का। लेकिन उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आप भी पंडित जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, इसी ईमेल आईडी पर आप हमें अपने प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं। तो चलिए अब बिना देर के पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का अगला यानी कि चौथा सवाल वो किसका ले रही हैं।
1: जी अगला प्रश्न नेहा ने हमें लिखा है। नेहा हमें बांदा उत्तर प्रदेश से मेल लिखती हैं, अपने पिता के बारे में जानना चाहती हैं। इनके पिता की जन्म तारीख है 2 फरवरी 1955, 1:27 मध्य रात्रि को एएम, जन्म स्थान है बांदा उत्तर प्रदेश। ये कह रही हैं कि हमारे पूरे परिवार में संघर्ष बहुत ज्यादा है, मैं और मेरे भाई अभी बेरोजगार हैं, पिता का मकान नहीं है, तो पिताजी का मकान कब तक बनेगा, परिवार में सफलता कब तक आएगी, सुख शांति कब तक आएगी। नेहा आपके पिताजी की कुंडली बनती है तुला लग्न की और वृषभ राशि की, महादशा बुध की और अंतरदशा भी बुध की चल रही है। देखिए सबसे पहली बात यह है कि आपके परिवार के जो हालात हैं, जो स्थितियां हैं, वो अक्टूबर 2026 के बाद से धीरे धीरे बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। साल 2027 में जनवरी से लेके और अक्टूबर के बीच में कोई मकान का लाभ, किसी संपत्ति का लाभ आपके पिता को हो सकता है, ये संभावना दिखाई दे रही है। एक तो अपने पिताजी को आप ओपल बनवा के पहना दीजिए, लगभग 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को ओपल बनवा करके पहनाइए और अपने पिताजी को बोलिए कि रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे। अगर ऐसा नियमित रूप से करते जाएं तो जैसे जैसे पाठ करते जाएंगे वैसे वैसे परिवार की स्थितियां बेहतर हो जाएंगी।
0: तो पंडित जी आज के कार्यक्रम में हमने वृषभ और तुला राशि के बारे में बात की, आपने बताया कि ये वीनस की राशियां हैं यानी शुक्र की ये राशियां हैं, क्या कोई और ऐसा ग्रह है जिनसे इन राशियों का संबंध है?
1: जी देखिए वृषभ राशि शुक्र की राशि है, लेकिन वृषभ राशि चंद्रमा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चंद्रमा अगर वृषभ राशि में बैठेगा तो बहुत ताकतवर, बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। तो वृषभ राशि के लिए चंद्रमा बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है और तुला राशि के लिए सूर्य और शनि इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि तुला राशि में जब शनि जाता है तो वो उच्च का हो जाता है, बहुत शक्तिशाली होता है और वहां पर शनि अपनी पूरी योग्यता दिखा देता है। तुला राशि सूर्य की सबसे कमजोर राशि है, जब सूर्य तुला राशि में जाते हैं तो अत्यधिक कमजोर हो जाते हैं और सामान्यतः व्यक्ति को बहुत सारी बीमारियां और बहुत सारी स्वास्थ्य की समस्याएं देते हैं। तो ये बात तो ठीक है कि वृषभ और तुला शुक्र की राशियां हैं, लेकिन तीन ग्रहों से इनका कनेक्शन है। वृषभ का संबंध चंद्र से है और तुला का संबंध शनि और सूर्य से भी देखा जाता है।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जिनका जन्मदिन 30 मई को है आप सभी को हैप्पी बर्थडे। पंडित जी से जान लेते हैं कि आप सभी का आने वाला साल कैसा रहने वाला है।
1: जिन लोगों का जन्मदिन 30 मई को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, करियर की स्थिति मध्यम रहेगी, इस साल धन और कर्ज की स्थिति में सुधार होगा। अगर अविवाहित हैं तो अविवाहितों का विवाह हो सकता है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर बृहस्पति मंत्र का जप करें, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, तो ये वर्ष आपके लिए बेहतर होगा।
0: और अब कार्यक्रम के अंत में समय हो गया है पंडित जी से जानने का कि आखिरकार आज की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है।
1: आज की जिज्ञासा है कि क्या कलाई घड़ी रिस्ट वॉच आपके भाग्य पर असर डालती है। देखिए, कलाई घड़ी का रंग और कलाई घड़ी का स्ट्रैप यानी फीता, ये आपके जीवन पर असर डाल देता है। अपने अनुकूल ग्रह के अनुसार अगर घड़ी का डायल और स्ट्रैप रखते हैं आप, तो समय को अपने हिसाब से कंट्रोल करने में लाभ होगा और आपका खराब से खराब समय भी आसानी से बीत जाएगा।
0: तो चलिए अब कार्यक्रम के अंत में पंडित जी से जान लेते हैं 30 मई 2026 यानी कि शनिवार का शुभ पहर कौन सा है।
1: दिनांक 30 मई 2026 दिन शनिवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा। आपके रोजगार और करियर की स्थिति में सुधार होगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 30 मई शनिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
0: और अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आज की भाग्यशाली यानी आज की गुडलक राशि कौन सी है।
1: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय करें। आज की गुडलक राशि है कन्या। जीवन की बेहतरी के लिए भगवान विष्णु की उपासना करें और नियमित रूप से अपनी सामर्थ्य के अनुसार निर्धनों को अन्न का, वस्त्र का, भोजन का दान करते रहें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन की रुकावटें दूर हो जाएंगी।
0: और अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं जहां हम पंडित जी से जानेंगे कि आज का महा उपाय आखिर क्या है।
1: बहुत बार ऐसा समय जिंदगी में आ जाता है कि हमारे रिश्ते सबके साथ बिगड़ने लगते हैं। दोस्त के साथ, परिवार के साथ, पति पत्नी, संतान के साथ रिश्ते रोज रोज खराब हो रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो क्या उपाय करें। रोज सवेरे पूजा के स्थान पर धूप बत्ती जलाकर प्रार्थना करें कि आपके रिश्ते खराब ना हों। अपने घर से पुरानी और अनुपयोगी चीज जिसका आप प्रयोग नहीं करते उसको हटा दें और हर शुक्रवार को किसी भी देवी के, माता के मंदिर में सफेद मिठाई अर्पित करें। ऐसा निरंतर आप करते जाएं, आपके जो रिश्ते लगातार टूट रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं, वो बेहतर होने शुरू हो जाएंगे।
0: पंडित जी, हमें तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद।
0: तो आज के लिए हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।

0: something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
1: It's your boy,
0: just
1: Jay-Z.
0: Search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की।

0: एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर।
2: You can stream all the podcasts you already love right on TuneIn. Available on your smartphone, on your tablet, and even on your connected devices. There's so much to explore, like mind-blowing facts about your world.
3: So they were disallowed from speaking their language.
2: In-depth conversations with A-list celebrities.
4: No, I was ready to go. You know, after I wanted to fulfill my contract.
2: True crime podcasts you just can't stop listening to.
5: Others escape justice to live and die in infamy. These
2: plus the news and sports content you crave in podcast form.
6: Couldn't run in a straight line very quickly and didn't have much of an arm. His arm is stronger now.
2: So whether you want to save your go-to shows for later by subscribing and listening offline, or you want to discover a whole slate of new podcasts to be obsessed with, TuneIn is your destination. True crime, sports, lifestyle, culture, news, and so much more. TuneIn is Podcast Central. Hear them all here.
7: शुक्र की कौन सी राशि बहुत जिद्दी मानी जाती है? शुक्र की कौन सी राशि के लोग बहुत उदार होते हैं और शुक्र की राशि का सूर्य और शनि से क्या संबंध है, कौन सी है शुक्र की राशियां और क्या है उनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
8: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
9: और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत
0: गुड न्यूज़ टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
9: रामनगरी अयोध्या में माता दुर्गा मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ धार्मिक अनुष्ठान, साधु संतों की मौजूदगी में हुआ समारोह। ऋषिकेश में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की गंगा आरती, तीर्थ क्षेत्र के मुद्दों पर साधु संतों से मुलाकात और संवाद। लखनऊ के साईं भक्त ने बाबा को भेंट किया स्वर्ण मुकुट, बेशकीमती पत्थरों से बने कमल पर उकेरा गया ओम, 782 ग्राम के इस मुकुट पर दो मयूर की नक्काशी। कोलकाता में तेज हवाओं के साथ जमकर हुई बारिश, उमस और गर्मी से लोगों को मिली राहत, सड़कों पर गिरे पेड़ हटाने में जुटा प्रशासन। उत्तराखंड के पहाड़ों को प्लास्टिक कचरा मुक्त बनाने में जुटा इंग्लैंड से आया मेहमान, अल्मोड़ा के कसार देवी इलाके में हर रोज स्वच्छता अभियान चलाते हैं मार्क। रेलवे ट्रैक के रेलबाजों पर प्रशासन हुआ सख्त, झांसी रेलवे स्टेशन पर ड्रोन कैमरों से की जा रही है लाइव निगरानी, संदिग्ध और पत्थरबाजों पर पैनी नजर।

अर्ज किया है, बदले हुए से लगते हैं अब मौसमों के रंग, पड़ता है आसमान का साया जमीन पर। नमस्कार, मैं हूं शगुफ्ता साहिल देव, आप देख रहे हैं GNT स्पेशल। हमदम कश्मीरी के इन शब्दों की ही तरह मौसमों के बदलने पर बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ कहा गया। GNT स्पेशल में भी आज बात होगी मौसम के उसी बदलाव पर जिसने वीकेंड से पहले खुश होने का बहाना दे दिया है। यूं तो मई के महीने ने अब की बार बेहद तपाया, लेकिन जाते जाते मई ने राहत की सौगात भी दे दी है। मई का आखिरी शुक्रवार वाकई शुक्र मनाने वाला वार रहा, शुक्र हीट वेव और तपती गर्मी से निजात के लिए। गुरुवार शाम से शुरू हुआ बारिश का दौर पहाड़ों और मैदानी इलाकों के लिए राहत लेकर आया है। पिछले कई दिनों से जो पारा 45 डिग्री के पार चल रहा था, कल शहर शहर हुई बारिश ने तापमान में थोड़ी सी राहत दे दी। भीषण गर्मी में दिन में निकलना किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन अब कुछ दिन के लिए मौसम साफ और सुहावना रहने वाला है। कई शहरों में आज सुबह की शुरुआत हल्की ठंडी हवा और खुशनुमा मौसम के साथ हुई। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि पूरे वीकेंड बारिश का ये दौर जारी रह सकता है। आज के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट, जबकि शनिवार रविवार के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। आइए आपको बताते हैं कि गर्मी से राहत देने वाली ये बारिश कहां कहां हुई और क्यों हुई।

0: मई की तपिश में राहत की बौछार हो गई। झमाझम बारिश से धरती गुलजार हो गई। इस बार का वीकेंड देश के कई हिस्सों के लिए तोहफे में सुकून की बौछार लेकर आया है। नौतपों के बीच दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया।
1: चिलचिलाती गर्मी और धूप से परेशान दिल्ली वालों के लिए गुरुवार की शाम राहत लेकर के आई, जब तेज हवाएं चली, धूल भरी आंधी चली और उसके बाद हल्की हल्की बारिश हुई, जिसके चलते मौसम और तापमान में अच्छी खासी गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिन तक इसी तरीके का मौसम जो है वो फिलहाल दिल्ली एनसीआर में बने रहने की उम्मीद है। जिस तरीके से कल देर शाम को बारिश हुई, ऐसा ही मौसम आज दिन भर जो है वो मौसम विभाग की माने तो बना रहेगा। कई इलाकों के अंदर हवाएं जो है वो तेज गति के साथ चलेंगी और उसके साथ साथ बादल भी छाए रहेंगे और उसके अलावा कई इलाकों में हल्की हल्की बारिश भी जो है वो हो सकती है। मौसम विभाग अगर बात की जाए तो जिस तरीके से कई दिनों से लगातार दिल्ली में रहने वाले लोग, खासतौर पर उत्तर भारत के भी लोग जो चिलचिलाती गर्मी और लू से परेशान थे, उनके लिए राहत जरूर लेकर के आई है।
0: कल तक जहां सूरज आग उगल रहा था, वही अब बादल झमाझम बरस रहे थे। गुरुवार शाम से ही उत्तर पश्चिम भारत के शहरों में आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश हुई, जिसके बाद देखते ही देखते तापमान में भारी गिरावट आने लगी। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार शाम से बदला मौसम का ये मिजाज रविवार तक ऐसा ही बने रहने की संभावना है। मौसम की करवट को देखते हुए अगले 2 दिनों के लिए दिल्ली एनसीआर, यूपी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कहीं तेज, कहीं मध्यम, कहीं कहीं थोड़ा नुकसान भी हुआ, पर पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी, चिलचिलाती धूप, उमस भरी रात झेल रहे लोगों के लिए मौसम का ये दौर सुकून लेकर आया है। तापमान में आई गिरावट से मौसम सुहाना हो गया।
2: उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में थोड़ी गर्मी से राहत मिली है लोगों को। वजह थी कल बारिश और तेज हवाएं जब चली थी, उसके बाद लगातार बारिश से कई जगह पर राहत मिली है। लोग काफी दिनों से गर्मी से परेशान थे, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में फिर चाहे आगरा से लेकर गोरखपुर तक और झांसी से लेकर लखनऊ तक टेम्परेचर में काफी कमी आई है और जिससे थोड़ा राहत मिली है।
0: मौसम की इस बदली चाल की वजह वेस्टर्न डिस्टरबेंस को बताया जा रहा है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर पहाड़ों से लेकर मैदानों तक दिखा है, जिससे तापमान में गिरावट और हीट वेव से निजात मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक जून में वापस तापमान 40 को लांघेगा, लेकिन फिलहाल हीट वेव से राहत की ये स्थिति हफ्ते भर तक बनी रह सकती है। यानी तापमान को दोबारा हीट वेव के स्तर पर आने में 7 से 8 दिन का समय लग सकता है।
3: देखिए, अभी टेम्परेचर इतने फॉल होंगे तो उनको राइज करने में फिर से थोड़ा समय लगेगा, तो फिलहाल हमारा अनुमान यही है कि 2 से 3 दिन के बाद 29 तारीख से जो हीटर कंडीशंस अबेट हो जाएंगी, उसके बाद में 30-31 तारीख के बाद में फिर से ग्रेजुअली टेम्परेचर राइज होना शुरू होंगे और उनको फिर से हीटवेव के स्तर पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा।
0: मौसम के बदले मिजाज का असर बनारस में भी दिखा। काशी में लगातार 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच रहे तापमान ने लोगों को घरों में कैद होने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन अब बाबा विश्वनाथ की नगरी में मौसम भी मलंग हो गया है।
4: मौसम में बदलाव के चलते वाराणसी में लोगों ने राहत की सांस ली है। तड़के सुबह गरज चमक और तेज हवाओं के बीच हुई बारिश से तापमान लगभग 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे लुढ़क गया, जो सामान्य से 1.5 डिग्री नीचे बताया जा रहा है।
5: अभी तो कल से तो बढ़िया है, जब से कल से मतलब इतना ज्यादा अच्छा है, कहने बात नहीं, मतलब बारिश होने के बाद अच्छा मौसम है, ऐसा लग रहा है कि हाँ थोड़ा ठंडा है।
6: देखिए, मौसम का मिजाज तो बहुत अच्छा बदला है। जिस हिसाब से कल रात में बारिश हुई है और तूफान आया था, जिस हिसाब से लोग कह रहे थे कि नौतपा लगने वाला, उस हिसाब से पब्लिक सड़क पर नहीं निकल रही थी उस डर से, तो लेकिन ऊपर वाले की क्या मर्जी थी कि कल मतलब एकाएक मौसम चेंज हुआ, उससे मतलब जो टेम्परेचर है वो थोड़ा डाउन हुआ है, जिससे लोगों को बहुत राहत मिली है और काफ़ी अच्छा लोग महसूस कर रहे हैं।
7: कल 2 बजे रात से लगातार बारिश हुई, 7 बजे सुबह तक बहुत अच्छी बारिश हुई और इस समय एकदम मौसम बहुत सुहावना हो गया है, क्योंकि एक एग्जाम मैं 25 तारीख को देने आया था, बिटिया का, सीयूटी का ही, पांडेपुर में था सेंटर। इतनी गर्मी थी सर कि लग रहा था चमड़ी जल जाएगी, लेकिन आज तो यहाँ भी और घर पर भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मौसम।
8: पहले से तो काफ़ी आराम है, तापमान कुछ गिरा हुआ है, पहले से बहुत ज़्यादा आराम है।
0: इसी तरह यूपी के झांसी में गुरुवार शाम को चली तेज हवा और बारिश ने तस्वीर बदल दी। यहाँ कुछ इलाकों में ओले भी गिरे। पानी की बौछार पड़ी तो तपती धरती ने राहत की सांस ली। 45 डिग्री टॉर्चर के बाद मौसम का ये यू टर्न हरियाणा के लोगों को भी रास आया। रेवाड़ी में झमाझम बारिश के साथ ओले भी गिरे। अचानक आए इस मौसम परिवर्तन ने लोगों को हैरान तो किया, लेकिन पिछले कई दिनों से पड़ रही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से जूझ रहे लोगों ने राहत की सांस ली। तेज हवाओं, बारिश और ओलावृष्टि के बाद तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। राजस्थान के श्रीगंगानगर में तो लोग 49 डिग्री टॉर्चर झेल रहे थे। गुरुवार दोपहर तक ये शहर दुनिया के सबसे गर्म शहरों में दूसरे स्थान पर शुमार था, लेकिन शाम होते होते कहानी बदल गई। मौसम के बदले अंदाज ने लोगों को बड़ी राहत दी। दोपहर बाद मौसम बदला, आसमान में काले घने बादल छाए। शाम होते होते तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई, जमकर ओले भी गिरे। राजस्थान के धौलपुर में भी मौसम के तेवर कुछ ऐसे ही नजर आए। दोपहर बाद आसमान में बादलों ने दस्तक दी और देर शाम तेज हवाओं के साथ बरस पड़े। तपती दोपहरी के बाद बादलों की यह मेहरबानी लोगों को सुकून दे गई। तो वहीं उत्तराखंड के बागेश्वर में इन बादलों ने बड़ा काम किया। यहां हुई बारिश और ओलावृष्टि ने जंगलों की भीषण आग बुझा दी। आसमान से गिरते ओलों ने कुछ देर के लिए बागेश्वर की जमीन को पूरी तरह ढक दिया। पश्चिम से पूर्व तक देश के कई इलाकों में यही मंजर नजर आया। ताजा बारिश सिटी ऑफ जॉय के लिए गर्मी से राहत की खुशखबरी लेकर पहुंची। पश्चिम बंगाल में राजधानी कोलकाता समेत कई इलाकों में शुक्रवार सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश के चलते लोगों को गर्मी से निजात मिली और मौसम सुहाना हो गया।
9: चिलचिलाती धूप और उमस से आखिरकार कोलकाता के लोगों को राहत मिला। शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे के बीच भारी बारिश साथ में तेज हवाओं ने टेम्परेचर को काफी नीचे ला दिया। मौसम विभाग का ये कहना है कि उत्तर बंगाल में इस तरह की बारिश जारी रहेगी और भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में फिलहाल इसी तरीके से बूंदाबांदी और कभी कभी इस तरीके का बारिश कोलकाता और इसके आसपास के जिलों में रोज होती नजर आएंगी। लेकिन लोगों को खासा परेशानी भी हुआ, क्योंकि कुछ इलाकों में कोलकाता के जहाँ पेड़ गिरे, कुछ जगहों पे जल जमा हुआ, लेकिन मौसम सुहाना हो गया।
0: महाराष्ट्र के अमरावती में भी नौतपा की तपिश के बीच 45 डिग्री तापमान में झुलसे शहर ने राहत की इस बारिश का जमकर लुत्फ उठाया। तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हुई बारिश और ओलावृष्टि से शहर का पारा नीचे लुढ़क गया और लोगों ने राहत की सांस ली।
10: तो भारत का ज्यादातर हिस्सा हीट वेव झेल रहा था, लू के थपेड़े या लू की मार झेल रहा था, और अब मौसम ने करवट ली है तो ज्यादातर हिस्सों में अब वो राहत लेकर के आई है। हालांकि इस राहत के साथ मुसीबतें ये हैं कि मौसम विभाग का पूर्वानुमान ये कहता है कि उत्तर पश्चिम भारत, पूर्वी उत्तर भारत, मध्य भारत और इसी के साथ साथ दिल्ली NCR का वो इलाका जहां पर रविवार तक अब तापमान तो गिरेगा ही, बारिश भी होंगे, लेकिन हवा की रफ्तार ज्यादा भी हो सकती है, थंडरस्टॉर्म हो सकता है, ओले गिर सकते हैं। तो अगर फलों की खेती है उस पर असर पड़ेगा। पहाड़ी इलाकों में जहां पर जंगलों की आग है वहां पर ओलावृष्टि या बारिश के साथ उस आग को बुझाने में मदद मिलेगी। तो मैदानी इलाकों में तापमान नीचे जरूर गिरेगा, लेकिन आंधी तूफान, बिजली गिरने और ओले गिरने जैसी घटनाओं से बचना जरूरी होगा। तो कुल मिलाकर के कहें कि पश्चिमी विक्षोभ इतना सक्रिय होकर के आ रहा है कि अपने साथ हवा की रफ्तार बेहद तेज ला रहे हैं, और इसीलिए दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत के ये जो गंगेटिक बेल्ट है, पूरा मैदानी इलाका है, यहाँ आपको तड़के सुबह अब वैसा तापमान महसूस नहीं हो रहा होगा। इसी के साथ साथ जो वार्म नाइट कंडीशन जिसे कहते हैं, जहां रातें भी गर्म थी, वो भी बेहतर हुई है। यानी रातों को तापमान भी नीचे आया है, दिन का तापमान भी जो अधिकतम था उसमें भी कमी आई है, लेकिन ये राहत सिर्फ रविवार तक होगी क्योंकि जून की तपिश तो अभी बाकी है। दिल्ली से मनीष के साथ मैं आशुतोष मिश्रा।
11: जहां उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में वेस्टर्न डिस्टरबेंस बारिश का दौर लेकर आया, तो वहीं देश के दक्षिणी राज्यों में प्री मॉनसून बारिश हो रही है। दरअसल मॉनसून अब देश की दहलीज पर खड़ा है और दक्षिण के द्वार से उसे भारत के मेनलैंड में प्रवेश करना है। उसी का संकेत देते हुए झमाझम बारिश के साथ दक्षिण में प्री मॉनसून ने दस्तक दे दी है। प्री मॉनसून में होने वाली बारिश मॉनसूनी बारिश से अलग होती है। देखिए, मॉनसून का फंडा तो सीधा सा है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में तापमान की वजह से पानी भाप बनकर बादलों के रूप में आगे बढ़ता है और बारिश करता है, यही मानसूनी बारिश कहलाती है। लेकिन इससे पहले होती है प्री मानसून की बारिश, जो देश के कई राज्यों में इन दिनों हो रही है। अब आपको बताते हैं कि प्री मानसून और मानसून में अंतर क्या है, दोनों समय होने वाली बारिश का पैटर्न एक दूसरे से अलग कैसे है और ये पूरा सिस्टम कैसे बनता है वो समझिए। मॉनसून की बारिश की शुरुआत दक्षिणी कोने से होती है, जबकि प्री मॉनसून की बारिश का कोई सेट पैटर्न नहीं। ये देश के दक्षिण पश्चिम या उत्तरी हिस्सों में कहीं भी पहले आती है और पहले ही चली जाती है। दोनों बारिशों में बादलों का पैटर्न भी अलग होता है। मॉनसून की बारिश के बादल परतों वाले होते हैं। परतों में मौजूद ज्यादा नमी के चलते बार बार लंबे समय तक मॉनसून की बारिश होती है। ये बादल एक से दूसरी जगह तक लंबी दूरी भी तय करते हैं, जबकि प्री मॉनसून बारिश के बादलों के साथ ऐसा नहीं होता। इनमें कम नमी होती है और ये काफी ऊपर की तरफ होते हैं। मॉनसून की बारिश कभी तेज होती तो कभी कई दिनों तक रिमझिम बारिश का सिलसिला भी चलता है, जबकि प्री मॉनसून की बारिश बेहद तेज होती है। मॉनसून की बारिश बार बार और लंबे समय तक होती है, जबकि प्री मॉनसून बारिश एक दो दिन में खत्म हो जाती है, जैसा कि अभी हो रहा है। इसके अलावा मॉनसून की बारिश के दौरान कई बार तेज चक्रवाती हवाएं भी आपको देखने को मिलेंगी, जबकि प्री मॉनसून बारिश के दौरान झोंकेदार हवा के कारण धूल वाली तूफानी बारिश होती है। साथ ही मॉनसून की बारिश बहुत बड़े इलाके में एक साथ होती है और इस दौरान पूरे क्षेत्र का मौसम एक जैसा रहता है, जबकि प्री मॉनसून बारिश एक सीमित क्षेत्र में होती है, जैसा कि हम अभी देख पा रहे हैं। अब की माई मैदानी इलाकों में तो प्रचंड गर्मी पड़ी ही, लेकिन साथ ही कई पहाड़ी राज्यों में भी पारा 40 तक पहुंचा। ऐसे में वेस्टर्न डिस्टरबेंस के बाद बदला मौसम पहाड़ी राज्यों के लिए भी राहत लेकर आया। कई शहरों में जोरदार बारिश तो कुछ ऊंचाई वाले इलाकों पर बर्फबारी भी देखने को मिली। मसलन उत्तराखंड के चमोली में मौजूद हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा के इलाके में जोरदार बर्फबारी हुई। ताजा बर्फबारी के बाद पूरा इलाका बर्फ से ढका नजर आ रहा है।

0: यहाँ तो मैदान और पहाड़ दोनों ही हीट वेव की मार झेल रहे थे, लेकिन 24 घंटों में सब कुछ बदल गया। वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते हवाओं ने कुछ ऐसा रुख बदला कि मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया। ये तस्वीरें हैं उत्तराखंड के चमोली की, जहाँ ताजा बर्फबारी के बाद सिखों का पवित्र तीर्थ हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा पूरी तरह बर्फ से ढक गया है। 23 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खोले गए थे। कपाट खुलने के बाद से अब तक यहां 22,000 से ज्यादा तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। इसी दौरान इस पूरे हफ्ते यहां कई बार बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग ने गुरुवार से पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई थी। गुरुवार शाम जहां देश के मैदानी इलाकों में जोरदार आंधी बारिश का दौर चला, तब चमोली के इस इलाके में देर रात मौसम बदला और ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के साथ भारी बर्फबारी शुरू हो गई। हेमकुंड साहिब क्षेत्र में सुबह से लगातार बर्फ गिर रही है। यहाँ जबरदस्त ठंड के साथ आसमान से बर्फ के फाहे बरस रहे हैं। पवित्र सरोवर का पानी और भी ज्यादा ठंडा हो गया है। बावजूद इसके सिख संगत में अपार उत्साह और श्रद्धा देखने को मिल रही है। भक्त बर्फ को चीरते हुए भी गुरुद्वारा साहिब पहुंचकर अरदास कर रहे हैं।
1: चमोली में एक बार फिर से मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हो रही है। सिखों का जो पवित्र तीर्थ स्थल है हेमकुंड साहिब में रुक रुक कर बर्फबारी का दौर जारी है। आसमान में देख सकते हैं लगातार बादलों का डेरा है। मौसम विभाग ने पहले ही पहाड़ों में बारिश और बर्फ ऊंचाई वाली जगहों पर बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया था। ऐसे में हेमकुंड साहिब अत्यधिक ऊंचाई पर है, वहां पे लगातार रुक रुक कर बर्फबारी का दौर जारी है। ऐसे में अब तक 22,000 से अधिक श्रद्धालु हेमकुंड साहिब में मत्था टेक चुके हैं। सिख संगतें हैं देश और विदेश दोनों ही जगहों से इस समय हेमकुंड साहिब में पहुंच रहे हैं। ऐसे में बर्फबारी के बीच जहां रास्ता फिसलन भरा हो जाता है, वहीं SDRF जो सेवादार है, भारतीय सेना है, इन रास्तों पे लगी हुई है। यात्रियों को रास्ता पार कराने में जो व्यवस्थाएं हैं, गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी भी यहां पे लगातार यात्रियों की मदद के लिए खड़ी है। हालांकि सुबह से बर्फबारी देर रात से ही बर्फबारी यहां पे हो रही है। सुबह यहां बर्फ की सफ़ेद चादर हर तरफ दिखाई दी, इसके बावजूद भी श्रद्धालुओं का जो उत्साह है, एक तो कठिन यात्रा होती है 19 किलोमीटर की, दूसरा ऑक्सीजन की कमी होती है, लेकिन जो यहां पहुंचने वाले श्रद्धालु होते हैं, चाहे वो बुजुर्ग हों या बच्चे हों, हर किसी के उत्साह में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। बर्फबारी है, कड़ाके की ठंड है, ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह अपनी अपार देखने को मिल रहा है।
0: जहां हेमकुंड साहिब में जमकर बर्फबारी हो रही है, वहीं उत्तराखंड के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। गुरुवार शाम से रुक रुक कर हो रही बारिश ने पहाड़ी राज्य के निचले इलाकों में भी तापमान काफी गिरा दिया है।
2: दो हफ्ते की चिलचिलाती गर्मी के बाद उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में देर रात तेज बारिश हुई और गुरुवार को इस बारिश के बाद कई क्षेत्रों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और इसके बाद मौसम फिलहाल सुहाना बना हुआ है। पहाड़ी क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं देहरादून समेत जो दूसरे मैदानी क्षेत्र हैं, वहां पर भी तापमान में कमी आई है। हालांकि गर्मी अभी भी बढ़ रही है और देखा जा सकता है कि मौसम विभाग ने एक बार फिर चेतावनी दी है कि अगले दो दिन में देहरादून, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर के लिए वार्निंग जारी की गई है। येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं।
0: दरअसल मई में पहाड़ों पर हो रही जोरदार बर्फबारी सबको हैरान कर रही है। कश्मीर के गुरेज और हिमाचल के मनाली में भी इस हफ्ते ऐसा ही नजारा दिखा था, तो वहीं लद्दाख के द्रास में भी इस हफ्ते जमकर बर्फ गिरी है। ये हिमालय की गोद में बसे जोजीला दर्रा की तस्वीरें हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जोड़ने वाले इस इलाके से यूं तो साल भर सर्दी नहीं जाती, लेकिन अब की मई यहां हुई जबरदस्त बर्फबारी ने सबको हैरान कर दिया है। यहां बर्फबारी का आलम ये रहा कि सड़क पर जमी बर्फ को हटाने के लिए मशीनों का सहारा लेना पड़ा। इसी तरह ये तस्वीरें कश्मीर के गुरेज सेक्टर में मौजूद तुलैल वैली की है, जहां मई के महीने ने अब की बार दिसंबर की याद दिला दी है। इस हफ्ते नॉर्थ कश्मीर के गुरेज सेक्टर और सोनमर्ग में भी जबरदस्त बर्फबारी हुई है। हिमाचल का हाल भी ज्यादा जुदा नहीं रहा। यहाँ कुल्लू मनाली के ऊपरी इलाकों रोहतांग पास, स्पीति घाटी, सोलंग वैली, केलांग और दूसरी जगहों पर जमकर बर्फ पड़ी है। एक बात अच्छी ये हुई कि इस बर्फबारी ने पहाड़ों पर पहुँचे सैलानियों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है। जाहिर है मई में किसे बर्फबारी की उम्मीद होगी, लेकिन पहाड़ी इलाकों का रुख कर रहे पर्यटकों के लिए ताज़ा बर्फबारी किसी बोनस से कम नहीं। चमोली से कमल ने अंसिलोड़ी, देहरादून से अंकित शर्मा, मनाली से मनमिंदर अरोड़ा और जोजिला से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से देशवासियों से विदेश यात्रा की जगह स्वदेश यात्रा करने की अपील की है, तभी से जीएनटी भी आपसे गुजारिश कर रहा है कि आप अपने आसपास की खूबसूरत जगहों की तस्वीरें हमें भेजें ताकि हम आपकी उन वीडियोस को यहां पर दिखाएं। तो चलिए आज आपको हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला लेकर चलते हैं, जहां के तमाम आकर्षक और खूबसूरत पर्यटक स्थल आपका इंतजार कर रहे हैं। हमारे एक दर्शक ने हमें एक ऐसा ही वीडियो भेजा है जिसमें उन्होंने धर्मशाला समेत कांगड़ा वैली की खास जगहों के बारे में जानकारी दी है।

0: और आप सभी को भी न्योता देता हूँ कि हमारा हिमाचल प्रदेश जो देव भूमि है और हिमाचल के ही अंदर बसा हमारा ये सुंदर धर्मशाला, जहाँ एक तरफ धुलाधार की हसीन पहाड़ियाँ, जहाँ आज मई और जून के महीने में भी बर्फबारी धुलाधार की पहाड़ियों पर है। को कहना चाहूंगा हिमाचल प्रदेश के अंदर ये सुंदर हमारा धर्मशाला, जहां इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो विश्व का सबसे सुंदर स्टेडियम है वो धर्मशाला में है, चाहे मैक्लोडगंज जो नगरी है वो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में है, बौद्ध धर्म के धर्मगुरु दलाई लामा जी यहां पर हैं, आप सभी आए और धर्मगुरु दलाई लामा जी का आशीर्वाद मिलने का सौभाग्य आप सभी को मिलेगा। धर्मशाला के अंदर चाय के बगान है, आप उन्हें निहारने के लिए यहाँ आ सकते हैं। धर्मशाला के अंदर कई देवी स्थान, कई मंदिर, जैसे अगंजर महादेव, इंद्रनाग जी का मंदिर देवी स्थल है, और कई मंदिर हमारे हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के शहर के अंदर है। बात करूँ रोपवे की, तो धर्मशाला में, धर्मशाला से मैक्लोडगंज के लिए रोपवे की सुविधा है, आप उसका आनंद लेने भी हिमाचल प्रदेश के अंदर आ सकते हैं। अगर कोई ट्रैकिंग का शौकीन है तो त्रिउंड जैसा एक ट्रैकिंग का हमारे पास स्पॉट जो है धर्मशाला के अंदर है, आप ट्रैकिंग के लिए भी त्रिउंड जा सकते हैं। साथ में धर्मशाला के लगते बाथू की लड़ी यहाँ घूमने के लिए है। मंदिर की बात करूँ तो रॉकट टेम्पल हमारे यहाँ है। धर्मशाला के साथ ही लगता कांगड़ा है, प्रदेश में माता शक्तिपीठ धर्मशाला के अंदर लगते कांगड़ा में है, तो आप इन तमाम चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए, घूमने के लिए धर्मशाला आए हिमाचल वासी, तो धर्मशाला अतिथि देवो भव के भाव के साथ आप सभी के स्वागत के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। आपने आना कैसे है ये सबसे बड़ा प्रश्न है, तो बताऊं आपको, धर्मशाला के ही समीप गग्गल एयरपोर्ट, जहां आप हवाई मार्ग से आ सकते हैं। रेलवे से अगर आपने आना है तो पठानकोट जो सबसे नजदीक हमारे पड़ता है उसके माध्यम से आ सकते हैं। जब दिल्ली से आपने आना है तो वोल्वो बसें जो है धर्मशाला तक आती हैं। इन तमाम साधनों से जो आप धर्मशाला आ सकते हैं। हम सभी धर्मशाला वासी आपके स्वागत के लिए और अतिथियों के, अतिथि देवो भव के भाव के साथ यहाँ पर।
1: तो आप भी अपने ही देश में सैर सपाटा करने, अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट कीजिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के संकल्प के भागीदार बनिए। बस करना आपको सिर्फ इतना सा है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है तो उठाइए अपना कैमरा और स्टार्ट कर दीजिए व्लॉग्स बनाने। फिर हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, हम उसे GNT पर जरूर दिखाएंगे। और चलिए आज तो यही कहेंगे कि एंजॉय योर वीकेंड, क्योंकि आपका वीकेंड रहने वाला है कूल कूल। फिलहाल इजाजत दीजिए, अच्छी खबरें जा रही हैं, देखते रहिए GNT।
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
3: Good news today, इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं और इन्हें खूब पसंद किया जा रहा है।
4: नवजात भाई को पहली बार देखकर छोटी बहन की खुशी देखने लायक है। ठुमक ठुमक कर चलते हुए वो मासूमियत से जमीन पर बैठ गई और अपने नन्हे भाई को गोद में लेने के लिए हाथ फैला दिए। उसकी चमकती आंखों और खिलखिलाती मुस्कान ने पूरे घर के माहौल में खुशियां भर दी। भाई को सीने से लगाने की उसकी मासूम चाहत ने सभी का दिल जीत लिया। ये खूबसूरत पल सिर्फ एक मुलाकात नहीं बल्कि भाई बहन के अनमोल रिश्ते और निश्चल प्रेम की प्यारी शुरुआत बन गया। जहां लोग छोटी छोटी परेशानियों में हार मान लेते हैं, किस्मत को कोसने लगते हैं, वहीं ये शख्स हौसले की नई मिसाल बनकर सामने आया है। एक हाथ न होने के बावजूद अपने हुनर से लोगों के चेहरों पर मुस्कान और आत्मविश्वास दोनों सजा रहा है। इनका काम सिर्फ हेयर कटिंग का नहीं है, बल्कि ये साबित करना है कि मेहनत, जज्बा और आत्मविश्वास के आगे हर मुश्किल छोटी पड़ जाती है। अपने हौसले से ये अपनी तकदीर खुद लिख रहे हैं। माँ और बच्चे का ये प्यारा सा अंदाज किसी का भी दिल जीत लेगा। माँ जैसे ही मस्ती में झूमती है, बच्चा भी उनकी नकल करने लगता है, फिर अपनी मासूम अदाओं पर खिलखिलाकर हंस पड़ता है। ये नजारा सिर्फ हंसी का नहीं, बल्कि माँ बेटे के खूबसूरत रिश्ते और बेफिक्र बचपन की प्यारी झलक है। ऐसी मासूम खुशियाँ ही जिंदगी को खूबसूरत बनाती है और चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है। दुनिया का सबसे अमीर इंसान वो नहीं जिसके पास दौलत है, बल्कि वो है जिसके घर लौटने पर परिवार खुशियों से झूम उठे। ये प्यारी बच्चियां अपनी माँ के साथ डांस करते हुए पिता का स्वागत कर रही हैं। बेटियों की मुस्कान और अपनापन देख पिता भी खुद को झूमने से रोक नहीं पाए। ये नजारा सिर्फ स्वागत का नहीं, बल्कि परिवार के प्यार, अपनेपन और रिश्तों की असली दौलत की खूबसूरती का है। इतना नन्हा किसान शायद ही किसी ने देखा होगा जो अपनी मासूम उम्र में भी जिम्मेदारी निभा रहा है। ये छोटा सा बच्चा होटल के कर्मचारियों के साथ बागवानी में मदद कर रहा है। उनकी क्यूट हरकतें देखकर सभी के चेहरों पर मुस्कान आ जाती है। बच्चे की मासूम कोशिशों से माहौल और भी खुशनुमा हो गया। उसकी ये लगन और सादगी ये सिखाती है कि सीखने और मदद करने की कोई उम्र नहीं होती।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
1: रामनगरी अयोध्या में माता दुर्गा मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ धार्मिक अनुष्ठान, साधु संतों की मौजूदगी में हुआ समारोह। ऋषिकेश में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की गंगा आरती, तीर्थ क्षेत्र के मुद्दों पर साधु संतों से मुलाकात और संवाद। लखनऊ के साईं भक्त ने बाबा को भेंट किया स्वर्ण मुकुट, बेशकीमती पत्थरों से बने कमल पर उकेरा गया ओम, 782 ग्राम के इस मुकुट पर दो मयूर की नक्काशी। कोलकाता में तेज हवाओं के साथ जमकर हुई बारिश, उमस और गर्मी से लोगों को मिली राहत, सड़कों पर गिरे पेड़ हटाने में जुटा प्रशासन। उत्तराखंड के पहाड़ों को प्लास्टिक कचरा मुक्त बनाने में जुटा इंग्लैंड से आया मेहमान, अल्मोड़ा के कसार देवी इलाके में हर रोज स्वच्छता अभियान चलाते हैं मार्क। रेलवे ट्रैक के रेलबाजों पर प्रशासन हुआ सख्त, झांसी रेलवे स्टेशन पर ड्रोन कैमरों से की जा रही है लाइव निगरानी, संदिग्ध और पत्थरबाजों पर पैनी नजर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
1: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं, आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, तो कभी पुरानी तस्वीरों को नई साजिश का रंग देकर उन्हें पेश किया जाता है, और लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे ने सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहाँ हर किसी के हाथ में एक कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है।
4: लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ती जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। तो आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की होगी जिसके जरिए ये दावा किया जा रहा है कि वीडियो पश्चिम बंगाल का है, जहां घर पर बुलडोजर चलने के बाद एक शख्स फूट फूट कर रोने लगा। क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई, आगे बताएंगे। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी होगी जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि हाल ही में चीन के दौरे के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जासूसी करते कैमरे में कैद हो गए। एक भोज के दौरान वो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निजी नोट्स में ताक झांक करते हुए कैमरे में कैद हो गए। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
4: पश्चिम बंगाल की शुभेंदु अधिकारी की सरकार के नेतृत्व में अवैध कब्जों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई लगातार जारी है। सोशल मीडिया पर भी इस कार्रवाई से जोड़ते हुए वीडियोस लगातार वायरल हो रहे हैं। अब ऐसा एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ है जिसमें एक शख्स फूट फूट कर रोता नजर आ रहा है, और इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग ये दावा कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बुलडोजर एक्शन के बाद घर गवाने के बाद एक शख्स फूट फूट कर रोया। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, देखिए रिपोर्ट।
5: पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन और शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार बनने के बाद राज्य भर में अवैध निर्माणों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है। सरकार का दावा है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। इसी संदर्भ में ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। इसमें एक व्यक्ति फूट फूट कर रोता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में कुछ पुलिस वाले भी देखे जा सकते हैं। इसके अलावा तोड़फोड़ की आवाज भी सुनाई दे रही है। देखने में ये किसी बुलडोजर एक्शन के वक्त का लगता है। कुछ लोग इसे पश्चिम बंगाल का बताकर शेयर कर रहे हैं। फेसबुक पर इस वीडियो के साथ पश्चिम बंगाल से जुड़े हैशटैग्स लगाकर एक व्यक्ति ने लिखा, इन कंगालुओं को दहाड़े मार मार कर रोता देखकर दिल को बहुत अधिक सुकून मिल रहा है। हैशटैग वेस्ट बंगाल, हैशटैग बंगाल, हैशटैग टीएमसी, हैशटैग ममता बनर्जी। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
4: दरअसल सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, और वीडियो में एक शख्स फूट फूट कर रोता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि वीडियो पश्चिम बंगाल का है, जहां पर बुलडोजर एक्शन में घर गवाने के बाद ये शख्स फूट फूट कर रोने लगा। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी था। फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और सुना। इस दौरान हमारा ध्यान बैकग्राउंड से आ रही आवाजों पर गया। जब हमने इसे गौर से सुना तो ये सामने आया कि ये बंगाल का है, यानी कि बंगला में ये लोग बातचीत कर रहे हैं। मतलब वायरल वीडियो पश्चिम बंगाल का हो सकता है। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने एक बार फिर से वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान वीडियो में नजर आ रहे पुलिस के जवानों की वर्दी के कलर पर हमारा ध्यान गया। जब हमने इसे देखा तो ये साफ हुआ कि बांग्ला पुलिस की वर्दी का कलर नहीं हो सकता, क्योंकि पश्चिम बंगाल में पुलिस की वर्दी का रंग तो सफेद है। दो तरह की वर्दी वो पहनते हैं। कोलकाता और हावड़ा क्षेत्र की पुलिस सफेद रंग की वर्दी पहनती है, जिस पर नीले रंग की बेल्ट और कंधे पर नीला रंग होता है, जबकि राज्य के अन्य सभी हिस्सों की बात की जाए तो पुलिस की वर्दी खाकी रंग की होती है, जबकि वीडियो में जो जवान दिख रहा है उनकी वर्दी का रंग अलग है। साथ ही सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, लिहाजा हमने इस सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल यही कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है और कहां का है। दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर वीडियो को पश्चिम बंगाल का बताकर भ्रम फैलाने की कोशिश तो नहीं हो रही? अब देखिए सच्चाई क्या है।
5: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वायरल वीडियो को गौर से देखा। वीडियो पर एक लोगो नजर आ रहा है। सर्च करने पर पता चला कि ये बांग्लादेश का एक न्यूज आउटलेट है। इस आउटलेट ने अपने ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट पर ये वीडियो 21 मई को पोस्ट किया था। पोस्ट के कैप्शन के मुताबिक ये शख्स अपनी आंखों के सामने अपना घर टूटता देख जोर जोर से रोने लगा। पोस्ट के कैप्शन में कलशी बस्ती हैशटैग का इस्तेमाल किया गया है। ये बस्ती ढाका के पास मीरपुर जोन के पल्लवी में स्थित है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस इलाके में बीते कुछ दिनों में बड़े पैमाने पर अवैध कब्जों को हटाने के लिए कार्रवाई की गई है। इस आउटलेट ने कलशी इलाके में हुई बुलडोजर कार्रवाई के और भी कई वीडियो फेसबुक पर पोस्ट किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस इलाके में सरकारी जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर कार्रवाई की गई थी। कार्रवाई के दौरान यहां रहने वाले लोगों और पुलिस वालों के बीच झड़प भी हो गई थी। कुछ स्थानीय लोगों ने पुलिस वालों पर हमला भी कर दिया था। इस तरह हमारी पड़ताल से साफ हो गया कि ये पश्चिम बंगाल नहीं बल्कि बांग्लादेश में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ हुई कार्रवाई के दौरान का वीडियो है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
4: सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके जरिए कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये वायरल वीडियो हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के दौरान का है, जिसमें वो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नोटबुक में झांकते हुए नजर आ रहे हैं। बीजिंग में एक राजकीय भोज के दौरान जब शी जिनपिंग अपनी सीट से उठे तो ट्रंप ने उनकी मेज पर रखी नोटबुक खोलकर उसके पन्ने पलटे, उससे पढ़ने की कोशिश की। लेकिन वायरल दावे की सच्चाई क्या है, देखिए रिपोर्ट।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में चीन की यात्रा की थी। इस दौरान उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय शिखर वार्ता भी की। ट्रंप ने राष्ट्रपति शी को सितंबर में व्हाइट हाउस आने का निमंत्रण दिया।

0: इन सब के बीच सोशल मीडिया पर ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ट्रंप को शिखर सम्मेलन के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की निजी नोटबुक पर चुपके से नजर डालते हुए दिखाया गया है। वीडियो शेयर करते हुए एक एक्स यूजर ने लिखा, शी जिनपिंग के बीजिंग में एक भोज के दौरान जब वे कुछ देर के लिए दूर चले गए थे, तब ट्रंप को उनकी निजी नोटबुक पर चुपके से नजर डालते हुए पकड़ा गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे पर गए थे। उस दौरे के दौरान एक दृश्य सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिसके जरिए कुछ लोग ट्रंप की नीयत पर तंज कसते हुए दावा ये कर रहे हैं कि शी जिनपिंग के बीजिंग में एक भोज के दौरान जब वो कुछ देर के लिए दूर चले गए थे, तब ट्रंप को उनकी निजी नोटबुक पर चुपके से नजर डालते हुए कैमरे में साफ साफ देखा जा सकता है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की। फैक्ट चेक टीम ने दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान ये नजर आया कि ट्रंप एक फोल्डर को पलटते हुए देखे जा सकते हैं। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने फोल्डर पर नजर आ रहे प्रतीक चिन्ह को जूम करके करीब से देखा, तो सामने आया कि अमेरिकी राष्ट्रपति की मोहर से मिलता जुलता है। इसके बीचों बीच में चील भी दिख रही है, मतलब ये कि इस फोल्डर का चीनी राष्ट्रपति से कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट भी नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। और हमारा पहला सवाल यही कि अगर वीडियो सच्चा है तो इसके बारे में कोई प्रमाणिक जानकारी क्यों नहीं मिली। हमारा दूसरा सवाल, कहीं जानबूझकर वीडियो को नया एंगल देकर वायरल तो नहीं किया जा रहा। सच और झूठ क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में।
0: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उन्हें सर्च किया। इस दौरान हमें 14 मई को एक न्यूज चैनल पर अपलोड वीडियो का एक लंबा संस्करण मिला। ये बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल्स में आयोजित राजकीय भोज का वीडियो था। लगभग 1:50 पर ट्रंप के बाईं ओर बैठे जिनपिंग उठते हैं और मंच की ओर चलते हैं। इसके बाद वायरल क्लिप में ट्रंप को अपनी बाईं ओर रखे फोल्डर को खोलते और कुछ पन्ने पलटते हुए दिखाया गया है। व्हाइट हाउस ने इस कार्यक्रम का एक अनकट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड किया था। वीडियो शुरू होने के 2 बाद देखा जा सकता है कि जिनपिंग उठते हैं। इसके तुरंत बाद ट्रंप अपने बाईं ओर रखे फोल्डर को खोलते हैं और कुछ पढ़ते हैं। वीडियो में आगे लगभग 12 पर जब जिनपिंग अपनी सीट पर वापस लौटे तो ट्रंप उठे, फोल्डर अपने साथ ले गए। उसे पोडियम पर रखा, कुछ पन्ने पलटे और उसमें से पढ़ना शुरू किया। यही दृश्य एक और वीडियो में 11:50 पर देखा जा सकता है। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि फोल्डर ट्रंप का था और अमेरिकी राष्ट्रपति अपने चीनी समकक्ष की निजी नोटबुक में ताक झांक नहीं कर रहे थे। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल दावा झूठा साबित हुआ। फोल्डर ट्रंप का है, चीनी राष्ट्रपति का नहीं। अभिषेक पाठक के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits.

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ला।
1: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, जहां आपको दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
2: इन दिनों ये वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है, जिसमें एक छोटा बच्चा तालाब के पानी के ऊपर आराम से खड़ा हुआ दिखाई देता है। बच्चे का बैलेंस और कॉन्फिडेंस देखकर लोग हैरान रह जाते हैं, जबकि दूसरा बच्चा कुछ वैसा ही करने की कोशिश करता है लेकिन सफल नहीं हो पाता। यही फनी मोमेंट सोशल मीडिया यूजर्स को खूब पसंद आ रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि यहाँ गांव जैसा माहौल है और यहाँ तालाब के बीचों बीच एक छोटा बच्चा आराम से खड़ा है। तालाब के बीच बच्चा हाथ जोड़कर और आंखें बंद किए पूरे बैलेंस और कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि बच्चे के चेहरे पर जरा भी घबराहट नजर नहीं आती है। यही वजह है कि वीडियो देखने के बाद भी लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वीडियो के आखिरी हिस्से में जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलता है। एक दूसरा लड़का जब उसकी कॉपी करने पहुंचा तो ऐसा मजेदार हादसा हुआ कि इंटरनेट यूजर्स हंसते हंसते लोटपोट हो गए। दरअसल बच्चे ने पानी के अंदर एक स्टूल के सहारे बैलेंस को बनाया था। युवक ये समझ नहीं पाया और वो पानी में धड़ाम से गिर गया। सोशल मीडिया पर इन दिनों 4 साल 4 महीने के एक बच्चे का क्रिकेट वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पहली नजर में उसकी उम्र देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल लग रहा है कि ये इतनी कम उम्र में बैट संभाल पाएगा, लेकिन जैसे ही गेंदबाज उसकी तरफ तेज गेंद फेंकता है, बच्चा पूरे आत्मविश्वास के साथ शानदार शॉट खेल देता है। खास बात यह है कि वह शॉट सीधे कवर की दिशा में जाता है और गेंद सीमा रेखा के पार पहुंच जाती है। बच्चे का यह शॉट देखकर वहां मौजूद लोग भी दंग रह जाते हैं। वीडियो में देखने वाली सबसे दिलचस्प बात यह है कि गेंदबाज खुद बच्चे की बल्लेबाजी से इतना प्रभावित हो जाता है कि दौड़कर उसके पास आता है और उसके पैर छू लेता है। इसके बाद दोनों के बीच मजेदार अंदाज में पंच भी होता है और फिर वीडियो खत्म हो जाता है। हालांकि वीडियो छोटा है, लेकिन कुछ ही सेकंड के इस क्लिप ने लोगों का दिल जीत लिया है। अक्सर माना जाता है कि ढलती उम्र के साथ बुजुर्गों का खान पान सादा और सीमित हो जाता है, लेकिन इंस्टाग्राम पर वायरल हुई एक क्लिप ने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया है। इस वीडियो में 92 साल की दादी बड़े चाव से पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक का लुत्फ उठाती नजर आ रही है। वीडियो में दिख रहा है कि दादी पिज्जा के हर स्लाइस का पूरी शिद्दत से आनंद ले रही है। इस दौरान उनकी बच्चों जैसी खुशी देखने लायक है। पिज्जा खाते हुए उनके थम्स अप ने सोशल मीडिया यूजर्स का दिल जीत लिया है। कुल मिलाकर दादी का यह अंदाज बेहद मजेदार और जिंदा दिली से भरा हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर यूजर्स दंग है। वीडियो में एक शख्स सड़क पर पड़े गोबर को देखकर रुक जाता है और उसी गोबर पर आर्ट करके एक शानदार मास्टरपीस तैयार कर देता है। साधारण सी चीज को देखकर उसमें छुपी कला को बाहर निकालने वाला यह कलाकार अपनी क्रिएटिविटी के लिए सराहा जा रहा है। वीडियो में दिखाया गया है कि एक व्यस्त सड़क के किनारे गोबर पड़ा हुआ है। कलाकार उसे देखते ही रुक जाता है। वह अपने बैग से रंग, ब्रश और अन्य सामान निकालकर काम शुरू कर देता है। कुछ ही देर में गोबर पर खूबसूरत पैटर्न, फूल, ज्यामितीय डिजाइन और रंग बिरंगे आकर्षक नक्काशी बन जाती है। गोबर की सूरत ही बदल गई। जो चीज आमतौर पर लोग नाक भौं चढ़ाकर पार करते हैं, उसी को कलाकार ने आर्ट का रूप दे दिया। सोशल मीडिया पर इन दिनों ये भावुक वीडियो वायरल हो रहा है, जो इंसानों के दिल को छू रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि एक छोटा सा मेमना अपनी माँ से बिछड़ गया था। जब उसे अपनी माँ दिखी तो वह खुशी से दौड़कर उसके गले लग गया। माँ भी अपने बच्चे को देखते ही भावुक हो गई और मिलन का यह पल हर किसी को रुला गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि खुले आसमान के नीचे हरे भरे खेत में एक महिला मेमने को लेकर आ रही है। जैसे ही मेमना अपनी माँ को दूर से पहचानता है, वह अपनी छोटी छोटी टांगों से तेजी से दौड़ने लगता है। माँ भी अपने बच्चे की आवाज़ सुनकर बेचैन हो जाती है और आगे बढ़ती है। दोनों के मिलते ही माँ बेटे का गर्मजोशी भरा मिलन देखकर फिल्माने वाली महिला की आंखें भी नम हो जाती हैं। पास खड़ी गाय भी इस खुशी के पल में शामिल होती नजर आती है। आमतौर पर अगर किसी के घर में चूहा घुस जाए तो लोग उसे पकड़कर तुरंत बाहर छोड़ देते हैं या उससे छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार एक शख्स ने जो किया उसे देखकर इंटरनेट यूजर्स भी हैरान रह गए। उसने

0: चूहे को पकड़ने के बाद उसके लिए मूवी नाइट ही रख दी। दरअसल एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि एक चूहा छोटे से पिंजरे में फंसा हुआ है, लेकिन उसे डराने या परेशान करने के बजाय युवक ने पिंजरे के पास अपना मोबाइल रख दिया। मोबाइल में एनिमेटेड फिल्म बाल गणेशा चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे चूहे के लिए खास तौर पर धार्मिक फिल्म दिखाई जा रही हो। वीडियो में सबसे मजेदार बात यह थी कि युवक बड़े आराम से चूहे के सामने फिल्म चला रहा था, मानो वह कोई खास मेहमान हो। इंटरनेट पर लोगों को यह पल बेहद मजेदार और दिल छू लेने वाला लगा। गर्मी इन दिनों चरम पर है और इस भयंकर गर्मी ने इंसानों के साथ जानवरों की जिंदगी भी मुश्किल कर दी है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक बिल्ली ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। यह बिल्ली बिना एयर कंडीशनर के एक मिनट भी नहीं रह पाती।
1: बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा कह रहे, रिमोट दे दे चुपचाप, मारा मारी बाद में कर, रिमोट दे दे, रिमोट दे दे, बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा तेरा।
0: अगर एसी बंद हो जाए तो वह न सिर्फ नखरे दिखाती है बल्कि एसी का रिमोट छिपा लेती है, और जब कोई रिमोट लेने की कोशिश करता है तो वह सीधा अटैक मोड में आ जाती है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि मालिक जब एसी बंद करने या रिमोट लेने जाते हैं तो बिल्ली पहले तो घूरती है, फिर रिमोट मुंह में लेकर भागती है और छिपा देती है। अगर कोई उसके पीछे जाता है तो वह नुकीले नाखून दिखाकर हमला करने की तैयारी कर लेती है। आप किसी जंगल सफारी पर गए हो और आपकी गाड़ी के ठीक बगल में एक खूंखार बब्बर शेर बैठा हो, तभी अचानक कुछ लोग आराम से उसके बगल से पैदल और बाइक पर गुजरने लगे, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? यकीनन यह नजारा किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सफारी गाड़ी में बैठा एक पर्यटक वीडियो बना रहा है, तभी सड़क पर एक के बाद एक बाइक सवार गुजरते हैं। हैरान करने वाला मोड़ तब आता है जब कैमरा थोड़ा घूमता है और सड़क के बीच में एक विशाल गाय शेर बैठा दिखाई देता है। हद तो तब हो गई जब बाइकर्स के साथ साथ एक शख्स बड़े आराम से पैदल ही शेर के पास से गुजर जाता है, मानो वहाँ कोई शेर नहीं बल्कि कोई बिल्ली बैठी हो। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि शेर भी उन्हें देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता और शांति से बैठा रहता है। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है, जिसने फुटबॉल मैच को ही यादगार बना दिया। इस वीडियो को देखकर लोग सिर्फ मुस्कुरा ही नहीं रहे बल्कि इसे इंटरनेट का सबसे क्यूट फुटबॉल वीडियो भी बता रहे हैं। दरअसल एक फुटबॉल मैच के दौरान ऐसा मजेदार नजारा देखने को मिला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। खिलाड़ी मैदान में पूरी गंभीरता से मैच खेल रहे थे, तभी अचानक एक छोटा सा बछड़ा मैदान में आ गया। शुरुआत में खिलाड़ियों को लगा कि शायद वह थोड़ी देर में बाहर चला जाएगा, लेकिन अगले ही पल उसने जो किया उसे देखकर मैदान में मौजूद हर व्यक्ति हंसने लगा। वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही खिलाड़ी फुटबॉल को एक दूसरे की तरफ पास कर रहे थे, वैसे ही वह नन्ना बछड़ा भी पूरी उत्सुकता के साथ गेंद के पीछे दौड़ने लगा। गेंद मैदान के जिस कोने में जाती, बछड़ा भी उसी दिशा में तेजी से भागता दिखाई देता। उसकी मासूम हरकतें और उत्साह देखकर खिलाड़ी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
6: बात अयोध्या के शक्ति उत्सव की राम मंदिर परिसर में भगवती मंदिर में ध्वजारोहण समारोह संपन्न हो गया। खास बात यह रही कि राम मंदिर ट्रस्ट ने इस समारोह को मातृ शक्ति को समर्पित किया था, लिहाजा 3500 से ज्यादा महिला संत और कार्यकर्ता इस समारोह का हिस्सा बने। इस समारोह की सुरक्षा का जिम्मा भी सीआरपीएफ की महिला बटालियन ने ही संभाला।

0: ये राम की नगरी में माँ दुर्गा के धाम पर नारी शक्ति का आरोहण है। माँ भगवती के मंदिर शिखर पर लहराती है धर्म ध्वजा, एक नए अध्याय का श्री गणेश है जो संसार को मातृ शक्ति का स्थान बता रही है। अयोध्या के शक्ति उत्सव को निहारिए, ये वो विशेष पल है जब सीआरपीएफ की महिला विंग की जवानों ने ध्वज की रस्सियां खींची और साध्वी रितांबरा ने ध्वजारोहण की परंपरा के माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम की नगरी में मां के सम्मान को आस्था के शिखर तक पहुंचा दिया। बेशक इस पल का साक्षी बने हर श्रद्धालु के लिए ये कभी ना भुला पाने वाला लम्हा था।
1: तो राम जन्मभूमि में एक और महोत्सव आज पूर्ण हुआ है, क्योंकि आज जो है माँ जगदम्बा के मंदिर के ऊपर शिखर के ऊपर आज ध्वज लहराया है और यहाँ लगभग 3500 के ऊपर महिलाएं रही उपस्थित और लगातार यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इसी गेट से जो है इनकी एंट्री हुई थी और इसी गेट से अभी कुछ देर बाद ये बाहर निकल रही हैं और लगातार आप लोग ने ध्वजारोहण देखा अपने आप।
2: जी सर बहुत अच्छा लगा, ये अनुभव बहुत अच्छा लगा। इतने दिनों से हमारे पूर्वजों ने जो सपना देखा था आज पूरा हुआ। जय श्री राम।
1: कैसा लगा? बड़े भावुक भी लग रही।
2: जी ये हमारे पूर्वजों का बहुत पुराना सपना था, इसी वजह से शायद हम बोल नहीं पा रहे हैं, शब्द मेरे पास नहीं है।
1: जी,
2: इसीलिए ये सम्मान हम लोग महिलाओं को मिला, ये हमें बहुत अच्छा लगा कि ये सम्मान केवल हम औरतों के लिए।
0: सनातन संस्कृति में ध्वजारोहण महज एक परंपरा नहीं है बल्कि धर्म, विजय और सकारात्मक ऊर्जा का वो प्रतीक है जो कोसों दूर से मंदिर के शिखर पर लहराता नजर आता है, जिसके दर्शन मात्र से श्रद्धालुओं को असीम शक्ति और ऊर्जा मिलती है, आस्था भक्ति के धाम तक पहुंचने का मार्गदर्शन मिलता है। माँ भगवती के मंदिर पर ये ध्वजारोहण इसलिए विशेष रहा क्योंकि 3500 से ज्यादा मातृ शक्ति इस अद्भुत पल की साक्षी बनी।
3: बहुत दिन बाद मतलब ऐसा लगा कि हाँ, जो जितने लोगों ने इतने लड़ाई की थी, इतना चीजें हुई थी, तो उसका फल आज मिल गया है।
1: अपनी आंखों से ध्वजारोहण देखी पहली बार आज राम मंदिर?
3: हाँ, पहली बार मतलब इतने बार हुआ लेकिन कभी आज तक नहीं देखा, और ये चीज बहुत अच्छा लगा कि स्पेशली वुमेन्स के लिए ये चीजें करवाई गई हैं।
4: सर्वप्रथम तो हम लोग पहले दर्शन ही किए, दर्शन करने के बाद ध्वजारोहण को अपनी आँख के सामने ऊपर उठते हुए शीर्ष तक यूं गर्दन ऐसे थी।
5: नारी का सम्मान हमेशा रहा, यत्र नारियस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी का सम्मान होता है, नारी का पूजा होती है हमारे यहाँ।
0: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस भव्य कार्यक्रम को मातृ शक्ति को समर्पित किया था, लिहाजा ध्वजारोहण समारोह में दुर्गा वाहिनी और मातृ शक्ति की करीब 230 कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया। साथ ही अयोध्या महानगर के 64 कार्य क्षेत्रों से जुड़ी करीब 3500 महिलाएं इस पल की साक्षी बनी। वृंदावन के वात्सल्य ग्राम की 163 महिला प्रतिनिधि भी इस खास अवसर पर उपस्थित रही। राम जन्मभूमि परिसर के 7 मंदिरों पर एक एक कर ध्वजारोहण का कार्यक्रम जारी है। इस सिलसिले का श्री गणेश पिछले 25 नवंबर को हुआ, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर मुख्य मंदिर पर ध्वजारोहण किया। 31 दिसंबर 2025 को अन्नपूर्णा मंदिर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ध्वज फहराया। इसके बाद भगवान सूर्यदेव के मंदिर के शिखर पर 26 मार्च 2026 को विधि विधान से ध्वजारोहण किया गया। हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर 2 अप्रैल को 75 फीट ऊंचे मंदिर हनुमान मंदिर के शिखर पर विधि विधान से भव्य धर्म ध्वजा फहराएगी। फिर 11 अप्रैल को गणेश मंदिर पर ध्वजारोहण हुआ। वही 29 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिव मंदिर पर ध्वजारोहण किया था और आज साध्वी रितांबरा ने भगवती मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण कर रामनगरी में आस्था, भक्ति और अध्यात्म के वैभव को शिखर तक पहुंचा दिया। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: रामनगरी अयोध्या में माता दुर्गा मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ धार्मिक अनुष्ठान, साधु संतों की मौजूदगी में हुआ समारोह। ऋषिकेश में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की गंगा आरती, तीर्थ क्षेत्र के मुद्दों पर साधु संतों से मुलाकात और संवाद। लखनऊ के साईं भक्त ने बाबा को भेंट किया स्वर्ण मुकुट, बेशकीमती पत्थरों से बने कमल पर उकेरा गया ओम, 782 ग्राम के इस मुकुट पर दो मयूर की नक्काशी। कोलकाता में तेज हवाओं के साथ जमकर हुई बारिश, उमस और गर्मी से लोगों को मिली राहत, सड़कों पर गिरे पेड़ हटाने में जुटा प्रशासन। उत्तराखंड के पहाड़ों को प्लास्टिक कचरा मुक्त बनाने में जुटा इंग्लैंड से आया मेहमान, अल्मोड़ा के कसार देवी इलाके में हर रोज स्वच्छता अभियान चलाते हैं मार्क। रेलवे ट्रैक के रेलबाजों पर प्रशासन हुआ सख्त, झांसी रेलवे स्टेशन पर ड्रोन कैमरों से की जा रही है लाइव निगरानी, संदिग्ध और पत्थरबाजों पर पैनी नजर।

अर्ज किया है, बदले हुए से लगते हैं अब मौसमों के रंग, पड़ता है आसमान का साया जमीन पर। नमस्कार, मैं हूं शगुफ्ता साहिल देव, आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। हमदम कश्मीरी के इन शब्दों की ही तरह मौसमों के बदलने पर बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ कहा गया। जीएनटी स्पेशल में भी आज बात होगी मौसम के उसी बदलाव पर जिसने वीकेंड से पहले खुश होने का बहाना दे दिया है। यूं तो मई के महीने ने अब की बार बेहद तपाया, लेकिन जाते जाते मई ने राहत की सौगात भी दे दी है। मई का आखिरी शुक्रवार वाकई शुक्र मनाने वाला वार रहा, शुक्र हीट वेव और तपती गर्मी से निजात के लिए। गुरुवार शाम से शुरू हुआ बारिश का दौर पहाड़ों और मैदानी इलाकों के लिए राहत लेकर आया है। पिछले कई दिनों से जो पारा 45 डिग्री के पार चल रहा था, कल शहर शहर हुई बारिश ने तापमान में थोड़ी सी राहत दे दी। भीषण गर्मी में दिन में निकलना किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन अब कुछ दिन के लिए मौसम साफ और सुहावना रहने वाला है। कई शहरों में आज सुबह की शुरुआत हल्की ठंडी हवा और खुशनुमा मौसम के साथ हुई। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि पूरे वीकेंड बारिश का ये दौर जारी रह सकता है। आज के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट, जबकि शनिवार रविवार के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। आइए आपको बताते हैं कि गर्मी से राहत देने वाली ये बारिश कहां कहां हुई और क्यों हुई।

0: मई की तपिश में राहत की बौछार हो गई। झमाझम बारिश से धरती गुलजार हो गई। इस बार का वीकेंड देश के कई हिस्सों के लिए तोहफे में सुकून की बौछार लेकर आया है। नौतपों के बीच दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया।
1: चिलचिलाती गर्मी और धूप से परेशान दिल्ली वालों के लिए गुरुवार की शाम राहत लेकर के आई, जब तेज हवाएं चली, धूल भरी आंधी चली और उसके बाद हल्की हल्की बारिश हुई, जिसके चलते मौसम और तापमान में अच्छी खासी गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिन तक इसी तरीके का मौसम जो है वो फिलहाल दिल्ली एनसीआर में बने रहने की उम्मीद है। जिस तरीके से कल देर शाम को बारिश हुई, ऐसा ही मौसम आज दिन भर जो है वो मौसम विभाग की माने तो बना रहेगा। कई इलाकों के अंदर हवाएं जो है वो तेज गति के साथ चलेंगी और उसके साथ साथ बादल भी छाए रहेंगे और उसके अलावा कई इलाकों में हल्की हल्की बारिश भी जो है वो हो सकती है। मौसम विभाग अगर बात की जाए तो जिस तरीके से कई दिनों से लगातार दिल्ली में रहने वाले लोग, खासतौर पर उत्तर भारत के भी लोग जो चिलचिलाती गर्मी और लू से परेशान थे, उनके लिए राहत जरूर लेकर के आई है।
0: कल तक जहां सूरज आग उगल रहा था, वही अब बादल झमाझम बरस रहे थे। गुरुवार शाम से ही उत्तर पश्चिम भारत के शहरों में आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश हुई, जिसके बाद देखते ही देखते तापमान में भारी गिरावट आने लगी। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार शाम से बदला मौसम का ये मिजाज रविवार तक ऐसा ही बने रहने की संभावना है। मौसम की करवट को देखते हुए अगले 2 दिनों के लिए दिल्ली एनसीआर, यूपी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कहीं तेज, कहीं मध्यम, कहीं कहीं थोड़ा नुकसान भी हुआ, पर पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी, चिलचिलाती धूप, उमस भरी रात झेल रहे लोगों के लिए मौसम का ये दौर सुकून लेकर आया है। तापमान में आई गिरावट से मौसम सुहाना हो गया।
2: उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में थोड़ी गर्मी से राहत मिली है लोगों को। वजह थी कल बारिश और तेज हवाएं जब चली थी, उसके बाद लगातार बारिश से कई जगह पर राहत मिली है। लोग काफी दिनों से गर्मी से परेशान थे, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में फिर चाहे आगरा से लेकर गोरखपुर तक और झांसी से लेकर लखनऊ तक टेम्परेचर में काफी कमी आई है और जिससे थोड़ा राहत मिली है।
0: मौसम की इस बदली चाल की वजह वेस्टर्न डिस्टरबेंस को बताया जा रहा है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर पहाड़ों से लेकर मैदानों तक दिखा है, जिससे तापमान में गिरावट और हीट वेव से निजात मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक जून में वापस तापमान 40 को लांघेगा, लेकिन फिलहाल हीट वेव से राहत की ये स्थिति हफ्ते भर तक बनी रह सकती है। यानी तापमान को दोबारा हीट वेव के स्तर पर आने में 7 से 8 दिन का समय लग सकता है।
3: देखिए, अभी टेम्परेचर जब इतने फॉल होंगे तो उनको राइज करने में फिर से थोड़ा समय लगेगा, तो फिलहाल हमारा अनुमान यही है कि 2 से 3 दिन के बाद 29 तारीख से जो हीटर कंडीशंस अबेट हो जाएंगी, उसके बाद में 30-31 तारीख के बाद में फिर से ग्रेजुअली टेम्परेचर राइज होना शुरू होंगे और उनको फिर से हीटवेव के स्तर में पहुँचने में थोड़ा समय लगेगा।
0: मौसम के बदले मिजाज का असर बनारस में भी दिखा। काशी में लगातार 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच रहे तापमान ने लोगों को घरों में कैद होने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन अब बाबा विश्वनाथ की नगरी में मौसम भी मलंग हो गया है।
4: मौसम में बदलाव के चलते वाराणसी में लोगों ने राहत की सांस ली है। तड़के सुबह गरज चमक और तेज हवाओं के बीच हुई बारिश से तापमान लगभग 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे लुढ़क गया, जो सामान्य से 1.5 डिग्री नीचे बताया जा रहा है।
5: अभी तो कल से तो बढ़िया है, जब से कल से मतलब इतना ज्यादा अच्छा है, कहने बात नहीं, मतलब बारिश होने के बाद अच्छा मौसम है, ऐसा लग रहा है कि हाँ थोड़ा ठंडा है।
6: देखिए, मौसम का मिजाज तो बहुत अच्छा बदला है। जिस हिसाब से कल रात में बारिश हुई है और तूफान आया था, जिस हिसाब से लोग कह रहे थे कि नौतपा लगने वाला, उस हिसाब से पब्लिक सड़क पर नहीं निकल रही थी उस डर से, तो लेकिन ऊपर वाले की क्या मर्जी थी कि कल मतलब एकाएक मौसम चेंज हुआ, उससे मतलब जो टेम्परेचर है वो थोड़ा डाउन हुआ है, जिससे लोगों को बहुत राहत मिली है और काफ़ी अच्छा लोग महसूस कर रहे हैं।
7: कल 2 बजे रात से लगातार बारिश हुई, 7 बजे सुबह तक बहुत अच्छी बारिश हुई और इस समय एकदम मौसम बहुत सुहावना हो गया है, क्योंकि एक एग्जाम मैं 25 तारीख को देने आया था, बिटिया का, CUT का ही, पांडेपुर में था सेंटर। इतनी गर्मी थी सर कि लग रहा था चमड़ी जल जाएगी, लेकिन आज तो यहाँ भी और घर पर भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मौसम।
8: पहले से तो काफ़ी आराम है, तापमान कुछ गिरा हुआ है, पहले से बहुत ज़्यादा आराम है।
0: इसी तरह यूपी के झांसी में गुरुवार शाम को चली तेज हवा और बारिश ने तस्वीर बदल दी। यहाँ कुछ इलाकों में ओले भी गिरे। पानी की बौछार पड़ी तो तपती धरती ने राहत की सांस ली। 45 डिग्री टॉर्चर के बाद मौसम का ये यू टर्न हरियाणा के लोगों को भी रास आया। रेवाड़ी में झमाझम बारिश के साथ ओले भी गिरे। अचानक आए इस मौसम परिवर्तन ने लोगों को हैरान तो किया, लेकिन पिछले कई दिनों से पड़ रही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से जूझ रहे लोगों ने राहत की सांस ली। तेज हवाओं, बारिश और ओलावृष्टि के बाद तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। राजस्थान के श्रीगंगानगर में तो लोग 49 डिग्री टॉर्चर झेल रहे थे। गुरुवार दोपहर तक ये शहर दुनिया के सबसे गर्म शहरों में दूसरे स्थान पर शुमार था, लेकिन शाम होते होते कहानी बदल गई। मौसम के बदले अंदाज ने लोगों को बड़ी राहत दी। दोपहर बाद मौसम बदला, आसमान में काले घने बादल छाए। शाम होते होते तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई, जमकर ओले भी गिरे। राजस्थान के धौलपुर में भी मौसम के तेवर कुछ ऐसे ही नजर आए। दोपहर बाद आसमान में बादलों ने दस्तक दी और देर शाम तेज हवाओं के साथ बरस पड़े। तपती दोपहर के बाद बादलों की यह मेहरबानी लोगों को सुकून दे गई। तो वहीं उत्तराखंड के बागेश्वर में इन बादलों ने बड़ा काम किया। यहां हुई बारिश और ओलावृष्टि ने जंगलों की भीषण आग बुझा दी। आसमान से गिरते ओलों ने कुछ देर के लिए बागेश्वर की जमीन को पूरी तरह ढक दिया। पश्चिम से पूर्व तक देश के कई इलाकों में यही मंजर नजर आया। ताजा बारिश सिटी ऑफ जॉय के लिए गर्मी से राहत की खुशखबरी लेकर पहुंची। पश्चिम बंगाल में राजधानी कोलकाता समेत कई इलाकों में शुक्रवार सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश के चलते लोगों को गर्मी से निजात मिली और मौसम सुहाना हो गया।
9: चिलचिलाती धूप और उमस से आखिरकार कोलकाता के लोगों को राहत मिला। शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे के बीच भारी बारिश साथ में तेज हवाओं ने टेम्परेचर को काफी नीचे ला दिया। मौसम विभाग का ये कहना है कि उत्तर बंगाल में इस तरह की बारिश जारी रहेगी और भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में फिलहाल इसी तरीके से बूंदाबांदी और कभी कभी इस तरीके का बारिश कोलकाता और इसके आसपास के जिलों में रोज होती नजर आएंगी। लेकिन लोगों को खासा परेशानी भी हुआ, क्योंकि कुछ इलाकों में कोलकाता के जहाँ पेड़ गिरे, कुछ जगहों पे जल जमा हुआ, लेकिन मौसम सुहाना हो गया।
0: महाराष्ट्र के अमरावती में भी नौतपा की तपिश के बीच 45 डिग्री तापमान में झुलसे शहर ने राहत की इस बारिश का जमकर लुत्फ उठाया। तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हुई बारिश और ओलावृष्टि से शहर का पारा नीचे लुढ़क गया और लोगों ने राहत की सांस ली।
10: तो भारत का ज्यादातर हिस्सा हीट वेव झेल रहा था, लू के थपेड़े या लू की मार झेल रहा था, और अब मौसम ने करवट ली है तो ज्यादातर हिस्सों में अब वो राहत लेकर के आई है। हालांकि इस राहत के साथ मुसीबतें ये हैं कि मौसम विभाग का पूर्वानुमान ये कहता है कि उत्तर पश्चिम भारत, पूर्वी उत्तर भारत, मध्य भारत और इसी के साथ साथ दिल्ली NCR का वो इलाका जहां पर रविवार तक अब तापमान तो गिरेगा ही, बारिश भी होंगे, लेकिन हवा की रफ्तार ज्यादा भी हो सकती है, थंडर स्टॉर्म हो सकता है, ओले गिर सकते हैं। तो अगर फलों की खेती है उस पर असर पड़ेगा। पहाड़ी इलाकों में जहां पर जंगलों की आग है वहां पर ओलावृष्टि या बारिश के साथ उस आग को बुझाने में मदद मिलेगी। तो मैदानी इलाकों में तापमान नीचे जरूर गिरेगा, लेकिन आंधी तूफान, बिजली गिरने और ओले गिरने जैसी घटनाओं से बचना जरूरी होगा। तो कुल मिलाकर के कहें कि पश्चिमी विक्षोभ इतना सक्रिय होकर के आ रहा है कि अपने साथ हवा की रफ्तार बेहद तेज ला रहे हैं, और इसीलिए दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत के ये जो गंगेटिक बेल्ट है, पूरा मैदानी इलाका है, यहाँ आपको तड़के सुबह अब वैसा तापमान महसूस नहीं हो रहा होगा। इसी के साथ साथ जो वार्म नाइट कंडीशन जिसे कहते हैं, जहां रातें भी गर्म थी, वो भी बेहतर हुई है। यानी रातों को तापमान भी नीचे आया है, दिन का तापमान भी जो अधिकतम था उसमें भी कमी आई है, लेकिन ये राहत सिर्फ रविवार तक होगी क्योंकि जून की तपिश तो अभी बाकी है। दिल्ली से मनीष के साथ मैं आशुतोष मिश्रा।
11: जहां उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में वेस्टर्न डिस्टरबेंस बारिश का दौर लेकर आया, तो वहीं देश के दक्षिणी राज्यों में प्री मॉनसून बारिश हो रही है। दरअसल मॉनसून अब देश की दहलीज पर खड़ा है और दक्षिण के द्वार से उसे भारत के मेनलैंड में प्रवेश करना है। उसी का संकेत देते हुए झमाझम बारिश के साथ दक्षिण में प्री मॉनसून ने दस्तक दे दी है। प्री मॉनसून में होने वाली बारिश मॉनसूनी बारिश से अलग होती है। देखिए, मॉनसून का फंडा तो सीधा सा है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में तापमान की वजह से पानी भाप बनकर बादलों के रूप में आगे बढ़ता है और बारिश करता है, यही मॉनसूनी बारिश कहलाती है। लेकिन इससे पहले होती है प्री मॉनसून की बारिश, जो देश के कई राज्यों में इन दिनों हो रही है। अब आपको बताते हैं कि प्री मॉनसून और मॉनसून में अंतर क्या है, दोनों समय होने वाली बारिश का पैटर्न एक दूसरे से अलग कैसे है और ये पूरा सिस्टम कैसे बनता है वो समझिए। मॉनसून की बारिश की शुरुआत दक्षिणी कोने से होती है, जबकि प्री मॉनसून की बारिश का कोई सेट पैटर्न नहीं। ये देश के दक्षिण पश्चिम या उत्तरी हिस्सों में कहीं भी पहले आती है और पहले ही चली जाती है। दोनों बारिशों में बादलों का पैटर्न भी अलग होता है। मॉनसून की बारिश के बादल परतों वाले होते हैं। परतों में मौजूद ज्यादा नमी के चलते बार बार लंबे समय तक मॉनसून की बारिश होती है। ये बादल एक से दूसरी जगह तक लंबी दूरी भी तय करते हैं, जबकि प्री मॉनसून बारिश के बादलों के साथ ऐसा नहीं होता। इनमें कम नमी होती है और ये काफी ऊपर की तरफ होते हैं। मॉनसून की बारिश कभी तेज होती तो कभी कई दिनों तक रिमझिम बारिश का सिलसिला भी चलता है, जबकि प्री मॉनसून की बारिश बेहद तेज होती है। मॉनसून की बारिश बार बार और लंबे समय तक होती है, जबकि प्री मॉनसून बारिश एक दो दिन में खत्म हो जाती है, जैसा कि अभी हो रहा है। इसके अलावा मॉनसून की बारिश के दौरान कई बार तेज चक्रवाती हवाएं भी आपको देखने को मिलेंगी, जबकि प्री मॉनसून बारिश के दौरान झोंकेदार हवा के कारण धूल वाली तूफानी बारिश होती है। साथ ही मॉनसून की बारिश बहुत बड़े इलाके में एक साथ होती है और इस दौरान पूरे क्षेत्र का मौसम एक जैसा रहता है, जबकि प्री मॉनसून बारिश एक सीमित क्षेत्र में होती है, जैसा कि हम अभी देख पा रहे हैं। अब की माई मैदानी इलाकों में तो प्रचंड गर्मी पड़ी ही, लेकिन साथ ही कई पहाड़ी राज्यों में भी पारा 40 तक पहुंचा। ऐसे में वेस्टर्न डिस्टरबेंस के बाद बदला मौसम पहाड़ी राज्यों के लिए भी राहत लेकर आया। कई शहरों में जोरदार बारिश तो कुछ ऊंचाई वाले इलाकों पर बर्फबारी भी देखने को मिली। मसलन उत्तराखंड के चमोली में मौजूद हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा के इलाके में जोरदार बर्फबारी हुई। ताजा बर्फबारी के बाद पूरा इलाका बर्फ से ढका नजर आ रहा है।

0: कहां तो मैदान और पहाड़ दोनों ही हीट वेव की मार झेल रहे थे, लेकिन 24 घंटों में सब कुछ बदल गया। वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते हवाओं ने कुछ ऐसा रुख बदला कि मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया। ये तस्वीरें हैं उत्तराखंड के चमोली की, जहां ताजा बर्फबारी के बाद सिखों का पवित्र तीर्थ हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा पूरी तरह बर्फ से ढक गया है। 23 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खोले गए थे। कपाट खुलने के बाद से अब तक यहां 22,000 से ज्यादा तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। इसी दौरान इस पूरे हफ्ते यहां कई बार बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग ने गुरुवार से पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई थी। गुरुवार शाम जहां देश के मैदानी इलाकों में जोरदार आंधी बारिश का दौर चला, तब चमोली के इस इलाके में देर रात मौसम बदला और ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के साथ भारी बर्फबारी शुरू हो गई। हेमकुंड साहिब क्षेत्र में सुबह से लगातार बर्फ गिर रही है। यहां जबरदस्त ठंड के साथ आसमान से बर्फ के फाहे बरस रहे हैं। पवित्र सरोवर का पानी और भी ज्यादा ठंडा हो गया है। बावजूद इसके सिख संगत में अपार उत्साह और श्रद्धा देखने को मिल रही है। भक्त बर्फ को चीरते हुए भी गुरुद्वारा साहिब पहुंचकर अरदास कर रहे हैं।
1: चमोली में एक बार फिर से मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हो रही है। सिखों का जो पवित्र तीर्थ स्थल है हेमकुंड साहिब में रुक रुक कर बर्फबारी का दौर जारी है। आसमान में देख सकते हैं लगातार बादलों का डेरा है। मौसम विभाग ने पहले ही पहाड़ों में बारिश और बर्फ ऊंचाई वाली जगहों पर बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया था। ऐसे में हेमकुंड साहिब अत्यधिक ऊंचाई पर है, वहां पे लगातार रुक रुक कर बर्फबारी का दौर जारी है। ऐसे में अब तक 22,000 से अधिक श्रद्धालु हेमकुंड साहिब में मत्था टेक चुके हैं। सिख संगतें हैं देश और विदेश दोनों ही जगहों से इस समय हेमकुंड साहिब में पहुंच रहे हैं। ऐसे में बर्फबारी के बीच जहां रास्ता फिसलन भरा हो जाता है, वहीं SDRF जो सेवादार है, भारतीय सेना है, इन रास्तों पे लगी हुई है। यात्रियों को रास्ता पार कराने में जो व्यवस्थाएं हैं, गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी भी यहां पे लगातार यात्रियों की मदद के लिए खड़ी है। हालांकि सुबह से बर्फबारी देर रात से ही बर्फबारी यहां पे हो रही है। सुबह यहां बर्फ की सफ़ेद चादर हर तरफ दिखाई दी, इसके बावजूद भी श्रद्धालुओं का जो उत्साह है, एक तो कठिन यात्रा होती है 19 किलोमीटर की, दूसरा ऑक्सीजन की कमी होती है, लेकिन जो यहां पहुंचने वाले श्रद्धालु होते हैं, चाहे वो बुजुर्ग हों या बच्चे हों, हर किसी के उत्साह में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। बर्फबारी है, कड़ाके की ठंड है, ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह अपनी अपार देखने को मिल रहा है।
0: जहां हेमकुंड साहिब में जमकर बर्फबारी हो रही है, वहीं उत्तराखंड के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। गुरुवार शाम से रुक रुक कर हो रही बारिश ने पहाड़ी राज्य के निचले इलाकों में भी तापमान काफी गिरा दिया है।
2: दो हफ्ते की चिलचिलाती गर्मी के बाद उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में देर रात तेज बारिश हुई और गुरुवार को इस बारिश के बाद कई क्षेत्रों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और इसके बाद मौसम फिलहाल सुहाना बना हुआ है। पहाड़ी क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं देहरादून समेत जो दूसरे मैदानी क्षेत्र हैं, वहां पर भी तापमान में कमी आई है। हालांकि गर्मी अभी भी बढ़ रही है और देखा जा सकता है कि मौसम विभाग ने एक बार फिर चेतावनी दी है कि अगले दो दिन में देहरादून, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर के लिए वार्निंग जारी की गई है। येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं।
0: दरअसल मई में पहाड़ों पर हो रही जोरदार बर्फबारी सबको हैरान कर रही है। कश्मीर के गुरेज और हिमाचल के मनाली में भी इस हफ्ते ऐसा ही नजारा दिखा था, तो वहीं लद्दाख के द्रास में भी इस हफ्ते जमकर बर्फ गिरी है। ये हिमालय की गोद में बसे जोजीला दर्रा की तस्वीरें हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जोड़ने वाले इस इलाके से यूं तो साल भर सर्दी नहीं जाती, लेकिन अब की मई यहाँ हुई जबरदस्त बर्फबारी ने सबको हैरान कर दिया है। यहाँ बर्फबारी का आलम ये रहा कि सड़क पर जमी बर्फ को हटाने के लिए मशीनों का सहारा लेना पड़ा। इसी तरह ये तस्वीरें कश्मीर के गुरेज सेक्टर में मौजूद तुलैल वैली की है, जहां मई के महीने ने अब की बार दिसंबर की याद दिला दी है। इस हफ्ते नॉर्थ कश्मीर के गुरेज सेक्टर और सोनमर्ग में भी जबरदस्त बर्फबारी हुई है। हिमाचल का हाल भी ज्यादा जुदा नहीं रहा। यहाँ कुल्लू मनाली के ऊपरी इलाकों रोहतांग पास, स्पीति घाटी, सोलंग वैली, केलांग और दूसरी जगहों पर जमकर बर्फ पड़ी है। एक बात अच्छी ये हुई कि इस बर्फबारी ने पहाड़ों पर पहुँचे सैलानियों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है। जाहिर है मई में किसे बर्फबारी की उम्मीद होगी, लेकिन पहाड़ी इलाकों का रुख कर रहे पर्यटकों के लिए ताज़ा बर्फबारी किसी बोनस से कम नहीं। चमोली से कमल ने अंसिलोड़ी, देहरादून से अंकित शर्मा, मनाली से मनमिंदर अरोड़ा और जोजिला से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से देशवासियों से विदेश यात्रा की जगह स्वदेश यात्रा करने की अपील की है, तभी से जीएनटी भी आपसे गुजारिश कर रहा है कि आप अपने आसपास की खूबसूरत जगहों की तस्वीरें हमें भेजें ताकि हम आपकी उन वीडियोस को यहां पर दिखाएं। तो चलिए आज आपको हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला लेकर चलते हैं, जहां के तमाम आकर्षक और खूबसूरत पर्यटक स्थल आपका इंतजार कर रहे हैं। हमारे एक दर्शक ने हमें एक ऐसा ही वीडियो भेजा है जिसमें उन्होंने धर्मशाला समेत कांगड़ा वैली की खास जगहों के बारे में जानकारी दी है।

0: मैं आप सभी को भी न्योता देता हूँ कि हमारा हिमाचल प्रदेश जो देव भूमि है और हिमाचल के ही अंदर बसा हमारा ये सुंदर धर्मशाला, जहाँ एक तरफ धुलाधार की हसी पहाड़ियाँ, जहाँ आज मई और जून के महीने में भी बर्फबारी धुलाधार की पहाड़ियों पर है। मैं आप सभी को कहना चाहूंगा हिमाचल प्रदेश के अंदर ये सुंदर हमारा धर्मशाला, जहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो विश्व का सबसे सुंदर स्टेडियम है वो धर्मशाला में है, चाहे मैक्लोडगंज जो नगरी है वो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में है, बौद्ध धर्म के धर्मगुरु दलाई लामा जी यहाँ पर हैं। आप सभी आए और धर्मगुरु दलाई लामा जी का आशीर्वाद मिलने का सौभाग्य आप सभी को मिलेगा। धर्मशाला के अंदर चाय के बगान है, आप उन्हें निहारने के लिए यहाँ आ सकते हैं। धर्मशाला के अंदर कई देवी स्थान, कई मंदिर, जैसे अगंजर महादेव, इंद्रनाग जी का मंदिर देवी स्थल है, और कई मंदिर हमारे हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के शहर के अंदर है। बात करूं रोपवे की, तो धर्मशाला में, धर्मशाला से मैक्लोडगंज के लिए रोपवे की सुविधा है, आप उसका आनंद लेने भी हिमाचल प्रदेश के अंदर आ सकते हैं। अगर कोई ट्रैकिंग का शौकीन है तो त्रिउंड जैसा एक ट्रैकिंग का हमारे पास स्पॉट जो है धर्मशाला के अंदर है, आप ट्रैकिंग के लिए भी त्रिउंड जा सकते हैं। साथ में धर्मशाला के लगते बाथू की लड़ी यहाँ घूमने के लिए है। मंदिर की बात करूँ तो रॉकट टेम्पल हमारे यहाँ है। धर्मशाला के साथ ही लगता कांगड़ा है, प्रदेश माता शक्तिपीठ धर्मशाला के अंदर लगते कांगड़ा में है। तो आप इन तमाम चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए, घूमने के लिए धर्मशाला आए हिमाचल वासी, तो धर्मशाला अतिथि देवो भव के भाव के साथ आप सभी के स्वागत के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। आपने आना कैसे है ये सबसे बड़ा प्रश्न है, तो बताऊँ आपको, धर्मशाला के ही समीप गग्गल एयरपोर्ट, जहाँ आप हवाई मार्ग से आ सकते हैं। रेलवे से अगर आपने आना है तो पठानकोट जो सबसे नजदीक हमारे पड़ता है उसके माध्यम से आ सकते हैं। सिर्फ दिल्ली से आपने आना है तो वोल्वो बसें जो है धर्मशाला तक आती हैं। इन तमाम साधनों से जो आप धर्मशाला आ सकते हैं। हम सभी धर्मशाला वासी आपके स्वागत के लिए और अतिथियों के, अतिथि देवो भव के भाव के साथ यहाँ पर।
1: तो आप भी अपने ही देश में सैर सपाटा करने अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट कीजिए। टूरिज्म को बढ़ावा देने के संकल्प के भागीदार बनिए। बस करना आपको सिर्फ इतना सा है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है तो उठाइए अपना कैमरा और स्टार्ट कर दीजिए व्लॉग्स बनाने। फिर हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, हम उसे GNT पर जरूर दिखाएंगे। और चलिए आज तो यही कहेंगे कि एंजॉय योर वीकेंड, क्योंकि आपका वीकेंड रहने वाला है कूल कूल। फिलहाल इजाजत दीजिए, अच्छी खबरें जा रही हैं, देखते रहिए GNT।
2: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy one year packed with perks. Like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं और इन्हें खूब पसंद किया जा रहा है।
4: नवजात भाई को पहली बार देखकर छोटी बहन की खुशी देखने लायक है। ठुमक ठुमक कर चलते हुए वो मासूमियत से जमीन पर बैठ गई और अपने नन्हे भाई को गोद में लेने के लिए हाथ फैला दिए। उसकी चमकती आंखों और खिलखिलाती मुस्कान ने पूरे घर के माहौल में खुशियां भर दी। भाई को सीने से लगाने की उसकी मासूम चाहत ने सभी का दिल जीत लिया। ये खूबसूरत पल सिर्फ एक मुलाकात नहीं बल्कि भाई बहन के अनमोल रिश्ते और निश्चल प्रेम की प्यारी शुरुआत बन गया। जहाँ लोग छोटी छोटी परेशानियों में हार मान लेते हैं, किस्मत को कोसने लगते हैं, वहीं ये शख्स हौसले की नई मिसाल बनकर सामने आया है। एक हाथ न होने के बावजूद अपने हुनर से लोगों के चेहरों पर मुस्कान और आत्मविश्वास दोनों सजा रहा है। इनका काम सिर्फ हेयर कटिंग का नहीं है, बल्कि ये साबित करना है कि मेहनत, जज्बा और आत्मविश्वास के आगे हर मुश्किल छोटी पड़ जाती है। अपने हौसले से ये अपनी तकदीर खुद लिख रहे हैं। माँ और बच्चे का ये प्यारा सा अंदाज किसी का भी दिल जीत देगा। माँ जैसे ही मस्ती में झूमती है, बच्चा भी उनकी नकल करने लगता है, फिर अपनी मासूम अदाओं पर खिलखिलाकर हंस पड़ता है। ये नज़ारा सिर्फ हंसी का नहीं, बल्कि माँ बेटे के खूबसूरत रिश्ते और बेफिक्र बचपन की प्यारी झलक है। ऐसी मासूम खुशियाँ ही जिंदगी को खूबसूरत बनाती है और चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है। दुनिया का सबसे अमीर इंसान वो नहीं जिसके पास दौलत है, बल्कि वो है जिसके घर लौटने पर परिवार खुशियों से झूम उठे। ये प्यारी बच्चियां अपनी माँ के साथ डांस करते हुए पिता का स्वागत कर रही हैं। बेटियों की मुस्कान और अपनापन देख पिता भी खुद को झूमने से रोक नहीं पाए। ये नज़ारा सिर्फ स्वागत का नहीं, बल्कि परिवार के प्यार, अपनेपन और रिश्तों की असली दौलत की खूबसूरती का है। इतना नन्हा किसान शायद ही किसी ने देखा होगा जो अपनी मासूम उम्र में भी जिम्मेदारी निभा रहा है। ये छोटा सा बच्चा होटल के कर्मचारियों के साथ बागवानी में मदद कर रहा है। उनकी क्यूट हरकतें देखकर सभी के चेहरों पर मुस्कान आ जाती है। बच्चे की मासूम कोशिशों से माहौल और भी खुशनुमा हो गया। उसकी ये लगन और सादगी ये सिखाती है कि सीखने और मदद करने की कोई उम्र नहीं होती।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: Hey, it's Billy Bush. Tune into my show Hot Mics Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.
6: Good news today.
7: कि कौन सी राशि बहुत जिद्दी मानी जाती है? शुक्र की कौन सी राशि के लोग बहुत उदार होते हैं? और शुक्र की राशि का सूर्य और शनि से क्या संबंध है? कौन सी है शुक्र की राशियां और क्या है उनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: रामनगरी अयोध्या में माता दुर्गा मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ धार्मिक अनुष्ठान, साधु संतों की मौजूदगी में हुआ समारोह। ऋषिकेश में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की गंगा आरती, तीर्थ क्षेत्र के मुद्दों पर साधु संतों से मुलाकात और संवाद। लखनऊ के साईं भक्त ने बाबा को भेंट किया स्वर्ण मुकुट, बेशकीमती पत्थरों से बने कमल पर उकेरा गया ओम, 782 ग्राम के इस मुकुट पर दो मयूर की नक्काशी। कोलकाता में तेज हवाओं के साथ जमकर हुई बारिश, उमस और गर्मी से लोगों को मिली राहत, सड़कों पर गिरे पेड़ हटाने में जुटा प्रशासन। उत्तराखंड के पहाड़ों को प्लास्टिक कचरा मुक्त बनाने में जुटा इंग्लैंड से आया मेहमान, अल्मोड़ा के कसार देवी इलाके में हर रोज स्वच्छता अभियान चलाते हैं मार्क। रेलवे ट्रैक के रेलबाजों पर प्रशासन हुआ सख्त, झांसी रेलवे स्टेशन पर ड्रोन कैमरों से की जा रही है लाइव निगरानी, संदिग्ध और पत्थरबाजों पर पैनी नजर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं, आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार से
4: फैलते हैं, कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, तो कभी पुरानी तस्वीरों को नई साजिश का रंग देकर उन्हें पेश किया जाता है और लोग बिना सोचे समझे बिना परखे ने सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहाँ हर किसी के हाथ में एक कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। तो आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे जिसमें सबसे पहले बात सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की होगी जिसके जरिए यह दावा किया जा रहा है कि वीडियो पश्चिम बंगाल का है, जहां घर पर बुलडोजर चलने के बाद एक शख्स फूट फूट कर रोने लगा। क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई, आगे बताएंगे। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी होगी जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि हाल ही में चीन के दौरे के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जासूसी करते कैमरे में कैद हो गए। एक भोज के दौरान वो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निजी नोट्स में ताक झांक करते हुए कैमरे में कैद हो गए। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
4: पश्चिम बंगाल की शुभेंदु अधिकारी की सरकार के नेतृत्व में अवैध कब्जों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई लगातार जारी है। सोशल मीडिया पर भी इस कार्रवाई से जोड़ते हुए वीडियोस लगातार वायरल हो रहे हैं। अब ऐसा एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ है जिसमें एक शख्स फूट फूट कर रोता नजर आ रहा है और इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग ये दावा कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बुलडोजर एक्शन के बाद घर गंवाने के बाद एक शख्स फूट फूट कर रोया। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, देखिए रिपोर्ट।
8: पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन और शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार बनने के बाद राज्य भर में अवैध निर्माणों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है। सरकार का दावा है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। इसी संदर्भ में ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। इसमें एक व्यक्ति फूट फूट कर रोता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में कुछ पुलिस वाले भी देखे जा सकते हैं। इसके अलावा तोड़फोड़ की आवाज भी सुनाई दे रही है। देखने में ये किसी बुलडोजर एक्शन के वक्त का लगता है। कुछ लोग इसे पश्चिम बंगाल का बताकर शेयर कर रहे हैं। फेसबुक पर इस वीडियो के साथ पश्चिम बंगाल से जुड़े हैशटैग्स लगाकर एक व्यक्ति ने लिखा, इन कंगालुओं को दहाड़े मार मार कर रोता देखकर दिल को बहुत अधिक सुकून मिल रहा है। हैशटैग वेस्ट बंगाल, हैशटैग बंगाल, हैशटैग टीएमसी, हैशटैग ममता बनर्जी। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
4: दरअसल सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में एक शख्स फूट फूट कर रोता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि यह वीडियो पश्चिम बंगाल का है, जहां पर बुलडोजर एक्शन में घर गंवाने के बाद ये शख्स फूट फूट कर रोने लगा। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी था। फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और सुना। इस दौरान हमारा ध्यान बैकग्राउंड से आ रही आवाजों पर गया। जब हमने इसे गौर से सुना तो ये सामने आया कि ये बंगाल का है, यानी कि बंगला में ये लोग बातचीत कर रहे हैं। मतलब वायरल वीडियो पश्चिम बंगाल का हो सकता है। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने एक बार फिर से वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान वीडियो में नजर आ रहे पुलिस के जवानों की वर्दी के कलर पर हमारा ध्यान गया। जब हमने इसे देखा तो ये साफ हुआ कि बांग्ला पुलिस की वर्दी का कलर नहीं हो सकता, क्योंकि पश्चिम बंगाल में पुलिस की वर्दी का रंग तो सफेद है। दो तरह की वर्दी वो पहनते हैं। कोलकाता और हावड़ा क्षेत्र की पुलिस सफेद रंग की वर्दी पहनती है, जिस पर नीले रंग की बेल्ट और कंधे पर नीला रंग होता है, जबकि राज्य के
1: अन्य सभी हिस्सों की बात की जाए तो पुलिस की वर्दी खाकी रंग की होती है, जबकि वीडियो में जो जवान दिख रहा है उनकी वर्दी का रंग अलग है। साथ ही सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, लिहाजा हमने इस सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल यही कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है और कहां का है। दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर वीडियो को पश्चिम बंगाल का बताकर भ्रम फैलाने की कोशिश तो नहीं हो रही। आप देखिए सच्चाई क्या है।
8: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वायरल वीडियो को गौर से देखा। वीडियो पर एक लोगो नजर आ रहा है। सर्च करने पर पता चला कि ये बांग्लादेश का एक न्यूज आउटलेट है। इस आउटलेट ने अपने ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट पर ये वीडियो 21 मई को पोस्ट किया था। पोस्ट के कैप्शन के मुताबिक ये शख्स अपनी आंखों के सामने अपना घर टूटता देख जोर जोर से रोने लगा। पोस्ट के कैप्शन में कलशी बस्ती हैशटैग का इस्तेमाल किया गया है। ये बस्ती ढाका के पास मीरपुर जोन के पल्लवी में स्थित है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस इलाके में बीते कुछ दिनों में बड़े पैमाने पर अवैध कब्जों को हटाने के लिए कार्रवाई की गई है। इस आउटलेट ने कलशी इलाके में हुई बुलडोजर कार्रवाई के और भी कई वीडियो फेसबुक पर पोस्ट किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस इलाके में सरकारी जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर कार्रवाई की गई थी। कार्रवाई के दौरान यहां रहने वाले लोगों और पुलिस वालों के बीच झड़प भी हो गई थी। कुछ स्थानीय लोगों ने पुलिस वालों पर हमला भी कर दिया था। इस तरह हमारी पड़ताल से साफ हो गया कि पश्चिम बंगाल नहीं बल्कि बांग्लादेश में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ हुई कार्रवाई के दौरान का वीडियो है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके जरिए कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये वायरल वीडियो हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के दौरान का है, जिसमें वो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नोटबुक में झांकते हुए नजर आ रहे हैं। बीजिंग में एक राजकीय भोज के दौरान जब शी जिनपिंग अपनी सीट से उठे तो ट्रंप ने उनकी मेज पर रखी नोटबुक खोलकर उसके पन्ने पलटे, उससे पढ़ने की कोशिश की। लेकिन वायरल दावे की सच्चाई क्या है, देखिए रिपोर्ट।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में चीन की यात्रा की थी। इस दौरान उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय शिखर वार्ता भी की। ट्रंप ने राष्ट्रपति शी को सितंबर में व्हाइट हाउस आने का निमंत्रण दिया।

0: इन सबके बीच सोशल मीडिया पर ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ट्रंप को शिखर सम्मेलन के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की निजी नोटबुक पर चुपके से नजर डालते हुए दिखाया गया है। वीडियो शेयर करते हुए एक एक्स यूजर ने लिखा, शी जिनपिंग के बीजिंग में एक भोज के दौरान जब वे कुछ देर के लिए दूर चले गए थे, तब ट्रंप को उनकी निजी नोटबुक पर चुपके से नजर डालते हुए पकड़ा गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे पर गए थे। उस दौरे के दौरान एक दृश्य सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिसके जरिए कुछ लोग ट्रंप की नीयत पर तंज कसते हुए दावा ये कर रहे हैं कि शी जिनपिंग के बीजिंग में एक भोज के दौरान जब वो कुछ देर के लिए दूर चले गए थे, तब ट्रंप को उनकी निजी नोटबुक पर चुपके से नजर डालते हुए कैमरे में साफ साफ देखा जा सकता है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की। फैक्ट चेक टीम ने दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान ये नजर आया कि ट्रंप एक फोल्डर को पलटते हुए देखे जा सकते हैं। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने फोल्डर पर नजर आ रहे प्रतीक चिन्ह को जूम करके करीब से देखा, तो सामने आया कि अमेरिकी राष्ट्रपति की मोहर से मिलता जुलता है। इसके बीचों बीच में चील भी दिख रही है, मतलब ये कि इस फोल्डर का चीनी राष्ट्रपति से कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट भी नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। और हमारा पहला सवाल यही कि अगर वीडियो सच्चा है तो इसके बारे में कोई प्रमाणिक जानकारी क्यों नहीं मिली। हमारा दूसरा सवाल, कहीं जानबूझकर वीडियो को नया एंगल देकर वायरल तो नहीं किया जा रहा। सच और झूठ क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में।
0: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उन्हें सर्च किया। इस दौरान हमें 14 मई को एक न्यूज चैनल पर अपलोड वीडियो का एक लंबा संस्करण मिला। ये बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल्स में आयोजित राजकीय भोज का वीडियो था। लगभग 1:50 पर ट्रंप के बाईं ओर बैठे जिनपिंग उठते हैं और मंच की ओर चलते हैं। इसके बाद वायरल क्लिप में ट्रंप को अपनी बाईं ओर रखे फोल्डर को खोलते और कुछ पन्ने पलटते हुए दिखाया गया है। व्हाइट हाउस ने इस कार्यक्रम का एक अनकट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड किया था। वीडियो शुरू होने के 2 बाद देखा जा सकता है कि जिनपिंग उठते हैं, इसके तुरंत बाद ट्रंप अपने बाईं ओर रखे फोल्डर को खोलते हैं और कुछ पढ़ते हैं। वीडियो में आगे लगभग 12 पर जब जिनपिंग अपनी सीट पर वापस लौटे तो ट्रंप उठे, फोल्डर अपने साथ ले गए। उसे पोडियम पर रखा, कुछ पन्ने पलटे और उसमें से पढ़ना शुरू किया। यही दृश्य एक और वीडियो में 11:50 पर देखा जा सकता है। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि फोल्डर ट्रंप का था और अमेरिकी राष्ट्रपति अपने चीनी समकक्ष की निजी नोटबुक में ताक झांक नहीं कर रहे थे। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल दावा झूठा साबित हुआ। फोल्डर ट्रंप का है, चीनी राष्ट्रपति का नहीं। अभिषेक पाठक के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears.
4: It's my music and it's my station.
3: Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
5: The
3: music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of

0: किए जा रहे हैं।
1: इन दिनों ये वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है, जिसमें एक छोटा बच्चा तालाब के पानी के ऊपर आराम से खड़ा हुआ दिखाई देता है। बच्चे का बैलेंस और कॉन्फिडेंस देखकर लोग हैरान रह जाते हैं, जबकि दूसरा बच्चा कुछ वैसा ही करने की कोशिश करता है लेकिन सफल नहीं हो पाता। यही फनी मोमेंट सोशल मीडिया यूजर्स को खूब पसंद आ रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि यहाँ गांव जैसा माहौल है और यहाँ तालाब के बीचों बीच एक छोटा बच्चा आराम से खड़ा है। तालाब के बीच बच्चा हाथ जोड़कर और आंखें बंद किए पूरे बैलेंस और कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि बच्चे के चेहरे पर जरा भी घबराहट नजर नहीं आती है। यही वजह है कि वीडियो देखने के बाद भी लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वीडियो के आखिरी हिस्से में जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलता है। एक दूसरा लड़का जब उसकी कॉपी करने पहुंचा तो ऐसा मजेदार हादसा हुआ कि इंटरनेट यूजर्स हंसते हंसते लोटपोट हो गए। दरअसल बच्चे ने पानी के अंदर एक स्टूल के सहारे बैलेंस को बनाया था। युवक ये समझ नहीं पाया और वो पानी में धड़ाम से गिर गया। सोशल मीडिया पर इन दिनों 4 साल 4 महीने के एक बच्चे का क्रिकेट वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पहली नजर में उसकी उम्र देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल लग रहा है कि ये इतनी कम उम्र में बैट संभाल पाएगा, लेकिन जैसे ही गेंदबाज उसकी तरफ तेज गेंद फेंकता है, बच्चा पूरे आत्मविश्वास के साथ शानदार शॉट खेल देता है। खास बात यह है कि वह शॉट सीधे कवर की दिशा में जाता है और गेंद सीमा रेखा के पार पहुंच जाती है। बच्चे का यह शॉट देखकर वहां मौजूद लोग भी दंग रह जाते हैं। वीडियो में देखने वाली सबसे दिलचस्प बात यह है कि गेंदबाज खुद बच्चे की बल्लेबाजी से इतना प्रभावित हो जाता है कि दौड़कर उसके पास आता है और उसके पैर छू लेता है। इसके बाद दोनों के बीच मजेदार अंदाज में पंच भी होता है और फिर वीडियो खत्म हो जाता है। हालांकि वीडियो छोटा है, लेकिन कुछ ही सेकंड के इस क्लिप ने लोगों का दिल जीत लिया है। अक्सर माना जाता है कि ढलती उम्र के साथ बुजुर्गों का खान पान सादा और सीमित हो जाता है, लेकिन इंस्टाग्राम पर वायरल हुई एक क्लिप ने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया है। इस वीडियो में एक 92 साल की दादी बड़े चाव से पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक का लुत्फ उठाती नजर आ रही है। वीडियो में दिख रहा है कि दादी पिज्जा के हर स्लाइस का पूरी शिद्दत से आनंद ले रही है। इस दौरान उनकी बच्चों जैसी खुशी देखने लायक है। पिज्जा खाते हुए उनके थम्स अप ने सोशल मीडिया यूजर्स का दिल जीत लिया है। कुल मिलाकर दादी का यह अंदाज बेहद मजेदार और जिंदा दिली से भरा हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर यूजर्स दंग है। वीडियो में एक शख्स सड़क पर पड़े गोबर को देखकर रुक जाता है और उसी गोबर पर आर्ट करके एक शानदार मास्टरपीस तैयार कर देता है। साधारण सी चीज को देखकर उसमें छुपी कला को बाहर निकालने वाला यह कलाकार अपनी क्रिएटिविटी के लिए सराहा जा रहा है। वीडियो में दिखाया गया है कि एक व्यस्त सड़क के किनारे गोबर पड़ा हुआ है। कलाकार उसे देखते ही रुक जाता है। वह अपने बैग से रंग, ब्रश और अन्य सामान निकालकर काम शुरू कर देता है। कुछ ही देर में गोबर पर खूबसूरत पैटर्न, फूल, ज्यामितीय डिजाइन और रंग बिरंगे आकर्षक नक्काशी बन जाती है। गोबर की सूरत ही बदल गई। जो चीज आमतौर पर लोग नाक भौं चढ़ाकर पार करते हैं, उसी को कलाकार ने आर्ट का रूप दे दिया। सोशल मीडिया पर इन दिनों ये भावुक वीडियो वायरल हो रहा है, जो इंसानों के दिल को छू रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि एक छोटा सा मेमना अपनी माँ से बिछड़ गया था। जब उसे अपनी माँ दिखी तो वह खुशी से दौड़कर उसके गले लग गया। माँ भी अपने बच्चे को देखते ही भावुक हो गई और मिलन का यह पल हर किसी को रुला गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि खुले आसमान के नीचे हरे भरे खेत में एक महिला मेमने को लेकर आ रही है। जैसे ही मेमना अपनी माँ को दूर से पहचानता है, वह अपनी छोटी छोटी टांगों से तेजी से दौड़ने लगता है। माँ भी अपने बच्चे की आवाज सुनकर बेचैन हो जाती है और आगे बढ़ती है। दोनों के मिलते ही माँ बेटे का गर्मजोशी भरा मिलन देखकर फिल्माने वाली महिला की आंखें भी नम हो जाती हैं। पास खड़ी गाय भी इस खुशी के पल में शामिल होती नजर आती है। आमतौर पर अगर किसी के घर में चूहा घुस जाए तो लोग उसे पकड़कर तुरंत बाहर छोड़ देते हैं या उससे छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार एक शख्स ने जो किया उसे देखकर इंटरनेट यूजर्स भी हैरान रह गए। उसने चूहे को पकड़ने के बाद उसके लिए मूवी नाइट ही रख दी। दरअसल एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक चूहा छोटे से पिंजरे में फंसा हुआ है। लेकिन उसे डराने या परेशान करने के बजाय

0: युवक ने पिंजरे के पास अपना मोबाइल रख दिया। मोबाइल में एनिमेटेड फिल्म बाल गणेशा चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे चूहे के लिए खास तौर पर धार्मिक फिल्म दिखाई जा रही हो। वीडियो में सबसे मजेदार बात यह थी कि युवक बड़े आराम से चूहे के सामने फिल्म चला रहा था, मानो वह कोई खास मेहमान हो। इंटरनेट पर लोगों को यह पल बेहद मजेदार और दिल छू लेने वाला लगा। गर्मी इन दिनों चरम पर है और इस भयंकर गर्मी ने इंसानों के साथ जानवरों की जिंदगी भी मुश्किल कर दी है। लेकिन सोशल मीडिया पर एक बिल्ली ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। यह बिल्ली बिना एयर कंडीशनर के एक मिनट भी नहीं रह पाती।
1: बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा कह रहे, रिमोट दे दे चुपचाप, मारा मारी बाद में का रिमोट दे दे। बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा तेरा।
0: अगर एसी बंद हो जाए तो वह न सिर्फ नखरे दिखाती है बल्कि एसी का रिमोट छिपा लेती है, और जब कोई रिमोट लेने की कोशिश करता है तो वह सीधा अटैक मोड में आ जाती है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि मालिक जब एसी बंद करने या रिमोट लेने जाते हैं तो बिल्ली पहले तो घूरती है, फिर रिमोट मुंह में लेकर भागती है और छिपा देती है। अगर कोई उसके पीछे जाता है तो वह नुकीले नाखून दिखाकर हमला करने की तैयारी कर लेती है। आप किसी जंगल सफारी पर गए हो और आपकी गाड़ी के ठीक बगल में एक खूंखार बब्बर शेर बैठा हो, तभी अचानक कुछ लोग आराम से उसके बगल से पैदल और बाइक पर गुजरने लगे, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? यकीनन यह नजारा किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सफारी गाड़ी में बैठा एक पर्यटक वीडियो बना रहा है, तभी सड़क पर एक के बाद एक बाइक सवार गुजरते हैं। हैरान करने वाला मोड़ तब आता है जब कैमरा थोड़ा घूमता है और सड़क के बीच में एक विशाल गाय शेर बैठा दिखाई देता है। हद तो तब हो गई जब बाइकर्स के साथ साथ एक शख्स बड़े आराम से पैदल ही शेर के पास से गुजर जाता है, मानो वहाँ कोई शेर नहीं बल्कि कोई बिल्ली बैठी हो। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि शेर भी उन्हें देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता और शांति से बैठा रहता है। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है, जिसने फुटबॉल मैच को ही यादगार बना दिया। इस वीडियो को देखकर लोग सिर्फ मुस्कुरा ही नहीं रहे बल्कि इसे इंटरनेट का सबसे क्यूट फुटबॉल वीडियो भी बता रहे हैं। दरअसल एक फुटबॉल मैच के दौरान ऐसा मजेदार नजारा देखने को मिला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। खिलाड़ी मैदान में पूरी गंभीरता से मैच खेल रहे थे, तभी अचानक एक छोटा सा बछड़ा मैदान में आ गया। शुरुआत में खिलाड़ियों को लगा कि शायद वह थोड़ी देर में बाहर चला जाएगा, लेकिन अगले ही पल उसने जो किया उसे देखकर मैदान में मौजूद हर व्यक्ति हंसने लगा। वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही खिलाड़ी फुटबॉल को एक दूसरे की तरफ पास कर रहे थे, वैसे ही वह नन्ना बछड़ा भी पूरी उत्सुकता के साथ गेंद के पीछे दौड़ने लगा। गेंद मैदान के जिस कोने में जाती, बछड़ा भी उसी दिशा में तेजी से भागता दिखाई देता। उसकी मासूम हरकतें और उत्साह देखकर खिलाड़ी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: बात अयोध्या के शक्ति उत्सव की, राम मंदिर परिसर में भगवती मंदिर में ध्वजारोहण समारोह संपन्न हो गया। खास बात यह रही कि राम मंदिर ट्रस्ट ने इस समारोह को मातृ शक्ति को समर्पित किया था, लिहाजा 3500 से ज्यादा महिला संत और कार्यकर्ता इस समारोह का हिस्सा बने। इस समारोह की सुरक्षा का जिम्मा भी सीआरपीएफ की महिला बटालियन ने ही संभाला।

0: ये राम की नगरी में माँ दुर्गा के धाम पर नारी शक्ति का आरोहण है। माँ भगवती के मंदिर शिखर पर लहराती है धर्म ध्वजा, एक नए अध्याय का श्री गणेश है जो संसार को मातृ शक्ति का स्थान बता रही है। अयोध्या के शक्ति उत्सव को निहारिए, ये वो विशेष पल है जब सीआरपीएफ की महिला विंग की जवानों ने ध्वज की रस्सियां खींची और साध्वी रितांबरा ने ध्वजारोहण की परंपरा के माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम की नगरी में मां के सम्मान को आस्था के शिखर तक पहुंचा दिया। बेशक इस पल का साक्षी बने हर श्रद्धालु के लिए ये कभी ना भुला पाने वाला लम्हा था।
1: तो राम जन्मभूमि में एक और महोत्सव आज पूर्ण हुआ है, क्योंकि आज जो है माँ जगदम्बा के मंदिर के ऊपर शिखर के ऊपर आज ध्वज लहराया है और यहाँ लगभग 3500 के ऊपर महिलाएं रही उपस्थित और लगातार यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इसी गेट से जो है इनकी एंट्री हुई थी और इसी गेट से अभी कुछ देर बाद ये बाहर निकल रही हैं और लगातार आप लोग ने ध्वजारोहण देखा अपने आप।
2: जी सर बहुत अच्छा लगा, ये अनुभव बहुत अच्छा लगा। इतने दिनों से हमारे पूर्वजों ने जो सपना देखा था आज पूरा हुआ। जय श्री राम।
1: कैसा लग रहा? बढ़िया भावुक भी लग रही।
2: जी ये हमारे पूर्वजों का बहुत पुराना सपना था, इसी वजह से शायद हम बोल नहीं पा रहे हैं, शब्द मेरे पास नहीं है।
1: जी,
2: इसीलिए ये सम्मान हम लोग महिलाओं को मिला, ये हमें बहुत अच्छा लगा कि ये सम्मान केवल हम औरतों के लिए।
0: सनातन संस्कृति में ध्वजारोहण महज एक परंपरा नहीं है बल्कि धर्म, विजय और सकारात्मक ऊर्जा का वो प्रतीक है जो कोसों दूर से मंदिर के शिखर पर लहराता नजर आता है, जिसके दर्शन मात्र से श्रद्धालुओं को असीम शक्ति और ऊर्जा मिलती है, आस्था भक्ति के धाम तक पहुंचने का मार्गदर्शन मिलता है। माँ भगवती के मंदिर पर ये ध्वजारोहण इसलिए विशेष रहा क्योंकि 3500 से ज्यादा मातृ शक्ति इस अद्भुत पल की साक्षी बनी।
3: बहुत दिन बाद मतलब ऐसा लगा कि हाँ, जो जितने लोगों ने इतने लड़ाई की थी, इतना चीजें हुई थी, तो उसका फल आज मिल गया है। बहुत बहुत सही है।
1: आपने अपनी आंखों से ध्वजारोहण देखी पहली बार आज राम मंदिर?
3: हाँ, पहली बार मतलब इतनी बार हुआ लेकिन कभी आज तक नहीं देखा, और ये चीज बहुत अच्छा लगा कि स्पेशली वुमेन्स के लिए ये चीजें करवाई गई है।
4: सर्वप्रथम तो हम लोग पहले दर्शन ही किए, दर्शन करने के बाद ध्वजारोहण को अपनी आँख के सामने ऊपर उठते हुए शीर्ष तक यूं गर्दन ऐसे थी।
5: नारी का सम्मान हमेशा रहा, यत्र नारियस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी का सम्मान होता है, नारी का पूजा होती है हमारे यहाँ।
0: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस भव्य कार्यक्रम को मातृ शक्ति को समर्पित किया था, लिहाजा ध्वजारोहण समारोह में दुर्गा वाहिनी और मातृ शक्ति की करीब 230 कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया। साथ ही अयोध्या महानगर के 64 कार्य क्षेत्रों से जुड़ी करीब 3500 महिलाएं इस पल की साक्षी बनी। वृंदावन के वात्सल्य ग्राम की 163 महिला प्रतिनिधि भी इस खास अवसर पर उपस्थित रहीं। राम जन्मभूमि परिसर के 7 मंदिरों पर एक एक कर ध्वजारोहण का कार्यक्रम जारी है। इस सिलसिले का श्री गणेश पिछले 25 नवंबर को हुआ, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर मुख्य मंदिर पर ध्वजारोहण किया। 31 दिसंबर 2025 को अन्नपूर्णा मंदिर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ध्वज फहराया। इसके बाद भगवान सूर्यदेव के मंदिर के शिखर पर 26 मार्च 2026 को विधि विधान से ध्वजारोहण किया गया। हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर 2 अप्रैल को 75 फीट ऊंचे मंदिर हनुमान मंदिर के शिखर पर विधि विधान से भव्य धर्म ध्वजा फहराएगी। फिर 11 अप्रैल को गणेश मंदिर पर ध्वजारोहण हुआ। वही 29 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिव मंदिर पर ध्वजारोहण किया था और आज साध्वी रितांबरा ने भगवती मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण कर रामनगरी में आस्था, भक्ति और अध्यात्म के वैभव को शिखर तक पहुंचा दिया। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. This guitar about as hard as a cane. To top 40 hits you just can't get enough of. Thank God I get to TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
8: और आपको समझाएंगे
6: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को
8: रामनगर में माता दुर्गा मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण वैदिक ऋषिकेश में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की गंगा आरती तीर्थ क्षेत्र के मुद्दों पर साधु संतों से मुलाकात और संवाद लखनऊ के साईं भक्त ने बाबा को भेंट किया स्वर्ण मुकुट बेशकीमती पत्थरों से बने कमल पर उकेरा गया ओम 782 ग्राम के इस मुकुट पर दो मयूर की नक्काशी कोलकाता में तेज हवाओं के साथ जमकर हुई बारिश उमस और गर्मी से लोगों को मिली राहत सड़कों पर गिरे पेड़ हटाने में जुटा प्रशासन उत्तराखंड के पहाड़ों को प्लास्टिक कचरा मुक्त बनाने में जुटा इंग्लैंड से आया मेहमान अल्मोड़ा के कसार देवी इलाके में हर रोज स्वच्छता अभियान चलाते हैं मार्क रेलवे ट्रैक के रेलबाजों पर प्रशासन हुआ सख्त झांसी रेलवे स्टेशन पर ड्रोन कैमरों से की जा रही है लाइव निगरानी संदिग्ध और पत्थरबाजों पर पैनी नजर

अर्ज किया है, बदले हुए से लगते हैं अब मौसमों के रंग, पड़ता है आसमान का साया जमीन पर। नमस्कार, मैं हूं शगुफ्ता साहिल देव, आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। हमदम कश्मीरी के इन शब्दों की ही तरह मौसमों के बदलने पर बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ कहा गया। जीएनटी स्पेशल में भी आज बात होगी मौसम के उसी बदलाव पर जिसने वीकेंड से पहले खुश होने का बहाना दे दिया है। यूं तो मई के महीने ने अब की बार बेहद तपाया, लेकिन जाते जाते मई ने राहत की सौगात भी दे दी है। मई का आखिरी शुक्रवार वाकई शुक्र मनाने वाला वार रहा, शुक्र हीट वेव और तपती गर्मी से निजात के लिए। गुरुवार शाम से शुरू हुआ बारिश का दौर पहाड़ों और मैदानी इलाकों के लिए राहत लेकर आया है। पिछले कई दिनों से जो पारा 45 डिग्री के पार चल रहा था, कल शहर शहर हुई बारिश ने तापमान में थोड़ी सी राहत दे दी। भीषण गर्मी में दिन में निकलना किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन अब कुछ दिन के लिए मौसम साफ और सुहावना रहने वाला है। कई शहरों में आज सुबह की शुरुआत हल्की ठंडी हवा और खुशनुमा मौसम के साथ हुई। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि पूरे वीकेंड बारिश का ये दौर जारी रह सकता है। आज के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट, जबकि शनिवार रविवार के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। आइए आपको बताते हैं कि गर्मी से राहत देने वाली ये बारिश कहां कहां हुई और क्यों हुई।

0: मई की तपिश में राहत की बौछार हो गई। झमाझम बारिश से धरती गुलजार हो गई। इस बार का वीकेंड देश के कई हिस्सों के लिए तोहफे में सुकून की बौछार लेकर आया है। नौतपों के बीच दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया।
1: चिलचिलाती गर्मी और धूप से परेशान दिल्ली वालों के लिए गुरुवार की शाम राहत लेकर के आई, जब तेज हवाएं चली, धूल भरी आंधी चली और उसके बाद हल्की हल्की बारिश हुई, जिसके चलते मौसम और तापमान में अच्छी खासी गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिन तक इसी तरीके का मौसम जो है वो फिलहाल दिल्ली एनसीआर में बने रहने की उम्मीद है। जिस तरीके से कल देर शाम को बारिश हुई, ऐसा ही मौसम आज दिन भर जो है वो मौसम विभाग की माने तो बना रहेगा। कई इलाकों के अंदर हवाएं जो है वो तेज गति के साथ चलेंगी और उसके साथ साथ बादल भी छाए रहेंगे और उसके अलावा कई इलाकों में हल्की हल्की बारिश भी जो है वो हो सकती है। मौसम विभाग अगर बात की जाए तो जिस तरीके से कई दिनों से लगातार दिल्ली में रहने वाले लोग, खासतौर पर उत्तर भारत के भी लोग जो चिलचिलाती गर्मी और लू से परेशान थे, उनके लिए राहत जरूर लेकर के आई है।
0: कल तक जहां सूरज आग उगल रहा था, वही अब बादल झमाझम बरस रहे थे। गुरुवार शाम से ही उत्तर पश्चिम भारत के शहरों में आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश हुई, जिसके बाद देखते ही देखते तापमान में भारी गिरावट आने लगी। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार शाम से बदला मौसम का ये मिजाज रविवार तक ऐसा ही बने रहने की संभावना है। मौसम की करवट को देखते हुए अगले 2 दिनों के लिए दिल्ली एनसीआर, यूपी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कहीं तेज, कहीं मध्यम, कहीं कहीं थोड़ा नुकसान भी हुआ, पर पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी, चिलचिलाती धूप, उमस भरी रात झेल रहे लोगों के लिए मौसम का ये दौर सुकून लेकर आया है। तापमान में आई गिरावट से मौसम सुहाना हो गया।
2: उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में थोड़ी गर्मी से राहत मिली है लोगों को। वजह थी कल बारिश और तेज हवाएं जब चली थी, उसके बाद लगातार बारिश से कई जगह पर राहत मिली है। लोग काफी दिनों से गर्मी से परेशान थे, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में फिर चाहे आगरा से लेकर गोरखपुर तक और झांसी से लेकर लखनऊ तक टेम्परेचर में काफी कमी आई है और जिससे थोड़ा राहत मिली है।
0: मौसम की इस बदली चाल की वजह वेस्टर्न डिस्टरबेंस को बताया जा रहा है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर पहाड़ों से लेकर मैदानों तक दिखा है, जिससे तापमान में गिरावट और हीट वेव से निजात मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक जून में वापस तापमान 40 को लांघेगा, लेकिन फिलहाल हीट वेव से राहत की ये स्थिति हफ्ते भर तक बनी रह सकती है। यानी तापमान को दोबारा हीट वेव के स्तर पर आने में 7 से 8 दिन का समय लग सकता है।
3: देखिए, अभी टेम्परेचर इतने फॉल होंगे तो उनको राइज करने में फिर से थोड़ा समय लगेगा, तो फिलहाल हमारा अनुमान यही है कि 2 से 3 दिन के बाद 29 तारीख से जो हीटर कंडीशंस अबेट हो जाएंगी, उसके बाद में 30-31 तारीख के बाद में फिर से ग्रेजुअली टेम्परेचर राइज होना शुरू होंगे और उनको फिर से हीटवेव के स्तर में पहुँचने में थोड़ा समय लगेगा।
0: मौसम के बदले मिजाज का असर बनारस में भी दिखा। काशी में लगातार 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच रहे तापमान ने लोगों को घरों में कैद होने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन अब बाबा विश्वनाथ की नगरी में मौसम भी मलंग हो गया है।
4: मौसम में बदलाव के चलते वाराणसी में लोगों ने राहत की सांस ली है। तड़के सुबह गरज चमक और तेज हवाओं के बीच हुई बारिश से तापमान लगभग 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे लुढ़क गया, जो सामान्य से 1.5 डिग्री नीचे बताया जा रहा है।
5: अभी तो कल से तो बढ़िया है, जब से कल से मतलब इतना ज्यादा अच्छा है, कहने बात नहीं, मतलब बारिश होने के बाद अच्छा मौसम है, ऐसा लग रहा है कि हाँ थोड़ा ठंडा है।
6: देखिए, मौसम का मिजाज तो बहुत अच्छा बदला है। जिस हिसाब से कल रात में बारिश हुई है और तूफान आया था, जिस हिसाब से लोग कह रहे थे कि नौतपा लगने वाला, उस हिसाब से पब्लिक सड़क पर नहीं निकल रही थी उस डर से। तो लेकिन ऊपर वाले की क्या मर्जी थी कि कल मतलब इस एकाएक मौसम चेंज हुआ, उससे मतलब जो टेम्परेचर है वो थोड़ा डाउन हुआ है, जिससे लोगों को बहुत राहत मिली है और काफ़ी अच्छा लोग महसूस कर रहे हैं।
7: कल 2 बजे रात से लगातार बारिश हुई, 7 बजे सुबह तक बहुत अच्छी बारिश हुई और इस समय एकदम मौसम बहुत सुहावना हो गया है, क्योंकि एक एग्जाम मैं 25 तारीख को देने आया था, बिटिया का, सीयूटी का ही, पांडेपुर में था सेंटर। इतनी गर्मी थी सर कि लग रहा था चमड़ी जल जाएगी, लेकिन आज तो यहाँ भी और घर पर भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मौसम।
8: पहले से तो काफ़ी आराम है, तापमान कुछ गिरा हुआ है, पहले से बहुत ज़्यादा आराम है।
0: इसी तरह यूपी के झांसी में गुरुवार शाम को चली तेज हवा और बारिश ने तस्वीर बदल दी। यहाँ कुछ इलाकों में ओले भी गिरे। पानी की बौछार पड़ी तो तपती धरती ने राहत की सांस ली। 45 डिग्री टॉर्चर के बाद मौसम का ये यू टर्न हरियाणा के लोगों को भी रास आया। रेवाड़ी में झमाझम बारिश के साथ ओले भी गिरे। अचानक आए इस मौसम परिवर्तन ने लोगों को हैरान तो किया, लेकिन पिछले कई दिनों से पड़ रही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से जूझ रहे लोगों ने राहत की सांस ली। तेज हवाओं, बारिश और ओलावृष्टि के बाद तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। राजस्थान के श्रीगंगानगर में तो लोग 49 डिग्री टॉर्चर झेल रहे थे। गुरुवार दोपहर तक ये शहर दुनिया के सबसे गर्म शहरों में दूसरे स्थान पर शुमार था, लेकिन शाम होते होते कहानी बदल गई। मौसम के बदले अंदाज ने लोगों को बड़ी राहत दी। दोपहर बाद मौसम बदला, आसमान में काले घने बादल छाए। शाम होते होते तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई, जमकर ओले भी गिरे। राजस्थान के धौलपुर में भी मौसम के तेवर कुछ ऐसे ही नजर आए। दोपहर बाद आसमान में बादलों ने दस्तक दी और देर शाम तेज हवाओं के साथ बरस पड़े। तपती दोपहरी के बाद बादलों की यह मेहरबानी लोगों को सुकून दे गई। तो वहीं उत्तराखंड के बागेश्वर में इन बादलों ने बड़ा काम किया। यहां हुई बारिश और ओलावृष्टि ने जंगलों की भीषण आग बुझा दी। आसमान से गिरते ओलों ने कुछ देर के लिए बागेश्वर की जमीन को पूरी तरह ढक दिया। पश्चिम से पूर्व तक देश के कई इलाकों में यही मंजर नजर आया। ताजा बारिश सिटी ऑफ जॉय के लिए गर्मी से राहत की खुशखबरी लेकर पहुंची। पश्चिम बंगाल में राजधानी कोलकाता समेत कई इलाकों में शुक्रवार सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश के चलते लोगों को गर्मी से निजात मिली और मौसम सुहाना हो गया।
9: चिलचिलाती धूप और उमस से आखिरकार कोलकाता के लोगों को राहत मिला। शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे के बीच भारी बारिश साथ में तेज हवाओं ने टेम्परेचर को काफी नीचे ला दिया। मौसम विभाग का ये कहना है कि उत्तर बंगाल में इस तरह की बारिश जारी रहेगी और भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में फिलहाल इसी तरीके से बूंदाबांदी और कभी कभी इस तरीके का बारिश कोलकाता और इसके आसपास के जिलों में रोज होती नजर आएंगी। लेकिन लोगों को खासा परेशानी भी हुआ, क्योंकि कुछ इलाकों में कोलकाता के जहाँ पेड़ गिरे, कुछ जगहों पे जल जमा हुआ, लेकिन मौसम सुहाना हो गया।
0: महाराष्ट्र के अमरावती में भी नौतपा की तपिश के बीच 45 डिग्री तापमान में झुलसे शहर ने राहत की इस बारिश का जमकर लुत्फ उठाया। तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हुई बारिश और ओलावृष्टि से शहर का पारा नीचे लुढ़क गया और लोगों ने राहत की सांस ली।
10: तो भारत का ज्यादातर हिस्सा हीट वेव झेल रहा था, लू के थपेड़े या लू की मार झेल रहा था, और अब मौसम ने करवट ली है तो ज्यादातर हिस्सों में अब वो राहत लेकर के आई है। हालांकि इस राहत के साथ मुसीबतें ये हैं कि मौसम विभाग का पूर्वानुमान ये कहता है कि उत्तर पश्चिम भारत, पूर्वी उत्तर भारत, मध्य भारत और इसी के साथ साथ दिल्ली NCR का वो इलाका जहां पर रविवार तक अब तापमान तो गिरेगा ही, बारिश भी होंगे, लेकिन हवा की रफ्तार ज्यादा भी हो सकती है, थंडर स्टॉर्म हो सकता है, ओले गिर सकते हैं, तो अगर फलों की खेती है उस पर असर पड़ेगा। पहाड़ी इलाकों में जहां पर जंगलों की आग है वहां पर ओलावृष्टि या बारिश के साथ उस आग को बुझाने में मदद मिलेगी, तो मैदानी इलाकों में तापमान नीचे जरूर गिरेगा, लेकिन आंधी तूफान, बिजली गिरने और ओले गिरने जैसी घटनाओं से बचना जरूरी होगा। तो कुल मिलाकर के कहें कि पश्चिमी विक्षोभ इतना सक्रिय होकर के आ रहा है कि अपने साथ हवा की रफ्तार बेहद तेज ला रहा है और इसीलिए दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत के ये जो गंगेटिक बेल्ट है, पूरा मैदानी इलाका है, यहाँ आपको तड़के सुबह अब वैसा तापमान महसूस नहीं हो रहा होगा। इसी के साथ साथ जो वार्म नाइट्स कंडीशन जिसे कहते हैं, जहां रातें भी गर्म थी, वो भी बेहतर हुई है, यानी रातों को तापमान भी नीचे आया है, दिन का तापमान भी जो अधिकतम था उसमें भी कमी आई है, लेकिन ये राहत सिर्फ रविवार तक होगी क्योंकि जून की तपिश तो अभी बाकी है। दिल्ली से मनीष के साथ मैं आशुतोष मिश्रा।
11: जहां उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में वेस्टर्न डिस्टरबेंस बारिश का दौर लेकर आया, तो वहीं देश के दक्षिणी राज्यों में प्री मानसून बारिश हो रही है। दरअसल मानसून अब देश की दहलीज पर खड़ा है और दक्षिण के द्वार से उसे भारत के मेनलैंड में प्रवेश करना है, उसी का संकेत देते हुए झमाझम बारिश के साथ दक्षिण में प्री मानसून ने दस्तक दे दी है। प्री मानसून में होने वाली बारिश मानसूनी बारिश से अलग होती है। देखिए, मानसून का फंडा तो सीधा सा है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में तापमान की वजह से पानी भाप बनकर बादलों के रूप में आगे बढ़ता है और बारिश करता है, यही मानसूनी बारिश कहलाती है। लेकिन इससे पहले होती है प्री मानसून की बारिश, जो देश के कई राज्यों में इन दिनों हो रही है। अब आपको बताते हैं कि प्री मानसून और मानसून में अंतर क्या है, दोनों समय होने वाली बारिश का पैटर्न एक दूसरे से अलग कैसे है और ये पूरा सिस्टम कैसे बनता है वो समझिए। मॉनसून की बारिश की शुरुआत दक्षिणी कोने से होती है, जबकि प्री मॉनसून की बारिश का कोई सेट पैटर्न नहीं। ये देश के दक्षिण पश्चिम या उत्तरी हिस्सों में कहीं भी पहले आती है और पहले ही चली जाती है। दोनों बारिशों में बादलों का पैटर्न भी अलग होता है। मॉनसून की बारिश के बादल परतों वाले होते हैं। परतों में मौजूद ज्यादा नमी के चलते बार बार लंबे समय तक मॉनसून की बारिश होती है। ये बादल एक से दूसरी जगह तक लंबी दूरी भी तय करते हैं, जबकि प्री मॉनसून बारिश के बादलों के साथ ऐसा नहीं होता। इनमें कम नमी होती है और ये काफी ऊपर की तरफ होते हैं। मॉनसून की बारिश कभी तेज होती तो कभी कई दिनों तक रिमझिम बारिश का सिलसिला भी चलता है, जबकि प्री मॉनसून की बारिश बेहद तेज होती है। मॉनसून की बारिश बार बार और लंबे समय तक होती है, जबकि प्री मॉनसून बारिश एक दो दिन में खत्म हो जाती है, जैसा कि अभी हो रहा है। इसके अलावा मॉनसून की बारिश के दौरान कई बार तेज चक्रवाती हवाएं भी आपको देखने को मिलेंगी, जबकि प्री मॉनसून बारिश के दौरान झोंकेदार हवा के कारण धूल वाली तूफानी बारिश होती है। साथ ही मॉनसून की बारिश बहुत बड़े इलाके में एक साथ होती है और इस दौरान पूरे क्षेत्र का मौसम एक जैसा रहता है, जबकि प्री मॉनसून बारिश एक सीमित क्षेत्र में होती है, जैसा कि हम अभी देख पा रहे हैं। अब की माई मैदानी इलाकों में तो प्रचंड गर्मी पड़ी ही, लेकिन साथ ही कई पहाड़ी राज्यों में भी पारा 40 तक पहुंचा। ऐसे में वेस्टर्न डिस्टरबेंस के बाद बदला मौसम पहाड़ी राज्यों के लिए भी राहत लेकर आया। कई शहरों में जोरदार बारिश तो कुछ ऊंचाई वाले इलाकों पर बर्फबारी भी देखने को मिली। मसलन उत्तराखंड के चमोली में मौजूद हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा के इलाके में जोरदार बर्फबारी हुई। ताजा बर्फबारी के बाद पूरा इलाका बर्फ से ढका नजर आ रहा है।

0: कहां तो मैदान और पहाड़ दोनों ही हीट वेव की मार झेल रहे थे, लेकिन 24 घंटों में सब कुछ बदल गया। वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते हवाओं ने कुछ ऐसा रुख बदला कि मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया। ये तस्वीरें हैं उत्तराखंड के चमोली की, जहां ताजा बर्फबारी के बाद सिखों का पवित्र तीर्थ हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा पूरी तरह बर्फ से ढक गया है। 23 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खोले गए थे। कपाट खुलने के बाद से अब तक यहां 22,000 से ज्यादा तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। इसी दौरान इस पूरे हफ्ते यहां कई बार बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग ने गुरुवार से पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई थी। गुरुवार शाम जहां देश के मैदानी इलाकों में जोरदार आंधी बारिश का दौर चला, तब चमोली के इस इलाके में देर रात मौसम बदला और ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के साथ भारी बर्फबारी शुरू हो गई। हेमकुंड साहिब क्षेत्र में सुबह से लगातार बर्फ गिर रही है। यहां जबरदस्त ठंड के साथ आसमान से बर्फ के फाहे बरस रहे हैं। पवित्र सरोवर का पानी और भी ज्यादा ठंडा हो गया है। बावजूद इसके सिख संगत में अपार उत्साह और श्रद्धा देखने को मिल रही है। भक्त बर्फ को चीरते हुए भी गुरुद्वारा साहिब पहुंचकर अरदास कर रहे हैं।
1: चमोली में एक बार फिर से मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हो रही है। सिखों का जो पवित्र तीर्थ स्थल है हेमकुंड साहिब में रुक रुक कर बर्फबारी का दौर जारी है। आसमान में देख सकते हैं लगातार बादलों का डेरा है। मौसम विभाग ने पहले ही पहाड़ों में बारिश और बर्फ ऊंचाई वाली जगहों पर बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया था। ऐसे में हेमकुंड साहिब अत्यधिक ऊंचाई पर है, वहां पे लगातार रुक रुक कर बर्फबारी का दौर जारी है। ऐसे में अब तक 22,000 से अधिक श्रद्धालु हेमकुंड साहिब में मत्था टेक चुके हैं। सिख संगतें हैं देश और विदेश दोनों ही जगहों से इस समय हेमकुंड साहिब में पहुंच रहे हैं। ऐसे में बर्फबारी के बीच जहां रास्ता फिसलन भरा हो जाता है, वहीं SDRF जो सेवादार है, भारतीय सेना है, इन रास्तों पे लगी हुई है। यात्रियों को रास्ता पार कराने में जो व्यवस्थाएं हैं, गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी भी यहां पे लगातार यात्रियों की मदद के लिए खड़ी है। हालांकि सुबह से बर्फबारी देर रात से ही बर्फबारी यहां पे हो रही है। सुबह यहां बर्फ की सफ़ेद चादर हर तरफ दिखाई दी, इसके बावजूद भी श्रद्धालुओं का जो उत्साह है, एक तो कठिन यात्रा होती है 19 किलोमीटर की, दूसरा ऑक्सीजन की कमी होती है, लेकिन जो यहां पहुंचने वाले श्रद्धालु होते हैं, चाहे वो बुजुर्ग हों या बच्चे हों, हर किसी का उत्साह में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। बर्फबारी है, कड़ाके की ठंड है, ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह अपनी अपार देखने को मिल रहा है।
0: जहां हेमकुंड साहिब में जमकर बर्फबारी हो रही है, वहीं उत्तराखंड के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। गुरुवार शाम से रुक रुक कर हो रही बारिश ने पहाड़ी राज्य के निचले इलाकों में भी तापमान काफी गिरा दिया है।
2: दो हफ्ते की चिलचिलाती गर्मी के बाद उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में देर रात तेज बारिश हुई और गुरुवार को इस बारिश के बाद कई क्षेत्रों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और इसके बाद मौसम फिलहाल सुहाना बना हुआ है। पहाड़ी क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं देहरादून समेत जो दूसरे मैदानी क्षेत्र हैं, वहां पर भी तापमान में कमी आई है। हालांकि गर्मी अभी भी बढ़ रही है और देखा जा सकता है कि मौसम विभाग ने एक बार फिर चेतावनी दी है कि अगले दो दिन में देहरादून, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर के लिए वार्निंग जारी की गई है। येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं।
0: दरअसल मई में पहाड़ों पर हो रही जोरदार बर्फबारी सबको हैरान कर रही है। कश्मीर के गुरेज और हिमाचल के मनाली में भी इस हफ्ते ऐसा ही नजारा दिखा था, तो वहीं लद्दाख के द्रास में भी इस हफ्ते जमकर बर्फ गिरी है। ये हिमालय की गोद में बसे जोजीला दर्रा की तस्वीरें हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जोड़ने वाले इस इलाके से यूं तो साल भर सर्दी नहीं जाती, लेकिन अब की मई यहां हुई जबरदस्त बर्फबारी ने सबको हैरान कर दिया है। यहां बर्फबारी का आलम ये रहा कि सड़क पर जमी बर्फ को हटाने के लिए मशीनों का सहारा लेना पड़ा। इसी तरह ये तस्वीरें कश्मीर के गुरेज सेक्टर में मौजूद तुलैल वैली की है, जहां मई के महीने ने अब की बार दिसंबर की याद दिला दी है। इस हफ्ते नॉर्थ कश्मीर के गुरेज सेक्टर और सोनमर्ग में भी जबरदस्त बर्फबारी हुई है। हिमाचल का हाल भी ज्यादा जुदा नहीं रहा। यहाँ कुल्लू मनाली के ऊपरी इलाकों रोहतांग पास, स्पीति घाटी, सोलंग वैली, केलांग और दूसरी जगहों पर जमकर बर्फ पड़ी है। एक बात अच्छी ये हुई कि इस बर्फबारी ने पहाड़ों पर पहुँचे सैलानियों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है। जाहिर है मई में किसे बर्फबारी की उम्मीद होगी, लेकिन पहाड़ी इलाकों का रुख कर रहे पर्यटकों के लिए ताज़ा बर्फबारी किसी बोनस से कम नहीं। चमोली से कमल ने अंसिलोड़ी, देहरादून से अंकित शर्मा, मनाली से मनमिंदर अरोड़ा और जोजिला से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से देशवासियों से विदेश यात्रा की जगह स्वदेश यात्रा करने की अपील की है, तभी से जीएनटी भी आपसे गुजारिश कर रहा है कि आप अपने आसपास की खूबसूरत जगहों की तस्वीरें हमें भेजें ताकि हम आपकी उन वीडियोस को यहां पर दिखाएं। तो चलिए आज आपको हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला लेकर चलते हैं, जहां के तमाम आकर्षक और खूबसूरत पर्यटक स्थल आपका इंतजार कर रहे हैं। हमारे एक दर्शक ने हमें एक ऐसा ही वीडियो भेजा है जिसमें उन्होंने धर्मशाला समेत कांगड़ा वैली की खास जगहों के बारे में जानकारी दी है।

0: है आप सभी को भी न्योता देता हूँ कि हमारा हिमाचल प्रदेश जो देव भूमि है और हिमाचल के ही अंदर बसा हमारा ये सुंदर धर्मशाला, जहाँ एक तरफ धुलाधार की हसीन पहाड़ियाँ, जहाँ आज मई और जून के महीने में भी बर्फबारी धुलाधार की पहाड़ियों पर है। मैं आप सभी को कहना चाहूंगा हिमाचल प्रदेश के अंदर ये सुंदर हमारा धर्मशाला, जहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो विश्व का सबसे सुंदर स्टेडियम है वो धर्मशाला में है, चाहे मैक्लोडगंज जो नगरी है वो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में है, बौद्ध धर्म के धर्मगुरु दलाई लामा जी यहाँ पर हैं। आप सभी आए और धर्मगुरु दलाई लामा जी का आशीर्वाद मिलने का सौभाग्य आप सभी को मिलेगा। धर्मशाला के अंदर चाय के बगान है, आप उन्हें निहारने के लिए यहाँ आ सकते हैं। धर्मशाला के अंदर कई देवी स्थान, कई मंदिर, जैसे अगंजर महादेव, इंदुनाग जी का मंदिर देवी स्थल है, और कई मंदिर हमारे हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के शहर के अंदर है। बात करूं रोपवे की, तो धर्मशाला में धर्मशाला से मैक्लोडगंज के लिए रोपवे की सुविधा है, आप उसका आनंद लेने भी हिमाचल प्रदेश के अंदर आ सकते हैं। अगर कोई ट्रैकिंग का शौकीन है तो त्रिउंड जैसा एक ट्रैकिंग का हमारे पास स्पॉट जो है धर्मशाला के अंदर है, आप ट्रैकिंग के लिए भी त्रिउंड जा सकते हैं। साथ में धर्मशाला के लगते बाथू की लड़ी यहाँ घूमने के लिए है। मंदिर की बात करूँ तो रॉकट टेम्पल हमारे यहाँ है। धर्मशाला के साथ ही लगता कांगड़ा है, प्रदेश्वरी माता शक्तिपीठ धर्मशाला के अंदर लगते कांगड़ा में है, तो आप इन तमाम चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए, घूमने के लिए धर्मशाला आए हिमाचल वासी, तो धर्मशाला अतिथि देवो भव के भाव के साथ आप सभी के स्वागत के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। आपने आना कैसे है ये सबसे बड़ा प्रश्न है, तो बताऊं आपको, धर्मशाला के ही समीप गग्गल एयरपोर्ट, जहां आप हवाई मार्ग से आ सकते हैं। रेलवे से अगर आपने आना है तो पठानकोट जो सबसे नजदीक हमारे पड़ता है उसके माध्यम से आ सकते हैं। जब दिल्ली से आपने आना है तो वोल्वो बसें जो है धर्मशाला तक आती हैं। इन तमाम साधनों से जो आप धर्मशाला आ सकते हैं। हम सभी धर्मशाला वासी आपके स्वागत के लिए और अतिथियों के अतिथि देवो भव के भाव के साथ यहाँ पर।
1: तो आप भी अपने ही देश में सैर सपाटा करने, अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट कीजिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के संकल्प के भागीदार बनिए। बस करना आपको सिर्फ इतना सा है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है तो उठाइए अपना कैमरा और स्टार्ट कर दीजिए व्लॉग्स बनाने। फिर हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, हम उसे GNT पर जरूर दिखाएंगे। और चलिए आज तो यही कहेंगे कि एंजॉय योर वीकेंड, क्योंकि आपका वीकेंड रहने वाला है कूल। फिलहाल इजाजत दीजिए, अच्छी खबरें जारी है, देखते रहिए GNT।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं और इन्हें खूब पसंद किया जा रहा है।
2: नवजात भाई को पहली बार देखकर छोटी बहन की खुशी देखने लायक है। ठुमक ठुमक कर चलते हुए वो मासूमियत से जमीन पर बैठ गई और अपने नन्हे भाई को गोद में लेने के लिए हाथ फैला दिए। उसकी चमकती आंखों और खिलखिलाती मुस्कान ने पूरे घर के माहौल में खुशियां भर दी। भाई को सीने से लगाने की उसकी मासूम चाहत ने सभी का दिल जीत लिया। ये खूबसूरत पल सिर्फ एक मुलाकात नहीं बल्कि भाई बहन के अनमोल रिश्ते और निश्चल प्रेम की प्यारी शुरुआत बन गया। जहां लोग छोटी छोटी परेशानियों में हार मान लेते हैं, किस्मत को कोसने लगते हैं, वहीं ये शख्स हौसले की नई मिसाल बनकर सामने आया है। एक हाथ न होने के बावजूद अपने हुनर से लोगों के चेहरों पर मुस्कान और आत्मविश्वास दोनों सजा रहा है। इनका काम सिर्फ हेयर कटिंग का नहीं है बल्कि ये साबित करना है कि मेहनत, जज्बा और आत्मविश्वास के आगे हर मुश्किल छोटी पड़ जाती है। अपने हौसले से ये अपनी तकदीर खुद लिख रहे हैं। माँ और बच्चे का ये प्यारा सा अंदाज किसी का भी दिल जीत लेगा। माँ जैसे ही मस्ती में झूमती है, बच्चा भी उनकी नकल करने लगता है, फिर अपनी मासूम अदाओं पर खिलखिलाकर हंस पड़ता है। ये नज़ारा सिर्फ हंसी का नहीं बल्कि माँ बेटे के खूबसूरत रिश्ते और बेफिक्र बचपन की प्यारी झलक है। ऐसी मासूम खुशियाँ ही जिंदगी को खूबसूरत बनाती है और चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है। दुनिया का सबसे अमीर इंसान वो नहीं जिसके पास दौलत है बल्कि वो है जिसके घर लौटने पर परिवार खुशियों से झूम उठे। ये प्यारी बच्चियां अपनी माँ के साथ डांस करते हुए पिता का स्वागत कर रही हैं। बेटियों की मुस्कान और अपनापन देख पिता भी खुद को झूमने से रोक नहीं पाए। ये नज़ारा सिर्फ स्वागत का नहीं बल्कि परिवार के प्यार, अपनेपन और रिश्तों की असली दौलत की खूबसूरती का है। इतना नन्हा किसान शायद ही किसी ने देखा होगा जो अपनी मासूम उम्र में भी जिम्मेदारी निभा रहा है। ये छोटा सा बच्चा होटल के कर्मचारियों के साथ बागवानी में मदद कर रहा है। उनकी क्यूट हरकतें देखकर सभी के चेहरों पर मुस्कान आ जाती है। बच्चे की मासूम कोशिशों से माहौल और भी खुशनुमा हो गया। उसकी ये लगन और सादगी ये सिखाती है कि सीखने और मदद करने की कोई उम्र नहीं होती।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: Listening to your favorite station just got even easier with Google Assistant and TuneIn. Your go-to station is just a voice away. Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected.
4: This is 80s hits exclusively on TuneIn.
3: You're listening to Fox News Radio. Classic rock hits.
5: You're listening to MSNBC.
3: No scrolling, no typing. Just the shows, music, and news you love anytime you want. Try it now and thank us later.
6: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's Classic Rock Hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: रामनगरी अयोध्या में माता दुर्गा मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ धार्मिक अनुष्ठान, साधु संतों की मौजूदगी में हुआ समारोह। ऋषिकेश में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की गंगा आरती। तीर्थ क्षेत्र के मुद्दों पर साधु संतों से मुलाकात और संवाद। लखनऊ के साईं भक्त ने बाबा को भेंट किया स्वर्ण मुकुट। बेशकीमती पत्थरों से बने कमल पर उकेरा गया ओम। 782 ग्राम के इस मुकुट पर दो मयूर की नक्काशी। कोलकाता में तेज हवाओं के साथ जमकर हुई बारिश, उमस और गर्मी से लोगों को मिली राहत। सड़कों पर गिरे पेड़ हटाने में जुटा प्रशासन। उत्तराखंड के पहाड़ों को प्लास्टिक कचरा मुक्त बनाने में जुटा इंग्लैंड से आया मेहमान। अल्मोड़ा के कसार देवी इलाके में हर रोज स्वच्छता अभियान चलाते हैं मार्ग। रेलवे ट्रैक के रेलबाजों पर प्रशासन हुआ सख्त। झांसी रेलवे स्टेशन पर ड्रोन कैमरों से की जा रही है लाइव निगरानी। संदिग्ध और पत्थरबाजों पर पैनी नजर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं, आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, तो कभी पुरानी तस्वीरों को नई साजिश का रंग देकर उन्हें पेश किया जाता है, और लोग बिना सोचे समझे बिना परखे ने सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहाँ हर किसी के हाथ में एक कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं, और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल, और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। तो आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे, जिसमें सबसे पहले बात सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की होगी जिसके जरिए यह दावा किया जा रहा है कि वीडियो पश्चिम बंगाल का है, जहां घर पर बुलडोजर चलने के बाद एक शख्स फूट फूट कर रोने लगा। क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई, आगे बताएंगे। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी होगी जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि हाल ही में चीन के दौरे के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जासूसी करते कैमरे में कैद हो गए। एक भोज के दौरान वो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निजी नोट्स में ताकझांक करते हुए कैमरे में कैद हो गए। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: पश्चिम बंगाल की शुभेंदु अधिकारी की सरकार के नेतृत्व में अवैध कब्जों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई लगातार जारी है। सोशल मीडिया पर भी इस कार्रवाई से जोड़ते हुए वीडियोस लगातार वायरल हो रहे हैं। अब ऐसा एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ है जिसमें एक शख्स फूट फूट कर रोता नजर आ रहा है, और इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग ये दावा कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बुलडोजर एक्शन के बाद घर गंवाने के बाद एक शख्स फूट फूट कर रोया। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, देखिए रिपोर्ट।
7: पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन और शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार बनने के बाद राज्य भर में अवैध निर्माणों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है। सरकार का दावा है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। इसी संदर्भ में ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। इसमें एक व्यक्ति फूट फूट कर रोता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में कुछ पुलिस वाले भी देखे जा सकते हैं। इसके अलावा तोड़फोड़ की आवाज भी सुनाई दे रही है। देखने में ये किसी बुलडोजर एक्शन के वक्त का लगता है। कुछ लोग इसे पश्चिम बंगाल का बताकर शेयर कर रहे हैं। फेसबुक पर इस वीडियो के साथ पश्चिम बंगाल से जुड़े हैशटैग्स लगाकर एक व्यक्ति ने लिखा, इन कंगालुओं को दहाड़े मार मार कर रोता देखकर दिल को बहुत अधिक सुकून मिल रहा है। हैशटैग वेस्ट बंगाल, हैशटैग बंगाल, हैशटैग टीएमसी, हैशटैग ममता बनर्जी। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: दरअसल सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, और वीडियो में एक शख्स फूट फूट कर रोता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि वीडियो पश्चिम बंगाल का है, जहां पर बुलडोजर एक्शन में घर गंवाने के बाद ये शख्स फूट फूट कर रोने लगा। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी था। फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और सुना। इस दौरान हमारा ध्यान बैकग्राउंड से आ रही आवाजों पर गया। जब हमने इसे गौर से सुना तो ये सामने आया कि ये बंगाल का है, यानी कि बंगला में ये लोग बातचीत कर रहे हैं। मतलब वायरल वीडियो पश्चिम बंगाल का हो सकता है। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने एक बार फिर से वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान वीडियो में नजर आ रहे पुलिस के जवानों की वर्दी के कलर पर हमारा ध्यान गया। जब हमने इसे देखा तो ये साफ हुआ कि बांग्ला पुलिस की वर्दी का कलर नहीं हो सकता, क्योंकि पश्चिम बंगाल में पुलिस की वर्दी का रंग तो सफेद है। दो तरह की वर्दी वो पहनते हैं। कोलकाता और हावड़ा क्षेत्र की पुलिस सफेद रंग की वर्दी पहनती है, जिस पर नीले रंग की बेल्ट और कंधे पर नीला रंग होता है। जबकि राज्य के अन्य सभी हिस्सों की बात की जाए तो पुलिस की वर्दी खाकी रंग की होती है, जबकि वीडियो में जो जवान दिख रहा है उनकी वर्दी का रंग अलग है। साथ ही सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, लिहाजा हमने इस सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल यही कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है और कहां का है। दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर वीडियो को पश्चिम बंगाल का बताकर भ्रम फैलाने की कोशिश तो नहीं हो रही। अब देखिए सच्चाई क्या है।
7: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वायरल वीडियो को गौर से देखा। वीडियो पर एक लोगो नजर आ रहा है। सर्च करने पर पता चला कि ये बांग्लादेश का एक न्यूज आउटलेट है। इस आउटलेट ने अपने ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट पर ये वीडियो 21 मई को पोस्ट किया था। पोस्ट के कैप्शन के मुताबिक ये शख्स अपनी आंखों के सामने अपना घर टूटता देख जोर जोर से रोने लगा। पोस्ट के कैप्शन में कलशी बस्ती हैशटैग का इस्तेमाल किया गया है। ये बस्ती ढाका के पास मीरपुर जोन के पल्लवी में स्थित है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस इलाके में बीते कुछ दिनों में बड़े पैमाने पर अवैध कब्जों को हटाने के लिए कार्रवाई की गई है। इस आउटलेट ने कलशी इलाके में हुई बुलडोजर कार्रवाई के और भी कई वीडियो फेसबुक पर पोस्ट किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस इलाके में सरकारी जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर कार्रवाई की गई थी। कार्रवाई के दौरान यहां रहने वाले लोगों और पुलिस वालों के बीच झड़प भी हो गई थी। कुछ स्थानीय लोगों ने पुलिस वालों पर हमला भी कर दिया था। इस तरह हमारी पड़ताल से साफ हो गया कि पश्चिम बंगाल नहीं बल्कि बांग्लादेश में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ हुई कार्रवाई के दौरान का वीडियो है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके जरिए कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये वायरल वीडियो हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के दौरान का है, जिसमें वो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नोटबुक में झांकते हुए नजर आ रहे हैं। बीजिंग में एक राजकीय भोज के दौरान जब शी जिनपिंग अपनी सीट से उठे तो ट्रंप ने उनकी मेज पर रखी नोटबुक खोलकर उसके पन्ने पलटे, उससे पढ़ने की कोशिश की। लेकिन वायरल दावे की सच्चाई क्या है, देखिए रिपोर्ट।

0: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में चीन की यात्रा की थी। इस दौरान उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय शिखर वार्ता भी की। ट्रंप ने राष्ट्रपति शी को सितंबर में व्हाइट हाउस आने का निमंत्रण दिया। इन सब के बीच सोशल मीडिया पर ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ट्रंप को शिखर सम्मेलन के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की निजी नोटबुक पर चुपके से नजर डालते हुए दिखाया गया है। वीडियो शेयर करते हुए एक एक्स यूजर ने लिखा, शी जिनपिंग के बीजिंग में एक भोज के दौरान जब वे कुछ देर के लिए दूर चले गए थे, तब ट्रंप को उनकी निजी नोटबुक पर चुपके से नजर डालते हुए पकड़ा गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे पर गए थे। उस दौरे के दौरान एक दृश्य सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिसके जरिए कुछ लोग ट्रंप की नीयत पर तंज कसते हुए दावा ये कर रहे हैं कि शी जिनपिंग के बीजिंग में एक भोज के दौरान जब वो कुछ देर के लिए दूर चले गए थे, तब ट्रंप को उनकी निजी नोटबुक पर चुपके से नजर डालते हुए कैमरे में साफ साफ देखा जा सकता है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की। फैक्ट चेक टीम ने दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान यह नजर आया कि ट्रंप एक फोल्डर को पलटते हुए देखे जा सकते हैं। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने फोल्डर पर नजर आ रहे प्रतीक चिन्ह को जूम करके करीब से देखा, तो सामने आया कि अमेरिकी राष्ट्रपति की मोहर से मिलता जुलता है। इसके बीचों बीच में चील भी दिख रही है, मतलब ये कि इस फोल्डर का चीनी राष्ट्रपति से कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट भी नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। और हमारा पहला सवाल यही कि अगर वीडियो सच्चा है तो इसके बारे में कोई प्रमाणिक जानकारी क्यों नहीं मिली। हमारा दूसरा सवाल, कहीं जानबूझकर वीडियो को नया एंगल देकर वायरल तो नहीं किया जा रहा। सच और झूठ क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में।
0: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उन्हें सर्च किया। इस दौरान हमें 14 मई को एक न्यूज चैनल पर अपलोड वीडियो का एक लंबा संस्करण मिला। ये बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल्स में आयोजित राजकीय भोज का वीडियो था। लगभग 1:50 पर ट्रंप के बाईं ओर बैठे जिनपिंग उठते हैं और मंच की ओर चलते हैं। इसके बाद वायरल क्लिप में ट्रंप को अपनी बाईं ओर रखे फोल्डर को खोलते और कुछ पन्ने पलटते हुए दिखाया गया है। व्हाइट हाउस ने इस कार्यक्रम का एक अनकट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड किया था। वीडियो शुरू होने के 2 बाद देखा जा सकता है कि जिनपिंग उठते हैं। इसके तुरंत बाद ट्रंप अपने बाईं ओर रखे फोल्डर को खोलते हैं और कुछ पढ़ते हैं। वीडियो में आगे लगभग 12 मिनट पर जब जिनपिंग अपनी सीट पर वापस लौटे तो ट्रंप उठे, फोल्डर अपने साथ ले गए। पोडियम पर रखा, कुछ पन्ने पलटे और उसमें से
1: फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, जहां आपको दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
4: इन दिनों ये वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है, जिसमें एक छोटा बच्चा तालाब के पानी के ऊपर आराम से खड़ा हुआ दिखाई देता है। बच्चे का बैलेंस और कॉन्फिडेंस देखकर लोग हैरान रह जाते हैं, जबकि दूसरा बच्चा कुछ वैसा ही करने की कोशिश करता है लेकिन सफल नहीं हो पाता। यही फनी मोमेंट सोशल मीडिया यूजर्स को खूब पसंद आ रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि यहाँ गांव जैसा माहौल है और यहाँ तालाब के बीचों बीच एक छोटा बच्चा आराम से खड़ा है। तालाब के बीच बच्चा हाथ जोड़कर और आंखें बंद किए पूरे बैलेंस और कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि बच्चे के चेहरे पर जरा भी घबराहट नजर नहीं आती है। यही वजह है कि वीडियो देखने के बाद भी लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वीडियो के आखिरी हिस्से में जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलता है। एक दूसरा लड़का जब उसकी कॉपी करने पहुंचा तो ऐसा मजेदार हादसा हुआ कि इंटरनेट यूजर्स हंसते हंसते लोटपोट हो गए। दरअसल बच्चे ने पानी के अंदर एक स्टूल के सहारे बैलेंस को बनाया था। युवक ये समझ नहीं पाया और वो पानी में धड़ाम से गिर गया।

0: और गेंद सीमा रेखा के पार पहुंच जाती है। बच्चे का यह शॉट देखकर वहां मौजूद लोग भी दंग रह जाते हैं। वीडियो में देखने वाली सबसे दिलचस्प बात यह है कि गेंदबाज खुद बच्चे की बल्लेबाजी से इतना प्रभावित हो जाता है कि दौड़कर उसके पास आता है और उसके पैर छू लेता है। इसके बाद दोनों के बीच मजेदार अंदाज में पंच भी होता है और फिर वीडियो खत्म हो जाता है। हालांकि वीडियो छोटा है, लेकिन कुछ ही सेकंड के इस क्लिप ने लोगों का दिल जीत लिया है। अक्सर माना जाता है कि ढलती उम्र के साथ बुजुर्गों का खान पान सादा और सीमित हो जाता है, लेकिन इंस्टाग्राम पर वायरल हुई एक क्लिप ने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया है। इस वीडियो में एक 92 साल की दादी बड़े चाव से पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक का लुत्फ उठाती नजर आ रही हैं। वीडियो में दिख रहा है कि दादी पिज्जा के हर स्लाइस का पूरी शिद्दत से आनंद ले रही हैं। इस दौरान उनकी बच्चों जैसी खुशी देखने लायक है। पिज्जा खाते हुए उनके थम्स अप ने सोशल मीडिया यूजर्स का दिल जीत लिया है। कुल मिलाकर दादी का यह अंदाज बेहद मजेदार और जिंदा दिली से भरा हुआ है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर यूजर्स दंग है। वीडियो में एक शख्स सड़क पर पड़े गोबर को देखकर रुक जाता है और उसी गोबर पर आर्ट करके एक शानदार मास्टरपीस तैयार कर देता है। साधारण सी चीज को देखकर उसमें छुपी कला को बाहर निकालने वाला यह कलाकार अपनी क्रिएटिविटी के लिए सराहा जा रहा है। वीडियो में दिखाया गया है कि एक व्यस्त सड़क के किनारे गोबर पड़ा हुआ है। कलाकार उसे देखते ही रुक जाता है। वह अपने बैग से रंग, ब्रश और अन्य सामान निकालकर काम शुरू कर देता है। कुछ ही देर में गोबर पर खूबसूरत पैटर्न, फूल, ज्यामितीय डिजाइन और रंग बिरंगे आकर्षक नक्काशी बन जाती है। गोबर की सूरत ही बदल गई। जो चीज आमतौर पर लोग नाक भौं चढ़ाकर पार करते हैं, उसी को कलाकार ने आर्ट का रूप दे दिया। सोशल मीडिया पर इन दिनों ये भावुक वीडियो वायरल हो रहा है, जो इंसानों के दिल को छू रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि एक छोटा सा मेमना अपनी माँ से बिछड़ गया था। जब उसे अपनी माँ दिखी तो वह खुशी से दौड़कर उसके गले लग गया। माँ भी अपने बच्चे को देखते ही भावुक हो गई और मिलन का यह पल हर किसी को रुला गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि खुले आसमान के नीचे हरे भरे खेत में एक महिला मेमने को लेकर आ रही है। जैसे ही मेमना अपनी माँ को दूर से पहचानता है, वह अपनी छोटी छोटी टांगों से तेजी से दौड़ने लगता है। माँ भी अपने बच्चे की आवाज़ सुनकर बेचैन हो जाती है और आगे बढ़ती है। दोनों के मिलते ही माँ बेटे का गर्मजोशी भरा मिलन देखकर फिल्माने वाली महिला की आंखें भी नम हो जाती हैं। पास खड़ी गाय भी इस खुशी के पल में शामिल होती नजर आती है। आमतौर पर अगर किसी के घर में चूहा घुस जाए तो लोग उसे पकड़कर तुरंत बाहर छोड़ देते हैं या उससे छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार एक शख्स ने जो किया उसे देखकर इंटरनेट यूजर्स भी हैरान रह गए। उसने चूहे को पकड़ने के बाद उसके लिए मूवी नाइट ही रख दी। दरअसल एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक चूहा छोटे से पिंजरे में फंसा हुआ है, लेकिन उसे डराने या परेशान करने के बजाय युवक ने पिंजरे के पास अपना मोबाइल रख दिया। मोबाइल में एनिमेटेड फिल्म बाल गणेशा चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे चूहे के लिए खास तौर पर धार्मिक फिल्म दिखाई जा रही हो। वीडियो में सबसे मजेदार बात यह थी कि युवक बड़े आराम से चूहे के सामने फिल्म चला रहा था, मानो वह कोई खास मेहमान हो। इंटरनेट पर लोगों को यह पल बेहद मजेदार और दिल छू लेने वाला लगा। गर्मी इन दिनों चरम पर है और इस भयंकर गर्मी ने इंसानों के साथ जानवरों की जिंदगी भी मुश्किल कर दी है, लेकिन सोशल मीडिया पर एक बिल्ली ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। यह बिल्ली बिना एयर कंडीशनर के एक मिनट भी नहीं रह पाती।
1: बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा कह रहे, रिमोट दे दे चुपचाप, मारा मारी बाद में कर, रिमोट दे दे। बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा तेरा।
0: अगर एसी बंद हो जाए तो वह न सिर्फ नखरे दिखाती है, बल्कि एसी का रिमोट छिपा लेती है और जब कोई रिमोट लेने की कोशिश करता है तो वह सीधा अटैक मोड में आ जाती है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि मालिक जब एसी बंद करने या रिमोट लेने जाते हैं तो बिल्ली पहले तो घूरती है, फिर रिमोट मुंह में लेकर भागती है और छिपा देती है। अगर कोई उसके पीछे जाता है तो वह नुकीले नाखून दिखाकर हमला करने की तैयारी कर लेती है। आप किसी जंगल सफारी पर गए हों और आपकी गाड़ी के ठीक बगल में एक खूंखार

0: बब्बर शेर बैठा हो। तभी अचानक कुछ लोग आराम से उसके बगल से पैदल और बाइक पर गुजरने लगे, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? यकीनन यह नजारा किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सफारी गाड़ी में बैठा एक पर्यटक वीडियो बना रहा है। तभी सड़क पर एक के बाद एक बाइक सवार गुजरते हैं। हैरान करने वाला मोड़ तब आता है जब कैमरा थोड़ा घूमता है और सड़क के बीच में एक विशाल गाय शेर बैठा दिखाई देता है। हद तो तब हो गई जब बाइकर्स के साथ साथ एक शख्स बड़े आराम से पैदल ही शेर के पास से गुजर जाता है, मानो वहाँ कोई शेर नहीं बल्कि कोई बिल्ली बैठी हो। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि शेर भी उन्हें देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता और शांति से बैठा रहता है। सोशल मीडिया
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
3: बात अयोध्या के शक्ति उत्सव की, राम मंदिर परिसर में भगवती मंदिर में ध्वजारोहण समारोह संपन्न हो गया। खास बात यह रही कि राम मंदिर ट्रस्ट ने इस समारोह को मातृ शक्ति को समर्पित किया था, लिहाजा 3500 से ज्यादा महिला संत और कार्यकर्ता इस समारोह का हिस्सा बने। इस समारोह की सुरक्षा का जिम्मा भी सीआरपीएफ की महिला बटालियन ने ही संभाला।

0: ये राम की नगरी में माँ दुर्गा के धाम पर नारी शक्ति का आरोहण है। माँ भगवती के मंदिर शिखर पर लहराती है धर्म ध्वजा, एक नए अध्याय का श्री गणेश है जो संसार को मातृ शक्ति का स्थान बता रही है। अयोध्या के शक्ति उत्सव को निहारिए, ये वो विशेष पल है जब सीआरपीएफ की महिला विंग की जवानों ने ध्वज की रस्सियां खींची और साध्वी रितांबरा ने ध्वजारोहण की परंपरा के माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम की नगरी में मां के सम्मान को आस्था के शिखर तक पहुंचा दिया। बेशक इस पल का साक्षी बने हर श्रद्धालु के लिए ये कभी ना भुला पाने वाला लम्हा था।
1: तो राम जन्मभूमि में एक और महोत्सव आज पूर्ण हुआ है, क्योंकि आज जो है माँ जगदम्बा का के मंदिर के ऊपर शिखर के ऊपर आज ध्वज लहराया है और यहाँ लगभग 3500 के ऊपर महिलाएं रही उपस्थित और लगातार यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इसी गेट से जो है इनकी एंट्री हुई थी और इसी गेट से अभी कुछ देर बाद ये बाहर निकल रही हैं और लगातार आप लोग ने ध्वजारोहण देखा अपने आप।
2: जी सर बहुत अच्छा लगा, ये अनुभव बहुत अच्छा लगा। इतने दिनों से हमारे पूर्वजों ने जो सपना देखा था आज पूरा हुआ। जय श्री राम।
1: कैसा लग रहा? बढ़िया भावुक भी लग रहा।
2: जी ये हमारे पूर्वजों का बहुत पुराना सपना था, इसी वजह से शायद हम बोल नहीं पा रहे हैं, शब्द मेरे पास नहीं है।
1: जी,
2: इसीलिए ये सम्मान हम लोग महिलाओं को मिला, ये हमें बहुत अच्छा लगा कि ये सम्मान केवल हम औरतों के लिए।
0: सनातन संस्कृति में ध्वजारोहण महज एक परंपरा नहीं है बल्कि धर्म, विजय और सकारात्मक ऊर्जा का वो प्रतीक है जो कोसों दूर से मंदिर के शिखर पर लहराता नजर आता है, जिसके दर्शन मात्र से श्रद्धालुओं को असीम शक्ति और ऊर्जा मिलती है, आस्था भक्ति के धाम तक पहुंचने का मार्गदर्शन मिलता है। माँ भगवती के मंदिर पर ये ध्वजारोहण इसलिए विशेष रहा क्योंकि 3500 से ज्यादा मातृ शक्ति इस अद्भुत पल की साक्षी बनी।
3: बहुत दिन बाद मतलब ऐसा लगा कि हाँ, जो जितने लोगों ने इतने लड़ाई की थी, इतना चीजें हुई थी, तो उसका फल आज मिल गया है। बहुत बहुत सही।
1: आपने अपनी आंखों से ध्वजारोहण देखी पहली बार आज राम मंदिर?
3: हाँ, पहली बार मतलब इतनी बार हुआ लेकिन कभी आज तक नहीं देखा, और ये चीज बहुत अच्छा लगा कि स्पेशली वुमेन्स के लिए ये चीजें करवाई गई है।
4: सर्वप्रथम तो हम लोग पहले दर्शन ही किए, दर्शन करने के बाद ध्वजारोहण को अपनी आँख के सामने ऊपर उठते हुए शीर्ष तक यूं गर्दन ऐसे थी।
5: नारी का सम्मान हमेशा रहा, यत्र नारियस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी का सम्मान होता है, नारी का पूजा होती है हमारे यहाँ।
0: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस भव्य कार्यक्रम को मातृ शक्ति को समर्पित किया था, लिहाजा ध्वजारोहण समारोह में दुर्गा वाहिनी और मातृ शक्ति की करीब 230 कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया। साथ ही अयोध्या महानगर के 64 कार्य क्षेत्रों से जुड़ी करीब 3500 महिलाएं इस पल की साक्षी बनी। वृंदावन के वात्सल्य ग्राम की 163 महिला प्रतिनिधि भी इस खास अवसर पर उपस्थित रहीं। राम जन्मभूमि परिसर के 7 मंदिरों पर एक एक कर ध्वजारोहण का कार्यक्रम जारी है। इस सिलसिले का श्री गणेश पिछले 25 नवंबर को हुआ, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर मुख्य मंदिर पर ध्वजारोहण किया। 31 दिसंबर 2025 को अन्नपूर्णा मंदिर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ध्वज फहराया। इसके बाद भगवान सूर्यदेव के मंदिर के शिखर पर 26 मार्च 2026 को विधि विधान से ध्वजारोहण किया गया। हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर 2 अप्रैल को 75 फीट ऊंचे मंदिर हनुमान मंदिर के शिखर पर विधि विधान से भव्य धर्म ध्वजा फहराएगी। फिर 11 अप्रैल को गणेश मंदिर पर ध्वजारोहण हुआ। वही 29 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिव मंदिर पर ध्वजारोहण किया था, और आज साध्वी रितांबरा ने भगवती मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण कर रामनगरी में आस्था, भक्ति और अध्यात्म के वैभव को शिखर तक पहुंचा दिया। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
7: कि कौन सी राशि बहुत जिद्दी मानी जाती है, शुक्र की कौन सी राशि के लोग बहुत उदार होते हैं और शुक्र की राशि का सूर्य और शनि से क्या संबंध है, कौन सी है शुक्र की राशियां और क्या है उनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
8: रामनगरी अयोध्या में माता दुर्गा मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ धार्मिक अनुष्ठान, साधु संतों की मौजूदगी में हुआ समारोह। ऋषिकेश में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की गंगा आरती, तीर्थ क्षेत्र के मुद्दों पर साधु संतों से मुलाकात और संवाद। लखनऊ के साईं भक्त ने बाबा को भेंट किया स्वर्ण मुकुट, बेशकीमती पत्थरों से बने कमल पर उकेरा गया ओम, 782 ग्राम के इस मुकुट पर दो मयूर की नक्काशी। कोलकाता में तेज हवाओं के साथ जमकर हुई बारिश, उमस और गर्मी से लोगों को मिली राहत, सड़कों पर गिरे पेड़ हटाने में जुटा प्रशासन। उत्तराखंड के पहाड़ों को प्लास्टिक कचरा मुक्त बनाने में जुटा इंग्लैंड से आया मेहमान, अल्मोड़ा के कसार देवी इलाके में हर रोज स्वच्छता अभियान चलाते हैं मार्ग। रेलवे ट्रैक के रेलबाजों पर प्रशासन हुआ सख्त, झांसी रेलवे स्टेशन पर ड्रोन कैमरों से की जा रही है लाइव निगरानी, संदिग्ध और पत्थरबाजों पर पैनी नजर।

अर्ज किया है, बदले हुए से लगते हैं अब मौसमों के रंग, पड़ता है आसमान का साया जमीन पर। नमस्कार, मैं हूं शगुफ्ता साहिल देव, आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। हमदम कश्मीरी के इन शब्दों की ही तरह मौसमों के बदलने पर बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ कहा गया। जीएनटी स्पेशल में भी आज बात होगी मौसम के उसी बदलाव पर जिसने वीकेंड से पहले खुश होने का बहाना दे दिया है। यूं तो मई के महीने ने अब की बार बेहद तपाया, लेकिन जाते जाते मई ने राहत की सौगात भी दे दी है। मई का आखिरी शुक्रवार वाकई शुक्र मनाने वाला वार रहा, शुक्र हीट वेव और तपती गर्मी से निजात के लिए। गुरुवार शाम से शुरू हुआ बारिश का दौर पहाड़ों और मैदानी इलाकों के लिए राहत लेकर आया है। पिछले कई दिनों से जो पारा 45 डिग्री के पार चल रहा था, कल शहर शहर हुई बारिश ने तापमान में थोड़ी सी राहत दे दी। भीषण गर्मी में दिन में निकलना किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन अब कुछ दिन के लिए मौसम साफ और सुहावना रहने वाला है। कई शहरों में आज सुबह की शुरुआत हल्की ठंडी हवा और खुशनुमा मौसम के साथ हुई। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि पूरे वीकेंड बारिश का ये दौर जारी रह सकता है। आज के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट, जबकि शनिवार रविवार के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। आइए आपको बताते हैं कि गर्मी से राहत देने वाली ये बारिश कहां कहां हुई और क्यों हुई।

0: मई की तपिश में राहत की बौछार हो गई। झमाझम बारिश से धरती गुलजार हो गई। इस बार का वीकेंड देश के कई हिस्सों के लिए तोहफे में सुकून की बौछार लेकर आया है। नौतपों के बीच दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया।
1: चिलचिलाती गर्मी और धूप से परेशान दिल्ली वालों के लिए गुरुवार की शाम राहत लेकर के आई, जब तेज हवाएं चली, धूल भरी आंधी चली और उसके बाद हल्की हल्की बारिश हुई, जिसके चलते मौसम और तापमान में अच्छी खासी गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिन तक इसी तरीके का मौसम जो है वो फिलहाल दिल्ली एनसीआर में बने रहने की उम्मीद है। जिस तरीके से कल देर शाम को बारिश हुई, ऐसा ही मौसम आज दिन भर जो है वो मौसम विभाग की माने तो बना रहेगा। कई इलाकों के अंदर हवाएं जो है वो तेज गति के साथ चलेंगी और उसके साथ साथ बादल भी छाए रहेंगे और उसके अलावा कई इलाकों में हल्की हल्की बारिश भी जो है वो हो सकती है। मौसम विभाग अगर बात की जाए तो जिस तरीके से कई दिनों से लगातार दिल्ली में रहने वाले लोग, खासतौर पर उत्तर भारत के भी लोग जो चिलचिलाती गर्मी और लू से परेशान थे, उनके लिए राहत जरूर लेकर के आई है।
0: कल तक जहां सूरज आग उगल रहा था, वही अब बादल झमाझम बरस रहे थे। गुरुवार शाम से ही उत्तर पश्चिम भारत के शहरों में आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश हुई, जिसके बाद देखते ही देखते तापमान में भारी गिरावट आने लगी। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार शाम से बदला मौसम का ये मिजाज रविवार तक ऐसा ही बने रहने की संभावना है। मौसम की करवट को देखते हुए अगले 2 दिनों के लिए दिल्ली एनसीआर, यूपी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कहीं तेज, कहीं मध्यम, कहीं कहीं थोड़ा नुकसान भी हुआ, पर पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी, चिलचिलाती धूप, उमस भरी रात झेल रहे लोगों के लिए मौसम का ये दौर सुकून लेकर आया है। तापमान में आई गिरावट से मौसम सुहाना हो गया।
2: उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में थोड़ी गर्मी से राहत मिली है लोगों को। वजह थी कल बारिश और तेज हवाएं जब चली थी, उसके बाद लगातार बारिश से कई जगह पर राहत मिली है। लोग काफी दिनों से गर्मी से परेशान थे, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में फिर चाहे आगरा से लेकर गोरखपुर तक और झांसी से लेकर लखनऊ तक टेम्परेचर में काफी कमी आई है और जिससे थोड़ा राहत मिली है।
0: मौसम की इस बदली चाल की वजह वेस्टर्न डिस्टरबेंस को बताया जा रहा है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर पहाड़ों से लेकर मैदानों तक दिखा है, जिससे तापमान में गिरावट और हीट वेव से निजात मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक जून में वापस तापमान 40 को लांघेगा, लेकिन फिलहाल हीट वेव से राहत की ये स्थिति हफ्ते भर तक बनी रह सकती है। यानी तापमान को दोबारा हीट वेव के स्तर पर आने में 7 से 8 दिन का समय लग सकता है।
3: देखिए, अभी टेम्परेचर इतने फॉल होंगे तो उनको राइज करने में फिर से थोड़ा समय लगेगा, तो फिलहाल हमारा अनुमान यही है कि 2 से 3 दिन के बाद 29 तारीख से जो हीटर कंडीशंस अबेट हो जाएंगी, उसके बाद में 30-31 तारीख के बाद में फिर से ग्रेजुअली टेम्परेचर राइज होना शुरू होंगे और उनको फिर से हीटवेव के स्तर पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा।
0: मौसम के बदले मिजाज का असर बनारस में भी दिखा। काशी में लगातार 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच रहे तापमान ने लोगों को घरों में कैद होने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन अब बाबा विश्वनाथ की नगरी में मौसम भी मलंग हो गया है।
4: मौसम में बदलाव के चलते वाराणसी में लोगों ने राहत की सांस ली है। तड़के सुबह गरज चमक और तेज हवाओं के बीच हुई बारिश से तापमान लगभग 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे लुढ़क गया, जो सामान्य से 1.5 डिग्री नीचे बताया जा रहा है।
5: अभी तो कल से तो बढ़िया है, जब से कल से मतलब इतना ज्यादा अच्छा है, कहने बात नहीं, मतलब बारिश होने के बाद अच्छा मौसम है, ऐसा लग रहा है कि हाँ थोड़ा ठंडा है।
6: देखिए, मौसम का मिजाज तो बहुत अच्छा बदला है। जिस हिसाब से कल रात में बारिश हुई है और तूफान आया था, जिस हिसाब से लोग कह रहे थे कि नौतपा लगने वाला, उस हिसाब से पब्लिक सड़क पर नहीं निकल रही थी उस डर से, तो लेकिन ऊपर वाले की क्या मर्जी थी कि कल मतलब एकाएक मौसम चेंज हुआ, उससे मतलब जो टेम्परेचर है वो थोड़ा डाउन हुआ है, जिससे लोगों को बहुत राहत मिली है और काफ़ी अच्छा लोग महसूस कर रहे हैं।
7: कल 2 बजे रात से लगातार बारिश हुई, 7 बजे सुबह तक बहुत अच्छी बारिश हुई और इस समय एकदम मौसम बहुत सुहावना हो गया है, क्योंकि एक एग्जाम मैं 25 तारीख को देने आया था, बिटिया का, सीयूटी का ही, पांडेपुर में था सेंटर। इतनी गर्मी थी सर कि लग रहा था चमड़ी जल जाएगी, लेकिन आज तो यहाँ भी और घर पर भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मौसम।
8: पहले से तो काफ़ी आराम है, तापमान कुछ गिरा हुआ है, पहले से बहुत ज़्यादा आराम है।
0: इसी तरह यूपी के झांसी में गुरुवार शाम को चली तेज हवा और बारिश ने तस्वीर बदल दी। यहाँ कुछ इलाकों में ओले भी गिरे। पानी की बौछार पड़ी तो तपती धरती ने राहत की सांस ली। 45 डिग्री टॉर्चर के बाद मौसम का ये यू टर्न हरियाणा के लोगों को भी रास आया। रेवाड़ी में झमाझम बारिश के साथ ओले भी गिरे। अचानक आए इस मौसम परिवर्तन ने लोगों को हैरान तो किया, लेकिन पिछले कई दिनों से पड़ रही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से जूझ रहे लोगों ने राहत की सांस ली। तेज हवाओं, बारिश और ओलावृष्टि के बाद तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। राजस्थान के श्रीगंगानगर में तो लोग 49 डिग्री टॉर्चर झेल रहे थे। गुरुवार दोपहर तक ये शहर दुनिया के सबसे गर्म शहरों में दूसरे स्थान पर शुमार था, लेकिन शाम होते होते कहानी बदल गई। मौसम के बदले अंदाज ने लोगों को बड़ी राहत दी। दोपहर बाद मौसम बदला, आसमान में काले घने बादल छाए। शाम होते होते तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई, जमकर ओले भी गिरे। राजस्थान के धौलपुर में भी मौसम के तेवर कुछ ऐसे ही नजर आए। दोपहर बाद आसमान में बादलों ने दस्तक दी और देर शाम तेज हवाओं के साथ बरस पड़े। तपती दोपहरी के बाद बादलों की यह मेहरबानी लोगों को सुकून दे गई। तो वहीं उत्तराखंड के बागेश्वर में इन बादलों ने बड़ा काम किया। यहां हुई बारिश और ओलावृष्टि ने जंगलों की भीषण आग बुझा दी। आसमान से गिरते ओलों ने कुछ देर के लिए बागेश्वर की जमीन को पूरी तरह ढक दिया। पश्चिम से पूर्व तक देश के कई इलाकों में यही मंजर नजर आया। ताजा बारिश सिटी ऑफ जॉय के लिए गर्मी से राहत की खुशखबरी लेकर पहुंची। पश्चिम बंगाल में राजधानी कोलकाता समेत कई इलाकों में शुक्रवार सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश के चलते लोगों को गर्मी से निजात मिली और मौसम सुहाना हो गया।
9: चिलचिलाती धूप और उमस से आखिरकार कोलकाता के लोगों को राहत मिला। शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे के बीच भारी बारिश साथ में तेज हवाओं ने टेम्परेचर को काफी नीचे ला दिया। मौसम विभाग का ये कहना है कि उत्तर बंगाल में इस तरह की बारिश जारी रहेगी और भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में फिलहाल इसी तरीके से बूंदाबांदी और कभी कभी इस तरीके का बारिश कोलकाता और इसके आसपास के जिलों में रोज होती नजर आएंगी। लेकिन लोगों को खासा परेशानी भी हुआ, क्योंकि कुछ इलाकों में कोलकाता के जहाँ पेड़ गिरे, कुछ जगहों पे जल जमा हुआ, लेकिन मौसम सुहाना हो गया।
0: महाराष्ट्र के अमरावती में भी नौतपा की तपिश के बीच 45 डिग्री तापमान में झुलसे शहर ने राहत की इस बारिश का जमकर लुत्फ उठाया। तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हुई बारिश और ओलावृष्टि से शहर का पारा नीचे लुढ़क गया और लोगों ने राहत की सांस ली।
10: तो भारत का ज्यादातर हिस्सा हीट वेव झेल रहा था, लू के थपेड़े या लू की मार झेल रहा था, और अब मौसम ने करवट ली है तो ज्यादातर हिस्सों में अब वो राहत लेकर के आई है। हालांकि इस राहत के साथ मुसीबतें ये हैं कि मौसम विभाग का पूर्वानुमान ये कहता है कि उत्तर पश्चिम भारत, पूर्वी उत्तर भारत, मध्य भारत और इसी के साथ साथ दिल्ली NCR का वो इलाका जहां पर रविवार तक अब तापमान तो गिरेगा ही, बारिश भी होंगे, लेकिन हवा की रफ्तार ज्यादा भी हो सकती है, थंडर स्टॉर्म हो सकता है, ओले गिर सकते हैं। तो अगर फलों की खेती है उस पर असर पड़ेगा। पहाड़ी इलाकों में जहां पर जंगलों की आग है वहां पर ओलावृष्टि या बारिश के साथ उस आग को बुझाने में मदद मिलेगी। तो मैदानी इलाकों में तापमान नीचे जरूर गिरेगा, लेकिन आंधी तूफान, बिजली गिरने और ओले गिरने जैसी घटनाओं से बचना जरूरी होगा। तो कुल मिलाकर के कहें कि पश्चिमी विक्षोभ इतना सक्रिय होकर के आ रहा है कि अपने साथ हवा की रफ्तार बेहद तेज ला रहा है और इसीलिए दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत के ये जो गंगेटिक बेल्ट है, पूरा मैदानी इलाका है, यहां आपको तड़के सुबह अब वैसा तापमान महसूस नहीं हो रहा होगा। इसी के साथ साथ जो वार्म नाइट कंडीशन जिसे कहते हैं, जहां रातें भी गर्म थी, वो भी बेहतर हुई है। यानी रातों को तापमान भी नीचे आया है, दिन का तापमान भी जो अधिकतम था उसमें भी कमी आई है, लेकिन ये राहत सिर्फ रविवार तक होगी क्योंकि जून की तपिश तो अभी बाकी है। दिल्ली से मनीष के साथ मैं आशुतोष मिश्रा।
11: जहां उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में वेस्टर्न डिस्टरबेंस बारिश का दौर लेकर आया, तो वहीं देश के दक्षिणी राज्यों में प्री मॉनसून बारिश हो रही है। दरअसल मॉनसून अब देश की दहलीज पर खड़ा है और दक्षिण के द्वार से उसे भारत के मेनलैंड में प्रवेश करना है। उसी का संकेत देते हुए झमाझम बारिश के साथ दक्षिण में प्री मॉनसून ने दस्तक दे दी है। प्री मॉनसून में होने वाली बारिश मॉनसूनी बारिश से अलग होती है। देखिए, मॉनसून का फंडा तो सीधा सा है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में तापमान की वजह से पानी भाप बनकर बादलों के रूप में आगे बढ़ता है और बारिश करता है, यही मानसूनी बारिश कहलाती है। लेकिन इससे पहले होती है प्री मानसून की बारिश, जो देश के कई राज्यों में इन दिनों हो रही है। अब आपको बताते हैं कि प्री मानसून और मानसून में अंतर क्या है, दोनों समय होने वाली बारिश का पैटर्न एक दूसरे से अलग कैसे है और ये पूरा सिस्टम कैसे बनता है वो समझिए। मानसून की बारिश की शुरुआत दक्षिणी कोने से होती है, जबकि प्री मानसून की बारिश का कोई सेट पैटर्न नहीं। ये देश के दक्षिण पश्चिम या उत्तरी हिस्सों में कहीं भी पहले आती है और पहले ही चली जाती है। दोनों बारिशों में बादलों का पैटर्न भी अलग होता है। मानसून की बारिश के बादल परतों वाले होते हैं। परतों में मौजूद ज्यादा नमी के चलते बार बार लंबे समय तक मानसून की बारिश होती है। ये बादल एक से दूसरी जगह तक लंबी दूरी भी तय करते हैं, जबकि प्री मानसून बारिश के बादलों के साथ ऐसा नहीं होता। इनमें कम नमी होती है और ये काफी ऊपर की तरफ होते हैं। मानसून की बारिश कभी तेज होती तो कभी कई दिनों तक रिमझिम बारिश का सिलसिला भी चलता है, जबकि प्री मानसून की बारिश बेहद तेज होती है। मानसून की बारिश बार बार और लंबे समय तक होती है, जबकि प्री मानसून बारिश एक दो दिन में खत्म हो जाती है, जैसा कि अभी हो रहा है। इसके अलावा मानसून की बारिश के दौरान कई बार तेज चक्रवाती हवाएं भी आपको देखने को मिलेंगी, जबकि प्री मानसून बारिश के दौरान झोंकेदार हवा के कारण धूल वाली तूफानी बारिश होती है। साथ ही मानसून की बारिश बहुत बड़े इलाके में एक साथ होती है और इस दौरान पूरे क्षेत्र का मौसम एक जैसा रहता है, जबकि प्री मानसून बारिश एक सीमित क्षेत्र में होती है, जैसा कि हम अभी देख पा रहे हैं। आपकी माई मैदानी इलाकों में तो प्रचंड गर्मी पड़ी ही, लेकिन साथ ही कई पहाड़ी राज्यों में भी पारा 40 तक पहुंचा। ऐसे में वेस्टर्न डिस्टरबेंस के बाद बदला मौसम पहाड़ी राज्यों के लिए भी राहत लेकर आया। कई शहरों में जोरदार बारिश तो कुछ ऊंचाई वाले इलाकों पर बर्फबारी भी देखने को मिली। मसलन उत्तराखंड के चमोली में मौजूद हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा के इलाके में जोरदार बर्फबारी हुई। ताजा बर्फबारी के बाद पूरा इलाका बर्फ से ढका नजर आ रहा है।

0: कहां तो मैदान और पहाड़ दोनों ही हीट वेव की मार झेल रहे थे, लेकिन 24 घंटों में सब कुछ बदल गया। वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते हवाओं ने कुछ ऐसा रुख बदला कि मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया। ये तस्वीरें हैं उत्तराखंड के चमोली की, जहां ताजा बर्फबारी के बाद सिखों का पवित्र तीर्थ हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा पूरी तरह बर्फ से ढक गया है। 23 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खोले गए थे। कपाट खुलने के बाद से अब तक यहां 22,000 से ज्यादा तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। इसी दौरान इस पूरे हफ्ते यहां कई बार बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग ने गुरुवार से पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई थी। गुरुवार शाम जहां देश के मैदानी इलाकों में जोरदार आंधी बारिश का दौर चला, तब चमोली के इस इलाके में देर रात मौसम बदला और ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के साथ भारी बर्फबारी शुरू हो गई। हेमकुंड साहिब क्षेत्र में सुबह से लगातार बर्फ गिर रही है। यहां जबरदस्त ठंड के साथ आसमान से बर्फ के फाहे बरस रहे हैं। पवित्र सरोवर का पानी और भी ज्यादा ठंडा हो गया है। बावजूद इसके सिख संगत में अपार उत्साह और श्रद्धा देखने को मिल रही है। भक्त बर्फ को चीरते हुए भी गुरुद्वारा साहिब पहुंचकर अरदास कर रहे हैं।
1: चमोली में एक बार फिर से मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हो रही है। सिखों का जो पवित्र तीर्थ स्थल है हेमकुंड साहिब में रुक रुक कर बर्फबारी का दौर जारी है। आसमान में देख सकते हैं लगातार बादलों का डेरा है। मौसम विभाग ने पहले ही पहाड़ों में बारिश और बर्फ ऊंचाई वाली जगहों पर बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया था। ऐसे में हेमकुंड साहिब अत्यधिक ऊंचाई पर है, वहां पे लगातार रुक रुक कर बर्फबारी का दौर जारी है। ऐसे में अब तक 22,000 से अधिक श्रद्धालु हेमकुंड साहिब में मत्था टेक चुके हैं। सिख संगतें हैं देश और विदेश दोनों ही जगहों से इस समय हेमकुंड साहिब में पहुंच रहे हैं। ऐसे में बर्फबारी के बीच जहां रास्ता फिसलन भरा हो जाता है, वहीं SDRF जो सेवादार है, भारतीय सेना है, इन रास्तों पे लगी हुई है यात्रियों को रास्ता पार कराने में। जो व्यवस्थाएं हैं, गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी भी यहां पे लगातार यात्रियों की मदद के लिए खड़ी है। हालांकि सुबह से बर्फबारी देर रात से ही बर्फबारी यहां पे हो रही है। सुबह यहां बर्फ की सफ़ेद चादर हर तरफ दिखाई दी। इसके बावजूद भी श्रद्धालुओं का जो उत्साह है, एक तो कठिन यात्रा होती है 19 किलोमीटर की, दूसरा ऑक्सीजन की कमी होती है, लेकिन जो यहां पहुंचने वाले श्रद्धालु होते हैं, चाहे वो बुजुर्ग हों या बच्चे हों, हर किसी के उत्साह में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। बर्फबारी है, कड़ाके की ठंड है, ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह अपनी अपार देखने को मिल रहा है।
0: जहां हेमकुंड साहिब में जमकर बर्फबारी हो रही है, वहीं उत्तराखंड के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। गुरुवार शाम से रुक रुक कर हो रही बारिश ने पहाड़ी राज्य के निचले इलाकों में भी तापमान काफी गिरा दिया है।
2: दो हफ्ते की चिलचिलाती गर्मी के बाद उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में देर रात तेज बारिश हुई और गुरुवार को इस बारिश के बाद कई क्षेत्रों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और इसके बाद मौसम फिलहाल सुहाना बना हुआ है। पहाड़ी क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं देहरादून समेत जो दूसरे मैदानी क्षेत्र हैं, वहां पर भी तापमान में कमी आई है। हालांकि गर्मी अभी भी बढ़ रही है और देखा जा सकता है कि मौसम विभाग ने एक बार फिर चेतावनी दी है कि अगले दो दिन में देहरादून, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर के लिए वार्निंग जारी की गई है। येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं।
0: दरअसल मई में पहाड़ों पर हो रही जोरदार बर्फबारी सबको हैरान कर रही है। कश्मीर के गुरेज और हिमाचल के मनाली में भी इस हफ्ते ऐसा ही नजारा दिखा था, तो वहीं लद्दाख के द्रास में भी इस हफ्ते जमकर बर्फ गिरी है। ये हिमालय की गोद में बसे जोजीला दर्रा की तस्वीरें हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जोड़ने वाले इस इलाके से यूं तो साल भर सर्दी नहीं जाती, लेकिन अब की मई यहां हुई जबरदस्त बर्फबारी ने सबको हैरान कर दिया है। यहां बर्फबारी का आलम ये रहा कि सड़क पर जमी बर्फ को हटाने के लिए मशीनों का सहारा लेना पड़ा। इसी तरह ये तस्वीरें कश्मीर के गुरेज सेक्टर में मौजूद तुलैल वैली की है, जहां मई के महीने ने अब की बार दिसंबर की याद दिला दी है। इस हफ्ते नॉर्थ कश्मीर के गुरेज सेक्टर और सोनमर्ग में भी जबरदस्त बर्फबारी हुई है। हिमाचल का हाल भी ज्यादा जुदा नहीं रहा। यहाँ कुल्लू मनाली के ऊपरी इलाकों, रोहतांग पास, स्पीति घाटी, सोलंग वैली, केलांग और दूसरी जगहों पर जमकर बर्फ पड़ी है। एक बात अच्छी ये हुई कि इस बर्फबारी ने पहाड़ों पर पहुँचे सैलानियों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है। जाहिर है मई में किसे बर्फबारी की उम्मीद होगी, लेकिन पहाड़ी इलाकों का रुख कर रहे पर्यटकों के लिए ताज़ा बर्फबारी किसी बोनस से कम नहीं। चमोली से कमल ने अंसिलोड़ी, देहरादून से अंकित शर्मा, मनाली से मनमिंदर अरोड़ा और जोजिला से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से देशवासियों से विदेश यात्रा की जगह स्वदेश यात्रा करने की अपील की है, तभी से जीएनटी भी आपसे गुजारिश कर रहा है कि आप अपने आसपास की खूबसूरत जगहों की तस्वीरें हमें भेजें ताकि हम आपकी उन वीडियोस को यहां पर दिखाएं। तो चलिए आज आपको हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला लेकर चलते हैं, जहां के तमाम आकर्षक और खूबसूरत पर्यटक स्थल आपका इंतजार कर रहे हैं। हमारे एक दर्शक ने हमें एक ऐसा ही वीडियो भेजा है जिसमें उन्होंने धर्मशाला समेत कांगड़ा वैली की खास जगहों के बारे में जानकारी दी है।

0: मैं आप सभी को भी न्योता देता हूँ कि हमारा हिमाचल प्रदेश जो देव भूमि है और हिमाचल के ही अंदर बसा हमारा ये सुंदर धर्मशाला, जहाँ एक तरफ धुलाधार की हसीन पहाड़ियाँ, जहाँ आज मई और जून के महीने में भी बर्फबारी धुलाधार की पहाड़ियों पर है। मैं आप सभी को कहना चाहूंगा हिमाचल प्रदेश के अंदर ये सुंदर हमारा धर्मशाला, जहाँ इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो विश्व का सबसे सुंदर स्टेडियम है वो धर्मशाला में है, चाहे मैक्लोडगंज जो नगरी है वो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में है, बौद्ध धर्म के धर्मगुरु दलाई लामा जी यहाँ पर हैं। आप सभी आए और धर्मगुरु दलाई लामा जी का आशीर्वाद मिलने का सौभाग्य आप सभी को मिलेगा। धर्मशाला के अंदर चाय के बगान है, आप उन्हें निहारने के लिए यहाँ आ सकते हैं। धर्मशाला के अंदर कई देवी स्थान, कई मंदिर, जैसे अगंजर महादेव, इंदुरनाल जी का मंदिर देवी स्थल है, और कई मंदिर हमारे हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के शहर के अंदर है। बात करूं रोपवे की, तो धर्मशाला में धर्मशाला से मैक्लोडगंज के लिए रोपवे की सुविधा है, आप उसका आनंद लेने भी हिमाचल प्रदेश के अंदर आ सकते हैं। अगर कोई ट्रैकिंग का शौकीन है तो त्रिउंड जैसा एक ट्रैकिंग का हमारे पास स्पॉट जो है धर्मशाला के अंदर है, आप ट्रैकिंग के लिए भी त्रिउंड जा सकते हैं। साथ में धर्मशाला के लगते बाथू की लड़ी यहाँ घूमने के लिए है। मंदिर की बात करूँ तो रॉकट टेम्पल हमारे यहाँ है। धर्मशाला के साथ ही लगता कांगड़ा है, प्रदेश माता शक्तिपीठ धर्मशाला के अंदर लगते कांगड़ा में है, तो आप इन तमाम चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए, घूमने के लिए धर्मशाला आए। हिमाचल वासी तो धर्मशाला अतिथि देवो भव के भाव के साथ आप सभी के स्वागत के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। आपने आना कैसे है ये सबसे बड़ा प्रश्न है, तो बताऊँ आपको, धर्मशाला के ही समीप गग्गल एयरपोर्ट, जहाँ आप हवाई मार्ग से आ सकते हैं। रेलवे से अगर आपने आना है तो पठानकोट जो सबसे नजदीक हमारे पड़ता है उसके माध्यम से आ सकते हैं। सिर्फ दिल्ली से आपने आना है तो वोल्वो बसें जो है धर्मशाला तक आती हैं। इन तमाम साधनों से जो आप धर्मशाला आ सकते हैं। हम सभी धर्मशाला वासी आपके स्वागत के लिए और अतिथियों के अतिथि देवो भव के भाव के साथ यहाँ पर।
1: तो आप भी अपने ही देश में सैर सपाटा करने, अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट कीजिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के संकल्प के भागीदार बनिए। बस करना आपको सिर्फ इतना सा है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है तो उठाइए अपना कैमरा और स्टार्ट कर दीजिए ब्लॉग्स बनाने। फिर हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, हम उसे GNT पर जरूर दिखाएंगे। और चलिए आज तो यही कहेंगे कि एंजॉय योर वीकेंड, क्योंकि आपका वीकेंड रहने वाला है कूल कूल। फिलहाल इजाजत दीजिए, अच्छी खबरें जारी हैं, देखते रहिए GNT।
2: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive Soul Groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown Classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं और इन्हें खूब पसंद किया जा रहा है।
4: नवजात भाई को पहली बार देखकर छोटी बहन की खुशी देखने लायक है। ठुमक ठुमक कर चलते हुए वो मासूमियत से जमीन पर बैठ गई और अपने नन्हे भाई को गोद में लेने के लिए हाथ फैला दिए। उसकी चमकती आंखों और खिलखिलाती मुस्कान ने पूरे घर के माहौल में खुशियां भर दी। भाई को सीने से लगाने की उसकी मासूम चाहत ने सभी का दिल जीत लिया। ये खूबसूरत पल सिर्फ एक मुलाकात नहीं बल्कि भाई बहन के अनमोल रिश्ते और निश्चल प्रेम की प्यारी शुरुआत बन गया। जहां लोग लोग छोटी छोटी परेशानियों में हार मान लेते हैं, किस्मत को कोसने लगते हैं, वहीं ये शख्स हौसले की नई मिसाल बनकर सामने आया है। एक हाथ न होने के बावजूद अपने हुनर से लोगों के चेहरों पर मुस्कान और आत्मविश्वास दोनों सजा रहा है। इनका काम सिर्फ हेयर कटिंग का नहीं है, बल्कि ये साबित करना है कि मेहनत, जज्बा और आत्मविश्वास के आगे हर मुश्किल छोटी पड़ जाती है। अपने हौसले से ये अपनी तकदीर खुद लिख रहे हैं। माँ और बच्चे का ये प्यारा सा अंदाज किसी का भी दिल जीत लेगा। माँ जैसे ही मस्ती में झूमती है, बच्चा भी उनकी नकल करने लगता है, फिर अपनी मासूम अदाओं पर खिलखिलाकर हंस पड़ता है। ये नजारा सिर्फ हंसी का नहीं, बल्कि माँ बेटे के खूबसूरत रिश्ते और बेफिक्र बचपन की प्यारी झलक है। ऐसी मासूम खुशियाँ ही जिंदगी को खूबसूरत बनाती है और चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है। दुनिया का सबसे अमीर इंसान वो नहीं जिसके पास दौलत है, बल्कि वो है जिसके घर लौटने पर परिवार खुशियों से झूम उठे। ये प्यारी बच्चियां अपनी माँ के साथ डांस करते हुए पिता का स्वागत कर रही हैं। बेटियों की मुस्कान और अपनापन देख पिता भी खुद को झूमने से रोक नहीं पाए। ये नजारा सिर्फ स्वागत का नहीं, बल्कि परिवार के प्यार, अपनेपन और रिश्तों की असली दौलत की खूबसूरती का है। इतना नन्हा किसान शायद ही किसी ने देखा होगा जो अपनी मासूम उम्र में भी जिम्मेदारी निभा रहा है। ये छोटा सा बच्चा होटल के कर्मचारियों के साथ बागवानी में मदद कर रहा है। उनकी क्यूट हरकतें देखकर सभी के चेहरों पर मुस्कान आ जाती है। बच्चे की मासूम कोशिशों से माहौल और भी खुशनुमा हो गया। उसकी ये लगन और सादगी ये सिखाती है कि सीखने और मदद करने की कोई उम्र नहीं होती।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn. Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits to timeless favorites and new discoveries, it's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: रामनगरी अयोध्या में माता दुर्गा मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ धार्मिक अनुष्ठान, साधु संतों की मौजूदगी में हुआ समारोह। ऋषिकेश में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की गंगा आरती, तीर्थ क्षेत्र के मुद्दों पर साधु संतों से मुलाकात और संवाद। लखनऊ के साईं भक्त ने बाबा को भेंट किया स्वर्ण मुकुट, बेशकीमती पत्थरों से बने कमल पर उकेरा गया ओम, 782 ग्राम के इस मुकुट पर दो मयूर की नक्काशी। कोलकाता में तेज हवाओं के साथ जमकर हुई बारिश, उमस और गर्मी से लोगों को मिली राहत, सड़कों पर गिरे पेड़ हटाने में जुटा प्रशासन। उत्तराखंड के पहाड़ों को प्लास्टिक कचरा मुक्त बनाने में जुटा इंग्लैंड से आया मेहमान, अल्मोड़ा के कसार देवी इलाके में हर रोज स्वच्छता अभियान चलाते हैं मार्क। रेलवे ट्रैक के रेलबाजों पर प्रशासन हुआ सख्त, झांसी रेलवे स्टेशन पर ड्रोन कैमरों से की जा रही है लाइव निगरानी, संदिग्ध और पत्थरबाजों पर पैनी नजर।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
1: नमस्कार, मैं हूँ
6: नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं, आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार से फैलते हैं। कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है तो कभी पुरानी तस्वीरों को नई साजिश का रंग देकर उन्हें पेश किया जाता है और लोग बिना सोचे समझे बिना परखे ने सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहाँ हर किसी के हाथ में एक कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं। जहां वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को हम उतारते हैं तथ्यों की रोशनी में। तो आज ऐसी दो खबरों की पड़ताल हम करेंगे जिसमें सबसे पहले बात सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की होगी जिसके जरिए यह दावा किया जा रहा है कि वीडियो पश्चिम बंगाल का है, जहां घर पर बुलडोजर चलने के बाद एक शख्स फूट फूट कर रोने लगा। क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई, आगे बताएंगे। हमारी अगली खबर उस वायरल वीडियो से जुड़ी होगी जिसके जरिए दावा किया जा रहा है कि हाल ही में चीन के दौरे के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जासूसी करते कैमरे में कैद हो गए। एक भोज के दौरान वो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निजी नोट्स में ताकझांक करते हुए कैमरे में कैद हो गए। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
3: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
6: पश्चिम बंगाल की शुभेंदु अधिकारी की सरकार के नेतृत्व में अवैध कब्जों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई लगातार जारी है। सोशल मीडिया पर भी इस कार्रवाई से जोड़ते हुए वीडियोस लगातार वायरल हो रहे हैं। अब ऐसा एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ है जिसमें एक शख्स फूट फूट कर रोता नजर आ रहा है और इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग ये दावा कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में बुलडोजर एक्शन के बाद घर गवाने के बाद एक शख्स फूट फूट कर रोया। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, देखिए रिपोर्ट।
7: पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन और शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार बनने के बाद राज्य भर में अवैध निर्माणों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है। सरकार का दावा है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है। इसी संदर्भ में ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। इसमें एक व्यक्ति फूट फूट कर रोता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में कुछ पुलिस वाले भी देखे जा सकते हैं। इसके अलावा तोड़फोड़ की आवाज भी सुनाई दे रही है। देखने में ये किसी बुलडोजर एक्शन के वक्त का लगता है। कुछ लोग इसे पश्चिम बंगाल का बताकर शेयर कर रहे हैं। फेसबुक पर इस वीडियो के साथ पश्चिम बंगाल से जुड़े हैशटैग्स लगाकर एक व्यक्ति ने लिखा, इन कंगालुओं को दहाड़े मार मार कर रोता देखकर दिल को बहुत अधिक सुकून मिल रहा है। हैशटैग वेस्ट बंगाल, हैशटैग बंगाल, हैशटैग टीएमसी, हैशटैग ममता बनर्जी। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
6: दरअसल सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और वीडियो में एक शख्स फूट फूट कर रोता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए दावा कर रहे हैं कि वीडियो पश्चिम बंगाल का है, जहां पर बुलडोजर एक्शन में घर गवाने के बाद ये शख्स फूट फूट कर रोने लगा। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी था। फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की। दावे की सच्चाई जानने के लिए फैक्ट चेक टीम ने सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा और सुना। इस दौरान हमारा ध्यान बैकग्राउंड से आ रही आवाजों पर गया। जब हमने इसे गौर से सुना तो ये सामने आया कि ये बंगाल का है, यानी कि बंगला में ये लोग बातचीत कर रहे हैं। मतलब वायरल वीडियो पश्चिम बंगाल का हो सकता है। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने एक बार फिर से वायरल वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान वीडियो में नजर आ रहे पुलिस के जवानों की वर्दी के कलर पर हमारा ध्यान गया। जब हमने इसे देखा तो ये साफ हुआ कि बांग्ला पुलिस की वर्दी का कलर नहीं हो सकता, क्योंकि पश्चिम बंगाल में पुलिस की वर्दी का रंग तो सफेद है। दो तरह की वर्दी वो पहनते हैं। कोलकाता और हावड़ा क्षेत्र की पुलिस सफेद रंग की वर्दी पहनती है, जिस पर नीले रंग की बेल्ट और कंधे पर नीला रंग होता है, जबकि राज्य के अन्य सभी हिस्सों की बात की जाए तो पुलिस की वर्दी खाकी रंग की होती है, जबकि वीडियो में जो जवान दिख रहा है उनकी वर्दी का रंग अलग है। साथ ही सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, लिहाजा हमने इस सवालों की कसौटी पर कसा। पहला सवाल यही कि वायरल हो रहा वीडियो कब का है और कहां का है। दूसरा सवाल कि कहीं जानबूझकर वीडियो को पश्चिम बंगाल का बताकर भ्रम फैलाने की कोशिश तो नहीं हो रही। अब देखिए सच्चाई क्या है।
7: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले हमने वायरल वीडियो को गौर से देखा। वीडियो पर एक लोगो नजर आ रहा है। सर्च करने पर पता चला कि ये बांग्लादेश का एक न्यूज आउटलेट है। इस आउटलेट ने अपने ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट पर ये वीडियो 21 मई को पोस्ट किया था। पोस्ट के कैप्शन के मुताबिक ये शख्स अपनी आंखों के सामने अपना घर टूटता देख जोर जोर से रोने लगा। पोस्ट के कैप्शन में कलशी बस्ती हैशटैग का इस्तेमाल किया गया है। ये बस्ती ढाका के पास मीरपुर जोन के पल्लवी में स्थित है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस इलाके में बीते कुछ दिनों में बड़े पैमाने पर अवैध कब्जों को हटाने के लिए कार्रवाई की गई है। इस आउटलेट ने कलशी इलाके में हुई बुलडोजर कार्रवाई के और भी कई वीडियो फेसबुक पर पोस्ट किए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस इलाके में सरकारी जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर कार्रवाई की गई थी। कार्रवाई के दौरान यहां रहने वाले लोगों और पुलिस वालों के बीच झड़प भी हो गई थी। कुछ स्थानीय लोगों ने पुलिस वालों पर हमला भी कर दिया था। इस तरह हमारी पड़ताल से साफ हो गया कि पश्चिम बंगाल नहीं बल्कि बांग्लादेश में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ हुई कार्रवाई के दौरान का वीडियो है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
6: सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके जरिए कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये वायरल वीडियो हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन यात्रा के दौरान का है, जिसमें वो चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नोटबुक में झांकते हुए नजर आ रहे हैं। बीजिंग में एक राजकीय भोज के दौरान जब शी जिनपिंग अपनी सीट से उठे तो ट्रंप ने उनकी मेज पर रखी नोटबुक खोलकर उसके पन्ने पलटे, उससे पढ़ने की कोशिश की। लेकिन वायरल दावे की सच्चाई क्या है, देखिए रिपोर्ट।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में चीन की यात्रा की थी। इस दौरान उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय शिखर वार्ता भी की। ट्रंप ने राष्ट्रपति शी को सितंबर में व्हाइट हाउस आने का निमंत्रण दिया।

0: इन सब के बीच सोशल मीडिया पर ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ट्रंप को शिखर सम्मेलन के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की निजी नोटबुक पर चुपके से नजर डालते हुए दिखाया गया है। वीडियो शेयर करते हुए एक एक्स यूजर ने लिखा, शी जिनपिंग के बीजिंग में एक भोज के दौरान जब वे कुछ देर के लिए दूर चले गए थे, तब ट्रंप को उनकी निजी नोटबुक पर चुपके से नजर डालते हुए पकड़ा गया। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ लगातार शेयर किया जा रहा है।
1: हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के दौरे पर गए थे। उस दौरे के दौरान एक दृश्य सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिसके जरिए कुछ लोग ट्रंप की नीयत पर तंज कसते हुए दावा ये कर रहे हैं कि शी जिनपिंग के बीजिंग में एक भोज के दौरान जब वो कुछ देर के लिए दूर चले गए थे, तब ट्रंप को उनकी निजी नोटबुक पर चुपके से नजर डालते हुए कैमरे में साफ साफ देखा जा सकता है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। ऐसे में वायरल हो रहे वीडियो का सच और झूठ जानना जरूरी हो गया था, तो फैक्ट चेक टीम ने वायरल वीडियो की पड़ताल शुरू की। फैक्ट चेक टीम ने दावे की सच्चाई जानने के लिए सबसे पहले वायरल हो रहे वीडियो के हर फ्रेम को गौर से देखा। इस दौरान ये नजर आया कि ट्रंप एक फोल्डर को पलटते हुए देखे जा सकते हैं। इसके बाद फैक्ट चेक टीम ने फोल्डर पर नजर आ रहे प्रतीक चिन्ह को जूम करके करीब से देखा, तो सामने आया कि अमेरिकी राष्ट्रपति की मोहर से मिलता जुलता है। इसके बीचों बीच में चील भी दिख रही है, मतलब ये कि इस फोल्डर का चीनी राष्ट्रपति से कोई संबंध नहीं है। इसके अलावा सर्च के दौरान हमें ऐसी कोई विश्वसनीय रिपोर्ट भी नहीं मिली जिससे वायरल दावे की पुष्टि हो सके, लिहाजा हमने इसे सवालों की कसौटी पर कसा। और हमारा पहला सवाल यही कि अगर वीडियो सच्चा है तो इसके बारे में कोई प्रमाणिक जानकारी क्यों नहीं मिली। हमारा दूसरा सवाल, कहीं जानबूझकर वीडियो को नया एंगल देकर वायरल तो नहीं किया जा रहा। सच और झूठ क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में।
0: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वायरल वीडियो की जांच में जुटी। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और उन्हें सर्च किया। इस दौरान हमें 14 मई को एक न्यूज चैनल पर अपलोड वीडियो का एक लंबा संस्करण मिला। ये बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल्स में आयोजित राजकीय भोज का वीडियो था। लगभग 1:50 पर ट्रंप के बाईं ओर बैठे जिनपिंग उठते हैं और मंच की ओर चलते हैं। इसके बाद वायरल क्लिप में ट्रंप को अपनी बाईं ओर रखे फोल्डर को खोलते और कुछ पन्ने पलटते हुए दिखाया गया है। व्हाइट हाउस ने इस कार्यक्रम का एक अनकट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड किया था। वीडियो शुरू होने के 2 बाद देखा जा सकता है कि जिनपिंग उठते हैं। इसके तुरंत बाद ट्रंप अपने बाईं ओर रखे फोल्डर को खोलते हैं और कुछ पढ़ते हैं। वीडियो में आगे लगभग 12 पर जब जिनपिंग अपनी सीट पर वापस लौटे तो ट्रंप उठे, फोल्डर अपने साथ ले गए। उसे पोडियम पर रखा, कुछ पन्ने पलटे और उसमें से पढ़ना शुरू किया। यही दृश्य एक और वीडियो में 11:50 पर देखा जा सकता है। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि फोल्डर ट्रंप का था और अमेरिकी राष्ट्रपति अपने चीनी समकक्ष की निजी नोटबुक में ताक झांक नहीं कर रहे थे। इस तरह हमारी पड़ताल में वायरल दावा झूठा साबित हुआ। फोल्डर ट्रंप का है, चीनी राष्ट्रपति का नहीं। अभिषेक पाठक के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज टुडे।
1: फैक्ट चेक में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आपको लिए चलेंगे वायरल दुनिया में, दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़। और
3: Some people say that TalkSport is possessed by the Premier League, but that's just not cricket. We're also charmed by the Champions League, fanatical about the FA Cup, and rampantly rabid about rugby, Formula One, and boxing. TalkSport's the brassiest, boldest, best soccer and sports opinion anywhere in the known universe, live from London on TuneIn.
2: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: और वक्त है फैक्ट चेक के आखिरी सफर का, जहां आपको दिखाएंगे ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं।
4: इन दिनों ये वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है, जिसमें एक छोटा बच्चा तालाब के पानी के ऊपर आराम से खड़ा हुआ दिखाई देता है। बच्चे का बैलेंस और कॉन्फिडेंस देखकर लोग हैरान रह जाते हैं, जबकि दूसरा बच्चा कुछ वैसा ही करने की कोशिश करता है लेकिन सफल नहीं हो पाता। यही फनी मोमेंट सोशल मीडिया यूजर्स को खूब पसंद आ रहा है। वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि यहाँ गांव जैसा माहौल है और यहाँ तालाब के बीचों बीच एक छोटा बच्चा आराम से खड़ा है। तालाब के बीच बच्चा हाथ जोड़कर और आंखें बंद किए पूरे बैलेंस और कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि बच्चे के चेहरे पर जरा भी घबराहट नजर नहीं आती है। यही वजह है कि वीडियो देखने के बाद भी लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वीडियो के आखिरी हिस्से में जबरदस्त ट्विस्ट देखने को मिलता है। एक दूसरा लड़का जब उसकी कॉपी करने पहुंचा तो ऐसा मजेदार हादसा हुआ कि इंटरनेट यूजर्स हंसते हंसते लोटपोट हो गए। दरअसल बच्चे ने पानी के अंदर एक स्टूल के सहारे बैलेंस को बनाया था। युवक ये समझ नहीं पाया और वो पानी में धड़ाम से गिर गया। सोशल मीडिया पर इन दिनों 4 साल 4 महीने के एक बच्चे का क्रिकेट वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। पहली नजर में उसकी उम्र देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल लग रहा है कि ये इतनी कम उम्र में बैट संभाल पाएगा, लेकिन जैसे ही गेंदबाज उसकी तरफ तेज गेंद फेंकता है, बच्चा पूरे आत्मविश्वास के साथ शानदार शॉट खेल देता है। खास बात यह है कि वह शॉट सीधे कवर की दिशा में जाता है और गेंद सीमा रेखा के पार पहुंच जाती है। बच्चे का यह शॉट देखकर वहां मौजूद लोग भी दंग रह जाते हैं। वीडियो में देखने वाली सबसे दिलचस्प बात यह है कि गेंदबाज खुद बच्चे की बल्लेबाजी से इतना प्रभावित हो जाता है कि दौड़कर उसके पास आता है और उसके पैर छू लेता है। इसके बाद दोनों के बीच मजेदार अंदाज में पंच भी होता है और फिर वीडियो खत्म हो जाता है। हालांकि वीडियो छोटा है, लेकिन कुछ ही सेकंड के इस क्लिप ने लोगों का दिल जीत लिया है। अक्सर माना जाता है कि ढलती उम्र के साथ बुजुर्गों का खान पान सादा और सीमित हो जाता है, लेकिन इंस्टाग्राम पर वायरल हुई एक क्लिप ने इस सोच को पूरी तरह बदल दिया है। इस वीडियो में एक 92 साल की दादी बड़े चाव से पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक का लुत्फ उठाती नजर आ रही है। वीडियो में दिख रहा है कि दादी पिज्जा के हर स्लाइस का पूरी शिद्दत से आनंद ले रही है। इस दौरान उनकी बच्चों जैसी खुशी देखने लायक है। पिज्जा खाते हुए उनके थम्स

0: प्रसंग है। वीडियो में एक शख्स सड़क पर पड़े गोबर को देखकर रुक जाता है और उसी गोबर पर आर्ट करके एक शानदार मास्टरपीस तैयार कर देता है। साधारण सी चीज को देखकर उसमें छुपी कला को बाहर निकालने वाला यह कलाकार अपनी क्रिएटिविटी के लिए सराहा जा रहा है। वीडियो में दिखाया गया है कि एक व्यस्त सड़क के किनारे गोबर पड़ा हुआ है। कलाकार उसे देखते ही रुक जाता है। वह अपने बैग से रंग, ब्रश और अन्य सामान निकालकर काम शुरू कर देता है। कुछ ही देर में गोबर पर खूबसूरत पैटर्न, फूल, ज्यामितीय डिजाइन और रंग बिरंगे आकर्षक नक्काशी बन जाती है। गोबर की सूरत ही बदल गई। जो चीज आमतौर पर लोग नाक भौं चढ़ाकर पार करते हैं, उसी को कलाकार ने आर्ट का रूप दे दिया। सोशल मीडिया पर इन दिनों ये भावुक वीडियो वायरल हो रहा है, जो इंसानों के दिल को छू रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि एक छोटा सा मेमना अपनी माँ से बिछड़ गया था। जब उसे अपनी माँ दिखी तो वह खुशी से दौड़कर उसके गले लग गया। माँ भी अपने बच्चे को देखते ही भावुक हो गई और मिलन का यह पल हर किसी को रुला गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि खुले आसमान के नीचे हरे भरे खेत में एक महिला मेमने को लेकर आ रही है। जैसे ही मेमना अपनी माँ को दूर से पहचानता है, वह अपनी छोटी छोटी टांगों से तेजी से दौड़ने लगता है। माँ भी अपने बच्चे की आवाज सुनकर बेचैन हो जाती है और आगे बढ़ती है। दोनों के मिलते ही माँ बेटे का गर्मजोशी भरा मिलन देखकर फिल्माने वाली महिला की आंखें भी नम हो जाती हैं। पास खड़ी गाय भी इस खुशी के पल में शामिल होती नजर आती है। आमतौर पर अगर किसी के घर में चूहा घुस जाए तो लोग उसे पकड़कर तुरंत बाहर छोड़ देते हैं या उससे छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बार एक शख्स ने जो किया, उसे देखकर इंटरनेट यूजर्स भी हैरान रह गए। उसने चूहे को पकड़ने के बाद उसके लिए मूवी नाइट ही रख दी। दरअसल एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक चूहा छोटे से पिंजरे में फंसा हुआ है, लेकिन उसे डराने या परेशान करने के बजाय युवक ने पिंजरे के पास अपना मोबाइल रख दिया। मोबाइल में एनिमेटेड फिल्म बाल गणेशा चल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे चूहे के लिए खास तौर पर धार्मिक फिल्म दिखाई जा रही हो। वीडियो में सबसे मजेदार बात यह थी कि युवक बड़े आराम से चूहे के सामने फिल्म चला रहा था, मानो वह कोई खास मेहमान हो। इंटरनेट पर लोगों को यह पल बेहद मजेदार और दिल छू लेने वाला लगा। गर्मी इन दिनों चरम पर है और इस भयंकर गर्मी ने इंसानों के साथ जानवरों की जिंदगी भी मुश्किल कर दी है। लेकिन सोशल मीडिया पर एक बिल्ली ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। यह बिल्ली बिना एयर कंडीशनर के एक मिनट भी नहीं रह पाती।
1: बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा कह रहे, रिमोट दे दे चुपचाप, मारा मारी बाद में कर, रिमोट दे दे, रिमोट दे दे, बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा तेरा।
0: अगर एसी बंद हो जाए तो वह ना सिर्फ नखरे दिखाती है बल्कि एसी का रिमोट छिपा लेती है, और जब कोई रिमोट लेने की कोशिश करता है तो वह सीधा अटैक मोड में आ जाती है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि मालिक जब एसी बंद करने या रिमोट लेने जाते हैं तो बिल्ली पहले तो घूरती है, फिर रिमोट मुंह में लेकर भागती है और छिपा देती है। अगर कोई उसके पीछे जाता है तो वह नुकीले नाखून दिखाकर हमला करने की तैयारी कर लेती है। आप किसी जंगल सफारी पर गए हो और आपकी गाड़ी के ठीक बगल में एक खूंखार बब्बर शेर बैठा हो, तभी अचानक कुछ लोग आराम से उसके बगल से पैदल और बाइक पर गुजरने लगे, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? यकीनन यह नजारा किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि सफारी गाड़ी में बैठा एक पर्यटक वीडियो बना रहा है, तभी सड़क पर एक के बाद एक बाइक सवार गुजरते हैं। हैरान करने वाला मोड़ तब आता है जब कैमरा थोड़ा घूमता है और सड़क के बीच में एक विशाल गाय शेर बैठा दिखाई देता है। हद तो तब हो गई जब बाइकर्स के साथ साथ एक शख्स बड़े आराम से पैदल ही शेर के पास से गुजर जाता है, मानो वहाँ कोई शेर नहीं बल्कि कोई बिल्ली बैठी हो। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह है कि शेर भी उन्हें देखकर कोई प्रतिक्रिया नहीं देता और शांति से बैठा रहता है। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है, जिसने फुटबॉल मैच को ही यादगार बना दिया। इस वीडियो को देखकर लोग सिर्फ मुस्कुरा ही नहीं रहे बल्कि इसे इंटरनेट का सबसे क्यूट फुटबॉल वीडियो भी बता रहे हैं। दरअसल एक फुटबॉल मैच के दौरान ऐसा मजेदार नजारा देखने को मिला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। खिलाड़ी मैदान में पूरी गंभीरता से मैच खेल रहे थे, तभी अचानक एक छोटा सा बछड़ा मैदान में आ गया। शुरुआत में खिलाड़ियों को लगा कि शायद वह थोड़ी देर में बाहर चला जाएगा, लेकिन अगले ही पल उसने जो किया उसे देख

0: देखकर मैदान में मौजूद हर व्यक्ति हंसने लगा। वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही खिलाड़ी फुटबॉल को एक दूसरे की तरफ पास कर रहे थे, वैसे ही वह नन्ना बछड़ा भी पूरी उत्सुकता के साथ गेंद के पीछे दौड़ने लगा। गेंद मैदान के जिस कोने में जाती, बछड़ा भी उसी दिशा में तेजी से भागता दिखाई देता। उसकी मासूम हरकतें और उत्साह देखकर खिलाड़ी भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
3: बात अयोध्या के शक्ति उत्सव की, राम मंदिर परिसर में भगवती मंदिर में ध्वजारोहण समारोह संपन्न हो गया। खास बात यह रही कि राम मंदिर ट्रस्ट ने इस समारोह को मातृ शक्ति को समर्पित किया था, लिहाजा 3500 से ज्यादा महिला संत और कार्यकर्ता इस समारोह का हिस्सा बने। इस समारोह की सुरक्षा का जिम्मा भी सीआरपीएफ की महिला बटालियन ने ही संभाला।

0: ये राम की नगरी में माँ दुर्गा के धाम पर नारी शक्ति का आरोहण है। माँ भगवती के मंदिर शिखर पर लहराती है धर्म ध्वजा एक नए अध्याय का श्री गणेश है, जो संसार को मातृ शक्ति का स्थान बता रही है। अयोध्या के शक्ति उत्सव को निहारिए। ये वो विशेष पल है जब सीआरपीएफ की महिला विंग की जवानों ने ध्वज की रस्सियां खींची और साध्वी रितांबरा ने ध्वजारोहण की परंपरा के माध्यम से मर्यादा पुरुषोत्तम की नगरी में मां के सम्मान को आस्था के शिखर तक पहुंचा दिया। बेशक इस पल का साक्षी बने हर श्रद्धालु के लिए ये कभी ना भुला पाने वाला लम्हा था।
1: तो राम जन्मभूमि में एक और महोत्सव आज पूर्ण हुआ है, क्योंकि आज जो है माँ जगदम्बा के मंदिर के ऊपर शिखर के ऊपर आज ध्वज लहराया है और यहाँ लगभग 3500 के ऊपर महिलाएं रही उपस्थित और लगातार यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इसी गेट से जो है इनकी एंट्री हुई थी और इसी गेट से अभी कुछ देर बाद ये बाहर निकल रही है और लगातार आप लोग ने ध्वजारोहण देखा अपने आप।
2: जी सर बहुत अच्छा लगा, ये अनुभव बहुत अच्छा लगा। इतने दिनों से हमारे पूर्वजों ने जो सपना देखा था आज पूरा हुआ। जय श्री राम।
1: कैसा लग रहा? बड़े भावुक भी लग रही
2: है। जी ये हमारे पूर्वजों का बहुत पुराना सपना था, इसी वजह से शायद हम बोल नहीं पा रहे हैं, शब्द मेरे पास नहीं है।
1: जी,
2: इसीलिए ये सम्मान हम महिलाओं को मिला, ये हमें बहुत अच्छा लगा कि ये सम्मान केवल हम औरतों के लिए।
0: सनातन संस्कृति में ध्वजारोहण महज एक परंपरा नहीं है, बल्कि धर्म, विजय और सकारात्मक ऊर्जा का वो प्रतीक है जो कोसों दूर से मंदिर के शिखर पर लहराता नजर आता है, जिसके दर्शन मात्र से श्रद्धालुओं को असीम शक्ति और ऊर्जा मिलती है, आस्था भक्ति के धाम तक पहुंचने का मार्गदर्शन मिलता है। माँ भगवती के मंदिर पर ये ध्वजारोहण इसलिए विशेष रहा क्योंकि 3500 से ज्यादा मातृ शक्ति इस अद्भुत पल की साक्षी बनी।
3: बहुत दिन बाद मतलब ऐसा लगा कि हाँ, जो जितने लोगों ने इतने लड़ाई की थी, इतना चीजें हुई थी, तो उसका फल आज मिल गया है।
1: अपनी आंखों से ध्वजारोहण देखी पहली बार आज राम मंदिर में?
3: हाँ, पहली बार मतलब इतनी बार हुआ लेकिन कभी आज तक नहीं देखा, और ये चीज बहुत अच्छा लगा कि स्पेशली वुमेन्स के लिए ये चीजें करवाई गई है।
4: सर्वप्रथम तो हम लोग पहले दर्शन ही किए, दर्शन करने के बाद ध्वजारोहण को अपनी आँख के सामने ऊपर उठते हुए शीर्ष तक यूं गर्दन ऐसे थी।
5: नारी का सम्मान हमेशा रहा, यत्र नारियस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी का सम्मान होता है, नारी का पूजा होती है हमारे यहाँ।
0: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने इस भव्य कार्यक्रम को मातृ शक्ति को समर्पित किया था, लिहाजा ध्वजारोहण समारोह में दुर्गा वाहिनी और मातृ शक्ति की करीब 230 कार्यकर्ताओं को शामिल किया गया। साथ ही अयोध्या महानगर के 64 कार्य क्षेत्रों से जुड़ी करीब 3500 महिलाएं इस पल की साक्षी बनी। वृंदावन के वात्सल्य ग्राम की 163 महिला प्रतिनिधि भी इस खास अवसर पर उपस्थित रहीं। राम जन्मभूमि परिसर के 7 मंदिरों पर एक एक कर ध्वजारोहण का कार्यक्रम जारी है। इस सिलसिले का श्री गणेश पिछले 25 नवंबर को हुआ, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर मुख्य मंदिर पर ध्वजारोहण किया। 31 दिसंबर 2025 को अन्नपूर्णा मंदिर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ध्वज फहराया। इसके बाद भगवान सूर्यदेव के मंदिर के शिखर पर 26 मार्च 2026 को विधि विधान से ध्वजारोहण किया गया। हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर 2 अप्रैल को 75 फीट ऊंचे मंदिर हनुमान मंदिर के शिखर पर विधि विधान से भव्य धर्म ध्वजा फहराई गई। फिर 11 अप्रैल को गणेश मंदिर पर ध्वजारोहण हुआ। वही 29 अप्रैल 2026 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिव मंदिर पर ध्वजारोहण किया था और आज साध्वी रितांबरा ने भगवती मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण कर रामनगरी में आस्था, भक्ति और अध्यात्म के वैभव को शिखर तक पहुंचा दिया। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: शुक्र की कौन सी राशि बहुत जिद्दी मानी जाती है? शुक्र की कौन सी राशि के लोग बहुत उदार होते हैं और शुक्र की राशि का सूर्य और शनि से क्या संबंध है, कौन सी है शुक्र की राशियां और क्या है उनका प्रभाव, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: रामनगरी अयोध्या में माता दुर्गा मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ धार्मिक अनुष्ठान, साधु संतों की मौजूदगी में हुआ समारोह। ऋषिकेश में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की गंगा आरती, तीर्थ क्षेत्र के मुद्दों पर साधु संतों से मुलाकात और संवाद। लखनऊ के साईं भक्त ने बाबा को भेंट किया स्वर्ण मुकुट, बेशकीमती पत्थरों से बने कमल पर उकेरा गया ओम, 782 ग्राम के इस मुकुट पर 2 मयूर की नक्काशी। कोलकाता में तेज हवाओं के साथ जमकर हुई बारिश, उमस और गर्मी से लोगों को मिली राहत, सड़कों पर गिरे पेड़ हटाने में जुटा प्रशासन। उत्तराखंड के पहाड़ों को प्लास्टिक कचरा मुक्त बनाने में जुटा इंग्लैंड से आया मेहमान, अल्मोड़ा के कसार देवी इलाके में हर रोज स्वच्छता अभियान चलाते हैं मार्क। रेलवे ट्रैक के रेलबाजों पर प्रशासन हुआ सख्त, झांसी रेलवे स्टेशन पर ड्रोन कैमरों से की जा रही है लाइव निगरानी, संदिग्ध और पत्थरबाजों पर पैनी नजर।

अर्ज किया है, बदले हुए से लगते हैं अब मौसमों के रंग, पड़ता है आसमान का साया जमीन पर। नमस्कार, मैं हूं शगुफ्ता साहिलदेव, आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। हमदम कश्मीरी के इन शब्दों की ही तरह मौसमों के बदलने पर बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ कहा गया। जीएनटी स्पेशल में भी आज बात होगी मौसम के उसी बदलाव पर जिसने वीकेंड से पहले खुश होने का बहाना दे दिया है। यूं तो मई के महीने ने अब की बार बेहद तपाया, लेकिन जाते जाते मई ने राहत की सौगात भी दे दी है। मई का आखिरी शुक्रवार वाकई शुक्र मनाने वाला वार रहा, शुक्र हीट वेव और तपती गर्मी से निजात के लिए। गुरुवार शाम से शुरू हुआ बारिश का दौर पहाड़ों और मैदानी इलाकों के लिए राहत लेकर आया है। पिछले कई दिनों से जो पारा 45 डिग्री के पार चल रहा था, कल शहर शहर हुई बारिश ने तापमान में थोड़ी सी राहत दे दी। भीषण गर्मी में दिन में निकलना किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन अब कुछ दिन के लिए मौसम साफ और सुहावना रहने वाला है। कई शहरों में आज सुबह की शुरुआत हल्की ठंडी हवा और खुशनुमा मौसम के साथ हुई। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि पूरे वीकेंड बारिश का ये दौर जारी रह सकता है। आज के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट, जबकि शनिवार रविवार के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। आइए आपको बताते हैं कि गर्मी से राहत देने वाली ये बारिश कहां कहां हुई और क्यों हुई।

0: मई की तपिश में राहत की बौछार हो गई। झमाझम बारिश से धरती गुलजार हो गई। इस बार का वीकेंड देश के कई हिस्सों के लिए तोहफे में सुकून की बौछार लेकर आया है। नौतपों के बीच दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया।
1: चिलचिलाती गर्मी और धूप से परेशान दिल्ली वालों के लिए गुरुवार की शाम राहत लेकर के आई, जब तेज हवाएं चली, धूल भरी आंधी चली और उसके बाद हल्की हल्की बारिश हुई, जिसके चलते मौसम और तापमान में अच्छी खासी गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिन तक इसी तरीके का मौसम जो है वो फिलहाल दिल्ली एनसीआर में बने रहने की उम्मीद है। जिस तरीके से कल देर शाम को बारिश हुई, ऐसा ही मौसम आज दिन भर जो है वो मौसम विभाग की माने तो बना रहेगा। कई इलाकों के अंदर हवाएं जो है वो तेज गति के साथ चलेंगी और उसके साथ साथ बादल भी छाए रहेंगे और उसके अलावा कई इलाकों में हल्की हल्की बारिश भी जो है वो हो सकती है। मौसम विभाग अगर बात की जाए तो जिस तरीके से कई दिनों से लगातार दिल्ली में रहने वाले लोग, खासतौर पर उत्तर भारत के भी लोग जो चिलचिलाती गर्मी और लू से परेशान थे, उनके लिए राहत जरूर लेकर के आई है।
0: कल तक जहां सूरज आग उगल रहा था, वही अब बादल झमाझम बरस रहे थे। गुरुवार शाम से ही उत्तर पश्चिम भारत के शहरों में आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश हुई, जिसके बाद देखते ही देखते तापमान में भारी गिरावट आने लगी। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार शाम से बदला मौसम का ये मिजाज रविवार तक ऐसा ही बने रहने की संभावना है। मौसम की करवट को देखते हुए अगले 2 दिनों के लिए दिल्ली एनसीआर, यूपी, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कहीं तेज, कहीं मध्यम, कहीं कहीं थोड़ा नुकसान भी हुआ, पर पिछले कुछ दिनों से भीषण गर्मी, चिलचिलाती धूप, उमस भरी रात झेल रहे लोगों के लिए मौसम का ये दौर सुकून लेकर आया है। तापमान में आई गिरावट से मौसम सुहाना हो गया।
2: उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में थोड़ी गर्मी से राहत मिली है लोगों को। वजह थी कल बारिश और तेज हवाएं जब चली थी, उसके बाद लगातार बारिश से कई जगह पर राहत मिली है। लोग काफी दिनों से गर्मी से परेशान थे, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में फिर चाहे आगरा से लेकर गोरखपुर तक और झांसी से लेकर लखनऊ तक टेम्परेचर में काफी कमी आई है और जिससे थोड़ा राहत मिली है।
0: मौसम की इस बदली चाल की वजह वेस्टर्न डिस्टरबेंस को बताया जा रहा है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर पहाड़ों से लेकर मैदानों तक दिखा है, जिससे तापमान में गिरावट और हीट वेव से निजात मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक जून में वापस तापमान 40 को लांघेगा, लेकिन फिलहाल हीट वेव से राहत की ये स्थिति हफ्ते भर तक बनी रह सकती है। यानी तापमान को दोबारा हीट वेव के स्तर पर आने में 7 से 8 दिन का समय लग सकता है।
3: देखिए, अभी टेम्परेचर इतने फॉल होंगे तो उनको राइज करने में फिर से थोड़ा समय लगेगा, तो फिलहाल हमारा अनुमान यही है कि 2 से 3 दिन के बाद 29 तारीख से जो हीटर कंडीशंस अबेट हो जाएंगी, उसके बाद में 30-31 तारीख के बाद में फिर से ग्रेजुअली टेम्परेचर राइज होना शुरू होंगे और उनको फिर से हीटवेव के स्तर पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा।
0: मौसम के बदले मिजाज का असर बनारस में भी दिखा। काशी में लगातार 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच रहे तापमान ने लोगों को घरों में कैद होने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन अब बाबा विश्वनाथ की नगरी में मौसम भी मलंग हो गया है।
4: मौसम में बदलाव के चलते वाराणसी में लोगों ने राहत की सांस ली है। तड़के सुबह गरज चमक और तेज हवाओं के बीच हुई बारिश से तापमान लगभग 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे लुढ़क गया, जो सामान्य से 1.5 डिग्री नीचे बताया जा रहा है।
5: अभी तो कल से तो बढ़िया है, जब से कल से मतलब इतना ज्यादा अच्छा है, कहने बात नहीं, मतलब बारिश होने के बाद अच्छा मौसम है, ऐसा लग रहा है कि हाँ थोड़ा ठंडा है।
6: देखिए, मौसम का मिजाज तो बहुत अच्छा बदला है। जिस हिसाब से कल रात में बारिश हुई है और तूफान आया था, जिस हिसाब से लोग कह रहे थे कि नौतपा लगने वाला, उस हिसाब से पब्लिक सड़क पर नहीं निकल रही थी उस डर से, तो लेकिन ऊपर वाले की क्या मर्जी थी कि कल मतलब इस एकाएक मौसम चेंज हुआ, उससे मतलब जो टेम्परेचर है वो थोड़ा डाउन हुआ है, जिससे लोगों को बहुत राहत मिली है और काफ़ी अच्छा लोग महसूस कर रहे हैं।
7: कल 2 बजे रात से लगातार बारिश हुई, 7 बजे सुबह तक बहुत अच्छी बारिश हुई और इस समय एकदम मौसम बहुत सुहावना हो गया है, क्योंकि एक एग्जाम मैं 25 तारीख को देने आया था, बिटिया का, सीयूटी का ही, पांडेपुर में था सेंटर। इतनी गर्मी थी सर कि लग रहा था चमड़ी जल जाएगी, लेकिन आज तो यहाँ भी और घर पर भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मौसम।
8: पहले से तो काफ़ी आराम है, तापमान कुछ गिरा हुआ है, पहले से बहुत ज़्यादा आराम है।
0: इसी तरह यूपी के झांसी में गुरुवार शाम को चली तेज हवा और बारिश ने तस्वीर बदल दी। यहाँ कुछ इलाकों में ओले भी गिरे। पानी की बौछार पड़ी तो तपती धरती ने राहत की सांस ली। 45 डिग्री टॉर्चर के बाद मौसम का ये यू टर्न हरियाणा के लोगों को भी रास आया। रेवाड़ी में झमाझम बारिश के साथ ओले भी गिरे। अचानक आए इस मौसम परिवर्तन ने लोगों को हैरान तो किया, लेकिन पिछले कई दिनों से पड़ रही रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से जूझ रहे लोगों ने राहत की सांस ली। तेज हवाओं, बारिश और ओलावृष्टि के बाद तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई। राजस्थान के श्रीगंगानगर में तो लोग 49 डिग्री टॉर्चर झेल रहे थे। गुरुवार दोपहर तक ये शहर दुनिया के सबसे गर्म शहरों में दूसरे स्थान पर शुमार था, लेकिन शाम होते होते कहानी बदल गई। मौसम के बदले अंदाज ने लोगों को बड़ी राहत दी। दोपहर बाद मौसम बदला, आसमान में काले घने बादल छाए। शाम होते होते तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हुई, जमकर ओले भी गिरे। राजस्थान के धौलपुर में भी मौसम के तेवर कुछ ऐसे ही नजर आए। दोपहर बाद आसमान में बादलों ने दस्तक दी और देर शाम तेज हवाओं के साथ बरस पड़े। तपती दोपहरी के बाद बादलों की यह मेहरबानी लोगों को सुकून दे गई। तो वहीं उत्तराखंड के बागेश्वर में इन बादलों ने बड़ा काम किया। यहां हुई बारिश और ओलावृष्टि ने जंगलों की भीषण आग बुझा दी। आसमान से गिरते ओलों ने कुछ देर के लिए बागेश्वर की जमीन को पूरी तरह ढक दिया। पश्चिम से पूर्व तक देश के कई इलाकों में यही मंजर नजर आया। ताजा बारिश सिटी ऑफ जॉय के लिए गर्मी से राहत की खुशखबरी लेकर पहुंची। पश्चिम बंगाल में राजधानी कोलकाता समेत कई इलाकों में शुक्रवार सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। बारिश के चलते लोगों को गर्मी से निजात मिली और मौसम सुहाना हो गया।
9: चिलचिलाती धूप और उमस से आखिरकार कोलकाता के लोगों को राहत मिला। शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे के बीच भारी बारिश साथ में तेज हवाओं ने टेम्परेचर को काफी नीचे ला दिया। मौसम विभाग का ये कहना है कि उत्तर बंगाल में इस तरह की बारिश जारी रहेगी और भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में फिलहाल इसी तरीके से बूंदाबांदी और कभी कभी इस तरीके का बारिश कोलकाता और इसके आसपास के जिलों में रोज होती नजर आएंगी। लेकिन लोगों को खासा परेशानी भी हुआ, क्योंकि कुछ इलाकों में कोलकाता के जहाँ पेड़ गिरे, कुछ जगहों पे जल जमा हुआ, लेकिन मौसम सुहाना हो गया।
0: महाराष्ट्र के अमरावती में भी नौतपा की तपिश के बीच 45 डिग्री तापमान में झुलसे शहर ने राहत की इस बारिश का जमकर लुत्फ उठाया। तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हुई बारिश और ओलावृष्टि से शहर का पारा नीचे लुढ़क गया और लोगों ने राहत की सांस ली।
10: तो भारत का ज्यादातर हिस्सा हीट वेव झेल रहा था, लू के थपेड़े या लू की मार झेल रहा था, और अब मौसम ने करवट ली है तो ज्यादातर हिस्सों में अब वो राहत लेकर के आई है। हालांकि इस राहत के साथ मुसीबतें ये हैं कि मौसम विभाग का पूर्वानुमान ये कहता है कि उत्तर पश्चिम भारत, पूर्वी उत्तर भारत, मध्य भारत और इसी के साथ साथ दिल्ली NCR का वो इलाका जहां पर रविवार तक अब तापमान तो गिरेगा ही, बारिश भी होंगे, लेकिन हवा की रफ्तार ज्यादा भी हो सकती है, थंडरस्टॉर्म हो सकता है, ओले गिर सकते हैं। तो अगर फलों की खेती है उस पर असर पड़ेगा। पहाड़ी इलाकों में जहां पर जंगलों की आग है वहां पर ओलावृष्टि या बारिश के साथ उस आग को बुझाने में मदद मिलेगी। तो मैदानी इलाकों में तापमान नीचे जरूर गिरेगा, लेकिन आंधी तूफान, बिजली गिरने और ओले गिरने जैसी घटनाओं से बचना जरूरी होगा। तो कुल मिलाकर के कहें कि पश्चिमी विक्षोभ इतना सक्रिय होकर के आ रहा है कि अपने साथ हवा की रफ्तार बेहद तेज ला रहे हैं, और इसीलिए दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत के ये जो गंगेटिक बेल्ट है, पूरा मैदानी इलाका है, यहां आपको तड़के सुबह अब वैसा तापमान महसूस नहीं हो रहा होगा। इसी के साथ साथ जो वार्म नाइट कंडीशन जिसे कहते हैं, जहां रातें भी गर्म थी, वो भी बेहतर हुई है। यानी रातों को तापमान भी नीचे आया है, दिन का तापमान भी जो अधिकतम था उसमें भी कमी आई है, लेकिन ये राहत सिर्फ रविवार तक होगी क्योंकि जून की तपिश तो अभी बाकी है। दिल्ली से मनीष के साथ मैं आशुतोष मिश्रा।
11: जहां उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत में वेस्टर्न डिस्टरबेंस बारिश का दौर लेकर आया, तो वहीं देश के दक्षिणी राज्यों में प्री मॉनसून बारिश हो रही है। दरअसल मॉनसून अब देश की दहलीज पर खड़ा है और दक्षिण के द्वार से उसे भारत के मेनलैंड में प्रवेश करना है। उसी का संकेत देते हुए झमाझम बारिश के साथ दक्षिण में प्री मॉनसून ने दस्तक दे दी है। प्री मॉनसून में होने वाली बारिश मॉनसूनी बारिश से अलग होती है। देखिए, मॉनसून का फंडा तो सीधा सा है। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में तापमान की वजह से पानी भाप बनकर बादलों के रूप में आगे बढ़ता है और बारिश करता है, यही मानसूनी बारिश कहलाती है। लेकिन इससे पहले होती है प्री मानसून की बारिश, जो देश के कई राज्यों में इन दिनों हो रही है। अब आपको बताते हैं कि प्री मानसून और मानसून में अंतर क्या है, दोनों समय होने वाली बारिश का पैटर्न एक दूसरे से अलग कैसे है और ये पूरा सिस्टम कैसे बनता है वो समझिए। मानसून की बारिश की शुरुआत दक्षिणी कोने से होती है, जबकि प्री मानसून की बारिश का कोई सेट पैटर्न नहीं। ये देश के दक्षिण पश्चिम या उत्तरी हिस्सों में कहीं भी पहले आती है और पहले ही चली जाती है। दोनों बारिशों में बादलों का पैटर्न भी अलग होता है। मानसून की बारिश के बादल परतों वाले होते हैं। परतों में मौजूद ज्यादा नमी के चलते बार बार लंबे समय तक मानसून की बारिश होती है। ये बादल एक से दूसरी जगह तक लंबी दूरी भी तय करते हैं, जबकि प्री मानसून बारिश के बादलों के साथ ऐसा नहीं होता। इनमें कम नमी होती है और ये काफी ऊपर की तरफ होते हैं। मानसून की बारिश कभी तेज होती तो कभी कई दिनों तक रिमझिम बारिश का सिलसिला भी चलता है, जबकि प्री मानसून की बारिश बेहद तेज होती है। मानसून की बारिश बार बार और लंबे समय तक होती है, जबकि प्री मानसून बारिश एक दो दिन में खत्म हो जाती है, जैसा कि अभी हो रहा है। इसके अलावा मानसून की बारिश के दौरान कई बार तेज चक्रवाती हवाएं भी आपको देखने को मिलेंगी, जबकि प्री मानसून बारिश के दौरान झोंकेदार हवा के कारण धूल वाली तूफानी बारिश होती है। साथ ही मानसून की बारिश बहुत बड़े इलाके में एक साथ होती है और इस दौरान पूरे क्षेत्र का मौसम एक जैसा रहता है, जबकि प्री मानसून बारिश एक सीमित क्षेत्र में होती है, जैसा कि हम अभी देख पा रहे हैं। अब की माई मैदानी इलाकों में तो प्रचंड गर्मी पड़ी ही, लेकिन साथ ही कई पहाड़ी राज्यों में भी पारा 40 तक पहुंचा। ऐसे में वेस्टर्न डिस्टरबेंस के बाद बदला मौसम पहाड़ी राज्यों के लिए भी राहत लेकर आया। कई शहरों में जोरदार बारिश तो कुछ ऊंचाई वाले इलाकों पर बर्फबारी भी देखने को मिली। मसलन उत्तराखंड के चमोली में मौजूद हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा के इलाके में जोरदार बर्फबारी हुई। ताजा बर्फबारी के बाद पूरा इलाका बर्फ से ढका नजर आ रहा है।

0: कहां तो मैदान और पहाड़ दोनों ही हीट वेव की मार झेल रहे थे, लेकिन 24 घंटों में सब कुछ बदल गया। वेस्टर्न डिस्टरबेंस के चलते हवाओं ने कुछ ऐसा रुख बदला कि मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया। ये तस्वीरें हैं उत्तराखंड के चमोली की, जहां ताजा बर्फबारी के बाद सिखों का पवित्र तीर्थ हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा पूरी तरह बर्फ से ढक गया है। 23 मई को हेमकुंड साहिब के कपाट खोले गए थे। कपाट खुलने के बाद से अब तक यहां 22,000 से ज्यादा तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। इसी दौरान इस पूरे हफ्ते यहां कई बार बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग ने गुरुवार से पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश की संभावना जताई थी। गुरुवार शाम जहां देश के मैदानी इलाकों में जोरदार आंधी बारिश का दौर चला, तब चमोली के इस इलाके में देर रात मौसम बदला और ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश के साथ भारी बर्फबारी शुरू हो गई। हेमकुंड साहिब क्षेत्र में सुबह से लगातार बर्फ गिर रही है। यहां जबरदस्त ठंड के साथ आसमान से बर्फ के फाहे बरस रहे हैं। पवित्र सरोवर का पानी और भी ज्यादा ठंडा हो गया है। बावजूद इसके सिख संगत में अपार उत्साह और श्रद्धा देखने को मिल रही है। भक्त बर्फ को चीरते हुए भी गुरुद्वारा साहिब पहुंचकर अरदास कर रहे हैं।
1: चमोली में एक बार फिर से मौसम विभाग की भविष्यवाणी सच साबित हो रही है। सिखों का जो पवित्र तीर्थस्थल है हेमकुंड साहिब में रुक रुक कर बर्फबारी का दौर जारी है। आसमान में देख सकते हैं लगातार बादलों का डेरा है। मौसम विभाग ने पहले ही पहाड़ों में बारिश और बर्फ ऊंचाई वाली जगहों पर बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया था। ऐसे में हेमकुंड साहिब अत्यधिक ऊंचाई पर है, वहां पे लगातार रुक रुक कर बर्फबारी का दौर जारी है। ऐसे में अब तक 22,000 से अधिक श्रद्धालु हेमकुंड साहिब में मत्था टेक चुके हैं। सिख संगतें हैं देश और विदेश दोनों ही जगहों से इस समय हेमकुंड साहिब में पहुंच रहे हैं। ऐसे में बर्फबारी के बीच जहां रास्ता फिसलन भरा हो जाता है, वहीं SDRF जो सेवादार है, भारतीय सेना है, इन रास्तों पे लगी हुई है। यात्रियों को रास्ता पार कराने में जो व्यवस्थाएं हैं, गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी भी यहां पे लगातार यात्रियों की मदद के लिए खड़ी है। हालांकि सुबह से बर्फबारी देर रात से ही बर्फबारी यहां पे हो रही है। सुबह यहां बर्फ की सफ़ेद चादर हर तरफ दिखाई दी। इसके बावजूद भी श्रद्धालुओं का जो उत्साह है, एक तो कठिन यात्रा होती है 19 किलोमीटर की, दूसरा ऑक्सीजन की कमी होती है, लेकिन जो यहां पहुंचने वाले श्रद्धालु होते हैं, चाहे वो बुजुर्ग हों या बच्चे हों, हर किसी के उत्साह में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। बर्फबारी है, कड़ाके की ठंड है, ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन श्रद्धालुओं का उत्साह अपनी अपार देखने को मिल रहा है।
0: जहां हेमकुंड साहिब में जमकर बर्फबारी हो रही है, वहीं उत्तराखंड के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। गुरुवार शाम से रुक रुक कर हो रही बारिश ने पहाड़ी राज्य के निचले इलाकों में भी तापमान काफी गिरा दिया है।
2: दो हफ्ते की चिलचिलाती गर्मी के बाद उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में देर रात तेज बारिश हुई और गुरुवार को इस बारिश के बाद कई क्षेत्रों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और इसके बाद मौसम फिलहाल सुहाना बना हुआ है। पहाड़ी क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। वहीं देहरादून समेत जो दूसरे मैदानी क्षेत्र हैं, वहां पर भी तापमान में कमी आई है। हालांकि गर्मी अभी भी बढ़ रही है और देखा जा सकता है कि मौसम विभाग ने एक बार फिर चेतावनी दी है कि अगले दो दिन में देहरादून, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ और बागेश्वर के लिए वार्निंग जारी की गई है। येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए हैं।
0: दरअसल मई में पहाड़ों पर हो रही जोरदार बर्फबारी सबको हैरान कर रही है। कश्मीर के गुरेज और हिमाचल के मनाली में भी इस हफ्ते ऐसा ही नजारा दिखा था, तो वहीं लद्दाख के द्रास में भी इस हफ्ते जमकर बर्फ गिरी है। ये हिमालय की गोद में बसे जोजीला दर्रा की तस्वीरें हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जोड़ने वाले इस इलाके से यूं तो साल भर सर्दी नहीं जाती, लेकिन अब की मई यहां हुई जबरदस्त बर्फबारी ने सबको हैरान कर दिया है। यहां बर्फबारी का आलम ये रहा कि सड़क पर जमी बर्फ को हटाने के लिए मशीनों का सहारा लेना पड़ा। इसी तरह ये तस्वीरें कश्मीर के गुरेज सेक्टर में मौजूद तुलैल वैली की है, जहां मई के महीने ने अब की बार दिसंबर की याद दिला दी है। इस हफ्ते नॉर्थ कश्मीर के गुरेज सेक्टर और सोनमर्ग में भी जबरदस्त बर्फबारी हुई है। हिमाचल का हाल भी ज्यादा जुदा नहीं रहा। यहाँ कुल्लू मनाली के ऊपरी इलाकों रोहतांग पास, स्पीति घाटी, सोलंग वैली, केलांग और दूसरी जगहों पर जमकर बर्फ पड़ी है। एक बात अच्छी ये हुई कि इस बर्फबारी ने पहाड़ों पर पहुँचे सैलानियों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है। जाहिर है मई में किसे बर्फबारी की उम्मीद होगी, लेकिन पहाड़ी इलाकों का रुख कर रहे पर्यटकों के लिए ताज़ा बर्फबारी किसी बोनस से कम नहीं। चमोली से कमल ने अंसिलोड़ी, देहरादून से अंकित शर्मा, मनाली से मनमिंदर अरोड़ा और जोजिला से मीर फरीद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से देशवासियों से विदेश यात्रा की जगह स्वदेश यात्रा करने की अपील की है, तभी से जीएनटी भी आपसे गुजारिश कर रहा है कि आप अपने आसपास की खूबसूरत जगहों की तस्वीरें हमें भेजें ताकि हम आपकी उन वीडियोस को यहां पर दिखाएं। तो चलिए आज आपको हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला लेकर चलते हैं, जहां के तमाम आकर्षक और खूबसूरत पर्यटक स्थल आपका इंतजार कर रहे हैं। हमारे एक दर्शक ने हमें एक ऐसा ही वीडियो भेजा है जिसमें उन्होंने धर्मशाला समेत कांगड़ा वैली की खास जगहों के बारे में जानकारी दी है।

0: आप सभी को भी न्योता देता हूँ कि हमारा हिमाचल प्रदेश जो देव भूमि है और हिमाचल के ही अंदर बसा हमारा ये सुंदर धर्मशाला, जहाँ एक तरफ धुलाधार की हसीन पहाड़ियाँ, जहाँ आज मई और जून के महीने में भी बर्फबारी धुलाधार की पहाड़ियों पर है। को कहना चाहूंगा हिमाचल प्रदेश के अंदर ये सुंदर हमारा धर्मशाला, जहां इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम जो विश्व का सबसे सुंदर स्टेडियम है वो धर्मशाला में है, चाहे मैक्लोडगंज जो नगरी है वो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में है, बौद्ध धर्म के धर्मगुरु दलाई लामा जी यहां पर हैं, आप सभी आए और धर्मगुरु दलाई लामा जी का आशीर्वाद मिलने का सौभाग्य आप सभी को मिलेगा। धर्मशाला के अंदर चाय के बगान है, आप उन्हें निहारने के लिए यहाँ आ सकते हैं। धर्मशाला के अंदर कई देवी स्थान, कई मंदिर, जैसे अगंजर महादेव, इंद्रनाल जी का मंदिर देवी स्थल है और कई मंदिर हमारे हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के शहर के अंदर है। बात करूँ रोपवे की, तो धर्मशाला में, धर्मशाला से मैक्लोडगंज के लिए रोपवे की सुविधा है, आप उसका आनंद लेने भी हिमाचल प्रदेश के अंदर आ सकते हैं। अगर कोई ट्रैकिंग का शौकीन है तो त्रिउंड जैसा एक ट्रैकिंग का हमारे पास स्पॉट जो है धर्मशाला के अंदर है, आप ट्रैकिंग के लिए भी त्रिउंड जा सकते हैं। साथ में धर्मशाला के लगते बाथू की लड़ी यहाँ घूमने के लिए है। मंदिर की बात करूँ तो रॉकट टेम्पल हमारे यहाँ है। धर्मशाला के साथ ही लगता कांगड़ा है, प्रदेशवरी माता शक्तिपीठ धर्मशाला के अंदर लगते कांगड़ा में है, तो आप इन तमाम चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए, घूमने के लिए धर्मशाला आए हिमाचल वासी तो धर्मशाला अतिथि देवो भव के भाव के साथ आप सभी के स्वागत के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। आपने आना कैसे है ये सबसे बड़ा प्रश्न है, तो बताऊँ आपको, धर्मशाला के ही समीप गग्गल एयरपोर्ट, जहाँ आप हवाई मार्ग से आ सकते हैं। रेलवे से अगर आपने आना है तो पठानकोट जो सबसे नजदीक हमारे पड़ता है उसके माध्यम से आ सकते हैं। जब दिल्ली से आपने आना है तो वोल्वो बसें जो है धर्मशाला तक आती हैं। इन तमाम साधनों से जो आप धर्मशाला आ सकते हैं। हम सभी धर्मशाला वासी आपके स्वागत के लिए और अतिथियों के, अतिथि देवो भव के भाव के साथ यहाँ पर।
1: तो आप भी अपने ही देश में सैर सपाटा करने अपने गांव और शहर में सैलानियों को इनवाइट कीजिए, टूरिज्म को बढ़ावा देने के संकल्प के भागीदार बनिए। बस करना आपको सिर्फ इतना सा है कि अगर आपके आसपास कोई खूबसूरत जगह है या फिर आपके शहर में आने की कोई खास वजह है तो उठाइए अपना कैमरा और स्टार्ट कर दीजिए ब्लॉग्स बनाने। फिर हमें 7303409922 नंबर पर व्हाट्सएप कर दीजिए, हम उसे GNT पर जरूर दिखाएंगे। और चलिए आज तो यही कहेंगे कि एंजॉय योर वीकेंड, क्योंकि आपका वीकेंड रहने वाला है कूल कूल। फिलहाल इजाजत दीजिए, अच्छी खबरें जारी हैं, देखते रहिए GNT।
2: Hey, it's Billy Bush. Tune into my show, Hot Mics, Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture, and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: चलिए अब आपको दिखाते हैं कुछ ऐसे वीडियोस जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हैं और इन्हें खूब पसंद किया जा रहा है।
5: नवजात भाई को पहली बार देखकर छोटी बहन की खुशी देखने लायक है। ठुमक ठुमक कर चलते हुए वो मासूमियत से जमीन पर बैठ गई और अपने नन्हे भाई को गोद में लेने के लिए हाथ फैला दिए। उसकी चमकती आंखों और खिलखिलाती मुस्कान ने पूरे घर के माहौल में खुशियां भर दी। भाई को सीने से लगाने की उसकी मासूम चाहत ने सभी का दिल जीत लिया। ये खूबसूरत पल सिर्फ एक मुलाकात नहीं बल्कि भाई बहन के अनमोल रिश्ते और निश्चल प्रेम की प्यारी शुरुआत बन गया। जहां लोग छोटी छोटी परेशानियों में हार मान लेते हैं, किस्मत को कोसने लगते हैं, वहीं ये शख्स हौसले की नई मिसाल बनकर सामने आया है। एक हाथ न होने के बावजूद अपने हुनर से लोगों के चेहरों पर मुस्कान और आत्मविश्वास दोनों सजा रहा है। इनका काम सिर्फ हेयर कटिंग का नहीं है बल्कि ये साबित करना है कि मेहनत, जज्बा और आत्मविश्वास के आगे हर मुश्किल छोटी पड़ जाती है। अपने हौसले से ये अपनी तकदीर खुद लिख रहे हैं। माँ और बच्चे का ये प्यारा सा अंदाज किसी का भी दिल जीत लेगा। माँ जैसे ही मस्ती में झूमती है, बच्चा भी उनकी नकल करने लगता है, फिर अपनी मासूम अदाओं पर खिलखिलाकर हंस पड़ता है। ये नज़ारा सिर्फ हंसी का नहीं बल्कि माँ बेटे के खूबसूरत रिश्ते और बेफिक्र बचपन की प्यारी झलक है। ऐसी मासूम खुशियाँ ही जिंदगी को खूबसूरत बनाती है और चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है। दुनिया का सबसे अमीर इंसान वो नहीं जिसके पास दौलत है बल्कि वो है जिसके घर लौटने पर परिवार खुशियों से झूम उठे। ये प्यारी बच्चियां अपनी माँ के साथ डांस करते हुए पिता का स्वागत कर रही हैं। बेटियों की मुस्कान और अपनापन देख पिता भी खुद को झूमने से रोक नहीं पाए। ये नज़ारा सिर्फ स्वागत का नहीं बल्कि परिवार के प्यार, अपनेपन और रिश्तों की असली दौलत की खूबसूरती का है। इतना नन्हा किसान शायद ही किसी ने देखा होगा जो अपनी मासूम उम्र में भी जिम्मेदारी निभा रहा है। ये छोटा सा बच्चा होटल के कर्मचारियों के साथ बागवानी में मदद कर रहा है। उनकी क्यूट हरकतें देखकर सभी के चेहरों पर मुस्कान आ जाती है। बच्चे की मासूम कोशिशों से माहौल और भी खुशनुमा हो गया। उसकी ये लगन और सादगी ये सिखाती है कि सीखने और मदद करने की कोई उम्र नहीं होती।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से।
1: रामनगरी अयोध्या में माता दुर्गा मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ धार्मिक अनुष्ठान, साधु संतों की मौजूदगी में हुआ समारोह। ऋषिकेश में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की गंगा आरती, तीर्थ क्षेत्र के मुद्दों पर साधु संतों से मुलाकात और संवाद। लखनऊ के साईं भक्त ने बाबा को भेंट किया स्वर्ण मुकुट, बेशकीमती पत्थरों से बने कमल पर उकेरा गया ओम, 782 ग्राम के इस मुकुट पर दो मयूर की नक्काशी। कोलकाता में तेज हवाओं के साथ जमकर हुई बारिश, उमस और गर्मी से लोगों को मिली राहत, सड़कों पर गिरे पेड़ हटाने में जुटा प्रशासन। उत्तराखंड के पहाड़ों को प्लास्टिक कचरा मुक्त बनाने में जुटा इंग्लैंड से आया मेहमान। अल्मोड़ा के कसार देवी इलाके में हर रोज स्वच्छता अभियान चलाते हैं मार्क। रेलवे ट्रैक के रेलबाजों पर प्रशासन हुआ सख्त, झांसी रेलवे स्टेशन पर ड्रोन कैमरों से की जा रही है लाइव निगरानी, संदिग्ध और पत्थरबाजों पर पैनी नजर।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली।
1: नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। सोशल मीडिया की दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं, आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार से
5: फैलते हैं, कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, तो कभी पुरानी तस्वीरों को नई साजिश का रंग देकर उन्हें पेश किया जाता है और लोग बिना सोचे समझे बिना परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टीवी स्क्रीन तक सीमित नहीं है। यहाँ हर किसी के हाथ में एक कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जो असलियत से कोसों दूर होती है। नतीजा ये कि लोग बिना सोचे समझे बिना परखे इन्हें सच मानकर